0: यही है कि पूरे मामले में बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी बिना बड़े पदाधिकारियों के मिलीभगत के संभव नहीं है। सवालों के कटघरे में खड़े हैं राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी। वही गिरी जो चढ़ावा चोरी के सवाल पर जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रख कर चले गए। क्या गोविंद देव गिरी की चुप्पी के पीछे चढ़ावा चोरी से जुड़े कई राज छिपे हुए हैं? क्योंकि जैसे ही गिरी से चढ़ावा चोरी का सवाल पूछा गया तो जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए कुछ यूं मीडिया के कैमरों से आगे निकल गए, गाड़ी में बैठे और बिना जवाब दिए चले गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस ट्रस्ट के खाते, चढ़ावे और दान की निगरानी में कोषाध्यक्ष की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है, वही कोषाध्यक्ष दान चोरी विवाद पर चुप क्यों हैं? दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी ट्रस्ट के संपूर्ण वित्तीय प्रबंध, मंदिर से जुड़े खातों की पारदर्शिता और राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की निगरानी करना है। मतलब यही है कि मंदिर में आने और जाने वाले एक एक रुपए का हिसाब रखने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के कंधों पर है। सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष की दाग के नीचे से चढ़ावे की चोरी होती रही और उन्हें भनक तक नहीं लगी। यही वजह है कि कोषाध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि सब कुछ जानते हुए भी गोविंद देव गिरी ने आंखें बंद रखी या फिर अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से नहीं निभाया। चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष चुप है, अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड है, चंपक राय ने मौन व्रत रखा है, गोपाल राव मीडिया के कैमरों से भाग रहे हैं, तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े ट्रस्टी महंत दीनेंद्र दास भी चढ़ावा चोरी के सवाल पर जुबान खोलने को तैयार नहीं।
1: बैंक जो है उसने कहा कि हमने तो 3 महीने पहले आगाह किया था, लेकिन ट्रस्ट के कुछ लोगों ने हमारी बात को जो है वो इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर।
0: जिम्मेदारों की चुप्पी चढ़ावा चोरी कांड पर राम भक्तों को चुभ रही है, क्योंकि राम मंदिर में राम का धन लूटा गया और राम धन की निगरानी का जिम्मा संभालने वाले मौन हैं।
2: मैनेजमेंट चंपत राय जैसे बड़े चोर का है, जिसने हजारों करोड़ रुपए लूट लिया, उसको आप बचा रहे हैं? उस गोपाल राव को बचा रहे हैं जो यहाँ बोरे भर भर के नोट ले जाता था? वो अनिल मिश्रा जो अरबपति होने गया, उस चोर को आप बचा रहे हो? राम मंदिर में जिसने 40% कमीशन लिया, आपके ही चीजें चीख चीख करके आपके ही ट्रस्ट के लोग काम करने वाले बोल रहे हैं, आप उनकी आवाज दबा रहे हो, हत्या की धमकी दे के आप छिपा रहे।
0: भले ही चढ़ावा चोरी कांड में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर अब तक गाज नहीं गिरी है। ये तब है जब आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। चढ़ावे से चोरी की गई रकम के एक हिस्से की आरोपियों से बरामदगी हो चुकी है। सवाल यही है कि आरोपियों के आकाओं पर कानूनी शिकंजा कब कसेगा? ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक फैसला नहीं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। गोपाल राव राम मंदिर के प्रबंधन की अहम कड़ी, लेकिन राव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव, लेकिन अभी तक कोषाध्यक्ष तक जांच की आंच नहीं पहुंची।
3: सवाल ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों की भूमिका पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तारी आरोपियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। बरामद हुई रकम इतनी बड़ी है कि बिना पदाधिकारियों के मिली भगत से चोरी करना संभव ही नहीं है।
0: राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की खुल्लम खुल्ला लूट हुई। आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की, वो भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के दावों के बीच। लेकिन आरोपियों की निशानदेही पर बरामद हुई चढ़ावा चोरी की रकम के बारे में सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। चढ़ावा चोरों से कुल 79,85,493 रुपए कैश बरामद हुए। चढ़ावा चोरों से कुल $1,181 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। चढ़ावा चोरों की निशानदेही पर कुल 21,548 नोटों की बरामदगी हुई। मतलब रामधन को चढ़ावा चोरों ने जमकर लूटा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई है। 500 के 3609 नोट, 200 के 579 नोट, 100 के 1182 नोट, 50 के 5 नोट, 20 के 21 नोट, 10 के 5 नोट, कुल भारतीय नोट बरामद 20,39,220। अविनाश शुक्ला ने राम मंदिर के चढ़ावे में चढ़े अमेरिकी डॉलर पर भी हाथ साफ किया था, जिसमें 100 डॉलर के 8 नोट, 50 डॉलर के 2 नोट, 20 डॉलर के 9 नोट, 10 डॉलर के 3 नोट, 5 डॉलर के 2 नोट और 1 डॉलर का 1 नोट शामिल है। कुल 1121 डॉलर बरामद, यानी करीब 1,00,000 रुपए। ठीक ऐसे ही अविनाश के ठिकाने से 159 ग्राम चांदी, 8 ग्राम सोने की चेन, 3 ग्राम सोने की अंगूठी मिली है। आरोपी लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव और रमाशंकर मिश्रा के ठिकाने से चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया है। लवकुश मिश्रा 500 के 2850 नोट, यानी कुल 14,25,000 रुपए। टिन्नू यादव के ठिकाने से 500 के 180 नोट, 100 के 100 नोट, यानी कुल 1,00,000 रुपए की बरामदगी। रमाशंकर मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 1386 नोट, 200 के 113 नोट, 100 के 56 नोट, 50 के 14 नोट, 20 के 12 नोट, 10 के 1003 नोट, यानी कुल राशि 7,32,170 रुपए। राम भक्तों ने अपनी आस्था नोट की शक्ल में दान पेटियों में डाली थी, लेकिन राम के दुश्मनों ने आस्था के साथ सीधा विश्वासघात किया, क्योंकि गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरों ने सिंडिकेट बनाकर चोरी को अंजाम दिया। आरोपी करुणेश पांडे के ठिकाने से 500 के 3600 नोट, 200 के 33 नोट, 20 के 2 नोट, 5 का 1 नोट, 20 के 3 सिक्के, 10 के 20 सिक्के, 5 के 21 सिक्के, 2 के 23 सिक्के, 1 के 7 सिक्के, यानी कुल राशि 18,07,063 रुपए बरामद हुए। ठीक ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 2853 नोट, 200 के 423 नोट, 100 के 707 नोट, 50 के 2004 नोट, 20 के 2 नोट, यानी कुल बरामदगी 16,82,040 रुपए। आरोपी मनीष यादव ने भी दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की। मनीष यादव के पास से बरामद हुए 500 के 278 नोट, 200 के 105 नोट, 100 के 400 नोट, यानी कुल राशि 2,00,000 रुपए। अभी जांच जारी है। चढ़ावे की रकम बरामद करने के लिए जांच टीम ने सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से पूछताछ की है। इसी बीच आरोपी अविनाश शुक्ला के एक रहस्यमयी बक्से का खुलासा हुआ है।
1: अब बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5,00,000 रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
0: ये बक्सा उस योग केंद्र में रखा है जहां अविनाश अपने भाई के साथ आता है। योग केंद्र में राम मंदिर से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनमें QR कोड लगा बक्सा भी शामिल है।
1: हम कोशिश करेंगे एक बार QR जो कोड है उसको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और एक बार देखें कि आखिर क्या इसमें निकलकर सामने आता है। मैं अपना पेटीएम अकाउंट खोलता हूं और मैं अपने पेटीएम से एक बार यहां पर इसको QR करने की कोशिश करता हूं। जब मैं इस पे QR करता हूं तो आपको मैं दिखाऊंगा यहां पर राम राज्य कोष निकल कर आता है, यानी कि ये जो पेमेंट है ये जाएगा राम राज्य कोष में। ये देखें आप तस्वीरें, आपको सामने QR कोड से दिखा रहे हैं कि कैसे जब मैंने इस पे QR किया, तो इतना तो साफ है।
3: राजस्थान में 300 करोड़ खर्च करके गरीबों का ऐसा घर बना जो घटिया निर्माण और सियासत में बर्बाद हो गया। सवाल अब यह कि जनता के 300 करोड़ रुपए लगाने वाले जिम्मेदार लोगों से इस पैसे की बर्बादी का कारण पूछकर वसूली नहीं होनी चाहिए क्या?
4: दूर से देखेंगे तो लग सकता है कि वाह क्या नजारा है। सोचने लगेंगे आप कि काश यहाँ जमीन मिल जाती तो घर बना लेते। जयपुर के बेहद खूबसूरत इलाके किशनबाग में बना ये राजीव नगर है, लेकिन पास चलकर देखिए तब समझ आएगा यहाँ जनता के पैसों की बर्बादी करके सरकारी सियासत से बने वो खंडहर खड़े हैं, जो बने जनता के नाम पर, लगा जनता का पैसा, लेकिन जनता के हाथ कुछ नहीं आया। बात 2009 की है। जयपुर की झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए 100 बीघा में 300 करोड़ रुपए खर्च करके तीन जगहों पर 4000 मकान राजीव गांधी नगर योजना में बनाए गए। 2013 में सभी मकानों की लॉटरी निकली, लेकिन आवंटन से पहले तब की गहलोत सरकार चली गई। बीजेपी सरकार में योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पानी, बिजली और सड़क का इंतजाम नहीं हुआ। चोरों ने फिर खिड़की, दरवाजे और सरिया तक उखाड़ लिए। योजना में 30% पैसा केंद्र दे रहा था। 2014 में केंद्र में सरकार बदल गई तो उसने भी ये योजना बंद कर दी। ज्यादातर मकान गहलोत राज में तब मुस्लिम समुदाय को आवंटित हुए। गहलोत सरकार जब तक 2018 में लौटी तो ये मकान रहने लायक बचे नहीं। निर्माण इतना घटिया कि ढहने लगे। लिहाजा 2.25 लाख में जिनको आवंटन होना था उन्होंने लेने से मना कर दिया।
5: जनता की गाढ़ी कमाई के 100 करोड़ स्वाहा हो गए। किसी गरीब को आज तक मकान नहीं मिला। यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहने लगे तो बीजेपी सरकार ने इसका तोड़ निकाला है कि यहाँ पर जो घुमंतु हैं या बिना घर वाले हिंदू हैं वो आकर रह सकते हैं जब तक चाहें। यानी पूरा मामला ये अब सांप्रदायिक हो गया है। गरीबों के रहने के मकान के नाम पर जिस तरह के मकान बने हैं उसमें कोई रह भी नहीं सकता, ना कोई खरीद सकता है। ठेकेदार ने पूरी तरह से एक जर्जर ढांचा खड़ा किया है जिसमें रहने के नाम पर कोई सोच भी नहीं सकता है।
4: इन खंडहर नुमा मकानों में पुराने कपड़ों के बदले बर्तन बेचने वाले गुजरात से आए कुछ परिवार अवैध रूप से रहते हैं। कहते हैं कि स्थानीय विधायक ने कहा है जाकर वहां रह लो, लेकिन न पानी है न बिजली, खुले में शौच जाते हैं। दिन भर अफीम और ड्रग्स लेने वालों का डेरा यहाँ रहता है। डरते हैं लेकिन रह लेते हैं क्योंकि किराया नहीं पड़ता।
6: इसमें सारे नशेड़ी गंजेड़ी सारे आते हैं इसमें, और उठपटांग जैसा भी होता है ऐसा सारा काम भी होते हैं, और जैसा आते हैं ऐसा सुइया बुया सभी नशेड़ी, हम जैसे लेडीज सारी पड़ी रहती है, बहू बेटियां है सभी, यहाँ रात को हम आ भी नहीं सकते।
5: सरकार ने ऐसे ही आधा बना के छोड़ दिया है।
6: सरकार ने तो पता नहीं पूरा बनाया था, अपना आधा अधूरा छोड़ रखा है, और सारे तो तोड़ दिया, तोड़ गेट बेट सारे उखाड़ उखाड़ के ले गए।
4: अपराधियों का अड्डा ऐसा कि पाकिस्तानी आतंकी ने इन्हीं मकानों में रहकर समय गुजारा और डॉक्यूमेंट बनवाए। बीजेपी सरकार ने अवैध कब्जा किए लोगों को यहां से निकाल दिया।
7: उसमें कुछ अवैध रूप से लोग बस गए और कब्जा कर लिए। आज वहां शिकायतें निरंतर आती है मेरी विधानसभा में, किशन बाग में और जयसिंहपुरा खोर में, जेडीए फ्लैट्स में और अन्य मुख्यमंत्री आवास योजनाओं में इस प्रकार के लोग बस गए थे, कब्जा कर लिए थे, जिनको निकालने का हम लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने कई लोगों को डिटेन किया, उनमें निकाला भी,
8: आवंटित हो नहीं पाए। और अब इन्होंने फर्जी तरीके से जिन लोगों के लिए सर्वे होकर के सर्वेदारियों के लिए फ्लैट बने उनकी बजाय वहां ये चल रहा है कि वहां के लोकल विधायक हर किसी को उसमें डाल रहे हैं, और बिना जवाब जाके पूछोगे तो वो नाम लेंगे कि भी इन्होंने बसा दिया हमको, इन्होंने बसा दिया।
4: जयपुर में ऐसे 4000 मकान बने जिनमें से 3000 खाली पड़े और खंडहर हो चुके। सरकार ने योजना को बंद कर दिया क्योंकि अब इतने मकानों को तोड़ने या नए सिरे से रिपेयर करने में 100 करोड़ से ज्यादा फिर खर्च होंगे। मंत्री कहते हैं इन मकानों को ठीक करने में ज्यादा पैसा लगेगा, जिसके लिए कोशिश हो रही है।
9: को पुनः रहने योग्य बनाने के लिए फिर एक भारी धनराशि की आवश्यकता, ऐसे में ये प्रकरण लंबे समय से लंबित है। अब इसका कैसे निस्तारण हो इसके संबंध में गंभीरता से विचार कर कोई न कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे।
4: बड़ा सवाल है कि गरीब अब भी झुग्गियों में रह रहे हैं जबकि उनके नाम पर हजारों करोड़ की सरकारी जमीन और सैकड़ों करोड़ जनता के पैसे बर्बाद हो गए। अब इन जगहों की सुरक्षा पर पैसे खर्च होने लगे। सरकार ने तय किया कि इन जगहों पर अपराधी ना आ जाएं, इसके लिए स्थानीय चौकी खोली जाएगी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
3: जिस जमीन को पाकिस्तान अपनी बताता है, अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों ने ऐलानिया कह दिया है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान अधिकतर कश्मीर के रावलकोट में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन से अब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की शमत आ चुकी है। अब ऐसे में पाकिस्तान ने JAAC के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर के साथ 600 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध का शोर नहीं थम रहा।
0: पीओके में बगावत का एटम बम, मुनीर की शामत कन्फर्म।
10: एक जब बाइज़त जिंदगी वहां पर कोशिश करके लोगों को दो।
0: पीओके से उठी आवाज, अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं पीओके। पीओके के नेता शौकत मीर नवाज पर मुनीर ने रखा 1 करोड़ का इनाम। बौखलाए मुनीर ने पीओके में नेताओं और 600 लोगों को उठवा लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब आवाम मांग रही है आजादी। वो पीओके जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और पाकिस्तान जिसे अपनी जमीन बताता है, जबकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। जिस पीओके को पाकिस्तान ने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, अब इसी पीओके से आवाज उठी है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
10: किसी ने वो बंदर की आंख में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी। इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया, जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी का हाथ है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के उन मेहनत कशों मजदूरों से वफादारी करो जिन्होंने तुम्हें मुंतखब भी नहीं किया हुआ और फिर भी तुम उनके सरों पर बैठे हुए हो।
0: पीओके में रावलकोट की ईदगाह से पाकिस्तान से आजादी की आवाज उठी है। जिस पीओके में आसिम मुनीर ने महंगाई और हक मांग रहे बेगुनाह लोगों पर गोलियां चलवा दी, 27 लोगों का कत्लेआम करवा दिया, अब उस पीओके की जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने आंदोलन को और तेज कर दिया है।
11: पहली क्यादत अगर अरेस्ट होगी तो दूसरी क्यादत मौजूद है, दूसरी अरेस्ट होगी तो तीसरी क्यादत मौजूद है। हमने हर चीज का हमने भी प्रॉपर इंतजाम करके रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम हमारे साथ है, एक मैंडेट हमारे पास है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम कामयाब हों।
0: और बौखलाए आसिम मुनीर ने पहले JAAC के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर और बाकी नेताओं की सूचना देने वालों पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा और फिर शौकत नवाज मीर समेत 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि JAAC के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत केस भी दर्ज किए गए हैं। सरकार ने 5 जून को JAAC पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश कम नहीं हो रहा है।
10: वहाँ पर सीज फायर लाइन पे, जीरो पॉइंट पे, तितरी नोट, हमारी खवातीन और हमारे बच्चे वहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं। ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारे मिलते करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा ना हो कि तजारती रास्ते फिर बाकी इख्तियार कर लिए जाएं। इसलिए गुजारिश ये है हालात को नॉर्मल करने के लिए हुक्मरानों को ये आवाम की स्टेट है, यहाँ पर कोई मार्शल लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते, कश्मीर के आवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे।
0: आपको बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान के बाद 27 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पीओके की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, इनमें से 45 सीटों पर सीधे चुनाव होता है, जबकि 8 सीटें महिलाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और धार्मिक विद्वानों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन पीओके की जनता अपने हक के लिए जंग लड़ रही है। महंगाई, बिजली और बेरोजगारी पर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ गरज रही है और इसी हक के लिए उन्हें मुनीर का कहर झेलना पड़ रहा है।
12: 3-4 साल से हम अपने हक के लेने के लिए निकलते हैं तो आप हमें बदले में शहादत देते हो। हम आटा सस्ता, बिजली सस्ती जैसी बुनियादी हकूक के लिए निकलते हैं तो हमें आप बदले में लाशें देते हो। खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा।
0: अब पाकिस्तान पीओके में बुरी तरह से घिरा है। पीओके वालों ने खुद अपनी आजादी की घोषणा कर दी है। इस बीच पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ाने की वकालत करने के लिए एक चिट्ठी लिखी है। बड़ी बात यह है कि इस चिट्ठी में 56 पाकिस्तानी और 61 भारतीयों के हस्ताक्षर हैं। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंध फिर से बहाल हों, दोनों देशों के उच्चायुक्त नियुक्त किए जाएं, सामान्य वीजा सेवा शुरू हो, व्यापार के लिए अटारी वाघा खुले, मुजफ्फराबाद लाहौर सेवा शुरू हो, समझौता थार एक्सप्रेस चालू हो, करगिल स्कर्दू रूट पर यात्रा हो, हवाई क्षेत्र खोला जाए, मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा वापस दिया जाए, करतारपुर नीलम घाटी शारदा पीठ खुले, मीडिया पत्रकारों पर प्रतिबंध हटाए जाए, जम्मू कश्मीर मुद्दे पर बात हो, 2004 से 7 के कश्मीर फ्रेमवर्क पर बात हो। वो पाकिस्तान दोस्ती चाहता है जिसने पहलगाम में नरसंहार किया। वो पाकिस्तान भारत के साथ अमन की आशा रखता है जो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मोस की भाषा जानता है। जब पीएम मोदी दर्जन बार कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जब पीएम मोदी दर्जन बार कह चुके हैं कि खून पानी साफ नहीं बहेगा, तो फिर पाकिस्तान से दोस्ती का सवाल ही कहां उठता है। भारत सरकार ऐसी चिट्ठियों वाली पहल को सिरे से नकार रही है।
13: वाजपेयी जी कहते थे आप दोस्त बदल सकते हैं, आप हमसाया नहीं बदल सकते, बातचीत कर लीजिए। जब वो बातचीत करते थे रास्ते और खोलिए। जो आरएसएस की लीडरशिप है, जैसे होस बोले है या भागवत जी है, तो वो भी कहते हैं कि बातचीत करना जरूरी है पाकिस्तान के साथ, आवाजाही होनी चाहिए, ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक रियलाइजेशन है।
14: उनकी अगर बैक हिस्ट्री देखी जाए, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान में बैठे ऐसे लोगों के लाडले रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में उस विमर्श को जन्म दिया था, जिस विमर्श ने यहाँ पे एथनिक क्लींजिंग एक्सोडस जिसे कहेंगे कश्मीरी पंडित्स का किया।
0: ये चिट्ठी सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के चेयरमैन ओपी शाह की ओर से लिखी गई है, जिन्होंने भारत की तरफ से 61 पे दस्तखत किए हैं। भारतीय पक्ष से फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर, आरजेडी के मनोज झा, टीएमसी के तमाम नेता और पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत के हस्ताक्षर हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 पाकिस्तानी शहरी भी हैं जो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में बातचीत हो। आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
16: आपके घर का मंदिर कैसा होना चाहिए, मंदिर का रंग क्या हो, मंदिर की दिशा क्या हो, मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र कैसे हों, और मंदिर जागृत कैसे हो, कैसा हो आपके घर का पूजा स्थान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
17: Stay in the game with TuneIn. Hear non-stop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
18: ने कहा था ये सबसे तेज है।
19: हाँ कहा था,
18: लेकिन ये तय कैसे होता है?
19: प्रेशर, जब पूरा देश जवाब ढूंढ रहा होता है तब ये सवालों के बीच खड़े हो जाते हैं।
20: पहला भारतीय चैनल,
19: ये हमेशा सबसे पहले पहुंचते हैं क्योंकि ये खबर का इंतजार नहीं करते, खबर तक पहुंचते हैं।
21: मणिपुर के उस ग्राउंड जीरो पर है,
22: जगह जगह लाक्षागृह चल रहे हैं जिनसे आपको खबरदार करने के लिए आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है।
23: बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रपति पुतिन आज तक पर आने के लिए।
19: सिर्फ अनुभव, उससे ज्यादा भरोसा।
24: आज तक की खबर का असर हुआ है,
19: हर दिन कमाया जाता है। क्या ये आपके ऑपरेटिव्स हैं? नहीं, ये भारत के ऑपरेटिव्स हैं।
25: अल्फा, अल्फा को पहचानते हैं
26: भारत के अल्फा जर्नलिस्ट, भारत के सबसे बड़े
1: अल्फा न्यूज नेटवर्क पर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी में बम भोले की गूंज। जम्मू से एलजी ने रवाना किया श्रद्धालुओं का पहला जत्था। गलबालटाल और पहलगाम से होगी औपचारिक शुरुआत। रूट पर भारी सुरक्षा। तीस दिन जेल में रहने पर जा सकती है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट तैयार। मानसून सत्र में पेश हो सकते हैं तीनों बिल। हंगामे के आसार। भारत के तीन दिवसीय दौरे पर जापान की प्रधानमंत्री ताकायशी। पीएम मोदी ने कहा बहुत बहुत स्वागत। भारत जापान के ज्वाइंट विजन को मिल सकती है रफ्तार। 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल। कांग्रेस में शरद पवार की पार्टी के विलय की तैयारी। सहमति बनी तो दिल्ली में लगेगी मुहर। फिलहाल राज्य स्तर पर बातचीत। और व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार की सख्ती। मेटा कंपनी को भेजा नोटिस। पूछा कैसे होगी अपराधियों की पहचान। बिना मंजूरी भारत में लॉन्च नहीं होगी गोपनीय पहचान वाला फीचर।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं और देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और शुरुआत करेंगे पवित्र अमरनाथ यात्रा से, शुरू होने वाली उस खबर के साथ, क्योंकि कल से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। लेकिन श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू बेस कैंप से आज सुबह करीब 4:30 बजे रवाना हो गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बस को खुद हरी झंडी दिखाई। घाटी इस समय पूरी तरह से शिवमय हो गई है। चारों ओर हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। कल यानी 3 जुलाई को बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत होगी और बेस कैंप से शुरुआत से पहले श्रद्धालुओं के जत्थे आज से निकलना शुरू हो चुके हैं। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जल थल आसमान हर जगह सुरक्षा बलों का पहला ही, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं का वो जोश, आस्था का वो सैलाब जो पहलगाम बालटाल की ओर अब आगे बढ़ रहा है, जहां से यात्रा की औपचारिक शुरुआत होगी। 3 जुलाई को वो यात्रा शुरू होती है। उपराज्यपाल ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। सुरक्षा के भारी

0: हजारों सैकड़ों लाखों श्रद्धालु अब अमरनाथ यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। पहला जत्था आज रवाना हो गया है। इन चार तस्वीरों के जरिए समझे किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। तो जम्मू बेस कैंप की तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं और उसी के साथ तैयारियां। हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट ने थोड़ी देर पहले जम्मू से ये रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं।
1: इस समय हम मौजूद हैं जम्मू में यात्री निवास भवन के बाहर और जो श्रद्धालु हैं उनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कश्मीर घाटी की तरफ जा रहा है और कुछ श्रद्धालु यहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। कुछ श्रद्धालु डमरू बजा रहे हैं, कई श्रद्धालुओं के हाथ में त्रिशूल है। हम यहाँ पर सीधा श्रद्धालुओं से बात करते हैं। क्या पता है,
2: मेरा नाम विजय कुमार, टाटानगर झारखंड से आया हूँ।
1: कितनी प्रसन्नता की
2: और प्रशंसा और उमंग जितनी है वो कह नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जितने भी भक्त आए हुए सभी के मन में एक ही आशा है, एक ही मनसा है कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन जितना जल्दी हो सके कर सके। जी
1: एक बार भगवान भोलेनाथ का कोई भजन गाइए।
2: मेरा भोला है भंडारी

0: बाजरे बोले बाजरे लगे बोली तेरे हाथों में उसकी टोली बोले नाथ रे ओ शोले नाथ रे हारे हारे महादेव वीर बजरंगी बोले की भोज बोले शंभो
1: बाबा भोलेनाथ की जय बाबा बरमानी की।
2: सातवीं बार यात्रा कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की, हर बार हर साल आते हैं, 2016 से लगातार आ रहे हैं।
3: आप हर वर्ष यात्रा के लिए आते हैं?
4: हर साल आते हैं, 19 से आ रहे हैं लगातार।
3: पहले जत्थे में ही नाम आ गए?
4: पहले जत्थे में ही नाम आ गए।
3: इतना सौभाग्यशाली।
4: पहले से ऑनलाइन बुक करते हैं।
3: जय घोष लगा दिए।
4: हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर
1: बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले।
3: यहाँ पर बम बम भोले और हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। भक्तिमय माहौल है यहाँ पर, वातावरण है दिव्य भव्य वातावरण है। श्रद्धालु भारी संख्या में जो है यहाँ पर यात्री निवास भवन में मौजूद है और आप इनका उत्साह देखें, इनका उत्साह अपने चरम पर है और सभी श्रद्धालु जो है व्याकुल है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए।
5: सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। सुनील जरा दिखाइए तस्वीरें, क्योंकि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं मल्टी लेयर सिक्योरिटी हर वो तैयारी की जा रही है ताकि यात्रा को कोई खलल ना पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ विश्वास और उसकी जो शक्ति है वो दिखाई देनी शुरू हो गई। अभी तो तृतीया आई भी नहीं और उसके पहले यात्री रवाना होना शुरू हो चुके हैं।
6: जी बिल्कुल आशुतोष, इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में और यहीं पर कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने पहले जत्थे को रवाना किया। ज्यादातर गाड़ियां यहां से निकल चुकी है, अब कुछ गाड़ियां हैं वो अभी बस जा रही हैं और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। भक्ति भाव के साथ श्रद्धालु जो है कश्मीर घाटी की तरफ निकल रहे हैं, मन में इनकी काफी प्रसन्नता है। बम बम भोले और जय हर हर महादेव के जय घोष के साथ श्रद्धालु जा रहे हैं कश्मीर घाटी। जी आप बताइए आपका नाम?
7: आशुतोष सेठ।
3: मन में कितनी प्रसन्नता है?
7: बहुत ज्यादा, बहुत।
1: नमो पार्वती पते हर हर महादेव।
3: जी आप कहाँ के रहने वाले?
7: राजस्थान।
3: मन में कितनी प्रसन्नता का भाव?
7: बहुत अच्छा, 4 साल हो गए बाबा वर्मा ने गया था।
3: प्रतिभा प्रतिवर्ष आते हैं?
7: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
3: ज्यादा।
1: बोलो बाबा काशी विश्वनाथ के। हम लोग लखनऊ से आए और देखिए जोश, 2 दिन से सोए नहीं है दर्शन करके।
6: आशुतोष आप सुन सकते हैं श्रद्धालुओं के भाव, इनका कहना है कि बड़ी व्याकुलता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये भगवान भोलेनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचे, वहां दर्शन करें और यात्रा करें। आप देखिए कि ये कुछ बसें बची हैं, अब ये एक एक करके यहां से निकल रही है, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। आप देखिए पीछे भी एक बस है, हम प्रयास करेंगे कुछ और श्रद्धालुओं से बात करने का। हाँ जी
8: सर, हम जनपद प्रताप उत्तर प्रदेश,
6: खुशी
8: बहुत खुशी है सर इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर।
6: आप देख सकते हैं कि बस इक्का दुक्का बसें बची हैं जो कि अब जा रही हैं और ज्यादातर बसें जो है निकल चुकी है, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है।
5: सुनील आप जरा बने रहे हमारे साथ, आपकी एक और रिपोर्ट जरा हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को तमाम, कि जहां पर एक तरफ आस्था भक्ति श्रद्धा दिखाई दे रही है और इसी के साथ राष्ट्रवाद का रंग भी अमरनाथ यात्रा में दिखाई दे रहा है। सुनील जी भट्ट जो आपसे थोड़ी देर पहले सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
6: यहाँ पर शिव भक्ति भी दिख रही है और राष्ट्र

0: कृष्ण भक्ति भी दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु यात्रा के लिए जा रहे हैं उनके हाथों में तिरंगा भी है, यही तिरंगा जो देश की आन बान शान अस्मिता का प्रतीक है। तो यहाँ पर शिव भक्ति भी दिख रही है और राष्ट्रभक्ति भी दिख रही है। हम सीधा यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम?
1: मेरा नाम पुरुषोत्तम साहू है, मैं MP गुना से हूँ।
0: आप यात्रा के लिए पहले भी जा चुके हैं? पहली बार?
1: मैं पहली बार जा चुका हूँ, दो बार से मैं पहले सत्य में जा रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा, तीसरी बार है आप?
1: ये तीसरी बार है।
0: अभी तक कैसा अनुभव रहा आपका?
1: मेरा अनुभव काफी अच्छा है और मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए और जितनी ज्यादा जनसंख्या में आ सकते हैं उतनी ज्यादा में आए।
0: तो मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है?
1: मन में प्रसन्नता की अनुभूति तो बहुत है, हम आप लोगों को बता ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जितने भी शिव भक्त हैं वो अपना एक दृढ़ निश्चय लेके आते हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन हो और जितनी जल्दी हो उतनी अच्छा रहेगा, क्योंकि
0: यहाँ पर शिव भक्ति भी देख रहे हैं और राष्ट्र भक्ति भी देख रहे हैं।
1: जी जी जी बिल्कुल।
0: एक बार जय घोष कर दीजिए सभी।
2: भारत
0: जब आप पवित्र गुफा में पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, पहले जत्थे में आप लोग सभी शामिल हैं, तो भगवान भोलेनाथ से क्या मांगेंगे?
3: सबका कल्याण करें, भारत से सुरक्षा करें,
4: सुरक्षा मांगेंगे,
5: हमारे ऐसे बना रहे युगों युगों तक, ऐसे हमारा भारत देश में आगे रहे, सब लोग इसका सम्मान कर, हम यही चाहेंगे। बाबा परमात्मा
3: ऐसी चलती रहे, हमेशा
5: यात्रा चलती रहे,
6: बुलाते रहे, ये यात्रा ऐसे ही चलती रहे, बाबा हर बार हमें बुलाते रहे,
0: भगवान भोलेनाथ बार बार हमें बुलाते रहे, ऐसा कहना है यहाँ पर श्रद्धालुओं का। इनका कहना है कि ये चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का बुलावा बार बार आए। तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु कितने व्याकुल है दर्शनों के लिए। तो श्रद्धालु का उत्साह अपने चरम पर है, बम बम भोले, हर हर महादेव का यहाँ पर जय घोष हो रहा है।
7: आस्था और राष्ट्रभक्ति की ये कलर हिंदुस्तान में दिखाई देते हैं कि एक तरफ भक्ति भाव की यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ भारत माता की जय घोष भी चल रही है। सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से। सुनील, पहला जत्था रवाना हो गया है, आगे भी ऐसे कितने जत्थे? दूसरा, सुरक्षा के मद्देनजर अगर देखें तो किस तरह की तैयारियां आपके आसपास दिखाई पड़ती हैं?
8: जी बिल्कुल आशुतोष, मैं बता दूं कि अभूतपूर्व सुरक्षा के कदम इस बार यात्रा के लिए उठाए गए हैं। अगर हम देखें तो 670 कंपनियां जो हैं तैनात की जा रही हैं इस यात्रा के लिए, इस वर्ष के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की, और ज्यादातर जो जिम्मा है वो केंद्रीय सशस्त्र बलों पर ही होगा इस यात्रा की सुरक्षा के लिए। और भारतीय सेना के शूरवीर उच्च चोटियों पर जो है तैनात रहेंगे यात्रा मार्ग के आसपास, और जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी भी भारी संख्या में तैनात है बेस कैंप्स के आसपास और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी। समय भी अगर आप देखें यहाँ जो यात्री निवास भवन के बाहर जो ये पार्किंग एरिया है जहां से ये बसें कश्मीर घाटी की तरफ जा रही है, यहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद कदम उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी भारी संख्या में तैनात है, केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मी भी यहां पर तैनात है, और साथ ही में ट्रैफिक पुलिस के जवान भी यहां पर है, क्योंकि ट्रैफिक को भी सुचारू रूप से चलाना है, एक एक करके गाड़ियों को भेजना है। तो पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी व्यापकता के साथ यहां पर जो है प्रबंध किए गए हैं। प्राथमिकता यही है कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, और साथ ही में सुरक्षा के कदम इसे कड़े किए गए हैं कि कोई अप्रिय घटना ना घटित हो। जैसे कि मैंने कहा कि अभूतपूर्व जो है इंतजाम किए गए हैं, 670 कंपनियां तैनात हैं इस यात्रा के लिए सशस्त्र बलों की, केंद्रीय सशस्त्र बलों की, और यानी कि अगर हम पूरी संख्या देखें तो 80,000 के आसपास जो है केंद्रीय सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में तैनात रहेंगे, चाहे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हो, बेस कैंप्स हो, यात्रा मार्ग हो। जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी तो है ही, साथ ही में भारतीय सेना के शूरवीर भी जो ऊंची पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, वहां पर तैनात रहेंगे। क्विक रिएक्शन टीम्स भी स्टैंड बाय मोड पर रहेंगी ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। आशुतोष,
7: ठीक है, सुनील बने रहे, आपकी एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि जब जत्था पहला बस में बैठ रहा था, उसको हरी झंडी दिखाई जा रही थी और पूरे जोश उद्घोष के साथ जब रवानगी हो रही थी, सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
0: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा का शंखनाद हो चुका है, यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यात्रियों का जो पहला जत्था है इनमें कितनी प्रसन्नता की अनुभूति है, श्रद्धालु जो है खासा उत्साहित है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। इस यात्रा को लेकर देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंचे हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए, और यहाँ पर आप देखिए कि बम बम भोले और हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से जो है श्रद्धालु पहुंचे भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए, और उत्साह देखते ही बनता है। देखिए बम बम भोले, हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है, और इन श्रद्धालुओं में खासा प्रसन्नता है, क्योंकि इनका नंबर जो है पहले जत्थे में ही आ गया। देखिए बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और चेहरे पर इनके मुस्कान देखे, प्रसन्नता की अनुभूति देखे कि खासा उत्साहित है इस यात्रा को लेकर। जी आप बताइए आपका नाम?
2: दीपिका खंडेलवाल।
0: कहाँ के रहने वाले?
2: अलवर, राजस्थान।
0: राजस्थान से। मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है इस यात्रा को लेकर?
2: मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ जाने के लिए, और सभी को यहाँ पे आना चाहिए और बाबा बर्फानी के दर्शन करने चाहिए।
0: तो आप भी पहली बार यात्रा के लिए?
2: हाँ जी पहली बार।
0: पहले ही जत्थे में बुलावा आ गया?
2: हाँ जी।
0: तो अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझते?
2: बहुत ज्यादा।
0: ठीक है ठीक है। आप बताइए आपका नाम?
4: कन्नू।
0: कहाँ के रहने वाले? राजस्थान। पहली बार आ रहे?
4: हाँ।
0: क्या भाव है मन में?
4: बहुत एक्साइटेड है यहाँ आने के लिए।
0: यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं पारंपरिक अपने परिधान में आई, हम देख सकते हैं कि पूरे सजे धजे से आप हैं यात्रा के लिए जा रहे हैं, चेहरे पर खिली खिली मुस्कान है। क्या कहेंगे यात्रा को लेकर?
9: यात्रा को लेकर बहुत खुश हुई हूँ, मैं आज यहाँ आई हूँ और बाबा ने बुलाया मुझे।
0: पहली बार यात्रा के लिए
9: आई
0: हूँ। पहले जत्थे में ही नंबर आ गया?
9: पहले जत्थे में।
0: क्या भाव है मन में?
9: एक्साइटमेंट है भाई। यहाँ
0: आप में से कोई भजन गा सकते हैं भगवान भोलेनाथ का, शिव जी का कोई भजन गा सकते हैं? जी आप बताइए आपका नाम?
10: जी किरण राठौड़ है मेरा नाम।
0: अच्छा, जी से आप?
10: मैं जयपुर से हूँ।
0: अच्छा, क्या भाव है मन में?
10: मन में बस ये है कि थोड़ी उम्मीदें हैं, उत्साह है, और उन्हें एक नजर देखने की इच्छा है।
0: अच्छा, जब आप पवित्र गुफा में पहुँचेंगे क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ?
10: सबसे पहले तो ये होता है कि निरोगी सुख काया होता है, कि सबसे पहले कि सभी को निरोग और सुखी रखे। दूसरी चीज ये कि जो इच्छाएं हैं, हम जिस इच्छाओं को लेकर जा रहे हैं वो सभी की इच्छाएं पूरी करें।
11: मेरा भोला है भंडारी, मेरा भोला

0: नंदी की सवारी।
1: जी बताइए क्या नाम है आपका?
2: मेरा सुनीता।
1: कहाँ के रहने वाले?
2: हम अलवर के।
1: अभी राजस्थान का ही ग्रुप है?
3: राजस्थान।
1: राजस्थान के लोगों में तो काफी जोश होता है, जोश के साथ जयकारा तो लगाइए।
0: बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम।
4: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था रवाना हो चुका है। जम्मू से हमारे सहयोगी सुनील भट्ट जम्मू से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, ये जो हम हर साल व्यवस्था देखते हैं कि ग्रुप में छोड़ा जाता है थोड़े थोड़े यात्रियों को आगे सुरक्षित मार्ग से, अभी कितना जत्था और वहां इंतजार कर रहा है? और इसी के साथ जब यात्रा की शुरुआत होगी तो इसमें ज्यादातर लोग बालटाल जा रहे हैं, पहलगाम जा रहे हैं, किस ओर की रवानगी है ये?
5: देखिए, दोनों मार्गों की तरफ जो है श्रद्धालु कश्मीर घाटी जा रहे हैं, बालटाल मार्ग की तरफ भी जा रहे हैं और पहलगाम मार्ग की तरफ भी जा रहे हैं। इस समय भी श्रद्धालु कुछ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं।
6: जी बताइए। मेरा नाम है विशाल, मैं हूँ बीकानेर से, बहुत एक्साइटेड हूँ।
5: जा रहे हैं कौन से? बालटाल से जा रहे हैं?
6: पहलगाम से
5: पारंपरिक मार्ग से ही जाएंगे।
6: यस,
5: एक बार जय घोष कर दीजिए।
6: जय शिव शंकर, बम बम बोले, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
5: क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ से?
6: बस यही सुख शांति और अपने भारत देश की एकदम आजादी हमेशा की तरह, यही एकदम रहे।
5: सुख समृद्धि की प्रार्थना करेंगे श्रद्धालु, समूचे देश की सुख शांति की प्रार्थना करेंगे श्रद्धालु। जो है एक एक करके अपनी गाड़ियों से यहां से निकल रहे, ज्यादातर श्रद्धालु तो आज निकल गए, लेकिन जो कुछ अभी श्रद्धालु यहां पीछे थे उनकी गाड़ियों को भी अब धीरे धीरे यहां से रवाना कर दिया जा रहा है। तो श्रद्धालुओं के चेहरे पर आप देखिए कितनी खिली खिली मुस्कान है। क्या कहेंगे?
7: हर हर महादेव, बाबा बर्फानी की जय हो।
8: बहुत अच्छा भैया, बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे है। हम लोग बनारस से हैं
7: और आरसी से।
8: हर हर महादेव।
5: तो आशुतोष, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु जो है उनकी गाड़ियां एक एक करके जा रही है यहाँ से, बम बम बोले और हर हर महादेव के जय घोष के साथ जो है श्रद्धालु निकल रहे हैं और यही कह रहे हैं कि वो प्रार्थना करेंगे कि समूचे राष्ट्र में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे। और जहां आशुतोष आपके प्रश्न की बात है तो मैं बता दूं कि कल जो है यात्रा विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगी दोनों मार्गों से, पारंपरिक पहलगाम मार्ग से और साथ ही में बालटाल मार्ग से। यात्रियों का जत्था जो है आज यहां जम्मू बेस कैंप से विधिवत तौर पर रवाना कर दिया गया है। दोपहर के बाद श्रद्धालु जो है कश्मीर घाटी पहुंच जाएंगे, जिन लोगों को बालटाल जाना है वो बालटाल पहुंच जाएंगे और जिन लोगों को पहलगाम जाना है वो पहलगाम पहुंच जाएंगे। और कल विधिवत तौर पर दोनों मार्गों से यात्रा शुरू होगी, 57 दिन तक ये यात्रा चलेगी इस वर्ष। और श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, यानी कि इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा जो रक्षाबंधन है 28 अगस्त को है, 28 अगस्त को ये यात्रा संपन्न होगी। और जो जानकारी हमें मिल रही है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड से कि लगभग 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने जो है पंजीकरण कराया है और आने वाले दिनों में और भी संख्या बढ़ सकती है क्योंकि आंकड़े जो है वो अभी भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पर तवी रिवर फ्रंट जो है वहां पर अब आरती का भी आयोजन होता है शाम को, और जो श्रद्धालु यहाँ पहले से पहुंचते हैं उनको वो दिव्य आरती का भी जो है आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए श्रद्धालु। हाँ जी,
9: अशोक कुमार पांडे, काशी विश्वनाथ बनारस नगरी से।
5: आप कितनी देर में निकल रहे हैं?
10: बस अब निकल रहे हैं, गाड़ी पीछे से आ रही है, बस
5: कुछ लगा दीजिए एक बार।
8: हर हर महादेव, बम बम
3: भोले,
8: बम बम
3: भोले,
8: बम बम
3: भोले,
8: बम बम
3: भोले।
5: एक बार कोई भजन गा दीजिए शिव जी का।
8: मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंभो।

0: कौन से मात्रा से, कौन से मार्ग से आप यात्रा करेंगे?
1: ये पहलगांव से, पहलगांव
0: से, पहलगांव से पारंपरिक मार्ग से
1: जी। परम्परा
0: प्रतिवर्ष आते हैं?
1: प्रतिवर्ष आ रहे हैं हम लोग, लगातार 2003 से आ रहे हैं।
0: तो क्या भाव है मन में?
1: मन में यही भाव है कि पूरे जग का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो और भारत विश्व गुरु बने। जी
0: विश्व गुरु बने। एक बार जरा जोश के साथ जय घोष लगा।
1: अरे हरे मारे भोले, बम बम भोले,
2: जय बाबा और भानी, भूखे को अन्न, प्यासों को पानी।
0: तो आप आशुतोष तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है और काफी व्याकुल है दर्शनों के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कश्मीर घाटी पहुंचे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। देखिए यहाँ पर सुरक्षा की अगर हम बात करें, आशुतोष आपने एक पहले प्रश्न पूछा था, देखिए भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है, आला अधिकारी भी है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, केंद्रीय सशस्त्र बल हो, कड़ी सुरक्षा में जो है श्रद्धालु यहाँ से जा रहे हैं एक एक करके और पूरी तरह से पूरी व्यापकता के साथ यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं के निकलने की व्यवस्था है। ट्रैफिक पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है और पूरे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कड़ी सुरक्षा है, चप्पे चप्पे पर पहरा है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो है भारी संख्या में तैनात है। जहां तक जम्मू के बेस कैंप की बात है, इस समय भी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी भी तैनात है, यहां जो अधिकारी है वो भी यहां पर मौजूद है और केंद्रीय सशस्त्र बल भी जो है यहां पर मौजूद है। और इस बार 670 जो कंपनियां हैं केंद्रीय सशस्त्र बलों की, वो तैनात की गई है यात्रा के लिए। फिलहाल आप यहां पर तस्वीरें देखिए आशुतोष, एक एक करके यहां से गाड़ियां जा रही हैं, ज्यादातर श्रद्धालु निकल चुके हैं जो कि पहले जत्थे में थे, अब एक एक करके जो बाकी श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं।
3: जय भोले बाबा, जय बाबा अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी।
0: कितनी प्रसन्नता है,
3: पहली बार आए हम लोग, बहुत उत्साह है, बहुत बढ़िया, जय
4: बढ़िया लग रहा है, जय भोले बाबा की।
0: चेहरे पर मुस्कान देखिए, श्रद्धालुओं की मुस्कान ही सब कुछ बयां करती है। तो फिलहाल आशुतोष मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जम्मू बेस कैंप से, जो अभी कुछ गाड़ियां हैं जो बची हैं वो एक एक करके अब यहाँ बेस कैंप से निकल रही है कश्मीर घाटी की तरफ। आशुतोष
5: बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, आप बने रहे हमारे साथ। दरअसल कल अमरनाथ यात्रा का आगाज बालटाल पहलगाम से होने वाला, यात्रियों की सुविधा से लेकर सुरक्षा तक के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
6: एक बार फिर घाटी बम बम भोले के जयकारे से गूंज रही है, क्योंकि शुरू होने जा रही है बाबा अमरनाथ की पावन यात्रा। कल से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। बाबा अमरनाथ की यात्रा श्रावण पूर्णिमा तक चलती है। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों शिव भक्त बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंचते हैं और उनके चमत्कार के साक्षी बनते हैं। दुर्गम रास्तों से होकर अमरनाथ गुफा तक का सफर तय होता है। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट हैं। पहला 41 किलोमीटर लंबा पारंपरिक पहलगाम रूट, दूसरा 14 किलोमीटर लंबा बालटाल रूट। पहलगाम रूट अमरनाथ यात्रा का पारंपरिक रूट है। यहां से पवित्र गुफा तक पहुंचने में आमतौर पर 3 से 4 दिन लगते हैं। रास्ते में शेषनाग और पंचतरणी के दर्शन भी होते हैं। वहीं बालटाल रूट अपेक्षाकृत छोटा रास्ता है। इस मार्ग से श्रद्धालु कम समय में यात्रा पूरी कर सकते हैं। इसकी चढ़ाई काफी सीधी, खड़ी और कठिन मानी जाती है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भोले भंडारी बर्फ के शिवलिंग रूप में कब से विराज रहे हैं और भक्त उनके दर्शनों के लिए कब से वहां पहुंच रहे हैं, इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। लेकिन माना जाता है कि किसी वजह से ये गुफा स्मृतियों से लुप्त हो गई थी और करीब 150 साल पहले इसे फिर से खोजा गया। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा ये धाम शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। जहाँ पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन जो पहुँच जाता है उसके जीवन में फिर किसी भी तीर्थ की तमन्ना नहीं रह जाती।
5: तो हर हर महादेव के साथ श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से बेस कैंप से अब आगे पहलगाम बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट जम्मू से लगातार तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे, तमाम जानकारियां भी दिखा रहे थे। और सुनील कल भी हम आपके पास लौटेंगे, कल भी हम वो तस्वीरें देखेंगे, यात्रा की शुरुआत होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसें।
8: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
9: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: आपके घर का मंदिर कैसा होना चाहिए, मंदिर का रंग क्या हो, मंदिर की दिशा क्या हो, मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र कैसे हो, और मंदिर जागृत कैसे हो, कैसा हो आपके घर का पूजा स्थान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
2: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
3: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
5: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
4: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
6: You're listening to MSNBC.
4: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी में बम भोले की गूंज। जम्मू से एलजी ने रवाना किया श्रद्धालुओं का पहला जत्था। कल बालटाल और पहलगाम से होगी औपचारिक शुरुआत। रूट पर भारी सुरक्षा। तीस दिन जेल में रहने पर जा सकती है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट तैयार। मानसून सत्र में पेश हो सकते हैं तीनों बिल हंगामे के आसार। भारत के तीन दिवसीय दौरे पर जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची। पीएम मोदी ने कहा बहुत बहुत स्वागत। भारत जापान के ज्वाइंट विजन को मिल सकती है रफ्तार। 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल। कांग्रेस में शरद पवार की पार्टी के विलय की तैयारी। सहमति बनी तो दिल्ली में लगेगी मुहर। फिलहाल राज्य स्तर पर जारी है बातचीत। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार की सख्ती। मेटा कंपनी को भेजा नोटिस। पूछा कैसे होगी अपराधियों की पहचान।

0: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ में हूं आशुतोष मिश्रा। मानसून की दस्तक के बाद मुंबई लगातार मुश्किल में है। बीती रात मुंबई में जोरदार बारिश के बाद कई जगहों पर जलजमाव दिखाई दिया है। इसका सबसे अधिक असर अंधेरी सबवे पर पड़ा है। पानी के तेज बहाव और सबवे में पानी भरने के बाद तड़के करीब 4:30 बजे अंधेरी सबवे को फिर से बंद कर दिया गया। अंधेरी सबवे के बाद मुंबई पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस लोगों को सबवे की तरफ जाने से रोक रही है। बीती रात मुंबई के निचले इलाके सहित दूसरे इलाकों में तेज बारिश हुई और ये इसलिए किया गया है ताकि लोग उस इलाके में ना जाएं और कहीं अंधेरी सबवे में अगर वो फंस जाते हैं तो कोई हादसा ना हो जाए। ऐसे में पुलिस की तैयारी है। वो ये देखिए, तस्वीरें भी आने लगी हैं अंधेरी सबवे लगातार। और मौसम विभाग ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक भारी बारिश हुई है। 1 जुलाई 2026 से 5:30 बजे सुबह तक की जो जानकारी उसके मुताबिक सांता क्रूज, जुहू, विक्रोली ऐसे कई इलाके जहां 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। तो मुंबई में मूसलाधार बारिश।
1: बीती रात मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव की खबर है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर एक बार फिर से अंधेरी सबवे में दिखाई दिया है, जहां पानी भरने के बाद एहतियातन अंधेरी सबवे को रात करीब 4:30 बजे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। तस्वीर में देख सकते हैं अंधेरी सबवे और इस पानी के तेज बहाव को देख सकते हैं कि कितना तेज पानी है। कोई भी आदमी जो है आमतौर पर इस तेज बहाव में रुकना मुश्किल हो जाएगा। वो अपनी किसी तरह ना तो गाड़ी लेकर जा सकता है ना ही पैदल जा सकता है। लिहाजा एहतियातन मुंबई पुलिस ने अंधेरी सबवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। तस्वीर में देख सकते हैं मुंबई पुलिस के जवान हैं। वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं मुंबई पुलिस की यहां पर गाड़ी भी लगी हुई है, जो लोगों को यहां से आगे ना जाने की हिदायत दिया जा रहा है, क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज है और यहां पर जो है मुंबई पुलिस के जवान यहां पर मौजूद है, जो लोगों को सलाह दे रहे हैं कि चूंकि आगे पानी का बहाव काफी तेज है इसलिए आप लोग इस रास्ते से ना जाकर किसी और दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करें। आपको बता दें जब भी मुंबई में बारिश होती है तो इसका सबसे पहले असर जो है अंधेरी सबवे में ही दिखाई देता है, जहां पर पानी भरने के बाद आम लोगों के लिए इसे एहतियातन बंद करना पड़ता है।
0: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मॉनसून की शुरुआत के साथ ही हादसों का दौर शुरू हो गया। पहले चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरा, फिर 2 युवतियां बिजली की तार की चपेट में आ गईं, एक फ्लैट की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई।
2: हर बारिश की यही कहानी, मुंबई पानी पानी। एक बार फिर मूसलाधार बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। भले ही मुंबई में मॉनसून करीब 2 हफ्ते की देरी से आया हो, लेकिन बादल जिस तरह बरस रहे हैं उससे माया नगरी की सड़कें समंदर हो गई हैं। मुंबई के वसई के वाघराल पाड़ा इलाके में तो बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। बारिश के दौरान नाले में 2 कारों के बहने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक कार ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से बाहर कूदकर जान बचाई। मुंबई अभी विहान श्रीवास्तव की मौत से उबरी भी नहीं थी कि नवी मुंबई के नेरुल में 2 लड़कियों को करंट लग गया। दोनों युवतियां बाइक से अस्पताल जा रही थीं और बारिश के दौरान अचानक बिजली के तार उनसे जा टकराए। काफी मशक्कत के बाद लोग इन्हें बिजली के तारों से अलग करने में कामयाब रहे। नवी मुंबई में ही एक और हादसा हुआ। कामोठे सेक्टर 10 में साई सिद्धि सोसाइटी में 6वीं मंजिल पर एक फ्लैट की स्लैब गिरने से 39 साल के सुरेश लोखंडे की मौत हो गई, जबकि उनकी 12 साल की बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसा उस वक्त हुआ जब सुरेश लोखंडे और उनकी बेटी बेडरूम में सो रहे थे, तभी बेडरूम में स्लैब का एक हिस्सा अचानक उन पर गिर गया।
3: अभी हमने ऑरेंज इसको रखा है ऑलरेडी, जो है आज अगर 24 आवर्स की बात करेंगे, कल परसों इसमें और बढ़ोतरी होने वाली है, थोड़ा देखेंगे कि जो है रेड में हमको जाना है कि ऐसा।
2: मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के लिए जिलेवार पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें कोंकण क्षेत्र के तटीय रत्नागिरी जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: वहीं हिमाचल प्रदेश के मशहूर अटल टनल के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। रात करीब 9 बजे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी जैसे ही टनल से बाहर निकली अचानक बेकाबू हो गई। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी सड़क किनारे लगे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए सीधे नीचे बन रहे ढांचे के पिलर से जा टकराई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि पिलर से बाहर निकले लोहे के नुकीले सरिये गाड़ी को चीरते हुए उसके अंदर तक घुस गए। इस हादसे में गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्कॉर्पियो सवार राजस्थान के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले उसके 3 दोस्त गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये अटल टनल से बाहर निकल रहे थे और रफ्तार कैसे जानलेवा हो जाती है। मशहूर अटल टनल ये बैरिकेड तोड़ देते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि रफ्तार पर नियंत्रण रखें। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने गया था, लेकिन रफ्तार पर काबू ना रखा और इसीलिए वो अच्छा समय इस तरह मातम में बदल गया। अटल टनल से जैसे बाहर निकला, और ये संभवतः लाहौल स्पीति की तरफ का इलाका है, जैसे ही वो अटल टनल से लाहौल स्पीति की ओर बाहर निकला, ये देखिए नीचे कंस्ट्रक्शन हो रहा था और रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसने सड़क किनारे बैरिकेड को तोड़ा और सीधा सड़क पार करके आगे जो नदी है, जहाँ यहाँ एक पुल बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके नीचे पुल के पास जो सरिया है गाड़ी उसमें घुस जाती है। आप समझिए कि 800-900 किलो गाड़ी का वजन, उसमें 5 मुसाफिर, उस वजन के साथ तीव्रता के साथ जब वो सरिये पर गिरेगी तो क्या होगा। पूरा अंदर चीरते हुए निकल गई, ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। और अब खबर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ी। विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को आधार बनाकर अपनी चुनावी पिच तैयार कर रहा है। केंद्र में मोदी और यूपी में सीएम योगी को टारगेट कर रहा है, अपनी सियासत साध रहा है। सीएम योगी पूरी तरह से 2027 के लिए एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सीएम उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों के धुआंधार दौरे कर रहे हैं। दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष भी प्रहार कर रहा है।
4: 2027 चुनाव का पूरा प्लान तैयार, सीएम योगी धुआंधार। एक्शन मोड में सीएम योगी, अखिलेश ने भी बना ली रणनीति। चढ़ावा चोरी पर विपक्ष सवार, हिंदुत्व की पिच पर योगी धारदार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट सीएम योगी ने निकाल ली। 2027 का विधानसभा चुनाव कैसा होगा, ट्रेलर आ गया है। जब 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तब पॉलिटिक्स से लेकर पब्लिक के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। हालांकि चढ़ावा चोरी कांड में एक्शन भी चल रहा है, लेकिन विपक्ष इसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ बता रहा है।
5: ये 8 लोगों की गिरफ्तारी या जिस तरह की पूछताछ की जा रही है, ये सब आंखों में धूल झोंकी जा रही है। राम मंदिर में, प्रभु श्री राम के दरबार में कोई चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी जैसी साधारण चोरी नहीं हुई है। ये करोड़ों हिंदुओं की, 145 करोड़ के इस देश की आत्मा पर प्रहार है।
4: चुनौती बड़ी है, लेकिन सीएम योगी जिस तरह से मैदान में उतरे हैं तो बताने के लिए काफी है कि न सिर्फ यूपी के सीएम 2027 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक्शन मोड में आ चुके हैं, बल्कि तैयारी भी पूरी है। पिछले एक सप्ताह में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा अटैक कर रहे हैं। योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है।
6: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी।
7: राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी का सहायक हो जाती
6: है। इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी
7: मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी।
6: डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दे रही है, और समाजवादी पार्टी देती थी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वन माफिया।
4: अब सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी में अचानक सहारनपुर का दौरा किया और 620 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। बड़ी बात यह है कि सीएम योगी पिछले कुछ महीनों में कई बार सहारनपुर आ चुके हैं। जनवरी से अब तक उनका ये 8वां दौरा है। सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहाँ जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों का सामाजिक समीकरण चुनावी परिणामों पर प्रभाव डालता है। इसलिए सहारनपुर से सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी के दंगों को आधार बनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया।
7: 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। केराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था, ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे।
4: सहारनपुर में योगी समाजवादी पार्टी पर गर्जे तो लखनऊ में अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने राम और संविधान पर बीजेपी को घेरा।
8: यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है।
4: सीएम योगी ने सहारनपुर से पहले रामपुर में भी 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया तो वोटरों के बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट निकालने के लिए हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग भी कर डाली।
7: 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं।
4: सीएम योगी पिछले कुछ दिनों में लखनऊ में जनता दरबार से लेकर नोएडा, आगरा, हाथरस, मथुरा, पीलीभीत, मुरादाबाद, देवरिया, ललितपुर, फिरोजाबाद और अलीगढ़ का दौरा कर चुके हैं। खास बात यह है कि इन दौरों पर हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लगातार हो रहे ये दौरे केवल परियोजनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने, जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा भी है।
7: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है।
0: राजस्थान में 300 करोड़ खर्च करके गरीबों को ऐसा घर बना दिया जो घटिया निर्माण और सियासत में बर्बाद हो गया। सवाल यह है कि जनता के 300 करोड़ रुपए लगाने वाले जिम्मेदार लोगों से इस पैसे की बर्बादी का कारण पूछकर क्या वसूली नहीं होनी चाहिए?
9: दूर से देखेंगे तो लग सकता है कि वाह क्या नजारा है, सोचने लगेंगे आप कि काश यहाँ जमीन मिल जाती तो घर बना लेते। जयपुर के बेहद खूबसूरत इलाके किशनबाग में बना ये राजीव नगर है, लेकिन पास चलकर देखिए तब समझ आएगा यहाँ जनता के पैसों की बर्बादी करके सरकारी सियासत से बने वो खंडहर खड़े हैं, जो बने जनता के नाम पर, लगा जनता का पैसा लेकिन जनता के हाथ कुछ नहीं आया। बात 2009 की है। जयपुर की झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए 100 बीघा में 300 करोड़ रुपए खर्च करके तीन जगहों पर 4000 मकान राजीव गांधी नगर योजना में बनाए गए। 2013 में सभी मकानों की लॉटरी निकली, लेकिन आवंटन से पहले तब की गहलोत सरकार चली गई। बीजेपी सरकार में योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पानी, बिजली और सड़क का इंतजाम नहीं हुआ। चोरों ने फिर खिड़की, दरवाजे और सरिया तक उखाड़ लिए। योजना में 30% पैसा केंद्र दे रहा था, 2014 में केंद्र में सरकार बदल गई तो उसने भी ये योजना बंद कर दी। ज्यादातर मकान गहलोत राज में तब मुस्लिम समुदाय को आवंटित हुए। गहलोत सरकार जब तक 2018 में लौटी तो ये मकान रहने लायक बचे नहीं। निर्माण इतना घटिया कि ढहने लगे, लिहाजा 2.25 लाख में जिनको आवंटन होना था उन्होंने लेने से मना कर दिया।
10: जनता की गाढ़ी कमाई के 100 करोड़ स्वाहा हो गए, किसी गरीब को आज तक मकान नहीं मिला। यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहने लगे तो बीजेपी सरकार ने इसका तोड़ निकाला है कि यहाँ पर जो घुमंतु हैं या बिना घर वाले हिंदू हैं वो आकर रह सकते हैं जब तक चाहें। यानी पूरा मामला ये अब सांप्रदायिक हो गया है। गरीबों के रहने के मकान के नाम पर जिस तरह के मकान बने हैं उसमें कोई रह भी नहीं सकता, ना कोई खरीद सकता है। ठेकेदार ने पूरी तरह से एक जर्जर ढांचा खड़ा किया है जिसमें रहने के नाम पर कोई सोच भी नहीं सकता है।
9: इन खंडहर नुमा मकानों में पुराने कपड़ों के बदले बर्तन बेचने वाले गुजरात से आए कुछ परिवार अवैध रूप से रहते हैं। कहते हैं कि स्थानीय विधायक ने कहा है जाकर वहां रह लो, लेकिन न पानी है न बिजली, खुले में शौच जाते हैं। दिन भर अफीम और ड्रग्स लेने वालों का डेरा यहाँ रहता है। डरते हैं लेकिन रह लेते हैं क्योंकि किराया नहीं पड़ता।
11: इसमें सारे नशेड़ी गंजेड़ी सारे आते हैं इसमें, और उठपटांग जैसा भी होता है ऐसा सारा काम भी होते हैं, और जैसा आते हैं ऐसा सुइयां बुइयां सभी नशेड़ी हम जैसे लेडीज सारी पड़ी रहती है, बहू बेटियां है सभी। यहाँ रात को हम आ भी नहीं सकते हैं।
10: सरकार ने ऐसे ही आधा बनाकर छोड़ दिया है।
11: सरकार ने तो पता नहीं पूरा बनाया था अपना, आधा अधूरा छोड़ रखा है, और सारे तो तोड़ दिया, तोड़ गेट बेट सारे उखाड़ उखाड़ के ले गए।
9: अपराधियों का अड्डा ऐसा कि पाकिस्तानी आतंकी ने इन्हीं मकानों में रहकर समय गुजारा और डॉक्यूमेंट बनवाए। बीजेपी सरकार ने अवैध कब्जा किए लोगों को यहां से निकाल दिया।
12: उसमें कुछ अवैध रूप से लोग बस गए और कब्जा कर लिए। आज वहां शिकायतें निरंतर आती है मेरी विधानसभा में, किशन बाग में और जयसिंहपुरा खोर में, जेडीए फ्लैट्स में और अनगिनत मुख्यमंत्री आवास योजनाओं में इस प्रकार के लोग बस गए थे, कब्जा कर लिए थे, जिनको निकालने का हम लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने कई लोगों को डिटेन किया, उनमें निकाला भी,
13: आवंटित हो नहीं पाए। और अब इन्होंने फर्जी तरीके से जिन लोगों के लिए सर्वे होकर के सर्वेदारियों के लिए फ्लैट बने उनकी बजाय वहां ये चल रहा है कि वहां के लोकल विधायक हर किसी को उसमें डाल रहे हैं, और बिना जवाब जाके पूछोगे तो वो नाम लेंगे कि भी इन्होंने बसा दिया हमको, इन्होंने बसा दिया।
9: जयपुर में ऐसे 4000 मकान बने जिनमें से 3000 खाली पड़े और खंडहर हो चुके। सरकार ने योजना को बंद कर दिया क्योंकि अब इतने मकानों को तोड़ने या नए सिरे से रिपेयर करने में 100 करोड़ से ज्यादा फिर खर्च होंगे। मंत्री कहते हैं इन मकानों को ठीक करने में ज्यादा पैसा लगेगा, जिसके लिए कोशिश हो रही है।
14: को पुनः रहने योग्य बनाने के लिए फिर एक भारी धनराशि की आवश्यकता, ऐसे में ये प्रकरण लंबे समय से लंबित है। अब इसका कैसे निस्तारण हो इसके संबंध में गंभीरता से विचार कर कोई न कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे।
9: बड़ा सवाल है कि गरीब अब भी झुग्गियों में रह रहे हैं जबकि उनके नाम पर हजारों करोड़ की सरकारी जमीन और सैकड़ों करोड़ जनता के पैसे बर्बाद हो गए। अब इन जगहों की सुरक्षा पर पैसे खर्च होने लगे। सरकार ने तय किया कि इन जगहों पर अपराधी ना आ जाएं, इसके लिए स्थानीय चौकी खोली जाएगी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: रुक रहे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
16: Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
17: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
18: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.

सीआरपीएफ डल लेक की भी सुरक्षा यहां पर करती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो यात्रा करने के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में घूमने के लिए निकल जाते हैं, खासतौर पर डल लेक में। इसलिए जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं ये पूरी तरीके से, आप चारों तरफ देख रहे हैं कि डल लेक की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ सीआरपीएफ के कमांडो 2400 घंटे निगरानी करते हैं, क्योंकि यहाँ खतरा काफी रहता है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, साथ ही अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री भी इस पूरे इलाके में पहुंचते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं वो ऐसे ही डल लेक में गश्त मारते हैं, और गश्त के दौरान किसी भी संदिग्ध स्थिति को नजर उनके द्वारा रखा जाता है, जिससे कि किसी भी तरीके के जो यहाँ पर अगर कोई आतंकी घटना करने की कोशिश करता है या फिर किसी और तरीके की यहाँ पर स्थिति पैदा होती है, उससे बचाने के लिए तमाम सीआरपीएफ के कमांडो यहाँ पर मौजूद रहते हैं।

0: मंदिर कैसा होना चाहिए, मंदिर का रंग क्या हो, मंदिर की दिशा क्या हो, मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र कैसे हो, और मंदिर जागृत कैसे हो, कैसा हो आपके घर का पूजा स्थान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
1: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
2: La Que Buena.
1: ESPN Radio.
3: We know LeBron has to be the best player on the planet to
1: have. The Daily.
4: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
1: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
6: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Spain faces Austria in Inglewood, California as a -900 favorite to qualify for the next round. Meanwhile, Portugal faces Croatia in Toronto, with markets giving the match a 28% chance to end in a draw and go in extra time. This has been your official Odyssey Sports Match Day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
7: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
8: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
7: Smartless.
9: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
7: Marketplace.
10: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
7: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
11: अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये विश्वास की वो डोर है जो हर साल देश के कोने कोने से लाखों लोगों को हिमालय की गोद तक खींच लाती है। पहाड़ बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, सुरक्षा के तौर तरीके बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलता तो सिर्फ एक विश्वास। हर हर महादेव, बम बम भोले, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। माँ तवी की आरती से पूरा जम्मू शिवमय हो चुका है।
12: इस साल की अमरनाथ यात्रा में मात्र अब कुछ घंटे बचे हुए हैं। इस बीच प्रथम पूजा के बाद अब पूरे कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों का इंतजार हो रहा है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस साल की अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल यात्रा शुरू होने से पहले कई यात्री जम्मू, बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप्स पर पहुंच चुके हैं।
13: ओम वंदे देवम् महापतिम्।
11: अब सिर्फ इंतजार है 3 जुलाई का, जब बाबा अपने भक्तों को बुलाएंगे। बालटाल से जितेंद्र बहादुर सिंह, जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।

अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी में बम भोले की गूंज। जम्मू से एलजी ने रवाना किया श्रद्धालुओं का पहला जत्था। कल बालटाल और पहलगाम से होगी औपचारिक शुरुआत। रूट पर भारी सुरक्षा। तीस दिन जेल में रहने पर जा सकती है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट तैयार। मानसून सत्र में पेश हो सकते हैं तीनों बिल हंगामे के आसार। भारत के तीन दिवसीय दौरे पर जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची। पीएम मोदी ने कहा बहुत बहुत स्वागत। भारत जापान के ज्वाइंट विजन को मिल सकती है रफ्तार। 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल। कांग्रेस में शरद पवार की पार्टी के विलय की तैयारी। सहमति बनी तो दिल्ली में लगेगी मुहर। फिलहाल राज्य स्तर पर जारी है बातचीत। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार की सख्ती। मेटा कंपनी को भेजा नोटिस। पूछा कैसे होगी अपराधियों की पहचान।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे आपके घर के पूजा स्थान के बारे में। आपके घर का पूजा स्थान कैसा होना चाहिए, उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि पूजा स्थान से हमें पूरा लाभ हो सके। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 9:37 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 9:27 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपके घर के पूजा स्थान के बारे में। आपके घर का पूजा स्थान कैसा होना चाहिए। हर घर में लगभग छोटा या बड़ा पूजा स्थान जरूर होता है, तो किसी भी घर में पूजा स्थान रखने की जरूरत क्या है। घर में 2 की ऊर्जा पाई जाती है, शुभ ऊर्जा और अशुभ ऊर्जा। घर में शुभ ऊर्जा बनी रहे, घर में शुभता और पवित्रता बनी रहे, इसके लिए पूजा स्थान का होना आवश्यक है। घर में अगर एक निश्चित जगह पर पूजा का स्थान होगा तो तमाम तरह की समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। अगर घर में पूजा स्थान होगा और उसकी पवित्रता आप मेंटेन करेंगे तो स्वास्थ्य और मन की समस्याएं बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। घर में पूजा स्थान होने से घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है, घर के लोगों में आपसी तालमेल भी बना रहता है। आपने अपने घर में मंदिर बनाया है या पूजा स्थान बनाया है, उसका पूरा लाभ तभी हो सकता है जब इसकी स्थापना में नियमों का पालन किया जाए। अपने घर में सही तरीके से पूजा स्थान बनाएं, मंदिर की स्थापना करें, देवी देवताओं की स्थापना पर ध्यान दें और पूजा स्थान को

राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब ये जानते हैं कि घर में पूजा का स्थान कैसा होना चाहिए और उसके रंग में, उसके कलर में किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सामान्य रूप से पूजा घर या मंदिर घर के ईशान कोण में पूरब उत्तर के कोने में होना चाहिए। अगर ईशान

या पूजा स्थान हो तो बेहतर होगा। अगर फ्लैट में हैं तब आप डायरेक्शन की चिंता मत करिए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि सूर्य का प्रकाश आता है कि नहीं आता है। पूजा का स्थान एक जगह पर फिक्स रखिए, एक जगह पर नियत रखिए और पूजा की जगह को बार बार मत बदलिए। पूजा स्थान का रंग हल्का पीला रखें, सफेद रखें, हल्का नारंगी या क्रीम रखें, गाढ़े रंग जैसे लाल, भूरा, हरा, इन रंगों के प्रयोग से बचें। तिकोना या गुंबद वाला मंदिर पूजा स्थान पर न रखें। इस गुंबद का फायदा बड़े मंदिरों में होता है, घर पर नहीं होता। तो तिकोना मंदिर या गुंबद वाला मंदिर रखने के बजाय केवल पूजा की एक छोटी सी जगह बना दें। चौकी पर, आलमारी पर या कमरे में एक बड़ी सी चौकी बिछा करके उसके ऊपर आप पूजा का स्थान बना सकते हैं। पूजा स्थान पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या।

धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की चिंता दूर होगी। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

में सुधार होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं

आज का पहला प्रश्न अनीता जी ने हमें लिखा है और अनीता जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखती हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म तारीख है 4 फरवरी 2008, जन्म का समय दोपहर में 1:30, जन्म स्थान है चंडीगढ़। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा अभी 12वीं की पढ़ाई कर रहा है और आगे क्या पढ़ाई करे, किस करियर में जाए उसके लिए बेहतर होगा। अनीता जी, आपके बेटे की कुंडली के हिसाब से ऐसा लगता है कि आपका बेटा मैथमेटिक्स की, साइंस की पढ़ाई कर रहा होगा, तो आगे अगर ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएं, टेक्निकल फील्ड में जाएं, खास तौर से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर के क्षेत्र में जाएं, तो उसमें इनको बढ़िया सफलता मिलेगी, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। देखिए, ऐसा लगता है कि आपका बेटा आगे की पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ से दूर भी जाएगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप अपने बेटे के खान पान और उसकी संगति का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुंडली में भटकने बिगड़ने की संभावना थोड़ी दिखाई दे रही है। आप रोज सुबह शाम अपने पुत्र के लिए ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें और एक पन्ना, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में काले धागे में डालकर बुधवार की शाम को अपने पुत्र के गले में पहना दें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आम तौर पर हम सबके पूजा स्थान में देवी देवताओं के चित्र होते हैं, उनकी मूर्तियां होती हैं, तो इनको रखें कैसे, इसकी स्थापना कैसे करें। आपको पहले बताया कि मंदिर की आकृति रखने के बजाय पूजा का स्थान बनाइएगा।

गांव की भीड़ मत लगाइएगा। जिस देवी या देवता की मुख्य रूप से आप पूजा करते हैं उनके चित्र को या उनके मूर्ति को पूजा स्थान के बीचों बीच में एक आसन या चौकी पर रखिएगा। अन्य देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र आप पूजा स्थान पर बगल में स्थापित कर सकते हैं। अगर आप अपने पूजा स्थान पर मूर्ति की स्थापना करते हैं तो ये 12 अंगुल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 6 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होगी। लेकिन आप अपने पूजा स्थान पर चित्र कितना भी बड़ा लगा सकते हैं। पूजा स्थान पर एक सफेद रंग का शंख, एक गोमती चक्र और एक छोटे से लोटे या पात्र में जल भरकर जरूर रखना चाहिए। पूजा स्थान पर अगर बहुत सारे देवी देवताओं का चित्र रखेंगे तो पूजा करते समय एकाग्रता की, कॉन्सेंट्रेशन की समस्या आपको परेशान करेगी। इसीलिए पूजा स्थान पर कम देवी देवताओं के चित्र रखें, सबको नमस्कार करें, सबको प्रणाम करें और रोज पूजा करें। पूजा स्थान पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग बढ़ेगी, धन का नुकसान हो सकता है, करियर में कोई रिस्क कोई जोखिम ना लें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं उस शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

होगा, लेकिन परिवार में अशांति से बचिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। देखिए, घर में मंदिर हो या बाहर मंदिर हो, उसका जागृत होना बड़ा जरूरी है। जागृत होने का मतलब ये है कि आप पूजा स्थान में जाकर बैठें और आपका मन शांत हो जाए, आपको समस्याओं का समाधान मिल जाए, यानी आपके घर के पूजा स्थान में इतनी ज्यादा शुभता हो कि वहां से ऊर्जा निकलती हो और वो मंदिर या पूजा स्थान जागृत हो। तो देखिए, जो बाहर के मंदिर हैं उसको जागृत करने के लिए बड़े सारे उपाय किए जाते हैं, बड़े मंदिरों में बड़ी कोशिश की जाती है, लेकिन देखिए हर मंदिर जागृत फिर भी नहीं हो पाता। लेकिन आप छोटे से उपाय करके आप अपने घर के पूजा स्थान को जागृत कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दोनों समय, सुबह और शाम, एक ही समय पर पूजा उपासना करिए। जैसे सुबह 7 बजे पूजा करते हैं तो शाम को भी जो टाइम बनाएं, 7 बजे 8 बजे उतने समय पूजा जरूर करें। शाम की जब पूजा करें उसमें दीपक जलाना जरूरी है, तिल के तेल का या घी का, या विशेष दशाओं में चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं। दीपक पूजा स्थान के मध्य में जलाकर रखिएगा। पूजा के पहले थोड़ा सा कीर्तन कर लें, या भगवान का भजन कर लें, या बोल बोल कर मंत्र पढ़ लें, पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी भरेगी। अपने घर के मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखिए। रोज सुबह उठ करके पहले मंदिर की रोज सफाई करिए, तब आप वहां सुबह पूजा करिएगा और मंदिर में एक लोटे में जल भरकर, छोटे से लोटे में या बड़े लोटे में जल भरकर जरूर रखिएगा। आप कोई भी पूजा करते हो, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, अगर गुरु मंत्र मिला है तो पहले गुरु मंत्र पढ़िएगा, और अगर गुरु मंत्र नहीं मिला है तो पहले कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। और जो देवी देवता को भोग लगाया है या उनको जो जल अर्पित किया है, इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। अगर आप निरंतर अपने पूजा स्थान पर जब मौका मिले बैठ करके मंत्र जप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे और उसकी साफ सफाई को मेंटेन करेंगे, तो आपका पूजा स्थान एक्टिव हो जाएगा। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुश्किल समय में, कष्ट के समय में, अगर आप अपने घर के पूजा स्थान को ही एक्टिव कर लेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सेहत की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, मन की चिंताएं दूर होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी।

तनाव हो सकता है, पारिवारिक समस्या के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अपने पूजा स्थान पर माँ काली का चित्र स्थापित नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि माँ काली का स्वरूप थोड़ा भयंकर है, स्मशान का स्वरूप है, इसीलिए घर के पूजा स्थान पर उसको स्थापित ना करें। देखिए, माता काली का जो स्वरूप आप देखते हैं वो तंत्र का स्वरूप है और बड़ा कल्याणकारी स्वरूप है। आपको देखकर भले ही भयंकर लगता हो, लेकिन वो जीवन की बाधाओं को दूर करने वाला, जीवन में शुभता लाने वाला स्वरूप है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, अपने घर के पूजा स्थान पर माँ काली का चित्र या मूर्ति आप बिल्कुल स्थापित कर सकते हैं और नियमित उनकी पूजा कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, करियर में लापरवाही ना करें। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 8, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 9, यात्रा के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान और शिक्षा की समस्याएं दूर होंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख लीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी।
अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

राशि वालों के लिए कार्य में सफलता मिलेगी, तनाव और दबाव समाप्त होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि के लिए, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज द्वितीय तिथि है, आज भगवान शिव को पीला फूल अर्पित करिएगा और आज तामसिक आहार ग्रहण ना करें। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

एक बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के। पुलिस पूछताछ में आरोपी अनिल मिश्रा ने पूरा ठीकरा टिन्नू यादव पर फोड़ा है। उसने कहा कि गणनाकर्मी टिन्नू के इशारे पर काम करते थे। अनिल मिश्रा ने अपनी भूमिका पूरी तरह से नकार दी है। अनिल से जब ये पूछा गया कि मंदिर प्रबंधन में आपका दखल था तो कैसे करोड़ों रुपए पार हो गए, भनक नहीं लगी। इस पर अनिल मिश्रा ने कहा कि ट्रस्ट ने ही चोरी पकड़ी है। जैसे ही पता चला है जांच शुरू हुई है, फिर एसआईटी की मांग की गई है। निगरानी में चूक होने की बात अनिल ने स्वीकारी। अनिल तमाम सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो अनिल मिश्रा ने अपनी भूमिका को नकार दिया है और उसने सारा ठीकरा टिन्नू यादव पर फोड़ दिया है। अनिल मिश्रा ने कई सवालों का जवाब नहीं दिया। ये सारी जो जानकारी है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है। एसआईटी जो इस मामले की जांच कर रही है और उसकी जांच को 15 दिन का समय और दिया गया है और अनिल मिश्रा ने अब टिन्नू यादव पर ठीकरा फोड़ दिया है। और वहीं इसी से जुड़ी दूसरी खबर यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के गोपाल राव से भी अब पूछताछ हो सकती है। पुलिस चढ़ावा चोरी मामले में गोपाल राव से भी अब पूछताछ कर सकती है। उनसे भी सवाल जवाब होगा। गोपाल राव के भी जल्द बयान दर्ज किए जा सकते हैं। चंपत राय अनिल मिश्रा से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है और अब बारी गोपाल राव की है। उनसे भी पूछताछ हो सकती है। एसआईटी अपनी जांच कर रही है। उसे 15 दिन का समय और दिया गया है और अब उस जांच में गोपाल राव के भी बयान दर्ज किए जा सकते हैं। और आइए अब देखते हैं नॉनस्टॉप।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बुलडोजर कार्यवाही संभव है। आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन भवन पर एडीए का नोटिस। लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम बने निर्माणाधीन भवन में अनियमितता के आरोप है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी की 48 घंटे की रिमांड मांगी। एसबीआई कर्मचारियों पर भी जांच की नजर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज तक को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज में आरोपियों के पास से रुपए मिले, डॉलर और ज्वेलरी टिन्नू यादव से 1,00,000 कैश जब्त हुआ। इटावा में एसपी नेता रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, बोले राम मंदिर में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला, बड़े नाम शामिल है पर जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच रही है जांच। लखनऊ में यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा सीएम योगी ने एसआईटी जांच की समय सीमा बढ़ाई है, 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि राम मंदिर दान मामले में निष्पक्ष जांच होगी, अखिलेश यादव गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या के वकील बार एसोसिएशन चढ़ावा चोरी मामले में 8 ट्रस्टियों के खिलाफ थाना राम जन्मभूमि में केस दर्ज करवाएंगे। महाराष्ट्र में एक राजनीतिक हलबली मची है, अब एनसीपी एसपी कांग्रेस के बीच विलय की चर्चा तेज हो गई। फिलहाल महाराष्ट्र इकाई स्तर पर बातचीत चल रही है। महाराष्ट्र में सहमति बनने पर दिल्ली नेतृत्व अंतिम फैसला लगाएगा, पहले महाराष्ट्र में बनेगी सहमति, उसके बाद यह तय होगा कि क्या शरद पवार की पार्टी का मर्जर कांग्रेस में होगा। प्रधानमंत्री मोदी जापान की पीएम की मुलाकात, सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा, सुबह 11:30 बजे हैदराबाद हाउस में दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। पीएम मोदी और जापान की पीएम तकाइची के बीच व्यापार, सेमीकंडक्टर, खनिज, रक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत में 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य है। भारत जापान बिजनेस फोरम में जापान के 150 से ज्यादा उद्योगपति हिस्सा लेंगे, दोनों देशों के बीच निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी। हैदराबाद हाउस में आज दोपहर 1:10 पर एमओयू पर भी हस्ताक्षर होंगे। शाम 3 बजे दिल्ली के ताज पैलेस होटल में बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया है। मॉनसून को लेकर मोदी सरकार का एक्शन प्लान सामने आया है, सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। एल नीनो के कारण कम बारिश की आशंका के चलते भी सरकार की तैयारी शुरू है। अब 30 दिन में जेल में रहने पर जा सकती है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की कुर्सी, संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है, मॉनसून सत्र में विधेयक पेश किया जा सकता है। एसपी कार्यालय में कल विशाल सिख सम्मेलन, सुबह 11 बजे अखिलेश यादव की मौजूदगी में आयोजन, सिख समाज न्याय यात्रा का समापन पार्टी कार्यालय पर। टीएमसी के भागी रिता प्रता गुट 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज ईसीआई से मिलेगा, राजनीतिक पहचान और चुनाव चिन्ह पर अपनी दलीलें रखेगा। बंगाल में आज कैबिनेट के सामने यूसीसी ड्राफ्ट बिल पेश किया जाएगा, अगस्त विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। यूपी टीईटी परीक्षा आज से, 60 जिलों के 955 केंद्रों पर 2 से 4 जुलाई तक 5 पालियों में परीक्षा की जाएगी, करीब 20 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, दिल्ली और यूपी में 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय राजमार्ग 148 पर 6 लेन सड़क सुरंग निर्माण को मंजूरी दी गई है, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जुड़ेगी सड़क। करीब 7,000 करोड़ की लागत से पूरा होगा, 8.1 किलोमीटर लंबी यह परियोजना, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। यूपी को भी मिली केंद्र सरकार से विकास की सौगात, यूपी में नेशनल हाईवे 34 के कानपुर कबराई सेक्शन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। 4 से 6 लेन वाला 117 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस कंट्रोल सेक्शन 7,000 करोड़ से भी ज्यादा इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत है। व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर की जांच करेगी सरकार, उन्होंने कहा कि टेलीग्राम की तरह गलत इस्तेमाल की आशंका है। नए यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार की सख्ती है, मेटा को नोटिस भेजा गया है, 3 दिनों में जवाब मांगा गया है, बिना मंजूरी भारत में यह फीचर लॉन्च नहीं किया जाएगा। नीट पीजी परीक्षा 2026 की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, 30 अगस्त को एग्जाम होगा, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। एनबीएमएस ने पीजी 2000 परीक्षा के लिए जारी की है एडवाइजरी, सेंटर आवंटन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आधार पर नहीं होगा, फॉर्म सबमिट के बाद अब बदलाव नहीं किया जाएगा। नक्सल मुक्त भारत के बाद अवैध घुसपैठ के खिलाफ अमित शाह प्लान बनाएंगे, 9 जुलाई को सभी राज्यों के डीजीपी के साथ हाई लेवल बैठक की है। अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा भरपानी के भक्तों का इंतजार खत्म हुआ, हर्षोल्लास के साथ पहला जत्था जम्मू से आज रवाना हो चुका है। सुबह 4:30 बजे भगवती नगर से यात्री निवास से अमरनाथ यात्रियों का शुभारंभ हुआ, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों के जत्थे को हरी झंडी दिखाई। अमरनाथ यात्रा के लिए आस्था और उत्साह से खिले श्रद्धालुओं के चेहरे, हर हर महादेव की गूंज के जयकारे। जम्मू से आज दोपहर तक कश्मीर घाटी पहुंचेगा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था, कल बालटाल और पहलगाम मार्गों पर बेस कैंप से यात्रा शुरू होगी। इस बार 57 दिनों तक चलेगी यह दिव्य अमरनाथ यात्रा, 28 अगस्त को इसकी समापन होगी। अमरनाथ यात्रा के लिए देश विदेश से जम्मू कश्मीर पहुंच रहे श्रद्धालु, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और आरएफआईडी कार्ड प्रक्रिया भी शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर से पूरे यात्रा रोड पर कई ट्रांजिट कैंप बनाए गए हैं, श्रद्धालुओं के रुकने, खाने पीने के विशाल भंडारे के भी इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर जांच, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है, आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल भी की गई है। ऑपरेशन शिवा के तहत अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा होगी। कमांडो की तैनाती, मल्टीलेयर सुरक्षा, विशेष इंतजाम किए गए। अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे, बुलेट प्रूफ वाहन, 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी सुरक्षा में लगाई गई हैं। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पेट्रोल और डीजल वाहनों का दौर अब धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी है। राजधानी में नई ईवी पॉलिसी लागू कर दी गई है। इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी। 2.25 लाख रुपए तक एक शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक दो पहिया पर पहले साल अधिकतम 30,000, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 10,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। नई नीति के तहत दिल्ली में खरीदे और रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों को जीवन भर के लिए 100% रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी जाएगी। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से नीचे के सभी वाहनों के प्रवेश पर अब रोक लग गई है। सिर्फ CNG, EV, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहनों को ही छूट दी जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए नई हवाई सेवाओं की सौगात। 11 और शहरों के लिए उड़ानें यहां से शुरू की जा रही है। नोएडा एयरपोर्ट से देश के 16 शहरों के लिए नई उड़ानें मिलेंगी। 15 जून से यात्री सेवाओं की यहां से शुरुआत हुई थी। तीर्थयात्रियों के लिए रेलवे ने सिकंदराबाद में 2 से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेनों का ऐलान किया है। अयोध्या, काशी, रामेश्वरम सहित कई तीर्थों पर भक्त इस टूरिस्ट ट्रेन से जा सकेंगे। नैनीताल में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। 1 अगस्त से मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर बैन लगा दिया गया है। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश, अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक का पानी पहुंच चुका है। सभी घाट भी पानी में डूबे हुए हैं। किसी आपात स्थिति के लिए प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मूसलाधार बारिश को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। लोगों से नदियों, नालों, भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों में जाने से बचने की अपील की गई है। अरुणाचल प्रदेश के केई पान्योर जिले के दौर पर शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हिमाचल के लगभग सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में मानसून के अत्यधिक सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है। शिमला में भी राहत की बारिश हुई है। तापमान में गिरावट से पहाड़ियों पर धुंध छाई हुई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मूसलाधार बारिश हुई। तापमान में भारी गिरावट से लोगों को अब ठंड का एहसास हो रहा है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के तुलेल घाटी में बादल फटने से खेती की जमीन और मवेशियों को नुकसान पहुंचा है। अचानक बाढ़ से जमीन का बड़ा हिस्सा बह गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जमकर बारिश हुई। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ। डोडा में भी बादल फटने से सड़कों पर मलबा आया। कई गांवों का संपर्क टूटा। फसलों को नुकसान पहुंचा। प्रशासन के लोगों को मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में तेज हुई है प्री मानसून गतिविधियां। दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। दिल्ली में फिलहाल रेड अलर्ट जारी। महाराष्ट्र में भी बारिश का दौर जारी है। नवी मुंबई समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश से इलाकों में जलभराव भी देखने को मिला है। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी भारी बारिश से अंधेरी अंडरपास में पानी भरा। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अगले 6 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मुंबई मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में कल तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना। महाराष्ट्र के पालघर में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला। मकान की दीवारें ढही, बड़ा हादसा टल गया। बसई इलाके में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हुए। तेज बहाव में नाले बह गए। कई चालक ने कूद कर बचाई जान। गुजरात के स्मार्ट सिटी सूरत में भारी बारिश से सड़कों पर खुली पोल। गड्ढे में फंसी बस और स्कूली वैन। वलसाड़ में भी मूसलाधार बारिश देखने को मिली। सड़कों पर गंदे पानी से भरे होकर लोग आवाजाही करने पर मजबूर हुए। गुजरात के वापी में भारी बारिश से कई इलाकों में जलजमाव हुआ। सड़कों पर पानी में वाहन फंसे रहे। अरुणाचल प्रदेश और असम में भारी बारिश के बाद गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अलर्ट कर दिया गया है। नवी मुंबई के नेरूल इलाके में जलभराव में अंडरग्राउंड तार में करंट आया। बाइक सवार 2 छात्राओं की सड़क पर पैर रखते ही जोरदार झटका लगा। नागपुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान जर्जर 3 मंजिला इमारत गिर गई। सड़क पर भारी मलबा फैल गया। वलसाड में हाईवे पर चलते कंटेनर ट्रक में भीषण आग लगी। धुएं का गुबार दूर तक दिखा। सड़क पर लंबा जाम लगा। गुजरात के खेड़ा में पटाखा फैक्ट्री में धमाके में 3 दिन बाद 1 मजदूर की मौत। सुरक्षा मानकों की बिना अनुमति के ये कंपनी चलाई जा रही थी। फरार मालिक पर अब दबिश दी जा रही है। देहरादून के विकास नगर में 2 मंजिला आवासीय भवन में भीषण आग लग गई। मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। कई मवेशी भी जिंदा जले। बिहार के सहरसा में सोते समय शख्स की पीट पीट कर हत्या की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने टायर में आग लगाई। उज्जैन में शिप्रा नदी में आरती के दौरान दीपक बेचने वाली महिलाओं और पुजारियों के बीच विवाद। दोनों पक्ष में जमकर लात घूंसे चले। उन्नाव में अज्ञात वाहन की टक्कर से बुलेट नाले में गिरी बारात लौट रहे दो दोस्तों की मौत हो गई। राजस्थान के पाली में अस्पतालों में डॉक्टर की कुर्सी पर सांप मिला, मरीजों में अफरा तफरी मची। गाजियाबाद में मामूली रोडरेज विवाद के बाद युवक की कथित तौर पर पीट पीट कर हत्या, मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में कार में हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल, सोना बेचकर लोहा खरीदने की बात कही। मुरादाबाद में बारिश के बीच पेड़ के नीचे खड़े पांच लोगों पर आकाशीय बिजली गिरी, दो की मौत, तीन की हालत गंभीर। अमृतसर में ड्रोन से हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार, सात पिस्तौल और 40 कारतूस बरामद किए गए। भोपाल में चाय स्टॉल चलाने वाले की इलेक्ट्रिक भट्टी के करंट लगने से मौत, करीब 10 दिन से चल रहा था इलाज। गुजरात के जामनगर में मंदिर की दानपेटी तोड़कर चोर ने की 15,000 रुपए की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। भारत इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश से प्रभावित हुआ, नहीं निकल पाया कोई नतीजा। इंग्लैंड में चेस्टर स्ट्रीट में खेला गया मुकाबला, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर बनाए 189 रन। इंग्लैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने लगाया अर्धशतक, श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंद में बनाए 59 रन, शिवम दुबे ने 21 गेंद में नाबाद 42 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला डेब्यू करने का मौका, अब 4 जुलाई को मैनचेस्टर में होगा दूसरा मैच।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
0: तो दिल्ली वालों को आज सुबह एक अच्छी खबर मिली है, मूसलाधार बारिश कई इलाकों में हो रही है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल चुका है, अब से थोड़ी देर पहले मौसम विभाग ने सबसे पहले येलो अलर्ट जारी किया, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट और उसके बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया है, यानी पूरी दिल्ली के लिए तेज बारिश की संभावना जताई गई है। और इसी के साथ साथ दिल्ली समेत एनसीआर के इलाकों में भी बादलों का घना डेरा है, यानी पिछले 4-5 दिनों से सुबह का तापमान जो लगभग 30 डिग्री के ऊपर था, आज राहत मिलेगी, बूंदाबांदी हो रही है तो कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। आसपास के इलाकों में भी एनसीआर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश है, मौसम विभाग ने संभावना जताई है। और इसी के साथ ही अगले 24 से 48 घंटों में मानसून की दस्तक भी राजधानी में हो जाएगी, हालांकि एनसीआर के बेहद करीब पहुंचा है मानसून और अब ये संभावना जताई गई है। हालांकि ये माना जा रहा है कि मानसून जो है वो कभी भी दस्तक दे सकता है और धीरे धीरे आज पूरे दिन, अब मौसम विभाग की ओर से ताजा जानकारी आ रही है, आज पूरे दिन बारिश हो सकती है दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के इलाके में। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून जो है 8:30 बजे तक जो बारिश होगी उसके बाद ये डेटा मौसम विभाग दे पाएगा कि क्या ये मानसून है या प्री मानसून गतिविधियां हैं, लेकिन आज दिल्ली एनसीआर को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, झमाझम बारिश हुई है, मौसम बदल गया है। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
2: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.

0: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: इन एसोसिएशन विद
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
5: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
6: आपने कहा था ये सबसे तेज है।
7: हाँ कहा था,
6: लेकिन ये तय कैसे होता है?
7: फ्रेश जब पूरा देश जवाब ढूंढ रहा होता है, तब ये सवालों के बीच खड़े हो जाते हैं।
8: पहला भारतीय चैनल,
6: ये हमेशा सबसे पहले पहुंचते हैं, क्योंकि ये खबर का इंतजार नहीं करते, खबर तक पहुँच रहे।
9: मणिपुर के उस ग्राउंड जीरो पर है,
10: जगह जगह लाक्षागृह चल रहे हैं, जिनसे आपको खबरदार करने के लिए आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है।
11: बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रपति पुतिन, आज तक पर आने के लिए।
6: सिर्फ अनुभव, उससे ज्यादा भरोसा।
11: आज तक की खबर का असर हुआ है,
6: हर दिन कमाया जाता है।
12: क्या ये आपके ऑपरेटिव्स हैं?
6: नहीं, ये भारत के ऑपरेटिव्स हैं।
12: अल्फा, अल्फा को पहचानते हैं।
13: भारत के अल्फा जर्नलिस्ट, भारत के सबसे बड़े अल्फा न्यूज नेटवर्क पर।
14: पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की ये तस्वीरें आस्था के समंदर में तूफान पैदा कर रही हैं। बम बम भोले और महादेव के जयकारे पहाड़ों से टकराकर गूंज रहे हैं। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र गुफा के दर्शन किए और प्रथम पूजा की। मंत्रोच्चारण के साथ होने वाली इस पूजा को हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा का शुभारम्भ माना जाता है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। शंभू बैरियर से लेकर माधोपुर तक पंजाब की सीमा में आने वाले प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा नाकों की संख्या बढ़ा दी गई है। हर वाहन की गहन जांच की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है।
15: अमरनाथ की सुरक्षा को लेकर के बड़े स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से तैयारियां की गई हैं। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है। मैं बालटाल के उस रूट पर मौजूद हूं, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये वैली QET के कमांडो हैं, जो कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं सड़कों पर और किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
14: NH-44 जहां पर अमरनाथ यात्रा के यात्री गुजरेंगे, वहां वैली क्वेट के जवानों को तैनात किया गया है। ड्रोन के जरिए भी चारों तरफ निगरानी की जा रही है। टूरिस्ट कश्मीर घाटी और डल लेक घूमने के लिए आ जाते हैं, लिहाजा CRPF ने ऑपरेशन डल चलाया है। बाबा बर्फानी के दर्शनों की आस लिए अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और यात्रा को सुगम बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
16: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: No.
1: Oh, no?
2: Welcome to Get Real.
0: I got something to say.
2: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
1: Oh, my God.
0: It's got to be deliciously desperate.
3: Why do these girls forgive him?
4: Well, she has a soft spot for troubled men.
0: Boo, bloody hoo.
2: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
1: Love runs deeper than we know.
2: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
5: सीआरपीएफ डल लेक की भी सुरक्षा यहां पर करती है क्योंकि अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो यात्रा करने के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में घूमने के लिए निकल जाते हैं, खासतौर पर डल लेक में। इसलिए जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं ये पूरी तरीके से आप चारों तरफ देख रहे हैं कि डल लेक की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर यहां पर व्यवस्था की गई है। यहां सीआरपीएफ के कमांडो 2400 घंटे निगरानी करते हैं क्योंकि यहां खतरा काफी रहता है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, साथ ही अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री भी इस पूरे इलाके में पहुंचते हैं। इस वजह से यहां पर जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं वो ऐसे ही डल लेक में गश्त मारते हैं और गश्त के दौरान किसी भी संदिग्ध स्थिति को नजर उनके द्वारा रखा जाता है, जिससे कि किसी भी तरीके के जो यहाँ पर अगर कोई आतंकी घटना करने की कोशिश करता है या फिर किसी और तरीके की यहाँ पर स्थिति पैदा होती है उससे बचाने के लिए तमाम सीआरपीएफ के कमांडो यहाँ पर मौजूद रहते हैं।
6: अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये विश्वास की वो डोर है जो हर साल देश के कोने कोने से लाखों लोगों को हिमालय की गोद तक खींच लाती है। पहाड़ बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, सुरक्षा के तौर तरीके बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलता तो सिर्फ एक विश्वास। हर हर महादेव, बम बम भोले, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। माँ तवी की आरती से पूरा जम्मू शिवमय हो चुका है।
7: इस साल की अमरनाथ यात्रा में मात्र अब कुछ घंटे बचे हुए हैं। इस बीच प्रथम पूजा के बाद अब पूरे कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों का इंतजार हो रहा है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस साल की अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल यात्रा शुरू होने से पहले कई यात्री जम्मू, बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप्स पर पहुंच चुके हैं।
8: ओम वंदे देवम महादेव।
6: अब सिर्फ इंतजार है 3 जुलाई का, जब बाबा अपने भक्तों को बुलाएंगे। बालटाल से जितेंद्र बहादुर सिंह, जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पहले घाटी में बम बम भोले की गूंज। जम्मू से एलजी ने रवाना किया श्रद्धालुओं का पहला जत्था। कल बालटाल और पहलगाम से होगी औपचारिक शुरुआत। रूट पर भारी सुरक्षा। चढ़ावा चोरी मामले में अनिल मिश्रा से पूछताछ। गणना कर्मियों की भूमिका से किया इनकार। टिन्नू यादव पर फोड़ा ठीकरा। गोपाल राव से भी हो सकती है पूछताछ। तीस दिन जेल में रहने पर जा सकती है पीएमसीएम की कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट तैयार। मानसून सत्र में पेश हो सकते हैं तीनों बिल। हंगामे के आसार। भारत के तीन दिवसीय दौरे पर जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची। पीएम मोदी ने कहा बहुत बहुत स्वागत। भारत जापान के ज्वाइंट विजन को मिल सकती है रफ्तार। 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। कई इलाकों में झमाझम बारिश से लोगों को मिली राहत। तो मुंबई में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। कई जगहों पर जलभराव।

पूजा पर राष्ट्र सुबह के 8 बजे हैं और अब वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपको हम बताएंगे। इस बुलेटिन में बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की, साथ ही आपको पहले जत्थे की रवानगी की तस्वीरें भी दिखाएंगे। साथ ही खबर मनाली के अटल टनल के पास हुए हादसे की भी पूरी आपको डिटेल में देंगे। इसमें दिखाएंगे कि कहां पर बादल फटने की वजह से तबाही मची है। बात करेंगे चढ़ावा चोरी मामले की कि कैश वाले नए वीडियो का सच आखिर क्या है। खबर महुआ मोइत्रा पर अंडे से हमले की भी आपको दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि केतन हत्याकांड में बड़ा अपडेट आखिर अब क्या आया है और यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले की भी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहली खबर मुंबई से आपको बता दें, मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और बीती रात से ही जोरदार बारिश मुंबई में हुई। अभी भी कई जगहों पर जलभराव हुआ, जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। दादर, सायन, अंधेरी और अन्य निचले इलाकों में पानी भरने के कारण स्थिति बिगड़ी हुई है। दादर में तो अभी भी जल जमाव की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर अंधेरी सबवे में पानी भरने के बाद तड़के करीब 4:30 बजे उसे बंद कर दिया गया। अंधेरी सबवे के पास मुंबई पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस लोगों को सबवे की तरफ जाने से रोक रही है। तो वहीं बीती रात मुंबई के निचले इलाके सहित दूसरे इलाकों में भी तेज बारिश हुई है। तो मॉनसून को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है और मुंबई में अब जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है और अलग अलग तस्वीरें मुंबई के इलाकों से सामने आ रही है जहां पर इस बारिश के बाद कई जगह पर जल भराव हो गया है और ऐसे में मुंबई वासियों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। दादर, सायन, अंधेरी में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, यानी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी जलभराव हो गया है जिसके कारण

0: पहले भी बंद करना पड़ा था विद्या, कई दिक्कतों का सामना वहां पर लोगों को सबवे की वजह से करना पड़ा, अभी वहां कैसी स्थिति है?
1: जी दरअसल बारिश हुई नहीं कि अंधेरी सबवे जो है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वो बंद हो जाता है। और अगर आप मेरे पीछे देखें इस वक्त अंधेरी सबवे में पानी नहीं है और इस वक्त आवाजाही जो है वाहनों की वो चल रही है। तो यही वजह है कि जो पीक आवर की शुरुआत, जब ट्रैफिक की जब शुरुआत होती है इस समय, जब इस वक्त जब आवाजाही चल रही है तो ज्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। लेकिन जैसा कि ऑरेंज अलर्ट है और जैसा कि हमने देखा कल भी ऑरेंज अलर्ट था और उस दौरान तकरीबन एक दो बार बहुत तेज बरसात हुई थी, जिसकी वजह से खासतौर से अगर आप देखें डेटा भी जो साबित करता है वो यही कह रहा है कि सबर्बन इलाका जहाँ जैसे जहाँ खड़े हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा बरसात हो रही है कंपेयर टू जो टाउन एरिया है। मुंबई का जो ईस्टर्न सबर्ब है उसमें सबसे ज्यादा बरसात हो रही है। जहाँ पर कि आप चेंबूर का इलाका अगर आपको याद हो परसों यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, एक जो पेड़ है वो गिर गया था एक स्कूल वैन के ऊपर, वहां सबसे ज्यादा बरसात हो रही है। इसके अलावा दूसरी जो आप कह लें कि उसके बाद जो बरसात हो रही है वो वेस्टर्न सबर्ब में जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं। तो यही वजह है कि तेज बरसात जो है उसकी वजह से जो निचले इलाके हैं वहाँ पानी जरूर भर जाता है और यही वजह है कि लोगों को दिक्कत जरूर होती है।
0: विद्या प्रशासन की पोल खोलती हुई नजर आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए मुंबई में बारिश, जलभराव और उस पर जानलेवा हादसे सरकार और सरकारी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। कल शाम विहान श्रीवास्तव को परिवार ने अंतिम विदाई दी है। सोमवार को चेंबूर में एक स्कूल बस पर पेड़ गिर गया, हादसे में 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई जबकि 5 छात्र घायल भी हुए हैं। विहान उस हादसे का शिकार हुआ जिसे रोका जा सकता था पहले ही। इस हादसे के बाद शहर में खतरनाक पेड़ों की स्थिति को लेकर आक्रोश पैदा हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। वहीं बीएमसी ने 2 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया है। 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया और मुंबई भर में संवेदनशील पेड़ों के निरीक्षण के निर्देश भी जारी किए गए हैं। चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने की वजह से विहान की मौत हो गई। बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से राहत मिली है। तमाम इलाकों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश दिल्ली में हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो की जगह अब रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो दिल्ली में आज आंधी तूफान के आसार नजर आ रहे हैं। अगले 2 घंटे में भारी बारिश और करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के साथ सुबह की शुरुआत हुई। मौसम विभाग ने अब रेड अलर्ट भी दिल्ली एनसीआर में जारी कर दिया है। अगले 2 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आशुतोष मिश्रा जुड़ गए हैं सीधा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। आशुतोष, अब देखिए आज पहली बारिश दिल्ली में हुई है सुबह सवेरे। अब माना जा सकता है कि मॉनसून की शुरुआत अब दिल्ली में हो गई है और आगे इससे निपटने के लिए दिल्ली में क्या तैयारी है?
2: कम से कम 8:30 बजे तक तो मैं ये कहूंगा पूजा कि अब ये प्री मानसून गतिविधियां हैं। दरअसल बीते 24 घंटों में हमने जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी जो आगे प्रोग्रेस है वो देखी है। लेकिन हाँ, सुबह की तस्वीरों से शुरुआत कर सकते हैं कि पिछले 5 दिनों से 30-31 डिग्री इस समय तापमान हो जाता था, गर्मी होती थी, उमस होती थी, लेकिन आज सुबह कहीं बूंदाबांदी है, कहीं झमाझम बारिश है और तेज बरसात सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे एनसीआर पश्चिमी बादलों का डेरा है। और दरअसल कुछ पैरामीटर होते हैं, इस पैमाने पर अगर बारिश इतने मिलीमीटर दर्ज की गई प्री मानसून एक्टिविटी में तो उसे तौर पर मौसम विभाग ये डिक्लेयर कर देता कि हाँ ये अब मानसून की गतिविधि है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर डिले भी होता है तो अगले 24 घंटे में मानसून की और इसीलिए थोड़ी देर पहले अगर आप दिल्ली में निकल रहे हैं तो लोगों को छाते की जरूरत होगी। जहां तक तैयारियों की बात है, अब जब मानसून शुरू होगा तो पहले ही एक तक कहा गया कि मानसून कमजोर है तो दिल्ली में देखना होगा कि कहीं नाले जाम ना हो, सड़कों पर वाटर लॉगिंग ना हो, निचले इलाकों पर उस तरह के बंदोबस्त हो, पंपिंग लगाए गए हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि 5 दिन की गर्मी थी, आज सुबह मौसम अच्छा हुआ। देखिए यहाँ पर नोएडा में थोड़ी बहुत कम से कम जो बूंदाबांदी है वो रुकी है लेकिन अभी भी हो रही है। मतलब आपको अब चारों जगहों पर शायद ही दिल्ली एनसीआर का कोई इलाका मिलेगा जहां पर आपको पानी नहीं दिखाई देगा। तो तापमान 27 डिग्री के नीचे आ चुका है। थोड़ी देर में मौसम विभाग एक बुलेटिन जारी करेगा और देखेगा कि अब तक जो बारिश हुई है, बादलों की आवाजाही है, जो उसकी रफ्तार है, क्या वो उस पैमाने पर है जिससे वो कह सके कि हाँ एनसीआर दिल्ली में जो है मानसून ने दस्तक दे दी है। लेकिन हाँ, प्री मानसून गतिविधियां हैं और हम बेहद नजदीक हैं कि उत्तर भारत में भी मानसून और इसके साथ साथ अगले एक सप्ताह में पूरे भारत पर मानसून हावी हो जाएगा। पूजा,
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर की तस्वीर, गुजरात और यूपी की कुछ तस्वीरें जहां पर मूसलाधार बारिश मुसीबत बन गई है। कहीं पर नदी के उफान की वजह से जिंदगी फंसी दिखी तो कहीं पर अंडरपास में पानी भरने से खतरा बढ़ गया।
3: ये तस्वीरें डोडा और किश्तवाड़ से आई हैं। वहां फ्लैश फ्लड आया तो तबाही मच गई, वहां अचानक हालात बेकाबू हो

0: गुरेज के तुलैल इलाके में फ्लैश फ्लड की घटना हुई। बादल फटते ही पूरे इलाके में कीचड़ और लकड़ी के ढेर तेज बहाव में बहते दिखाई दिए। एक दिन पहले जूनागढ़ का ये हाल हो गया। जोशीपुरा अंडरपास में करीब 5 फीट तक पानी भरा हुआ है और उसमें फंसे लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। अंडरपास कार में डूब गई। हालात ऐसे हो गए कि रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाना पड़ा। मौके पर पहुंचते ही बचाव दल ने पहले पंपिंग सेट के जरिए अंडरपास का पानी निकाला और जब जलस्तर कम हुआ तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने रस्सी की मदद से कार को बाहर निकाला। अब आपको दिखाते हैं गुजरात की तस्वीरें। अमरेली में भारी बारिश के बाद नदी में उफान आ गया। स्थिति बेकाबू हो गई। कई गांवों पर खतरा बढ़ गया। ये तस्वीरें चोतरा गांव के रायडी नदी की हैं। उफान के बाद नदी के दोनों किनारों पर खतरा बेहिसाब बढ़ गया। इस नदी के सैलाब में कई बेजुबान फंस गए। गनीमत ये रही कि सभी को बचा लिया गया। यूपी के मिर्जापुर में भी भारी बारिश से स्थिति बदहाल हो गई। वहां नटवा रेलवे अंडरपास में बारिश का पानी भर गया। हालात बिगड़ी तो गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। कई छोटी और बड़ी गाड़ियां फंस गई जिससे लोगों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। आज तक ब्यूरो।
1: चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब खबर राम मंदिर चंदा चोरी मामले की। इस पूरे मामले के एक आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अमित शुक्ला हाथ में कैश के बंडल लिए दिख रहा है। पुलिस ने इस वीडियो को जांच में शामिल किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ भी कर सकती है। यह वीडियो अगस्त 2025 में अपलोड किया गया था और अब ये काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस वीडियो को चल रही जांच में शामिल किया है। जांचकर्ता ये भी पता लगाने की कोशिश में है कि क्या दिखाए गए पैसे का चल रहे मामले से कोई संबंध है। अभी इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। और अब खबर एसआईटी जांच से जुड़ी हुई। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर अभी और शिकंजा कसेगा। शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका को देखते हुए हर वित्तीय लेनदेन की बारीकी से तफ्तीश किए जाने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को कुछ अहम साक्ष्य भी मिले हैं। जांच की जद में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी आ सकते हैं और जानकारी मिली है कि एसआईटी ट्रस्ट के 5 साल के ऑडिट करेगी और एसआईटी को कुछ अहम साक्ष्य भी मिले हैं। तो माना जा रहा है कि इससे अनिल मिश्रा, गोपाल राय और चंपत राय की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। उन्हीं साक्ष्य के बाद बुधवार को एसआईटी जांच का समय 2 सप्ताह बढ़ा दिया गया। एसआईटी के तीनों अधिकारी लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और आईजी रेंज लखनऊ किरण एस और साथ ही विशेष वित्त सचिव नील रतन आज बैठक कर सकते हैं। इसके बाद तीनों अयोध्या भी जा सकते हैं। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का शिकंजा कसेगा जिसकी जांच अब तेज हो गई है। तो सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में अनिल मिश्रा ने चोरी का पूरा ठीकरा टिन्नू यादव पर छोड़ा है। अनिल मिश्रा ने पुलिस को बताया है कि चढ़ावे की काउंटिंग में लगे कर्मचारी टिन्नू के इशारे पर काम करते थे। अनिल मिश्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। सूत्रों का कहना है कि अनिल मिश्रा से यह पूछा गया कि जब मंदिर प्रबंधन में आपका दखल था तो कैसे करोड़ों की चोरी हो गई और भनक तक नहीं लगी। इस पर अनिल मिश्रा ने पुलिस को बताया है कि ट्रस्ट ने ही चोरी पकड़ी। जैसे ही पता चला जांच शुरू हुई और फिर एसआईटी की मांग की गई। निगरानी में चूक होने की बात अनिल मिश्रा ने स्वीकारी है। हालांकि वो पुलिस के कई सवालों के जवाब नहीं दे पाया है और इस पूरे मामले में अब गोपाल राव के बयान भी जल्द ही दर्ज किए जा सकते हैं। समर्थ जुड़ गया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। समर्थ, देखिए एक तो ये नया कैश वाला वीडियो, दूसरी तरफ आपसे ये जानना चाहेंगे कि एसआईटी को ऐसे क्या साक्ष्य मिले हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, इनकी मुश्किलें अब ज्यादा बढ़ सकती हैं। समर्थ
2: पूजा, देखिए सबसे पहले चंपत राय से जब पूछताछ हुई सूत्रों के मुताबिक तो कई चीजें सामने आई। जो चंपत राय ने कहा था भाई मेरा इसमें रोल नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और मेरी नाक के नीचे हुआ है तो इसमें मैं भी अपने आप को इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता हूं, लेकिन हेरफेर में मेरा कोई रोल नहीं है। तो अनिल मिश्रा एक और कड़ी इस पूरे मामले में है गोपाल के अलावा। गोपाल के कोषाध्यक्ष अगला नंबर पूछताछ का उनका है। सूत्रों के मुताबिक कल अनिल मिश्रा से भी पूछताछ हुई और अनिल मिश्रा ने सारा ठीकरा टिन्नू यादव के ऊपर फोड़ दिया है और यह कहा है कि टिन्नू यादव ही सारी चीजें वहां करता था, हेर फेर हो गया, हायरिंग हो गया, जो भी है वो उन्होंने पूरा टिन्नू यादव के ऊपर फोड़ा है ठीकरा। हालांकि उन्होंने ये बात कही है कि भाई जो भी हुआ है गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था इस तरह का जो घपला चंदा चोरी जो वहां पर हुई है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, जितनी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है, खासकर जो पूछताछ आरोपियों से हुई है, चाहे अविनाश शुक्ला से हुई हो या अन्य आरोपियों से हुई हो, कहीं ना कहीं तार अनिल मिश्रा से जुड़ते दिखाई पड़ रहे हैं जो सूत्र पुलिस के हमें बता रहे हैं। लेकिन बड़ी कार्रवाई तभी होगी जब पुख्ता सबूत, पुख्ता चीजें पुलिस के हाथ में आएंगी। बताया ये भी जा रहा है कि एसआईटी आज एक लखनऊ में छोटी सी बैठक कर सकती है और उसके बाद कुछ पुलिसकर्मी जो एसआईटी में है, जो टीम पूरी एसआईटी की है, वो अयोध्या भी पहुंच सकती है और वो अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है। 15 दिन का समय भी इसीलिए बढ़ाया गया है क्योंकि कई एंगल सामने आ रहे हैं। पूजा, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी भी मिल रही है कि जो आउटसोर्सिंग का स्टाफ भर्ती हुआ था मंदिर में मंदिर के कार्यों के लिए, उनसे भी रिश्वत ली गई थी। ये सूत्रों के मुताबिक अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी ये बात साफ नहीं है कि ये जो रिश्वत है ये किसके द्वारा ली गई थी, ये बैंक के द्वारा ली गई थी या फिर ट्रस्ट के द्वारा ली गई थी और किसने ली थी, ये
1: भी बड़ा इसलिए भी शक ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि कई सवालों के जवाब तक नहीं वो दे पाया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए भाई। एक तरफ एसआईटी की जांच तो दूसरी ओर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अब गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपियों की संपत्ति पर एक्शन हो सकता है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है। नियमों के उल्लंघन के आरोप में आरोपियों की इमारतें गिराई जा सकती है। साथ ही प्राधिकरण ने एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है नोटिस देकर। एडीए ने पूछा है कि क्या बिल्डिंग का प्लान या नक्शा पास है या नहीं। बात अब अमरनाथ यात्रा की कर लेते हैं। कल से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू बेस कैंप से आज सुबह ही करीब 4:30 बजे रवाना हो गया। एलजी मनोज सिन्हा ने बस को खुद हरी झंडी दिखाई। घाटी इस समय पूरी तरह से शिवमय हो चुकी है। चारों ओर हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। कल यानी 3 जुलाई को बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत होगी। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही जल थल और आसमान हर जगह पर सुरक्षा बलों का पहरा है। तो हर तरफ सिर्फ अब बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। पहला जत्था रवाना हो चुका है जम्मू बेस कैंप से। अब घाटी में हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा बल हर तरफ मौजूद है। जल थल और आसमान हर जगह पर सुरक्षा बलों का पहरा है। हर जगह पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और देखिए अब कल से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी जिसके लिए पहला जत्था आज सुबह ही रवाना हो चुका है। तो ये भक्तों का जोश आप सुन रहे हैं। बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। पहले जत्थे की रवानगी हो चुकी है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जमीन पर अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। वही हाथ में तिरंगा और होठों पर भजन शिवभक्ति केस और साथ ही अमरनाथ यात्रा में देशभक्ति की तस्वीर भी आपको ये देखने को मिल रही है जब भक्त तिरंगे के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे।
3: यहाँ पर शिव भक्ति भी दिख रही है और राष्ट्र भक्ति भी दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु यात्रा के लिए जा रहे हैं उनके हाथों में तिरंगा भी है। यही तिरंगा जो देश की आन बान शान अस्मिता का प्रतीक है। तो यहाँ पर शिव भक्ति भी दिख रही है और राष्ट्र भक्ति भी दिख रही है। हम सीधा यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करते हैं। जी आप बताइए आपका नाम।
4: मेरा नाम पुरुषोत्तम साहू है। मैं MP गुना से हूँ।
3: आप यात्रा के लिए पहले भी जा चुके हैं? पहली बार?
4: मैं पहली बार जा चुका हूँ। 2 बार से मैं पहले जत्थे में जा रहा हूँ।
3: अच्छा अच्छा, तीसरी बार है आप?
4: ये तीसरी बार है।
3: अभी तक कैसा अनुभव रहा आपका?
4: मेरा अनुभव काफी अच्छा है और मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए और जितनी ज्यादा जनसंख्या में आ सकते हैं उतनी ज्यादा में आए।
3: तो मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है?
4: मन में प्रसन्नता की अनुभूति तो बहुत है, हम आप लोगों को बता ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ जितने भी शिव भक्त हैं वो अपना एक दृढ़ निश्चय लेके आते हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन हो और जितनी जल्दी हो उतनी अच्छा रहेगा। क्योंकि
3: यहाँ पर शिव भक्ति भी देख रहे हैं और राष्ट्र भक्ति भी देख रहे हैं।
4: जी जी जी बिल्कुल।
3: एक बार जय घोष कर दीजिए सभी।
5: भारत की जय।
3: जब आप पवित्र गुफा में पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, पहले जत्थे में आप लोग सभी शामिल हैं, तो भगवान भोलेनाथ से क्या मांगेंगे?
6: यही भारत की सबका कल्याण करें, भारत से सुरक्षा करें,
7: सुरक्षा मांगेंगे,
8: महादेव ऐसे बना रहे युगों युगों तक, ऐसे हमारा भारत देश में आगे रहे, सब लोग इसका सम्मान कर, हम यही चाहेंगे। बाबा भगवान
6: ऐसी चलती रहे, हमेशा
8: यात्रा चलती रहे, बुलाते रहे, ये यात्रा ऐसे ही चलती रहे, बाबा हर बार हमें बुलाते रहे,
3: भगवान भोलेनाथ बार बार हमें बुलाते रहे, ऐसा कहना है यहाँ पर श्रद्धालुओं का। इनका कहना है कि ये चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का बुलावा बार बार आए। तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु कितने व्याकुल है दर्शनों के लिए। तो श्रद्धालुओं का उत्साह अपने चरम पर है। बम बम भोले हर हर महादेव का यहाँ पर जय घोष हो रहा है।
1: तो वही 130वां संविधान संशोधन बिल एक बार फिर से सुर्खियों में है। बिल में PM CM या केंद्रीय मंत्री को आपराधिक मामले में जेल होने पर पद से हटाने का प्रावधान है और इससे जुड़े तीनों बिल सरकार इस मानसून सत्र में दोबारा पेश करने की तैयारी में है।
7: संसद का मॉनसून सत्र इस बार भी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार एक बार फिर सदन में वो बिल पेश करने जा रही है जिस पर पिछली बार बवाल मच गया था। सूत्रों के मुताबिक 130वें संविधान संशोधन बिल पर बनी जेपीसी इससे जुड़े प्रावधानों को हटाने के पक्ष में नहीं है। माना जा रहा है कि 17 जुलाई को समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहते हुए पद पर नहीं रह सकता। पीएम, सीएम या मंत्री की गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर कोर्ट से जमानत लेनी होगी। अगर 30 दिन में जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। बाद में पीएम, सीएम या मंत्री को जमानत मिली तो वे अपने पद पर वापस आ सकते हैं। अब तक संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए जाने पर ही जनप्रतिनिधियों को पद से हटाया जा सकता था। मौजूदा कानूनों में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को हटाने को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। पिछले मॉनसून सत्र में गृहमंत्री अमित शाह ने इससे जुड़े 3 विधेयक संसद के दोनों सदनों में रखे थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। विपक्ष का कहना है कि अगर ये बिल पास होते हैं तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कराया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का खतरा पैदा होगा। सरकार का तर्क है कि इससे सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही बढ़ेगी। गंभीर आरोपों में लंबे समय तक जेल में रहने वाला व्यक्ति मंत्री पद पर बना रहे, ये लोकतांत्रिक नैतिकता के खिलाफ है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
1: और अब खबर महुआ मोइत्रा की, जिन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी समर्थकों ने उन पर अंडे फेंके और उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। महुआ मोइत्रा ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो आप देखिए, बंगाल के नादिया जिले में स्थित टीएमसी विधायक आलिफा अहमद के आवास का बताया जा रहा है, जहां पर महुआ मोइत्रा पहुंची हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर अंडे फेंके गए।
9: एग, ऑबर्जिन, तीन तलार ओपरे प्रोजेक्टाइल वेपन करे फेला होच्छे। जस्ट सी, दीज आर बीजेपी, सीआरपीएफ इज नॉट इवन एबल टू टेक देम अवे, दे यू कैन हियर द नॉइज। सीआरपीएफ एदेर सराते पाच्छे ना, सीआरपीएफ एदेर सराते पाच्छे ना, सीआरपीएफ इज अनएबल।
1: तो वहीं पुणे के केतन हत्याकांड की बात कर लेते हैं, जिसमें नया वीडियो सामने आया है। एक वीडियो सिया से सगाई का है, जिसकी पार्टी में केतन झूम रहा है, गा रहा है। तो वहीं दूसरा वीडियो सिया से जुड़ा है, देखिए।
10: फरवरी में केतन और सिया की सगाई हुई थी, ये उसी रस्म से जुड़ा वीडियो है। वीडियो में केतन और सिया का परिवार दिख रहा है। केतन के घर वाले इस मौके पर बेहद खुश थे, लेकिन अब हत्या के बाद सगाई से जुड़ा ये वीडियो सामने आया है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि 5 महीने पहले जो खुशी मिली थी वो एक झटके में छीन ली गई। 18 जून को केतन की हत्या कर दी गई। उस मामले में पुणे पुलिस ने एक दिन पहले ही लोहागढ़ किले में क्राइम सीन पर जाकर दूसरी बार रिक्रिएशन किया। आरोपी चेतन भी साथ था।
11: जैसे मैंने कहा, जहाँ जहाँ वो रुके थे, वो जहाँ पे उन्होंने स्पॉट दिखाए, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पर जहाँ रुके थे उन्होंने हमें बताया। हमने डमी का यूज किया था, केतन जो ये हुए है इसमें, उनका जो वेट था उसके वजन का हमने डमी यूज किया था उसमें।
10: चेतन के साथ सिया भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार है। उसके परिवार वाले अब कह रहे हैं कि जांच में अगर सिया गुनहगार हुई तो उसे वही सजा दी जानी चाहिए जो चेतन के साथ हुआ।
12: जो केतन जी के साथ हुआ है, इमीडिएटली तहकीकात करके और इमीडिएटली जो केतन जी के साथ हुआ वही सजा सिया को मिलनी चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है बस।
10: इस मामले में सिया और चेतन 3 जुलाई तक पुलिस रिमांड में है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बाबले, पुणे, आज तक।
1: तो एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया। बीती रात रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों और स्ट्राइक ड्रोन ने कीव और साथ ही यूक्रेन के अन्य शहरों पर जबरदस्त हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति जेलेंस्की के उस बयान के कुछ ही घंटों बाद किए गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस यूक्रेन पर एक और बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। कीव के मेयर ने बताया है कि रूसी हमले में कम से कम 5 लोग घायल हुए हैं। मध्य कीव में एक रिहायशी इमारत नष्ट हो गई है और एक होटल को नुकसान भी पहुंचा है। कई बहुमंजिला इमारतों में आग लग गई है। देखिए कीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई जगह पर धमाके सुनाई दिए हैं। एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। और चलिए अब सुपर 8 में वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। गुजरात के वलसाड में कंटेनर में लगी भयंकर आग, आग की लपटों ने डराया। नेशनल हाईवे 48 पर हुआ हादसा, दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर पाया काबू। महाराष्ट्र के अमलनेर स्थित श्री संत सखाराम महाराज विठल रुक्मणी संस्थान में लगी भीषण आग, प्राचीन धार्मिक धरोहर को भारी नुकसान। जयपुर में आरक्षण की मांग को लेकर बवाल, सीएम आवास कूच के दौरान पुलिस प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव और पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। सूरत के वेसू इलाके में डस्टर कार ने सड़क पर खड़े ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में कई लोग जख्मी, घटना सीसीटीवी में कैद। पुणे में एक पीएसआई ने कैफे में घुसकर की तोड़फोड़, स्टाफ और ग्राहकों से बदसलूकी का आरोप, सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर अधिकारी निलंबित। झांसी में पेंट के एक गोदाम में लगी भयंकर आग, कई घंटे तक हालात रहा बेकाबू, आसपास की दुकानों को भी खाली करना पड़ा। न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से पर चढ़ते दिखे दो लोग, चश्मदीद ने जारी किया वीडियो, रॉयटर्स ने की वीडियो की पुष्टि। सेंट्रल चीन में गर्मी से राहत के लिए अनूठे उपाय किए गए, रिहायशी इमारतों और सड़कों पर खास स्प्रिंकलर्स और कूलिंग सिस्टम लगाए गए। इसी के साथ यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
3: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
2: अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
4: सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर।
5: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
7: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
10: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
11: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: हमने तब भी सवाल किया था।
15: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
14: हम आज भी सवाल करते हैं।
15: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
14: ऑपरेशन अग्नि,
15: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
14: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
16: In association with
17: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: जगह जयपुर कॉलेज प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज, मौका पैरामेडिकल परीक्षा का। अचानक यहां तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, नाराज छात्र कुर्सियां उठाकर फेंकने लगते हैं। जानते हैं क्यों? जयपुर के इस परीक्षा केंद्र पर नकल करवा के पैरामेडिकल के 45 छात्रों को परीक्षा पास करवाने का सौदा हुआ। लाखों रुपए के बदले झुंझुनू के एक कॉलेज के 45 छात्रों को नकल से यहां परीक्षा पास करवानी थी, लेकिन एक टेंट की वजह से नकल कराने वाली सौदेबाजी खुल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बुलडोजर कार्रवाई, संभव आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन भवन पर एडीए का नोटिस। लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम बने निर्माणाधीन भवन में अनियमितता के आरोप, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस। पुलिस ने की मुख्य आरोपी के 48 घंटे की रिमांड की मांग, एसबीआई कर्मचारियों पर भी जांच की नजर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज तक को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज में आरोपियों के पास से मिले रुपए, डॉलर और ज्वेलरी, टिन्नू यादव से 1,00,000 कैश था। इटावा में एसपी नेता रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, बोले राम मंदिर में 20,000 करोड़ का घोटाला, बड़े नाम शामिल है, जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच रही है जांच। लखनऊ में यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले सीएम योगी ने एसआईटी जांच की समय सीमा बढ़ाई, 15 जुलाई तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले राम मंदिर दान मामले में होगी निष्पक्ष जांच, अखिलेश यादव गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या के वकील बार एसोसिएशन चढ़ावा चोरी मामले में आज ट्रस्टियों के खिलाफ थाना राम जन्मभूमि में दर्ज करवाएंगे केस। महाराष्ट्र में राजनीतिक खलबली, एनसीपी एसपी कांग्रेस के बीच विलय की चर्चा तेज, फिलहाल महाराष्ट्र इकाई स्तर पर चल रही है बातचीत। महाराष्ट्र में सहमति बनने पर दिल्ली नेतृत्व लगाएगा अंतिम मुहर, पहले महाराष्ट्र में बनेगी सहमति और फिर हाईकमान का फैसला आएगा। पीएम मोदी जापान की पीएम की मुलाकात, सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत, सुबह 11:30 बजे हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी और जापान की पीएम ताकायची के बाद बीच उनके बीच व्यापार, सेमीकंडक्टर, खनिज, रक्षा जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत में 10,00,000 करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य, भारत जापान बिजनेस फोरम में जापान के 150 से ज्यादा उद्योगपति लेंगे हिस्सा, दोनों देशों के बीच निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा। आज हैदराबाद हाउस में दोपहर 1:10 पर एमओयू पर हस्ताक्षर, शाम 3 बजे दिल्ली के ताज पैलेस होटल में बिजनेस फोरम का आयोजन। मॉनसून को लेकर मोदी सरकार का एक्शन प्लान, सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय को तैयारी करने के दिए गए निर्देश, अल नीनो के कारण कम बारिश की आशंका, 30 दिन जेल में रहने पर जा सकती है पीएम सीएम की कुर्सी, संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट तैयार, मॉनसून सत्र में पेश हो सकते हैं तीनों बिल, हंगामे के आसार। एसपी कार्यालय में आज विशाल सिख सम्मेलन, सुबह 11 बजे अखिलेश यादव की मौजूदगी में आयोजन, सिख समाज न्याय यात्रा का समापन भी पार्टी कार्यालय पर होगा। टीएमसी के बागी गुट का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज ईसीआई से मिलेगा, राजनीतिक पहचान और चुनाव चिन्ह पर अपनी दलीलें रखेगा। बंगाल में आज कैबिनेट के सामने यूसीसी ड्राफ्ट बिल पेश होगा, अगस्त विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक लाने की तैयारी। यूपी टेट परीक्षा आज से 60 जिलों के 955 केंद्रों पर 2 से 4 जुलाई तक 5 पालियों में परीक्षा, वहीं करीब 20,00,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट का मंजूरी दी, दिल्ली और यूपी में 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजना को मंजूरी, राष्ट्रीय राजमार्ग 148 पर 6 लेन सड़क सुरंग निर्माण को मंजूरी, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी ये सड़क, करीब 7,000 करोड़ की लागत से पूरा होगा, 8.1 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट, और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश को भी मिली केंद्र सरकार से विकास की सौगात, यूपी में नेशनल हाईवे 34 के कानपुर कबराई सेक्शन के निर्माण को मंजूरी, 4 से 6 लेन वाला होगा ये 117.7 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस कंट्रोल्ड सेक्शन, 7,000 करोड़ से भी ज्यादा होगी इस प्रोजेक्ट के अनुमानित लागत। व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर की जांच करेगी सरकार, कहा टेलीग्राम की तरह गलत इस्तेमाल की आशंका, नए फीचर में यूजर नेम से भी होगी चैट। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार की सख्ती, मेटा कंपनी को भेजा नोटिस, 3 दिन में मांगा है जवाब बिना मंजूरी, भारत में फीचर लॉन्च नहीं। नीट पीजी परीक्षा 2026 की तारीख का ऐलान, 30 अगस्त को होगा एग्जाम, रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। एनबीएमसी ने पीजी 2026 परीक्षा के लिए जारी की एडवाइजरी, सेंटर आवंटन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आधार पर नहीं होगा, फॉर्म सबमिट के बाद ही बदलाव नहीं। नक्सल मुक्त भारत के बाद अवैध घुसपैठ के खिलाफ अमित शाह बनाएंगे प्लान। 9 जुलाई को सभी राज्यों के डीजीपी के साथ हाई लेवल मीटिंग। अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा बर्वानी के भक्तों का इंतजार हुआ खत्म। हर्षोल्लास के साथ पहला जत्था जम्मू से रवाना। सुबह 4:30 बजे भगवती नगर यात्री निवास से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों के जत्थे को दिखाई हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा के लिए आस्था और उत्साह से खिले श्रद्धालु के चेहरे, हर हर महादेव के गूंज जयकारे। जम्मू से आज दोपहर तक कश्मीर घाटी पहुंचेगा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था। कल बालटाल और पहलगाम मार्ग पर बेस कैंप से शुरू होगी यात्रा। इस बार 57 दिनों तक चलेगी दिव्य अमरनाथ यात्रा। 28 अगस्त को होगी संपन्न। अमरनाथ यात्रा के लिए देश विदेश से जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और RFID कार्ड प्रक्रिया भी जारी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में पूरे यात्रा रोड पर बनाए गए कई ट्रांजिट कैंप पर श्रद्धालुओं के रुकने और खाने पीने के लिए विशाल भंडारे के भी इंतजाम। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर जांच की। CCTV और ड्रोन कैमरों से भी रखी जा रही है निगरानी। आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल भी की गई। ऑपरेशन शिवा के तहत होगी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा। कमांडो की तैनाती और मल्टी लेयर सुरक्षा का विशेष इंतजाम। अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे और बुलेट प्रूफ वाहन और 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में लगाई गई। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पेट्रोल और डीजल वाहनों का दौर धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी शुरू। राजधानी में लागू हुई नई EV पॉलिसी। इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी। 2.25 लाख रुपए तक की एक्स शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक दोपहिया पर पहले साल अधिकतम 30,000, दूसरे साल 20,000 और तीसरे साल 10,000 रुपए तक की सब्सिडी। नई नीति के तहत दिल्ली में खरीदे और रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों को जीवन भर के लिए 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में मिलेगी छूट। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत और BSVI से नीचे के सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक। सिर्फ CNG, EV, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों को मिलेगी छूट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए नई हवाई सेवाओं की सौगात। 11 और शहरों के लिए उड़ानें शुरू। अब नोएडा एयरपोर्ट से देश के 16 शहरों के लिए मिलेंगी उड़ान। 15 जून से हुई थी यात्री सेवाओं की शुरुआत। तीर्थयात्रियों के लिए रेलवे के सिकंदराबाद से 2 भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेनों का ऐलान हुआ। अयोध्या, काशी, रामेश्वरम समेत कई तीर्थों पर जा सकेंगे भक्त। नैनीताल में ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए बड़े फैसले। 1 अगस्त से मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा बैन। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी के किनारे बने भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे स्थित सभी घाट भी पानी में डूबे। किसी भी आपात स्थिति के निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट। लोगों से नदियों, नालों और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों में जाने से बचने की अपील। अरुणाचल प्रदेश के पानीओर जिले में इसके दौरे पर शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू निकले। बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। हिमाचल के लगभग सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज। अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में मॉनसून के अत्यधिक सक्रिय रहने की संभावना। शिमला में हुई राहत की बारिश। तापमान में गिरावट से पहाड़ियों पर छाई धुंध। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई मूसलाधार बारिश। तापमान में आई भारी गिरावट से लोगों को हो रहा है ठंड का एहसास। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की तुलेल घाटी में बादल फटने के कारण खेती की जमीन और मवेशियों को नुकसान। अचानक से आई बाढ़ में बहा जमीन का बड़ा हिस्सा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी जमकर बारिश हुई। कई जगहों पर भूस्खलन। डोडा में भी बादल फटने के कारण सड़कों पर आया मलबा। कई गांवों का संपर्क टूटा। फसलों को भारी नुकसान। प्रशासन की लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में तेज हुई प्री मानसून गतिविधियां। दिल्ली के साथ आसपास के प्रदेशों के भी कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। वहीं महाराष्ट्र में लगातार बारिश का दौर जारी। नवी मुंबई समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश से कई इलाकों में जलभरा। मुंबई में भारी बारिश से अंधेरी अंडरपास में भरा पानी, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। मुंबई में अगले 6 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के कारण मुंबई में कल तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना। महाराष्ट्र के पालघर में मूसलाधार बारिश का कहर। मकान की दीवारें नहीं, बड़ा हादसा चला। महाराष्ट्र के वसई में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। तेज बहाव की वजह से नाले में बही 2 कार, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। गुजरात के स्मार्ट सिटी सूरत में भारी बारिश के कारण सड़कों की खुली पोल, गड्ढे में फंसी बस और स्कूल वैन। वलसाड में भी मूसलाधार बारिश हुई। सड़कों पर भरे गंदे पानी के कारण लोग आवाजाही करने को हुए मजबूर। गुजरात के वापी में भी भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव। सड़कों पर पानी में फंसे वाहन। अरुणाचल प्रदेश और असम में भारी बारिश के बाद गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अलर्ट। नवी मुंबई के नेरुल इलाके में जलभराव में अंडरग्राउंड तार में आया करंट। बाइक सवार 2 छात्राओं को सड़क पर पैर रखते ही लगा जोरदार झटका। नागपुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान जर्जर तीन मंजिला इमारत गिरी, सड़क पर फैला भारी मलबा। वलसाड में हाईवे पर चलते कंटेनर ट्रक में लगी भीषण आग, धुएं का गुबार दूर तक दिखा, सड़क पर लगा लंबा जाम। गुजरात के खेड़ा में पटाखा फैक्ट्री धमाके में तीन दिन बाद एक मजदूर की मौत हुई, सुरक्षा मानकों के बिना अनुमति के चलाई जा रही कंपनी के फरार मालिक पर दबिश। देहरादून के विकास नगर में दो मंजिला आवासीय भवन में लगी भीषण आग, मकान पूरी तरह से जलकर राख हुआ, कई मवेशी भी जिंदा जले। बिहार के सहरसा में सोते समय शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने टायर में लगाई आग और किया सड़क जाम। उज्जैन में शिप्रा नदी में आरती के दौरान दीपक बेचने वाली महिलाओं और पुजारियों के बीच विवाद हुआ, दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। उन्नाव में अज्ञात वाहन की टक्कर से बुलेट नाले में गिरी और बारात से लौट रहे दो दोस्तों की मौत हो गई। राजस्थान के पाली में अस्पताल में डॉक्टर की कुर्सी पर मिला सांप, मरीजों में मची अफरा तफरी। गाजियाबाद में मामूली रोडरेज विवाद के बाद युवक की कथित तौर पर पीट पीट कर हत्या, मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में कार में हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल, सोना बेचकर लोहा खरीदने की कही गई बात। मुरादाबाद में बारिश के बीच पेड़ के नीचे खड़े पांच लोगों पर गिरी आकाशीय बिजली, दो की मौत, तीन की हालत गंभीर। अमृतसर में ड्रोन से हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, दो की गिरफ्तारी, सात पिस्तौल और 40 कारतूस बरामद। भोपाल में चाय स्टॉल चलाने वाले की इलेक्ट्रिक भट्टी से करंट लगने के कारण मौत हुई, करीब 10 दिन से चल रहा था इलाज। गुजरात के जामनगर में मंदिर की दान पेटी तोड़कर चोर ने की 15,000 रुपए की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। भारत इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच बारिश से हुआ प्रभावित, नहीं निकल पाया कोई भी नतीजा। इंग्लैंड में चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया मुकाबला, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर बनाए 189 रन। इंग्लैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने लगाया अर्धशतक, श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंद में बनाए 59 रन, शिवम दुबे ने 21 गेंद में नाबाद 42 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला डेब्यू करने का मौका, अब 4 जुलाई को मैनचेस्टर में होगा दूसरा मैच।

का आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 9:37 तक, नक्षत्र है उत्तरा

संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

जाता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी।

की धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की चिंता दूर होगी। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग बढ़ेगी, धन का नुकसान हो सकता है, करियर में कोई रिस्क कोई जोखिम ना लें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं उस शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

लोग हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन परिवार में अशांति से बचिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सेहत की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, मन की चिंताएं दूर होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी।

तनाव हो सकता है, पारिवारिक समस्या के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
3: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: एक तरफ कंगाली से बिलबिलाता पाकिस्तान भारत को परमाणु युद्ध की खोखली धमकियां दे रहा है, तो दूसरी तरफ शांति के कुछ स्वयंभू ठेकेदारों ने भारत के आत्मसम्मान का सौदा करने की नई मुहिम शुरू कर दी है। ओपी शाह की अगुवाई वाले सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की तरफ से दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को एक साझा चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें पाकिस्तान के साथ फिर से पींगे बढ़ाने की वकालत की गई है। इस चिट्ठी में मांग की गई है कि भारत पाकिस्तान के बीच पूर्व राजनयिक संबंध बहाल हों, वीजा सेवा शुरू की जाए और व्यापारिक रास्ते खोल दिए जाएं। हद तो तब हो जाती है जब इस अमन राग में कश्मीर पर 2004 से 2007 के बीच बने पुराने फॉर्मूले को टटोलने और सैन्य तैनाती कम करने के साथ ही भारतीय सेना के हाथ बांधने की पैरवी की जाती है। लेकिन इस तथाकथित अमन की अपील का सबसे हैरान करने वाला सच इसके हस्ताक्षरों की सूची में छिपा है। इस एजेंडे को हवा देने वाले कुल 117 नाम हैं, इनमें से 56 तो पाकिस्तानी हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सीमा पार के इन चेहरों के सुर में सुर मिलाने वाले 61 भारतीय भी मौजूद हैं। इस लिस्ट में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और मणिशंकर अय्यर जैसे राजनेताओं के साथ साथ अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक का नाम सबसे ऊपर चमक रहा है। मीरवाइज उमर फारूक बाकायदा बयान जारी कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात होनी ही चाहिए, लेकिन इन सफेद पोशों को कौन समझाए कि आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले मुल्क के साथ भारत अब किसी फेक अमन की मेज पर बैठने वाला नहीं है। जो देश सिर्फ ब्रह्मोस और सर्जिकल स्ट्राइक की भाषा समझता है, उसके सामने इस तरह घुटने टेकने की वकालत करने वाले 61 भारतीयों की नियत पर आज पूरा देश सवाल उठा रहा है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: चढ़ावा चोरी की जांच की जद में ट्रस्ट के बड़े अधिकारी पूछताछ में मिश्रा का आरोपों से इनकार। चंपत के टिन्नू पर फोड़ा ठीकरा। कई सवालों पर चुप्पी। गोपाल राव भी होंगे तलब। अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी में बम बम भोले की जयकार। एलजी ने रवाना किया श्रद्धालुओं का पहला जत्था। कल बालटाल और पहलगाम से होगी औपचारिक शुरुआत। रूट पर भारी सुरक्षा। 30 दिन जेल में रहने पर जा सकती है पीएमसीएम की कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी की फाइनल रिपोर्ट तैयार। मॉनसून सत्र पेश हो सकते हैं तीनों बिल। हंगामे के आसार। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची। पीएम मोदी ने कहा बहुत बहुत स्वागत। भारत जापान के ज्वाइंट विजन को मिल सकती है रफ्तार। 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में झमाझम बारिश से लोगों को राहत तो मुंबई में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। कई जगहों पर जलभराव।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद भारत की।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बिना ब्रेक के सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट पर कस गया है शिकंजा। 5 साल के ऑडिट की होगी जांच। ट्रस्ट के बड़े लोगों की बढ़ सकती है मुश्किल। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर जारी है एग अटैक का दौर। अब महुआ मोइत्रा ने लगाया अंडा फेंकने का आरोप। थोड़ी देर बाद विस्तार से खबर आपको दिखाएंगे। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में हारते हारते बची इंग्लैंड और बेल्जियम की टीम्स। दिखाएंगे ये रिपोर्ट और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले के साथ। क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एसआईटी जांच में ये सामने आया है कि कई साक्ष्य ऐसे हैं जिसमें ट्रस्ट के बड़े अधिकारी फंस सकते हैं। जानकारी मिली कि एसआईटी ट्रस्ट के 5 साल के ऑडिट की जांच की जाएगी। माना जा रहा है कि इससे अनिल मिश्रा गोपाल राव और चंपत राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसआईटी के तीनों अधिकारी आज बैठक कर सकते हैं। इसके बाद तीनों अयोध्या दौरे पर भी जा सकते हैं। 5 साल के लेन देन का ऑडिट किया जाएगा क्योंकि जबरदस्त धांधली इसमें हुई है और खास तौर पर तब जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तब से लेकर अब तक करोड़ों का चढ़ावा आया है और इसी को लेकर अब एसआईटी की जांच तेज हो गई है। अयोध्या भी जा सकते हैं एसआईटी के अधिकारी। ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर अब शिकंजा कस सकता है जिसमें अनिल मिश्रा चंपत राय गोपाल राव इन तमाम लोगों के नाम शामिल हैं। तो चढ़ावे में जो जेवरात चोरी हुए हैं उसका ब्यौरा कैसे देगा ट्रस्ट क्योंकि ट्रस्ट ने दान में मिले आभूषणों का ऑडिट ही नहीं कराया। निर्माण कार्य में कमीशन का भी आरोप लग रहा है। वहीं जो चंदा चोरी का पैसा है उसे बड़ी बड़ी इमारतें और जमीन खरीदने में इस्तेमाल किया जा चुका है। ऐसे में मनी ट्रेल कहां जाकर थमेगा कैसे इसको एसआईटी एस्टैब्लिश करेगी एक बड़ा सवाल है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट पर अभी और कसेगा शिकंजा। जांच में एसआईटी को मिले अहम साक्ष्य। जांच के घेरे में आ सकते हैं ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी।

0: शुक्ला के कौशलपुरी स्थित श्याम साधनालय योग केंद्र में उसके कमरे से राम राज्य कोश लिखा एक संदूक मिला है। उस पर QR कोड भी लगा है। आज तक ने कल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी।
1: योगा केंद्र आपको श्याम साधनालय योगा केंद्र है और हम इस योगा केंद्र में दाखिल होंगे और आपको लेकर चलेंगे इस योगा केंद्र में और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ इस योगा केंद्र में है। एक रहस्यमयी बक्से की भी बात यहां हो रही है। ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूं जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। ये एक रहस्यमयी बक्सा है। आप अगर देखें तो यहां पर राम राज्य कोश लिखा है, पेटीएम का यहां पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहां पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहां पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
0: पुलिस और जांच एजेंसी अब ये पता लगा रही हैं कि संदूक में जमा होने वाला धन कहां से आता था और उसका राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण से कोई संबंध है या नहीं। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि संदूक से कोई नकदी बरामद हुई है या नहीं। पुलिस QR कोड से लेनदेन की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस ने कल आरोपी लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे के पैतृक घरों पर छापा मारा। करीब 3 घंटे चली छानबीन के दौरान परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए। सूत्रों का कहना है कि दोनों के घरों से नकदी, जेवर और संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। पुलिस दोनों के माता पिता को साथ लेकर गई है। सूत्रों के मुताबिक लवकुश और करुणेश ने अहम जानकारियां दी थी। बताया था कि चोरी की रकम उनके घरों में रखी है, इसलिए पुलिस ने कल उनके घरों पर एक साथ छापा मारा। लवकुश का घर अयोध्या के रुदौली और करुणेश का घर खंडासा में है। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
2: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एक वीडियो सामने आया है, इसमें चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला के हाथ में कैश का बंडल दिख रहा है। जांच वीडियो को शामिल किया गया है। पैसे के स्रोत के बारे में पूछताछ हो सकती है और इस वीडियो को अमित ने सोशल मीडिया में रील के तौर पर अगस्त 2025 में अपलोड किया था। ये क्लिप अब ऑनलाइन वायरल हो रहा है, शेयर किया जा रहा है। चढ़ावा चोरी मामले के मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला अभी फिलहाल जेल में बंद है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा कंटेंट सामने आने के कारण ये मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो कैश के बंडल के साथ अविनाश का भाई दिख रहा है, इसकी एक बकायदा रील बनाई गई है, इसे सोशल मीडिया पर डाला गया है और आप सोच सकते हैं कि अगर इतना बेधड़क बेखौफ होकर ये तमाम चीजें की जा रही थी तो आखिरकार इनको लग रहा था कि ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे। वही अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले में अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तार लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चल सकता है।

0: चढ़ावा चोरी केस में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। आरोपी लव मिश्रा के घर पर चल सकता है बुलडोजर। ये निर्माणाधीन घर है अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा का। ये घर लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम लिया था। चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद अब ये निर्माणाधीन मकान अयोध्या विकास प्राधिकरण के रडार पर है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लवकुश मिश्रा की पत्नी को नोटिस जारी किया है। एडीए ने पूछा है कि मकान के नक्शे की मंजूरी ली गई थी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक एडीए ने जांच में पाया था कि मकान के निर्माण में मानकों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। एडीए ने एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर मकान पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है।
1: पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए, ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पहले थोड़ा मकान के अंदर का भी दिखाते हैं कि ये बाकायदा स्टेयर्स बन गई है और इसके बाद कमरे हैं। एक दो मंजिला मकान ये बनाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
0: सवाल ये भी है कि क्या ये जमीन

0: और मकान चढ़ावा चोरी की रकम से बन रहा था। अब तक की जांच से पता चला है कि राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की खुल्लम खुल्ला लूट हुई, लेकिन अब पाई पाई की वसूली शुरू हो चुकी है। चढ़ावा चोरों से कुल 79,85,493 रुपए कैश बरामद हुए हैं। चढ़ावा चोरों से 1,121 अमेरिकी डॉलर भी बरामद हुए। निशानदेही पर कुल 21,548 नोटों की बरामदगी हुई, मतलब रामधन को चढ़ावा चोरों ने जमकर लूटा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला के निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई है। अविनाश शुक्ला के घर से 20,39,220 रुपए बरामद हुए। अविनाश शुक्ला ने राम मंदिर के चढ़ावे में चढ़े 1,121 अमेरिकी डॉलर पर भी हाथ साफ किया था, यानी करीब 1,00,000 रुपए। ठीक ऐसे ही अविनाश के ठिकाने से 159 ग्राम चांदी, 8 ग्राम सोने की चैन, 3 ग्राम सोने की अंगूठी भी मिली है। आरोपी लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव और रमाशंकर मिश्रा के ठिकाने से चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया है। लवकुश मिश्रा के ठिकाने से कुल 14,25,000 रुपए मिले। टिन्नू यादव के ठिकाने से 1,00,000 रुपए की बरामदगी हुई। रमाशंकर मिश्रा के निशानदेही पर 7,32,170 रुपए मिले। राम भक्तों ने अपनी आस्था नोट की शक्ल में दान पेटियों में डाली थी, लेकिन राम के दुश्मनों ने आस्था के साथ सीधा विश्वासघात किया, क्योंकि गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरों ने सिंडिकेट बनाकर चोरी को अंजाम दिया। आरोपी करुणेश पांडे के ठिकाने से 18,07,063 रुपए बरामद हुए। ठीक ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा के निशानदेही पर 16,82,040 रुपए मिले। आरोपी मनीष यादव ने भी दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की, उसके पास से 2,00,000 रुपए मिले। कैश की इस बरामदगी से साफ हो गया है कि चढ़ावे की लूट बड़े पैमाने पर हुई। समर श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
1: समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, हमने देखा कि ट्रस्ट के जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनके सिर्फ इस्तीफे से अब तक काम चल रहा था, क्या वो जेल की सलाखों के पीछे जल्द पहुंचेंगे? क्योंकि टिन्नू यादव ने साफ तौर पर कई बड़े लोगों का नाम भी लिया है। और दूसरी बात ये समझना मुश्किल है, जो तमाम आरोपी हैं जो अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, उनकी निशानदेही पर कैश पकड़ा गया। होना तो उल्टा चाहिए था ना, पुलिस को पहले छापेमारी करनी चाहिए थी, कैश मिल जाता। जब वो सीधे तौर पर आरोपी हैं, वो खुद बता रहे हैं कि हमारे घर में कैश पड़ा है, जाइए ले आइए।
2: नया देखिए, जब अयोध्या की बात होती है और पुलिस की बात होती है, तो जब ऊपर राम जन्मभूमि का ट्रस्ट बैठा है, तो पुलिस के लिए भी इस वक्त इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करना अपने आप में कितना चैलेंजिंग है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरह का दबदबा यहाँ के ट्रस्ट के पदाधिकारियों का सालों से रहा है, चाहे राम मंदिर निर्माण के दौरान की बात कहें या उसके निर्माण के बाद की बात कहें या प्राण प्रतिष्ठा की बात करें, ट्रस्ट जो यहाँ का है और जो पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अयोध्या को रूल किया है। कहने को डीएम को जिले का राजा कहा जाता है, लेकिन असल मायने में अयोध्या पर किसी ने रूल पिछले कुछ सालों में किया तो पदाधिकारियों ने किया, और इसीलिए निरंकुश तरीके से चीजें हुई हैं। जो सूत्र बताते हैं, चाहे हायरिंग हो, उसमें रिश्वत की बात सामने आना हो, चाहे अंकुश की बात हो, चाहे आप टिन्नू यादव की बात कर लें, जब जेल में जाते हैं और पूछताछ पुलिस करती है तो बड़े राज खोलते हैं। उनको मालूम है कि अब बचने का शायद कोई तरीका बचा नहीं है। अभी तक वो राज बचा रहे थे कि भाई बात ना खुले, अपने उच्च अधिकारियों का नाम ना आए, लेकिन अभी जो है सबके नाम आ रहे हैं। जो पदाधिकारी बड़े हैं, चंपत राय की आप बात कर लें, उनसे पूछताछ होती है सूत्रों के मुताबिक, अनिल मिश्रा से सूत्रों के मुताबिक पूछताछ होती है, सब पल्ला झाड़ते हैं और अपने अपने जो जूनियर्स रहे उन पर डालते हैं। यानी कि अनिल मिश्रा कल बताते हैं कि टिन्नू यादव का सब किया धरा है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन क्या इतना आसान है? क्या पुलिस इन बातों को इतना आसानी से मानकर आगे बढ़ जाएगी? कई साधु संत अयोध्या में ये चर्चा कर रहे हैं, कई ट्रस्टी ये चर्चा कर रहे हैं कि छोटी मछलियों को पकड़ा गया है, बड़ी मछलियां अभी भी फरार हैं।
1: यही सवाल बार बार उठ रहा है। और आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, मनी ट्रेल तो एस्टैब्लिश हो गया, कहां कहां से पैसा गुजरा, कैसे बैंक तक पहुंचा, कैसे उससे संपत्ति आई, लेकिन जो जेवरात हैं जिनका ऑडिट ही नहीं हुआ, उसके बारे में कैसे जानकारी लगेगी कि किसने कितना जेवरात मारा या फिर सोना चांदी जो भी वहां पर चढ़ावे के तौर पर आया?
3: बिल्कुल नया, देखिए एसआईटी ने अब साफ किया है कि जो जेवरात, आभूषण और दान के लिए जो आए थे, उनको कहीं ना कहीं ऑडिट में पूरी तरीके से साफ नहीं है, और उसके ऑडिट के लिए कहीं ना कहीं एसआईटी अब पूरी आगे बढ़ रही है। क्योंकि जो 5 सालों में आभूषण आए हैं वो आखिर कहाँ गए, उसका रिकॉर्ड पक्का पूरी तरीके से नहीं रखा गया और एसआईटी को भी नहीं मिला है। तो ये जांच का सबसे बड़ा विषय है कि जो आभूषण श्रद्धालु बात कर रहे हैं, गायब होने की बात कर रहे हैं, कई ऐसी जगहों से खबरें आ रही लगातार, उनकी अब एसआईटी स्पेशल जांच करेगी कि उन राम मंदिर चढ़ावे के वो आभूषण कहाँ गए। और एसआईटी अब 5 सालों का ऑडिट दोबारा करेगी कि आखिर जो राम मंदिर ट्रस्ट ने किया था वो ऑडिट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गलत है, वो उसके आंकड़े नहीं है, उसके कागज नहीं है। और अब वह पूरी तरीके से दोबारा करके उसमें ये जांच जरूर करेगी, उसके लिए मदद देगी, चाहे वो पुराने कर्मचारी वहां पर रहे हों या पुराने ट्रस्ट में जो लोग वहां जुड़े रहे उनसे रहे हों, उन सभी से मदद भी लेगी। साथ ही साथ फॉरेंसिक की भी एक तरीके से मदद दी जाएगी कि कैसे ये ऑडिट पूरा किया जाए और इसमें जिन लोगों ने चोरी की, क्योंकि अभी तक धार्मिक चोरी रुपए की निकल कर आ रही है, आभूषण कौन कौन ले गया है, एक एक लिस्ट अब एसआईटी बना रही है और उसको लेकर भी अब ये अहम जांच मानी जा रही है। जो 5 सालों का ऑडिट
1: ठीक
3: होगा
1: है,
3: वो एसआईटी करेगी, वो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं जांच होगी जिसमें कई चेहरे सामने आ सकते हैं, कई बड़े पदाधिकारियों के नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं। एसआईटी ने इस तरफ भी इशारा किया है नेहा।
1: ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं राम भक्तों की श्रद्धा के केंद्र अयोध्या से निकलकर भक्ति के और केंद्र पर आपको लिए चलते हैं, बात अमरनाथ यात्रा की करेंगे, क्योंकि बाबा बर्फानी के भक्तों का पहला जत्था जम्मू बेस कैंप से आज सुबह करीब 4:30 बजे रवाना हो चुका है। एलजी मनोज सिन्हा ने बस को खुद हरी झंडी दिखाई। यह जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ है। कल यानी कि 3 जुलाई को बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम किए गए हैं, जल थल और आसमान हर जगह सुरक्षा बलों का पहरा है। और भक्तों के जयकारे से घाटी इस समय पूरी तरह से शिवमयी दिखाई दे रही है। चारों ओर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। जब यात्रा रवाना हुई तब कैसा था माहौल, देखिए सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट।
4: पहला जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो चुका है और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। बम बम भोले और हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु पहुंचे हैं इस यात्रा के लिए। यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ है और कल से ये यात्रा जो है विधिवत तौर पर दोनों मार्गों से शुरू हो जाएगी, पारंपरिक पहलगाम मार्ग से और साथ ही में बालटल मार्ग से। यहाँ पर देखिए आप कि उत्साह कितना है श्रद्धालुओं में। बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु आए हैं और यही भाव है मन में कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकें। हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं जो यहाँ इस बस में इस समय बैठे हुए हैं। जी आप बताइए आपका नाम।
5: मेरा नाम अजय कुमार है जी।
4: कहाँ के रहने वाले?
5: मैं हिमाचल से आया हूँ।
4: अच्छा, क्या भाव है मन में?
5: भाव यही है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भोले बाबा सब जानते हैं, जिस जिसको जो जो चाहिए भगवान उनको प्रदान करे, यही हमारी मनोकामना है।
4: आप पहली बार आए यात्रा के लिए? आते रहते?
5: नहीं, मेरी तो 5वीं यात्रा है वाइफ के साथ।
4: अच्छा,
5: हाँ जी।
4: जोड़े से सबसे तो मुझे एक चीज बताइए कि क्या अनुभव रहता है?
5: अनुभव यहाँ पे बहुत ही अद्भुत लगता है, दिव्य अलग सा। यहाँ हर बार हम यही सोचते हैं कि इस बार बहुत बड़ी मुश्किल से चढ़ाई चढ़ी है और बड़ी मुश्किल से उतरे हैं, हमारे पैर सूज जाते हैं, हम अगली बार नहीं आएंगे। पर जैसे ही रजिस्ट्रेशन खुलता है हम सबसे पहले जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं।
4: पहले जत्थे में नाम आ गया?
5: पहले भी हम तो चाहे जो भी है जुगाड़ करके कैसे भी नाम लेना ही लेना है। ये
4: अच्छा, एक कोई शिव जी का भजन गाइए।
5: शिव जी का ओम नमः।

0: शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
1: आप देख सकते हैं कि शिवजी के भजन गाए जा रहे हैं, बम बम भोले का जय घोष हो रहा है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से जो श्रद्धालु आए हैं, हम श्रद्धालुओं से बात भी करते हैं। आप बताए आपका नाम?
2: मेरा नाम मुकुंद कुमार है।
1: कहाँ के रहने वाले?
2: मैं तमिलनाडु कोयम्बटूर से आ रहा हूँ।
1: कोयम्बटूर से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए दक्षिण से भी पूरा, आप अगर हम देखें ये तमिलनाडु से आए हैं श्रद्धालु। कहाँ के रहने वाले?
3: वेस्ट बंगाल कलकत्ता।
1: क्या भाव है मन में?
3: मन में तो बाबा के लिए सब समय बुरा।
1: एक बार जय घोष कर दीजिए।
4: नमो पार्वती पते हरे हरे महादेव की।
1: आप प्रतिवर्ष आते यात्रा के लिए?
3: ये दूसरी बार है मेरा।
1: तो क्या भाव रहता है मन में, और दूसरा क्या ऐसा अनुभव रहा है अभी तक आपका?
3: हम पहले दफा जब आए थे, पहले दफा का आने के बाद जो नजारा, जो बाबा का दर्शन मिला हुआ था, उस होने के बाद एक साल वेट करता हूँ कि कब आएगा दूसरी बार।
1: बुलावा आ गया।
3: बुलावा
1: पहले जत्थे में ही।
3: पहले जत्थे में ही बुलावा।
1: एक बार सभी जय घोष कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो चरम पर है, और काफी व्याकुल है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ में सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।
5: और अब बात मुंबई के मॉनसून की करेंगे। मुंबई समेत आसपास के कई इलाकों में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। मॉनसून के पहले ही स्पेल में मुंबई डूबती हुई दिखाई दे रही है। बीती रात से मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है। सिर्फ मुंबई नहीं, ठाणे, वसई, पालघर में भी यही आलम है।
6: ये मानसून के दस्तक की गवाही है, ये मुंबई मानसून का आगाज है। ये तस्वीरें बताने के लिए हैं कि माया नगरी मुंबई बिल्कुल नहीं बदली। हर बार बारिश में डूबती थी, इस बार फिर डूबेगी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बादल जमकर बरस रहे हैं। मुंबई में तो पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है, और आने वाले दिन भी ऐसे ही रहने वाले हैं।
7: क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के साइन स्थित गांधी मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं ये गांधी मार्केट की सड़कें जो है बिल्कुल नदी में तब्दील हो गई है। गाड़ियां को काफी प्रेशर लगा करके आगे की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करेंगे तो उनकी गाड़ियां बंद हो जाएगी और एक बड़ी परेशानी हो जाएगी। आपको बता दें मुंबई और आसपास के इलाके में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते हालांकि आज जो है मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
6: मुंबई में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई है। सांता क्रूज में 165.9 मिलीमीटर, जुहू एयरपोर्ट पर 164.5 मिलीमीटर, विक्रोली में 163 मिलीमीटर, बांद्रा में 141.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
7: तस्वीर में देख सकते हैं अंधेरी सबवे और इस पानी के तेज बहाव को देख सकते हैं कि कितना तेज पानी है। कोई भी आदमी जो है आमतौर पर इस तेज बहाव में रुकना मुश्किल हो जाएगा, वो अपनी किसी तरह ना तो गाड़ी लेकर जा सकता है ना ही पैदल जा सकता है। लिहाजा एहतियातन मुंबई पुलिस ने अंधेरी सबवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। तस्वीर में देख सकते हैं मुंबई पुलिस के जवान हैं, वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं मुंबई पुलिस की यहां पर गाड़ी भी लगी हुई है, जो लोगों को यहां से आगे ना जाने की हिदायत दिया जा रहा है, क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज है और यहां पर जो है मुंबई पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं, जो लोगों को सलाह दे रहे हैं।
6: वसई के पहाड़ी इलाके में इतनी बरसात हुई कि भारी भरकम गाड़ियां खिलौने की तरह बह गई। ये वसई का वाघराल पाड़ा इलाका है, जहां पानी के तेज बहाव में दो गाड़ियां नाले में बह गई। गनीमत रही कि समय रहते कार सवार नीचे कूद गए। गाड़ी जब पानी में बहने लगी तो लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई पानी में उतरकर गाड़ियों को रस्सी से बांध सके। गाड़ियों को निकालने के लिए जेसीबी बुलानी पड़ी। बुलडोजर की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों वाहन निकाले गए। इस घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि झरनों और नालों के पास जाने से बचें। ये पालघर का महालक्ष्मी फ्लाईओवर है। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने इस फ्लाईओवर पर घुटनों तक पानी भर गया है। जल भराव की वजह से गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। फ्लाईओवर की दोनों लेन पर समंदर जैसा नजारा दिखा, जिसकी वजह से कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। महालक्ष्मी फ्लाईओवर पर जल निकासी की व्यवस्था कैसी है, इसको इसी से समझिए कि मानसून की पहली बारिश में ही फ्लाईओवर पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। महाराष्ट्र के अकोला जिले में भी भारी मॉनसून जमकर बरस रहा है। भारी बारिश की वजह से पूना नदी पर बने डैम का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया, जिसके बाद एहतियातन बांध के दरवाजे खोल दिए गए। डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली में लगातार हो रही भारी बारिश का असर स्कूलों पर भी दिखने लगा है। कल्याण का ये माध्यमिक विद्यालय बारिश में पूरी तरह से जलमग्न हो गया। स्कूल परिसर में कई फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने विद्यालय की छुट्टी कर दी। आज तक ब्यूरो।
5: और अब बात महुआ मोइत्रा की करेंगे, जिन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी समर्थकों ने उन पर अंडे फेंके, उनके खिलाफ नारेबाजी की और इससे जुड़ा उन्होंने एक वीडियो जारी किया है।
8: 15 মিনিট বাদে কয়েকজন পুলিশ এসছে এন্ড দে আর টকিং, ওদের সরাতে পাচ্ছে না কিন্তু, ক্যা হুয়া সরাতে পাচ্ছে না কিন্তু, প্লিজ সি, দেখো দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও ও প্লিজ সি, পুলিশের সামনে, পুলিশের সামনে, লুক এট দ্য ওয়ে দে আর থ্রোয়িং, ক্যান ইউ হিয়ার দ্য নয়েজ, আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছেন, জাস্ট সি তিন তলার ওপরে কিভাবে ওরা পেয়েছে, সিআইপিএফ এর সামনে, সেন্ট্রাল পুলিশের সামনে, দেখুন আপনারা, সিদ্ধনাথ গুপ্তাজি, ডিজি সাহ, প্লিজ নোট হোয়াট ইজ গোয়িং অন।
9: ডান্ডা লেকার হামলা হো রা থা, ইল্লিগাল গ্যাদারিং হো রা থা, অ্যাটাক কর রা থা, ये क्या हो रहा है? और पुलिस पूरा इनएक्टिव था। ये ये ये ये वो लोग जो कर रहे हैं वो गाजवारी करके, वो पुलिस को इनएक्टिव करके, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा एक तरफ करके हमला करके वो तृणमूल कांग्रेस का गला दबा रहा है।
10: अभी हम सुना है, देखो ना पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्या है, एमपी घुसने नहीं सकता है। कल हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हुआ, उस ऑर्डर के बाद भी पुलिस कुछ नहीं सुनता है, तो एक किसी को कोई जगह में घुसने नहीं देता है, महुआ मोइत्रा को भी घुसने नहीं दिया।
11: तृणमूल को मार रहे हैं और सरकार हमारा चल रहा है। पुलिस कौन का किसका जेब में अगर अंडा होगा तो इसको पकड़ने के लिए तो कोई मशीन नहीं है, मेटल डिटेक्टर नहीं है, शायद मेटल डिटेक्टर से अंडा को पकड़ा नहीं जाता, तो हम लोगों को नया मशीन लाने दीजिए विदेश से, ऐसा टेक्नोलॉजी तो है नहीं, अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में नहीं है, हिंदुस्तान का है कि नहीं हमको मालूम नहीं है, तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है, तो तृणमूल को इसको सलटाना चाहिए, तृणमूल को इसको ढूंढ कर निकालना चाहिए, कौन कार्यकर्ता कौन नेता के ऊपर अंडा फेंक रहा है, अंडा फेंकना बंद होना चाहिए।
5: बात अब क्रिकेट की करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच कल शुरू हुए 5 मैचेस की T20 सीरीज का पहला ही मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। चेसली स्ट्रीट पे खेले गए कल के मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 189 रन का स्कोर खड़ा किया। भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 47 गेंद में 68 रन की पारी खेली। ओपनर अभिषेक शर्मा ने 24 गेंद पर विस्फोटक 59 रन बनाए। शिवम दुबे 21 गेंद में 42 रन बनाकर नाबाद रहे। संजू सैमसन, ईशान किशन और तिलक वर्मा कल के मैच में फ्लॉप रहे। कल के मैच में भी वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं मिली।

0: और बात फीफा वर्ल्ड कप की, राउंड ऑफ मुकाबले में इंग्लैंड की टीम हारते हारते बची है। कांगो डीआर की टीम ने इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी। अटलांटा स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड पहले हाफ तक पीछे थी। पहली बार वर्ल्ड कप का नॉकआउट मैच खेल रही कांगो डीआर ने मैच के 7वें मिनट में गोल दागकर सबको चौंका दिया। कांगो डीआर की तरफ से ब्रायन सिपेंगा ने अपना पहला इंटरनेशनल गोल किया, जिसके बाद दूसरे हाफ में इंग्लैंड के कप्तान ने टीम को संभाला और मैच में 75वें मिनट में गोल कर बराबरी की और 86वें मिनट में दूसरा गोल कर टीम को बढ़त दी। इस जीत के साथ इंग्लैंड राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है, जहां उसका मेक्सिको से मुकाबला होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार 6 जुलाई को मेक्सिको स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं फीफा वर्ल्ड कप में हुए बेल्जियम और सेनेगल के बीच रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने मैच के 86वें मिनट तक 2 गोल से पिछड़ने के बावजूद एक्स्ट्रा टाइम में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया है। सियाटल स्टेडियम में बेल्जियम के रोमेलू लुकाकू ने 86वें मिनट में पहला गोल किया, फिर यूरी टिलेमेंस ने 89वें मिनट में बराबरी दिलाई। उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में 125वें मिनट में विवादित पेनल्टी पर विनिंग गोल किया। इससे पहले बेल्जियम ने 2018 वर्ल्ड कप नॉकआउट में जापान के खिलाफ 0-2 से पिछड़कर 3-2 से जीत दर्ज की थी। और बात फीफा में अमेरिका के एक तरफा मैच की, अमेरिका की टीम ने बोस्निया हर्जेगोविना को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका की तरफ से फुलारिन बालोगुन ने मैच की शुरुआत से ही अटैक किया, उनका एक गोल ऑफसाइड के कारण अमान्य करार कर दिया गया। लेकिन पहले हाफ के इंजरी टाइम में उन्होंने मलिक टिलमन के थ्रू बॉल पर मिले मौके को शानदार तरीके से गोल में तब्दील करके अमेरिका को 1-0 से बढ़त दिला दी। 82वें मिनट में अमेरिका को फ्री किक मिली, मलिन टिलमन ने बेहतरीन शॉट लगाते हुए गेंद को सीधे नेट में पहुंचा दिया और स्कोर 2-0 कर दिया। और अब बात न्यूयॉर्क में अनोखे विरोध प्रदर्शन की। न्यूयॉर्क शहर में 2 लोग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के विशाल शिखर पर चढ़ गए और विश्व शांति का आह्वान करने वाला एक बड़ा बैनर फहराया। काले रंग के बिना आस्तीन वाले कपड़े पहने ये दोनों व्यक्ति मैनहट्टन के मध्यभाग में फुटपाथ से लगभग 1454 फीट ऊपर स्थित इस गगनचुंबी इमारत के शिखर पर जगमगाती लाल बत्ती के पास स्थित एंटीना शिखर पर लटक रहे थे। एक काला उन्होंने बैनर पकड़ा हुआ था, जिस पर बड़े अक्षरों में सफेद रंग से एक संदेश लिखा था और हवा में लहरा रहा था, जब प्रेम की शक्ति सत्ता के लालच पर विजय प्राप्त कर लेती है तब दुनिया में शांति आती है। तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

शाम से होगी औपचारिक शुरुआत, रूट पर भारी सुरक्षा। 30 दिन जेल में रहने पर जा सकती है पीएम सीएम की कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी की फाइनल रिपोर्ट। मॉनसून सत्र में पेश हो सकते हैं तीनों बिल, हंगामे के आसार। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं जापान के प्रधानमंत्री ताकायची। पीएम मोदी ने कहा बहुत बहुत स्वागत, भारत जापान की ज्वाइंट विजन को मिल सकती है रफ्तार, 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य। जबरदस्त बारिश के बाद मुंबई के पास समंदर में आ सकता हाई टाइड, 14 फीट की ऊंचाई तक उठ सकती है लहरें। दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश।

0: राम मंदिर आवाजाही मामले में बुलडोजर कार्रवाई संभव, आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन भवन पर ADA का नोटिस। लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम बने निर्माणाधीन भवन में अनियमितता के आरोप, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस। पुलिस ने की मुख्य आरोपी के 48 घंटे रिमांड की मांग, SBI कर्मचारियों पर भी नजर। 6 जुलाई के ट्रस्ट बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के भविष्य पर फैसला, 2/3 बहुमत से होगा निर्णय। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT करेगी 5 साल के ऑडिट की दोबारा जांच, ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी जांच के दायरे में। चढ़ावा चोरी मामले में आज तक मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज में आरोपियों के पास मिले रुपए, डॉलर और ज्वेलरी, टिन्नू यादव से 1 लाख कैश जब्त। इटावा में SP नेता रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, बोले राम मंदिर में 20,000 करोड़ का घोटाला, बड़े नाम है शामिल, जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच रही है जांच। लखनऊ में यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, सीएम योगी ने SIT जांच की समय सीमा बढ़ाई, 15 जुलाई तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र में राजनीतिक खलबली, NCP SP कांग्रेस के बीच विलय की चर्चा तेज, फिलहाल महाराष्ट्र इकाई स्तर पर चल रही है बातचीत। महाराष्ट्र में सहमति बनने पर दिल्ली नेतृत्व लगाएगा अंतिम मोहर, पहले महाराष्ट्र बनेगी सहमति, फिर हाईकमान का फैसला होगा। पीएम मोदी जापान के पीएम से मुलाकात करेंगे सुबह 10 बजे, राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत, सुबह 11:30 बजे हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी और जापान की पीएम ताकाइची के बीच व्यापार, सेमीकंडक्टर, खनिज, रक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा, 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य। भारत जापान बिजनेस फोरम में जापान के 150 से ज्यादा उद्योगपति लेंगे हिस्सा, दोनों देशों के बीच निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा। आज हैदराबाद हाउस में लगभग 1 बजे MOU पर हस्ताक्षर, शाम 3 बजे दिल्ली के ताज पैलेस होटल में बिजनेस फोरम का आयोजन। मॉनसून को लेकर मोदी सरकार का एक्शन प्लान, सूत्रों के हवाले से खबर, मंत्रालय को तैयारी करने के दिए गए निर्देश, अलिनो के कारण कम बारिश की आशंका। तीस दिन जेल में रहने पर जा सकती है PM CM की कुर्सी, संविधान संशोधन विधेयक पर JPC की रिपोर्ट तैयार, मॉनसून सत्र में पेश हो सकते हैं तीनों बिल, हंगामे के आसार। SP कार्यालय में आज विशाल सिख रैली, सुबह 11 बजे अखिलेश यादव की मौजूदगी का आयोजन, सिख समाज न्याय यात्रा का समापन भी पार्टी कार्यालय में होगा। TMC के बागी ऋतव्रता गुटका 10 सदस्य प्रतिनिधिमंडल आज ECI से करेगा मुलाकात, राजनीतिक पहचान और चुनाव चिन्ह पर अपनी दलीलें रखेगा। बंगाल में आज कैबिनेट के सामने UCC ड्राफ्ट बिल पेश होगा, अगस्त विधानसभा सत्र में UCC विधेयक लाने की तैयारी। UPTET परीक्षा आज से 60 जिलों के 955 केंद्रों पर, 2 से 4 जुलाई तक 5 पालियों में होगी परीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, दिल्ली और यूपी में 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी। राष्ट्रीय राजमार्ग 148 पर 6 लेन सड़क सुरंग निर्माण को मंजूरी, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी ये सड़क। करीब 7,000 करोड़ की लागत से पूरा होगा 8 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश को भी मिली केंद्र सरकार के विकास की सौगात, यूपी में नेशनल हाईवे 34 के कानपुर कबराई सेक्शन के निर्माण को मंजूरी। 4 से 6 लेन वाला होगा ये 117 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल सेक्शन, 7,000 करोड़ से ज्यादा होगी इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत। व्हाट्सएप के यूजर्स फीचर्स की जांच करेगी सरकार, का टेलीग्राम की तरह गलत इस्तेमाल की आशंका, नए फीचर्स में यूजर नेम से होगी चैट। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार की सख्ती, मेटा कंपनी को भेजा नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब, बिना मंजूरी भारतीय फीचर लॉन्च नहीं होगा। नीट PG परीक्षा 2026 की तारीख का ऐलान, 30 अगस्त को होगा एग्जाम, रजिस्ट्रेशन शुरू। NBEMS PG 2026 परीक्षा के लिए जारी की एडवाइजरी, सेंटर आवंटन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आधार पर नहीं होगा, फॉर्म सबमिशन के बाद बदलाव नहीं होगा। मोहन भागवत का बयान, विभाजन के बाद भारत आए लोग शरणार्थी नहीं बल्कि मातृभूमि और धर्म के लिए संघर्ष करने वाले योद्धा हैं। अमरनाथ यात्रा के बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार खत्म, हर्षोल्लास के साथ पहला जत्था जम्मू के लिए रवाना, सुबह 4:30 बजे भगवती नगर यात्री निवास से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों के जत्थे को दिखाई हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा के लिए आस्था और उत्साह से खिले श्रद्धालुओं के चेहरे, जम्मू में आज दोपहर तक कश्मीर घाटी पहुंचेगा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था, कल बालटाल और पहलगाम मार्गों पर बेस कैंप से शुरू होगी यात्रा, इस बार 57 दिन तक चलेगी दिव्य यात्रा, 28 अगस्त को होगा समापन। अमरनाथ यात्रा के देश विदेश से जम्मू कश्मीर पहुंचे श्रद्धालु, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और RFID प्रक्रिया जारी, जम्मू कश्मीर में पूरे यात्रा रोड पर बनाए गए कई ट्रांजिट कैंप श्रद्धालुओं के रुकने और खाने पीने की भंडारे के जरिए व्यवस्था। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे लगाए हैं। ऑपरेशन शिवा के तहत होगी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, कमांडोज की तैनाती और मल्टीलेयर सुरक्षा का विशेष इंतजाम। अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे, बुलेट प्रूफ वाहन और 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों और कंपनियां सुरक्षा में लगाई गई। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पेट्रोल और डीजल वाहनों का दौर धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी। राजधानी में लागू हुई नई ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी 2.25 लाख रुपए तक। एक शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक दोपहिया पहले साल अधिकतम 30,000, दूसरे साल 20,000 और तीसरे साल 10,000 रुपए तक की सब्सिडी। नई नीति के तहत दिल्ली में खरीदे और रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों को जीवन भर के लिए 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से नीचे सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक, सिर्फ CNG, EV, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों को छूट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए नई हवाई सेवाओं की सौगात, 11 और शहरों के लिए उड़ानें शुरू। अब नोएडा एयरपोर्ट से देश के 16 शहरों में उड़ान, 15 जून से हुई थी यात्री सेवाओं की शुरुआत। तीर्थयात्रियों के लिए रेलवे के सिकंदराबाद से 2 भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का ऐलान। अयोध्या, काशी, रामेश्वरम समेत कई तीर्थों पर जा सकेंगे भक्त। नैनीताल में ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए बड़े फैसले, 1 अगस्त से मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा बैन। जबरदस्त बारिश के बाद मुंबई के पास समंदर में आ सकता हाईटाई, 14 फीट ऊंचाई तक उठ सकती है लहरें। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश, मुंबई में मूसलाधार बारिश का असर, दादर स्टेशन, कुर्ला ईस्ट और प्रभा देवी से जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंबई में मूसलाधार बारिश से दादर से हिंदू कॉलोनी में जल भराव, लोगों की आवाजाही ठप। नागपुर में मानसून की धमाकेदार एंट्री, मूसलाधार बारिश से गर्मी में राहत, कई इलाकों में जल भराव। पालघर में मूसलाधार बारिश के बीच मकान की दीवार गिरी, मलबे में दबकर महिला की मौत। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट, बारिश से कई संवेदनशील जगहों पर भूस्खलन की संभावना। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा में गुरेज में फिल बादल फटा, इलाके में अफरा तफरी। मूसलाधार बारिश से सिंथन टॉप पर भूस्खलन, NH 244 बंद, सड़क बहाल करने में जुट गया है प्रशासन। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गुलाब कोटी के पास धंसी सड़क, मलबा आने के कारण बंद हुई आवाजाही। उत्तराखंड के मॉनसून का कहर देखा जा सकता है, कई जिलों में भारी बारिश, हाईवे बंद, स्कूलों की छुट्टी, आपदा से जनजीवन प्रभावित। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश, अलकनंदा नदी का बड़ा जलस्तर, नदी किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे स्थित सभी घाट पानी में डूबे, किसी भी आपात स्थिति के लिए प्रशासन अलर्ट पर। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट, लोगों से नदियों, नालों और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों में जाने से बचने की अपील। अरुणाचल प्रदेश के कई पान्योर जिले में दौरे में शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। हिमाचल के लगभग सभी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज, अगले 4 से 5 दिन तक पूरे प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना। शिमला में हुई रात की बारिश, तापमान में गिरावट से पहाड़ों पर छाई धुंध। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट से लोगों को हो रहा है ठंड का एहसास। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की तुलेल घाटी में बादल फटने से खेती की जमीन और मवेशियों को नुकसान, अचानक आई बाढ़ में बहा जमीन का बड़ा हिस्सा। जम्मू कश्मीर के रजौरी में जमकर बारिश, कई जगहों पर हुआ भूस्खलन। डोडा में बादल फटने से सड़कों पर आया मलबा, कई गांवों का संपर्क टूटा, फसलों को भारी नुकसान। जलगांव में मशहूर विठल रुक्मणी संस्थान लगी भीषण आग, काफी अफरा तफरी, बुझाने में फायर टीम तैनात। मनाली में अटल टनल से निकलते अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो बैरिकेड तोड़कर निर्माणाधीन पिलर में जा धसी, राजस्थान में युवक की मौत, यूपी में 3 साथी घायल। ग्रेटर नोएडा में निजी कंपनी में भीषण आग, दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अहमदाबाद में 22 फूड पैकेट में 4 करोड़ रुपए के गांजे के साथ महाराष्ट्र का व्यक्ति गिरफ्तार, बैंकॉक से ड्रग्स लाने की साजिश नाकाम। कानपुर में लव जिहाद का बंधक बनी लड़की को छुड़ाने पहुंची पुलिस, आरोपी के कब्जे में एक की जगह मिली 2 हिंदू लड़कियां। कानपुर में सड़क पर जोरदार हंगामा, महिला की मारपीट का वीडियो वायरल। बनासकांठा में युवक की अचानक हार्ट अटैक से मौत, कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक गिरा। लखनऊ पुलिस को कामयाबी, फेक इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 119 लोग हिरासत में। विकासनगर में पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आई कार, क्षतिग्रस्त कार सवार बाल बाल बचा। भारत इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज से पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ा, नहीं निकल पाया कोई नतीजा। इंग्लैंड के चेस्टर में ली स्ट्रीट में खेला गया मुकाबला, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 189 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा, कप्तान श्रेयस अय्यर ने लगाया अर्धशतक, श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंद में 59 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला डेब्यू करने का मौका, 4 जुलाई को मैनचेस्टर में होगा दूसरा मैच। अब आज जापान की प्रधानमंत्री के भारत दौरे की जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है और इसे भारत जापान संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
1: भारत और जापान के रिश्तों को नई मजबूती देने के लिए सनाए ताकाइची भारत पहुंची तो हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ताकाइची अपने इस दौरे में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी और 16वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। अपने भारत दौरे को लेकर ताकाइची ने कहा कि ये उनकी भारत की पहली यात्रा है और वे पीएम मोदी के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री के भारत आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि उन्हें ताकाइची की मेजबानी करने में खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि वो भारत जापान की खास रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और गहरा करने के साथ ही इंडो पैसिफिक और उससे आगे शांति और स्थिरता के लिए साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने के मकसद से सार्थक बातचीत के लिए उत्सुक हैं। इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत जापान की 16वीं वार्षिक शिखर बैठक है, जिसकी संयुक्त अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सनाए ताकाइची मिलकर करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा, निवेश, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही दोनों देश इंडो पैसिफिक पर अपने साझा विजन के तहत सहयोग की समीक्षा भी करेंगे। इस बैठक में दोनों देश अब तक हुए सहयोग की समीक्षा करेंगे और भविष्य की साझेदारी का नया रोडमैप तैयार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: व्हाट्सएप में एक यूजर नेम फीचर जोड़ा गया, हालांकि अभी ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसे लेकर बवाल है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मीटा को नोटिस भेजकर इस फीचर को रोकने के लिए कहा है।
1: सोशल मीडिया ऐप सरकार के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। व्हाट्सएप ने भी एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस फीचर का नाम है यूजर नेम। इस फीचर की खासियत है कि जो लोग अपना फोन नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो यूजर नेम शेयर करके कनेक्ट हो सकते हैं, यानी बिना फोन नंबर दिखाए व्हाट्सएप पर चैटिंग हो सकेगी। व्हाट्सएप का गोपनीय पहचान वाला ये फीचर भारत सरकार की कड़ी निगरानी में है। सरकार ने कंपनी से 3 दिन के अंदर इस फीचर की पूरी जानकारी भी मांगी है। नोटिस में कहा गया है कि केंद्र को आशंका है कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग हमले, डिजिटल गिरफ्तारी और घोटालों में वृद्धि हो सकती है। सरकारी विभागों, बैंकों और अन्य संस्थानों से मिलते जुलते नकली यूजर नेम का दुरुपयोग लोगों को धोखा देने के लिए किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने मीटा से पूछा है कि ऐसे मामलों में फर्जी अकाउंट कैसे रोके जाएंगे, अपराधियों की पहचान कैसे होगी और कानून लागू करने वाली एजेंसियां जरूरत पड़ने पर जांच कैसे करेंगी। सरकार की सबसे बड़ी चिंता साइबर फ्रॉड और फर्जी पहचान को लेकर है। सरकार का मानना है कि ऐसे फीचर को बिना पूरी जांच के लॉन्च करना सही नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: 9 बज गए, मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: You hear it once and remember everything.
1: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
0: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, rule the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
3: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
4: वाह वाह वाह वाह।
3: सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
5: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
6: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
7: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
8: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
12: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
15: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
16: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
17: In association with
18: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
17: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
19: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हेल्पर आपने कहा था ये सबसे तेज है।
5: हाँ कहा था लेकिन ये तय कैसे होता है?
4: फ्रेश जब पूरा देश जवाब ढूंढ रहा होता है तब ये सवालों के बीच खड़े हो जाएंगे।
6: पहला भारतीय चैनल
4: ये हमेशा सबसे पहले पहुँचते हैं क्योंकि ये खबर का इंतजार नहीं करते खबर तक पहुँचते
7: हैं। मणिपुर के उस ग्राउंड जीरो पर है
8: जगह जगह लाक्षागृह चल रहे हैं जिनसे आपको खबरदार करने के लिए आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है।
9: बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रपति पुतिन आज तक पर आने के लिए।
4: सिर्फ अनुभव उससे ज्यादा भरोसा।
9: आज तक की खबर का असर हुआ है
4: हर दिन कमाया जाता है।
10: क्या ये आपके ऑपरेटिव्स हैं?
4: नहीं ये भारत के ऑपरेटिव्स हैं।
10: अल्फा अल्फा को पहचानते हैं।
11: भारत के अल्फा जर्नलिस्ट भारत के सबसे बड़े अल्फा न्यूज नेटवर्क पर।
12: पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की ये तस्वीरें आस्था के समंदर में तूफान पैदा कर रही हैं। बम बम भोले और महादेव के जयकारे पहाड़ों से टकराकर गूंज रहे हैं। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र गुफा के दर्शन किए और प्रथम पूजा की। मंत्रोच्चारण के साथ होने वाली इस पूजा को हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा का शुभारम्भ माना जाता है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। शंभू बैरियर से लेकर माधोपुर तक पंजाब की सीमा में आने वाले प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा नाकों की संख्या बढ़ा दी गई है। हर वाहन की गहन जांच की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है।
13: अमरनाथ की सुरक्षा को लेकर के बड़े स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से तैयारियां की गई हैं। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है। मैं बालटाल के उस रूट पर मौजूद हूं जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये वैली क्यूईटी के कमांडो हैं जो कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं सड़कों पर और किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
12: NH-44 जहां पर अमरनाथ यात्रा के यात्री गुजरेंगे वहां वैली क्वेट के जवानों को तैनात किया गया है। ड्रोन के जरिए भी चारों तरफ निगरानी की जा रही है। टूरिस्ट कश्मीर घाटी और डल लेक घूमने के लिए आ जाते हैं लिहाजा CRPF ने ऑपरेशन डल चलाया है। बाबा बर्फानी के दर्शनों की आस लिए अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा और यात्रा को सुगम बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

चढ़ावा चोरी की जांच की जद में ट्रस्ट के बड़े अधिकारी, पूछताछ में अनिल मिश्रा का आरोपों से इनकार, चंपत के टिन्नू पर फोड़ा ठीकरा, कई सवालों पर चुप्पी, गोपाल राव भी होंगे तलब। अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी में बम बम भोले की गूंज, एलजी ने रवाना किया श्रद्धालुओं का पहला जत्था, कल बालटाल और पहलगाम से होगी औपचारिक शुरुआत, रूट पर भारी सुरक्षा।

है पीएमसीएम की कुर्सी, संविधान संशोधक विधेयक पर जेपीसी की फाइनल रिपोर्ट तैयार, मॉनसून सत्र में पेश हो सकते हैं तीनों बिल, हंगामे के आसार। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची, पीएम मोदी ने कहा बहुत बहुत स्वागत। भारत जापान के जॉइंट विजन को मिल सकती है रफ्तार, 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य। जबरदस्त बारिश के बाद मुंबई के पास समंदर में आ सकता है हाई टाइड, 14 फीट की ऊंचाई तक उठ सकती हैं लहरें, दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। आज दिल्ली पर बादलों की मेहरबानी हुई। सुबह सुबह की बारिश ने गर्मी को दूर भगाने में थोड़ा बहुत इंतजाम कर दिया, लेकिन खबरों की गर्मी में कोई कमी नहीं आई है। आज सुबह में बात होगी जापान से आई दोस्त की। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकेयाची की मुलाकात होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी। हम बताएंगे कि दोस्ती की उड़ान कहां तक पहुंचेगी, और रुक करेंगे अयोध्या का, जहां जांच की आंच अब राम मंदिर ट्रस्ट तक पहुंच रही है। घेरे में ट्रस्टी आ रहे हैं, सवालों की बौछार हो रही है और FIR की मांग हो रही है। साथ ही दिखाएंगे नए बंगाल की नई तस्वीर, जिसे लोकतंत्र में बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। TMC सांसद के घर की खिड़की पर हुई अंडों और सड़े टमाटरों की बौछार, तो ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी को नई रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकेयाची के बीच एक अहम द्विपक्षीय वार्ता होगी। ये 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का मुख्य आकर्षण है, जिसमें रक्षा, व्यापार, निवेश, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों नेता विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे, साथ ही सप्लाई चेन को मजबूत बनाने, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लीन एनर्जी में सहयोग बढ़ाने पर भी मंथन करेंगे। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना समेत चल रही प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा होने की उम्मीद है। बताया ये जा रहा है कि दोनों देशों के बीच LNG आपूर्ति सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी मुहर लग सकती है। ऐसे समय में जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भू राजनीतिक चुनौतियां बढ़ रही हैं, भारत और जापान की यह बैठक रणनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, सबसे पहले तो यही समझाइए कि ये जो मुलाकात होगी, इसके सबसे अहम बिंदु कौन से रहेंगे और भारत को इस मुलाकात से क्या फायदा होगा?
1: अंजलि, आपने बादलों के मौसम का जिक्र किया, आपने कहा कि दिल्ली में आज मौसम सुहाना है। कई बार दोस्तों के आने से भी मौसम सुहाना हो जाता है, और जापान एक ऐसे दोस्त के तौर पर उभरा है जिसका भारत की आर्थिक प्रगति के अंदर भी और भारत के साथ आर्थिक साझेदारी में भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 20 दिन के अंदर दूसरी बार भारत और जापान के प्रधानमंत्री एक साथ बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनकी पिछली मुलाकात जापान के फ्रांस के एवियन में हुई थी, जब G7 शिखर बैठक के दौरान दोनों नेता वहां पर थे, और उसके बाद अब 16वीं भारत जापान शिखर बैठक के लिए दोनों नेता आज फिर मुलाकात करेंगे। आर्थिक साझेदारी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगी। इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत के क्षेत्र के अंदर नया आर्किटेक्चर क्या हो, उसके लिहाज से भी दोनों की ये मुलाकात महत्वपूर्ण होनी है। इसके अलावा कारोबार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकेयाची को पहले गुवाहाटी जाना था, लेकिन कुछ कारणों से वो गुवाहाटी नहीं जा पाई। लेकिन भारत के पूर्वोत्तर के इलाके के अंदर, जहां भारत विकास की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर भी जापान एक महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर उभरा है। आपने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, लेकिन करीब $3 अरब की जो अमोनिया, क्लीन अमोनिया परियोजना है, उसको लेकर भी भारत और जापान की कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। इसके अलावा दुनिया में आर्थिक दादागिरी ना हो, खास तौर पर हिंद प्रशांत के क्षेत्र के अंदर आर्थिक दादागिरी का आर्किटेक्चर तोड़कर एक ज्यादा मुक्त, एक ज्यादा सहयोगी, एक ज्यादा जो इंक्लूसिव जो आर्किटेक्चर है उसको कैसे बनाया जा सकता है, इस मुद्दे को लेकर भी जापान की प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में ये मुलाकात होनी है। भारत और जापान करीब करीब $27 अरब का कारोबार करते हैं, लेकिन आप जानती हैं कि पिछली मुलाकातों के दौरान ये तय हो चुका है कि जापान भारत के अंदर 10 ट्रिलियन येन यानी करीब करीब $61 अरब का निवेश करेगा अगले 10 सालों के भीतर। तो उस निवेश के अंदर क्या क्या चीजें बढ़ाई जा सकती हैं, चाहे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे

सकती है। तो आइए सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। जापान की प्रधानमंत्री जो भारतीय दौरे पर हैं, वो इस वक्त राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी है। वहां उनका सेरेमोनियल वेलकम हो रहा है, औपचारिक स्वागत। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जापान की प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी।

0: इस वक्त हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं राष्ट्रपति भवन से सेना के तीनों अंगों की तरफ से दी जा रही है सलामी। जापान की प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के साथ
1: सेना सम्मान जाट निरीक्षक जाट हजरत

0: तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से सेरेमोनियल वेलकम की, जो खास तौर पर राज्य के स्टेट के जो गेस्ट होते हैं, अतिथि होते हैं, उनके लिए।
1: Thank you.

0: तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं सेरेमोनियल वेलकम। भारत की सेनाओं के तीनों अंगों की सशस्त्र खूबसूरती, उनका संचालन एक साथ एकाग्रता से आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारी अतिथि जापान के प्रधानमंत्री। तो चलिए सीधा रुक करते हैं एक बार फिर से हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, एक सेरेमोनियल वेलकम और वो भी भारतीय सेना के तीनों अंगों के साथ हम यहाँ सामने देख सकते हैं। एक स्टेट गेस्ट के लिए ये सेरेमोनियल वेलकम रखा जाता है, पहले तो इसकी क्या अहमियत होती है ये समझाएं, साथ में आगे का आज का कार्यक्रम क्या रहेगा ये भी बताएं।
1: जी, आपने गौर किया, कदम कदम बढ़ाए जा की धुन बज रही है और उस पर कदम ताल करते हुए सशस्त्र गार्ड हैं, सम्मान गार्ड हैं, वो कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस गाने को जिसे भारत के अंदर जोड़ा जाता है, वीर स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सेना है और वो सत्ता सुभाष चंद्र बोस जिनके अति आवश्यक अभी जापान के रेंकोजी टेम्पल में बहुत सारी चीजें डिप्लोमेसी में बहुत मानते रहते हैं और कहीं ना कहीं आप इन प्रतीकों के जरिए, इन संकेतों के जरिए अपने बताने करते हैं कि आपका आना हमारे लिए है, ये सम्मान, ये जो लाल कालीन पर किया जा रहा स्वागत है, ये सम्मान कारक है, ये उस दोस्ती को भी सलामी। और आप देखें कि भारत की आर्थिक प्रगति के अंदर जापान एक अच्छी किस तरह खड़ा रहा है। बीते 70-75 सालों की हमारी इस यात्रा के अंदर भारत और जापान का जो सहयोग है उसने बहुत सारी चीजें दी है और इनफैक्ट अगले साल 2027 के अंदर भारत और जापान अपने राजनयिक संबंध, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 साल पूरे करने जा रहे हैं। उसके जश्न की शुरुआत भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाई ताकाई जी की इस मुलाकात के साथ होनी है, आगे का कार्यक्रम भी बनना है। लेकिन आप देखें, भारत के अंदर पहली पैसेंजर कार मारुति सुजुकी से लेकर, भारत की पहली बुलेट ट्रेन से लेकर, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जापान और भारत मिलकर क्या कर सकते हैं, ये तमाम मुद्दे आज बातचीत की मेज पर होंगे। एक परस्पर सम्मान प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्रियों के बीच में रहा है। इनफैक्ट आपको याद होगा, चाहे शिंजो आबे हो, चाहे फुमियो किशिदा हो या सनाई ताकाइची हो, जापान के पिछले तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का बहुत अच्छा संबंध भी रहा है। और इनफैक्ट यदि आप ये भी देखें कि न केवल 20 दिनों के अंदर भारत और जापान के प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि अगर आप उससे कड़ियों को जोड़ें तो इनफैक्ट 20-22 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी क्वाड के तमाम सहयोगियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। फ्रांस में उनकी मुलाकात न केवल सनाई ताकाइची और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई, बल्कि अगले कुछ दिनों के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं, जहां एंथनी अल्बनीजी जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है उनके साथ मुलाकात होनी है। माना जा रहा है कि क्वाड शिखर सम्मेलन की बैठक के लिए भी भारत तैयारी कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल पटल के ऊपर इस समय चल रही हैं। लेकिन भारत और जापान की यदि हम आर्थिक साझेदारी की बात करें तो उसके लिहाज से ये भारत और जापान की जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है, जो वार्षिक बैठक है दोनों नेताओं के बीच की, वो काफी अहमियत रखती है। ऐसे समय में जब भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ चिंता की लकीरें उभर रही हैं, $27 अरब के द्विपक्षीय व्यापार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। भारत में जापान ने जो करीब $61 अरब यानी 10 ट्रिलियन येन के निवेश का वादा किया था उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ताकाइची ने हाल के दिनों में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिनको लेकर काफी जो विवादों का बवंडर भी खड़ा हुआ था, चाहे वो ताइवान को लेकर उनका बयान हो या चीन को लेकर की गई उनकी टिप्पणियां हो, उसके बाद उनका ये भारत आना, हिंद प्रशांत के क्षेत्र के अंदर आगे का आर्किटेक्चर कैसे बनाया जा सकता है, ऐसे में भारत और जापान मिलकर क्या कर सकते हैं, उसके लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण होगी। यहाँ के बाद यानी राष्ट्रपति भवन के बाद हैदराबाद हाउस जो है यहाँ से कुछ ही किलोमीटर के पास ले पर, वहां पर दोनों प्रधानमंत्रियों की आज की मुलाकात होनी है। करीब 3 दिन का ये दौरा है, कल शाम पहुंची सनाई ताकाइची जापानी प्रधानमंत्री, आज उनके आधिकारिक एंगेजमेंट है, एक लंबा चौड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी वो लेकर आई है, यानी प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल की बातचीत के बाद में एक बिजनेस इवेंट शाम को होगा, उसे भी वो संबोधित करेंगी। जापान की बहुत सारी कंपनियां भारत के अंदर मौजूद हैं, इनफैक्ट दिल्ली से थोड़ी ही दूर के ऊपर राजस्थान के अंदर जो जापानी कंपनियों का SEZ है वो भी मौजूद है। जापान भारत में और भी निवेश करना चाहता है, लेकिन एक और बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है अंजलि जापान और भारत की दोस्ती के अंदर जिसमें एक नया आयाम लगातार तेजी से जुड़ रहा है, और वो ये है कि इस समय जापान एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। उसके पास लोगों की कमी हो रही है, जो उसकी आबादी है वो लगातार बूढ़ी होती जा रही है, काम करने वाले लोगों की उसको जरूरत है, और शायद यही भारत की ताकत है कि भारत के पास में ह्यूमन रिसोर्स काफी है, मानव संसाधन का हम निर्यात कर रहे हैं दुनिया भर के अंदर, तो कैसे जापान के काम कारोबार के अंदर भारतीय कामगार, भारतीय पेशेवर वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, उसके लिहाज से भी आगे कैसे चीजें बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि करीब करीब 5 लाख पेशेवर जापान के अंदर मिलकर काम कर सकें, वहां आ सकें, जापानी अर्थव्यवस्था में सहयोग कर सकें, इसको लेकर दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ ही था। लेकिन इसमें कैसे
0: जी
1: एक परस्पर सहयोग बढ़ाया जा सकता है, कैसे भारतीय पेशेवर ट्रेन भी हो सकते हैं, क्योंकि भारत को स्किल की जरूरत है और भारत स्केल दे सकता है।
0: बिल्कुल, और पिछले कुछ FTAs जो हुए उनमें हमने देखा भी है कि इस तरह से वर्कफोर्स का आदान प्रदान किया जा सके, इस पर कुछ बातें हुई हैं। लेकिन आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे, जो पिछले कुछ महीनों में हमने देखा वो सबसे बड़ा संकट ऊर्जा का रहा है, और ऊर्जा को लेकर के यहाँ जापान के साथ किस तरह की बातचीत हो सकती है भारत की?
1: देखिए, इस मामले में भारत और जापान दोनों ही एक नाव में सवार हैं, क्योंकि दोनों ही एनर्जी डेफिशिएंट इकोनॉमीज हैं, उनको दोनों को ऊर्जा की जरूरत है, और इनफैक्ट दोनों ही ऊर्जा का बड़ा आयात करते हैं। जापान भी अपनी करीब 80 से 85% ऊर्जा जरूरतों का आयात करता है, और उसका भी जो ऊर्जा आयात है वो अधिकतर इसी इलाके से, यानी जो खाड़ी के देश है वहीं से आता है। भारत के साथ भी कमोबेश यही स्थिति है। ऐसे में भारत और जापान मिलकर ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको कैसे इंश्योर कर सकते हैं, कैसे सिक्योर कर सकते हैं। इनफैक्ट भारत और जापान ने मिलकर एशियन ग्रोथ कॉरिडोर की भी एक परिकल्पना रची थी, जिसके अंदर किस तरह से भारत और जापान मिलकर जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, साथ ही नए पोर्ट किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो अफ्रीका का इलाका हो या हिंद महासागर का इलाका हो, वहां पर कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, इन तमाम विषयों के ऊपर भी चर्चा होगी। भारत और जापान के बीच में सीधे तौर पर तो कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन आप जानती हैं अंजलि कि इस एनर्जी संकट का, इस ऊर्जा संकट का एक बड़ा फॉलोआउट हुआ है फर्टिलाइजर संकट के तौर पर, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों के साथ ही फर्टिलाइजर उत्पाद भी आते हैं। तो इसी लिहाज से भारत और जापान करीब $3 की क्लीन अमोनिया जो प्रोजेक्ट है उस पर भी मिलकर काम कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि बाद वो आगे।
0: जी प्रणय, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब बढ़ रहे हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच लगातार गहराती जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूछताछ में ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने अपनी भूमिका से साफ इनकार करते हुए पूरी जिम्मेदारी गणना कर्मी और टिनू यादव पर डाल दी है। हालांकि उन्होंने निगरानी में चूक की बात जरूर स्वीकार की है। इसी बीच मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव के बयान भी जल्द दर्ज किए जा सकते हैं। इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपियों से पूछताछ भी तेज हो गई है, और पुलिस ने एक प्रमुख आरोपी को 48 घंटे की कस्टडी रिमांड उसकी मांगी है, जबकि चढ़ावे की गिनती की निगरानी करने वाले बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ चुकी है। तो रामदान की चोरी में दूध का दूध पानी का पानी आखिर कब होगा, बस इसी का इंतजार है। पुलिस के बाद SIT फिर से एक्शन में आ रही है। आज ही SIT लखनऊ से अयोध्या पहुंच रही है। सवाल ये है कि क्या ट्रस्ट घेरे में आएगा, क्या चंपत, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर भी कोई केस होगा?

0: ये 8 आरोपी हैं जिन्हें चढ़ावा चोरी केस में पकड़ा गया है, लेकिन एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है बड़ी साजिश की तस्वीर सामने आ रही है। यही वजह है कि एसआईटी जांच का समय 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर मिली खामियों को देखते हुए एसआईटी ने पिछले 5 साल में मंदिर ट्रस्ट की ओर से कराए गए ऑडिट की जांच का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में एसआईटी को ऐसे सबूत मिले हैं जिससे बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का शक हो रहा है। माना जा रहा है कि इससे अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसआईटी के तीनों अधिकारी आज बैठक कर सकते हैं जिसके बाद वो अयोध्या जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत दान किए गए जेवरात का ब्यौरा देने में होगी, क्योंकि ट्रस्ट ने इसका ऑडिट ही नहीं कराया है। वहीं निर्माण कार्य में भी कमीशन के आरोप हैं। इसमें अनिल मिश्रा पर शिकंजा कस सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के कौशलपुरी स्थित श्याम साधनालय योग केंद्र में उसके कमरे से राम राज्य कोष लिखा एक संदूक मिला है। उस पर QR कोड भी लगा है। आज तक ने कल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी।
1: योगा केंद्र आपको श्याम साधनालय योगा केंद्र है और हम इस योगा केंद्र में दाखिल होंगे और आपको लेकर चलेंगे इस योगा केंद्र में और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ इस योगा केंद्र में है। एक रहस्यमयी बक्से की भी बात यहां हो रही है। ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूं जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ये एक रहस्यमयी बक्सा है। आप अगर देखें तो यहां पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहां पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहां पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहां पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
0: पुलिस और जांच एजेंसी अब ये पता लगा रही हैं कि संदूक में जमा होने वाला धन कहां से आता था और उसका राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण से कोई संबंध है या नहीं। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि संदूक से कोई नकदी बरामद हुई है या नहीं। पुलिस QR कोड से लेनदेन की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस ने कल आरोपी लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे के पैतृक घरों पर छापा मारा। करीब 3 घंटे चली छानबीन के दौरान परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए। सूत्रों का कहना है कि दोनों के घरों से नकदी, जेवर और संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। पुलिस दोनों के माता पिता को साथ लेकर गई है। सूत्रों के मुताबिक लवकुश और करुणेश ने अहम जानकारियां दी थी। बताया था कि चोरी की रकम उनके घरों में रखी है, इसलिए पुलिस ने कल उनके घरों पर एक साथ छापा मारा। लवकुश का घर अयोध्या के रुदौली और करुणेश का घर खंडासा में है। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
2: और बात अमरनाथ यात्रा की। बम भोले के जय घोष के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। जम्मू के भगवती नगर यात्रा आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र गुफा के लिए रवाना हो गया है। हजारों श्रद्धालु 2 प्रमुख मार्गों बालटाल और पहलगाम के जरिए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। कल से दोनों मार्गों से पवित्र अमरनाथ यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। इसी दिन श्रद्धालुओं को इस वर्ष पहली बार प्राकृतिक हिम शिवलिंग के दर्शन भी होंगे। यात्रा को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरे यात्रा मार्ग पर तैनात हैं, जबकि ड्रोन, CCTV और हाईटेक निगरानी व्यवस्था से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
6: We know that Hamas has agreed to a deal at some point. And
5: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
2: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
1: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना? अर्ज किया है, पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
3: वाँ वाँ वाँ वाँ।
1: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
4: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
10: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
11: हमने तब भी सवाल किया था,
12: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
11: हम आज भी सवाल करते हैं,
12: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
11: ऑपरेशन अग्नि,
12: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
11: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
13: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

प्रधानमंत्री तकाईची का पीएम मोदी ने किया शानदार स्वागत। राष्ट्रपति भवन में समारोह। भारत जापान के जॉइंट विजन को मिलेगी नई रफ्तार। 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य। चढ़ावा चोरी की जांच की जद में ट्रस्ट के बड़े अधिकारी। पूछताछ में अनिल मिश्रा का आरोपों से इनकार। चंपत के टिनू पर फोड़ा ठीकरा। कई सवालों पर चुप्पी। गोपाल राव भी होंगे तलब। अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी में बम बम भोले की गूंज। एलजी ने रवाना किया श्रद्धालुओं का पहला जत्था। कल बालटाल और पहलगाम से होगी औपचारिक शुरुआत। रूट पर भारी सुरक्षा। तीस दिन जेल में रहने पर जा सकती है पीएम सीएम की कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी की फाइनल रिपोर्ट तैयार। मॉनसून सत्र में पेश हो सकते हैं तीनों बिल। हंगामे के आसार। जबरदस्त बारिश के बाद मुंबई के पास समंदर में आ सकता है हाई टाइड। 14 फीट की ऊंचाई तक उठ सकती है लहरें। दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश।

0: है आप सभी का इस बुलेटिन के इस हिस्से में बात करेंगे मॉनसून की दस्तक और उसके साथ आई मुसीबत की। देश के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय है, जबरदस्त बारिश भी हो रही है। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में फ्लैश फ्लड आ गया है, तो वहीं मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी जबरदस्त बरसात हो रही है और इस मॉनसून के पहले टेस्ट में ही मुंबई फेल हो गई। जगह जगह पानी भर गया, जल निकासी के सारे दावे इसी पानी के साथ बिल्कुल बह गए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ों की। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश हो रही है, भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में फ्लैश फ्लड आ गया है। श्रीनगर, डोडा, कुपवाड़ा, यहां सब पानी के साथ मलबा भी आ रहा है। गनीमत यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन मॉनसून ने अपने तेवर दिखा दिए हैं।
1: उत्तर भारत में मॉनसून की पहली बारिश में ही पहाड़ों की हालत खराब हो गई है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक मूसलाधार बरसात हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी जम्मू कश्मीर में दिख रही है, जहां कई इलाकों में फ्लैश फ्लड ने मुसीबत बढ़ा दी है। ये कुपवाड़ा की तस्वीरें हैं। तेज बारिश के बाद अचानक मलबों का ढेर नदी की धारा में बहने लगा। गनीमत रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। घाटी के छोटे मोटे नाले इन दिनों उफान पर है। ऊंचाई वाले इलाकों से तेजी से पानी आता है और सब कुछ बहा ले जाता है। मॉनसून भले ही उत्तर भारत में देरी से पहुंचा हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों में तबाही शुरू हो चुकी है। ये जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीरें हैं, जहां बादल फटने से तबाही मची है। किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे बंद हो गया है। डोडा में कलाल किसर क्षेत्र में ये बादल फटा है, जिसके बाद फ्लैश फ्लड के हालात है। अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है भलेसा इलाका, जहां अंदरूनी गांवों को जोड़ने वाली कई सड़कें कट गई हैं। बाढ़ का पानी अपने साथ कीचड़ और मलबा बहा कर लाया है, जिससे संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें बांदीपुरा के गुरेज वैली की हैं, जहां भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बनी। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के कारण नालों में तेज पानी का बहाव आया, जो अपने साथ कीचड़ और लकड़ी का मलबा बहा कर लाया। इससे धाराओं में अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और पानी कुछ रिहायशी इलाकों और खेतों में घुस गया। ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं, जहां पहाड़ों से पानी की तेज धारा निकली और बाजारों तक फैल गई। अचानक बाजार में आई इस आफत से अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पानी की तेज धारा में सामान बहने लगे। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी बादलों ने मुसीबत बढ़ा दी है। मॉनसून की पहली बरसात से चंबा के पांगी में खीसल में बादल फटा। अचानक तेज बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड आ गया, जिसकी वजह से कई संपर्क मार्ग बंद हो गए। सड़कों पर मलबा आ गया है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
0: और अब बात मुंबई के मॉनसून की दस्तक की करेंगे। मुंबई समेत आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मॉनसून की पहली बौछार में ही मुंबई डूबने लगी है। बीती रात से ही मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, ठाणे, वसई, पालघर में भी यही हाल है।
2: ये मॉनसून के दस्तक की गवाही है, ये मुंबई मॉनसून का आगाज है। ये तस्वीरें बताने के लिए हैं कि माया नगरी मुंबई बिल्कुल नहीं बदली। हर बार बारिश में डूबती थी, इस बार फिर डूबेगी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बादल जमकर बरस रहे हैं। मुंबई में तो पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है और आने वाले दिन भी ऐसे ही रहने वाले हैं।
3: क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के साइन स्थित गांधी मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं ये गांधी मार्केट की सड़कें जो है बिल्कुल नदी में तब्दील हो गई है। गाड़ियां को काफी प्रेशर लगा करके आगे की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करेंगे तो उनकी गाड़ियां बंद हो जाएगी और एक बड़ी परेशानी हो जाएगी। आपको बता दें मुंबई और आसपास के इलाके में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते हालांकि आज जो है मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: मुंबई में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई है। सांता क्रूज में 165.9 मिलीमीटर, जुहू एयरपोर्ट पर 164.5 मिलीमीटर, विक्रोली में 163 मिलीमीटर, बांद्रा में 141.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
3: तस्वीर में देख सकते हैं अंधेरी सबवे और इस पानी के तेज बहाव को देख सकते हैं कि कितना तेज पानी है। कोई भी आदमी जो है आमतौर पर इस तेज बहाव में रुकना मुश्किल हो जाएगा, वो अपनी किसी तरह ना तो गाड़ी लेकर जा सकता है ना ही पैदल जा सकता है। लिहाजा एहतियातन मुंबई पुलिस ने अंधेरी सबवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। तस्वीर में देख सकते हैं मुंबई पुलिस के जवान है, वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं मुंबई पुलिस की यहां पर गाड़ी भी लगी हुई है, जो लोगों को यहां से आगे ना जाने की हिदायत दिया जा रहा है, क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज है और यहां पर जो है मुंबई पुलिस के जवान यहां पर मौजूद है जो लोगों को सलाह दे रहे हैं।
2: वसई के पहाड़ी इलाके में इतनी बरसात हुई कि भारी भरकम गाड़ियां खिलौने की तरह बह गई। ये वसई का वागराल पाड़ा इलाका है, जहां पानी के तेज बहाव में दो गाड़ियां नाले में बह गई। गनीमत रही कि समय रहते कार सवार नीचे कूद गए। गाड़ी जब पानी में बहने लगी तो लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई पानी में उतरकर गाड़ियों को रस्सी से बांध सके। गाड़ियों को निकालने के लिए जेसीबी बुलानी पड़ी। बुलडोजर की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों वाहन निकाले गए। इस घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि झरनों और नालों के पास जाने से बचें। ये पालघर का महालक्ष्मी फ्लाईओवर है। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने इस फ्लाईओवर पर घुटनों तक पानी भर गया है। जलभराव की वजह से गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। फ्लाईओवर की दोनों लेन पर समंदर जैसा नजारा दिखा, जिसकी वजह से कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। महालक्ष्मी फ्लाईओवर पर जल निकासी की व्यवस्था कैसी है, इसको इसी से समझिए कि मानसून की पहली बारिश में ही फ्लाईओवर पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। महाराष्ट्र के अकोला जिले में भी भारी मानसून जमकर बरस रहा है। भारी बारिश की वजह से पूना नदी पर बने डैम का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया, जिसके बाद एहतियातन बांध के दरवाजे खोल दिए गए। डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली में लगातार हो रही भारी बारिश का असर स्कूलों पर भी दिखने लगा है। कल्याण का ये माध्यमिक विद्यालय बारिश में पूरी तरह से जलमग्न हो गया। स्कूल परिसर में कई फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने विद्यालय की छुट्टी कर दी। आज तक ब्यूरो।
0: और इस बीच बड़ी खबर मुंबई से ही आ रही है। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट है। समुद्र में 4 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठने का अलर्ट जारी किया गया है। आज मुंबई में 4.27 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। बारिश का अलर्ट पहले से ही है, तो आज समुद्र किनारे जाने से बचें। और सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी विद्या का। विद्या, इतनी ऊंची लहरें क्या मुंबई में इस मौसम में ये आम बात है, और कौन से तटीय इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा खतरा रहेगा?
4: जी देखिए, मौसम जो इस तरह का मानसून का जो होता है तो उससे पहले ही फिशिंग पर जो है बैन हो जाता है, तो इसलिए मौसम इस मौसम में समुद्र किनारे मछुआरे भी नहीं जाते हैं। अगर आप मैं दिखा दूं, देखिए अभी भी हाई टाइड का नहीं है, हाई टाइड शुरू नहीं हुआ है, लेकिन देख लीजिए किस तरह से एक चर्निंग सी दिख रही है समुंदर में। और इस समय जनरली मुंबई में काफ़ी सारे बोट्स जो हैं, अगर मॉनसून सीजन नहीं होता है तो यहाँ पर दिखते हैं, लेकिन ये सारे बोट्स हटा दिए गए हैं क्योंकि हाई टाइड में आपस में ही ये बोट्स टकरा के टूट सकते हैं। और यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हाई टाइड है, तेज़ हवाएं भी चल रही है, 50-60 के का अंदाज़ा बताया गया है, जिस गस्टी विंड्स होंगे इस स्पीड पे, तो जाहिर सी बात है लोगों को यही कहा गया है कि शोर से थोड़ा दूर रहें। तकरीबन 14 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं ऐसा बताया जा रहा है। और उस समय अगर तेज़ बरसात हुई, क्योंकि अगर आप देखिए मुंबई की जो टोपोग्राफी है वो ये है कि अगर, क्योंकि ये अगर जैसे ही समुद्र में पानी तेज़ ऊपर हाई टाइड आता है और उस समय तेज़ बरसात हो जाती है, तो मुंबई के अंदर, शहर के अंदर पानी भर जाता है। जिन नालों से निकासी होनी चाहिए, उसी नालों से समुद्र में पानी आने लगता है और यही वजह है कि जो निचले इलाके हैं उनमें पानी भर जाता है और यही वजह है कि मुंबई के लोगों को आज ऑरेंज अलर्ट के तहत अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कोशिश यही करें कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलें, लेकिन अगर बाहर निकल रहे हैं तो प्रिकॉशन के साथ निकलें।
0: शुक्रिया विद्या इस पूरी जानकारी के लिए। और दिल्ली एनसीआर में भी मॉनसून ने दस्तक दे दी है। आज सुबह दिल्ली में झमाझम बारिश हुई और अब मौसम विभाग ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि दिल्ली में भी मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। जुलाई के पहले हफ्ते में मॉनसून दिल्ली में प्रवेश कर गया है। लंबे इंतजार के बाद आया है मॉनसून और गर्मी से राहत मिल चुकी है और उम्मीद है कि ये राहत बरकरार रहेगी क्योंकि अब मॉनसून की एंट्री हो गई है। देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। उम्मीद यही है कि मॉनसून राहत देगा गर्मी से, लेकिन क्या मॉनसून जो अब तक डेफिसिट में चल रहा है उसमें कोई भरपाई हो पाती है या नहीं, ये नजर सबकी रहेगी। दिल्ली शहर में आज बारिश देखी गई, कई इलाकों में तेज बारिश भी देखी गई और दिल्ली एनसीआर के इलाके में मॉनसून की एंट्री का आगाज हो गया। तो ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आज सुबह की, जब दिल्ली में एनसीआर इलाके में नेशनल कैपिटल रीजन के इलाके में आज बारिश हुई है, लोगों को राहत मिली है गर्मी से। तापमान जो पहले 40 के पार था उसमें गिरावट आई है। बारिश क्या सस्टेन्ड रहती है, लगातार रहती है, लोगों को ये राहत बनी रहती है, ये जरूर इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल एक और रहता है, क्या बारिश अपने साथ मुसीबत लेकर आती है? क्योंकि कई बार देखा गया है दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद आसपास के इलाकों में जल जमाव हो जाता है, लेकिन अब तक जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अभी राहत ही है। बारिश हुई, बरसात हुई, बादल बरसे और राहत मिली।
5: दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही, तेज बरसात हो रही। हालांकि अभी ये कह पाना सही नहीं हुआ कि क्या ये मॉनसून है, लेकिन प्री मॉनसून एक्टिविटीज है, प्री मॉनसून गतिविधियां हैं, क्योंकि पश्चिम यूपी आसपास, हरियाणा, पंजाब के आसपास जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो आगे धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। तो दिल्ली में भी 24 घंटे के भीतर तो इसे दस्तक देनी थी, लेकिन प्राथमिक जानकारी जो कई इलाकों में नोएडा में देख रहे हैं तो झमाझम बारिश कई जगहों पर रुक रुक करके हो रही है। और इतना ही नहीं, दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के कई इलाकों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया था कि तेज बरसात भी होगी और उसी के साथ साथ ये पूरे दिन सिलसिला। तो आज सुबह जब आप उठेंगे तो आपको उमस नहीं मिली होगी, गर्मी नहीं मिली होगी। जो तापमान हर दिन 30 से 31 डिग्री हो रहा था, इस झमाझम बारिश के बाद कम से कम उसको राहत मिल गई होगी। तो आज सुबह आपको जो है कम से कम उस उमस भरी गर्मी से राहत मिली और पूरे दिन दिल्ली एनसीआर में अच्छा झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। नोएडा से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।
0: और अब बात गुजरात की करेंगे। गुजरात में मॉनसून ने दस्तक देते ही कई इलाकों में मुश्किलें भी बढ़ा दी। जूनागढ़ में शहर की सड़कों पर पानी ही भर गया, वहीं अमरेली में नदी नाले उफान पर आ गए। बारिश के बीच जूनागढ़ में कार रेस्क्यू करनी पड़ी। तो अमरेली में बाढ़ के पानी में फंसी बकरियों और पशुपालकों की जान बचाने के लिए ग्रामीणों ने मोर्चा संभाला।
6: मानसून की पहली बारिश और जूनागढ़ में हालात बिगड़ गए। सुबह से हुई बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला, सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी सामने आई जोशीपुरा अंडरब्रिज के पास, जहां बारिश के पानी ने रास्ता रोक दिया। पुल के नीचे करीब 5 फीट तक पानी भर गया। इसी दौरान एक कार पानी में फंस गई। कार फंसने की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया और कार को भी पानी से बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड ने आसपास के लोगों की मदद से कार को सुरक्षित तो निकाल लिया, लेकिन पहली बारिश ने जूनागढ़ की तैयारियों की पोल खोल दी। जल निकासी के सारे दावे कागजी निकले।
7: हम देख सकते हैं कि जो ये अंडरब्रिज है, 1 से 2 इंच बारिश में ही भर गया है और वो इसकी वजह से कि यहाँ के जो वो जो सूरज प्लांट है, वो गटर है, वो शासकों की बेदरकारी के वजह से, अधिकारियों की बेदरकारी से वो सब साफ सफाई नहीं हुई है और इससे वजह से ये जो पानी है वो निकल नहीं रहा है, उल्टा गटर का पानी ये अंडरपास में आ रहा है, थोड़ी सी बारिश में ये खाली नहीं हो रहा है।
6: जोशीपुरा अंडरब्रिज के अलावा भी शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। कुछ जगहों पर घुटने से ज्यादा पानी भरा रहा। सबसे ज्यादा दिक्कत दोपहिया सवारों को हुई। मानसून की पहली बारिश से जूनागढ़ के किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं।
0: जूनागढ़ में आज सुबह से जो बारिश हुई है, इसकी वजह से लोगों को गर्मी में राहत मिली है। आज पूरे दिन झमाझम बारिश होती रही। धीमी बारिश ने आज लोगों को खुश कर दिया। इसके साथ साथ जूनागढ़ में केशोद, पेशान और माल्या तीन तहसीलों में 3.5 इंच बारिश हुई, जिसने किसानों को भी खुश कर दिया, क्योंकि किसानों ने जो मूंगफली बोई थी उसको एक नया जीवन मिलने जा रहा है।
6: उधर अमरेली जिले में भी बादल जमकर बरसे। राजुल्ला, जाफराबाद, धारी, खंभा, वड़िया, बक्सरा और अमरेली समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई। राजुल्ला के चौतरा गांव में बारिश के बाद रायडी नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी दोनों किनारों तक पहुंच गया। अचानक पानी बढ़ने से नदी के बीचों बीच 15 से 20 बकरियां फंस गईं। बकरियों को बचाने की कोशिश में पशुपालक भी पानी के बहाव में खींच गया, लेकिन गांव वालों ने हिम्मत दिखाई। ग्रामीणों ने मिलकर पहले पशुपालक को सुरक्षित बाहर निकाला, फिर कड़ी मशक्कत के बाद बकरियों को भी नदी से बाहर निकाला। पहली बारिश में ही नदी का रौद्र रूप देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। फिलहाल गुजरात में मानसून की शुरुआत के साथ प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आज तक ब्यूरो।
0: हर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, in association with
9: Bharat ki apni electric.
10: What's going on, everyone? It's Bluff here, and we're driving through the states in the Bluff Mobile, and the best thing that we can do is play our favorite casino style games on Spin Quest. They have over 1,000 games, including live dealer blackjack and craps, with tons of slots and unlimited options. You can get a $30 coin pack for just $10 for new users. Sign up today. Go to SpinQuest.com right now.
11: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
12: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
8: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
9: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
8: Does.
0: अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच लगातार गहराती जा रही है। अब इस मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी भी कानूनी और जांच एजेंसियों के घेरे में आते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए आज पुलिस को तहरीर देने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ SIT ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूछताछ में ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपनी भूमिका से इनकार करते हुए पूरी जिम्मेदारी गणना कर्मी और टिन्नू यादव पर डाल दी है। इन सबके बीच टिन्नू यादव के भाई से आज तक ने खास बातचीत की है।
13: हमारे साथ इस वक्त टिन्नू यादव के भाई दिनेश यादव मौजूद हैं। प्रकरण चल रहा है, सारी जांच हो रही है, सगे भाई हैं। दिनेश जी, हम आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप क्योंकि साथ में पले बड़े हैं टिन्नू यादव के, भाई का क्या नेचर रहा, कैसे रहे?
14: भाई का नेचर बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, आज तक कोई एक मुकदमा नहीं, ना कहीं कोई लफड़ा है। अब ये कैसे क्या हो गया ये भगवान जाने।
13: चंपत राय के बड़े करीबी रहे
14: जी? हाँ, आज कम से कम 200 साल से उनके साथ में थे। उसके पहले महेश नारायण सिंह थे और उसके पहले वो बीच में परमन जी थे। कई लोगों के साथ में काम वो किए हैं।
13: एकदम से इतने सारे आरोप लगना
14: एकदम से गलत है, एकदम निराधार, बस किसी तरीके से फंसा करके और इसको घुमा लो बस।
13: सर आप कहना चाह रहे हैं कि बड़े लोग जो हैं बचने के लिए उनको फंसा,
14: बस केवल उनको यही फंसा रहे हैं।
13: आपकी बातचीत कुछ हुई उनसे इस बीच?
14: नहीं, कोई नहीं, हमसे उनसे कोई मतलब नहीं।
13: आप लोगों के रिश्ते कैसे थे दोनों भाइयों?
14: रिश्ते सब बढ़िया है लेकिन बातचीत कोई ऐसे ही नहीं, मतलब वो अपना कमा खा रहे हैं हम अपना कमा।
13: बहुत क्लोजनेस नहीं थी?
14: जी नहीं।
13: पारिवारिक अच्छे संबंध है?
14: सब अच्छे संबंध।
13: लेकिन क्या लगता है आपको कौन इसमें आरोपी है? अगर टिन्नू जी को फंसाया जा रहा है इसमें तो असल में कौन है?
14: अब ये हम कुछ नहीं बता सकते, जब हम वहाँ जाते आते नहीं तो हम क्या बता पाएंगे।
13: लेकिन अब तो देखिए वकीलों ने भी हाथ पीछे कर लिए हैं, वो कह रहे हैं केस ही नहीं लेंगे, तो आपके भाई
14: नहीं लें, वो भगवान जो है भगवान देखेंगे सब कुछ।
13: जो कहते हैं टिन्नू जी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पूरे ट्रस्ट में था, दर्शन कराने से लेकर सारी चीजें, जबकि वो एक ड्राइवर के तौर पर वहां पहुंचे।
14: जैसे आज आपने देखा पेपर में, सबसे बड़ा अपराधी और 1,00,000 रुपए उसके पास बरामदी।
13: पैसे रिकवर हुए हैं बता रहे हैं टिन्नू जी के,
14: रुपए और 18,00,000-20,00,000 रुपए वाला अपराधी नहीं है।
13: आपका कहना है फंसाया गया टिन्नू
14: जी? एकदम।
13: कौन फंसा रहा है?
14: अब पता नहीं कौन फंसा रहा है लेकिन फंसाया गया बस।
13: क्या उनका परिवार भी सामने आएगा इस बात को लेकर?
14: अभी तो कुछ नहीं आएगा कोई,
13: लेकिन एक परिवार के तौर पर
14: हताश में है सब, कोई मतलब नहीं है एकदम, कोई कहीं जाने आने तैयार नहीं।
13: सर अगर केस ही नहीं होगा तो फिर भाई पहला परिवार के पास लीगल राइट होता है, तो अगर वकील ही केस नहीं लड़ रहे हैं तो आखिर वो बाहर कैसे आएंगे अगर वो निर्दोष है तो?
14: तो वहाँ सरकार करेगी व्यवस्था, न्यायालय है, न्यायालय अपना व्यवस्था करेगी, हम लोग जाए ना जाए उससे क्या मतलब होता है।
13: सगे भाई आपने बचपन साथ में उनके देखा है, खेले हैं साथ, पढ़े होंगे, कैसा लगता है इन सब?
14: नहीं वो एकदम निर्दोष है, अब कहाँ से क्या हुई गलती तो भगवान जाने।
13: कुछ गुहार लगाना चाहेंगे आप सरकार से? कुछ
14: नहीं, कोई मतलब
13: अपने भाई को लेकर कोई गुजारिश
14: नहीं, हम कोई गुहार, वो जाने उनका काम जाने।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। एकोजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: हमने तब भी सवाल किया था।
3: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
2: हम आज भी सवाल करते हैं।
3: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
2: ऑपरेशन अग्नि,
3: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
2: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
7: somebody save me,
6: to timeless favorites,
7: and life is like a song,
6: and new discoveries,
7: so much more than a history. Wake up.
6: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: जापान के प्रधानमंत्री ताकायची का पीएम मोदी ने किया शानदार स्वागत राष्ट्रपति भवन में समारोह भारत जापान के ज्वाइंट विजन को मिलेगी नई रफ्तार 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य
1: चढ़ावा चोरी की जांच की जद में ट्रस्ट के बड़े अधिकारी पूछताछ में अनिल मिश्रा का आरोपों से इनकार चंपत के टिन्नू पर फोड़ा ठीकरा कई सवालों पर चुप्पी गोपाल राव भी होंगे तलब
0: अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी में बम बम भोले की गूंज एलजी ने रवाना किया श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल बालटाल और पहलगाम से होगी औपचारिक शुरुआत रूट पर भारी सुरक्षा
1: तीस दिन जेल में रहने पर जा सकती है पीएम सीएम की कुर्सी संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी की फाइनल रिपोर्ट तैयार मॉनसून सत्र में पेश हो सकते हैं तीनों बिल हंगामे के आसार
0: दिल्ली में आ गया मॉनसून मौसम विभाग ने की पुष्टि मुंबई के समंदर में हाई टाइड का अलर्ट 14 फीट की ऊंचाई तक उठ रही हैं लहरें

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज। एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बात।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। शुरुआत करते हैं शतक आज तक से। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर जापान की प्रधानमंत्री तकाइची। पीएम मोदी ने कहा बहुत बहुत स्वागत, सैन्य सम्मान के साथ वेलकम। भारत जापान के जॉइंट विजन को मिल सकती है रफ्तार, 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी और जापान की प्रधानमंत्री करेंगे मारुति सुजुकी के खरखौदा प्लांट का उद्घाटन। भारत जापान औद्योगिक साझेदारी को नई मजबूती। खरखौदा प्लांट से सालाना 10 लाख वाहनों के उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और करीब 35,000 करोड़ के निवेश से तैयार हो रहा है अत्याधुनिक प्लांट। 100% ग्रीन एनर्जी और एआई तकनीक से लैस होगा मारुति का नया प्लांट। खरखौदा संयंत्र पूरी तरह नवीकरणीय बिजली पर संचालित किया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बुलडोजर कार्रवाई संभव, आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन भवन पर एडीए का नोटिस। लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम बने निर्माणाधीन भवन में अनियमितता के आरोप, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जारी किया है नोटिस। पुलिस ने की मुख्य आरोपी की 48 घंटे की रिमांड की मांग, एसबीआई कर्मचारियों पर भी जांच की नजर। 6 जुलाई की ट्रस्ट बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के भविष्य पर फैसला, 2/3 बहुमत से होगा निर्णय। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, एसआईटी करेगी 5 साल के ऑडिट की दोबारा जांच, ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी जांच के दायरे में।
0: चुनी यादव के भाई दिनेश यादव का पहली बार बयान, चंपत राय अनिल मिश्रा पर लगाया आरोप, बोले भाई का नेचर अच्छा था, कोई केस नहीं था। दिनेश यादव ने चंपत राय अनिल मिश्रा पर संकेत करते हुए कहा बड़े लोग खुद को बचाने थे, छोटे लोगों को फंसा रहे हैं, अंत में न्याय पर भरोसा जताया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज तक मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज में आरोपियों के पास से मिले रुपए, डॉलर और ज्वेलरी। इटावा में एसपी नेता रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, बोले राम मंदिर में 20,000 करोड़ का घोटाला, बड़े नाम शामिल है, जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच रही है जांच। लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले सीएम योगी ने एसआईटी जांच की समय सीमा बढ़ाई, 15 जुलाई तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल, कांग्रेस में शरद पवार की पार्टी के विलय की तैयारी, सहमति बनी तो दिल्ली में लगेगी मोहर, फिलहाल राज्य स्तर पर बातचीत। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में एक्शन तेज, बिहार के वैशाली में एसटीएफ की छापेमारी, साइबर कैफे संचालक समेत 3 गिरफ्तार। प्रियंका चतुर्वेदी ने कृषि क्षेत्र की महिलाओं को सम्मान देने पर सीएम फडणवीस की सराहना की, कहा यह कदम लंबे समय से इंतजार में था। दिल्ली में तेजेंद्र बग्गा और मंडी हाउस में राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए, मानहानि मामले में खेद जताने के बाद सियासी हलचल।
1: 30 दिन जेल में रहने पर जा सकती है

शंका। वेनेजुएला से लौटे शव में आंतरिक अंग गायब होने की के आरोप, उच्च स्तरीय जांच की मांग। अहमदाबाद में 53 साल पुराने सुभाष ब्रिज के 3 सेकंड में सुरक्षित ढंग से ध्वस्त, नए पुल का निर्माण जारी। पुणे में खौफनाक हादसा, सड़क पार करते समय अचानक गिरा पेड़, स्कूली छात्र बाल बाल बचा। बाराबंकी में दर्दनाक हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम। मनाली में फंटे जहालमा नाले में ने रोकी एम्बुलेंस, LNT मशीन के बकेट में बैठाकर मरीज को कराया पार। मुंबई के दहिसर में

0: जलगांव के मशहूर विट्ठल रुक्मिणी संस्थान में लगी भीषण आग, अफरा तफरी, आग बुझाने में फायर टीम तैनात। मनाली में अटल टनल से निकलते हुए नियंत्रित हुई स्कॉर्पियो, बैरिकेड तोड़कर निर्माणाधीन पिलर में धसी, राजस्थान के युवक की मौत, यूपी के 3 साथी घायल। ग्रेटर नोएडा में निजी कंपनी में भीषण आग, दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अहमदाबाद में 22 फूड पैकेट में 4 करोड़ रुपए की गांजे के साथ महाराष्ट्र के व्यक्ति गिरफ्तार, बैंकॉक से ड्रग्स लाने में नाकाम।
1: कानपुर में कथित लव जिहाद का बंधक बनी लड़की को छुड़ाने पहुंची पुलिस, आरोपी के कब्जे में एक की जगह मिली 2 हिंदू लड़कियां। कानपुर में सड़क पर जोरदार हंगामा, महिला की मारपीट का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। बनासकांठा में युवक की अचानक हार्ट अटैक से मौत, कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक गिरा, घटना कैमरे में कैद। लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी, फेक इंटरनेशनल कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, 119 लोगों को हिरासत में लिया। विकासनगर में पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आई कार, क्षतिग्रस्त बाल बाल बची कार सवारों की जान। नवी मुंबई के नेरुल इलाके में जल भराव से अंडरग्राउंड तार में आया करंट, बाइक सवार 2 छात्रों को सड़क पर पैर रखते ही लगा जोरदार झटका। नागपुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान जर्जर 3 मंजिला इमारत गिरी, सड़क पर फैला मलबा। वलसाड़ में हाईवे पर चलते कंटेनर ट्रक में लगी भीषण आग, धुएं का गुबार दूर तक दिखा, सड़क पर लगा लंबा जाम। गुजरात के खेड़ा में पटाखा फैक्ट्री धमाके में 3 दिन बाद एक मजदूर की मौत, सुरक्षा मानकों की बिना अनुमति के चलाई जा रही थी कंपनी और कंपनी का मालिक फरार। देहरादून के विकास नगर में 2 मंजिला आवासीय भवन में लगी भीषण आग, मकान पूरी तरह जलकर राख, कई मवेशी भी जिंदा जले।
0: बिहार के सहरसा में सोते समय शख्स की पीट पीट कर हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने टायर में लगाई आग और किया सड़क जाम। उज्जैन में शिप्रा नदी में आरती के दौरान दीपक बेचने वाली महिलाओं और पुजारी के बीच विवाद, दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। उन्नाव में अज्ञात वाहन की टक्कर में बुलेट नाले में गिरी, बारात से लौट रहे 2 दोस्तों की मौत। राजस्थान के पाली में अस्पताल में डॉक्टर की कुर्सी पर मिला सांप, मरीजों में अफरा तफरी। गाजियाबाद में मामूली रोडरेज विवाद के बाद युवक की कथित तौर पर पीट पीट कर हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मुंबई मूसाधार बारिश का असर, दादर स्टेशन कुर्ला ईस्ट प्रभा देवी में जल भराव। मुंबई मूसाधार बारिश से दादर के हिंदू कॉलोनी में जल भराव, लोगों की आवाजाही ठप। नागपुर में मॉनसून की एंट्री, मूसाधार बारिश से गर्मी में राहत, कई इलाकों में जल भराव। पालघर में बारिश के बीच मकान की दीवार गिरी, मलबे में दबकर महिला की मौत। मुंबई में भारी बारिश के बीच शिंदे से शिवसेना ने कार्यकर्ताओं को राहत कार्य में उतरने के निर्देश दिए, 3 जोन में नोडल नेताओं की नियुक्ति।
1: जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी, बारिश से कई संवेदनशील जगहों पर भूस्खलन की जताई गई संभावना। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा के गुरेज में फिर बादल फटा, इलाके में अफरा तफरी। मूसलाधार बारिश से सिंथन टॉप पर भूस्खलन, NH-244 बंद, सड़क बहाल करने में जुटा प्रशासन। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गुलाब कोटी के पास सड़क धसी, मलबा आने की वजह से हुई आवाजाही ठप। उत्तराखंड में मॉनसून का कहर, कई जिलों में भारी बारिश, हाईवे बंद, स्कूलों में छुट्टी और आपदा से जनजीवन प्रभावित। अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार हुआ खत्म, हर्षोल्लास के साथ पहला जत्था जम्मू से रवाना। सुबह 4:30 बजे भगवती नगर यात्री निवास से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थ यात्रियों के जत्थे को दिखाई हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा के लिए आस्था और उत्साह से खिले श्रद्धालुओं के चेहरे, हर हर महादेव के गूंजे जयकारे। जम्मू से आज दोपहर तक कश्मीर घाटी पहुंचेगा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था, कल बालटाल और पहलगाम मार्गों पर बेस कैंप से शुरू होगी यात्रा। इस बार 57 दिनों तक चलेगी दिव्य अमरनाथ यात्रा, 28 अगस्त को होगी संपन्न।

0: अमरनाथ यात्रा के देश विदेश से जम्मू कश्मीर पहुंच रहे श्रद्धालु, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और RFID कार्ड प्रक्रिया शुरू। जम्मू कश्मीर पूरे यात्रा रोड पर बनाए गए कई ट्रांजिट कैंप, श्रद्धालुओं के रुकने और खाने पीने के लिए विशाल भंडारे का इंतजाम। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर जांच की, CCTV और ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है निगरानी। ऑपरेशन शिवा के तहत होगी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, कमांडो की तैनाती और मल्टीलेयर सुरक्षा का विशेष इंतजाम। यात्रा की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, फेशियल रिकग्निशन कैमरे, बुलेट प्रूफ वाहन, 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए नई हवाई सेवाओं की सौगात, 11 और शहरों के लिए उड़ानें शुरू। नोएडा एयरपोर्ट से देश भर के 16 शहरों के लिए मिलेगी उड़ान, 15 जून से हुई थी यात्री सेवाओं की शुरुआत। तीर्थ यात्रियों के लिए रेलवे ने सिकंदराबाद से 2 भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का किया ऐलान। नई तालीम ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए बड़े फैसले, 1 अगस्त से मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा बैन।
1: आलिया भट्ट स्टारर फिल्म अल्फा की रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर धूम, एडवांस बुकिंग से फिल्म ने की करोड़ों की कमाई। भूत बंगला के बाद फिर लौटेगी अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी, प्रियदर्शन ने अक्षय संग एक और नई फिल्म की डील की कंफर्म। हेरा फेरी 3 पर डायरेक्टर प्रियदर्शन का बड़ा बयान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की कल्ट फिल्म फ्रेंचाइजी हेरा फेरी 3 को नहीं बना रहे हैं प्रियदर्शन। ग्लोबल बाजार में वेलकम टू द जंगल की बल्ले बल्ले, वेलकम टू द जंगल ने 6 दिन के भीतर 130 करोड़ का किया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। भारत इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच बारिश से हुआ प्रभावित, नहीं निकल पाया कोई नतीजा। इंग्लैंड में चेस्टली स्ट्रीट में खेला गया मुकाबला, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर बनाए 189 रन। इंग्लैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने लगाया अर्धशतक, श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंद में बनाए 59 रन, शिवम दुबे ने 21 गेंद में नाबाद 42 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला डेब्यू करने का मौका।
0: प्रधानमंत्री ने मॉनसून में हुई देरी, बारिश में हुई कमी और आगे मॉनसून से होने वाली तबाही, तीनों को लेकर संबंधित मंत्रालयों को पूरी तैयारी के लिए दिशा निर्देश दिया। इस बीच सबकी नजर मोदी मंत्रिमंडल के जल्द होने वाले तीसरे कार्यकाल के पहले विस्तार पर लगी है।
1: प्रधानमंत्री 5 जुलाई या फिर 11 जुलाई के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। पुराने सहयोगी और बगावत करके समर्थन करने आए नए साथी सांसदों में मंत्री पद देने को लेकर क्या खबर चल रही है? सवाल है कि क्या महिला, युवा और OBC इन तीनों कैटेगरी में मंत्रियों को जगह दी जा सकती है?
2: मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार कितने युवाओं को मौका मिलने वाला है?
3: हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी है, सामर्थ्य भी है।
2: जल्द होने वाले मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में अब की बार कितनी महिला सांसद शपथ लेंगी?
3: इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है।
2: 12 साल में 5वीं बार, तीसरे कार्यकाल में पहली बार, मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल में पिछड़े वर्ग के कितने सांसद मंत्री बनेंगे?
3: भाजपा का मंत्र है पिछड़ों को प्राथमिकता।
2: लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद के दोनों सदनों तक, चुनाव प्रचार के मंच से लेकर हर सभा और सम्मेलन तक प्रधानमंत्री कहते हैं देश में केवल 4 जातियां हैं।

0: किसान।
1: तो क्या इसी मंत्र को ध्यान में रखकर इस बार प्रधानमंत्री ने अपनी नई टीम का चाल, चेहरा और चरित्र तय कर लिया है? जहां सबसे पहला सवाल आता है, कितने युवा चेहरे इस बार मोदी मंत्रिमंडल में दिखने वाले हैं?
0: दिनों दिन हमारा देश युवा होता जा रहा है, युवा आबादी वाला देश है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सुयोग है।
1: युवाओं पर फोकस करने वाले प्रधानमंत्री कितने युवा सांसद को मौका मंत्रिमंडल में दे सकते हैं, ये निर्भर करता है कि कितने युवा सांसद संसद में हैं और कितने मंत्री हैं। लोकसभा में अभी 30 साल से कम उम्र के एनडीए के केवल एक सांसद हैं, 31 से 40 साल की उम्र के एनडीए के 15 सांसद हैं और 41 से 50 साल की उम्र के 39 सांसद। जबकि अभी मोदी मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत 72 मंत्रियों की संख्या में 2 मंत्री एनडीए के 30 से 40 साल के हैं, 15 मंत्री 41 से 50 साल के बीच के हैं, यानी 50 साल तक की आयु वाले 24% मंत्री हैं। तो क्या प्रधानमंत्री इस बार युवाओं की संख्या और बढ़ाकर मंत्रिमंडल की औसत आयु को कम करेंगे?
0: युवा शक्ति पर मेरा भरोसा है, युवा शक्ति में सामर्थ्य है और हमारी नीतियां, हमारी रीतियां भी उस युवा सामर्थ्य को और बल देने के लिए है। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, अवसरों की कमी नहीं है, आप जितने अवसर चाहेंगे ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपने देने का सामर्थ्य रखता है।
2: हर बार मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु लगातार कम हो रही है। 2014 में मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु 62 वर्ष थी, 2019 में मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु 60 वर्ष थी, 2021 में जब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ तब ये औसत आयु घटकर 58 वर्ष हो गई, 2024 में ये औसत आयु कायम रही। क्या इस बार कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल में मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु कम हो जाएगी? क्योंकि 2047 में विकसित भारत पर काम करने के लिए पीएम मोदी सबको प्रेरित कर रहे हैं और चर्चा ये है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा मौका युवाओं को दिया जाएगा।
3: वही सरकार ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी को 1 साल का विस्तार देने का फैसला किया। ये अच्छा काम करने का नतीजा है, लेकिन ऐसा ही विस्तार कई अन्य मंत्री भी पाएंगे। जहां हम सोमवार को ये बता चुके हैं आपको कि इस बार कुछ मंत्रियों की खराब परफॉर्मेंस के चलते उनकी कुर्सी जा सकती है या फिर विभाग उनके कम हो सकते हैं, और तब सवाल ये आता है कि खाली पदों पर या जो विभाग अब बचेंगे उनमें क्या महिला सांसदों को मौका दिया जा सकता है? क्या प्रधानमंत्री खुद अपना ही रिकॉर्ड इस मामले में तोड़ेंगे?
0: वक्त का इंतजार है, हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए।
1: महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी कहा जाता है कि इस वक्त संसद में बिल पास कराने के मकसद से जरूरी 2/3 सांसद तक इकट्ठा करने में जुटे, क्या वो आपकी मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को इतना मौका दे सकते हैं जिसके बाद विपक्ष के दांव धरे के धरे रह जाएंगे?
0: इस विश्वास के साथ अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को दिल्ली भेजा, उस विश्वास को बढ़ाने वाला एक और काम आपके भाई ने दिल्ली में किया है। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, प्रतिनिधित्व बढ़े, ये मोदी की गारंटी।
1: तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार में महिला कोटे को इस बार बड़ी गारंटी प्रधानमंत्री देने वाले? जहां इस वक्त महिला सांसदों की ताकत देखें तो महिला सांसद लोकसभा में कुल 75 हैं और राज्यसभा में 38, यानी कुल संख्या 113। इनमें बीजेपी की लोकसभा में 31, राज्यसभा में 20, यानी कुल 51 महिला सांसद, एनडीए की 37 लोकसभा में महिला सांसद हैं, 21 राज्यसभा में, कुल ताकत 58 महिला सांसद की। अभी का अगर हम आंकड़ा देखें तो कुल 7 महिला मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में हैं, जिनमें 2 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री हैं, बीजेपी की 6 महिला मंत्री हैं, 1 सहयोगी दल अपना दल से अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं। 2024 में महिलाओं को मंत्री बनाते वक्त सात में से चार मंत्री ऐसी रही जो पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल की गई। मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल में 10-10 महिला मंत्री थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 2021 में सबसे ज्यादा महिला मंत्रियों की संख्या 11 तक पहुंची, जो 2004 के बाद केंद्र में सबसे ज्यादा महिला मंत्री की संख्या रही। इस वक्त निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय है, अन्नपूर्णा देवी के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, शोभा करंदलाजे जो कर्नाटक से आती हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, रक्षा खड से 2024 में मंत्रिमंडल में शामिल दूसरी सबसे युवा मंत्री हैं, युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, धार से सांसद सावित्री ठाकुर महिला बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, गुजरात से लोकसभा सांसद नीमूबेन बभानिया उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अब इन सात के साथ और कितने महिला चेहरे मंत्रिमंडल विस्तार में मौका पाएंगे या फिर इन चेहरों में भी कुछ फेर बदल होगी?
2: पीएम मोदी की सोशल इंजीनियरिंग में जातियों को जोड़ना ही नहीं बल्कि महिला युवा पिछड़ों और दलितों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। संसद के इस मानसून सत्र में सरकार महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन बिल को किसी भी हालत में पास कराना चाहती है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देकर एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं।
4: वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। Accuje, the number one Korean skincare brand.
6: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
5: Now in India.
7: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
4: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
5: AU
6: सोच बदलो और बैंक भी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड।
2: इस बीच फरीदाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर एक वीडियो सामने आया है, इसमें सिरोही गैंग के दो गुटों के बीच झड़प हो रही है। दबंगों ने एक युवक पर अपनी स्कॉर्पियो कार चढ़ा दी। काले रंग की स्कॉर्पियो चढ़ाने का वीडियो सामने आया। मौके पर मौजूद लोगों के मोबाइल फोन में भी ये वीडियो है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टक्कर में युवक गंभीर रूप से घायल है। वहीं पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। फरीदाबाद के सिरोही की यह घटना है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अफरा तफरी मच गई, दो गुटों के बीच का ये झगड़ा। स्कॉर्पियो कार इस युवक पर चढ़ाने की कोशिश, जिसके बाद वहां पर कई लोगों ने मोबाइल में से कैप्चर किया।
3: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: मंदिर ट्रस्ट के ऑडिट की होगी जांच, गोपाल राव से भी हो सकती है पूछताछ। अयोध्या के वकीलों ने कहा चंपत, अनिल और गोपाल पर दर्ज कराएंगे एफआईआर। आज से एसआईटी फिर सक्रिय।
1: जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची का प्रधानमंत्री ने किया शानदार स्वागत, राष्ट्रपति भवन में समारोह। भारत जापान की ज्वाइंट विजन को मिलेगी नई रफ्तार।
0: अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी में बम बम भोले की गूंज, एलजी ने रवाना किया श्रद्धालुओं का पहला जत्था। कल बालटाल और पहलगाम से होगी औपचारिक शुरुआत, रूट पर भारी सुरक्षा।
1: दिल्ली में आ गया है मॉनसून, मौसम विभाग ने की पुष्टि, मुंबई के समंदर में हाई टाइड अलर्ट, 14 फीट की ऊंचाई तक उठ सकती है लहरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच गहराती जा रही है। अब इस मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी और कानूनी जांच एजेंसियों के घेरे में आते जा रहे हैं। एक तरफ बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए आज पुलिस को तहरीर देने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ SIT ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है।
1: सूत्रों के मुताबिक अब ट्रस्ट के पिछले 5 वर्षों के ऑडिट और हर वित्तीय लेन देन की बारीकी से जांच की जाएगी। आज SIT की टीम अयोध्या पहुंच सकती है। सरकार ने SIT को जांच के लिए अतिरिक्त समय भी दे दिया है और अब 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि पूछताछ में ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपनी भूमिका से इनकार करते हुए पूरी जिम्मेदारी टिन्नू यादव पर डाल दी है। हालांकि उन्होंने निगरानी में चूक की बात स्वीकार की है। इसी बीच मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव के बयान भी जल्द दर्ज किए जा सकते हैं।
0: इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपियों से पूछताछ तेज हो गई है। पुलिस ने प्रमुख आरोपी की 48 घंटे की कस्टडी रिमांड मांगी है, जबकि चढ़ावे की गिनती की निगरानी करने वाले बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। ऐसे में सवाल यही कि क्या जांच ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों तक पहुंचेगी और क्या इस मामले में नए कानूनी मोड़ आएंगे।
1: तो जांच चंदा चोरी से शुरू हुई थी और अब जांच भर्ती घोटाले तक पहुंचती हुई दिख रही है। जी हां, जांच एजेंसियों को यह पता चला है कि राम मंदिर में 125 कर्मचारियों की नियुक्ति में पैसे की लेन देन हुई है, जमकर रिश्वतखोरी हुई है।
0: इस कथित भर्ती रैकेट में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के शामिल होने का शक है। इसीलिए जांच एजेंसियां अब नियुक्तियों से संबंधित दस्तावेजों को खंगाल रही हैं। ट्रस्ट के सदस्यों की संपत्तियों की जांच भी करने जा रही है।

0: क्या राम मंदिर में नियुक्तियों में रिश्वत ली गई? क्या राम मंदिर में भर्ती रैकेट चल रहा था? क्या रिश्वत के पैसे बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचे? राम मंदिर में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी? वो 22 जनवरी 2024 की तारीख थी, यानी तकरीबन 2 साल 5 महीने 10 दिन पहले, जब अयोध्या में धूमधाम से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वो दिन था जब करोड़ों राम भक्तों की मनोकामना पूरी हुई थी। लगा था कि प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राम मंदिर आंदोलन के तमाम अध्याय पूर्ण हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राम मंदिर फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह कचोटने वाली है। जिस ट्रस्ट को मंदिर निर्माण और प्रबंधन का जिम्मा दिया गया, उस पर रिश्वतखोरी के नए नए आरोप लग रहे हैं। ताजा आरोप यह है कि 125 कर्मचारियों की नियुक्तियों में रिश्वत ली गई। संगठित भर्ती रैकेट चल रहा था जिसमें बड़े चेहरे शामिल थे। अविनाश शुक्ला से पूछताछ के बाद रिश्वतखोरी की यह कहानी सामने आई। अविनाश शुक्ला ही वो शख्स है जो इस पूरे प्रकरण में अहम किरदार रहा। इस वीडियो को देखिए, यह अमित शुक्ला है, अविनाश शुक्ला का भाई। इसके हाथ में नोटों की गड्डियां दिख रही हैं। ये 1 साल पहले का वीडियो है जो अब वायरल हो रहा है। इसके साथ ही वायरल हो रही है ट्रस्ट की रिश्वतखोरी की कहानी, जिसमें अब नए नए पहलू जुड़ते जा रहे हैं। जैसे कि सूत्रों के हवाले से जानकारी ये सामने आई है कि मंदिर के रिकॉर्ड में नियुक्तियों से संबंधित कई दस्तावेज गायब पाए गए। नियुक्ति पत्र, औपचारिक सेवा अनुबंध या रोजगार से संबंधित अहम दस्तावेज नदारद मिले। दस्तावेजों के गायब पाए जाने के बाद ही जांच एजेंसियों को लगा कि इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। ये पता लगाना जरूरी है कि क्या नियुक्तियों के बदले पैसे की उगाही की गई। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को मंदिर में नियुक्त सभी कर्मचारियों की सूची मिल गई है, जिसकी अब बारीकी से छानबीन की जा रही है। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि पैसे की उगाही करने वालों में ट्रस्ट के कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल रहे। जांच में जिन अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, उनसे जल्द ही पूछताछ की जाएगी। संदेह के दायरे में आने वालों के बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जाएगी। जो भी होगा, एसआईटी को इस बारे में ठोस सबूत या तथ्य मिलते हैं तो इसे जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। यानी जांच सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक सीमित नहीं रहेगी, इसमें भर्ती घोटाला भी शामिल होगा। शायद एक वजह यह भी है कि एसआईटी का कार्यकाल 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: इस बीच आपको दिखा रहे थे कि कैसे 125 कर्मचारियों की नियुक्ति में रिश्वत ली गई, यानी कि भर्ती में भी घोटाला चल रहा था। राम मंदिर में भर्ती रैकेट चलाया जा रहा था जिसमें बैंक के कई कर्मचारी भी शामिल थे। अविनाश शुक्ला से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि ये पूरा का पूरा एक चेन था जिसमें 125 कर्मचारियों की नियुक्ति में रिश्वत ली गई थी। और इस वक्त जुड़ गए हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव। आइए सीधा रुख करते हैं उनका। समर्थ, नियुक्ति में भी धांधली, दान पेटी से तो चोरी हुई है, लेकिन अब नियुक्ति में भी रिश्वतखोरी सामने आ रही है।
2: बिल्कुल अंजलि, ये बड़ी बात सामने आ रही है और जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल मिल रही है उसमें ये चीजें सामने आई हैं कि कल तक ये बातें हो रही थी कि जो ट्रस्ट के बड़े अधिकारी हैं उनका दबदबा इतना था कि उन्होंने अपने मनपसंदी लोग जो थे उनको हायरिंग किया और वहां पर उन्होंने भर्ती कराया। लेकिन अब बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जिनकी भर्ती हुई है, कई ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनसे भर्ती से पहले या भर्ती के बाद कुछ पैसा रिश्वत के तौर पर भी लिया गया है, यानी कि जो हायरिंग की गई है उसके लिए। ये कई दफा आप इस तरह की चर्चाएं अयोध्या में पहले भी उठ चुकी हैं हालांकि, लेकिन अब क्योंकि जांच पूरी तरीके से बैठ गई है और पुलिस की कार्रवाई बड़े मोड़ पर इस वक्त चल रही है, जगह जगह धरपकड़ भी हो रही है। इस बीच में पुलिस सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस तरह की भी बातें सामने आई और पूछताछ में भी इस बात का जिक्र कई कर्मचारियों से हुआ है। इतना ही नहीं, जो जेल में इस वक्त है आरोपी, उन्होंने भी पुलिस इंटरोगेशन में इस बात को कहीं ना कहीं कबूला है, जिसके बाद कई बड़े नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं ट्रस्ट के, जो इस पूरी जो ब्राइबरी है, जो रिश्वत वाली बात सामने आई है उसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि नाम क्या होंगे इसको लेकर थोड़ा समय अभी पुलिस लेगी, 15 दिन का समय एसआईटी ने और बढ़ाया हुआ है। तो एसआईटी की जो जांच, जो फाइनल रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, माना यह भी जा रहा है कि ये जो मुख्य एंगल निकलकर सामने आया है इसे भी इसमें शामिल किया जा सकता है।
1: ठीक है, बने रहे हमारे साथ। इस बीच चंपत राय के बाद अयोध्या पुलिस ने एक और अहम किरदार अनिल मिश्रा से पूछताछ की है और इस पूछताछ में अनिल मिश्रा ने सारी गड़बड़ियों का ठीकरा टिन्नू यादव पर फोड़कर खुद का बचाव किया। अनिल मिश्रा का कहना है कि जैसी गड़बड़ी का उन्हें पता चला ट्रस्ट ने फौरन एक्शन लिया। बात कही जा रही थी कि बड़ी मछलियां बच जाएंगी, छोटे लोगों को फंसा दिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं अब सार्थक होता हुआ दिख रहा है क्योंकि लगातार ये जो तीन किरदार हैं ये दूसरे जूनियर लेवल के कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं।

0: पुलिस और एसआईटी के रडार पर हैं ये तीन चेहरे। इन तीन चेहरों को अब तक आपने बखूबी जान और पहचान लिया होगा। ये तीन चेहरे हैं चंपत राय, ट्रस्ट के महासचिव, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, ट्रस्टी गोपाल राव। इन तीनों पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने ट्रस्ट को कठपुतली की तरह चलाया। इन पर आरोप लग रहे हैं नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाने का, ट्रस्ट में चल रही अनियमितताओं की अनदेखी करने का। लेकिन अब तीनों से पूछताछ हो रही है। पहले चंपत राय से पूछताछ हुई और अब खबर आ रही है कि अनिल मिश्रा को भी अयोध्या पुलिस के सवालों का सामना करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अनिल मिश्रा ने सारा ठीकरा टिन्नू यादव पर फोड़ा। अनिल मिश्रा ने कहा कि नोटों की गिनती करने वाले टिन्नू के इशारे पर काम करते थे, मेरी इसमें कोई भूमिका ही नहीं थी। यानी अनिल मिश्रा ने अपनी भूमिका पूरी तरह से नकार दी। अनिल मिश्रा से जब ये पूछा गया कि मंदिर प्रबंधन में आपका दखल था तो कैसे करोड़ों रुपए पार हो गए और भनक नहीं लगी, इस पर अनिल मिश्रा ने कहा कि ट्रस्ट ने ही चोरी पकड़ी, जैसे ही पता चला फौरन जांच शुरू हुई, ट्रस्ट ने ही एसआईटी की मांग की। हाँ, अनिल मिश्रा ने इतना जरूर माना कि निगरानी में उनसे चूक हुई।
1: सूत्रों की माने तो पुलिस पूछताछ में अनिल मिश्रा कई बार फंसते हुए दिखे। कई सवाल ऐसे भी थे जहां पर अनिल मिश्रा ने चुप्पी साध ली। तो कुछ सवालों में उन्होंने कहा कि सब कुछ किया धरा टिन्नू यादव का है। अब देखना यह है कि ये जांच पड़ताल कहां तक जाती है। जो बड़े नाम हैं वो भी जल्दी ही पुलिस की जद में आ सकते हैं। इस बीच में चंपत राय और अनिल मिश्रा का पुलिस के पास अब पहला अधिकृत बयान है और अब बारी है गोपाल राव की, जिनकी भूमिका कोषाध्यक्ष की है। और पुलिस को लगता है गोपाल राव इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक बेहद अहम कड़ी साबित होने वाले हैं।
0: आपको बता दें कि अनिल मिश्रा से पहले चंपत राय से भी पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों की माने तो पुलिस से चंपत राय ने कहा, चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं, चढ़ावा चोरी की इसकी जानकारी मिलते ही मैं सक्रिय हो गया, संदिग्धों को पकड़ा, एफआईआर भी कराई। हाँ, मैं मानता हूँ कि कोई हेरफेर ना हो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेरी थी। दरअसल चंपत राय के लिए बड़ी मुसीबत की वजह टिन्नू यादव है। टिन्नू से नजदीकी उनके गले की ऐसी हड्डी बन गई है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते। पूछताछ में पुलिस ने टिन्नू से उनके रिश्ते को लेकर सवालों की बौछार कर दी। इस पर चंपत राय बस इतना कह पाए, टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने पूछा रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया। इस पर चंपत राय का जवाब था, जरूरतमंदों को काम दिया, इसमें केवल मैं ही नहीं ट्रस्ट के दूसरे सदस्य की भी भूमिका रही। चंपत राय ही वो कड़ी है जिनसे पुलिस को अब दूसरे आरोपियों से पूछताछ में सामने आए खुलासों का मिलान करना है। चंपत ने क्या बताया और क्या छिपाया, इसी पर जांच एजेंसी चंदा चोरी के तमाम सिरे जोड़ पाएगी। लेकिन अभी जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो वाकई खलबली मचाने वाले हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
2: समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। समर, अगर अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव सभी को चोरी के बारे में पता चल रहा था तो कानून तो ये कहता है कि अगर आपकी आंख के नीचे कोई गड़बड़ हो रही है और आप उसके लिए आप ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी हैं तो आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। ये क्यों नहीं किया गया प्राथमिक तौर पर?
1: नेहा, ये एक बहुत अहम बिंदु है जो आप सवाल आपका है, ये भी एक जांच का बहुत अहम बिंदु है कि आखिर जब ट्रस्ट को मालूम पड़ा कि ये सारी चीजें हो रही हैं, फिर अगर आप रिकवरी की बात कर लें, जो रिकवरी हुई है, जो नंबर्स हमारे पास कल आए हैं, तो आखिर ट्रस्ट ने खुद से क्यों नहीं हरकत में आया, ट्रस्ट ने खुद ही यूपी सरकार को सूचित क्यों नहीं किया या फिर यूपी पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर किया गया होता तो शायद कार्रवाई भी हो गई होती और आप समझे कि एफआईआर कब हुई है, एसआईटी पहले बन गई और एफआईआर बाद में हो रही है। तो ये कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं, केवल विपक्ष ही नहीं उठा रहा बल्कि अयोध्या के तमाम साधु संत ये कह रहे हैं कि जब श्रद्धा की बात है, भाई लोगों ने अपना चंदा दिया, लोगों ने इतना लंबा संघर्ष किया और तब जाकर मंदिर निर्माण हुआ है, और ऐसे में आप उनका चंदा जो पूजा पाठ का उसको समान कहते हैं वो सब अगर चोरी हो जाएगा तो आस्था तो कहीं ना कहीं उस पर आघात होता है और इसी को लेकर ये कार्रवाई इस वक्त बड़ी चल रही है।
3: शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा तक सबके सब टिन्नू यादव पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन टिन्नू का परिवार उसका बचाव कर रहा है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में टिन्नू के भाई दिनेश यादव ने कहा है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, छोटों को फंसाया जा रहा है।
1: हमारे साथ इस वक्त टिन्नू यादव के भाई दिनेश यादव मौजूद है, प्रकरण चल रहा है, सारी जांच हो रही है, सगे भाई हैं। दिनेश जी, हम आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप क्योंकि साथ में पले बड़े हैं टिन्नू यादव के, भाई का क्या नेचर रहा, कैसे रहे?
4: भाई का नेचर बहुत अच्छा था, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं, आज तक कोई एक मुकदमा नहीं, ना कहीं कोई लफड़ा है। अभी कैसे क्या हो गया ये भगवान जाने।
1: चंपत राय के बड़े करीबी रहे?
4: जी हाँ, आज कम से कम 200 साल से उनके साथ में थे। उसके पहले महेश नारायण सिंह थे, और उसके पहले वो बीच में परमन जी थे, कई लोगों के साथ में काम वो किए हैं।
1: एकदम से इतने सारे आरोप लगना
4: एकदम से गलत है, एकदम निराधार, बस किसी तरीके से फंसा करके और इसको घुमा लो बस।
1: सर आप कहना चाह रहे हैं कि बड़े लोग जो हैं बचने के लिए
4: बस,
1: उनको फंसा
4: रहे हैं। बस केवल उनको यही फंसा रहे हैं।
1: आपकी बातचीत कुछ हुई उनसे इस बीच?
4: नहीं, कोई नहीं, हमसे उनसे कोई मतलब नहीं।
1: आप लोगों के रिश्ते कैसे थे दोनों भाइयों?
4: रिश्ते सब बढ़िया है, लेकिन बातचीत कोई ऐसे ही नहीं, मतलब वो अपना कमा खा रहे हैं, हम अपना कमा।
1: बहुत क्लोजनेस नहीं थी?
4: जी नहीं,
1: पारिवारिक अच्छे संबंध है,
4: सब अच्छे संबंध।
1: लेकिन क्या लगता है आपको कौन इसमें आरोपी है? अगर टिन्नू जी को फंसाया जा रहा है इसमें, तो असल में कौन है?
4: अब ये हम कुछ नहीं बता सकते, जब हम वहाँ जाते आते नहीं तो हम क्या बता पाएंगे।
1: लेकिन अब तो देखिए वकीलों ने भी हाथ पीछे कर लिए हैं, वो कह रहे हैं केस ही नहीं लेंगे, तो आपके भाई
4: नहीं, वो भगवान जो है भगवान देखेंगे सब कुछ।
1: जो कहते हैं टिन्नू जी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पूरे ट्रस्ट में था, दर्शन कराने से लेकर सारी चीजें, जबकि वो एक ड्राइवर के तौर पर वहां पहुंचे।
4: जैसे आज आपने देखा पेपर में, सबसे बड़ा अपराधी और 1,00,000 रुपए उसके पास बरामदी।
1: पैसे रिकवर हुए हैं बता रहे हैं टिन्नू जी के,
4: और 18,00,000-20,00,000 रुपए वाला अपराधी नहीं है।
1: आपका कहना है फंसाया गया टिन्नू
4: जी? एकदम।
1: कौन फंसा रहा है?
4: अब पता नहीं कौन फंसा रहा है, लेकिन फंसाया गया बस।
1: क्या उनका परिवार भी सामने आएगा इस बात को लेकर?
4: अभी तो कुछ नहीं आएगा कोई,
1: लेकिन एक परिवार के तौर पर
4: हताश में है सब, कोई मतलब नहीं है, एकदम कोई कहीं जाने आने तैयार नहीं।
1: सर अगर केस ही नहीं होगा तो फिर भाई पहला परिवार के पास लीगल राइट होता है, तो अगर वकील ही केस नहीं लड़ रहे हैं तो आखिर वो बाहर कैसे आएंगे अगर वो निर्दोष है?
4: तो वहाँ सरकार करेगी व्यवस्था, न्यायालय है, न्यायालय अपना व्यवस्था करेगी, हम लोग जाए ना जाए उससे क्या मतलब होता है।
1: सगे भाई आपने बचपन साथ में उनके देखा है, खेले हैं साथ, पढ़े होंगे, कैसा लगता है इन सब?
4: नहीं वो एकदम निर्दोष हैं, अब कहाँ से क्या हुई गलती तो भगवान जाने।
1: कुछ गुहार लगाना चाहेंगे आप सरकार से? कुछ
4: नहीं, कोई मतलब
1: अपने भाई को लेकर कोई गुजारिश
4: नहीं, हम कोई गुहार, वो जाने उनका काम जाने बस।
1: बड़े लोग जो है चंपत राय को बचाना चाहिए था उनको।
4: अरे वो बचाने के लिए क्या करेंगे, वो अपना पल्ला झाड़ दिए।
1: अनिल मिश्रा ने बता रहे हैं उनका ही सब कुछ टिन्नू यादव पर ही डाल दिया कल की पूछताछ में,
4: क्योंकि ट्रस्ट के अध्यक्ष वो थे ना, टिन्नू यादव ट्रस्ट के अध्यक्ष थे।
5: भाई एक इंटरव्यू कर रहा हूं।
1: कहना छोटी मछलियों को फंसाया गया,
4: बस, बड़ी
1: मछलियों को नहीं फंसाया
4: गया। नहीं
1: बड़े लोग बच रहे हैं,
4: बड़े लोग बच रहे हैं, छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है बस।
2: चंदा चोरी की जांच कर रही है एसआईटी, कुछ अहम साक्ष्य मिले हैं। जांच की जद में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी आ सकते हैं, और जानकारी ये मिली कि एसआईटी ट्रस्ट के 5 साल के ऑडिट का अब मिलान किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसआईटी के 3 अधिकारी आज बैठक कर सकते हैं, इसके बाद तीनों अयोध्या रवाना हो सकते हैं।
6: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट पर अभी और कसेगा शिकंजा। जांच में एसआईटी को मिले अहम साक्ष्य। जांच के घेरे में आ सकते हैं ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी। ट्रस्ट के 5 साल के ऑडिट की जांच कराएगी एसआईटी। ये 8 आरोपी हैं जिन्हें चढ़ावा चोरी केस में पकड़ा गया है, लेकिन एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है बड़ी साजिश की तस्वीर सामने आ रही है। यही वजह है कि एसआईटी जांच का समय 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर मिली खामियों को देखते हुए एसआईटी ने पिछले 5 साल में मंदिर ट्रस्ट की ओर से कराए गए ऑडिट की जांच का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में एसआईटी को ऐसे सबूत मिले हैं जिससे बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का शक हो रहा है। माना जा रहा है कि इससे अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसआईटी के तीनों अधिकारी आज बैठक कर सकते हैं, जिसके बाद वो अयोध्या जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत दान किए गए जेवरात का ब्यौरा देने में होगी, क्योंकि ट्रस्ट ने इसका ऑडिट ही नहीं कराया है। वहीं निर्माण कार्य में भी कमीशन के आरोप हैं। इसमें अनिल मिश्रा पर शिकंजा कस सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के कौशलपुरी स्थित श्याम साधनालय योग केंद्र में उसके कमरे से राम राज्य कोष लिखा एक संदूक मिला है। उस पर QR कोड भी लगा है। आज तक ने कल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी।
1: योगा केंद्र आपको श्याम साधनालय योगा केंद्र है और हम इस योगा केंद्र में दाखिल होंगे और आपको लेकर चलेंगे इस योगा केंद्र में और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ इस योगा केंद्र में है। एक रहस्यमयी बक्से की भी बात यहां हो रही है। ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूं जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ये एक रहस्यमयी बक्सा है। आप अगर देखें तो यहां पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहां पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहां पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहां पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
6: पुलिस और जांच एजेंसी अब ये पता लगा रही हैं कि संदूक में जमा होने वाला धन कहां से आता था और उसका राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण से कोई संबंध है या नहीं। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि संदूक से कोई नकदी बरामद हुई है या नहीं। पुलिस QR कोड से लेनदेन की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस ने कल आरोपी लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे के पैतृक घरों पर छापा मारा। करीब 3 घंटे चली छानबीन के दौरान परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए। सूत्रों का कहना है कि दोनों के घरों से नकदी, जेवर और संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। पुलिस दोनों के माता पिता को साथ लेकर गई है। सूत्रों के मुताबिक लवकुश और करुणेश ने अहम जानकारियां दी थी। बताया था कि चोरी की रकम उनके घरों में रखी है, इसलिए पुलिस ने कल उनके घरों पर एक साथ छापा मारा। लवकुश का घर अयोध्या के रुदौली और करुणेश का घर खंडासा में है। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
3: और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव का। आशीष, आपसे यह जानना चाहेंगे कि आज SIT भी हो सकता है अयोध्या चली जाए, ऐसे में किस तरीके से ऊंचे पदाधिकारियों तक पहुंचने की कोशिश रहेगी SIT की?
7: देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात है SIT ने अपनी इनिशियल जो रिपोर्ट है उसके आधार पर FIR दर्ज की थी और ये इनिशियल रिपोर्ट थी। अब जो एक्सटेंशन मिला है 15 दिनों का जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो कहीं ना कहीं अब ये मान के चलिए कि अब जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी इसकी जद में आ सकते हैं, क्योंकि जो आभूषण वहाँ पर चढ़ाए गए, जो दान वहाँ पर आया, उसका कोई भी खाका SIT को नहीं मिला। यहाँ तक SIT ने जब ऑडिट की रिपोर्ट मांगी तो उस ऑडिट रिपोर्ट में भी बहुत सारी गड़बड़ी सामने आ गई। तो अब ऐसे में जब ऑडिट रिपोर्ट सही नहीं है, उसका खाका मिल नहीं रहा है, तो अब इस 15 दिनों में जो एक्सटेंशन में है, एक तरीके से उसमें बड़े लोगों का नाम सामने आ सकता है कि आभूषण जो रामलला को चढ़ाए गए वो कहाँ गए, उसका ऑडिट हुआ या नहीं हुआ, आखिर उन 5 सालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है SIT ने और उसी के आधार पर अब एक बड़ी कार्रवाई भी संभावना है। तो ये तो माना जा रहा है कि अभी तक जितने भी 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कई हिरासत में पूछताछ चल रही है, SIT अब उससे एक कदम आगे बढ़ रही है और इन सभी को अब अपनी ग्रिप में लेगी, क्योंकि आखिर वो आभूषण गया तो गया कहाँ, जो चढ़ावा आया उसके बारे में
2: आभूषणों का कोई ऑडिट ही नहीं हुआ है। मंदिर में कई बार सोने और चांदी का चढ़ावा आया है, चढ़ावा चोरी की जांच में बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी हो रही है। चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तार लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चल सकता है।

0: चढ़ावा चोरी केस में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। आरोपी लव मिश्रा के घर पर चल सकता है बुलडोजर। ये निर्माणाधीन घर है अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा का। ये घर लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम लिया था। चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद अब ये निर्माणाधीन मकान अयोध्या विकास प्राधिकरण के रडार पर है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लवकुश मिश्रा की पत्नी को नोटिस जारी किया है। एडीए ने पूछा है कि मकान के नक्शे की मंजूरी ली गई थी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक एडीए ने जांच में पाया था कि मकान के निर्माण में मानकों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। एडीए ने एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर मकान पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है।
1: पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए, ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था।
2: एक और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
4: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: आपने कहा था ये सबसे तेज है।
4: हाँ कहा था, लेकिन ये तय कैसे होता है?
3: फ्रेशर, जब पूरा देश जवाब ढूंढ रहा होता है तब ये सवालों के बीच खड़े हो जाते हैं।
5: पहला भारतीय चैनल,
3: ये हमेशा सबसे पहले पहुंचते हैं क्योंकि ये खबर का इंतजार नहीं करते, खबर तक पहुँच रहे।
6: मणिपुर के उस ग्राउंड जीरो पर है,
7: जगह जगह लाक्षागृह चल रहे हैं जिनसे आपको खबरदार करने के लिए आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है।
8: बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रपति पुतिन आज तक पर आने के लिए।
3: सिर्फ अनुभव, उससे ज्यादा भरोसा।
8: आज तक की खबर का असर हुआ है,
3: हर दिन कमाया जाता है।
9: क्या ये आपके ऑपरेटिव्स हैं?
3: नहीं, ये भारत के ऑपरेटिव्स हैं।
9: अल्फा, अल्फा को पहचानते हैं।
10: भारत के अल्फा जर्नलिस्ट, भारत के सबसे बड़े अल्फा न्यूज नेटवर्क पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: चढ़ावा चोरी की जांच के जद में ट्रस्ट के दिग्गज, पूछताछ में अनिल मिश्रा का आरोपों से इनकार। चंपत के टिन्नू पर फोड़ा ठीकरा, टिन्नू का भाई बोले बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के ऑडिट की होगी जांच, गोपाल राव से भी हो सकती है पूछताछ। अयोध्या के वकीलों ने कहा चंपत, अनिल और गोपाल पर दर्ज कराएंगे FIR, आज से SIT फिर सक्रिय। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची का PM मोदी ने किया शानदार स्वागत, राष्ट्रपति भवन में समारोह। भारत जापान के ज्वाइंट विजन को मिलेगी नई रफ्तार, 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य। अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी में बम बम भोले की गूंज, LG ने रवाना किया श्रद्धालुओं का पहला जत्था। कल बालचाल और पहलगाम से होगी औपचारिक शुरुआत, रूट पर भारी सुरक्षा। दिल्ली में आ गया मानसून, मौसम विभाग ने की पुष्टि, मुंबई के समुन्दर हाई टाइड का अलर्ट, 14 फीट की ऊंचाई तक उठ सकती हैं लहरें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 12:12 रिपोर्टर की शुरुआत दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISI प्रायोजित आतंकी और हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और इस कार्रवाई में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 को पंजाब और 1 को दिल्ली से पकड़ा गया है। अब जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान स्थित ISI हैंडलर शहजाद भट्टी के निर्देश पर दिल्ली में आतंकी वारदात की साजिश रची जा रही थी। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अरविंद, और क्या जानकारी मिल पाई अभी तक इनसे जुड़ी हुई?
2: जी देखिए, ये जो 4 आरोपी गिरफ्तार हैं, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है इनको, जिसमें से 3 पंजाब और 1 दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली से जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है गगनप्रीत, उसके मोबाइल को जब स्पेशल सेल ने खंगाला तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली NCR के कई धार्मिक जो स्थल है उसकी बकायदा रेकी की गई थी, उसका वीडियो उसके मोबाइल से मिला। इसके अलावा दिल्ली के कई पुलिस स्टेशन का वीडियो मिला, जिससे ये पता चलता है कि जो ये आतंकी हैं, ये दिल्ली के धार्मिक स्थलों और उसके अलावा पुलिस प्रतिष्ठान को निशाना बनाना चाहते थे। उसके अलावा पंजाब के अमृतसर से जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसके गांव से 3 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है। पूछताछ में उस शुभदीप नाम के आरोपी ने खुलासा किया है कि ड्रोन के जरिए उसके पास हथियार और ड्रग आते थे, जो इस मॉड्यूल को सप्लाई करते थे। तो पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार आया और दिल्ली NCR में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची गई थी, जिसका खुलासा स्पेशल सेल ने किया है।
0: तो बहुत गहरी साजिश थी, पर्दाफाश हो गया, खुलासा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब अगली खबर दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर। दिल्ली में आखिरकार जिसका इंतजार किया जा रहा था, यानी मानसून का, वो आ गया और सुबह सुबह दिल्ली NCR में झमाझम बारिश। सुबह की बारिश के बाद मौसम विभाग ने मानसून की एंट्री का ऐलान कर दिया है। आधिकारिक तौर पर ऐलान हो गया है कि हाँ भाई, अब मानसून आ गया है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए हुए हैं। गर्मी से त्रस्त दिल्ली NCR के लोगों को मानसून के आगमन से बड़ी राहत मिली, हालांकि कई जगहों पर जलभराव से परेशानी बढ़ गई है।
3: और आखिरकार मानसून ने दिल्ली में दस्तक दे दी है, जिसका इंतजार था। पिछले 4-5 दिनों से भयानक उमस भरी गर्मी से आज सुबह राहत मिली। दिल्ली समेत NCR के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, हालांकि जल जमाव नहीं हुआ। लेकिन खुशी की बात यह है कि 2 जुलाई को मानसून ने दस्तक दे दी और अब दिल्ली समेत पूरे NCR में बादलों का जो जमावड़ा है वो, उसके बाद मौसम विभाग ने पुष्टि कर दी है कि प्री मानसून की गतिविधियां, अब ये मानसून है। पिछले 2-3 दिनों से दरअसल प्री मानसून इस पूरे इलाके में सक्रिय था, जिसके बाद अब इसे मानसून कहा गया है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि अब हर दिन बरसात होगी, हर दिन जल जमाव होगा। दरअसल मानसून एक सिस्टम है जो अब दिल्ली NCR पर भी सक्रिय हो चुका है। दक्षिण पश्चिम से ये चला, ये मानसून केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए अब ये दिल्ली की ओर आया है और आगे ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा। हालांकि मौसम विभाग ने इस बात की चेतावनी भी दी थी कि मानसून इस बार कमजोर होगा तो बारिश भी कम होगी। एल नीनो का खतरा है, जिसके बाद अगस्त के बाद से बारिश और भी कम होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज की सुबह तापमान गिरा है, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक पहुंचा और उसी के साथ साथ बारिश भी हुई है, तो उमस से तो राहत मिली है, लेकिन बरसात इस बार कम होगी।
0: और आइए दिल्ली से आपको लिए चलते हैं मुंबई। मुंबई समेत पूरे पश्चिमी घाट पर मॉनसून इस वक्त सक्रिय है, एक्टिव है। मुंबई में मूसलाधार बारिश से मुसीबत भी हो रही है, कई इलाकों में पानी भी भर गया है। तो वही मौसम विभाग ने आज हाई टाइड को लेकर चेतावनी जारी की है, समुद्र से लोगों को दूर रहने के लिए कहा है। आज मुंबई में 4 मीटर से अधिक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मुंबई के अलावा पालघर, ठाणे में भी तेज बरसात हो रही है। डोंबिवली में एक स्कूल में पानी कई फीट तक भर गया है, तो मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर घुटनों तक पानी भर गया है। अंधेरी सबवे को आज सुबह बंद कर दिया गया, पुलिस तैनात कर दी गई है, हालांकि बाद में आवागमन बहाल कर दिया गया।
4: गुरुवार को मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जिसकी वजह से तेज हवाएं के साथ साथ काफी ज्यादा जो बरसात है वो रुक रुक के होती रहेगी, ऐसा बताया गया था। और ऑरेंज अलर्ट तब जारी किया जाता है और लोगों को तब कहा जाता है कि वो अलर्ट रहे जब जो बरसात है वो मध्यम से तेज ज्यादा बरसात होती है, तब कहा जाता है। और यही हमें देखने को मिला था सोमवार और मंगलवार से लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से ऑरेंज अलर्ट के दौरान काफी तेज बरसात हो रही है। मुंबई के पास पालघर में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर कि स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। लेकिन अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में खासतौर से समुद्र किनारे लोगों को एहतियातन कहा गया है, जब हाई टाइड होगा 145 पर तब वो समुद्र किनारे ना जाए, क्योंकि उस समय तकरीबन 14 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठ सकती हैं और तेज हवाएं भी क्योंकि चल रही हैं समुद्र किनारे, तो लोग एहतियात बरतें, यही मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है।
0: दिल्ली मुंबई के बाद बात गुजरात की। गुजरात में मॉनसून राहत भी लेकर आया, मुसीबत भी लेकर आया। सीजन की पहली बरसात ने जहां मूंगफली किसानों के चेहरे खिला दिए, तो वहीं शहरी इलाके जलभराव ने परेशानी बढ़ा दी। जूनागढ़ में जहां महज 2 इंच बारिश ने शहर की सड़कों का हाल क्या कर दिया, देखिए पानी भर गया जगह जगह। वहीं अमरेली में नदी हो नाले हो सब उफान पर है। बारिश के बीच जूनागढ़ में कार रेस्क्यू करनी पड़ी। रेलवे अंडरब्रिज के नीचे एक कार और एक बस फंस गई थी, जिसे फायर ब्रिगेड की मदद से निकाला गया क्योंकि पानी भर गया था।
3: पिछले 3 दिनों से गुजरात में मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई है और बीते 24 घंटों में दक्षिण गुजरात हो या फिर सौराष्ट्र हो, कई जिले ऐसे हैं जहां पे 24 घंटे में 7-7 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। नवसारी हो, वलसाड़ हो, या सूरत हो, या फिर जूनागढ़ हो, हर जगह बारिश देखने को मिली है। सौराष्ट्र के जो मुख्य जिले हैं जहां बारिश हुई, उसमें जूनागढ़ है, अमरेली है, गिर सोमनाथ है, भावनगर में बारिश देखने को मिली। वहीं दक्षिण गुजरात की अगर बात करें तो दक्षिण गुजरात में नवसारी, वलसाड़ और सूरत में जो है बारिश देखने को मिली है। किसानों के लिए बारिश राहत बन के आई है,

0: था वहां पे गड्ढे हो गए और रोड भी बैठ गए हैं, उसमें वाहन भी फंसे हैं, चाहे वो हैवी वाहन हो या ट्रक हो या बस हो या फिर गाड़ियां हो। ऐसे कुछ तस्वीरें सामने आई है। आने वाले कुछ दिनों के लिए भी जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें इसी तरह की जो है तूफानी बारिश देखने को मिल सकती है। मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और अब जो है, हालांकि गुजरात का अभी भी 80% से ज्यादा हिस्सा ऐसा है जहां पे अभी भी बारिश नहीं हुई है।
1: बारिश में आप कहीं भी हो सावधानी जरूर बरतिएगा। अब 12:12 रिपोर्टर में बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। उत्तर भारत में मानसून की पहली बारिश में ही पहाड़ों की हालत खस्ता हो गई है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक मूसलाधार बरसात हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी जम्मू कश्मीर में दिख रही है, जहां कई इलाकों में फ्लैश फ्लड ने मुसीबत बढ़ा दी। कुपवाड़ा में तेज बारिश के बाद अचानक मलबे का ढेर नदी की धारा में बहने लगा। अब यहां गनीमत रही तो उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना जान भी जा सकती थी। घाटी के छोटे छोटे नाले इन दिनों उफान पर हैं। ऊंचाई वाले इलाके तेजी से पानी आ रहा है और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। मानसून भले ही उत्तर भारत में देरी से पहुंचा हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों में तबाही अभी से शुरू हो चुकी है।
2: बुधवार शाम से पूरे जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज अचानक बदला। कहीं पर धूप है और कहीं पर बारिश। उस बीच कश्मीर के कई इलाकों में बादल फटने से फ्लैश फ्लड्स आए हैं। खासतौर से अगर गुरेज घाटी की बात करें या फिर उत्तरी कश्मीर के जो कुकरनाग इलाका है, वहां पर कई जगहों पर बादल फटने से न सिर्फ सड़कों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि साथ ही साथ कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कई दिनों तक इस तरह कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बादल फट सकते हैं। इस बीच आज अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ। वहां पर भी इस तरह की किसी भी मौसम की अप्रिय घटना को लेकर चाक चौपन इंतजाम किए गए हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें अमरनाथ यात्रा के सभी रास्तों पर तैनात की गई हैं।
1: बात अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की। सूत्रों के हवाले से एसआईटी जांच से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिली है, वो हम आपको बता देते हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को चढ़ावा चोरी की जांच में बहुत अहम सबूत मिले हैं। जांच की जद में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी आ सकते हैं। खबर है कि एसआईटी ट्रस्ट के 5 साल के ऑडिट की जांच भी करेगी और ये माना जा रहा है कि इससे चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसआईटी के तीनों अधिकारी आज बैठक कर सकते हैं और इसके बाद तीनों अयोध्या भी जा सकते हैं। अब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए।
3: के लिए राम जन्मभूमि थाने गए हैं।
4: आगे क्या आपकी डिमांड है? क्या आगे
3: कागज मिल जाएगा तब हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद की स्थिति उस पर तय की जाएगी।
5: दर्द हो गया है?
3: अभी दर्द नहीं हुआ है,
5: तहरीर गई है।
6: तो देखिए वकीलों की तहरीर
1: केस दर्ज नहीं हुआ है, तहरीर दी गई है। हमारे सहयोगी संतोष शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या चल रहा है, क्या सामने आया।
7: उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गठित की गई एसआईटी के वक्त को जहां 15 दिन बढ़ा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ एसआईटी ने अब राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा किए गए बीते 5 सालों के ऑडिट को भी दोबारा से जांचने का काम शुरू कर दिया है। एसआईटी यह परखेगी कि 5 सालों में राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो ऑडिट कराया गया उसमें कैश के साथ साथ दान पेटी में मिलने वाले डॉलर जेवरात का भी क्या हिसाब किताब रखा जाता था और इस ऑडिट को कैसे पूरा किया जाता था। इतना ही नहीं, जांच इस बात की भी की जा रही है कि इस ऑडिट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन कौन थे और उनकी क्या भूमिका थी।
1: अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी मामले से जुड़ी हुई है। अयोध्या बार एसोसिएशन की तरफ से ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ शिकायत दी गई है कि एफआईआर उन पर दर्ज की जाए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर वो हम आपको बता रहे हैं। अभी आप कुछ देर पहले जो बयान सुन रहे थे तो वो ट्रस्ट के सदस्यों के खिलाफ शिकायत दी गई थी, तो बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे अयोध्या के, उनकी तरफ से बयान दिया जा रहा था। वो चाहते हैं कि ट्रस्ट के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और इसी के चलते आज सुनवाई भी हुई थी, तहरीर दी गई है। अभी एफआईआर हालांकि दर्ज नहीं की गई है, लेकिन अयोध्या बार एसोसिएशन की तरफ से यह शिकायत दी गई है, जिसमें बड़े नाम सामने आए।

0: तो।
1: और अब आपको खबर बताते हैं फुटबॉल फीवर की, फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप में रोमांच का सिलसिला अभी भी जोरदार तरीके से जारी है।
2: फीफा वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 की रेस अब और भी रोमांचक होते जा रही है। बेल्जियम को कल एक बड़ा झटका लग सकता था, जहां सेनेगल ने उनको टफ टक्कर यानी कड़ा मुकाबला देने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद अपने शानदार अनुभव, बेहतरीन डिफेंस लाइन और एक सटीक गोल की वजह से बेल्जियम राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ। लुकाकू का वो एक गोल प्लस टेलेमिनास के दो गोल, इसकी वजह से बेल्जियम उस उलटफेर को दूर करने में कामयाब रहा और पहुंच गया आखिरी 16 में। इसके अलावा दो और मुकाबलों की बात करेंगे, जहां पर एक तरफ इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा, जहां पर दो मशहूर गोल हैरी केन के बूट से निकले, और वहीं दूसरी तरफ यूएसए वो भी अंतिम 16 में जगह बनाने में कामयाब हुई और सामने थी बोस्निया और हर्जेगोविना। बोस्निया और हर्जेगोविना को यूएसए ने शानदार तरीके से हराया और राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बनाने में पक्की मजबूती हासिल कर ली।
1: यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
4: वेलकम बैक टू दैट्स अ पेपर थिंग। First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
5: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
4: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
6: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
7: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
2: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
1: ओ अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
3: सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर।
4: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
5: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
3: No ticket, no line, just showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
0: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बुलडोजर कार्रवाई संभव, आरोपित लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन भवन पर एडीए का नोटिस। लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम बने निर्माणाधीन भवन में अनियमितता के आरोप, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जारी किया है नोटिस। पुलिस ने की मुख्य आरोपित की 48 घंटे की रिमांड की मांग, एसबीआई कर्मचारियों पर भी जांच की नजर। 6 जुलाई की ट्रस्ट बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के भविष्य पर फैसला, 2/3 बहुमत से होगा निर्णय। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, एसआईटी करेगी 5 साल के ऑडिट की दोबारा जांच, ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी जांच के दायरे में हैं। टिन्नू यादव के भाई दिनेश यादव का पहली बार बयान, चंपत राय और अनिल मिश्रा पर लगाया आरोप, बोले भाई का नेचर अच्छा था, कोई केस नहीं था। दिनेश यादव ने चंपत राय और अनिल मिश्रा पर संकेत करते हुए कहा, बड़े लोग खुद को बचाने के लिए छोटे लोगों को फंसा रहे हैं, अंत में न्याय पर भरोसा जताया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज तक को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज में आरोपियों के पास से मिले रुपए, डॉलर और ज्वेलरी, चिन्नू यादव से 1 लाख कैश जब्त। इटावा में एसपी नेता रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, बोले राम मंदिर में 20,000 करोड़ का घोटाला, बड़े नाम शामिल, पर जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच रही जांच। लखनऊ में यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, सीएम योगी ने एसआईटी जांच की समय सीमा बढ़ाई है, 15 जुलाई तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए नई हवाई सेवाओं की सौगात, 11 और शहरों के लिए उड़ानें शुरू। अब नोएडा एयरपोर्ट से देश के कुल 16 शहरों के लिए मिलेगी उड़ान, 15 जून से हुई थी यात्री सेवाओं की शुरुआत। गाजियाबाद में मामूली रोड रेस विवाद के बाद युवक की कथित तौर पर पीट पीट कर हत्या, मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। उन्नाव में अज्ञात वाहन की टक्कर से बुलेट नाले में गिरी, बारात से लौट रहे 2 दोस्तों की मौत। कानपुर में लव जिहाद का बंधक बनी लड़की को छुड़ाने पहुंची पुलिस, आरोपित के कब्जे में एक की जगह मिली 2 हिंदू लड़कियां।

0: राव बंदर चढ़ावा चोरी मामले में आज की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी मामले में अब थाने में एक और शिकायत दी गई है। अयोध्या बार एसोसिएशन ने अब चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ नामजद शिकायत दी। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कालिका प्रसाद मिश्रा के साथ बड़ी संख्या में वकीलों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत दी है।
1: राम जन्मभूमि में हुए तमाम लूट, पहले से चल रहे तमाम उसमें खामियां और इन सारी चीजों को लेकर के उसमें एप्लीकेशन तो अधिवक्ता संघ देगा कि सीबीआई से जांच हो, लेकिन आज जो तहरीर दी जाएगी वो कुछ लोगों के विरुद्ध दी जाएगी कि इसमें इन लोगों ने पैसे रुपए में घोटाला किया है। नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, तीन का करेंगे जो पहले डिस्क्लोज किए हैं, चंपत राय साहब हैं, गोपाल राव हैं और अनिल मिश्रा।
2: और कुछ लोगों के नाम नए आ सकते हैं,
1: ये नया ही FIR है, पुरानी नहीं है।
0: तो राम मंदिर चोरी कांड में बहुत सी तफ्तीश चल रही है। SIT का समय अब 15 दिन और बढ़ गया है और इसी बीच पुलिस की जांच भी तेज हो चुकी है। जगह जगह से बरामदगियों का ब्यौरा आने लगा है, जांच के खुलासे आते रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है ना कि आखिर ट्रस्ट का क्या होगा। 4 दिन के बाद यानी 6 जुलाई राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड के इतने हंगामे के बाद यह बैठक हो रही है। इससे पहले किस मार्च को जब पिछली बैठक हुई थी तब चोरी के कांड का पर्दाफाश नहीं हुआ था, लेकिन अब आपात स्थिति में तय वक्त से पहले यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं ये ट्रस्ट ही जाने, लेकिन पूरी दुनिया को इंतजार है कि इस बैठक के बाद चंपत राय का होगा क्या, अनिल मिश्रा का क्या होगा, क्योंकि अभी तक ट्रस्ट ने इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। ट्रस्ट की ओर से कोई पदाधिकारी मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है कि इस पूरे चोरी कांड पर जब महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया तो अभी ट्रस्ट का क्या रुख है, ट्रस्ट के कामकाज में कोई फर्क आया है या नहीं आया है, आगे फर्क होगा या फिर इसे चढ़ावा चोरी कांड की तरह आंखें मूंद ली जाएंगी, क्योंकि सबको पता है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा हो गया, लेकिन यह इस्तीफा अभी तक मंजूर हुआ है या नहीं किसी को पता नहीं। ट्रस्ट ने जो गोल बोल सी घोषणा सोशल मीडिया पर की है उससे उसमें यही लिखा है ना कि इस्तीफा मिला है जिस पर अगली बैठक में विचार होगा, यानी तकनीकी तौर पर अभी इस्तीफा मंजूर भी नहीं हुआ है। तो दरअसल अब पता चल रहा है कि चंपत राय ने भले महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट से चंपत राय को हटाना नामुमकिन जैसा है जब तक वो खुद नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज तक के पास ट्रस्ट के बायलॉज का जो ब्यौरा उपलब्ध है ना उसके मुताबिक ट्रस्ट का असली मकसद मंदिर निर्माण, सुविधाओं का विकास और रखरखाव करना है। अब इसी में मंदिर को मिलने वाले धन और मूल्यवान वस्तुओं के संग्रह, चल अचल संपत्ति प्राप्ति और कानून व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी ट्रस्ट की ही है। हालांकि ट्रस्ट के गठन के बाद व्यवस्था थी कि हर बैठक में बड़े फैसले लिए जाएंगे और उनका ब्यौरा भी रखा जाएगा, लेकिन मंदिर निर्माण और उद्घाटन तक इस ट्रस्ट में जो बड़े फैसले लिए जाते रहे उसमें चंपत राय ही ट्रस्ट के चेहरे बने रहे, जबकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सर्वोच्च निकाय है और इस निकाय में 15 सदस्य हैं जिसमें केंद्र राज्य के 3-3 सरकारी अफसर हैं। ट्रस्ट के प्रशासन के लिए अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष चुने जाते हैं। अध्यक्ष ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करता है, महासचिव बैठक बुलाने, रिकॉर्ड रखने, ट्रस्ट की संपत्ति की सुरक्षा के प्रति जवाबदेह होता है, कोषाध्यक्ष मंदिर के बही खाते, बजट, आमद खर्च का ब्यौरा रखता है और इस ट्रस्ट में सीरियल 1 से 10 तक के ट्रस्टी को वोटिंग का अधिकार है। इसके अलावा निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि को भी वोटिंग का अधिकार है। ये ट्रस्ट के नियम हम आपको बता रहे हैं। अब इस ट्रस्ट के बोर्ड को यह अधिकार है कि अगर ट्रस्ट के प्रशासन के लिए जिन लोगों को चुना गया है उसमें से कोई पद रिक्त होता है तो उसका क्या प्रावधान होगा। प्रावधान ये है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी 11 लोगों के बीच से ये जिम्मेदारी दे सकता है, क्योंकि इन ट्रस्टीज को आजीवन ट्रस्ट की सदस्यता मिली हुई है। यानी अब तक की ज्ञात जानकारी के मुताबिक बीच में उन्हें ट्रस्ट से निकालना संभव नहीं है। अगर कोई ट्रस्टी स्वेच्छा से बोर्ड छोड़ना चाहता है तो वो 1 महीने पहले नोटिस देकर पद त्याग कर सकता है, और अगर किसी ट्रस्टी को हितों के खिलाफ काम करने के आरोप में निष्कासित किया जाता है तो उसके लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत जरूरी है, और अगर ट्रस्ट बोर्ड चाहे तो कानूनी दायरे में रहते हुए ट्रस्ट डीड के प्रावधानों में बदलाव भी कर सकता है। अब सवाल है कि जब ट्रस्ट ने अभी तक चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा कबूल नहीं किया तो क्या 6 जुलाई को बैठक में वोटिंग कराई जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो 11 में से कम 7 सदस्यों की मंजूरी जरूरी होगी, और उनमें जिनके नाम शामिल हैं के पराशरन, महंत नृत्य गोपाल दास, वासुदेवानंद सरस्वती, विश्व प्रसन्न तीर्थ गोविंद देवगिरी, महंत दीनेन्द्र परमानंद गिरी, विमलेंद्र मिश्र वो अब जीवित नहीं, कृष्ण मोहन, चंपत राय, अनिल मिश्र, ये वो लोग हैं जिन्हें वोटिंग का अधिकार है, और इसके अलावा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि अफसर, राज्य के प्रतिनिधि अफसर और अयोध्या के डीएम भी ट्रस्ट में हैं, लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। तो समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम सीधे बात कर लेते हैं। ट्रस्ट से बिना वोटिंग के किसी को निकालना संभव नहीं लगता। समर्थ, ये बताइए, क्या चंपत राय का स्वेच्छा वाला इस्तीफा मंजूर होगा या वोटिंग करानी पड़ेगी?
3: देखिए हिमांशु, बहुत अहम है ये 6 जुलाई की जो प्रस्तावित बैठक है, और उसमें काफी कुछ निर्णायक होने वाला है। आज तक के पास कुछ एक्सक्लूसिव पेपर्स हैं, यानी कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो बायलॉज के पेपर हैं वो इस वक्त हमारे पास हैं, और वो ये बताते हैं कि किसी भी ट्रस्टी को हटाना इतना आसान नहीं है। अगर किसी को स्वयं से इस्तीफा देना है तो 1 महीने का समय नोटिस पीरियड की तरह उसको देखा जाता है, और अगर कोई ट्रस्टी किसी ट्रस्ट के सदस्य को हटाना चाहता है तो उसको 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत चाहिए अन्य सदस्यों से, तभी वो उसे हटा सकता है। तो जो चर्चा चंपत राय और अनिल मिश्र को लेकर चल रही है वो ये बताता है। हमारे पास इस वक्त वो पेपर्स हैं, और मगर आपको बताऊं तो इसमें क्या कुछ इंक्लूड है, जो कि आप बायलॉज की बात करें सबसे अहम हिस्सा ही मैं इसका पढ़ता हूं, जो निष्कासन का है, जिसको लेकर पूरी चर्चा इस वक्त हो रही है कि जिस तरह से जो मामला चंदा चोरी का है, जो इंट्रोगेशन हो रही है, क्या निष्कासन होगा, और अगर इस्तीफा है तो क्या मंजूरी होगी। निष्कासन की प्रक्रिया ये कहती है कि यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट के हितों के खिलाफ काम करता है तो 2/3 बहुमत से उसे हटाया जा सकता है, और इसके लिए ट्रस्टी को कारण बताओ नोटिस देना और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देना भी अनिवार्य है। यानी कि अगर ये प्रक्रिया बढ़ती भी आगे तो कारण बताओ नोटिस और उनको उनका पक्ष रखने का समय भी मिलेगा। अगर 6 जुलाई को बैठक को मान लीजिए 2/3 बहुमत लग भी जाती है और कहते हैं कि भाई इस्तीफा होना है तो कारण बताओ नोटिस का कुछ समय सीमा होगा। इसके अलावा समय सीमा होगी उनके जवाब की, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, ये निर्धारित नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ होगी ये तो निर्धारित है। तो कोई भी इस्तीफे का एक्सेप्टेंस आसान भाषा में कहें इतनी जल्दी तो होता नहीं दिख रहा है। हाँ, पुलिसिया कार्रवाई बड़ी अगर हो जाती है, कुछ ठोस सबूत मिल जाते हैं, या जो आरोपी खुलकर बोल रहे हैं कि भाई इनका फलाना का इन्वॉल्वमेंट रहा है, इनके कहने पे हमने ये सारी चीजें की हैं, और अदालत में वो सारी चीजें प्रूफ हो जाती हैं, तब तो फिर अरेस्टिंग भी हो सकती है, और ऐसे केस में बायलॉज के मुताबिक बड़ा एक्शन हो सकता है, और फिर आसानी से 2/3 जो बहुमत है वो उनके पक्ष में वोट करेगी, और फिर निष्कासन भी हो जाएगा और सदस्य हालांकि तब भी रहेंगे। ये एक बड़ा बहुत बड़ा पेच है, यानी कि सब कुछ हो जाने के बाद, इस्तीफा हो जाने के बाद भी बायलॉज के जो पेपर्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि सदस्य रहेंगे, उसके आगे कोई बड़ी कार्रवाई होती है तब भले वो वहां से हटाए जा सकते हो। तो ये बायलॉज के पेपर साफ बताते हैं कि 6 जुलाई की प्रस्तावित बैठक है वो बेहद अहम होने वाली है, और उसमें काफी कुछ बड़े निर्णय होने वाले हैं। अब देखना यह है कि जो अन्य सदस्य हैं जिनका नाम आपने अभी बताया, उन सदस्यों की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसमें सबसे अहम अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास भी हैं, उनकी इन सब की वोटिंग किसके हक में जाती है? क्या वो चाहते हैं कि इस पूरी घटनाक्रम के बाद, चंदा चोरी में नाम आने के बाद, चंपत राय और अनिल मिश्रा ट्रस्ट में बने रहे, या वो नहीं चाहते हैं?
0: मतलब इस्तीफे की बात जितनी सरल स्पष्ट दिखाई दे रही थी उतनी है नहीं, बहुत पेचीदगी है, बहुत लूपहोल्स है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चढ़ावा चोरी कांड के बाद ट्रस्ट के ज्यादातर सदस्य बिल्कुल खामोश हैं। ट्रस्ट के अंदर जिम्मेदारी संभाल रहा कोई भी पदाधिकारी ना तो कुछ बोल रहा है, लेकिन ट्रस्ट के बाकी सदस्यों में से एक निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि दीनेन्द्र दास महाराज ने गोपाल राव को लेकर बड़ी नाराजगी जाहिर की है।
4: जनपद इतना आता है, सब जनपद में रह, कोई पैसा आदमी हाथ में नहीं, ये और गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहां जाके सबको उलझा देते हैं। हमारे ट्रस्टी भी समाज को हमेशा समता बनाए रखे, हमेशा देश का विकास बनाए रखे, लेकिन ये सबकी बुराई करके हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं।
5: किसने?
4: गोपाल जी।
5: जी,
4: पूरी गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उलझा रहे हैं। गोपाल बाहर के है ना, वो राजनीति कर रहे हैं।
0: देखिए, ये वो दीनेन्द्र दास हैं जिन्हें बोर्ड की मीटिंग में वोटिंग का अधिकार भी है। ये ट्रस्ट के हर सदस्य को क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन चंपत राय की ओर से बहाल किए गए मैनेजर गोपाल राय को गड़बड़ी का सूत्रधार बता रहे हैं। तो अगर बैठक होती है तो उनका क्या रुख रह सकता है? हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने उनसे बात की।
3: कई बड़े पदाधिकारी भी हैं जिनसे पूछताछ भी हुई है, जो रडार में भी हैं, जिनका इन्वेस्टिगेशन में नाम भी सामने आ रहा है। आपको लगता है कि कार्रवाई वहां तक भी जानी चाहिए अगर बड़े लोग भी संलिप्त हैं इस पूरे कांड में?
4: और उसमें किसी भी गलती होगी तो रामलाल दंड देंगे, शासन से मिला और रामलाल दंड देंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा।
0: तो एक तरफ बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के सदस्य निर्मोही अखाड़े के महंत चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद गिरी सबको क्लीन चिट देते दिख रहे हैं और मैनेजर गोपाल राव पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव का परिवार कह रहा है कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए टिन्नू को फंसाया जा रहा है।
3: हमारे साथ इस वक्त टिन्नू यादव के भाई दिनेश यादव मौजूद हैं। प्रकरण चल रहा है, सारी जांच हो रही है, एकदम से इतने सारे आरोप लगना
6: एकदम से गलत है, एकदम निराधार, बस किसी तरीके से फंसा करके और इसको घुमा लो बस।
3: सर, आप कहना चाह रहे हैं कि बड़े लोग जो हैं बचने के लिए उनको फंसा
6: रहे हैं? बस केवल उनको यही फंसा रहे हैं।
3: कहते हैं टिन्नू जी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पूरे ट्रस्ट में था, दर्शन कराने से लेकर सारी चीजें, जबकि वो एक ड्राइवर के तौर पर वहां पहुंचे।
6: जैसे आज आपने देखा पेपर में, सबसे बड़ा अपराधी और 1,00,000 रुपए उसके पास बरामदी,
3: ऐसे रिकवर हुए हैं बता रहे हैं टिन्नू जी के
6: रुपए, और 18,20,00,000 रुपए वाला अपराधी नहीं है।
3: आपका कहना है फंसाया गया टिन्नू
6: जी? एकदम।
3: कौन फंसा रहा है
6: अब? पता नहीं कौन फंसा रहा है, लेकिन फंसाया गया।
3: बड़े लोग जो हैं, चंपत राय को बचाना चाहिए था उनको?
6: अरे वो बचाने के लिए क्या करेंगे, वो अपना पल्ला झाड़ दिए।
3: अनिल मिश्रा ने बता रहे हैं उनका ही सब कुछ टिन्नू यादव पर ही डाल दिया कल की पूछताछ में,
6: क्योंकि ट्रस्ट के अध्यक्ष वो थे ना, टिन्नू यादव ट्रस्ट के अध्यक्ष थे।
3: कहना छोटी मछलियों को फंसाया गया, बड़ी मछलियों को नहीं फंसाया गया?
6: नहीं,
3: बड़े लोग बच रहे हैं,
6: बड़े लोग बच रहे हैं, छोटे लोगों को फंसाया जा रहा बस।
0: तो बड़े नामों पर कार्रवाई का इंतजार देश को तो है ही, उन छोटी मछलियों के परिवार वालों को भी है जिनके घर से नोटों की बरामदगियां हुई हैं, गड्डियों की। उन आरोपियों के घर अब पुलिस की जांच चल रही है और उस जांच में क्या हो रहा है ये दिखाने से पहले बता दें आपको कि पुलिस में दर्ज मुकदमे के मुताबिक जो आरोपित गिरफ्तार हुए हैं उनमें मनीष कुमार यादव, जो नया घाट अयोध्या का रहने वाला है, उसके पास से 2,00,000 रुपए मिले हैं। करुणेश पांडे, जो खंडासा अयोध्या का रहने वाला है, उसके पास से कुल 18,07,063 रुपए मिले हैं। अनुकल्प मिश्रा, कौशलपुरी अयोध्या का रहने वाला है, उसके पास से 16,82,040 रुपए मिले। नया घाट अयोध्या के रहने वाले रामशंकर यादव के पास 1,00,000 नगद मिला। राम सखा बगिया अयोध्या के रहने वाले रमा शंकर मिश्रा के पास 7,32,170 के अलावा चांदी के 2 सिक्के, 24 ग्राम से अधिक वजन की पैर की अंगूठी बरामद की गई है। रुदौली अयोध्या के रहने वाले लवकुश मिश्रा के पास 14,25,000 नगद बरामद किए गए हैं और अविनाश शुक्ला, जो प्रतापगढ़ का रहने वाला है, उसके पास से 20,39,220 रुपए नगद, 1,121 डॉलर, 159.54 ग्राम वजन वाली चांदी जैसी धातु, 8.14 ग्राम वजन वाले पीले रंग की धातु की चेन, 3.44 ग्राम वजन वाले पीले रंग की धातु का आभूषण बरामद किया गया है। तो यूपी की पुलिस अब इन तमाम आरोपियों के मौजूदा ठिकानों से आगे उनके पैतृक निवास तक जाकर जांच पड़ताल कर रही है। इनमें से ज्यादातर आरोपियों के पैतृक निवास सामान्य ही हैं, लेकिन फिलहाल के दिनों में इनके घर की स्थिति सुधरती हुई भी नजर आ रही है। पुलिस जब इनके घर पूछताछ के लिए पहुंच रही है तो आरोपियों के माता पिता, भाई बहन पुलिस और मीडिया का सामना करने से बच रहे हैं। ये दादियां अपने पोतों को बेकसूर बता रही हैं और राम मंदिर में चोरी के खुलासे के बाद खुद भी हैरानी जता रही हैं। अब इनमें से किसी आरोपी की दादी चोरी की घटना को संगत का असर बता रही है तो किसी की दादी कैमरा देखते ही नाराज हो जा रही है।
7: संगत हीन गुड़ हुआ था, संगत हीन गुड़ जा पास
5: पछरी एक भाव बिकाए तब बस संगत वो जे रहा था तब चाहे जितना नीक रहे भैया दिमाग पलट जाता है।
7: पुस्ताकी है भैया समझे ना, पुस्ताकी है। हम देवरान जठान दो भाई हैं, अलग हो गए, हम बड़े हैं वो छोटे हैं, वो भी अब बनवाए हैं, हमारे छपरा धर के यहाँ पर रहते हैं, जब बच्चे हमारे पंडित जी कमाने लगे तो बनवाए हैं, समझे। अब क्या पूछना है बताइए, हाथ जोड़ी कहीं तू चला जा, वो घूम घूम रहा नाच नाच पूछता है, अब तू चला जाओ यहाँ से, हमारी तबीयत खराब हो जाए एकदम, अका जान लियो फिर तोरों सबका फंसा दे एकदम कहते हैं सही। हमारे
0: आशीष श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष, पुलिस की जांच अब कहां तक पहुंची है, पैतृक गांव तक, पैतृक घरों तक पहुंच रही है जांच, आगे अब क्या है? आशीष, जांच में कई खुलासे हो रहे हैं लेकिन अब पुलिस की जांच किस ओर आगे बढ़ रही है?
8: ये कार्रवाई हो रही है जिस तरीके से ये, हेलो आपका आवाज है
0: जी, जी आशीष,
8: बिल्कुल देखिए जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है अब एक एक करके परतें खुलती जा रही हैं, क्योंकि चाहे वो लवकुश मिश्रा से लेकर टिन्नू यादव हो, सभी के घर वाले तो ये जरूर कह रहे हैं कि छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, लेकिन एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच में ये सभी को दोषी पाया है, ना कि सिर्फ उनके पास सबूत है जबकि उससे जुड़े हुए हर एविडेंस को रखा गया है, यानी कि पूरी तरीके से कागजात और खाका सब कुछ तैयार किया है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि वह आरोपी नहीं है, पहली बात। दूसरी, जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है तो उसमें भी जो रिकवरी की गई है, जो वहाँ से एविडेंस बरामद किए गए वो इनिशियल स्टेज के हैं, अब आगे कितनी और बरामदगी होगी ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच में एसआईटी ने जो वहाँ के सबूत हैं, यानी कि जो वहाँ के आभूषण हैं, दान हैं, इन सब के बारे में भी नई खाका रिपोर्ट तैयार करने की कवायद शुरू की है और 5 सालों का ऑडिट रिपोर्ट भी मांग ली गई है। तो कहने का मतलब है कि जरूर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आरोपी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में एविडेंस पाए, जिस तरीके से पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिस तरीके से अब आगे कार्रवाई हो रही है और 15 दिनों का अपनियों की जो बात हो रही है वो भी ट्रैप होने की पूरी तरीके से इसी कवायद में है, तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई लगातार हो रही है और ऐसे में अब हो संभावना है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि जैसे
0: और यही इस देश की जनता जानना चाहती है कि जो बड़ी मछलियां, जो मगरमच्छ कहे जा रहे हैं, उन पर कब तक शिकंजा कसेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
10: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
11: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
12: Akoji.
13: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
14: कुछ तो बात है इस दिल में।
15: पीमार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
16: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
17: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
18: सोच बदलो और बैंक भी।
19: 25 सालों से जहाँ टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी हो गई है।

0: चढ़ावा चोरी केस में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। आरोपी लव मिश्रा के घर पर चल सकता है बुलडोजर। ये निर्माणाधीन घर है अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा का। ये घर लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम लिया था। चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद अब ये निर्माणाधीन मकान अयोध्या विकास प्राधिकरण के रडार पर है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लवकुश मिश्रा की पत्नी को नोटिस जारी किया है। एडीए ने पूछा है कि मकान के नक्शे की मंजूरी ली गई थी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक एडीए ने जांच में पाया था कि मकान के निर्माण में मानकों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। एडीए ने एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर मकान पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है।
1: चढ़ावा चोरी से बनाई गई संपत्तियों पर अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उसी कड़ी में मुख्य आरोपियों में शामिल लवकुश मिश्रा कि इस मकान जो उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर मौजूद है, इसको भी अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस दिया जा चुका है। आपसे भी पुलिस ने पूछताछ की, पड़ोसी है लवकुश मिश्रा?
2: हाँ, पूछताछ हमसे भी की है कल। पूछ रहे थे कि किसका मकान है, कैसे संपर्क में आए, क्या हमने कहा पड़ोसी है भाई, तो फिर कुछ भी काम होता है। बगल दीवार से सटे है, बगल का वहाँ प्लाट है, तो मुलाकात होती है, संपर्क में आ जाते हैं।
1: ये जो मकान बन रहा था, ये लवकुश मिश्रा का, ये कब से बन रहा था? और ये जब बन रहा था उस समय नगर निगम विकास प्राधिकरण आ चुका था, उसके क्षेत्र में आ गया था?
2: जी बिल्कुल, ये विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में तो एक साल से आ गया था। ये मकान तो फरवरी से बन रहा है, इसी फरवरी 2026 में। जी,
1: तो मतलब पहले से ही आ गया?
2: हाँ, पहले से था। और जैसा कि सुनने में आ रहा है बुलडोजर की कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है, तो हमारी प्रशासन से मांग है और मुख्यमंत्री जी से भी मांग है कि आसपास मकान को क्षति न पहुंचे, बड़ी मेहनत से हम लोगों ने बनाया है, तो इसको सीलिंग की कार्रवाई करें या रिकवरी की और भी जो तरीके हो सकते हैं अपना में, ताकि आसपास के मकानों की क्षति न पहुंचे।
1: अच्छा, हम लोग देख रहे हैं ये बिजली कनेक्शन भी है इधर
2: पे। हाँ, बिजली का कनेक्शन विभाग वालों से पूछिए, उन्होंने कनेक्शन दिया था, मीटर कनेक्शन नहीं हुआ है। लाइट तो चल रही थी इनके यहाँ?
1: लाइट चल रही थी।
2: हाँ, लाइट तो चलती थी।
0: सवाल ये भी है कि क्या ये जमीन और मकान चढ़ावा चोरी की रकम से बन रहा था। अब तक की जांच से पता चला है कि राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की खुल्लम खुल्ला लूट हुई, लेकिन अब पाई पाई की वसूली शुरू हो चुकी है। चढ़ावा चोरों से कुल 79,85,493 रुपए कैश बरामद हुए हैं। चढ़ावा चोरों से 1,121 अमेरिकी डॉलर भी बरामद हुए। निशानदेही पर कुल 21,548 नोटों की बरामदगी हुई, मतलब रामधन को चढ़ावा चोरों ने जमकर लूटा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला के निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई है।
3: यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
5: थंबटैक प्रेजेंट्स टाइल ट्रबल। Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap. All on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
7: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
8: What about me, Jack? What about me?
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
9: Well played, Jack. Well played.
7: Jack FM, playing what we want.
10: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
11: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: पीमार्क, the mustard specialist since 1933.
13: सरसों से सरसों।
14: एक बार फिर घाटी बम बम भोले के जयकारे से गूंज रही है, क्योंकि शुरू होने जा रही है बाबा अमरनाथ की पावन यात्रा। कल से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। बाबा अमरनाथ की यात्रा श्रवण पूर्णिमा तक चलती है। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों शिव भक्त बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंचते हैं और उनके चमत्कार के साक्षी बनते हैं। दुर्गम रास्तों से होकर अमरनाथ गुफा तक का सफर तय होता है। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट हैं। पहला 41 किलोमीटर लंबा पारंपरिक पहलगाम रूट, दूसरा 14 किलोमीटर लंबा बालटाल रूट। पहलगाम रूट अमरनाथ यात्रा का पारंपरिक रूट है। यहां से पवित्र गुफा तक पहुंचने में आमतौर पर 3 से 4 दिन लगते हैं। रास्ते में शेषनाग और पंचतरणी के दर्शन भी होते हैं। वहीं बालटाल रूट अपेक्षाकृत छोटा रास्ता है। इस मार्ग से श्रद्धालु कम समय में यात्रा पूरी कर सकते हैं। इसकी चढ़ाई काफी सीधी, खड़ी और कठिन मानी जाती है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भोले भंडारी बर्फ के शिवलिंग रूप में कब से विराज रहे हैं और भक्त उनके दर्शनों के लिए कब से वहां पहुंच रहे हैं, इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। लेकिन माना जाता है कि किसी वजह से ये गुफा स्मृतियों से लुप्त हो गई थी और करीब 150 साल पहले इसे फिर से खोजा गया। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा ये धाम शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। जहां पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन जो पहुंच जाता है उसके जीवन में फिर किसी भी तीर्थ की तमन्ना नहीं रह जाती।

चढ़ावा चोरी की जांच की जद में ट्रस्ट के दिग्गज, पूछताछ में अनिल मिश्रा का आरोपों से इनकार। चंपत के टिन्नू पर फोड़ा ठीकरा, टिन्नू का भाई बोला बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के ऑडिट की होगी जांच, गोपाल राव से हो सकती पूछताछ। अयोध्या के वकीलों ने चंपत, अनिल और गोपाल राव के खिलाफ दी शिकायत, आज से SIT फिर सक्रिय। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची का पीएम मोदी ने किया शानदार स्वागत, राष्ट्रपति भवन में हुआ समारोह। भारत जापान के ज्वाइंट विजन को मिलेगी नई रफ्तार। अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी में बम बम भोले की गूंज, एलजी ने रवाना किया श्रद्धालुओं का पहला जत्था। कल बालटाल और पहलगाम से होगी औपचारिक शुरुआत, रूट पर भारी सुरक्षा। दिल्ली में आ गया है मॉनसून, मौसम विभाग ने दी की पुष्टि। मुंबई में समंदर में हाई टाइड का अलर्ट, 14 फीट की ऊंचाई तक उठ सकती है लहरें।

भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं जापान के प्रधानमंत्री ताकायशी। पीएम मोदी ने किया भव्य स्वागत, सैन सम्मान के साथ वेलकम। भारत जापान की ज्वाइंट विजन को मिल सकती है रफ्तार, 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य। पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री करेंगे मारुति सुजुकी खरखौदा प्लांट का उद्घाटन। भारत जापान औद्योगिक साझेदारी को नई मजबूती। खरखौदा प्लांट से सालाना 10 लाख वाहनों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। करीब 35,000 करोड़ के निवेश से तैयार हो रहा है ये प्लांट। 100% ग्रीन एनर्जी और AI तकनीक से लैस होगी मारुति की नई प्लांट। संयंत्र पूरी तरह से नवीनीकरण बिजली पर संचालित होगा। राम मंदिर जलावा चोरी मामले में बुलडोजर कार्रवाई संभव, आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन भवन पर LDA का नोटिस। लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम बने निर्माणाधीन भवन में अनियमितता के आरोप, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस। पुलिस ने की मुख्य आरोपी से 48 घंटे की रिमांड की मांग, SBI कर्मचारियों पर भी जांच की नजर। 6 जुलाई की ट्रस्ट बैठक में चंपत राय और अरुण मिश्रा के भविष्य पर फैसला, 2/3 बहुमत से होगा निर्णय। राम मंदिर शराहवा चोरी मामले में SIT करेगी 5 साल के ऑडिट, दोबारा जांच, ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी जांच के दायरे में। टिंडू यादव के भाई दिनेश यादव का पहली बार बयान सामने आया, चंपत राय अनिल मिश्रा पर लगाए आरोप, बोले भाई का नेचर अच्छा था, कोई केस नहीं था। दिनेश यादव ने चंपत राय और अनिल मिश्रा पर अपसंकेत करते हुए कहा, बड़े लोग खुद को बचाने के लिए छोटे लोगों को फंसा रहे हैं, अंत में न्याय पर भरोसा जताया। राम जन्मभूमि थाने में शिकायत दर्ज, बार एसोसिएशन अध्यक्ष कलिका प्रसाद मिश्रा ने कहा, 4 लोगों के खिलाफ FIR की मांग, अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब हर पदाधिकारी और कर्मचारी की एंट्री एग्जिट पर अनिवार्य तलाशी, नए प्रोटोकॉल हुए लागू। लखनऊ में यूपी डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बोले, CM योगी ने SIT जांच की समय सीमा बढ़ा दी है, 15 जुलाई तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। संबल में 101 करोड़ के सरकारी जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई, सहायक नगर आयुक्त राजकुमार गुप्ता गिरफ्तार। अलीगंज अग्निकांड में 7 जुलाई के बाद ध्वस्तीकरण की तैयारी, विवादित बिल्डिंग पर कार्रवाई तेज, बिना लाइसेंस पेट शॉप भी जांच के दायरे में। सम्राट चौधरी का अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को लेकर बड़ा बयान, शॉर्टकट वालों के लिए बेउर जेल फिक्स है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया को घर लेकर पहुंची पुलिस, हत्या से पहले रिहर्सल का खुलासा, जांच में साजिश के संकेत। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल, कांग्रेस में शरद पवार की पार्टी के विलय की तैयारी, सहमति बनी तो दिल्ली में लगेगी मोहर, फिलहाल राज्य स्तर पर हो रही है बातचीत। महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में एक्शन तेज, बिहार के वैशाली में STF की छापेमारी, साइबर कैफे संचालक समेत 3 हिरासत में। प्रियंका चतुर्वेदी ने कृषि क्षेत्र की महिलाओं को सम्मान देने पर CM फडणवीस की सराहना की, कहा ये कदम लंबे समय से अपेक्षित थे। दिल्ली में तेजेंद्र बग्गा की ओर से मंडी हाउस में राहुल गांधी के लगाए गए पोस्टर, मानहानि मामले में खेद जताने के बाद सियासी हलचल तेज। व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर की जांच करेगी सरकार, का टेलीग्राम की तरह गलत इस्तेमाल की आशंका, इस फीचर में यूजर नेम से होगी चैट मुमकिन। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार की सख्ती, मेटा कंपनी को भेजा नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब, बिना मंजूरी भारत में फीचर लॉन्च नहीं। नीट PG परीक्षा 2026 की तारीख का ऐलान, 30 अगस्त को होगा एग्जाम, रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने ग्रीन ड्राइव पोर्टल लॉन्च किया, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 70 लाख पौधे लगाने का होगा लक्ष्य। मोहन भागवत का बयान, विभाजन के बाद भारत आए लोग शरणार्थी नहीं बल्कि मातृभूमि और धर्म के लिए संघर्ष करने वाले योद्धा थे। भारतीय मर्चेंट नेवी के नाविक राकेश चौहान के परिजनों ने जताई आशंका, वेनेजुएला से लौटे शव में आंतरिक अंग गायब होने का लगाया आरोप, स्तरीय जांच की मांग। अहमदाबाद में 53 साल पुराना सुभाष ब्रिज से 3 स्पैन महज 3 सेकंड में सुरक्षित ढंग से ध्वस्त, नए पुल का निर्माण जारी। पुणे में खौफनाक सड़क हादसा, सड़क पार करते समय अचानक गिरा पेड़, स्कूली छात्रा बाल बाल बची। बाराबंकी में दर्दनाक हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत, पूरे गांव में पसरा मातम।
मनाली में उफनते जाहलमा नाले ने रोकी एम्बुलेंस, एलएनटी मशीन।

हुई भीषण आग, अफरा तफरी का माहौल काफी देर तक बना रहा, बुझाने में फायर टीम तैनात। मनाली में अटल टनल से निकलते अनियंत्रित हुई स्कॉर्पियो, बैरिकेड तोड़कर निर्माणाधीन पिलर में जा धंसी स्कॉर्पियो। राजस्थान में युवक की मौत, यूपी के तीन साथी घायल। ग्रेटर नोएडा में निजी कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। अहमदाबाद में 22 फूड पैकेट में 4 करोड़ रुपए के गांजे के साथ महाराष्ट्र का व्यक्ति गिरफ्तार, बैंकॉक से ड्रग्स लाने की साजिश नाकाम। कानपुर में लव जिहाद का बंधक बनी लड़की को छुड़ाने पहुंची पुलिस, आरोपी के कब्जे में एक की जगह मिली दो हिंदू लड़कियां, दोनों को छुड़ाया गया, पुलिस की कार्रवाई तेज। कानपुर में सड़क पर जोरदार हंगामा, महिला की मारपीट का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। बनासकांठा में युवक की अचानक हार्ट अटैक से हुई मौत, कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक जमीन पर गिर पड़ा, घटना कैमरे में हुई कैद। लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी, फेक इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 119 लोगों को हिरासत में लिया गया। विकासनगर में पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आई कार, क्षतिग्रस्त कार में बाल बाल बची, कार चालक की जान। नवी मुंबई के नेहरू इलाके में जल भराव में अंडरग्राउंड तार में आया करंट, बाइक सवार दो छात्राओं को सड़क पर पैर रखते ही लगा जोरदार झटका। नागपुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान जर्जर तीन मंजिला इमारत गिरी, सड़क पर फैल गया भारी मलबा। वलसाड में हाईवे पर चलते कंटेनर ट्रक में लगी भीषण आग, धुएं का गुबार दूर तक दिखा, सड़क पर लगा लंबा जाम। गुजरात के खेड़ा में पटाखा फैक्ट्री धमाके में 3 दिन के बाद एक मजदूर की मौत, सुरक्षा मानकों की बिना अनुमति के चलाई जा रही ये कंपनी में फरार मालिक पर दबिश तेज। देहरादून के विकास नगर में 2 मंजिला आवासीय भवन में लगी भीषण आग, मकान पूरी तरह से जलकर राख, कई मवेशी भी जिंदा जले। बिहार के सहरसा में सोते समय शख्स की पीट पीट कर हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने टायर में लगाई आग और किया सड़क जाम। उज्जैन में क्षिप्रा नदी में आरती के दौरान दीपक बेचने वाली महिलाओं और पुजारियों के बीच हुआ विवाद, दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। उन्नाव में अज्ञात वाहन को टक्कर से बुलेट नाले में गिरी, बारात से लौट रहे 2 दोस्तों की मौत। राजस्थान के पाली में अस्पताल में डॉक्टर की कुर्सी पर मिला सांप, मरीजों में काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। गाजियाबाद में मामूली रोडरेज विवाद में युवक की कथित तौर पर पीट पीट कर की गई हत्या, मामले में मुख्य आरोपी को किया गया गिरफ्तार। मुंबई में मूसलाधार बारिश का असर, दादर स्टेशन, कुर्ला ईस्ट और प्रभादेवी में जलभराव से जनजीवन प्रभावित। मुंबई में मूसलाधार बारिश से दादर के हिंदू कॉलोनी में जलभराव, लोगों की आवाजाही ठप। नागपुर में मॉनसून की धमाकेदार एंट्री, मूसलाधार बारिश से गर्मी में राहत, कई इलाकों में जलभराव। पालघर में मूसलाधार बारिश के बीच मकान की दीवार गिरी, मलबे में दबकर महिला की दर्दनाक तरीके से मौत। मुंबई में भारी बारिश के बीच शिंदे शिवसेना के कार्यकर्ताओं को राहत कार्ड में उतरने के निर्देश दिए गए हैं, 3 जोन में नोडल नेताओं की नियुक्ति की गई है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट हुआ है जारी, बारिश से कई संवेदनशील जगहों पर भूस्खलन की जताई गई है संभावना। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा में गुरेज में फिर फटा बादल, इलाके में मची अफरा तफरी। मूसलाधार बारिश से सिंथन टॉप पर भूस्खलन, NH-244 बंद हुआ, सड़क बहाल करने में जुटा प्रशासन। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गुलाबकोटी के पास सड़क धसी, मलबा आने के कारण बंद हुआ हाईवे। उत्तराखंड में मॉनसून का कहर, कई जिलों में भारी बारिश, हाईवे बंद, स्कूलों में छुट्टी, आपदा से जनजीवन प्रभावित। अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार हुआ खत्म, हर्षोल्लास के साथ पहला जत्था जम्मू से रवाना। सुबह 4:30 भगवती नगर यात्री निवास से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों के जत्थे को दिखाई हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा के लिए आस्था और उत्साह से खिल गए हैं श्रद्धालुओं के चेहरे, हर हर महादेव के गूंजे जयकारे। जम्मू में आज दोपहर तक कश्मीर घाटी

पहुंचेगा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था कल बालटाल और पहलगाम मार्ग पर बेस कैंप से शुरू होने वाली है यात्रा। इस बार 57 दिन तक चलेगी दिव्य अमरनाथ यात्रा, 28 अगस्त को होगी संपन्न। अमरनाथ यात्रा के लिए देश विदेश से जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और RFID कार्ड प्रक्रिया शुरू हो चुकी। जम्मू कश्मीर में पूरी यात्रा रोड पर बनाए गए कई ट्रांजिट कैंप, श्रद्धालुओं के रुकने और खाने पीने के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर की जांच। CCTV और ड्रोन कैमरों से की जा रही निगरानी, आतंकवादी मॉकड्रिल भी की गई आतंकवादियों को रोकने के लिए। ऑपरेशन शिवा के तहत होगी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, कमांडो की तैनाती और मल्टीलेयर सुरक्षा का विशेष इंतजाम। अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे, बुलेट प्रूफ वाहन और 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में लगाई गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए नई हवाई सेवाओं की सौगात, 11 और शहरों के लिए उड़ानें शुरू की गई हैं। नोएडा एयरपोर्ट से देश के 16 शहरों के लिए मिलेगी उड़ान, 15 जून से हुई थी यात्री सेवाओं की शुरुआत। तीर्थयात्रियों के लिए रेलवे ने सिकंदराबाद से दो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का किया ऐलान। अयोध्या, काशी, रामेश्वरम समेत कई तीर्थों पर जा सकेंगे भक्त।

0: नैनीताल में ट्रैफिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए बड़े फैसले, 1 अगस्त से मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा बैन। आलिया भट्ट स्टारर फिल्म अल्फा की रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर धूम, एडवांस बुकिंग से फिल्म ने करोड़ों की कमाई की। भूत बंगला के बाद फिर लौटेगी अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी, प्रियदर्शन अक्षय संग एक और नई फिल्म की डील की कंफर्म। हेरा फेरी 3 पर डायरेक्टर प्रियदर्शन का बड़ा बयान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल की कल्ट फिल्म फ्रेंचाइजी हेरा फेरी 3 को नहीं बना रहे हैं प्रियदर्शन। ग्लोबल बाजार में वेलकम टू द जंगल की बल्ले बल्ले, वेलकम टू द जंगल ने 6 दिन के भीतर 130 करोड़ का किया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। भारत इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच बारिश से हुआ प्रभावित, नहीं निकल पाया कोई नतीजा। इंग्लैंड में चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया मुकाबला, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर बनाए 189 रन। इंग्लैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने लगाया अर्धशतक, श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंद में नाबाद 59 रन बनाए। शिवम दुबे ने 21 गेंद में नाबाद 42 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला डेब्यू करने का मौका, 4 जुलाई को मैनचेस्टर में होगा दूसरा मैच।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: बात अब पुणे के चर्चित केतन हत्याकांड करेंगे। इस पूरे हत्याकांड की जांच में एक नई बात सामने आई है। पता चला है कि 18 जून को लोगढ़ किले में केतन को धक्का देने से पहले सीआर उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने लुल्ला नगर में इसका रिहर्सल किया था। जहां रिहर्सल किया गया वो इलाका सीआर के घर से महज 5 मिनट की दूरी पर है। जांच में ये सामने आया और ये संकेत मिलता है कि केतन की हत्या कथित तौर पर पहले से सुनियोजित थी। सिया को पुलिस आज उस जगह ले गई जहां केतन को धक्का मारने का रिहर्सल किया गया। यहां से पुलिस आरोपी सिया को उसके घर लेकर पहुंची, जहां से 18 तारीख को घटना के दिन पहने गए उसके कपड़े जब्त किए गए। लोनावला ग्रामीण पुलिस की टीम करीब 1.5 घंटे तक उसके घर पर मौजूद रही। देवेश सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। देवेश, मर्डर और उसके मर्डर के पहले प्री प्लानिंग जिसमें बकायदा एक ड्रेस रिहर्सल किया गया, क्या डिटेल्स मिल रहे हैं इसके?
3: ये आपको बता दें कि लोला नगर का ये जो स्पॉट है पुणे में, ये सिया के घर से काफी करीब है और यही जगह पुलिस बता रही है कि इसी जगह पर चेतन चौधरी और सिया गोयल ने रिहर्सल किया था कि चेतन अग्रवाल को धक्का कैसे मारा जाए, लोहगढ़ किले से उसे कैसे धक्का मारा जाए, इसकी प्लानिंग और इसका रिहर्सल इसी स्पॉट पर किया गया था और इसीलिए सिया गोयल को आज पुलिस इस स्पॉट पर भी ले गई। हो सकता है कि क्राइम सीन रिक्रिएशन, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट कड़ी है जो कॉन्स्पिरेसी फॉर मर्डर है, इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है, इसीलिए सिया गोयल को स्पॉट पर ले जाया गया। वहां पर निगरानी की गई, वहां पर चेक किया गया कि कौन से स्पॉट पर वो गए थे, कैसे रिहर्सल हुआ था और ये सब चार्जशीट में मेंशन किया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस ने कोर्ट में भी एक अर्जी लगाई है, वो टेस्ट करना चाहते हैं सिया गोयल और
0: चेतन चौधरी का। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पुणे ग्रामीण पुलिस ने केतन अग्रवाल मर्डर मामले में आरोपी सिया गोयल का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की इजाजत के लिए बड़गांव मावल कोर्ट में अर्जी दी है। कोर्ट को पुलिस ने बताया कि सिया गोयल और सह आरोपी चेतन चौधरी दोनों के बयान पहले ही दर्ज हो चुके हैं, लेकिन आगे की जांच के लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट की जरूरत है। जांचकर्ताओं ने कहा कि आरोपियों के बयान के अलावा ऐसा कोई सीधा चश्मदीद गवाह या पक्का सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि केतन अग्रवाल को खाई में किसने ढकेला। पुलिस का कहना है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में जांच में नए सुराग मिल सकते हैं। आज तक से बातचीत में सिया के वकील विपुल दुशिंग ने कहा कि ऐसे किसी भी टेस्ट को करने के लिए आरोपी की सहमति जरूरी है।
4: त्यांचा प्रयत्न आहेच ना, तो लाई डिटेक्टर साठी काल त्यांची मागणी होतीच कोर्टामध्ये, लाई डिटेक्टर टेस्ट त्यांना करण्याचा प्रयत्न आहेच त्यांचा। आता त्याची ऍडमिसिबिलिटी किती आहे काय आहे ते सगळं आता पुढचा मुद्दा आहे, कारण अशी लाई डिटेक्टर टेस्ट आजपर्यंत अनेक वेळा झालेले आहेत, अनेक केसेसमध्ये घेतलेले आहेत, पॉलिग्राफ असेल, लाई डिटेक्टर असेल, ब्रेन मॅपिंग असेल, नार्को टेस्ट असतील, अशा भरपूर केसेसमध्ये झालेल्या आहेत, पण त्याच्या ऍडमिसिबिलिटी बद्दल अजून तो ग्रे एरिया आहे। त्याच्यामुळे आता त्याचा ते वापर त्यांच्या मनात म्हणजे पोलिसांच्या डोक्यात तर ते आहे करायचं, आता ते कसं होतंय ते बघूयात आता.
0: और बाद दिल्ली के वसंत कुंज हिट एंड रन मामले की हिट एंड रन में अपने बेटे सार्थक मट्टू को खोने वाले माता पिता ने अब इंसाफ की मांग की है. सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के सीएम और पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई गई है. वीडियो में वो सरकार से बेटे की मौत पर इंसाफ की मांग करते दिख रहे हैं. माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, बेटे की मौत से वो काफी ज्यादा क्षुब्ध हैं और इंसाफ के लिए घर और गहने तक बेचने की बात कह रहे हैं. लेकिन अपने बेटे के इंसाफ दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ते रहेंगे. दरअसल 25 जून को दिल्ली के रजौकड़ी फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार ब्लैक थार ने बाइक सवार 34 वर्षीय सार्थक मट्टू को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें उसकी जान चली गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था.
5: प्रधानमंत्री जी कहां, प्रधानमंत्री जी कहां, अमित शाह जी कहां, कमिश्नर साहब आप कहां हो, रेखा गुप्ता जी आप कहां हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, मेरे बेटे को न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे शायद अकेले करना पड़े, अपने वाइफ के जेवर बेचूंगा, मकान बेचूंगा, आई वॉन्ट दोज किलर्स बिहाइंड द बार्स टू बी हैंग्ड टू डेथ.
0: तो अब न्याय की गुहार, न्याय के लिए इंसाफ की मांग के साथ ये वीडियो पोस्ट किया गया है. ये दरअसल बेटे की मौत के लिए इंसाफ चाहते हैं सार्थक मट्टू के माता पिता.
5: कमिश्नर साहब आप कहां हो, रेखा गुप्ता जी आप कहां हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, मेरे बेटे को न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे शायद अकेले करना पड़े, अपने वाइफ के जेवर बेचूंगा, मकान बेचूंगा, आई वॉन्ट दोज किलर्स बिहाइंड द बार्स टू बी हैंग्ड टू डेथ.
0: अब बात महुआ मोइत्रा की करेंगे, जिनका आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने उनके घर पर अंडे फेंके, उनके खिलाफ नारेबाजी की. महुआ ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया. इस वीडियो में बंगाल के नादिया जिले में स्थित टीएमसी विधायक आलिया अहमद खिलाफ के आवास का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां महुआ पहुंची थी.
6: क्या हुआ, किंतु प्लीज सी, देखो दारो दारो दारो हो, प्लीज सी, पुलिस के सामने, पुलिस के सामने, लुक एट द वे दे आर थ्रोइंग, कैन यू हियर द नॉइस, आवाज का सुनते पाचेन, जस्ट सी तीन तलार ओपरे किभाबे ओरा पेचे, सीआरपीएफ एर सामने, सेंट्रल पुलिस एर सामने, देखुन आपनारा
7: सिविलकर हमला हो रहा था, इलीगल गैदरिंग हो रहा था, अटैक कर रहा था, ये क्या हो रहा है, और पुलिस पूरा इनएक्टिव था. ये ये ये ये वो लोग जो कर रहे हैं वो गाजवारी करके, वो पुलिस को इनएक्टिव करके, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा एक तरफ करके हमला करके वो तृणमूल कांग्रेस का गला दबा रहा है.
8: अभी हम सुना है, देखो ना पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्या है, एमपी घुसने नहीं सकता है. कल हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हुआ, उस ऑर्डर के बाद भी पुलिस कुछ नहीं सुनता है, तो एक किसी को कोई जगह में घुसने नहीं देता है, मोहम्मद को भी घुसने नहीं दिया.
9: तृणमूल को मार रहे हैं और सरकार हमारा चल रहा है. पुलिस कौन का किसका जेब में अगर अंडा होगा तो इसको पकड़ने के लिए तो कोई मशीन नहीं है, मेटल डिटेक्टर नहीं है, शायद मेटल डिटेक्टर से अंडा को पकड़ा नहीं जाता. तो हम लोगों को नया मशीन लाने दीजिए विदेश से, ऐसा टेक्नोलॉजी तो है नहीं, अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में नहीं है, हिंदुस्तान का है कि नहीं हमको मालूम नहीं है. तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है. तो तृणमूल को इसको सलटाना चाहिए, तृणमूल को इसको ढूंढ कर निकालना चाहिए, कौन कार्यकर्ता कौन नेता के ऊपर अंडा फेंक रहा है, अंडा फेंकना बंद होना चाहिए.
0: वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हौसला, बने रहिए हमारे साथ, टिकते रहिए आज तक.
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस,
2: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी.
11: ट्यून इन इज ब्रिंगिंग टुगेदर योर म्यूजिक, न्यूज, स्पोर्ट्स एंड मोर, ऑल इन वन प्लेस. वेदर यू लव म्यूजिक, want to stay in the know with top news,
12: continue to face political pressure to reach a peace deal,
11: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
10: Sokudo.
13: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ जापान ऑन द एक्सपेंशन ऑफ बायोगैस एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी। दीज फोर डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सचेंज बाय हिज एक्सेलेंसी मिस्टर ओनो केइची, Ambassador of Japan to India, and Shri Vikram Misri, Foreign Secretary of India.

0: Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I would like to inform that Prime Minister Modi will be addressing the media in Hindi. Members of the audience may use the audio device provided to listen to the translation in English and Japanese languages. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings.
1: Namaskar, good afternoon, Your Excellency Ms. Takaichi Sanai, Prime Minister of Japan, Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations and friends from the media. We will now have the press statements by the two leaders. May I request Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, to give his remarks to the media.
2: Your Excellency, aur meri choti behan, Pradhanmantri Takaichi ji, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, कोनिचिवा। इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी हैं। इतना ही नहीं, वे जापान के नारा प्रीफेक्चर से आती हैं, जो भारत जापान की साचा बौद्ध विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले G7 समिट में मैंने कहा था कि वैश्विक उथल पुथल के आज के माहौल में आपसी विश्वास हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है और मुझे गर्व है कि भारत जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं, एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज AI के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय AI इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक AI विकास को नई गति और शक्ति देगा। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी। फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस और बायोटेक में आज किए गए एग्रीमेंट से हम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में भी योगदान देंगे। भारत का स्केल और जापान की क्वालिटी को जोड़कर हम अफोर्डेबल, रिलायबल और एडवांस हेल्थ सॉल्यूशंस दुनिया तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। फ्रेंड्स, भारत जापान इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप निरंतर सुदृढ़ हो रही है। पिछले एक वर्ष में करीब 120 नए बिजनेस एग्रीमेंट्स हुए हैं जिनसे भारत में 10 बिलियन डॉलर से अधिक जापानी इन्वेस्टमेंट आएगा। आज फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी के बीच एग्रीमेंट से कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फ्लोस और सुगम होंगे। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट और भारत में जापानीज कंपनी की संख्या दोगुनी करना। भारत में लगातार हो रहे रिफॉर्म से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है, जापान की कंपनीज भी इसका लाभ उठा सकती हैं। फ्रेंड, आज के अनिश्चितता भरे युग में भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी आज हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी। इससे हमारी गोवर्धन पहल और मजबूत होगी। इससे भारत के गांवों में सस्टेनेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और रूरल लाइवलीहुड को नई शक्ति मिलेगी। ऑयल शॉक जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आज हमने एनर्जी रेजिलियंस पर भी एक महत्वपूर्ण पहल की है। साथ ही बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी में हमारा सहयोग विश्व के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत और जापान मिलकर इकोनॉमिक सिक्योरिटी को शेयर्ड सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन को शेयर्ड अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लेते हैं और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम करेंगे और उसको बदलेंगे। फ्रेंड, आज हमने भारत जापान नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। इसे अब हम ऑटोमोटिव सेक्टर में हमारी सक्सेस स्टोरी को शिप बिल्डिंग, एविएशन और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में भी दोहराएंगे। फ्रेंड, हमारे संबंधों की बड़ी ताकत हमारी पीपल टू पीपल टाई है। हम टैलेंट मोबिलिटी, स्किलिंग और टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम इसके अवसर भी बढ़ा रहे हैं और दोनों देशों के बीच रिसर्च, एजुकेशन और स्टार्टअप सहयोग भी सुदृढ़ कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि अगले वर्ष हम भारत जापान डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम कल्चर, टूरिज्म और क्रिएटिव इकोनॉमी सहयोग से आपसी कनेक्ट और प्रगाढ़ करेंगे। योर एक्सेलेंसी, भारत और जापान की इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री है। सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच और अप्रोच भी समानता है और सबसे बढ़कर हमारे संबंधों की नींव अटूट आपसी विश्वास पर टिकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह विशेष साझेदारी सशक्त और समृद्ध जापान के आपके विजन, विकसित भारत के हमारे संकल्प और विश्व की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। एक सशक्त और समृद्ध जापान का आपका विजन, विकसित भारत का हमारा संकल्प और पूरे विश्व की प्रगति को मिलकर साकार करें। मैं फिर से एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरिगतो गोजाइमास।
1: थैंक यू सर। May I now request Her Excellency Ms. Takaichi Sanai, Prime Minister of Japan, to give her remarks to the media.
3: Ladies and gentlemen,
4: good afternoon and namaskar. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and develop this relationship as brother and sister. Japan and India must leverage our respective strengths to become stronger and more prosperous together. In the midst of international affairs in disarray, the establishment of such intercomplementary cooperative relationship has become ever more important. From such perspective, as Prime Minister Modi and I engaged in discussions over diverse issues, we again were reminded of the many goals we share. And we confirmed to place the following three points at the center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation. I recently announced the updated FOIP, Free and Open Indo-Pacific, which focuses on self-reliance and resilience to realize FOIP. On the other hand, Prime Minister Modi positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative for countries.
5: Pranay Upadhyay, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ. प्रणय, जो इंडो जापान शिखर सम्मेलन इसके हाईलाइट पॉइंट्स क्या रहे, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि हर क्षेत्र में हम जापान के साथ प्रगाढ़ता को बढ़ाना चाहते हैं.
6: निश्चित रूप से नेहा, आपने प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची को सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना. प्रधानमंत्री मोदी ने तो जापान के प्रधानमंत्री को अपनी छोटी बहन ही बता दिया, और ये बताता है कि संबंधों की जो प्रगाढ़ता भारत और जापान में है उसको किस तरीके से दोनों देशों की आर्थिक व्यवस्था के इंजन को मजबूत करने के लिए, दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए और खासतौर पर जो आर्थिक साझेदारी है उसको मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. खासतौर पर हिंद प्रशांत के क्षेत्र में कैसे भारत और जापान, जो कि इस एशिया की दो बड़ी आर्थिक ताकतें हैं, वो मिलकर काम कर सकती हैं, रूल बेस्ड ऑर्डर स्थापित कर सकती हैं. साथ ही भारत और जापान के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है वो स्पेशल भी है और ग्लोबल भी है, यानी विशेष भी है और उसको उसके वैश्विक मायने हैं. इस लिहाज से है कि ये दोनों देश मिलकर तीसरे देश के अंदर भी न केवल आर्थिक विकास की परियोजनाएं स्थापित कर सकते हैं, बल्कि एक रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए, जैसे कि डिफेंस के अंदर भी जब भारत और जापान मिलकर कोलैबोरेट करेंगे तो इस तरीके के प्रोडक्ट विकसित करेंगे जो कि रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए अन्य देशों को भी निर्यात किए जा सकें, तो ये महत्वपूर्ण योगदान होगा. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज का भी जिक्र किया कि भारत और जापान के बीच अगले साल में 2027 के अंदर जो राजनयिक संबंध है उनकी 75वीं वर्षगांठ है, और इस संबंध में कैसे भारत और जापान.
5: शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी के लिए. आप तो अभी आपने भारत जापान शिखर सम्मेलन के बाद पीएम के संबोधन को सुना. अब शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश जल से जंग, और बात करेंगे कैसे देश के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय हो गया. जबरदस्त बारिश अलग अलग इलाकों में हो रही, खासतौर पर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश का प्रहार है. मुंबई में आज हाई टाइड का अलर्ट है. वैसे वहां हर रोज ही हाई टाइड आती है, लेकिन आज मौसम विभाग ने चेतावनी ये दी है कि आज समंदर किनारे ना जाएं, समुद्र में बिल्कुल ना प्रवेश करें, क्योंकि लहरें 4 मीटर से भी अधिक ऊंची रह सकती है. ये खतरनाक स्थिति है.

0: तो मुंबई में हाई टाइड आने वाला है। अब किसी भी वक्त मुंबई के तट पर 4 मीटर से अधिक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इस समय मुंबई के तट पर तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, हाई टाइड का अलर्ट है। समंदर में आज 4 मीटर से अधिक ऊंची लहरें उठने की आशंका मौसम विभाग ने जता दी है। ऐसे में समुद्र से दूर रहने की सलाह दे दी गई है। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, हाई टाइड का अलर्ट और ऐसे में वहां पर सुरक्षित और सावधान रहने की सलाह।
1: जी, लेकिन मौसम अच्छा है तो मुंबईकरों को बहुत ज्यादा रिलीफ। आप सब देख लीजिए, अगर मैं आपको दिखा दूं, इतनी भारी तादाद में दरअसल लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं समुद्र किनारे। हाई टाइड में जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं उसको इनफैक्ट पुलिस के जो अधिकारी, अगर आप देखें वो येलो सूट में, जगह जगह पे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंच के बोल रहे हैं लोगों को समुद्र किनारे से हटने के लिए। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले हैं, आप देख लीजिए। काफी सारे लोग, खासतौर से रील बनाने वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर हैं और कोशिश इनकी यही है कि सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक वीडियोस के साथ वो अपने वीडियोस बना लें। तो फिलहाल यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, हालांकि बहुत ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही हैं।
0: इसके साथ ही वहां पर सावधान रहने की अगर चेतावनी जारी की गई है, हमने देखा है कई बार इसमें हादसे भी हो जाते हैं, क्या अतिरिक्त वहां पर और पुलिस बल की तैनाती हो सकती है, क्योंकि शाम ढलते ढलते तो शायद और भीड़ पहुंच जाए। विद्या
1: जी बिल्कुल, लेकिन उस समय जरा हाई टाइड कम हो जाएगा तो उतनी ज़्यादा परेशानी लोगों को, जो अधिकारी हैं उन लोगों को नहीं होगी। लेकिन इस वक्त हाई टाइड के समय में खासतौर से, क्योंकि 4.53 मीटर्स की हाई टाइड है और साथ ही तकरीबन 14 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं, और अगर मैं आपको दिखा दूँ, देख लीजिए काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश उनकी यही है कि वो एंजॉय करके ढेर सारे फोटोज़ और वीडियोज़ ले लें। देख लीजिए यहाँ पे अभी लोगों ने, वहाँ से पुलिस वालों ने आगे से हटाया उनको, तो यहाँ अब इस तरफ जाके वो समुद्र किनारे पहुँच गए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ ज़रूर है और लोग, अधिकारियों की कोशिश यही है कि जो जिस तरीके से हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, मेरा छाता भी बार बार उड़ जा रहा है, लेकिन कोशिश जो अधिकारियों की यही है कि इस समय कहीं किसी अनहोनी को न हो यहाँ पर।
0: ठीक है विद्या, मेरी सहयोगी वहां से जानकारी देती हुई। और काफी तेज हवाएं इस वक्त मुंबई के तटीय इलाकों में चल रही है। मॉनसून की दस्तक की भी अब बात करेंगे, जहां पर मुंबई के आसपास इलाकों में मूसलाधार बारिश इस वक्त हो रही है। मॉनसून के पहले ही स्पेल में मुंबई जैसे डूबने से लगी है। बीती रात से वहां रुक रुक कर बारिश हो रही है। सिर्फ मुंबई नहीं, ठाणे, वसई, पालघर में भी यही आलम है।
2: ये मानसून के दस्तक की गवाही है, ये मुंबई मानसून का आगाज है। ये तस्वीरें बताने के लिए हैं कि माया नगरी मुंबई बिल्कुल नहीं बदली। हर बार बारिश में डूबती थी, इस बार फिर डूबेगी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बादल जमकर बरस रहे हैं। मुंबई में तो पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है और आने वाले दिन भी ऐसे ही रहने वाले हैं।
3: क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के साइन स्थित गांधी मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं ये गांधी मार्केट की सड़कें जो है बिल्कुल नदी में तब्दील हो गई है। गाड़ियां को काफी प्रेशर लगा करके आगे की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करेंगे तो उनकी गाड़ियां बंद हो जाएगी और एक बड़ी परेशानी हो जाएगी। आपको बता दें मुंबई और आसपास के इलाके में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते हालांकि आज जो है मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: मुंबई में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई है। सांता क्रूज में 165.9 मिलीमीटर, जुहू एयरपोर्ट पर 164.5 मिलीमीटर, विक्रोली में 163 मिलीमीटर, बांद्रा में 141.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
3: तस्वीर में देख सकते हैं अंधेरी सबवे और इस पानी के तेज बहाव को देख सकते हैं कि कितना तेज पानी है। कोई भी आदमी जो है आमतौर पर इस तेज बहाव में रुकना मुश्किल हो जाएगा, वो अपनी किसी तरह ना तो गाड़ी लेकर जा सकता है ना ही पैदल जा सकता है। लिहाजा एहतियातन मुंबई पुलिस ने अंधेरी सबवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। तस्वीर में देख सकते हैं मुंबई पुलिस के जवान हैं, वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं मुंबई पुलिस की यहां पर गाड़ी भी लगी हुई है, जो लोगों को यहां से आगे ना जाने की हिदायत दिया जा रहा है, क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज है और यहाँ पर जो है मुंबई पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है जो लोगों को सलाह दे रहे हैं।
2: वसई के पहाड़ी इलाके में इतनी बरसात हुई कि भारी भरकम गाड़ियां खिलौने की तरह बह गई। ये वसई का वाघरालपाड़ा इलाका है जहां पानी के तेज बहाव में दो गाड़ियां नाले में बह गई। गनीमत रही कि समय रहते कार सवार नीचे कूद गए। गाड़ी जब पानी में बहने लगी तो लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई पानी में उतरकर गाड़ियों को रस्सी से बांध सके। गाड़ियों को निकालने के लिए जेसीबी बुलानी पड़ी। बुलडोजर की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों वाहन निकाले गए। इस घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि झरनों और नालों के पास जाने से बचें।
4: इस वक्त हम मुंबई के
0: बात पहाड़ों की करेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में फ्लैश फ्लड आ गया है। श्रीनगर, डोडा, कुपवाड़ा में पानी के साथ मलबा भी देखा गया। गनीमत यह रही कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मानसून ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए।
5: उत्तर भारत में मॉनसून की पहली बारिश में ही पहाड़ों की हालत खराब हो गई है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक मूसलाधार बरसात हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी जम्मू कश्मीर में दिख रही है, जहां कई इलाकों में फ्लैश फ्लड ने मुसीबत बढ़ा दी है। ये कुपवाड़ा की तस्वीरें हैं। तेज बारिश के बाद अचानक मलबों का ढेर नदी की धारा में बहने लगा। गनीमत रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। घाटी के छोटे मोटे नाले इन दिनों उफान पर है। ऊंचाई वाले इलाकों से तेजी से पानी आता है और सब कुछ बहा ले जाता है। मॉनसून भले ही उत्तर भारत में देरी से पहुंचा हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों में तबाही शुरू हो चुकी है। ये जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीरें हैं, जहां बादल फटने से तबाही मची है। किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे बंद हो गया है। डोडा में कलाल किसर क्षेत्र में ये बादल फटा है, जिसके बाद फ्लैश फ्लड के हालात हैं। अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है भलेसा इलाका, जहां अंदरूनी गांवों को जोड़ने वाली कई सड़कें कट गई हैं। बाढ़ का पानी अपने साथ कीचड़ और मलबा बहा कर लाया है, जिससे संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें बांदीपुरा के गुरेज वैली की हैं, जहां भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बनी। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के कारण नालों में तेज पानी का बहाव आया, जो अपने साथ कीचड़ और लकड़ी का मलबा बहा कर लाया। इससे धाराओं में अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और पानी कुछ रिहायशी इलाकों और खेतों में घुस गया। ये तस्वीरें अनंतनाग की है, जहां पहाड़ों से पानी की तेज धारा निकली और बाजारों तक फैल गई। अचानक बाजार में आई इस आफत से अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पानी की तेज धारा में सामान बहने लगे। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ।
6: बुधवार शाम से पूरे जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज अचानक बदला। कहीं पर धूप है और कहीं पर बारिश। उस बीच कश्मीर के कई इलाकों में बादल फटने से फ्लैश फ्लड आए हैं। खासतौर से अगर गुरेज घाटी की बात करें या फिर उत्तरी कश्मीर के जो कुकरनाग इलाका है, वहां पर कई जगहों पर बादल फटने से न सिर्फ सड़कों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि साथ ही साथ कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कई दिनों तक इस तरह कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बादल फट सकते हैं।
5: सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी बादलों ने मुसीबत बढ़ा दी है। मानसून की पहली बरसात से चंबा के पांगी में घीसल में बादल फटा। अचानक तेज बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड आ गया, जिसकी वजह से कई संपर्क मार्ग बंद हो गए। सड़कों पर मलबा आ गया है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
0: इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
9: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
11: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
12: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
13: कुछ तो बात है इस दिल में।
14: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
13: कुछ तो बात है इस दिल में।
15: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
16: सरसों से सरसों।
17: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
18: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
19: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.
2: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of
3: music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
0: Sanitary Solutions.
4: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है.
5: कुछ तो बात है इस दिल में.
6: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी. ये आपके लिए.
5: We mark the mustard specialist since 1933.
7: Alpha.
8: आपने कहा था ये सबसे तेज है.
9: हाँ कहा था,
8: लेकिन ये तय कैसे होता है? फ्रेशर.
9: जब पूरा देश जवाब ढूंढ रहा होता है तब ये सवालों के बीच खड़े हो जाएंगे.
10: पहला भारतीय चैनल.
9: ये हमेशा सबसे पहले पहुँचते हैं क्योंकि ये खबर का इंतजार नहीं करते. खबर तक पहुंचने
11: मणिपुर के उस ग्राउंड जीरो पर है.
12: जगह जगह लाक्षागृह चल रहे हैं जिनसे आपको खबरदार करने के लिए आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है.
13: बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रपति पुतिन आज तक पर आने के लिए.
9: सिर्फ अनुभव, उससे ज्यादा भरोसा.
13: आज तक की खबर का असर हुआ है.
9: हर दिन कमाया जाता है. क्या ये आपके ऑपरेटिव है? नहीं, ये भारत के ऑपरेटिव है.
14: अल्फा अल्फा को पहचानते हैं.
15: भारत के अल्फा जर्नलिस्ट, भारत के सबसे बड़े अल्फा न्यूज नेटवर्क पर.
16: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com. क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

चढ़ावा चोरी की जांच की जद में ट्रस्ट के दिग्गज, पूछताछ में अनिल मिश्रा का आरोपों से इनकार। चंपत के चिन्नू पर फोड़ा ठीकरा, चिन्नू का भाई बोला बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के ऑडिट की होगी जांच, गोपाल राव से भी हो सकती है पूछताछ। अयोध्या के वकीलों ने चंपत, अनिल और गोपाल राव के खिलाफ दी शिकायत, आज से SIT फिर सक्रिय। 12 जापान के बीच तकनीकी साझेदारी का करार, AI डिफेंस के क्षेत्र में नया अध्याय। जापान की PM को मोदी ने बताया छोटी बहन, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी में बम बम भोले की गूंज, LG ने रवाना किया श्रद्धालुओं का पहला जत्था, कल बालटाल और पहलगाम से होगी औपचारिक शुरुआत, रूट पर भारी सुरक्षा। दिल्ली में आ गया मानसून, मौसम विभाग ने की पुष्टि, मुंबई के पास समुद्र हाईटाइड, पहाड़ों पर जगह जगह लैंडस्लाइड और तबाही का मंजर।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज गए हैं और एक बार फिर न्यूज रूम लाइव में हम आपके सामने हाजिर हैं। न्यूज रूम लाइव से ही आज की हम सारी बड़ी खबरें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जैसा कि करते हैं बता देते हैं कि कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें छोटी बहन कहा, लेकिन जापान और भारत के रिश्तों को क्या मजबूती मिलेगी, आगे भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये बताएंगे। दूसरी जो हमारी बड़ी खबर रहेगी वो दूसरी बड़ी खबर रहेगी राम मंदिर से जुड़ी हुई। हालांकि इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मनीष तिवारी का जो बागी पोस्ट आया है और पंजाब में क्या सब ठीक है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा क्या टैलेंट ही खामी है, तो सवाल उठने लगे ऐसा क्यों कहा। और तीसरी जो हमारी बड़ी खबर रहेगी वो राम मंदिर से जुड़ी हुई रहेगी, क्योंकि राम मंदिर में खुलासे बहुत से होते जा रहे हैं। अब तो वकीलों ने भी मोर्चा खोल लिया है, एफआईआर की मांग कर रहे हैं। किसके खिलाफ एफआईआर की मांग की जा रही है, ये हम आपको बताएंगे। और ठीक 2:30 बजे हम आपको बताएंगे चलो बुलावा आया है और बाबा बर्फानी ने बुलाया है, भारी सुरक्षा के इंतजाम है। डिटेल रिपोर्ट आपको 2:30 बजे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि अब राम मंदिर मामले में जो वकील हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और बार एसोसिएशन, अयोध्या बार एसोसिएशन ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव इन पर FIR दर्ज करने की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सवालों के घेरे में आ गया। इस्तीफा दे चुके ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा, व्यवस्थापक गोपाल राव के खिलाफ FIR की मांग की गई। अयोध्या बार एसोसिएशन ने पुलिस थाने में तीनों के खिलाफ तहरीर देकर केस दर्ज करने की मांग की और कहा है कि थाने में FIR अगर नहीं हुई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। SIT अब ट्रस्ट के पिछले 5 वर्षों के ऑडिट और हर वित्तीय लेनदेन की बारीकी से जांच भी करेगी और SIT की टीम अयोध्या पहुंच भी सकती है।
1: चार लोगों का है, तीन लोग पहले से हैं, एक जो कंप्लेनेंट रहे हैं उनके उस मुकदमे के कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है इसलिए, और माल भी वहीं से बरामद हुआ है इसलिए हमारे मुकदमे में वो भी मुल्जिम है। हाँ, तहरीर दे दिया है। तीन के हैं, एक और हैं। एक में वो है जिन्होंने पहली वाली FIR दर्ज कराई, वो भी इसमें अभियुक्त है।
2: उसमें भी ये भी है
1: अभियुक्त है।
2: पुलिस ने आपको क्या बोला है कि वो क्या करेगा?
1: पुलिस ने उसके रिसीव किया है, टाइम डाला है, मोहर लगाई है और थाने में GD उन्होंने दर्ज किया है। अब जाकर के वो भी दर्ज करके कॉपी देने का उन्होंने आश्वासन दिया है।
0: कालिका मिश्रा, इनको आप सुन रहे थे, ये अध्यक्ष हैं अयोध्या बार एसोसिएशन की, मांग कर रहे थे कि तहरीर दे दी है, FIR भी इनके खिलाफ होनी चाहिए क्योंकि बहुत कुछ खुलासे हो रहे हैं और इन्होंने कहा है कि अगर नहीं होता है तो उसके बाद कोर्ट का दरवाजा तो हमारे लिए खुला ही हुआ है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, अब तो अयोध्या बार एसोसिएशन सामने आ गया है, FIR की मांग कर रहा है और क्या जानकारी मिल पाई आपसे जुड़ी हुई?
3: देखिए, अयोध्या बार एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है और मैं इस समय पर राम जन्मभूमि थाने पर ही मौजूद हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही अयोध्या बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, जिसमें एसोसिएशन के महामंत्री शैलेंद्र जायसवाल की तरफ से 3 पेज की तहरीर दी गई है और इस तहरीर में जो 3 नाम है, राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी चंपत राय, महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इन तीनों के ऊपर FIR दर्ज करने के लिए, अलग FIR दर्ज करने के लिए ये तहरीर दी गई है। इनका कहना है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए 8 लोग, ये तो छोटे लोग हैं, इनके ऊपर सिर्फ ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन असली चोरी करवाने वाले ये 3 लोग हैं, लिहाजा इनके ऊपर भी FIR दर्ज होनी चाहिए। और इसीलिए जो अयोध्या बार एसोसिएशन के महामंत्री शैलेंद्र जायसवाल की तरफ से जो तहरीर दी गई है ये राम जन्मभूमि थाने में रिसीव करा दी गई है, पुलिस ने ये रिसीव कर ली है और इसको रिसीविंग भी दे दी गई है एसोसिएशन के लोगों को। तो ये कहा जाए कि लिखा पढ़ी में एसोसिएशन ने FIR की तहरीर दे दी है और अयोध्या पुलिस को, राम जन्मभूमि थाने की पुलिस को वो तहरीर मिल भी चुकी है। अब ये आगे FIR दर्ज होती है वो कानूनी पहलू है कि FIR दर्ज होती है नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वकील इस बात के लिए भी तैयार है कि अगर थाने में FIR दर्ज नहीं होते वो कोर्ट का रुख करेंगे, कोर्ट के जरिए कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटाएंगे और वहां पर तहरीर दी जाएगी और कोर्ट के से आदेश करवाकर FIR दर्ज करवाएंगे। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर उनका कहना है कि FIR दर्ज होनी चाहिए और वो अलग FIR दर्ज होनी चाहिए, इसीलिए वो तहरीर यहाँ दी है और जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे।
0: कह दिया है कि कोर्ट का दरवाजा अभी खटखटाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस मामले में देखिए जांच हो रही है, अब जांच के बाद पूछताछ भी हो रही है। अब जब राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, उनकी तरफ से क्या कह दिया गया? उनकी तरफ से पूरा ठीकरा फोड़ दिया गया है टिन्नू यादव पर। अब टिन्नू यादव पर ठीकरा फोड़ दिया गया है तो दूसरी तरफ आरोपियों से पूछताछ की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन अभी इस पूरे मामले में अपडेट क्या है, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।

क्या राम मंदिर में नियुक्तियों में रिश्वत ली गई? क्या राम मंदिर में भर्ती रैकेट चल रहा था? क्या रिश्वत के पैसे बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचे? राम मंदिर में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी? वो 22 जनवरी 2024 की तारीख थी, यानी तकरीबन 2 साल 5 महीने 10 दिन पहले, जब अयोध्या में धूमधाम से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वो दिन था जब करोड़ों राम भक्तों की मनोकामना पूरी हुई थी। लगा था कि प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राम मंदिर आंदोलन के तमाम अध्याय पूर्ण हो गए।

0: कि मंदिर के रिकॉर्ड में नियुक्तियों से संबंधित कई दस्तावेज गायब पाए गए। नियुक्ति पत्र, औपचारिक सेवा अनुबंध या रोजगार से संबंधित अहम दस्तावेज नदारद मिले। दस्तावेजों के गायब पाए जाने के बाद ही जांच एजेंसियों को लगा कि इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। ये पता लगाना जरूरी है कि क्या नियुक्तियों के बदले पैसे की उगाही की गई। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को मंदिर में नियुक्त सभी कर्मचारियों की सूची मिल गई है, जिसकी अब बारीकी से छानबीन की जा रही है। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि पैसे की उगाही करने वालों में ट्रस्ट के कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल रहे। जांच में जिन अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं उनसे जल्द ही पूछताछ की जाएगी। संदेह के दायरे में आने वालों के बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जाएगी। जो भी होगा, एसआईटी को इस बारे में ठोस सबूत या तथ्य मिलते हैं तो इसे जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। यानी जांच सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक सीमित नहीं रहेगी, इसमें भर्ती घोटाला भी शामिल होगा। शायद एक वजह यह भी है कि एसआईटी का कार्यकाल 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: हर जगह बात हो रही है चंपत राय की। अब चंपत राय ने भले ही महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन एक बात तय है कि चंपत राय अगर खुद नहीं चाहेंगे तो उनको कोई हटा भी नहीं सकता है। देखिए, आस्था के पास ट्रस्ट के बायलॉज हैं। अब उस बायलॉज की अगर बात करेंगे तो उसके मुताबिक जब बात ट्रस्ट की आती है तो ट्रस्ट का असली मकसद मंदिर निर्माण, सुविधाओं का विकास और रखरखाव करना है। अब इसी में मंदिर को मिलने वाले धन और मूल्यवान वस्तुओं के संग्रह, चल अचल संपत्ति प्राप्ति और कानूनी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी ट्रस्ट की है। हालांकि ट्रस्ट के गठन के बाद व्यवस्था थी कि हर बैठक में बड़े फैसले लिए जाएंगे और उनका ब्यौरा भी रखा जाएगा, लेकिन मंदिर निर्माण और उद्घाटन तक इस ट्रस्ट में जो बड़े फैसले लिए जाते रहे उसमें चंपत राय ही ट्रस्ट के चेहरे बने रहे। जबकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सर्वोच्च निकाय है। इस निकाय में 15 सदस्य हैं जिनमें केंद्र राज्य के 3 सरकारी अफसर हैं। ट्रस्ट के प्रशासन के लिए अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष चुने जाते हैं और अध्यक्ष ट्रस्ट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। महासचिव बैठक बुलाने, रिकॉर्ड रखने, ट्रस्ट की संपत्ति की सुरक्षा के प्रति जवाबदेह होते हैं। कोषाध्यक्ष मंदिर के बही खाते, बजट, आमद खर्च का ब्यौरा रखते हैं। इस ट्रस्ट में सीरियल 1 से 10 तक के ट्रस्टी को वोटिंग का अधिकार है और इसके अलावा निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि को भी वोटिंग का अधिकार है। अब इस ट्रस्ट के बोर्ड को यह अधिकार है कि अगर ट्रस्ट के प्रशासन के लिए जिन लोगों को चुना गया उनमें से कोई पद रिक्त होता है तो उसका क्या प्रावधान होगा। प्रावधान यह है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी 11 लोगों के बीच से यह जिम्मेदारी दे सकता है, क्योंकि इन ट्रस्टीज को आजीवन ट्रस्ट की सदस्यता मिली हुई है। यानी अब तक की ज्ञात जानकारी के मुताबिक बीच में उन्हें ट्रस्ट से निकालना संभव नहीं है और अगर कोई ट्रस्टी स्वेच्छा से बोर्ड छोड़ना चाहता है तो वो 1 महीने पहले नोटिस देकर पद त्याग सकता है और अगर किसी ट्रस्टी के हितों के खिलाफ काम करने के आरोप में निष्कासित किया जाता है तो उसके लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत बहुत जरूरी है और अगर ट्रस्ट यानी बोर्ड चाहे तो कानूनी दायरे में रहते हुए ट्रस्ट डीड के प्रावधानों में बदलाव भी कर सकता है। अब सवाल है कि जब ट्रस्ट ने अभी तक चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा कबूल नहीं किया तो क्या 6 जुलाई को जो बैठक होने जा रही है, अगर ऐसा होता है तो क्या 11 में से कम 7 सदस्यों की मंजूरी जरूरी होगी। अब कौन कौन है नाम शामिल है वो आप समझ लीजिए। वो नाम कौन कौन से शामिल है तो उसमें के परासरन का नाम आता है, महंत नृत्य गोपाल दास का नाम सामने आता है, साथ ही वसुदेवानंद सरस्वती, विश्व प्रसन्न तीर्थ का नाम सामने आता है, गोविंद देव गिरी, महंत दीनेंद्र, परमानंद गिरी, विमलेंद्र मिश्रा जो अब जीवित नहीं है, कृष्ण मोहन, चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये वो लोग हैं जिन्हें वोटिंग का अधिकार है। और इसके अलावा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि अफसर, राज्य के प्रतिनिधि अफसर और अयोध्या के GM भी ट्रस्ट में है, लेकिन इन्हें वोट का अधिकार नहीं है। अब ट्रस्ट के ऑफिस इंचार्ज की अगर बात करें प्रकाश गुप्ता, तो उन्होंने सारा ठीकरा किस पर फोड़ दिया है, उन्होंने सारा ठीकरा बैंकों पर फोड़ दिया है। उनसे भी बात की आज तक संवाददाता ने, उन्होंने बातचीत में क्या कहा वो आप सुनिए।
2: ट्रस्ट के काम पे उंगली उठाना मेरी दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि हर आदमी ईमानदारी से काम कर रहा था ट्रस्ट में और आज भी जो लोग हैं सब ईमानदार हैं, लेकिन अब चूंकि गड़बड़ी जो हुई वो दान पेटियों के खुलने पर उसकी गिनती को लोगों ने, जो गिनती में लोग लाते बैंक द्वारा लाए गए, उन लोगों ने कुछ गड़बड़ी जरूर की जो कि बाद में पकड़े गए, उनके घर पर भी छापे पड़े और वहां भी कुछ पैसा बरामद हुआ। नियमित कर्मचारी नहीं थे, एक बैंक के परमानेंट कर्मचारी होते हैं और ये जो है डेली बेसिस वाले बैंक में जिन लोगों से संबंध रहा होगा उन लोगों को लेवा लाए, उन्हीं लोगों ने कोई उनकी परमानेंट नौकरी थी नहीं, उन्हें कोई डर तो था नहीं, अपना हेरा फेरी कर लिया। जहां

0: तक चंपत राय जी को मैं जानता हूं, उनकी ऊपर उंगली उठाना एक तरीके से आप समझिए जैसे लोग कहते नहीं सूरज को दीपक दिखाना। चंपत राय जी बहुत ईमानदार, निहायत ईमानदार।
1: अब निर्मोही अखाड़े के महंत है धीरेन्द्र दास महाराज, जब उनसे बात की तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो गोपाल राव हैं, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो उन्हीं की फैलाई हुई है। उनसे बातचीत में क्या निकल के सामने आया वो हम आपको बताते हैं।
2: कई बड़े पदाधिकारी भी हैं जिनसे पूछताछ भी हुई है, जो रडार में भी हैं, जिनका इन्वेस्टिगेशन में नाम भी सामने आ रहा है। आपको लगता है कि कार्रवाई वहां तक भी जानी चाहिए अगर बड़े लोग भी संलिप्त हैं इस पूरे कांड में?
3: और उसमें किसी भी गलती होगी तो रामलाल दंड दे देंगे, शासन से मिला और रामलाल दंड देंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: बयान सबके सामने आ रहे हैं, लेकिन एक मुख्य किरदार जो सामने आया टिन्नू यादव, अब टिन्नू यादव के भाई भी सामने आए। अब उनका ये कहना है कि जो बड़ी मछलियां हैं उनके चक्कर में छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। टिन्नू यादव के भाई कह रहे हैं कि ये सब फंसाने की एक साजिश रची जा रही है और बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, छोटों को फंसाया जा रहा है। सच लेकिन सामने आ जाएगा, ये भी भरोसा जता रहे हैं टिन्नू यादव के भाई।
2: हमारे साथ इस वक्त टिन्नू यादव के भाई दिनेश यादव मौजूद हैं। प्रकरण चल रहा है, सारी जांच हो रही है, सगे भाई हैं। दिनेश जी, हम आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप क्योंकि साथ में पले बड़े हैं टिन्नू यादव के, भाई का क्या नेचर रहा, कैसे रहे?
4: भाई का नेचर बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, आज तक कोई एक मुकदमा नहीं, ना कहीं कोई लफड़ा है। अब ये कैसे क्या हो गया ये भगवान जाने।
2: चंपत राय के बड़े करीबी रहे
4: जी, हाँ, आज कम से कम 200 साल से उनके साथ में थे। उसके पहले महेश नारायण सिंह थे और उसके पहले वो बीच में परमन जी थे, कई लोगों के साथ में काम वो किए हैं।
2: एकदम से इतने सारे आरोप लगना
4: एकदम से गलत है, एकदम निराधार, बस किसी तरीके से फंसा करके और इसको घुमा लो बस।
2: सर आप कहना चाह रहे हैं कि बड़े लोग जो हैं बचने के लिए उनको फंसा,
4: बस केवल उनको ही फंसा रहे हैं।
1: अब देखिए भारत और जापान की बात करते हैं, इन दोनों की रिश्ते और गहरा गए, दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच में मुलाकात होती है, द्विपक्षीय वार्ता होती है और दोनों के संबंध अब और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अब द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई समझौते हुए, रक्षा, व्यापार, निवेश, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने जापान को भारत की विकास यात्रा का एक अहम भागीदार भी बताया है। हालांकि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची आमने सामने थे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री को छोटी बहन की तरह भी बताया है और कई समझौते हुए और ये भी कहा जा रहा है सेमीकंडक्टर से लेकर एआई से लेकर सुरक्षा से लेकर कई पहलुओं पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर, मजबूत करने को लेकर, ये ऐसी बातें हुई हैं जो भारत और जापान के रिश्तों को आने वाले वक्त में और ज्यादा मजबूत करेंगे रिश्तों को। आपको सुनाते क्या बयान सामने आया।
5: पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं, एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
1: और चलिए अब एक बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बता देते हैं। और एनडीए जो कि लोकसभा में दो तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रही है, उनकी नजर किस पर है? शरद पवार के 8 सांसदों पर। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अब सूत्रों से खबर है कि लोकसभा में दो तिहाई बहुमत के समीकरण को मजबूत करने के लिए एनडीए की नजर शरद पवार गुट की एनसीपी के 8 लोकसभा सांसदों पर है। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संभावित संविधान संशोधन विधेयकों पर इन सांसदों के समर्थन की संभावनाएं टटोली जा रही हैं। अब सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के साथ संभावित विलय की चर्चा को लेकर शरद के सांसद परेशान हैं। उन्होंने लगता है कि 2029 में फिर जीतना उनके लिए आसान नहीं होगा। हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हमारे सहयोगी हमारे साथ। हिमांशु, क्या हो रहा है बताइए महाराष्ट्र में।
6: देखिए महाराष्ट्र में अब एकनाथ शिवसेना की जो शिवसेना है वो तो मजबूत हुई है। यूबीटी के 6 सांसद उनके साथ आए हैं, लेकिन अभी स्पीकर को फैसला लेना है। दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार के जो 8 सांसद हैं उनके ऊपर जो है एनसीपी अजीत पवार गुट की नजर भी है और उनसे बातचीत चल रही है कई सांसदों से। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर जल्दी ही एनसीपी शरद पवार का विलय की जो बात चल रही है कांग्रेस के साथ नहीं हुआ तो कुछ सांसद जो है वो दो तिहाई सांसद जो है वो अजीत पवार गुट में जा सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार के साथ रहने का ज्यादा फायदा हो सकता है। 2029 की लोकसभा चुनाव में जो है उसका फायदा उन्हें मिलेगा, क्योंकि एनसीपी अजीत पवार गुट जो है वो वहां पर सत्ता में भी है और एनडीए के साथ है।
1: कैमरे में सब
6: हिमांशु
1: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए अब पंजाब की भी बात कर लेते हैं, कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए पंजाब में चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले संगठन में फेरबदल हुआ। अब एक वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी, उनका एक बयान सामने आता है सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर ये सवाल उठने लगता है कि क्या सब कुछ ठीक है। क्योंकि मनीष तिवारी कहते हैं कि टैलेंट होना अब एक कमी बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों और संस्थाओं की असुरक्षा का उनके पास कोई इलाज नहीं है। इस पोस्ट को पार्टी नेतृत्व पर इशारों इशारों में तंज माना जा रहा है, जो वक्त वक्त पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करते रहे हैं। अब मनीष तिवारी की बारी है, बड़े नेता हैं, सांसद हैं, और सबसे बड़ी बात तो पंजाब में चुनाव में बहुत नजदीक, उससे पहले अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो ये कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है।
7: देखो ये कांग्रेस हाईकमांड का निर्णय है तो वो तो कांग्रेस हाईकमांड फैसला लेगी ना, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। वो बहुत सीनियर लीडर हैं, हम सब लोगों के दोस्त हैं, पार्लियामेंट में मिलते हैं, लेकिन फैसला तो हाईकमांड को लेना।
1: मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई, बात कर लेते हैं। मौसमी, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है पंजाब कांग्रेस में, और मनीष तिवारी का ये पोस्ट कैसे देखा जाए?
8: देखिए कुल मिला के अगर आप देखिए तो एक लंबी प्रक्रिया चली थी जिसमें राहुल गांधी तमाम नेताओं से मिले, जो ऑब्जर्वर्स की कमिटी है अजय माकन वाली वो 100 नेताओं से मिली, और इतने कंसल्टेशन में मनीष तिवारी की बारी नहीं आई। पूर्व मंत्री रह चुके हैं आनंदपुर साहब से और लुधियाना से सांसद रह चुके हैं, कहीं ना कहीं उनका वो दर्द जो है कि कंसल्टेशन में भी रायशुमारी में भी मुझे इंक्लूड नहीं किया गया, वो कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं कि जो लोग इनसिक्योर है उनके लिए कोई एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा, तो अपने आप में कहीं ना कहीं पूरा यूनिट में एक तरीके से जो मनमुटाव है।
1: लेकिन बड़ी बात तो यह है ना कि मनीष तिवारी जो कहना चाह रहे हैं वो आलाकमान तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ध्यान देंगे कि नहीं देंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
10: In association with
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
12: Jack, you're killing me.
11: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
9: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
3: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।
5: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाती थी।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: पीमार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
8: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
9: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से?
10: तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
11: वाह वाह वाह वाह।
10: सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें।
12: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
13: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
15: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
16: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हमने तब भी सवाल किया था,
5: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
4: हम आज भी सवाल करते हैं,
5: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
4: ऑपरेशन अग्नि,
5: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
4: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
6: In association with
7: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
9: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560006546 पर कॉल करें।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: चढ़ावा चोरी पर सियासत में अब खुद ही कांग्रेस। पीएम को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग। पुलिस के सामने अनिल मिश्रा ने चंपत के टिन्नू पर फोड़ा ठीकरा। गरीबियों के सामने छलका चंपत राय का दर्द, कहा अयोध्या में सेवा पूरी, अब कलंक के साथ नहीं रह सकता, मेरे साथ धोखा हुआ। वकीलों ने चंपत, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ दी शिकायत। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी का करार, एआई डिफेंस के क्षेत्र में नया अध्याय। जापान की पीएम को मोदी ने बताया छोटी बहन, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी में बम बम भोले की गूंज, एलजी ने रवाना किया श्रद्धालुओं का पहला जत्था। कल बालचाल और पहलगाम से होगी औपचारिक शुरुआत, रूट पर भारी सुरक्षा। दिल्ली में आ गया मानसून, मौसम विभाग ने की पुष्टि, मुंबई के पास समंदर में हाईटाइड, पहाड़ों पर जगह जगह लैंडस्लाइड और तबाही का मंजर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।

0: चलो बुलावा आया है, बाबा बर्फानी ने बुलाया है और लाखों श्रद्धालु इस वक्त यही कह रहे हैं। और देखिए कल से यानी 3 जुलाई से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। आज एलजी मनोज सिन्हा ने जो श्रद्धालुओं का जत्था था वो जम्मू से रवाना किया, वो पहलगाम और बालटाल पहुंचेंगे और कल से पहलगाम और बालटाल से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हो जाएगा। कल से यात्रा शुरू होगी, पहला जत्था रवाना हुआ, लेकिन इस वक्त क्या सुनने को मिल रहा है, जो अमरनाथ यात्रा मार्ग है हर जगह वहां पर बम बम भोले की गूंज, जय बाबा बर्फानी की गूंज सुनाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ इस बार पिछली बार से बिल्कुल अलग सुरक्षा के सख्त और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो ड्रोन हो चाहे वो AI हो, हर तरीके से इस वक्त हर यात्री पर नजर रखी जा रही है और असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है, यानी एक अभेद किला बनाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस वक्त कहाँ है, सबसे ज्यादा खुशी इस वक्त बाबा बर्फानी के भक्तों में है, भोले के भक्तों में है, जो इंतजार कर रहे हैं कल का, जहां बालटाल और पहलगाम से यात्रा का आगाज होगा और सीधे दर्शन होंगे पवित्र गुफा में बाबा अमरनाथ के।
1: बम बम भोले के ये जयकारे अमरनाथ की महिमा का बखान। भक्त झूम रहे हैं, गा रहे हैं और बाबा बर्फानी के प्रति अपार श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं। सिर्फ एक दिन की बात है, अब जम्मू से रवाना हुए इनमें से कई भक्त अमरनाथ गुफा जाकर पवित्र दर्शन करेंगे। उस पावन और दिव्य दर्शन के लिए भक्तों का ये पहला जत्था आगे बढ़ चुका है। शिव के धाम की तरफ श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, डमरू बज चुके हैं। वो पल अब बेहद करीब है जब इन श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होगी।
2: अरे प्रसन्नता और उमंग जितनी है वो कह नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जितने भी भक्त आए हुए सभी के मन में एक ही आशा है, एक ही मनसा है कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन जितना जल्दी हो सके कर सके। जी
3: एक बार भगवान भोलेनाथ का कोई भजन गाइए।
2: मेरा भोला है भंडारी करे नंदी पे सवारी भोलेनाथ रे।

0: जम्मू के कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह उत्सव में बदलता नजर आ रहा है।
1: पर आप देखिए कि बम बम भोले और हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से जो है श्रद्धालु पहुंचे भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए और उत्साह देखते ही बनता है। देखिए बम बम भोले हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है और इन श्रद्धालुओं में खासा प्रसन्नता है क्योंकि इनका नंबर जो है पहले जत्थे में ही आ गया। देखिए बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और चेहरे पर इनके मुस्कान देखिए, प्रसन्नता की अनुभूति देखिए कि खासा उत्साहित है इस यात्रा को लेकर। जी आप बताइए आपका नाम?
2: दीपिका खंडेलवाल।
1: कहाँ के रहने वाले?
2: अलवर, राजस्थान।
1: राजस्थान से। मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है इस यात्रा को लेकर?
2: मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ आने के लिए और सभी को यहाँ पे आना चाहिए और बाबा बर्फानी के दर्शन करने चाहिए।
1: तो आप पहली बार इस यात्रा के लिए?
2: मैं पहली बार आ रही हूँ।
1: तो कितनी उत्सुकता है मन में?
2: बहुत ज्यादा उत्सुकता है और सबको आना चाहिए।
1: अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जब आप भगवान भोलेनाथ की पवित्र गुफा में पहुँचेंगे क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ को?
2: मेरे पास तो बहुत चीजें मांगने को, मैं सब चीज बता दूंगी भोले बाबा को, फिर वो पूरी कर देंगे।
0: भोले भंडारी पर भक्तों का कुछ ऐसा ही विश्वास है।

0: तमाम दुखों को हरने की और संकट का नाश करने वाले बाबा बर्फानी की शक्ति ऐसी कि कोई भक्त निराश नहीं होता।
1: सर भाव तो बाबा के लिए मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता।
2: मैं देख रहा हूँ आप काफी भावुक भी हो रहे हैं।
1: हाँ सर, बस बहुत मन था आने का। मैं तो बाबा को थैंक्स बोलने के लिए आ रहा हूँ, मांगने नहीं जा रहा। बाबा ने बिना इतना
2: कुछ मांगे ही मुरादें पूरी कर।
0: इस आस्था के साथ काफिला जम्मू से पवित्र सफर पर निकल पड़ा।
3: बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बोले
0: बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे से पूरा जम्मू गूंज उठा।

0: जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से पहले जत्थे की रवानगी हुई है। उपराज्यपाल ने सुबह पहले पूजा अर्चना की, फिर श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई और तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया।
1: का पहला जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो चुका है और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। बम बम भोले और हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु पहुंचे हैं इस यात्रा के लिए। यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ है और कल से ये यात्रा जो है विधिवत तौर पर दोनों मार्गों से शुरू हो जाएगी, पारंपरिक पहलगाम मार्ग से और साथ ही में बालटल मार्ग से। यहाँ पर देखिए आप कि उत्साह कितना है श्रद्धालुओं में। बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु आए हैं और यही भाव है मन में कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सके।
0: इस मौके पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को लेकर तैयारियों पर संतुष्टि जताई। जम्मू से रवाना हुए श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप पहुंचेंगे। सभी तीर्थयात्री रात में उन बेस कैंपों में ही रुकेंगे, फिर तड़के अमरनाथ के लिए उनकी पवित्र यात्रा शुरू हो जाएगी।
2: श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को बनता है। बम बम भोले की गूंज के साथ जहां से बसें जो हैं वो श्रीनगर की ओर रवाना हुई हैं। बालटाल के रास्ते ये सारे लोग जो हैं बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं इस मौके पर आप सबको भी बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये यात्रा जो है वो सफल रहे। प्रशासन की तरफ से भी बहुत ही अच्छे इंतजाम जो है वो प्रशासन ने की है। सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए ये यात्रा का प्रारंभ जो है वो भगवती नगर से किया गया।
0: बालटाल से अमरनाथ तक की दूरी 14 किलोमीटर है। वहां से बेस कैंप तक पहुंचने में कुछ घंटे लगते हैं। ऐसे में पहले जत्थे की रवानगी को लेकर साधु संतों को पूर्ण विश्वास है कि पवित्र यात्रा मंगलमय होगी।
3: और यात्रा ये 58 दिनों की यात्रा है और मैं समझता हूँ मंगलमय होगी और इस यात्रा में पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश इस यात्रा से जाता है और वो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री राम।
0: अमरनाथ के लिए जम्मू से आज पहला जत्था रवाना हुआ और कल से पवित्र दर्शन शुरू हो जाएंगे। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।
4: देखिए जम्मू के भगवती नगर से जो श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ था वो बालटाल पहुंच गया और वहां पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। और जम्मू के अलग अलग हिस्सों से चाहे वो पहलगाम हो या फिर बालटाल जब वहां के लिए निकले हैं तो रास्ते में अब रामबन हो उधमपुर हो देखिए कैसे जोरदार तरीके से स्वागत किया गया इन तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, हर जगह इनका उत्साह बढ़ाया गया। और इन सभी को इंतजार है कल का जब ये बालटाल और पहलगाम से आगे निकलेंगे और उसके बाद पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक जानकारी इस यात्रा से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र जरा बताइए क्या खास तैयारियां की गई हैं, कल से शुरुआत हो जाएगी इस यात्रा की, जत्था रवाना किया जाएगा पवित्र गुफा के लिए, लेकिन क्या इंतजाम है, क्या तस्वीरें आप देख पाए वहां? दोबारा जोड़ेंगे लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। अभी देखिए जोश दोगुना हो जाता है जब इस तरह से स्वागत सत्कार किया जाता है इन श्रद्धालुओं का। और उसके बाद अब ये लोग अभी बालटाल और पहलगाम पर रुकेंगे और कल से पहलगाम और बालटाल से जो जत्था है वो रवाना होगा पवित्र गुफा के लिए। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए जाएंगे, श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे और उसके बाद पूजा अर्चना करेंगे। तो जैसा हमने आपको बताया कि जो श्रद्धालुओं का जत्था है वो बेस कैंप बालटाल पर पहुंच रहा है और कल वहां से निकलेंगे और पवित्र गुफा के लिए वो पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले क्या इंतजाम, कितना जोश, कितना उत्साह उन श्रद्धालुओं में, हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने उनसे बात की।
5: बालटाल बेस कैंप पर मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं और यहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भोले बाबा के जो भक्त हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। लगातार ये लोग जम्मू से चल करके यहां पर पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग बाबा बर्फानी के दर्शन बालटाल बेस कैंप से सीधे यहां पर डोमेल होते हुए पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे। सुरक्षा की अगर बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ, और इसके साथ साथ यहां पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनको भी तैनात किया गया है। लाइनों में जो लोग यहाँ पर लगे हुए हैं इनको तत्काल यहाँ पर अपना पास रजिस्ट्रेशन बनवाना है और उसके लिए ये लोग यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो इस पूरा इलाके की अगर बात करें तो पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर टेंट सिटी पूरी तरीके से तैयार किया गया है जिसमें 10 से 15 हजार लोग एक साथ यहाँ पर रुक सकते हैं और उसके बाद यहाँ से ये सीधे पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए जाएंगे। ये मेन कैंप है, बालटाल का कैंप है, यहाँ से लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेस कैंप में यहाँ पर अलग अलग तरीके की सुविधाएं भी लोगों को मिल रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन सेंटर जो तैयार किया गया है, इसमें किस तरीके से RFID सेंटर बना हुआ है, पार्किंग के लिए किस तरीके की सुविधा है और इसके साथ साथ हॉस्पिटल और इन्फॉर्मेशन डेस्क भी तैयार की गई है तो लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं उनके लिए हर एक तरीके की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी को आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं चारों तरफ इस पहाड़ी इलाके में कि किसी भी भक्त को किसी भी तरीके की दिक्कत न हो, क्योंकि ये पूरा इलाका है, यहाँ पर खतरा रहता है। लेकिन इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसे ही कैंप तैयार किए हैं और इन कैंपों में लोग आकर के पहले रुकते हैं। पहला जत्था जो है वो कल सुबह यहां से रवाना होगा।
4: जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी की गूंज से वहां का माहौल बहुत उत्साहमय हो गया होगा, श्रद्धालु में उत्साह।
5: बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए बालटाल का जो बेस कैंप है यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लगातार ये लोग यहाँ पर डमरू भी अपने हाथों में लिए हुए हैं। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में ऐसे एक तरीके का यहाँ पर इनके अंदर खुशी है कि कल सुबह ये लोग जो पहला जत्था यहाँ पर पहुंचा हुआ है वो यात्रा करने के लिए यहाँ से रवाना होगा। डोमेल होते हुए ये पूरी यात्रा जाएगी और आप बताइए किस तरीके से आप पूरा यहाँ पर जश्न मना रहे हैं।
6: श्री अमरनाथ यात्रा 2026 कल शुरू होने जा रही है, सवेरे 5 बजे शुरू हो जाएगी और बड़ी धूमधाम से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यात्रा एक बहुत खुशी है, आज बारिश भी हुई है, पूरी रात बारिश होती रही।
5: यहाँ पर जयकारा आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो लगा रहे हैं और आप

0: వారాణసీ పురపతి భజ విశ్వనాథం వాచామగోచరమనేక గుణస్వరూపం వాగీష విష్ణు సురసేవిత పాదపీఠం వామేణ విగ్రహ వరేణ కలత్రవంతం వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాథం భూతాదిపం భుజగ భూషణ భూషితాంగం వ్యాగ్రాజినం వరదరం జటిలం త్రినేత్రం పాశాంకుశభయావర ప్రద శూలపాణిం వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాథం. మేరా హైదరాబాద్ సే తెలంగాణ.
1: यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से हिमांशु बहुत सारे लोग जो हैं वो डमरू के साथ यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए. एक तरीके का जश्न है यहाँ पर और लोग अब यहाँ से आगे की तरफ कल सुबह जब यहाँ से
2: जितेंद्र इस बात से तो एक बात समझ में आ गई है, चाहे हैदराबाद हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, देश का कोई भी कोना हो, श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए. और महज एक दिन का इंतजार और, एक दिन का इंतजार और, हर जगह बम बम भोले और जय बाबा बर्फानी की गूंज. उत्साह जमकर है.

बाबा परभानी पर भक्तों का टूट विश्वास है। आस्था ऐसी है कि भक्त हर बार की तरह इस बार भी पवित्र गुफा की ओर खींचे चले जा रहे हैं। बाबा का सहारा है, उनका आशीर्वाद है, तो श्रद्धालुओं की जुबान पर उन्हीं का जयकारा है।

3 जुलाई से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग रूट से भोले भंडारी के भक्त चल पड़े हैं, वो बेस कैंप से आगे बढ़ रहे हैं।

0: शुक्रवार को पहला जत्था अमरनाथ की गुफा तक पहुंच जाएगा और इसके साथ ही दर्शन की शुरुआत हो जाएगी। अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलने वाली है। पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए 2 रूट है। पहला 41 किलोमीटर लंबा पारंपरिक पहलगाम रूट है, तो दूसरा रूट बालटाल का है जो 14 किलोमीटर लंबा है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक पहुंचने में आमतौर पर 3 से 4 दिन लगते हैं। रास्ते में शेषनाग और पंचतरणी के दर्शन भी होते हैं। वहीं बालटाल रूट छोटा रास्ता है। इस मार्ग से श्रद्धालु कम समय में यात्रा पूरी कर सकते हैं, लेकिन इसकी चढ़ाई काफी सीधी खड़ी और कठिन मानी जाती है। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप पर जबरदस्त तैयारी है ताकि श्रद्धालु बगैर किसी परेशानी के बाबा बर्फानी के दर्शन कर आशीर्वाद ले सके।
1: पूरा जो ये 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है बालटाल बेस कैंप से लोग ऊपर की तरफ जा करके इसी तरीके से पूजा पाठ करते हुए, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि हाथों में डमरू और इसके साथ साथ शिव की भक्ति में सारे लोग लीन हैं, और इसी तरीके से बम बम भोले के यहाँ पर इनके द्वारा बातें कही जा रही हैं। लगातार लोग जो बालटाल बेस कैंप से इसी तरीके की तैयारियां चल रही हैं। कल
2: और देखिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में बारिश अब लोगों की जान भी ले रही है और साकिनाका से खबर आ रही है मेन होल में गिरने से एक 60 वर्षीय युवक की जान चली गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और आप ये देख रहे हैं ये मेन होल। इसी में बताया जा रहा है कि एक शख्स गिर जाता है जिसकी जान चली जाती है। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, सुबह से आपने आज तक पर कई तस्वीरें भी देखी होंगी। मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा क्या खबर है?
3: जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो दिख रहा है कि फोन पर बात करते हुए मेन होल की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ पे लोग कुछ काम कर रहे थे मेन होल में सफाई की, और वो व्यक्ति सीधा उस गड्ढे में गिर जाता है और तकरीबन 2-3 घंटे बाद उसका शव निकाला गया। उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, अक्रम से उसका नाम है। और ये आप कह सकते हैं साकिनाका इलाके खैरानी रोड की घटना है जिसमें ये मैनहोल में काम चल रहा था, सफाई का मेंटेनेंस था, उसके बाद ये हादसा हुआ है। तो बारिश के समय में कहीं ना कहीं पेड़ गिरने के हादसे हो, या फिर इस तरीके से अगर मैनहोल को या गटर के ढक्कनों को खुला रखा जाता है तो लोगों को हानि पहुंच सकती है। इस तरह की इंसिडेंट मुंबई में देखने को मिली,
2: और आप समझिए कि ये लापरवाही ही कही जाएगी। जब बारिश हो रही है तब इसे साफ किया जा रहा है और साफ किया जा रहा है उसके बावजूद एक शख्स यहाँ पर गिर जाता है। और मुस्तफा इससे सीख लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तो एक जगह की खबर है, बारिश लगातार हो रही है, सावधानी बरती जा रही है, और भी कई लोगों की जान जा सकती है ऐसे तो।
3: जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप तो कह सकते हैं कि हानि जो है उन लोगों को पहुंच रही है। फिर वो बसों पर, स्कूल की बस पर पेड़ गिरने से बच्चों की मौत हो, या फिर इस तरह से मैनहोल में गिरने से लोगों की मौत हो, तो ये कहीं ना कहीं मुंबई को रोके लिए काफी दिन बाद बारिश आई थी, उनको लगा था कि इस तरह से गर्मी से उनको छुटकारा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो
2: लापरवाही कही जाएगी और लापरवाही की वजह से ही लोगों की जान जाती है और इससे सबक कोई नहीं लेता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। अब देखिए, अब इस हादसे का सीसीटीवी सामने आया है, अब आप समझिएगा, और वो हम आपको दिखाएंगे सीसीटीवी, जिसको आप देखकर समझेंगे कि कैसे अचानक एक बुजुर्ग 60 साल का व्यक्ति अचानक एक मेन होल में गिर जाता है। वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाएंगे जिसमें एक शख्स की जान चली गई और वो वीडियो उस सीसीटीवी में कैद हो गया। साकिनाका में एक मेन होल में एक शख्स गिरता है और रेस्क्यू टीम फिर पहुंचती है, फिर मेन होल से इस शव को बाहर निकाला जाता है। ये देखिए, अब ये देखिए, ये वो फुटेज देखिए, और इस फुटेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको वो शख्स अचानक गिरते हुए दिखाई देगा। आप ये फुटेज अगर आप देखेंगे तो आपको एक शख्स जो वहां से निकलता है, अचानक मेन होल में काम चल रहा है और वो शख्स जैसे ही आता है और वो उसमें गिर जाता है। और यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Argentina is a -1700 favorite to qualify for the next round. We'll take on Cape Verde in Miami. Meanwhile, Colombia will match up with Ghana in Kansas City in what should be a very competitive game. The draw in the match is +300. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach.
5: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: भारत और जापान की दोस्ती अब और मजबूत हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच में मुलाकात हुई। सनाए ताकाइची जो कि जापान की प्रधानमंत्री हैं, वो भारत आती हैं और राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया जाता है। इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता में भारत और जापान के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सेमीकंडक्टर से लेकर AI से लेकर ग्रीन एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी पर एक दूसरे के साथ कदम से कदम आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है।
7: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
8: Akajay, the number one Korean skincare brand.
9: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
10: continue to face political pressure to reach a peace deal,
9: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
8: Now in India.
11: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
12: कुछ तो बात है इस दिल में।
13: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1965।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क, the mustard specialist since 1933.
5: सरसों से सरसों।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चढ़ावा चोरी पर सियासत में अब कूदी कांग्रेस। पीएम को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग। ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ कर सकती है एसआईटी। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी का करार। एआई डिफेंस के क्षेत्र में नया अध्याय। जापान की पीएम को मोदी ने बताया छोटी बहन। अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। मुंबई के साकीनाका में खुले मेन होल में गिरकर हुई 60 साल के शख्स की मौत। घंटों खोजबीन के बाद निकाला गया असलम इसाक शेख का शव। ठेकेदार के खिलाफ एक्शन की तैयारी। दिल्ली में सुस्ती के साथ आया मानसून। मौसम विभाग ने की पुष्टि। मुंबई के पास समंदर हाई टाइड। पहाड़ों पर जगह जगह लैंडस्लाइड और तबाही का मंजर। अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी में बम बम भोले की गूंज। एलजी ने रवाना किया श्रद्धालुओं का पहला जत्था। कल बालटाल और पहलगाम से होगी औपचारिक शुरुआत। रूट पर भारी सुरक्षा।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। मुंबई में बारिश के बीच बड़ा हादसा हुआ और इस बारिश ने एक जान ले ली, या फिर आप कह सकते हैं लापरवाही ने एक शख्स की जान ले ली। मैनहोल में एक शख्स गिर गया। मैनहोल में गिरने वाले शख्स की उम्र 60 साल बताई जा रही है और रेस्क्यू टीम ने मैनहोल से उनके शव को बरामद किया। घटना की खबर मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मची। खबर मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और कई बचाव एजेंसियां मौके पर पहुंची, लेकिन शख्स को बचाया नहीं जा सका। मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, किसकी लापरवाही कही जाए? बारिश का वक्त मेन होल में एक शख्स गिर जाता है, जान चली जाती है।
1: जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं जहां से निकाला गया वो आप मेन होल यहां पर देख रहे हैं। कुरला का खैरानी रोड ये इलाका है और ये रोड आप देखेंगे काफी, आप कह सकते हैं कि छोटा स्ट्रेच है, ये क्राउडेड इलाका है। यहां पर असलम शेख दिख रहा था कि फोन पर बात करते हुए आ रहे थे, दो से तीन लोग मौजूद थे, उसके बावजूद आप कह सकते हैं कि वो इस सामने खड्डे में गिर गए। दो से तीन घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उनको जो है निकाला गया है। यहां पर मुंबई फायर ब्रिगेड और बाकी बीएमसी की जो टीम है वो मौजूद है, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी जब तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। इससे जो लोकल ये लोग हैं यहाँ के, उनमें काफी एक तरह से आप कह सकते हैं कि गुस्सा है कि बारिश के दौरान हो रहे इस तरह के काम से लोगों की जान जा रही है, उसकी कहीं ना कहीं शिकायत वो लोग कर रहे हैं। जी
0: बिल्कुल, लेकिन मुस्तफा यहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी है, उनसे बात की जाए कि बारिश के वक्त मेन होल को खोला कैसे गया? सफाई की जा रही थी तो वहां पर सावधानी रखी जाती है, उसके आसपास एक घेरा बनाया जाता है ताकि कोई वहां पर गिरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ?
1: जी बिल्कुल, जो बीएमसी में लीडर ऑफ अपोजिशन है किशोरी पेडनेकर, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, यहां पर आई हुई है स्पॉट पर।
2: जान गई है
1: मैडम, अक्सर ये देखा नहीं जाता कि बारिश में इस तरह से मैनहोल, जो हम लोग खड़े वैसे इस तरीके का मैनहोल खुला रखना, क्या लगता है नेग्लिजेंस बीएमसी बार बार कर रही है?
2: किसी का अंकुश नहीं है, कुछ भी हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्टर देखेगा इस तरह चल रहे।
1: बैरिकेडिंग हम देखते हैं सीसीटीवी में दिख रहा है, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी,
2: चल नहीं होता है, नहीं था, कोई आदमी भी खड़ा नहीं था, और जाली तो 31 मई के पहले बिठाना चाहिए था, नहीं बिठाया।
1: आप कह सकते हैं कि जो आरोप है विपक्ष की तरफ से भी हो रहा है प्रशासन के ऊपर, बीएमसी के ऊपर, कि कहीं ना कहीं जो मेजर्स लेने चाहिए सेफ्टी के लिए वो मेजर्स नहीं लिए गए, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ है। जी
0: और बिल्कुल, इसे बहुत बड़ी लापरवाही कहा जाएगा और ऐसी लापरवाही जिसने एक शख्स की जान ले ली। अभी बारिश की शुरुआत है, अभी बारिश बहुत बाकी और मुंबई में तो बहुत बारिश होती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं 100 शहर 100 खबर का। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बुलडोजर कार्रवाई संभव, आरोपित लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन भवन पर एडीए का नोटिस। लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर बने निर्माणाधीन भवन में अनियमितता के आरोप, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस। पुलिस ने की मुख्य आरोपित की 48 घंटे की रिमांड की मांग, एसबीआई कर्मचारियों पर जांच की नजर। 6 जुलाई की ट्रस्ट बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के भविष्य पर फैसला, 2/3 बहुमत से होगा निर्णय। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, एसआईटी करेगी 5 साल के ऑडिट की दोबारा जांच, ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी जांच के दायरे में। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची, पीएम मोदी ने कहा बहुत बहुत स्वागत, सैन्य सम्मान के साथ वेलकम। भारत जापान के ज्वाइंट विजन को मिल सकती है रफ्तार, 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य। पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री करेंगे मारुति सुजुकी के खरखोदा प्लांट का उद्घाटन, भारत जापान औद्योगिक साझेदारी को मजबूती। खरखोदा प्लांट से सालाना 10 लाख वाहनों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, करीब 35,000 करोड़ के निवेश से तैयार हो रहा है अत्याधुनिक प्लांट। 100% ग्रीन एनर्जी और एआई तकनीक से लैस होगा मारुति का नया प्लांट, खरखोदा संयंत्र पूरी तरह नवीकरणीय बिजली का संचालित होगा। टिन्नू यादव के भाई दिनेश यादव का पहली बार बयान, चंपत राय और अनिल मिश्रा पर आरोप लगाए, बोले भाई का नेचर अच्छा था, कोई केस नहीं था। दिनेश यादव ने चंपत राय और अनिल मिश्रा पर संकेत करते हुए कहा बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है। राम जन्मभूमि थाने में शिकायत दर्ज, बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर की मांग, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब हर पदाधिकारी और कर्मचारी की एंट्री एग्जिट पर अनिवार्य तलाशी, नए प्रोटोकॉल लागू। लखनऊ में यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले सीएम योगी ने एसआईटी जांच की समय सीमा बढ़ाई, 15 जुलाई तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। संभल में 101 करोड़ के सरकारी जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई, सहायक नगर आयुक्त राजकुमार गुप्ता गिरफ्तार। अलीगंज अग्निकांड मामले में 7 जुलाई के बाद दोस्ती करने की तैयारी, विवादित बिल्डिंग पर कार्रवाई तेज, बिना लाइसेंस पेट शॉप भी जांच के घेरे में। सम्राट चौधरी का अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को लेकर बड़ा बयान, शॉर्टकट वालों के लिए बेऊर जेल फिक्स है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। कीर्तन अग्रवाल हत्याकांड में सिया को घर लेकर पहुंची पुलिस, हत्या से पहले रिहर्सल का खुलासा, जांच में साजिश के संकेत। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल, कांग्रेस में शरद पवार की पार्टी के विलय की तैयारी, सहमति बनी तो दिल्ली में लगेगी मोहर, फिलहाल राज्य स्तर पर बातचीत। महाराष्ट्र की एटी पेपर लीक मामले में एक्शन तेज, बिहार में वैशाली में एसटीएफ की छापेमारी, साइबर कैफे संचालक समेत 3 हिरासत में। प्रियंका चतुर्वेदी ने कृषि क्षेत्र की महिलाओं को सम्मान देने पर सीएम फडणवीस की सराहना की, कहा यह कदम लंबे समय से अपेक्षित था। दिल्ली में तेजेंद्र बग्गा की ओर से मंडी हाउस में राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए, मानहानि मामले में खेद जताने के बाद सियासी हलचल। व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर को जांच करेगी सरकार, कहा टेलीग्राम की तरह गलत इस्तेमाल की आशंका, नए फीचर में

वाहन बुलाकर युवक की निर्मम हत्या। घटनास्थल घर के अंदर से बाहर तक बिखरा खून। परिजनों ने सड़क पर जाम लगाया। जलगांव में मशहूर विट्ठल रुक्मणी संस्थान में लगी भीषण आग। काफी अफरा तफरी बुझाने के बाद फायर टीम मौके पर पहुंची। मनाली में अटल टनल से निकलते ही अनियंत्रित हुई स्कॉर्पियो। बैरिकेड तोड़कर निर्माणाधीन पिलर में जा धसी। राजस्थान के युवक की मौत। यूपी के 3 साथी घायल। ग्रेटर नोएडा में निजी कंपनी में लगी भीषण आग। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने मशक्कत से काबू पाया। अहमदाबाद में 22 फूड पैकेट में 4 करोड़ रुपए के गांजे के साथ महाराष्ट्र का व्यक्ति गिरफ्तार। बैंकॉक से ड्रग्स लाने की साजिश नाकाम। कानपुर में लवजात का बंधक बनी लड़की को छुड़ाने पहुंची पुलिस। आरोपी के कब्जे में एक की जगह मिली 2 हिंदू लड़कियां। कानपुर में सड़क पर जोरदार हंगामा। महिला की मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बनासकांठा में युवक की अचानक हार्ट अटैक से मौत। कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक गिरा। कैमरे में कैद। लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी। फेक इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। 119 लोगों को हिरासत में लिया। विकासनगर में पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आई कार। क्षतिग्रस्त बाल बाल बची कार सवारों की जान। नवी मुंबई के नेरूल इलाके में जलभराव में अंडरग्राउंड तार में आया करंट। बाइक सवार 2 छात्राओं को सड़क पर पैर रखते ही लगा झटका। नागपुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान जर्जर 3 मंजिला इमारत गिरी। सड़क पर मलबा फैला। वलसाड़ में हाईवे पर चलते कंटेनर ट्रक में लगी भीषण आग। धुएं का गुबार दूर तक दिखा। सड़क पर जाम। गुजरात के खेड़ा में पटाखा फैक्ट्री धमाके में 3 दिन बाद एक मजदूर की मौत। सुरक्षा मानकों की बिना अनुमति के चलाई जा रही थी कंपनी। मालिक फरार। देहरादून के विकासनगर में 2 मंजिला आवासीय भवन में लगी भीषण आग। मकान पूरी तरह जल गया। कई मवेशी भी जिंदा जल गए। बिहार की सहरसा में सोते समय शख्स की पीट पीट कर हत्या। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने टायर में लगाई आग और किया सड़क जाम। उज्जैन में शिप्रा नदी में आरती के दौरान दीपक बेचने वाली महिलाओं पुजारियों के बीच विवाद। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। उन्नाव में अज्ञात वाहन की टक्कर से बुलेट नाले में गिरी। बारात से लौट रहे 2 दोस्तों की मौत। राजस्थान के पाली में अस्पताल में डॉक्टर की कुर्सी पर मिला साथ। मरीजों में अफर तफरी। गाजियाबाद में मामूली रोडरेज विवाद के बाद युवक की कथित तौर पर पीट पीट कर हत्या। मामले में मुख्य आरोपित गिरफ्तार। मुंबई में मूसलाधार बारिश का असर। दादर स्टेशन, कुर्ला ईस्ट और प्रभा देवी में जलभराव से जनजीवन प्रभावित। मुंबई में मूसलाधार बारिश से दादर के हिंदू कॉलोनी में जलभराव। लोगों की आवाजाही ठप। नागपुर में मानसून की धमाकेदार एंट्री। मूसलाधार बारिश से गर्मी से राहत। कई इलाकों में जलभराव। पालघर में मूसलाधार बारिश के बीच मकान की दीवार गिरी। मलबे में दबकर महिला की दर्दनाक मौत। मुंबई में भारी बारिश के बीच शिंदे शिवसेना ने कार्यकर्ताओं को राहत कार्य में उतरने के निर्देश दिए। 3 जोन में नोडल नेताओं की नियुक्ति। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। बारिश से कई संवेदनशील जगहों पर भूस्खलन की संभावना। उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा के गुरेज में फिर बादल फट गया। इलाके में अफरा तफरी। मूसलाधार बारिश से सिंथन टॉप पर भूस्खलन। नेशनल हाईवे 244 बंद। सड़क बहाल करने में जुटा प्रशासन। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गुलाब कोटी के पास सड़क धस गई। मलबा आने के कारण बंद हुआ आवाजाही ठप। उत्तराखंड में मानसून का कहर। कई जिलों में भारी बारिश। हाईवे बंद। स्कूलों में छुट्टी। आपदा से जनजीवन प्रभावित। अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार खत्म। हर्षोल्लास के साथ पहला जत्था जम्मू से रवाना। सुबह 4:30 बजे भगवती नगर यात्री निवास से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों को हरी झंडी दिखाई। अमरनाथ यात्रा के लिए आस्था और उत्साह से दिखे श्रद्धालुओं के चेहरे। हर हर महादेव की गूंज। जम्मू से आज दोपहर तक कश्मीर घाटी पहुंचेगा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था। कल बालटाल और पहलगाम मार्गों पर 20 कैंप से शुरू होगी यात्रा। इस बार 57 दिनों तक चलेगी दिव्य अमरनाथ यात्रा। 28 अगस्त को संपन्न। अमरनाथ यात्रा के लिए देश विदेश से जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और RFID कार्ड प्रक्रिया जारी। जम्मू कश्मीर में पूरे यात्रा रूट पर बनाए गए कई ट्रांजिट कैंप। श्रद्धालुओं के रुकने और खाने पीने के लिए विशाल भंडारे के भी इंतजाम। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर जांच की। CCTV ड्रोन कैमरों से नजर। ऑपरेशन शिवा के तहत होगी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा। कमांडो की तैनाती। मल्टीलेयर सुरक्षा का इंतजाम। अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे, बुलेट प्रूफ वाहन और 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में लगाई गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए नई हवाई सेवाओं की सौगात। 11 और शहरों के लिए उड़ानें शुरू। अब नोएडा एयरपोर्ट से देश के 16 शहरों के लिए उड़ान मिल सकेंगी। 15 जून से हुई थी शुरुआत। तीर्थयात्रियों के लिए रेलवे ने सिकंदराबाद से 2 भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेनों का ऐलान किया। अयोध्या, काशी, रामेश्वरम समेत कई तीर्थ जा सकेंगे भक्त। नैनीताल में ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए बड़े फैसले। 1 अगस्त से मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर बैन।
आलिया भट्ट स्टारर फिल्म अल्फा की रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर धूम, एडवांस

बुकिंग से फिल्म ने करोड़ों की कमाई की। भूत बंगला के बाद फिर लौटेगी अक्षय और प्रियदर्शनी की जोड़ी। प्रियदर्शन ने अक्षय संग एक और नई फिल्म की डील कंफर्म की। हेरा फेरी 3 पर डायरेक्टर प्रियदर्शन का बड़ा बयान। अक्षय कुमार सुनील शेट्टी और परेश रावल की कल्ट फिल्म फ्रेंचाइजी हेरा फेरी 3 को नहीं बना रहे हैं प्रियदर्शन। ग्लोबल बाजार में वेलकम टू द जंगल की बल्ले बल्ले। वेलकम टू द जंगल ने 6 दिन में 130 करोड़ कमाए। भारत इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच बारिश से प्रभावित, नहीं निकल पाया रिजल्ट। इंग्लैंड में चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया मुकाबला। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 60 विकेट पर 189 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक जड़ाया। अभिषेक शर्मा ने महज 24 गेंद में 59 रन की पारी खेली। शिवम दुबे ने 21 गेंदों पर 42 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला डेब्यू करने का मौका। अब 4 जुलाई पर नजर।

0: मुंबई में बारिश तूफान से हाल कैसे बेहाल है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
1: सिख समाज को हम लोगों ने कानूनी मदद और जेल से रिहा कराने का काम किया था, जब हमारे मंत्री थे जेल मंत्री, याद होगा उनका नाम मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, नहीं मंत्री नहीं जिनको छुड़वाया था, हाँ बलराम सिंह जी। तो न्याय दिलाने के लिए हम लोग करेंगे काम, और चुनाव हराने के लिए हमें जहां जीतने वाले लोग होंगे हम उन्हें चुनाव जरूर लड़ाएंगे। तो मैं कितनी बार समझाऊं, प्रधानमंत्री जी ने अगर अपना हवाई जहाज ईरान में उतार दिया होता तो युद्ध नहीं होता, विश्वगुरु हम लोग कहलाए जाते। और जो ये संकट आ रहा है हम लोगों के ऊपर खाद का और डीएपी का और इस सब का, इसकी जिम्मेदार तो सरकार ही है। हमारे यहां किसान भाई बैठे हैं, पता नहीं कौन सी ऑनलाइन खाद आ रही है इनकी, न जाने कितने कागज ने जोड़ने पड़ते हैं तब जाकर के खाद मिल रही है, और खाद पर्याप्त मिल भी नहीं है, डीएपी नहीं मिल रही कहीं भी। और अभी तो अगली फसल के बाद अगली फसल बड़ी महत्वपूर्ण फसल है गेहूं की, जब वो फसल आएगी तो बताओ क्या तैयारी है सरकार की। आलू की फसल आने वाली आने वाले समय में, तो तैयारी आज क्या है? ये पूरा साइंटिफिक डिसीजन है एग्रीकल्चर का, हर चीज का डेट तय है, महीने तय है। फसल आगे पीछे होगी तो नुकसान होगा, अगर मान लीजिए 15-20 दिन का नुकसान हो जाए आगे पीछे हो जाए तो बताओ कितना नुकसान होगा देश का किसान का। तो बिल्कुल साइंटिफिक है कि कब खेत में क्या पानी डालना है, कब खाद डालनी है, कब कीटनाशक दवाई डालनी है। हमारा किसान भी एकदम साइंटिस्ट है वो, तो उस समय सरकार ने तैयारी करी बताओ कोई भी चीज की। अब मैं क्या कहूं इसके लिए, तो ये बीजेपी कहां से लाई है बीज, ये बीजेपी को बताना चाहिए ये बीज कहां से ले आए हुए हैं, यहाँ फसल ही चौपट हो गई हमारी।
2: सर हाइब्रिड बीज जो है कॉर्पोरेट घराने बनाते हैं,
1: वो बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं का बीज आ रहा है, अंततः आपको उन्हीं का बीज लेना पड़ेगा। वो हमारी साइकिल जो ट्रेडिशनल साइकिल थी उसको ब्रेक कर रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हमारे रिसर्च के लोग उनको कहां सपोर्ट कर रहे हैं लोग, हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को कहां सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये हाइब्रिड बीज आएंगे तो क्या होगा।
0: फिर से बीजेपी पर निशाना साधते अखिलेश यादव, और मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में बारिश के बीच आज बड़ा हादसा हुआ, साकिनाका मेन होल में एक शख्स गिर गया, 60 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, और जब मेन होल में गिरा वो खुला हुआ था, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था, उसके शव को बरामद किया गया, कई घंटों बाद उसका शव निकाला गया, घटना की खबर मिली तो फिर पुलिस पहुंची, दमकल विभाग पहुंचा, अन्य बचाव एजेंसियां पहुंची और शख्स को बचाया नहीं जा सका। ये वीडियो आप देखिए, जो आप ऑटो देख रहे हैं ऑटो के ठीक पीछे एक शख्स आ रहा होता है और वहां पर कई लोग मौजूद भी हैं। ये देखिए सफेद शर्ट में एक शख्स आ रहा है, 60 साल के एक शख्स बताया जा रहा है, और अचानक ये देखिए मेन होल में गिर जाता है, वहां पर मेन होल खुला हुआ है, बारिश है, आपको सफाई करनी है। आमतौर पर क्या होता है, जब ऐसे मेन होल पर या आप सफाई करते हैं तो आसपास आप बैरिकेड लगा देते हैं, आप सुरक्षा के लिए कुछ लगा देते हैं ताकि वहां पर कोई गिर ना सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और लापरवाही का अंजाम देखिए। मुस्तफा शेख मौके से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुस्तफा क्या हो रहा है वहां पर, अब आप ये बताइए, लापरवाही तो हो गई, एक शख्स की जान चली गई, अब क्या लीपापोती की जा रही है।
3: नहीं बिल्कुल सही बात है, ये जो आप कह सकते हैं इंक्वायरी पूरी होनी है, लेकिन फायर ब्रिगेड ऑफिसर इस वक्त हम जुड़ रहे हैं। सर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे
4: हैं? नहीं ऐसा है कि जब आदमी एक गिरा था आंधी उसके अंदर, तो हम लोग मैनुअल ओपन किया, मैनुअल ओपन करने के बाद उसके अंदर गैसेस वगैरह रहते हैं।
3: कितना डीप है ये मैनुअल जो गिरा है?
4: एक 15-20 फुट तो नीचे है, वहां पर पानी था, फिर वहां से फिर हम लोग ने जो हमारा जो एंकर रहता है उसे चेक किया, तो फिर मालूम हो गया कि अंदर है आदमी। फिर हम लोग उतरने के पहले फ्रेश एयर दिया, बीएसएड से फ्रेश एयर देके हम लोग का रेस्क्यू वैन का जो ट्रैपर स्टैंड है एक रेस्क्यू गियर है उससे हम लोग नीचे उतरे, हमारे ऑफिसर नीचे उतरे उन्होंने, और उन्होंने नीचे उतर के फिर उसको वो आदमी को पुलिस से बाहर निकाला और उसको अभी 108 नंबर एम्बुलेंस से राजावटे में भेज दिया है।
3: शख्स की डेथ हो गई थी जब आप लोगों को?
4: नहीं नहीं, वो तो हम लोग नहीं कह सकते, अभी कैसा है कि उनको उधर भेजा, अभी हमारी एक टीम जो एक ऑफिसर है उनको वहाँ भेजा है राजावटी में, तो वहाँ एक्चुअली मालूम हो जाएगा उनका क्या कंडीशन है करके। अभी बाहर आने के बाद अनकॉन्शियस भी हो सकता है, ऐसा हम लोग तो नहीं बोल सकते।
3: और ये एक एबी सोनाव ने जो है फायर ब्रिगेड के ऑफिसर है जो उस वक्त अंदर नीचे उतरे थे जब वो मैनहोल में आप कह सकते हैं शख्स गिरा हुआ था और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, तो कितना डीप डेप्थ था और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया?
5: 25 फीट का डेप्थ था, हमने अपनी हरनेस की मदद से जो हमारे पास स्पेशल अप्लायंसेस है उसकी हेल्प से हम लोगों ने नीचे डाउन जाके हरनेस की मदद से उनको लिफ्ट किया।
3: एक नैरो एरिया रहता है उसमें किसी शख्स को वो लिफ्ट करना, कितने लोग आप लोग थे कैसे?
5: मेरा पूरा दो मतलब एक 15 लोगों का टीम था, हरनेस की हेल्प से हम लोग नीचे गए थे क्योंकि ज्यादा लोग नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, अंदर गैसेस वगैरह होते हैं, तो सेफर साइड खाली एक बंदा ही नीचे गया था, उसने नीचे जाके मैं गया था नीचे जाके मैंने उनको हरनेस की मदद से बांध के ऊपर लिफ्ट किया।
3: वो दिखे आपको किस हालत में, मतलब लेटे हुए थे, कहीं फंसे हुए थे, कैसा पानी का बहाव ज्यादा था
5: उनका?
0: आधा बॉडी शख्स गिरता है मुस्तफा, उसकी जान चली जाती है, उसके बाद उसके शव को बाहर निकाला जाता है, लेकिन अभी जैसा हम फिर कह रहे हैं कि बारिश की शुरुआत है और इस हादसे से सबक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: Hot mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
6: Sokudo.
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
8: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
9: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
9: कुछ तो बात है इस दिल में।
11: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
1: continue to face political pressure to reach a peace deal,
0: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
2: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी ये आपके लिए
5: कुछ तो बात है इस दिल में
7: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंद बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: आपने कहा था ये सबसे तेज है।
4: हाँ कहा था, लेकिन ये तय कैसे होता है?
3: प्रेशर, जब पूरा देश जवाब ढूंढ रहा होता है तब ये सवालों के बीच खड़े हो जाएंगे।
5: पहला भारतीय चैनल,
3: ये हमेशा सबसे पहले पहुंचते हैं क्योंकि ये खबर का इंतजार नहीं करते, खबर तक पहुँच रहे।
6: मणिपुर के उस ग्राउंड जीरो पर है,
7: जगह जगह लक्षागृह चल रहे हैं जिनसे आपको खबरदार करने के लिए आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है।
8: बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रपति पुतिन आज तक पर आने के लिए।
3: सिर्फ अनुभव, उससे ज्यादा भरोसा।
8: आज तक की खबर का असर हुआ है,
3: हर दिन कमाया जाता है।
9: क्या ये आपके ऑपरेटिव्स हैं?
3: नहीं, ये भारत के ऑपरेटिव्स हैं।
9: अल्फा, अल्फा को पहचानते हैं।
10: भारत के अल्फा जर्नलिस्ट, भारत के सबसे बड़े अल्फा न्यूज़ नेटवर्क पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: चढ़ावा चोरी पर अखिलेश ने फिर की चढ़ाई, कहा बीजेपी को ना चंदा मिलेगा ना वोट। कांग्रेस ने भी पीएम को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जांच कराने की मांग। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी एआई रक्षा क्षेत्र में करार। जापान की पीएम को मोदी ने बताया छोटी बहन, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। मुंबई के साकी नाका में सिस्टम की लापरवाही, खुले मैनहोल में गिरकर 60 साल के शख्स की मौत, ठेकेदार के खिलाफ एक्शन की तैयारी। दिल्ली में चार दिन बाद आया मॉनसून, मौसम विभाग ने की पुष्टि। मुंबई के पास समंदर में हाई टाइड, पहाड़ों पर जगह जगह लैंडस्लाइड और तबाही का मंजर। अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी में बम बम भोले की गूंज, एलजी ने रवाना किया श्रद्धालुओं का पहला जत्था। कल बालटाल और पहलगाम से होगी औपचारिक शुरुआत, रूट पर भारी सुरक्षा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खबरें असरदार, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सवालों के घेरे में है। इस्तीफा दे चुके ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। अयोध्या बार एसोसिएशन ने पुलिस थाने में तीनों के खिलाफ तहरीर देकर केस दर्ज करने की मांग की। बार एसोसिएशन ने कहा कि अगले थाने में एफआईआर नहीं हुई तो कोर्ट का वो दरवाजा खटखटाएंगे। सूत्र के हवाले से खबर है कि एसआईटी अब ट्रस्ट के पिछले 5 वर्षों के ऑडिट और हर वित्तीय लेन देन की बारीकी से जांच करेगी। आज एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंच सकती है, जबकि सरकार ने जांच के लिए समय बढ़ाते हुए 15 जुलाई तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। सूत्र के हवाले से यह भी खबर है कि पूछताछ में पूर्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने अपनी भूमिका से इनकार करते हुए जिम्मेदारी गणना कर्मी टिन्नू यादव पर डाल दी, हालांकि निगरानी में चूक की बात स्वीकार की गई है। वहीं मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव के बयान भी जल्द दर्ज किए जा सकते हैं।
2: चार लोगों का है, तीन लोग पहले से हैं, एक जो कंप्लेनेंट रहे हैं उनके उस मुकदमे के कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है इसलिए, और माल भी वहीं से बरामद हुआ है इसलिए हमारे मुकदमे में वो भी मुलजिम है। हाँ, तहरीर दे दिया है। तीन के हैं, एक और हैं। अच्छा। एक में वो है जिन्होंने पहली वाली एफआईआर दर्ज कराई, वो भी इसमें अभियुक्त है।
3: उसमें भी ये भी है
2: अभियुक्त है।
3: पुलिस ने आपको क्या बोला है कि वो क्या?
2: पुलिस ने उसके रिसीव किया है, टाइम डाला है, मोहर लगाई है और थाने में जीडी उन्होंने दर्ज किया है। अब जाकर के वो भी दर्ज करके कॉपी देने का उन्होंने आश्वासन दिया है।
0: और इस बीच अयोध्या से ही बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के सभी सदस्यों से पुलिस पूछताछ कर सकती है, क्योंकि सभी आरोपियों की संपत्तियों का पुलिसकर्मी ब्यौरा खंगाल रहे हैं। कई बेनामी संपत्तियों के लिंक्स मिले हैं। अयोध्या ही नहीं, लखनऊ, नोएडा, बाकी और राज्यों में इनकी संपत्तियां होने का शक है। पुलिस ये पता कर रही है कि आखिर किसकी कितनी संपत्ति है। पुलिस संपत्तियों की रजिस्ट्री की कॉपियां भी निकाल रही है। इसके बाद अगर कहीं बड़ी संपत्ति पाई जाती है तो केवल चंपत राय और अनिल मिश्रा नहीं बल्कि ट्रस्ट के और बड़े नामों से पूछताछ की जाएगी। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर, देखिए मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, चल अचल दोनों संपत्ति की जांच की जाएगी, लेकिन इस बीच सवाल इन तीन नामों से परे क्या और भी कुछ बड़े अधिकारी हैं? दो तीन और के नाम भी चर्चा में है, वो भी उजागर हो सकते हैं।
4: नेहा, बिल्कुल, पुलिस सूत्र अयोध्या के ये बता रहे हैं साफ कि ये केवल अभी शुरुआत है, यानी कि जिन नामों की चर्चा चल रही है, बड़े नामों की भी चर्चा चल रही है, उसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो इस कार्रवाई के जद में आने वाले हैं। मामला कुल मिलाकर यह है कि जो लैंड प्रॉपर्टी है, जो जमीन का मामला है, ये पता लगाया जा रहा है। इवन आप बिलीव करें रजिस्ट्रीज तक निकाली जा रही हैं, जो अयोध्या का लैंड है उसमें जो ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी हैं या और अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके पास कितनी जमीन है उसके रजिस्ट्री के कागज निकाले जा रहे हैं और ये पता किया जा रहा है उनकी चल अचल संपत्ति कितनी है, और अगर उनकी संपत्ति ज्यादा पाई जाती है तो वो भी जांच के दायरे में आ सकते हैं, उनसे पूछताछ भी हो सकती है। यानी कि ये मामला केवल चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोविंदगिरी तक सीमित नहीं है, ये मामला और भी आगे है, गोपाल राय के आगे है, यानी कि और भी नाम है जिनसे पुलिस पूछताछ कर सकती है और उसके बाद इस केस को और मजबूत बना सकती है। यानी कि वो संपत्तियां आखिर कहां से आई, पहले मंदिर निर्माण से पहले इनके पास कितनी संपत्तियां थी, और मंदिर निर्माण होने के बाद जब चढ़ावा बढ़ा, जब चंदा बढ़ा, तो उसके बाद इनकी संपत्तियां कितनी हो गई, इसको भी पुलिस जो है फिलहाल ये भी पुलिस की रडार में है और इसके तहत भी जांच चल रही है। इस बड़ी खबर ये भी बता दूं आपको कि अयोध्या में SIT की टीम पहुंच रही है, रास्ते में है और कुछ ही क्षणों में पहुंचकर SIT भी अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए दोबारा जांच शुरू कर रही है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चंदा चोरी से शुरू हुई जांच अब भर्ती घोटाले तक पहुंच गई है। जी हां, जांच एजेंसियों को यह पता चला है कि राम मंदिर में 125 कर्मचारियों की नियुक्तियों में पैसे की लेन देन किया गया, जमकर रिश्वतखोरी हुई और इस कथित भर्ती रैकेट में ट्रस्ट के कुछ बड़े पदाधिकारियों के शामिल होने का शक है। इसीलिए जांच एजेंसियां अब नियुक्तियों से संबंधित दस्तावेजों को खंगाल रही हैं, साथ ही ट्रस्ट के सदस्यों की संपत्तियों की जांच भी करने जा रही है।

0: क्या राम मंदिर में नियुक्तियों में रिश्वत ली गई? क्या राम मंदिर में भर्ती रैकेट चल रहा था? क्या रिश्वत के पैसे बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचे? राम मंदिर में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी? वो 22 जनवरी 2024 की तारीख थी, यानी तकरीबन 2 साल 5 महीने 10 दिन पहले, जब अयोध्या में धूमधाम से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वो दिन था जब करोड़ों राम भक्तों की मनोकामना पूरी हुई थी। लगा था कि प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राम मंदिर आंदोलन के तमाम अध्याय पूर्ण हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राम मंदिर फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह कचोटने वाली है। जिस ट्रस्ट को मंदिर निर्माण और प्रबंधन का जिम्मा दिया गया, उस पर रिश्वतखोरी के नए नए आरोप लग रहे हैं। ताजा आरोप यह है कि 125 कर्मचारियों की नियुक्तियों में रिश्वत ली गई। संगठित भर्ती रैकेट चल रहा था जिसमें बड़े चेहरे शामिल थे। अविनाश शुक्ला से पूछताछ के बाद रिश्वतखोरी की यह कहानी सामने आई। अविनाश शुक्ला ही वो शख्स है जो इस पूरे प्रकरण में अहम किरदार रहा। इस वीडियो को देखिए, यह अमित शुक्ला है, अविनाश शुक्ला का भाई। इसके हाथ में नोटों की गड्डियां दिख रही हैं। ये 1 साल पहले का वीडियो है जो अब वायरल हो रहा है। इसके साथ ही वायरल हो रही है ट्रस्ट की रिश्वतखोरी की कहानी, जिसमें अब नए नए पहलू जुड़ते जा रहे हैं। जैसे कि सूत्रों के हवाले से जानकारी ये सामने आई है कि मंदिर के रिकॉर्ड में नियुक्तियों से संबंधित कई दस्तावेज गायब पाए गए। नियुक्ति पत्र, औपचारिक सेवा अनुबंध या रोजगार से संबंधित अहम दस्तावेज नदारद मिले। दस्तावेजों के गायब पाए जाने के बाद ही जांच एजेंसियों को लगा कि इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। ये पता लगाना जरूरी है कि क्या नियुक्तियों के बदले पैसे की उगाही की गई। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को मंदिर में नियुक्त सभी कर्मचारियों की सूची मिल गई है, जिसकी अब बारीकी से छानबीन की जा रही है। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि पैसे की उगाही करने वालों में ट्रस्ट के कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल रहे। जांच में जिन अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, उनसे जल्द ही पूछताछ की जाएगी। संदेह के दायरे में आने वालों के बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जाएगी।
1: जांच एजेंसियों की कोशिश ये पता लगाने की भी है कि ट्रस्ट में भर्तियों से पहले पैसों का आदान प्रदान हुआ या नहीं, खासकर हायरिंग से पहले और हायरिंग के बाद। इसको लेकर वित्तीय विभाग और बैंक डिटेल्स को इस वक्त जांच एजेंसियां खंगालने में जुटी हुई हैं। बड़े पदाधिकारियों के बैंक अकाउंट्स भी खंगाले जा रहे हैं, जिससे ये मालूम पड़ पाए क्या किसी जगह पर, किसी डेट पर, किसी तारीख पर उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनमें पैसों की बढ़ोतरी एकदम से हुई, और अगर हुई तो कैसे हुई, कहां से हुई, इसको लेकर भी जांच जारी है।
0: जो भी होगा, SIT को इस बारे में ठोस सबूत या तथ्य मिलते हैं तो इसे जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। यानी जांच सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक सीमित नहीं रहेगी, इसमें भर्ती घोटाला भी शामिल होगा। शायद एक वजह यह भी है कि SIT का कार्यकाल 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
2: चंपत राय के बाद अयोध्या पुलिस ने एक और अहम किरदार अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की है। पूछताछ में अनिल मिश्रा ने सारी गड़बड़ियों का ठीकरा टिन्नू यादव पर फोड़कर खुद का बचाव कर लिया। अनिल मिश्रा का यह कहना है कि जैसे ही गड़बड़ी का पता चला, ट्रस्ट ने फौरन एक्शन लिया।

0: पुलिस और एसआईटी के रडार पर हैं ये तीन चेहरे। इन तीन चेहरों को अब तक आपने बखूबी जान और पहचान लिया होगा। ये तीन चेहरे हैं चंपत राय, ट्रस्ट के महासचिव, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, ट्रस्टी गोपाल राव। इन तीनों पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने ट्रस्ट को कठपुतली की तरह चलाया। इन पर आरोप लग रहे हैं नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाने का, ट्रस्ट में चल रही अनियमितताओं की अनदेखी करने का। लेकिन अब तीनों से पूछताछ हो रही है। पहले चंपत राय से पूछताछ हुई और अब खबर आ रही है कि अनिल मिश्रा को भी अयोध्या पुलिस के सवालों का सामना करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अनिल मिश्रा ने सारा ठीकरा टिन्नू यादव पर फोड़ा। अनिल मिश्रा ने कहा कि नोटों की गिनती करने वाले टिन्नू के इशारे पर काम करते थे, मेरी इसमें कोई भूमिका ही नहीं थी। यानी अनिल मिश्रा ने अपनी भूमिका पूरी तरह से नकार दी। अनिल मिश्रा से जब ये पूछा गया कि मंदिर प्रबंधन में आपका दखल था तो कैसे करोड़ों रुपए पार हो गए और भनक नहीं लगी, इस पर अनिल मिश्रा ने कहा कि ट्रस्ट ने ही चोरी पकड़ी, जैसे ही पता चला फौरन जांच शुरू हुई, ट्रस्ट ने ही एसआईटी की मांग की। हाँ, अनिल मिश्रा ने इतना जरूर माना कि निगरानी में उनसे चूक हुई।
1: सूत्रों की माने तो पुलिस पूछताछ में अनिल मिश्रा कई बार फंसते हुए दिखे। कई सवाल ऐसे भी थे जहां पर अनिल मिश्रा ने चुप्पी साध ली। तो कुछ सवालों में उन्होंने कहा कि सब कुछ किया धरा टिन्नू यादव का है। अब देखना यह है कि ये जांच पड़ताल कहां तक जाती है। जो बड़े नाम हैं वो भी जल्दी ही पुलिस की जद में आ सकते हैं। इस बीच में चंपत राय और अनिल मिश्रा का पुलिस के पास अब पहला अधिकृत बयान है और अब बारी है गोपाल राव की, जिनकी भूमिका कोषाध्यक्ष की है। और पुलिस को लगता है गोपाल राव इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक बेहद अहम कड़ी साबित होने वाले हैं।
0: आपको बता दें कि अनिल मिश्रा से पहले चंपत राय से भी पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों की माने तो पुलिस से चंपत राय ने कहा, चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं, चढ़ावा चोरी की इसकी जानकारी मिलते ही मैं सक्रिय हो गया, संदिग्धों को पकड़ा, एफआईआर भी कराई। हाँ, मैं मानता हूँ कि कोई हेरफेर ना हो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेरी थी। दरअसल चंपत राय के लिए बड़ी मुसीबत की वजह टिन्नू यादव है। टिन्नू से नजदीकी उनके गले की ऐसी हड्डी बन गई है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते। पूछताछ में पुलिस ने टिन्नू से उनके रिश्ते को लेकर सवालों की बौछार कर दी। इस पर चंपत राय बस इतना कह पाए, टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने पूछा रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया। इस पर चंपत राय का जवाब था, जरूरतमंदों को काम दिया। इसमें केवल मैं ही नहीं ट्रस्ट के दूसरे सदस्य की भी भूमिका रही। चंपत राय ही वो कड़ी है जिनसे पुलिस को अब दूसरे आरोपियों से पूछताछ में सामने आए खुलासों का मिलान करना है। चंपत ने क्या बताया और क्या छिपाया, इसी पर जांच एजेंसी चंदा चोरी के तमाम सिरे जोड़ पाएगी। लेकिन अभी जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो वाकई खलबली मचाने वाले हैं। समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
2: अयोध्या में चढ़ावा चोरी की जांच में अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है। चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तार लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चल सकता है।

0: चढ़ावा चोरी केस में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। आरोपी लव मिश्रा के घर पर चल सकता है बुलडोजर। ये निर्माणाधीन घर है अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा का। ये घर लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम लिया था। चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद अब ये निर्माणाधीन मकान अयोध्या विकास प्राधिकरण के रडार पर है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लवकुश मिश्रा की पत्नी को नोटिस जारी किया है। एडीए ने पूछा है कि मकान के नक्शे की मंजूरी ली गई थी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक एडीए ने जांच में पाया था कि मकान के निर्माण में मानकों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। एडीए ने एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर मकान पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है।
1: पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए, ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पहले थोड़ा मकान के अंदर का भी दिखाते हैं कि ये बाकायदा स्टेयर्स बन गई हैं और इसके बाद कमरे हैं। एक दो मंजिला मकान ये बनाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
0: सवाल ये भी है कि क्या ये जमीन और मकान चढ़ावा चोरी की रकम से बन रहा था। अब तक की जांच से पता चला है कि राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की खुल्लम खुल्ला लूट हुई, लेकिन अब पाई पाई की वसूली शुरू हो चुकी है। चढ़ावा चोरों से कुल 79,85,493 रुपए कैश बरामद हुए हैं। चढ़ावा चोरों से 1,121 अमेरिकी डॉलर भी बरामद हुए। निशानदेही पर कुल 21,548 नोटों की बरामदगी हुई, मतलब रामधन को चढ़ावा चोरों ने जमकर लूटा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला के निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई है। अविनाश शुक्ला के घर से 20,39,220 रुपए बरामद हुए। अविनाश शुक्ला ने राम मंदिर के चढ़ावे में चढ़े 1,121 अमेरिकी डॉलर पर भी हाथ साफ किया था, यानी करीब 1,00,000 रुपए। ठीक ऐसे ही अविनाश के ठिकाने से 159 ग्राम चांदी, 8 ग्राम सोने की चैन, 3 ग्राम सोने की अंगूठी भी मिली है। आरोपी लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव और रमाशंकर मिश्रा के ठिकाने से चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया है। लवकुश मिश्रा के ठिकाने से कुल 14,25,000 रुपए मिले। टिन्नू यादव के ठिकाने से 1,00,000 रुपए की बरामदगी हुई। रमाशंकर मिश्रा के निशानदेही पर 7,32,170 रुपए मिले। राम भक्तों ने अपनी आस्था नोट की शक्ल में दान पेटियों में डाली थी, लेकिन राम के दुश्मनों ने आस्था के साथ सीधा विश्वासघात किया, क्योंकि गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरों ने सिंडिकेट बनाकर चोरी को अंजाम दिया। आरोपी करुणेश पांडे के ठिकाने से 18,07,063 रुपए बरामद हुए। ठीक ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा के निशानदेही पर 16,82,040 रुपए मिले। आरोपी मनीष यादव ने भी दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की, उसके पास से 2,00,000 रुपए मिले। कैश की इस बरामदगी से साफ हो गया है कि चढ़ावे की लूट बड़े पैमाने पर हुई। समर श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
2: वहीं प्रधानमंत्री ने मॉनसून में हुई देरी, बारिश में कमी और आगे मॉनसून से होने वाली तबाही, तीनों को लेकर संबंधित सभी मंत्रालयों के लिए पूरी तैयारी का अलर्ट दिया है। इस बीच सबकी नजरें मोदी मंत्रिमंडल के जल्द होने वाले तीसरे कार्यकाल के पहले विस्तार पर हैं। प्रधानमंत्री 5 जुलाई या फिर 11 जुलाई के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं।
3: मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार कितने युवाओं को मौका मिलने वाला है?
4: हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी है, सामर्थ्य भी है।
3: जल्द होने वाले मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में अब की बार कितनी महिला सांसद शपथ लेंगी?
4: इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है।
3: 12 साल में 5वीं बार, तीसरे कार्यकाल में पहली बार, मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल में पिछड़े वर्ग के कितने सांसद मंत्री बनेंगे?
4: भाजपा का मंत्र है पिछड़ों को प्राथमिकता।
3: लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद के दोनों सदनों तक, चुनाव प्रचार के मंच से लेकर हर सभा और सम्मेलन तक प्रधानमंत्री कहते हैं देश में केवल चार जातियां हैं।

0: है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान।
1: तो क्या इसी मंत्र को ध्यान में रखकर इस बार प्रधानमंत्री ने अपनी नई टीम का चाल, चेहरा और चरित्र तय कर लिया है? जहां सबसे पहला सवाल आता है, कितने युवा चेहरे इस बार मोदी मंत्रिमंडल में दिखने वाले हैं?
0: दिनों दिन हमारा देश युवा होता जा रहा है, युवा आबादी वाला देश है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सुयोग है।
1: युवाओं पर फोकस करने वाले प्रधानमंत्री कितने युवा सांसद को मौका मंत्रिमंडल में दे सकते हैं, ये निर्भर करता है कि कितने युवा सांसद संसद में हैं और कितने मंत्री हैं। लोकसभा में अभी 30 साल से कम उम्र के एनडीए के केवल एक सांसद हैं, 31 से 40 साल की उम्र के एनडीए के 15 सांसद हैं और 41 से 50 साल की उम्र के 39 सांसद, जबकि अभी मोदी मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत 72 मंत्रियों की संख्या में दो मंत्री एनडीए के 30 से 40 साल के हैं, 15 मंत्री 41 से 50 साल के बीच के हैं, यानी 50 साल तक की आयु वाले 24% मंत्री हैं। तो क्या प्रधानमंत्री इस बार युवाओं की संख्या और बढ़ाकर मंत्रिमंडल की औसत आयु को कम करेंगे?
0: युवा शक्ति पर मेरा भरोसा है, युवा शक्ति में सामर्थ्य है और हमारी नीतियां, हमारी रीतियां भी उस युवा सामर्थ्य को और बल देने के लिए है। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, अवसरों की कमी नहीं है, आप जितने अवसर चाहेंगे ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपने देने का सामर्थ्य रखता है।
2: हर बार मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु लगातार कम हो रही है। 2014 में मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु 62 वर्ष थी, 2019 में मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु 60 वर्ष थी, 2021 में जब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ तब ये औसत आयु घटकर 58 वर्ष हो गई, 2024 में ये औसत आयु कायम रही। क्या इस बार कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल में मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु कम हो जाएगी, क्योंकि 2047 में विकसित भारत पर काम करने के लिए पीएम मोदी सबको प्रेरित कर रहे हैं और चर्चा ये है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा मौका युवाओं को दिया जाएगा।
3: बात दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, जहां पर शामली के निकट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में गड्ढे का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक्सप्रेसवे पर दो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया पर गड्ढे की तस्वीर वायरल हुई, एनएचएआई की टीम वहां पर पहुंची और करीब एक घंटे के भीतर मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया। लेकिन इस गड्ढे ने हाईटेक एक्सप्रेसवे की पोल खोल दी है। दरअसल 14 अप्रैल 2026 यानी कि इसी साल अप्रैल महीने में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। 12,000 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। दो महीने बाद ही इसमें ऐसे गड्ढे ने इसकी बनावट पर कई सवाल खड़े कर दिए।
4: इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट रोड हो चुकी है भाई। यही
3: खबरें असरदार, मेरे साथ अभी लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: व्हाटएवर यू आर इन द मूड फॉर, देयर्स ऑलवेज समथिंग टू लिसन टू ऑन ट्यून इन। म्यूजिक, न्यूज, स्पोर्ट्स, पॉडकास्ट्स एंड लाइव रेडियो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ऑल इन वन प्लेस। Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
8: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
9: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
9: कुछ तो बात है इस दिल में।
11: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: सीआरपीएफ डल लेक की भी सुरक्षा यहां पर करती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो यात्रा करने के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में घूमने के लिए निकल जाते हैं, खासतौर पर डल लेक में। इसलिए जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं ये पूरी तरीके से, आप चारों तरफ देख रहे हैं कि डल लेक की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर यहां पर व्यवस्था की गई है। यहां सीआरपीएफ के कमांडो 2400 घंटे निगरानी करते हैं, क्योंकि यहां खतरा काफी रहता है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, साथ ही अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री भी इस पूरे इलाके में पहुंचते हैं। इस वजह से यहां पर जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं वो ऐसे ही डल लेक में गश्त मारते हैं, और गश्त के दौरान किसी भी संदिग्ध स्थिति को नजर उनके द्वारा रखा जाता है, जिससे कि किसी भी तरीके के जो यहां पर अगर कोई आतंकी घटना करने की कोशिश करता है या फिर किसी और तरीके की यहां पर स्थिति पैदा होती है, उससे बचाने के लिए तमाम सीआरपीएफ के कमांडो यहां पर मौजूद रहते हैं।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
5: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
6: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
7: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
8: somebody save me,
7: to timeless favorites,
8: and life is like a song,
7: and new discoveries,
8: so much more than a history. Wake up!
7: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
0: In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.

0: चढ़ावा चोरी पर अखिलेश ने फिर की चढ़ाई, कहा बीजेपी को ना चंदा मिलेगा ना वोट। कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जांच कराने की मांग। भारत और जापान के बीच तकनीकी साझेदारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा क्षेत्र में बड़े करार। जापान की प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया मेरी छोटी बहन, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। मुंबई के साकीनाका में सिस्टम की लापरवाही, खुले मैनहोल में गिरकर असलम शेख नाम के शख्स की मौत, ठेकेदार के खिलाफ एक्शन की तैयारी। दिल्ली में 4 दिन बाद आएगा मॉनसून, मौसम विभाग ने की पुष्टि। मुंबई के पास समंदर में हाई टाइड, पहाड़ों पर जगह जगह लैंडस्लाइड और तबाही का मंजर। बीस जुलाई को आ सकता है नीट री एग्जाम का रिजल्ट, एनटीए सूत्रों के हवाले से खबर, एडमिशन प्रक्रिया में देरी ना करने की कोशिश।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach in association with
2: Bharat ki apni electric sawari so good.
0: Namaskar, main hu Gaurav Sawant. Aaj hum baat karenge swabhiman ki. Aaj baat Bharat ke us prachand sankalp ki jisne seema ke us paar baithe hukmarano ki raaton ki neend uda di hai. Aap yaad kijiye प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ऐतिहासिक बयान, रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते। और पहलगाम हमले के बाद भारत ने उसी संकल्प को सिद्ध करते हुए सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया था। भारत ने जैसे ही सिंधु नदी के पानी पर अपना रुख सख्त किया, जैसे ही एक सख्त रुख अख्तियार किया, वैसे ही पाकिस्तान में त्राही त्राही मच गई है। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक छाती पीट रहे हैं, हाय तौबा मचा रखी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान प्यासा है और प्यासे पाकिस्तान को अब समझ आ गया है कि अपने बाप से पंगा लेना, भारत से पंगा लेने का अंजाम दरअसल होता क्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पानी की किल्लत और भारत के इस कड़े प्रहार, भारत के इस दृढ़ संकल्प का पाकिस्तान पर असल में क्या असर हुआ है? पाकिस्तानियों ने रातों रात अपना बाप बदल लिया है। जी हां, रातों रात पाकिस्तान के अब्बा बदल गए हैं। जी हां, आपने सही सुना है, ये वही पाकिस्तान है जो कल तक कभी खुद को अरब का शहजादा बताता था, कहता था उसका इतिहास तो शुरू हुआ है मोहम्मद बिन कासिम के आने से, तो कभी तुर्की के सुल्तानों का अपने को वारिस बताता था, कभी यह बोलता था कि हम तो वंशज फारस से आए हैं। यह सोचिए, जो मुल्क अपनी पहचान भीख मांगकर उधार मांगकर जीता है, अपनी पहचान ही अब भारत के इस वाटर स्ट्राइक के संपर्क, जो केवल संकल्प अभी तक है, भारत का जो वाटर स्ट्राइक का संकल्प है उसके गंभीर नतीजों से इतना डर गया है कि उसने अपना बाप बदल लिया, एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान के सूचना मंत्री कह रहे हैं, हम तो सिंधु घाटी के बच्चे हैं, हम तो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरखों की संतान है। यानी जैसे ही भारत ने सिंधु का पानी, भारत के हक का पानी रोकने का संकल्प लिया, पाकिस्तान को अपना 5000 साल पुराना सिंधु सभ्यता उसकी याद आ गई, उस इतिहास की याद आ गई। क्यों? पाकिस्तान खुद अपने हाथों से इसे इतिहास की किताबों से मिटा चुका है। दरअसल पाकिस्तान के इतिहास की अगर बात करें तो 1947 से पहले तो पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और अब वो तलाश रहा है अपना इतिहास 5000 साल पहले, जिस इतिहास को पाकिस्तान ने मिटा दिया था। ये कहा कि 712 ईस्वी में जब अरब कमांडर मोहम्मद बिन कासिम उसने हमला किया उस क्षेत्र पर, इस्लामी शासन का संस्थापन जब किया या संस्थापक बनाकर पाकिस्तान ने उसे अपना अब्बा बना लिया था। फिर हाल के वर्षों में तुर्की में जब अर्दोहान की सत्ता आई तो तुर्की का एक टेलीविजन सीरियल बहुत ही सफल हुआ था, बहुत ही वायरल हुआ था। यह सीरियल था अर्तुगुल गाजी हिट। यह हिट हुआ अर्तुगुल गाजी। जब यह हिट हो गया तो पाकिस्तानियों ने तुर्कों को अपना अब्बा मान लिया। आप सोचिए कैसे उसने अपना बाप बदला। कभी बोलता है अरब मेरे बाप है, कभी वो बोलता था कि तुर्की उसके बाप है। तुर्की से मिल रहे ड्रोन, और फिर पाकिस्तान इतना तो कर ही सकता है कि तुर्की से उसको ड्रोन भी मिल रहे हैं, और अर्तुगुल को वो देखकर ये कहा कहता भी था कि हाँ हाँ ये लोग ठीक है, यही मेरे बाप है। अब उसकी नजर जब समृद्ध सिंधु घाटी सभ्यता और ये भारत की विरासत है, भारत की विरासत पर जब पड़ी, अब जब पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहा है तो कह रहे नहीं नहीं मैं सिंधु घाटी की सभ्यता हूं। क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने पानी रोकने का, भारत के हक के पानी को पाकिस्तान न जाने देने का मन बना लिया है। जो पाकिस्तान अपनी जड़ों को भूल गया था, यह अलग बात है कि पाकिस्तान ने कभी चीन को अपना बाप नहीं बनाया या कभी अमेरिका को अपना बाप नहीं बनाया, लेकिन अब मांगी हुई पहचान, भीख में मिली पहचान पर जीने वाला पाकिस्तान अब इस आइडेंटिटी क्राइसिस में अपने लिए एक नई आइडेंटिटी तलाश रहा है, कभी अरब तो कभी तुर्क, और अब सिंधु घाटी सभ्यता पर दावा ठोक रहा है पाकिस्तान। कैसे? पाणिनि के अष्टाध्याय को अब उस पर वो निकाल रहा है डाक टिकट। वो आचार्य चाणक्य को, तक्षशिला के विश्वविद्यालय को अब पाकिस्तान अपनी सभ्यता बता रहा है। बताइए, वो पाकिस्तान जो मोहम्मद बिन कासिम को अपना बाप मानता था, अब आचार्य चाणक्य और पाणिनि की बात कर रहा है। उस पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
3: दैट वी आर द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन।
4: पाकिस्तान का नया ड्रामा हम सिंधु घाटी के लाल। हम कौन हैं? हमारे पूर्वज कौन थे? हम आए कहां से हैं? ये वो सवाल है जो किसी भी आम पाकिस्तानी को डिप्रेशन में डाल सकते हैं, और इस डिप्रेशन को हवा दी है पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने, जिन्होंने अचानक दावा ठोक दिया कि पाकिस्तानी तो सिंधु घाटी सभ्यता की संतान है।
5: When we identify ourselves as Pakistanis, we ask a question as to who we are. And if you go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. Whenever I go abroad, I often tell my counterparts that we are the people of the Indus Valley civilization.
4: अब तरार साहब के इस ज्ञान पर खुद पाकिस्तान के लोग सिर पीट रहे हैं। मौलाना भाग गए हैं कि इस्लामी मुल्क में ये हिंदू बौद्ध इतिहास कहां से आ गया, और इतिहासकार हंस रहे हैं कि चलो देर से ही सही, अक्ल तो आई जब खुद को अरब का भाई बताते थे। दरअसल पाकिस्तान की बीमारी बहुत पुरानी है। साल 1947 में धर्म के नाम पर भारत से कटकर देश तो बना लिया, लेकिन इतिहास कहां से लाते। भारत से अपनी हर चीज अलग दिखाने की सनक में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी ही जड़ों को काट दिया। 1970 और 80 के दशक में जब सऊदी अरब से रियाल आने शुरू हुए तो पाकिस्तानियों को लगा कि उनके पूर्वज तो अरब के रेगिस्तानों से आए थे। मोहम्मद बिन कासिम को पहला पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया। सालों तक पूरा मुल्क इसी मुगालते में जीता रहा कि वो तो अरबों के भाई हैं। तुर्कों को बनाया नया अब्बा। लेकिन अरबों ने जब भाव देना बंद किया तो साल 2010 के बाद पाकिस्तानियों का अब्बा फिर बदल गया। इस बार एंट्री हुई तुर्कों की। तुर्की का एक नाटक अर्तुगरुल गाजी क्या हिट हुआ, पूरा पाकिस्तान खुद को ऑटोमन साम्राज्य का वारिस समझने लगा। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खुद को तुर्क लिखने लगे। तुर्की से ड्रोन क्या खरीदे, इन्हें लगा कि इनके खून में तो तुर्की सुल्तानों का अंश है। हालत ये हो गई कि खुद तुर्की के लोगों को कहना पड़ा कि भाई तुम लाहौर और कराची के हो, अंकारा के नहीं। अब भारत की सिंधु विरासत पर नजर। अब साल 2026 में पाकिस्तान का नया रूप देखिए, जब अरब और तुर्क दोनों ने लात मार दी और दुनिया भर में भारत की सिंधु घाटी विरासत का डंका बजने लगा तो पाकिस्तान को अचानक 5000 साल पुराना इतिहास याद आ गया। अब वो कह रहे हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो हमारे यहाँ हैं, इसलिए असली वारिस हम हैं।
5: And as they say, water is life, and Indus has given life to Pakistan. So when we say that Indus is our lifeline and our people, the 240 million people of Pakistan, have an inalienable right to the water of Indus, we mean it from the core of our heart.
4: लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व इस्लामी थी, बहु सांस्कृतिक थी और उसकी जड़ें विशुद्ध रूप से भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी हैं। इसे स्वीकार करते ही पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी यानी दो राष्ट्र का सिद्धांत खुद ब खुद दम तोड़ देता है। पाकिस्तान पिछले कई दशकों से कभी अरब, कभी तुर्क तो कभी मध्य एशिया के छोटे छोटे झूठे नैरेटिव गढ़कर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन भारत की सनातनी और ऐतिहासिक पहचान का एक ही प्रहार ऐसा था कि पाकिस्तान को वापस घुटनों पर आकर उसी इतिहास की भीख मांगनी पड़ रही है जिसे उसने नकार दिया था। ये किसी कॉमेडी शो से कम नहीं है जो मुल्क अपनी हस्ती को सिर्फ भारत विरोध पर टिकाए रखता हो। उसका ऐसा हाल होना तय था। धर्म के नाम पर देश तो बन गया लेकिन संस्कृति, भाषा और

0: ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: अच्छा, चार लाइनें सीख तो ली लेकिन उसको अपने हृदय में उतार नहीं पाए। और अगर आपने बात भी सुनी अताउल्लाह तरार की, तो उन्होंने क्या कहा, हम इंडस वाटर सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, वैसे ये सिंधु सरस्वती सभ्यता है। ये क्या माँ सरस्वती की उपासना करेंगे? खैर, पानी रुका तो जय श्री राम भी बोलेंगे, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान की असलियत क्या है? केवल हिंदू विरोध और ये गजवाए हिंद की उनकी मानसिकता। और केवल हिंदू नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई, यहां तक कि शिया मुसलमानों को भी ये लोग मारते हैं। कैसे? एक और खबर मैं आपको बताता हूं। जो पाकिस्तान खुद को सिंधु सरस्वती सभ्यता का वारिस बताने का अब ढोंग रच रहा है, उसकी असलियत दुनिया के सामने एक बार फिर आ गई है। वो पाकिस्तान जो खालिस्तान के मुद्दे को भड़काता है, खुद को सिखों का हिमायती बताता है, उसने सिखों की आस्था को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। जी हां, पाकिस्तान में 125 साल पुराने गुरुद्वारा साहिब को, गुरुद्वारा सिंह सभा लहरी को गिरा दिया गया है। ये एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, 125 साल पुराना गुरुद्वारा है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में इस 125 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारे को बिना किसी एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के एक स्थानीय व्यापारी ने गिरवा दिया। जो पाकिस्तान में सिख समुदाय बचा हुआ है वो इस समय काफी गुस्से में है। पाकिस्तान में वैसे तमाम गुरुद्वारे खाली करा लिए गए हैं, सिखों की बेटियों को वहां के लोग जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं। सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, उनके बच्चों को उठा ले जाते हैं, लड़कियों को खासतौर पर जबरदस्ती वहां धर्म परिवर्तन करा देते हैं उनका, और उनके घरों पर कब्जा कर लेते हैं। ये पाकिस्तान में सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, यहां तक कि शिया मुसलमान हो, अहमदियाओं को तो मुसलमान मानते ही नहीं है, उनके उत्पीड़न की एक और भयावह तस्वीर सामने आ रही है। और अगर आप इसको उठाकर देखें तो यह 1947 से एक पैटर्न है, हत्या, अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन, जबरन वसूली, अल्पसंख्यकों को लगातार पाकिस्तान में खतरे में डाला जाता है। वहां पर एक आदमी है मियां मिट्ठू करके, जो हिंदू, सिख और ईसाई लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है, और 12-12 13-13 साल की छोटी बच्चियों का 50-60-70 साल के आदमियों के साथ उनकी शादी करा देता है, और वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ ईद की नमाज पढ़ता है। भारत सरकार ने गुरुद्वारा साहिब को गिराए जाने का, 125 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारे को गिराए जाने के इस घटना की कड़ी निंदा की है। लेकिन यह बात आप सोचिए, उन पाकिस्तान परस्त खालिस्तानियों को समझ नहीं आ रही है। पाकिस्तान में सिखों का जो उत्पीड़न हो रहा है, गुरुद्वारों पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, एक खालिस्तानी के मुंह से एक शब्द यहां नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि उनको पैसा मिलता है पाकिस्तान से। भारत सरकार ने लेकिन बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत सरकार ने कहा यह सीधा हमला अल्पसंख्यकों पर है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ पाकिस्तान का जो दागदार रिकॉर्ड है यह सबके सामने आ गया है। विदेश मंत्रालय ने एक तीखे बयान में लिखा है, दुर्भाग्य से यह कोई अकेली घटना नहीं है, क्योंकि हमने इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं देखी और रिपोर्ट्स देखी हैं। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके उपासना के स्थलों को सिलसिलेवार रूप से निशाना बनाया जाता है और बेधड़क ये काम हो रहा है। भारत सरकार पाकिस्तान से इस मामले की तेजी से जांच करने और इस घिनौने कृत्य के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की अपील करती है। गुरुद्वारा साहिब के तोड़े गए हिस्सों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, पुनर्निर्माण वहां होना चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार पाकिस्तान सरकार से ये आग्रह करती है कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं और उनके उपासना के स्थल हैं, उनकी सुरक्षा, गरिमा और भलाई सुनिश्चित करने के अपने दायित्व को पाकिस्तान की सरकार पूरा करे और पाकिस्तान में व्याप्त सांप्रदायिक हिंसा तथा धार्मिक असहिष्णुता के माहौल पर निर्णायक रूप से रोक लगाई जाए। अब रुख करते हैं एक और बड़ी खबर, और यह खबर भारत और जापान के बीच निरंतर गहरी होती दोस्ती की खबर है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची

0: इस समय भारत में है, 3 दिनों की वो औपचारिक भारत यात्रा पर है। आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें जबरदस्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, औपचारिक राजकीय सम्मान से उनका स्वागत हुआ। फिर हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत और जापान के बीच जो द्विपक्षीय बातचीत हुई, दोनों नेता भारत और जापान आर्थिक फोरम की बैठक में इस समय हिस्सा भी ले रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को अपनी छोटी बहन बताया, अपनी छोटी बहन के रूप में उन्हें संबोधित किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सनाए ताकाइची को मोटर बाइक चलाने का शौक है। भारत और जापान मोटरसाइकिल के साझा उत्पादन में एक नया इतिहास लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत दुनिया की सबसे तेज विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान को भारत की विकास यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार भी बताया। सुनिए।
1: योर एक्सलेंसी, मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स, नमस्कार, कोनिचिवा। भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम में आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है। प्रधानमंत्री ताकाई जी, मुझे बताया गया है कि आपको मोटर बाइक का बहुत शौक है। हमें बहुत खुशी है कि कावासाकी, यामाहा और होंडा की बाइक्स भी भारत में आज विश्व भर में एक्सपोर्ट होती है। इसी तरह एयर कंडीशनर हो या पावर ग्रिड इक्विपमेंट, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है। विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही है। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कुछ ही महीने पहले हमने टैक्सेशन, गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए। हम हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव दे रहे हैं जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं। और यही कारण है,
0: भारत और जापान की जो मित्रता है ना, ये बहुत ही मजबूत है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, जब गति की बात करें, रफ्तार की बात करें, तो चाहे होंडा की मोटरसाइकिल हो, यामाहा हो, कावासाकी हो, या फिर कार में सुजुकी हो, या फिर मेट्रो हो, या बुलेट ट्रेन हो, शिनकानसेन, गति की बात की जाए तो भारत और जापान की मित्रता हर महीने में गति दे रही है प्रगति को। यह बताइए, रक्षा, सामरिक और हाई टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अब इस संबंध को और मजबूत कैसे किया जा रहा है?
2: बहुत ठीक कहा गौरव आपने। कि गति और शक्ति के साथ साथ भारत और जापान की यह साझेदारी दुनिया के लिए कैसे बेहतर हो सकती है, दुनिया को कैसे वैकल्पिक मॉडल दे सकती है, उसके लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच आज हुई बातचीत बहुत मायने रखती है। रक्षा क्षेत्र को सनाए ताकाइची ने पहली बार जापान के निर्यात के लिए खोला है और यह पहला मौका है जब उनकी अपनी इस पहली यात्रा के दौरान भारत और जापान के बीच में इस बात को लेकर समझौता हुआ है कि अब जो नेवल रेडियो एंटेनाज हैं वो डेवलप किए जाएंगे और वो पहला प्रोजेक्ट होगा जिसको निर्यात के लिए भी खोला जाएगा। दोनों देश न केवल इसको विकसित करेंगे बल्कि अन्य देशों को उपलब्ध भी कराएंगे। साथ ही किस तरीके से भारत और जापान मिलकर रक्षा साझेदारी को तो मजबूत करेंगी, साथ ही जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है उसके अंदर भारत और जापान जो कि दो बड़े आर्थिक इंजन है वो एक वैकल्पिक मॉडल खड़ा करेंगे, जहां पर चीन की जो आर्थिक दादागिरी है उसके मुकाबले एक ज्यादा बेहतर, एक ज्यादा समावेशी मॉडल तैयार किया जा सके। साथ ही द्विपक्षीय स्तर के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना ही है, उन्होंने कहा है कि अगले 10 वर्षों के अंदर करीब करीब $68 अरब का निवेश जापान से भारत में आना है। इस समय भी भारत के बाजार के अंदर, भारत की अर्थव्यवस्था में जापान पांचवां सबसे बड़ा जो है निवेशक है। एफडीआई फ्लो के लिहाज से यदि देखा जाए तो उसमें कई गुना का इजाफा होना है और इसीलिए प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया गौरव कि पीएमओ एक स्पेशल जो विंडो है वो क्रिएट करेगा जापान के कारोबारियों के लिए, जापान के बिजनेस होल्डर्स के लिए, कि वो उनकी समस्याओं को सुना जा सके, उनका समाधान किया जा सके।
0: ऐतिहासिक संबंध है, ऐतिहासिक धर्म के भी, बौद्ध धर्म को अगर देखा जाए तो एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी, बहुत ही मजबूत है ये साझेदारी। और दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री बहुत स्ट्रांग नेशनलिस्ट भी है, अपने अपने देशों में बहुत लोकप्रिय भी है। प्रणय फिलहाल धन्यवाद, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, ये खबर कर्नाटक से आ रही है, बेंगलुरु से बड़ी खबर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी मिलने के बाद परिसर को अब खाली कराया जा रहा है। यह धमकी दरअसल ईमेल के जरिए दी गई है और इसके बाद बेंगलोर पुलिस, कर्नाटक पुलिस और बम निरोधक दस्ते और एंटी टेरर स्क्वाड वो पहुंच चुके हैं। डॉग स्क्वाड वहां बुला लिया गया है, ड्रोन से भी तलाशी ली जा रही है पूरे परिसर की और किसी संदिग्ध वस्तु की फिलहाल मिलने की कोई पुष्टि नहीं है। पुलिस ईमेल भेजने वाले का पता लगाने में इस समय जुटी हुई है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
4: Diehard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: हमने तब भी सवाल किया था,
4: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
3: हम आज भी सवाल करते हैं,
4: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
3: ऑपरेशन अग्नि,
4: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
3: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
5: In association with
6: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।

0: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
1: हमने तब भी सवाल किया था।
2: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
1: हम आज भी सवाल करते हैं।
2: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
1: ऑपरेशन अग्नि,
2: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
1: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
3: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: संसद का मॉनसून सत्र इस बार भी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार एक बार फिर सदन में वो बिल पेश करने जा रही है जिस पर पिछली बार बवाल मच गया था। सूत्रों के मुताबिक 130वें संविधान संशोधन बिल पर बनी JPC इससे जुड़े प्रावधानों को हटाने के पक्ष में नहीं है। माना जा रहा है कि 17 जुलाई को समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहते हुए पद पर नहीं रह सकता। PM, CM या मंत्री की गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर कोर्ट से जमानत लेनी होगी। अगर 30 दिन में जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। बाद में PM, CM या मंत्री को जमानत मिली तो वे अपने पद पर वापस आ सकते हैं। अब तक संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए जाने पर ही जनप्रतिनिधियों को पद से हटाया जा सकता था। मौजूदा कानूनों में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को हटाने को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। पिछले मॉनसून सत्र में गृहमंत्री अमित शाह ने इससे जुड़े 3 विधेयक संसद के दोनों सदनों में रखे थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद JPC को भेजने का प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। विपक्ष का कहना है कि अगर ये बिल पास होते हैं तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कराया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का खतरा पैदा होगा। सरकार का तर्क है कि इससे सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही बढ़ेगी। गंभीर आरोपों में लंबे समय तक जेल में रहने वाला व्यक्ति मंत्री पद पर बना रहे, ये लोकतांत्रिक नैतिकता के खिलाफ है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।

0: हवा चोरी मामले पर अखिलेश यादव ने फिर की चढ़ाई, कहा बीजेपी को ना चंदा मिलेगा ना वोट। कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जांच कराने की मांग। भारत और जापान के बीच तकनीकी साझेदारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा क्षेत्र में करार। जापान की प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया मेरी छोटी बहन, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। बेंगलुरु में इसरो हेडक्वार्टर में बम की धमकी, ईमेल मिलने के बाद तलाशी में अब तक नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु, लोगों को बिल्डिंगों से बाहर निकाला गया। मुंबई के साकीनाका में सिस्टम की लापरवाही, खुले मैनहोल में गिरकर असलम शेख नाम के शख्स की मौत, ठेकेदार के खिलाफ एक्शन की तैयारी। बीस जुलाई को आ सकता है नीट री एग्जाम का रिजल्ट, एनटीए सूत्रों के हवाले से खबर, एडमिशन प्रक्रिया में देरी न करने की कोशिश।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड।

0: ईरान में खामिनई सीनियर का अंतिम संस्कार क्या इसराइल मचाएगा हाहाकार ट्रंप के करीबी इसराइल को उकसा रहे हमले का सही मौका बता रहे अमेरिकी पालतू बताए जाने से भड़का इसराइल इसराइल ने धमकाया था मुश्तबा की मौत तय हो चुकी है अराची बोले अपने पालतू पर लगाम कैसे अमेरिका क्या इसराइल अंतिम संस्कार के मौके पर करेगा बारूदी प्रहार
1: आप देख रहे हैं रणभूमि आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत बेहद विस्फोटक स्थिति इस समय मध्य पूर्व में है ईरान को लेकर इस समय बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेहद करीबी और धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता लॉरा लूमर ने ईरान को लेकर एक विवादित पोस्ट किया है अपने पोस्ट में लॉरा लूमर ने खमेनेई सीनियर के अंतिम संस्कार को टारगेट रिच एनवायरनमेंट बताया है यानी वो इसे इसराइल के हमले के लिए एक सुनहरा मौका या अच्छा मौका बता रही हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस फनीएस्ट थिंग्स कर सकती हैं, यानी कुछ भी इस समय कर सकती हैं। और इसको वो एक मजाकिया अंदाज में तो कह रही हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से क्या ये संकेत है अगले हमले के लिए उकसाने का। अपने इस पोस्ट के बाद उन पर जो लोग हमलावर हैं, जो कह रहे हैं कि क्या आपको अंतिम संस्कार पर हमला करना अच्छा लगता है, तो इसके जवाब में लॉरा लूमर ने लिखा है कि अगर अमेरिका या इजरायली सेना को जिहादियों के किसी समूह पर हमला करने का मौका मिलता है तो मैं कभी नहीं कहूंगी कि यह मौका चूक जाए। आपको बता दें कि लॉरा लूमर जो है धुर इस्लाम विरोधी भी है, इसराइल समर्थक है और अपने विचारों को खुलकर वो व्यक्त करती हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेहद करीबी समर्थक उन्हें माना जाता है। अब ये उनका निजी विचार है या इसे इस रूप में देखा जाए कि ये इसराइल को मौका ना चूके इस तरह की बात बता रही हैं। अब सवाल ये है कि इसराइल क्या ऐसे मौके पर हमला कर सकता है, आपको इसका खबर इस खबर के बारे में हम विस्तार से भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आगे आने वाली खबरों की कुछ झलक हम आपको दिखाते हैं। बीती रात, और यह बेहद संवेदनशील खबर है, यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर बीती रात कीव पर रूस ने बेहद भयानक हमला कर दिया है। बड़ा हमला कीव पर हुआ है। बताया यह जा रहा है कि रूस ने कीव का वो होटल उड़ा दिया जहां यूक्रेन की सेना के बड़े बड़े अधिकारी एक मीटिंग के लिए मौजूद थे। क्या रूस ने एक ही बड़े हमले में कीव के बड़े से एक सैन्य नेतृत्व को चोट पहुंचाई है? हम आपको वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे क्योंकि तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे रूस के हमले से कीव में लोग जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में चले गए। वहीं एक और बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं, यह हॉर्मूज को लेकर है। हॉर्मूज में ईरान की कैसे अमेरिकी युद्धपोत के कैप्टन से बहस हो गई और उसको लेकर तनाव और ज्यादा बढ़ गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि ईरान का जो मोबाइल नेवल एयर डिफेंस सिस्टम है उसने यह दावा किया है कि उसका मोबाइल नेवल एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है, यानी अब उसे हॉर्मूज जलडमरू मध्य में उतार दिया गया है। दावा यह कि यह दुनिया की ऐसी अपनी तरह की पहली तेज नाव है जो समंदर में चलते चलते दुश्मन पर मिसाइल दागने की क्षमता रखती है और दुश्मन के जहाजों को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। ये विस्तार से आपको सभी खबरें दिखाएंगे, लेकिन पहले वो खबर जिससे मध्य पूर्व में शांत पड़े, वो जो बारूदी ज्वालामुखी है ना, एक बार फिर उसमें एक विस्फोट हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की बेहद करीबियों में से मानी जाने वाली एक लॉरा लूमा ने इसराइल को इशारों इशारों में कहा है कि वो खमेनेई सीनियर की अंतिम विदाई पर ऐसा हमला कर सकता है जिससे एक ही साथ इसराइल के दुश्मनों का सफाया हो सके। क्या इसराइल ऐसा करने वाला है, इस पर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि इसराइल में समय क्या सोच है।
0: मिडिल ईस्ट में बारूद सुलग रहा है और चिंगारी सीधे अमेरिका से आई है। न्यूयॉर्क पोस्ट की उस खबर पर जिसमें दावा किया गया कि खामेनेई का शव कोल्ड स्टोरेज में रखा है और ईरान एक ऐतिहासिक अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप की बेहद करीबी लॉरा लूमर ने आग उगल दी है। लूमर ने सोशल मीडिया पर लिखा, द IDF हैज द अपॉर्चुनिटी टू डू द फनीएस्ट थिंग, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेज के पास इस वक्त सबसे मजेदार काम करने का मौका है। और इसके ठीक बाद उन्होंने एक और पोस्ट में धमाका करते हुए लिखा कि खामेनेई का अंतिम संस्कार, इसे ही हम टारगेट रिच एनवायरनमेंट कहते हैं। लेकिन ये जुबानी जंग अचानक शुरू नहीं हुई। इस बारूदी खेल की शुरुआत तब हुई जब इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स ने सीधे हुंकार भरी कि मुश्तबा खामेनेई अब इसराइल की हिट लिस्ट पर हैं, वो मार्क्ड फॉर डेथ हैं। इसराइल की इस खुली धमकी पर ईरान तड़प उठा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अराग्ची ने कहा, अमेरिका तेल अवीव के अपने इस पालतू को काबू में रखे, वरना ईरान उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि वो भूल नहीं पाएगा। जब ईरान की तरफ से जुबान बेलगाम हुई तो ट्रंप की सबसे कट्टर सिपह सालार लॉरा लूमर ने वो बात खुलकर कह दी जो तमाम ईरान विरोधी और इजरायली समर्थकों के दिलों में छिपी थी। जब लूमर से पूछा गया कि क्या आपको किसी के अंतिम संस्कार पर हमला करना अच्छा लगता है, तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, अगर अमेरिका या इजरायली सेना को जिहादियों के किसी बड़े समूह को एक साथ ढेर करने का मौका मिलता है तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो ये मौका गंवाएं। सवाल नंबर एक, क्या 4 जुलाई को ईरान में होने वाले महाजनाजे पर इसराइल कोई गुप्त या सीधा हमला करने वाला है? सवाल नंबर दो, जिस डर से ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता की अंतिम विदाई को 4 महीने तक टाले रखा, क्या वो खौफ सच साबित होने वाला है? सवाल नंबर तीन, क्या जनाजे के इस टारगेट रिच एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करके इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा? तनाव चरम पर है। ईरान ने युद्ध और इजरायली एयर स्ट्राइक के खौफ से जिस अंतिम संस्कार को 4 महीने तक रोक कर रखा, वो अब 4 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। तेहरान की सड़कों पर लाखों की भीड़ होगी। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के बड़े बड़े कमांडर वहां मौजूद होंगे। ऐसे में लॉरा लूमर का ये विस्फोटक सुझाव क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट है या फिर इसराइल के किसी इनर सर्कल के प्लान का लीक होना? नेतन्याहू कह चुके हैं, ईरान के हाथों परमाणु तबाही से बचने के लिए इसराइल तीसरी बार भी ईरान पर हमला कर सकता है।
2: באיראן כדי להציל אותנו מהשמדה של פצצות אטום שכבר היו בידיהם, ולך תדע מי היה כאן נמצא.
3: תהיה פעם שלישית?
2: אם צריך. כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
3: פס.
0: अगर सीनियर खामेनेई की अंतिम विदाई के मौके पर कोई भी चूक या धमाका हुआ तो यकीन मानिए, इस बार जो महायुद्ध छिड़ेगा उसे रोक पाना दुनिया के किसी भी देश के बस में नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
1: वैसे लॉरा लूमा का जो रुख है ना, वो ईरानी नहीं आतंकवादी देश पाकिस्तान के खिलाफ भी बेहद कड़ा रहा है। इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोला अली खमेनेई के मारे जाने के बाद पाकिस्तानी आतंकी कराची के अमेरिकी कॉन्सुलेट में घुस आए थे। यही नहीं, अमेरिका में एक पाकिस्तान को ईरान के इशारे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए भी एक पाकिस्तानी नागरिक को सजा सुनाई गई थी। ये सारी बातें इंडिया टुडे और आज तक के कॉन्क्लेव में खुलकर लॉरा लूमा ने कही भी थी। हम उनका 14 मार्च को जो बयान था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आज तक पर, हम वो भी आपको सुनवाते हैं।
4: We are not supposed to negotiate with terrorists. President Trump's approach rejects all of that. We impose maximum pressure, economic isolation, military dominance, and diplomatic isolation of enablers of Islamic terrorism like Pakistan. Just last week, a Pakistani man named Asif Merchant, with ties to Iran, was found guilty of plotting to assassinate President Trump at the request of Iran. Additionally, the world watched in horror 2 weeks ago as Pakistani terrorists stormed the U.S. consulates in Pakistan with guns in an effort to murder the American diplomats following the U.S. drone strike on the supreme leader of Iran.
1: और इस बीच ईरान ने एक बड़ा दावा किया है. ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने तेज रफ्तार वाला समुद्री एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है और उसे समुद्र में उतार दिया है. बकायदा इसका वीडियो जारी किया गया. दुनिया का पहला फास्ट अटैक एयर डिफेंस वेसल कहा जा रहा है इसे. सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक इस युद्धपोत को आप समंदर में तैरता हुआ मोबाइल नौसैनिक टोर सिस्टम भी कह सकते हैं. यह युद्धपोत बेहद तेज गति से चलने में पूरी तरह से सक्षम है. समंदर के रास्ते से आने वाले किसी भी समुद्री खतरे, हवाई खतरे, मिसाइल या ड्रोन को यह पलक झपकते ही तबाह करने का दावा करता है. वीडियो में फास्ट अटैक क्राफ्ट से मिसाइल दागते हुए दिखाया गया है. IRGC का दावा यह है कि इस तकनीक को उन्होंने इस युद्ध के बीच इतना बढ़िया तैयार किया है कि किसी भी नौसैनिक युद्ध के तौर तरीकों को अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य में पूरी तरह से बदल दिया जाएगा. और अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी जंग का. बेहद खतरनाक और सनसनीखेज खबर है जो इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव से आ रही है. कीव और मॉस्को यानी दो देश, दो राजधानियां, यूक्रेन और रशिया. यूक्रेन की राजधानी कीव, रशिया की राजधानी मॉस्को. कीव पर अब तक का सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी हमला हुआ है और इससे पूरा यूक्रेन दहल गया है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना ने एक साथ दर्जनों मिसाइल और घातक ड्रोन दागकर पूरे कीव को और खासतौर पर सेंट्रल कीव को हिलाकर रख दिया. अब तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है. इस महाविनाश के पीछे मॉस्को के अंदर हुई एक बेहद रहस्यमय बैठक की कहानी सामने आ रही है. हमले से ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ एक मेज पर बैठे नजर आए जिस पर 6 लाल रंग की फाइलें रखी हुई थी. रूसी मीडिया में समय खलबली है. इन्हीं 6 फाइलों में यूक्रेन की बर्बादी का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा हुआ था. क्या इन लाल फाइलों के जरिए पुतिन ने जेलेंस्की के को तेल के ठिकानों पर हुए हमले का बदला लिया, यानी 100 सुनार की तो एक लोहार की वाला सबक यूक्रेन को सिखाया गया. पुतिन की उन 6 लाल फाइलों का पूरा सच हमारी इस एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट में देखिए.

0: पर पुतिन का सबसे बड़ा प्रहार। यूक्रेन की राजधानी कीव, जो बीती रात पुतिन के बारूदी गुस्से से थर्रा उठी, रूस ने एक साथ कई लहरों में मिसाइल और खतरनाक ड्रोनों की ऐसी बौछार की जिसने कीव को शमशान में बदलने की कोशिश की। इस भीषण हमले में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग मलबे में दबे और घायल हैं। रिहायशी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। आसमान से बरसते बारूद की वजह से कीव का आसमान पूरी तरह लाल हो गया था। होटल उड़ाया या सैन्य कमांड सेंटर, इस हमले का सबसे बड़ा केंद्र बना कीव का मशहूर प्रीमियर पैलेस होटल। रूस का दावा है कि इस होटल में यूक्रेन के बड़े सैन्य अधिकारी छिपे थे और ये एक गुप्त कमांड सेंटर था जिसे रूस ने एक झटके में उड़ा दिया। हालांकि यूक्रेन इसे सिर्फ एक सिविलियन होटल बता रहा है। सच जो भी हो, लेकिन इस हमले ने यूक्रेन के कमांड स्ट्रक्चर को बड़ा झटका जरूर दिया है, भले ही वो पूरी तरह तबाह न हुआ हो। पुतिन की 6 लाल फाइलों का रहस्य। लेकिन कीव के आसमान को लाल करने वाले इस हमले की पटकथा कहां लिखी गई, अब वो सस्पेंस सुनिए। हमले से ठीक पहले यानी 1 जुलाई को मॉस्को के क्रेमलिन में पुतिन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ एक बेहद गुप्त और संवेदनशील बैठक की। इस बैठक की जो तस्वीरें सामने आई उसने दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए। पुतिन के सामने मेज पर रखी थी 6 लाल फाइलें। रूस में इन लाल फोल्डर्स का मतलब होता है टॉप सीक्रेट, यानी सबसे संवेदनशील सैन्य और खुफिया दस्तावेज। माना जा रहा है कि इन्हीं 6 लाल फाइलों में कीव की इस बर्बादी का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा था। जब पुतिन की उन लाल फाइलों का ऑर्डर आसमान में मौत बनकर बरस रहा था, तब जान बचाने के लिए हजारों लोग कीव के गहरे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों, बेसमेंट और पार्किंग में दुबक गए। घंटों तक एयर रेड सायरन बजते रहे और लोग नीचे बैठकर अपनी सलामती की दुआ मांगते रहे। इस हमले से नाटो देश पोलैंड भी ऐसा डरा कि उसने तुरंत अपने F-16 फाइटर जेट्स को आसमान में रवाना कर दिया ताकि कोई रूसी मिसाइल उसकी सीमा में न घुस जाए। अब समझिए कि पुतिन को इतना गुस्सा क्यों आया और लाल फाइलों से क्या आदेश निकला। दरअसल ये पुतिन का सीधा और क्रूर पलटवार है। पिछले कुछ हफ्तों में जेलेंस्की के ड्रोनों ने रूस के अंदर घुसकर उसके तेल डिपो और रिफाइनरियों को निशाना बनाया था, जिससे रूस को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। पुतिन ने जेलेंस्की को साफ सबक दे दिया है कि तुम हमारे तेल को निशाना बनाओगे तो हम तुम्हारी राजधानी को शमशान बना देंगे। यूक्रेन छोटे छोटे ड्रोन से चोट कर रहा था तो रूस ने एक ही बड़े मिसाइल हमले से पूरे कीव को घुटनों पर ला दिया। पुतिन का ये हमला जेलेंस्की के लिए एक बड़ा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव है। यूक्रेन रूस के तेल पर हमला कर आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है और रूस जवाब में शहरों को निशाना बना रहा है। इस जंग में विजेता कोई नहीं है, बस तबाही का एक नया और खौफनाक चैप्टर लिखा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: और इस बीच एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में बारिश के बीच एक बड़ा हादसा हुआ है। ये हादसा साकी नाका के इलाके में हुआ है। यहां एक मैनहोल, खुले मैनहोल में गिरकर एक शख्स की मौत की खबर आ रही है। रेस्क्यू टीम ने मैनहोल से अब उसके शव को बरामद कर लिया है। अब प्रश्न यहां यह कि ये किसकी लापरवाही से इस शख्स की जान गई। और इस तरह की ये ऐसी पहली वारदात नहीं है। 60 वर्ष का ये व्यक्ति था। क्या इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, हम आपको सुनाते हैं।
2: पूर्वी ही सगळे काम करा, 2 वर्षापूर्वी हे जाळी बसवण्याचं जो कॉन्ट्रॅक्ट होतं तर तुम्ही पूर्ण ह्या पाऊस उन्हाळ्यामध्ये काय केलं?
3: गेले 2 महिन्यांच्या राजीनाम्याची मागणी उपमहापौर करतायत, अश्विनी भिडेंनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी।
2: एक मी सांगते, मी इथे कोणाला पाठराखण करायचं काम करत नाहीये, पण भिडे मॅडमने पण याच्या रिव्ह्यू मीटिंग घेतल्या होत्या। भिडे मॅडमने सुद्धा त्यांच्या दालनामध्ये असतील, वारंवार व्हिजिट मध्ये असतील। बघा, इथे पाठीशी घालण्याचं कोणालाच काम नाहीये, परंतु ज्यांनी या ठिकाणी मिस्टेक केलेली आहे त्या ठिकाणी त्यांना निलंबित करायचं काम या ठिकाणी केलंय। वॉर्ड ऑफिसरला आपण निलंबित केलंय। हिरलेकर हे या ठिकाणचे सहाय्यक आयुक्त आहेत, त्यांना आपण निलंबित करण्याचं काम केलेलं आहे। भिडे मॅडम असतील, अतिरेक घेऊन आलेली आहे। तुमच्या माहितीसाठी सांगते, ऑन द स्पॉट आम्ही निलंबित केलेले या ठिकाणी। सांगते तुम्हाला, या ठिकाणी धनाजी हिरलेकर सहाय्यक आयुक्त एल विभाग, दीपक चौगले दुय्यम अभियंता परिरक्षण एल विभाग अभिजीत चौगले
1: कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर को तलाशा जा रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मुंबई में खबर ये है कि रिपेयर का एक काम चल रहा था, ड्रेनेज वहां पर नाली बनाने का, पानी के निकासी का एक काम चल रहा था। जब रिपेयर का काम चल रहा था उस समय ये मैनहोल खुला रह गया और ये खैरनारी रोड पर ये हादसा हुआ है जिसमें एक 60 वर्ष के व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी और एक वार्ड अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
5: You hear it once and remember everything. Too sexy for your party. Too sexy for your party. One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, rule the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
6: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
7: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
8: पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं, एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

0: चढ़ावा चोरी पर अखिलेश ने फिर की चढ़ाई, कहा बीजेपी को न चंदा मिलेगा न वोट। कांग्रेस ने भी पीएम को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जांच कराने की मांग। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी, एआई रक्षा क्षेत्र में करार। पीएम मोदी ने बताया विकास यात्रा का अहम भागीदार, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। बेंगलुरु में इसरो हेडक्वार्टर में बम की धमकी, ईमेल मिलने के बाद तलाशी में अब तक नहीं मिली कोई संदिग्ध चीज, लोगों को निकाला गया बाहर। मुंबई के साकेनाका में सिस्टम की लापरवाही, खुले मैनहोल में गिरकर असलम शेख नाम के शख्स की मौत, मौके पर पहुंची मेयर। अमेरिका के बूस्टर शहर में आग से 3 गुजराती लोगों की मौत, हादसे में मां पिता और बेटी ने गंवाई जान, मूल रूप से नाडियात का रहने वाला था परिवार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली में मिशन 362 को लेकर देश में चल रहे स्पेशल ऑपरेशंस पर है, और इस स्पेशल ऑपरेशन का हाल ऐसा है कि बंगाल में टीएमसी छटपटा रही है, असली टीएमसी पर अंडे पड़ रहे हैं। बागी टीएमसी दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने पेश होकर नाम निशान झंडा पहचान से लेकर खजाने तक पर दावा कर रही है। टीएमसी के बागी गुट के 10 नेता आज चुनाव आयोग के सामने आए थे और उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी में नया अध्यक्ष, नए उपाध्यक्ष, नए महासचिव बन चुके हैं, और वही बताने के लिए वो उनके दरवाजे पर आए हैं। उधर कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता से पार्टी के खाते से हो रहे खर्च का ब्यौरा मांग लिया है। मतलब ये कि दिल्ली में देश के लिए जरूरी बिल पास कराने के लिए केंद्र का जो मिशन 2/3 शुरू हुआ है उसकी वानगी बंगाल से महाराष्ट्र तक दिख रही है। महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी पहले ही टूट चुकी है, फिर टूटी हुई पार्टी दोबारा टूटी हुई है, और इसी तरह शरद पवार की एनसीपी पहले टूटी है और अब टूटी एनसीपी में भी दोबारा टूट की चर्चा हो रही है। पिछले महीने खास करके आठ में से पांच सांसदों की टूट की जो अफवाह उड़ी थी वो दिल्ली से मजबूत होकर अब लौटी है। दिल्ली में बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि मिशन 362 तो अब जारी है और अब उसका टारगेट शरद पवार की पार्टी पर लॉक हो चुका है। बस वक्त, शर्त और मौके की तलाश है। इसी बीच सुनेत्रा पवार की पार्टी के धर्मराव बाबा अतराम जैसे नेता खुले ऑफर वाले ऑपरेशन तुतारी की चर्चा कर रहे हैं। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या मिशन 362 से पहले देश में किसी भी छोटे दल की तकदीर महफूज नहीं है। चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं।
1: सियासत में बहुमत का मिशन इम्पॉसिबल कुछ ऐसा चल रहा है कि पूरब में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक सब कुछ हिल चुका है। बंगाल की तृणमूल कांग्रेस में टूट के बाद महाराष्ट्र में दरकते दलों की हालत देख अब शरद पवार की पार्टी सहमी हुई। पहले बंगाल की बात करें तो बंगाल में रस्सा कशी चल रही है कि असली टीएमसी कौन। इसी का दावा करने के लिए टीएमसी बागी गुट के 10 नेता दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने पेश होते हैं, टीएमसी के नाम निशान पहचान पर दावा करते हैं।
2: तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस है, नाम और निशान तो हमारा ही है।
3: ग्रुप राय के सिलेक्ट करा हुए थे एस चेयरपर्सन, इलेक्ट करा हुए थे एस चेयरपर्सन थ्रू द मीटिंग इन विच द एनसीडब्ल्यू गॉट फॉर्म।
1: दरअसल 22 जून को टीएमसी के बागी गुट ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली, अरूप राय को पार्टी का अध्यक्ष बना लिया, ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहब, विप्लव मित्रा को महासचिव, फिरहाद हाकिम, अरूप विश्वास, रतिन घोष, सबीना याकमीन उपाध्यक्ष बन गए। कुल 30 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन गई। इसी की जानकारी चुनाव आयोग को देकर दल पर अपना दावा करने ये गुट आया। उधर पुरानी वाली टीएमसी की नेता कहते हैं कि ये गुट फर्जी और मुलाकात ही गैर कानूनी।
4: और ये कौन है, ये अधिकृत प्रतिनिधि तो है नहीं। जैसे मैंने कहा ये टूटफूटिया झुंड है, ये अधिकृत प्रतिनिधि नहीं है, ये हमारे प्रतिनिधि तो है ही नहीं। तो ये कहां से आ गए हैं और कहां से इन्होंने मुलाकात की, कहां से अपॉइंटमेंट मिला, कहां से ये आ गए हैं और मुलाकात कर रहे हैं इनके साथ। तो ये जो मुलाकात है चुनाव आयोग और इस टूटफूटिया झुंड के बीच में,
5: तो ये खुद को मजाक के पत्र बना रहे हैं, हास्यास्पद कर रहे हैं। और देखिए दूसरी चीज, चूहे को अगर हम चाहे शेर बनाएं और जितने भी हवा डाले शेर तो कभी नहीं बनते।
1: कांग्रेस भले टीएमसी के बागी गुट को चूहा बताए लेकिन बंगाल में इन दिनों ममता समर्थक नेताओं का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है, और इसकी तस्वीर तब दिखती है जब दफ्तर में बंद टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई थी। नीचे दर्जनों की भीड़ अंडे और सड़ी सब्जियां फेंक रही थी, पुलिस चुपचाप खड़ी थी, महुआ लगातार हमले के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही थी।
6: कांग्रेस के नेताओं पे हमले भी हो रहे हैं वहां पर, तो क्या वजह है इसकी?
7: जो लोग चोर है, डकैत है, माफिया है, लोगों का गुस्सा है उन लोगों के ऊपर। हमारा ये 65 MLAs में ऐसा MLA है, ट्रेन में आते जाते हैं, किधर भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है।
8: तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है। तो तृणमूल को इसको सलटाना चाहिए।
1: बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर महाराष्ट्र की सियासत में शक सुबह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब से उद्धव की पार्टी के सांसद थोक भाव में शिंदे की पार्टी से जा मिले, तब से शरद पवार की पार्टी को लेकर अफवाहें उड़ाई जाने लगी। कभी संजय राउत कांग्रेस में महाविलय का आइडिया दे देते हैं तो वेडंतीवार कह देते हैं कि हाँ दिल्ली में बात चल रही है, तो कभी ऑपरेशन तुतरी का दावा करते हुए एनसीपी के धर्मराव अतराम पवार के 8 में से 5 सांसदों को अपनी एनसीपी में विलय की प्लानिंग वाली बात कह देते हैं, और कभी दोनों एनसीपी के ही संपूर्ण विलय का शगुफा सामने आ जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि ना तो पार्टी कांग्रेस में मिलेगी ना ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने में लगी एनडीए का ध्यान एनसीपी शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है, और ये संभावना जताई जाने लगी क्योंकि कांग्रेस एनसीपी विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी के सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते, न ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है, क्योंकि टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं गठबंधन को भी है। ऊपर से पवार उद्धव कांग्रेस वाली अघाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों की गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार जैसे बड़े नेता नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जता दी थी, लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो यह है कि एक दिन पहले ही सचिन अहीर ने उद्धव का साथ छोड़कर डिप्टी चेयरमैन का पद चुन लिया। वैसे फिलहाल शरद पवार की पार्टी में 8 सांसद और 10 विधायक हैं। 2/3 टूट के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की जरूरत होगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो जब तक 362 पूरा नहीं होता तब तक छोटे दलों की मुश्किल बढ़ती जाएगी, क्योंकि छोटे दलों के जो सांसद हैं वो किसी ना किसी पार्टी में मर्ज करने की होड़ एक तरीके से लगी हुई। और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की बारी है, ये भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ शरद पवार पर एक प्रेशर बढ़ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी में मर्ज हो जाना चाहिए ताकि उनके सांसद ना टूट सके। चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अभय दुबे कांग्रेस की तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी की तरफ से। एडवोकेट सुशीबेन शाह शिवसेना की प्रवक्ता इसमें शामिल होंगी। और क्लाइव कैस्ट्रो एनसीपी एसपी के समाज शरद पवार पार्टी के प्रवक्ता इसमें जुड़ रहे हैं। कोशिश रहेगी तृणमूल कांग्रेस से भी कोई जुड़ जाए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कोई भी धड़ा आज की स्थिति में डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। 3 सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी में टूट की अफवाह कौन उड़ा रहा है, क्योंकि इस बार खबर अब दिल्ली से आ रही है। इससे पहले मुंबई से ये बातें कही जा रही थी, अब दिल्ली से ये खबर आ रही है। दूसरा सवाल, क्या संसद के मानसून सत्र से पहले महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? एक बड़ा चीज तो हो ही चुका है, अब दूसरे बड़ी चीज होने की कुछ उम्मीद है। तीसरा सवाल, क्या बंगाल से महाराष्ट्र तक छोटे दलों में टूट मिशन 362 का असर है, क्योंकि एक महीने के भीतर तीसरी पार्टी इस तरीके से टूटना यह किसका असर है, यह भी सवाल यहां पर उठेगा। शहजाद, आप ही इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा कि आखिरकार अब यह मिशन 362 कहां तक पहुंचा है और कहां तक चलेगा।
9: साहिल जी, क्योंकि बंगाल से लेकर महाराष्ट्र पूरे देश को ही आप कवर कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा डिटर लेकर पंजाब पहुंचता हूं, क्योंकि साहिल जी ने आज एक ट्वीट किया है, आपने एक ट्वीट किया है, आपने कोट ट्वीट किया मनीष तिवारी को। मनीष तिवारी ने लिखा है, बड़ा अवगुण उसमें जिसे कोई हुनर आए। और फिर उन्होंने लिखा कि आई हैव बीन केप्ट इन द कोल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी इन पंजाब। फिर आपने भी वर्णन किया कि 7 में से 6 सांसदों को जिम्मेदारी दे दी, 1 सांसद चंडीगढ़ के जिनको जिम्मेदारी नहीं दी। अब साहिल जी बताइए कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऑपरेशन है। चलिए दूसरी बात पे आते, शशि थरूर को किस प्रकार से अपमानित किया, उसमें भी मेरा कौन सा ऑपरेशन है। चलिए जो तेलंगाना कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने गठजोड़ करके अभय जी को राज्यसभा सीट नहीं दी, तो अभय जी ने भी मिलके मीनाक्षी नटराजन जी के साथ जो खेल कर दिया उसमें मेरा क्या दोष है भाई। अच्छा, उसके बाद जेएमएम ने जो कांड कर दिया कांग्रेस पार्टी के साथ और उनके प्रणव झा को हरा दिया, उसमें मेरा क्या दोष है भाई। और देखिए साहिल जी, आपके शो में आने का कम अवसर मिलता है, पर मैं डेली आपका शो 5 बजे देखता हूं। कितनी ना जाने आपने डिबेट की इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद। समाजवादी पार्टी ने जो है कांग्रेस को ताना कसा, फिर डीएमके ने कांग्रेस को ताना कसा, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ताना कसा, आरजेडी ने कांग्रेस को ताना कसा। अब इसमें बताइए कि अगर कांग्रेस से लोग खुश नहीं है और कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा खुलासा कर रहा हूं आज 5 बजे, ऑपरेशन टाइगर का तो पता नहीं, ऑपरेशन कमल का तो पता नहीं, ऑपरेशन विलय चल रहा है। आपको पता है ऑपरेशन विलय क्या है? ऑपरेशन विलय ऐसा है कि एक डर दिखाया जाता है कि भाजपा आएगी आपके सांसद ले जाएगी तो पहले हमारे पास आ जाओ। नाना पटोले ने 12 जून को धमकी दी शरद पवार जी को, शरद पवार जी हमारे साथ विलय कर लो वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर संजय राउत ने धमकी दी कि छोटी छोटी पार्टियां जो है सब विलय कर जाओ कांग्रेस में वरना अच्छा नहीं होगा। फिर अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी को बोला ये जो 60 विधायक अलग हुए ना हमारे साथ आ जाओ। तो दरअसल ऑपरेशन टाइगर नहीं साहिल, ऑपरेशन विलय चल रहा है जिसमें कि कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टीज को समाप्त कर रही है। और आखिरी एक ट्वीट कोट करके बताता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता आईपी सिंह ने बोला है संसद चल रही है नेता प्रतिपक्ष तो गायब है पर कांग्रेस जो है, मुलायम सिंह जी सही कहते थे, ये छोटी पार्टियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आईपी सिंह का ट्वीट है, ये चाहती है कि हम उनके हिसाब से चले। अब मुझे बताइए कि जब कांग्रेस ऑपरेशन विलय पे निकली है तो मुझे क्यों दोष देते हो? मनीष तिवारी का मैंने आपको बताया उसमें मेरा क्या रोल है? आप बताइए कि केरलम कांग्रेस में थरूर से उसमें मेरा क्या रोल है?
0: मैं आपने चूंकि आपने चूंकि एनसीपी एसपी का जिक्र किया इसके लिए सीधा मैं क्लाइड के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप बहुत बढ़िया कहानी बताते हैं शहजाद, मानना पड़ेगा। और आपने जिस तरीके से पूरी कहानी बोई है ना, मैं भी दो मिनट के लिए रुक गया कि आप ऐसे ही बोलते रहे, लेकिन चूंकि मुझे सवाल पूछना है इसके लिए मुझे शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आपने मेरे सवाल का बिल्कुल ही जवाब नहीं दिया, कहानी में ऐसे आपने उसमें मुझे इन्वॉल्व कर लिया कि आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। तो एक बार फिर पूछता हूं, उसमें जवाब दे दीजिएगा, ये ऑपरेशन 362 ये कहां तक पहुंचा हुआ है? ये जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद क्लाइंट के पास चलते हैं तुरंत एकदम।
9: ऐसा है साहिल जी, हमारा जो एनडीए का कुनबा है वो एक है तो अलग अलग पार्टियों का कुनबा, पर हम परिवार की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसीलिए जब स्वाभाविक रूप से परिवार की तरह रहेंगे, स्टेट के लिए मिशन विशन के साथ काम करेंगे तो जो है कुनबा बढ़ता जाएगा, नेचुरली बढ़ेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, फॉर इंस्टेंस आप देखिए कि
0: सब लोग मिलजुल कर रहे हैं उस बार। ऑपरेशन 362 में पार्टनर्स थे, सिर्फ बीजेपी का

0: गुट, फिर कोई शिवसेना उद्धव गुट, तो मामला ही समाप्त हो गया। अब एक ही शिवसेना है और उसकी प्रतिनिधि सुजी बहन है, ओनली वन शिवसेना, बाकी कुछ नहीं। बाकी
1: सब नकली सेना।
0: अभय दुबे, हमारे आनंद दुबे जो है वो तो एक केवल प्रोफेसर की तरह बैठे हैं, वो तो केवल एक पोएट की तरह है।
1: ठीक है, चलिए क्लाइड क्या बोल रहे हैं सुनिए। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस दरअसल आपको निगलना चाहती है। अभय दुबे जी, आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले क्लाइड का आज पहला हक है क्योंकि सीधा प्रहार पर हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने अभी शहजाद पूनावाला ने खबर बताई है कि नाना पटोले ने धमकी दी सीधे सीधे कि हम में विलय हो जाइए वरना आपको भारतीय जनता पार्टी खा डालेगी।
2: साहिल, काफी दिनों के बाद है ना शहजाद के साथ नोकझोंक करने का मौका मिला। शहजाद और मैं काफी अच्छे दोस्त है, लेकिन बहुत समय के बाद नोकझोंक करने का मौका मिला और उसने कर दिया, हंसा दिया मुझे। देखिए, इंग्लिश में कहावत है फ्लाई ऑन द वॉल, और दूसरा भी कुछ काफी सारी कहावत है, कहीं मस्किटोज फ्लाइंग इन द एयर। अभी कहां कौन सा मस्किटो और कौन सा फ्लाई बनकर घूम रहे पता नहीं। तो यू नो अभी इनको पता होगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा कुछ नहीं है। इट मेक्स फॉर गुड टीआरपी, यू नो बाप अगर इस तरह की बातें करते तो काफी लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, टीवी पे आते हैं। लेकिन ठीक है, उनको हक है, उनको जो बोलना है, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन आवर कंट्री, तो करने दीजिए, बोलने दीजिए। लेकिन देखिए, सच बात ऐसा है कि जहां तक मेरा समझ है, जैसा मुझे फ्रीडम आवाज करने का, ये जो चीज जो है ना वो बीजेपी की एक अंतर्गत जो बोलते ना विभाजन है। देयर आर टू टीम्स इन द भारतीय जनता पार्टी। एक अपने आप को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है कि अगर मैं फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बनूं तो मेरे रास्ते में कोई भी लोग आने नहीं चाहिए। तो अपने देश में जहां जहां राज्य है, जहां के मुख्यमंत्री हो या कोई नेता हो भारतीय जनता पार्टी का, जो एक ऐसा आसार दिखा रहा है कि आगे चलकर ये प्रधानमंत्री बनेगा, तो उसकी जो शक्ति है, ताकत है, वो कम करने का ये काम चल रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, वहां पर जो आगे नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके गुट में कोई नहीं है, उनके साथ वाले गुट में सब जाकर जमा हो रहे हैं। तो देखिए, ये इनका आपस का है, चलने दीजिए। जैसा मैंने कहा, शहजाद कहेंगे अच्छा टीआरपी है, मैं कुछ बात कहूं अच्छी टीआरपी, आप कुछ बात कहें अच्छी टीआरपी। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी और मेरी समझ है, कोई भी बात नहीं हुई है, कोई विलय ये वो कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, करने दीजिए, काफी सालों से बात चल रही है, चलने दीजिए, अच्छा लगता है।
1: नहीं, लेकिन क्लाइड आपको डर नहीं है क्या? यह ऑपरेशन 362 तो आपने भी सुना होगा, देखिए कैसे शिवसेना यूपीटी टूट गई, 6 लोग वहां पर चले गए, आपके भी 8 में से आपके तो 5 ही तोड़ने पड़ेंगे।
2: डरने का कोई सवाल,
1: 8 में से 5 तोड़ने पड़ेंगे।
2: साहिल,
1: थर्ड ऑपरेशन करने आसान हो जाएगा आप पे।
2: नहीं, ऑपरेशन करने दीजिए, सर्जरी करने दीजिए, जो भी है फर्स्ट एड बैंडेड जो करना है करने दीजिए, उसमें डर की क्या बात है कि काफी सालों से कर रहे, करने दीजिए ना। लोग जनता जो है वो देख रही है, उनको पता चलेगा। मैं फिर से कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी में किसी को अपना फ्यूचर बनाने का ये पूरा ऑपरेशन, सेव माय फ्यूचर फॉर माय सीट एज द प्राइम मिनिस्टर।
1: ठीक है, मैं अभय दुबे जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक कांग्रेस के नेता मुझे कह रहे थे कि उन्होंने आपके पार्टी के एक बड़े नेता को, ये मैं खबर बता रहा हूं दरअसल, अब ये सूत्रों की खबर है, आप विश्वास करें नहीं करें, लेकिन किसी ने आपके पार्टी में सुझाव दिया है कि भाई जल्दी से मर्ज हो जाइए, कांग्रेस के भीतर नहीं होंगे तो आपके कुछ लोग टूट के यहां चले जाएंगे, टूट के वहां चले जाएंगे, ये भी बातें चल रही है कहीं ना कहीं। अभय दुबे जी सही है क्या, ये आपका एडवाइस होगा एनसीपी एसपी को और जो शहजाद कह रहे हैं?
3: साहिल जी, 2-3 बातें मैं स्पष्ट रूप से रखूंगा। पहले तो मेरा विचार ये था, मेरा दल का विचार ये था कि क्षेत्रीय दल प्रजातंत्र की जांच चौकियां हैं, प्रजातंत्र पल्लवित पुष्पित जब होता है जब क्षेत्रीय दल होते हैं। ये तांडव जो देश में हो रहा है, आपने वेस्ट बंगाल के दृश्य जो बताए हैं ना, ये मोदी के गुंडे और अडानी के अंडे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्या ये जो सांसद और विधायक टूट कर जा रहे हैं, ये रामजीत की चंदा चोरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे प्रभावित होकर जा रहे हैं? क्या नीट जैसे स्कैम से बच्चों का भविष्य रोंदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, उससे प्रभावित हो रहे हैं? क्या पेट्रोल डीजल के बेताशा दामों की वृद्धि, क्या दाल तेल के दामों की वृद्धि अर्थात महंगाई और बेरोजगारी की भीषणतम मार से प्रभावित हो रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कैम किया उससे प्रभावित हो रहे हैं? किससे हो रहे हैं? क्या ये संविधान पर जो हमला हो रहा है, डिलिमिटेशन के कानून, जिसको देश के नागरिक चाहते थे कि गिरा दिया जाए और वो गिराया गया, उसके बहाली के लिए फिर से मोदी जी पीछे के दरवाजे से कोशिश कर रहे हैं? आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्षेत्रीय दलों को क्या कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। देखिए क्या

0: है।
1: अभी आप क्या सलाह देंगे? पूछा
0: साथी ने ये कहा कि अब दुवी, मैं वही कह रहा हूं, सुनिए ना, बहुत संवैधानिक बात कर रहा हूं मैं। अभी शहजाद पूनावाला जी ने कहा कि शिंदे सेना उद्धव सेना कोई अंतर नहीं रह गया। नहीं साहब, इस देश की सर्वोच्च अदालत में वो निर्णय अभी भी लंबित है। उस देश की सर्वोच्च अदालत ने वो निर्णय नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अभी देसाई के केस का सुप्रीम कोर्ट की दो लाइनें पढ़कर देश को सुनाता हूं, बहुत महत्वपूर्ण। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रिटायर हुए, उन्होंने ये निर्णय दिया, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी और विधानमंडल दल, लेजिस्लेटर पार्टी एक दूसरे के पर्याय नहीं माने जा सकते। तो जो ये शिंदे सेना ने निर्णय लिया था कि चीफ व्हिप का निर्णय पॉलिटिकल पार्टी ने, लेजिस्लेटिव पार्टी ने कर लिया, वो लेजिस्लेटिव पार्टी को अधिकार नहीं था, वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार था। ये जो सीजेपी, ये जो एक एनसीपीआई नाम की एक कोई, जिसका एक सांसद विधायक नहीं है, उसमें टीएमसी के लोग मर्ज करने की बात क्यों कर रहे हैं जानते हैं? क्योंकि फोर्थ शेड्यूल में ये तय कर दिया
1: पॉलिटिकल।
0: सुनिए एक मिनट, सुनिए,
1: देखा नहीं आज क्या हुआ? नहीं नहीं, अरे अरे, अरे वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में दसों बार पढ़ चुका हूँ।
0: नहीं निकले, अरे सुन लीजिए, जोशी जी नहीं निकले।
1: मैं आपको क्या कह रहा हूँ सुनिए, अरे अभय दुबे जी सुन लीजिए, मैं कारण बताता हूँ आपको, आप सुन तो लीजिए, कारण बताता हूँ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी बात तो सुन लीजिएगा। मैं कारण ये बता रहा हूँ कि आज आपने देखा नहीं क्या हो गया, ऋतव्रत बैनर्जी आज इलेक्शन कमीशन के सामने गए और कहा कि देखिए हमने तो अध्यक्ष सब बदल दिए, अब ममता बनर्जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष अरूप रॉय है कोई, और वो सारे लोग जो है वो उपाध्यक्ष बन चुके हैं, बाकी सारे लोग बन चुके हैं इधर उधर के, जनरल सेक्रेटरी और ये सारे, और उन्होंने कहा है कि अब असली टीएमसी तो हम ही है, और वहां पर जो असली टीएमसी नहीं है उन पर अंडे बरसाए जा रहे हैं। तो अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट लेके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट ना मान रहा है, इलेक्शन कमीशन मान रहा है। किसे दिखाएंगे आप वर्डिक्ट?
0: नहीं नहीं,
1: किसे दिखाएंगे आप?
0: यही कह रहा हूं साहिल जोशी जी, आप बहुत अच्छा, बस मैं यही उम्मीद करता था, आप सच्चे पत्रकार हैं। देश के नागरिकों सुनो, एक मूर्धन्य पत्रकार क्या कह रहे हैं, किसके पास ये प्रजातंत्र गुहार लेके जाए बाबा साहब अंबेडकर का? उस चुनाव आयोग के पास वो ज्ञानेश गुप्ता जो जनादेश को कागजों पर बदल देता है, जो मान्यता समाप्त करना और मान्यता प्रदान करने का काम कर देता है अवैधानिक तरीके से, जबकि सर्वोच्च अदालत ने अभी नहीं तय किया। देश के लोगों, जो महाराष्ट्र का निर्णय था वो पढ़िएगा, सर्वोच्च अदालत ने कहा कि गवर्नर ने गलत तरीके से ये कहा कि विधानसभा में,
1: लेकिन आपने भी मेन सवाल का जवाब नहीं दिया,
0: गलत तरीके से
1: विलय वाली बात,
0: एक मिनट,
1: विलय वाली बात। अभय दुबे जी जल्दी से, सुशीलबेन शाह आपको रिबटल देना चाहती है क्योंकि आप सीधे उनके पार्टी पर चोट कर रहे हैं,
0: जल्दी से,
1: लेकिन विलय की बात, क्या विलय का कोई मसौदा गया हुआ है?
0: विलय
1: NCP-SP के पास विलय का कोई मसौदा
0: अभी तक? विलय, सुनिए ना साहिल जी, क्यों बात उठी विलय की जानते हैं आप? क्योंकि विधायक और सांसद खरीद रहे थे, अब उस पर तलवार लटकी हुई है, क्योंकि ये जान गए कि पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर होना है। तो मैं आग्रह करता हूं कि जो राजनीतिक दलों को ये चिंता है कि लूट लिए जाएंगे मोदी जी द्वारा, वो विलय करना चाहते हैं, तो हमारे हृदय के द्वार खुले हुए हैं, क्योंकि हम प्रजातंत्र को बचाना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन प्रजातंत्र को बचाना चाहते
1: हैं।
0: ऐसा ना हो कि कल विधानसभा और लोकसभा अध्यक्ष
1: NCPI आपसे बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने विलय के द्वार खुले हुए हैं, आपसे बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने विलय के द्वार खोल के रखे हुए हैं। आनंद दुबे, आपके सामने भी विलय का द्वार खुला होगा, लेकिन पहले शहजाद, उसके बाद सुशीलबेन शाह भी जवाब देंगे। शहजाद
2: देखिए, ऐसा है साहिल जी, इसलिए उनको ये स्वीकारना पड़ा क्योंकि नाना पटोले का तो ऑन रिकॉर्ड बयान था, और उसी समय पर NCP शरद पवार ने 14 जून को इसको खारिज करते हुए कहा था कि ऐसा सोचना भी मत कि हम विलय कर देंगे, क्योंकि उनका मेन रीजन तो सोनिया गांधी का विदेशी मूल था, और आज भी सोनिया गांधी कोई वो विषय जो है वो हटा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि क्लाइंट क्रास्टो अपने कम से कम
1: से भी हम आगे बढ़ चुके हैं,
2: समझौता नहीं करेंगे, परंतु
1: साहिल जी 10 सेकंड पर वो 1999 उससे आगे चले,
2: साहिल जी मेरी बात हो जाने दीजिए, 10 सेकंड,
1: 27
2: साहिल जी 10 सेकंड मेरी बात हो जाने दीजिए, साहिल जी 10 सेकंड मेरी बात हो जाने दीजिए, और मैंने अभय के बीच में नहीं बोला, मैंने
0: अभय जी
2: आपके बीच में मैंने एक भी बात नहीं बोला,
0: चोटी का जोर लगा रहे हैं
2: साहिल जी, ऐसे नहीं होगा साहिल जी, ऐसे नहीं होगा,
1: साहिल
2: जी अभय जी से कहिए ऐसे नहीं होगा,
1: मत करिए,
2: ऐसे डिबेट नहीं होगा
1: अभय जी, प्लीज ऐसे मत,
2: ऐसे डिबेट नहीं होती अभय जी, प्लीज आप मुझसे बड़े भी है
1: और मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं,
2: प्लीज अभय जी,
1: ओके
2: प्लीज
1: ओके,
2: हाँ 10-15 सेकंड, केवल 10-15 सेकंड साहिल जी, शेत क्षेत्रीय दलों का सम्मान तो कांग्रेस ने ऐसा किया कि जब भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन में रही और उनका चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बना तो वो सरकार कभी चलने नहीं दी। ये डीएमके का सम्मान करते हुए 5 MLA भाग गए ना टीवीके के साथ, ये एडीएमके का सम्मान करते हुए 30 MLA तोड़े ना वहां से अभी टीवीके के सपोर्ट में, अभी ये 6 BSP MLA का सम्मान करते हुए बीएसपी को तोड़ के राजस्थान की सरकार में विलय कराया था ना, और ये एमआईएम का सम्मान करते हुए 4 विधायक तोड़ के आरजेडी में बनवाए थे ना, ये सम्मान ही हो रहा था ना उनका क्षेत्रीय दलों का। मैं पूछना चाहता हूं अभय दुबे से, तो बोल दीजिए कि क्षेत्रीय दल का नेता इंडिया अलायंस का नेता होगा, बोलिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी होंगे, बोलिए ना सम्मान करते हो ना, चलिए बोलिए अखिलेश यादव को बनाते इंडिया अलायंस का नेता, एक बार बोल दीजिए,
1: आप भी बोल दीजिएगा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे।
0: अकाली दल को जो
1: एक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट अरे एक मिनट अभय दुबे जी अरे एक मिनट अभय दुबे जी हाँ अरे एक मिनट अभय दुबे जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट अभय दुबे जी सुशीलबेन शाह के मन में जो बात है वो मैं आपके सामने रखता हूँ शहजाद, आप भी बोल दीजिएगा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे,
2: बोलिए ना साहब,
1: देखिए देखिए खुश हो गए सुशीलबेन शाह, खुश हो गए, आप भी बोल दीजिएगा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री,
2: जवाब दो, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, ऐसा है कि हमको बोलने की आवश्यकता नहीं, एकनाथ जी स्मॉलर पार्टी थे तब भी हमारा दिल इतना बड़ा था कि बना दिया, तो हमने तो करके दिखाया, अब बताएं, हमने तो नीतीश जी को भी बना दिया कि छोटी पार्टी थी हमारी बड़ी पार्टी बनाया, अब बताइए अखिलेश जी को कब बनाए, अब भाई दुबे बताइए अखिलेश जी को कब बनाएंगे नेता,
1: ठीक है चलिए एक मिनट पहले सबसे पहले तो पूछ लेते हैं सुशीलबेन एक मिनट क्लाइंट ये दरवाजा खोल रहे हैं, आपने सुना कांग्रेस पार्टी को, तो खिड़की से अंदर जाने के बेहतर है कि दरवाजा खुला हुआ है चले जाइएगा, मंजूर है क्या दरवाजे से अंदर जाना, क्योंकि वरना आपके सांसद खिड़की से कूद जाएंगे।
0: साहिल गलत मत बोलिए,
3: अबे अवन जी मैं बोलता जवाब देता हूं साहिल, अंदर जाना बाहर आने का सवाल नहीं आता, हम इंडिया अलायंस में साथ में एक ही सोफा पर बैठकर बात कर रहे हैं, चाय पी रहे, क्या
4: मतलब है इंडिया अलायंस में कौन जाने,
3: नहीं नहीं और मैं दूसरी बात बोलता हूँ, नहीं नहीं दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि सुशीलबेन को भी एमएलसी बना दीजिए ना, इतने टाइम से बेचारे मेहनत कर रहे हैं, अरे उनको भी बना दीजिए, मेरे मेरे मेरे मतलब मैं उनको 40 साल से जानता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ उनको कभी एमएलसी बना दे, मैं भी चाहता हूँ शहजाद को बना दे, अरे बन जाओ ना, अरे बना दीजिए उनको,
4: चलिए आपने माना था अच्छी कार्यकर्ता बन सकती है,
3: वो तो आपको अरे 40 साल से आपको जानता हूँ ना, सवाल ही नहीं आता, मैं आपको 40 साल से जानता हूँ।
4: इन द लाइटर वे सभी को नमस्कार और गुड इवनिंग साहिल जी, ऑलवेज अ प्लेजर, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी पार्टी को ये क्यों नहीं जा रहे एनसीपी में, क्यों एनसीपी कांग्रेस में नहीं जा रही है और वैसे वर्षा, क्योंकि एक विश्वस्त नेतृत्व किसी कार्यकर्ता को चाहिए, कि एक विश्वस्त स्ट्रांग लीडरशिप, आपके कार्यकर्ता के पीछे आप जम के खड़े हैं, पूरा ताकत देते हैं, पूरी विश्वास देते हैं, अभी कभी राहुल गांधी होते हैं कोटा, कभी होते हैं थाईलैंड, कभी लापता हो जाता है, नो वन नोज वेयर इज ही, हमारे नेतृत्व देखिए, आज कोई भी पार्टी कोई मैं खुद खानदेश का दौरा करने के लिए गई थी, हर एक आदमी तत्पर है एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जुड़ने के लिए, वो जानते हैं लोगों के लिए खड़े रहते, लोगों के लिए खड़े रहते, कार्यकर्ता के लिए खड़े रहते, क्या ये आप सिद्ध कर सकते हैं कोई भी ऐसी पार्टी महाराष्ट्र में, क्लाइड लेट अस एक्सेप्ट दिस, अभी पॉलिटिक्स इज अ 24/7 कमिटमेंट,
3: इट इज तो आप शायद मेरे ख्याल से सिर्फ टीवी पर बैठते हैं, टीवी
4: मैं तो मेरी बात कर रही हूँ, हमारे नेता आज निम्पालकर जी
3: जाते नहीं है,
4: आपकी बात हमने कहा, अरे भाई एमसीपी आपकी बात हमारी बात कर रहे हैं, मैं तो हमारी बात कर रही हूँ, आप भाई आप क्यों इतना डर रहे हैं, मैं आपकी बात नाम एनसीपी का नाम
3: डरने का सवाल है,
4: मैंने तो अरे इतना ही कहा, हमारे नेता लोगों को नेता कैसा चाहिए
3: अच्छी तरह जानते हैं, डरना तो आप लोग सीख गए,
4: मानिए तो माने
3: आप लोग सीख गए, डरना इसलिए तो भाग रहे हो,
4: कमिटमेंट
3: हम इसलिए तो वही
1: चले, ठीक है ओके। अरे ठीक है आनंद दुबे जी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, जरा आनंद दुबे जी को भी पूछना होगा। आनंद दुबे अरे एक मिनट, एक मिनट सुशीबेन क्लाइड, एक मिनट सुशीबेन आप अपनी बात खत्म करिए, उसके बाद आनंद दुबे जी भी इंतजार कर रहे हैं। जरा सुशीबेन आपकी बात खत्म,
4: आनंद दुबे जी का भी इंतजार करना पड़ेगा कुलूप लगाने से पहले। बट बी एज इट, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो निंबालकर जी, आप सोचिए ही गॉट द हाईएस्ट मैंडेट, सेकंड हाईएस्ट मैंडेट इन महाराष्ट्र, ठीक है। एंड क्यों वो आ गए एकनाथ राव जी के साथ, क्योंकि ऐसा आदमी चाहिए। उनकी जिला परिषद नगर पालिका में एक भी सीट क्यों नहीं आई, क्योंकि कोई उतरा ही नहीं कार्यकर्ताओं के लिए।
1: जिला लॉजिक पे हम चर्चा कर चुके हैं सुशीबेन जी, आप मान लीजिए ना। नहीं एक सेकंड, मुझे मैं एक सवाल पूछता हूं, आप भी मान लीजिए ना कि देखिए
4: साहिल भाई नीति का भी प्रश्न है।
1: सुनिए तो, अरे सुशीबेन सुनिए तो भाई, टाइमिंग नाम की भी तो कोई चीज होती है ना राजनीति में। जब चीज होती है तब एक टाइमिंग होती है। अब हम लोग पत्रकार के तौर पर तो टाइमिंग देखेंगे, हम तो ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर टीएमसी के 20 फूटे नहीं, उसके बाद तुरंत आपका ऑपरेशन टाइगर शुरू हुआ, तो हम तो ये कहेंगे ना कि ऑपरेशन 362 चल रहा है। उसमें जिस तरीके से सेतु बनाने में गिलहरी की भूमिका थी, आपकी भी 6 सांसदों की भूमिका आ गई उसमें। शहजाद कह ही रहे थे कि हम तो सब साथ में मिलकर करते हैं, अकेली बीजेपी कुछ नहीं करती है। आप भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं ना उसमें।
4: हाँ देखिए मान लिया, सपोर्ट करते हैं, भूमिका भी निभाते जब भी जरूर पड़े, मैं जानती हूँ।
1: मान लिया शहजाद, उन्होंने
4: खड़े हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी ये 1-2 महीने में नहीं होता है, इट इज अ प्रोसेस। उनको पता ही नहीं चला का 6 महीने से हम लोग बात कर रहे, लोग हमें मिलने आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं। अरे भैया सचिन आहिर का देख लीजिए, अरे चले गए उनको पता ही नहीं, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। इसी ये प्रॉब्लम है, आपको पता ही नहीं
1: कि क्या हो रहा है। आनंद दुबे अब छोटी पार्टी के तौर पर बचे रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना, और इसके लिए क्या ऑपरेशन 362 को आप जिम्मेदार मानेंगे आनंद दुबे जी? या सचमुच में जो सुशीबेन कह रही थी, एक बड़ी दिलचस्प बात मैंने अभी पैनल देखा पूरा, सॉरी मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां उनका इतिहास नहीं निकालना चाहता हूं, जरा एक बार दिखा दीजिएगा 5 चेहरे दिखा दीजिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभय दुबे को छोड़ दीजिएगा, वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेकिन बाकी सारे लोग ओरिजिन कांग्रेस है सभी लोगों का, सुशीबेन शाह, लाइट कैस्ट्रो, आनंद दुबे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एकदम। ये राजनीति है आज की। आनंद दुबे जल्दी से ऑपरेशन 362 ऑपरेशन 362
5: नमस्ते।
1: अरे एक मिनट पहले उनको बोल लेने दीजिएगा, पहले इनको बोल लेने दीजिएगा, उसके बाद आएंगे आनंद दुबे। आनंद दुबे जी,
5: साहिल भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। शहजाद भाई को मेरी कविताओं में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो शुरुआत उसी कविता से करता हूँ। कंधों पर बिठाकर जिनको दरिया पार किया, जिनको हमने खुद से कंधों पर बिठाकर जिनको दरिया पार किया, जिनको हमने खुद से ज्यादा प्यार किया, जब मिजाज मौसम का थोड़ा सा बदला, उसी यार ने आज पीठ पर वार किया। देखिए साहिल भाई, हमें कोई गम नहीं, हमारी पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, हमारे विधायक चुराए जा रहे हैं, खासदार चुराए जा रहे हैं, कोई बात नहीं।
4: आपने क्या किया?
5: एक समय शक्तियां जब व्यक्ति के पास आती हैं, तो रावण के पास बड़ी शक्तियां आई थी। एक तरफ उसकी तूती बोला करती थी, उसके चलने से 10 दिशाएं डोला करती थी, 9 ग्रह उसके गुलाम हुआ करते थे। तो इसका यह मतलब नहीं कि रावण की पूजा की जाती है। पूजा हमेशा चरित्रवान की जाती है, पूजा हमेशा उस व्यक्ति की जाती है जो 14 वर्ष का वनवास काटता है और एक इंसान से मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है। ठीक है, आज हमारी पार्टियों का आप तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमारा कोई रोल नहीं है। पहले आपको याद है रेडियो पर एक कार्यक्रम आया करता था कि आज के गीत की फरमाइश, उसमें कहा जाता था कहानीकार फलाने हैं, म्यूजिशियन फलाने हैं, निर्माता निर्देशक फलाने हैं, वो कौन फलाने हैं हम तो नहीं जान पाए। बीजेपी कहने को तैयार ही नहीं कि वो फलाने हम हैं। अरे भैया पूरा देश जानता है कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। डॉक्टरों को जिम्मेदारी दी गई थी ऑपरेशन करने की, उनसे छीन कर वो ऑपरेशन अब आप करने लगे। आप तो ऐसा ऑपरेशन करते हो कि मुंह सील देते हो, हाथ बांध देते हो, आदमी बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। आपने कहा आनंद दुबे
1: निकलने के बाद पता चलता है कि आपकी किडनी निकाल दी गई,
5: पार्टी नहीं लिखी है,
1: आप एडमिट हो जाते हो किसी बुखार के लिए।
5: हाँ,
1: लेकिन जब आपकी किडनी निकाल ली जाती है तब पता चलता है कि किडनी निकल गई है।
5: पास गया था, अरे इनके पास गए साहिल भाई, इनके पास गया था लीवर का इलाज कराने, ये लोग किडनी निकाल लेते हैं यार, किडनी निकाल लेते हैं यार, कसम
1: से शहजाद
5: मत करो ये काम, मत करो ऐसे भाई, दो की इससे पूरा विपक्ष बीमार हो
2: साहिल, सबसे पहले तो
5: होना वाला,
2: सबसे पहले तो आपने
1: शहजाद किया ठीक है साहिल जी, दुबे जी सुन लेते हैं जी जी, हाँ जी
2: आपने जो ऑब्जर्वेशन किया, हाँ साहिल जी आपने ये ऑब्जर्वेशन किया,
1: तारीफ करिए प्लीज, तारीफ करिए शहजाद प्लीज, इसका तारीफ होना चाहिए,
2: निकले हाँ हाँ सुन तो, अरे सुन तो लो मेरे भाई पूरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि साहिल अगर आप इतना ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा आपको पता चलेगा कि माननीय हेडगेवार जी भी कांग्रेस में थे एक समय पर, माननीय हेडगेवार जी आरएसएस के संस्थापक फाउंडर, वो भी कांग्रेस से निकले, ये बात सही है, पर कांग्रेस से क्यों निकले, टीएमसी भी कांग्रेस से निकली क्यों निकली, एनसीपी शरद पवार भी निकली क्यों निकली, और वो रीजन छोड़कर अब मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूं साहिल जी, अभी हमारे कवि भाई अभय आनंद दुबे जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम की बात की, तो मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में राम जी के बारे में कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, पर वचन बाला साहेब का किसने छोड़ दिया 370 का, हिंदुत्व का वचन किसने छोड़ दिया, किसने छोड़ दिया वचन सावरकर का, पर मैं आखिरी बात पे आना चाहता हूं क्योंकि साहिल आपको जो है ना, एक आपके यहां पे एक और पैनलिस्ट आते हैं, आशुतोष की बात नहीं कर रहा हूं, स्वाति चतुर्वेदी, आप मुझ पे आरोप लगा रहे ना कि मैं शरद पवार जी की पार्टी तोड़ रहा हूं, सुनिए स्वाति जी ने क्या लिखा, और वो भी बड़ी पत्रकार है, आप उनको बुलाते भी है आज तक पे,
1: डज शरद पवार नो
2: विच साइड इज नेगोशिएटिंग विद द स्पिंक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, सुन तो लीजिए स्पिंक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज टॉकिंग टू बोथ कांग्रेस एंड बीजेपी ट्राइंग टू गेट बेस्ट डील फॉर सुप्रिया सुले, तो मुझे बताइए कि जब शरद पवार जी के बारे में यह कहा जा रहा है तो भाई मुझ पे क्यों आरोप लगा रहे, ऑपरेशन तो आनंद जी आपका कोई और कर रहा है गठबंधन में रहकर,
5: साहिल भाई
2: हो सकता है आपको लग रहा है डॉक्टर है,
5: साहिल भाई
2: डॉक्टर नहीं है,
5: साहिल भाई
2: वो हकीम है
1: हकीम है, आनंद दुबे आपने एक शेर सुनाया, मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ,
5: आमतौर पर मेरे
1: एक मिनट आनंद जी एक कविता मैं भी सुना देता हूँ, ये कविता मैंने नहीं सुनाई है, कल देवेंद्र फडणवीस हमारे कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने आपके लिए सुनाई है ठीक है, तो मैं आपको उनकी कविता सुना देता हूँ, आप उस पर जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं, चाहे शहजाद के पास वो कविता नहीं होगी लेकिन मेरे पास है, उन्होंने ये कविता सुनाई थी कि माना कि तेरे जहां में ये नहीं कि प्यार नहीं मिलता, आपके बारे में कहा है, माना के तेरे जहां में ये नहीं कि प्यार नहीं मिलता, वो जब चाहिए तब नहीं मिलता, ये आपके बारे में कविता सुनाई है देवेंद्र फडणवीस ने,
5: ओहो
1: जब चाहिए तब प्यार मिला नहीं
5: भाई,
1: उसके बाद आप बोल रहे हैं कि
5: फडणवीस, सुनिए ना साहिल भाई, चाहे भारतीय जनता पार्टी मचा दे कितना भी प्रलय, हमारा मूड नहीं है हम क्यों करें विलय, ये हो गई पहली बात, दूसरी बात देवेंद्र फडणवीस जी को जितना प्यार चाहिए था उतना प्यार उनको नहीं मिला, तो क्या करोगे, वो प्यार की नदियां कहां से बहाऊं, प्यार की गंगा कहां से ले आऊं, अरे जितना प्यार हमारे पास था हमने तो न्यौछावर कर दिया, लेकिन उस प्यार के साथ आपने क्या किया, दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, भारतीय जनता पार्टी हमें तेरा एतबार ना रहा, तो आपका एतबार नहीं है,
1: हम बेवफा
5: हरगिज़ न थे, लेकिन आप
1: बीजेपी को कह रहे हैं कि कांग्रेस को कह रहे हैं,
5: हम कभी बेवफाई नहीं किए, अरे हम तो भाजपा को कह रहे हैं कि हम बेवफा कभी न थे, लेकिन आप वफा नहीं कर सके,
1: सुशीबेन साहिल ये आपको कह रहे हैं कि बीजेपी को कह रहे हैं,
6: अरे भाई जिसको भी कह रहे भाई, ये तुम्हारी दुख दर्द की भरी कविताएं हैं भाई, ऐसा पॉलिटिक्स नहीं होता है, काम करना पड़ता है, आपको सुन के जो आपके साथ रो रहे हैं ना वो भी चले जाएंगे भैया, लड़ना सीखो, आप मुझे बताएं कौन से मुद्दे पर आपने आंदोलन किया, कौन से मुद्दे पर आप दिल्ली गए, कौन से मुद्दे पर आप सीएम के पास गए भैया, मातृश्री में बैठे बैठे फेसबुक लाइव नहीं होता है, सब ऑफलाइन हो जाएगा, हो गया ठीक है, जाएगा
1: ठीक है, सुशील भाई एक मिनट,
5: बाप की नाव
1: एक मिनट, अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से अभय दुबे कुछ कह रहे हैं,
5: साहिल जी कल तक आप इसी नाव में बैठी थी,
1: ठीक है
7: साहिल जी,
1: शाह और दुबे जी,
7: साहिल जी
1: ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि नेशनल टेलीविजन पे सालों बाद शिवसेना को आनंद दुबे और सुशील भाई शाह रिप्रेजेंट कर रही है, चलिए आनंद दुबे सॉरी अभय दुबे जी
7: साहिल जी,
6: वेलकम करती है
7: साहिल जी, साहिल जी देखिए
0: मैं सम्मान के साथ कहता हूं कि अंग्रेजों की हथकड़ियां और बेड़ियों से डरे तो हेडगेवार जी कांग्रेस से संघ में गए, और ईडीआई और सीबीआई से डरे तो ये जनसंघ की भाजपा में गए, जो भी डर के जा रहे हैं। मैं आज बहस किस विषय पर है? देश के लोगों संविधान पर प्रहार कर रही भारतीय जनता पार्टी, जो काम इंदिरा जी ने कहा कि इस डिलिमिटेशन में राज्यों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जो राज्य प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के साथ अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण कर रहे हैं, दक्षिण के राज्य उनके साथ अन्याय ना हो, तो सुनिए तो सही। देखिए विषय तो पूरा बोल लेने दीजिए साहिल जी, ये मुद्दा बहुत गंभीर है, आक्रमण कहाँ हो रहा है समझिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने तय किया 2001 में, तय किया कि 26 तक हम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल तक आ जाए। मोदी जी चाहते हैं दक्षिण राज्यों की सीटें कम कर दें, उत्तर भारत की बढ़ा दें, क्योंकि अब वो जान गए कि देश की जनता इनको हराना चाहती है। तो बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान पर हमला करने वाले लोग कौन? ये शिंदे सेना के लोग जो बाबा साहब की संविधान पर हमला कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बाबा साहब के संविधान पर हमला कर रहे हैं, टीएमसी से टूटे हुए लोग देश के लोगों जो बाबा साहब के संविधान पर हमला करना चाहते हैं, जो भी दल के लोग टूट रहे हैं या खरीदे जा रहे हैं,
1: जवाब दीजिएगा,
0: संविधान पर हमला करने के लिए
1: जो लोग लिए जा रहे हैं, ऑपरेशन 362 के लिए लिए जा रहे हैं, डिलिमिटेशन के लिए लिए जा रहे हैं, यही ऑपरेशन चल रहा है। सुशी बेन जल्दी से, उसके बाद
6: हमारे एनडीए के लिए डिलिमिटेशन, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, यूसीसी, सीएए सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वी वॉक द टॉक, हमारा मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, हम उन सपोर्ट करना चाहते हैं, जो भी पार्टी जो भी विधायक हमसे जुड़ना चाहें,
1: जो भी करना पड़े उसके लिए वो हम करेंगे,
6: स्वागत करेंगे, लोग जुड़ना चाहेंगे, हमारी पार्टी की वृद्धि होंगी,
5: स्वागत
1: करेंगे। क्लाइड उसके बाद आप, आनंद एक मिनट क्लाइड जल्दी से,
3: साहिल जल्दी से बोलूंगा मैं, ये सब शेरो शायरी कर रहे हैं ना, और सुशी बेन को एक रिक्वेस्ट है मेरा, मैं जो कह रहा हूँ सुन लीजिए, बाद में जवाब दीजिए, अभी शेरो शायरी चल रही है, ठीक है, तो एक कबीरदास जी का दोहा सुन लो, क्योंकि क्या है भारतीय जनता पार्टी के छत्र छाया में एकनाथ शिंदे जी जो आगे जा रहे हैं, लेकिन उनको मैं एक सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि काफी सारे दोस्त है मेरे एकनाथ शिंदे के जो पार्टी में है, तो उनको एक कबीरदास जी का दोहा, कबीरा गर्व न कर कबू न हसीए कोई, अभी नाव समंदर में है न जाने कब क्या होए, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो सावधान रहिए, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं, नाव समंदर में डूब जा सकती है।
5: साहिल भाई सहजाद के लिए शेर है,
6: हम कभी
5: साहिल भाई सहजाद के लिए शेर है,
6: वी आर ऑलवेज रेडी, लड़ना
3: चाहिए,
1: आनंद एक मिनट, ठीक है जरा संभल के रहिएगा सुशी बेन, क्लाइड कैस्ट्रो आपको आगाह कर रहे हैं, साहिल भाई आनंद दुबे जल्दी, आनंद दुबे
5: एक शेर है सहजाद के लिए, हाँ, पार्टी तोड़ के हंसते हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगे, आज शिवसेना के साथ किए हो कल वही सिंधे सेना को बर्बाद करोगे, तो क्यों करते हो यार सहजाद, क्यों? जब 30 साल में हम आपको नहीं समझ में आए तो 3 महीने में सिंधे सेना समझ में आएगी?
1: सहजाद
5: आपका काम है पार्टियों का ऑपरेशन करना, लीवर खराब है तो किडनी चुरा लेना, किडनी खराब है तो पूरा का पूरा फेफड़ा चुरा लेना, क्यों करते हो यार सहजा?
2: मैं जवाब दे सकता हूँ साहिल जी, समय खत्म हो जाएगा साहिल जी। ऐसा है कि आनंद जी वैसे मेरे माध्यम से तो शेरो शायरी कर रहे हैं, पर वो ताना एक्चुअली अभय दुबे को कस रहे हैं। भाई लास्ट अभय दुबे की पार्टी को धोखेबाज किसने कहा? डीएमके ने कहा कि भाई ओवरनाइट आपने चेंज करके टीवीके का हाथ पकड़ लिया। अच्छा, जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने ताना कसा, सबसे नई वाली पार्टी आम आदमी पार्टी भाग गई, सबसे पुरानी वाली पार्टी लेफ्ट पार्टी जॉन ब्रिटास ने बोला आप लोग धोखेबाज हो, जेएमएम ने तो फिर जाकर झारखंड में काम कर ही दिया, आरजेडी ने बोला उदारता तो दिखाइए। तो ये संदेश आनंद दुबे डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, पता नहीं कब उनका बाकी बचा कुचा भी विलय हो जाए।
5: तो मेरे दूसरी बात, क्या मैं जमील जमाली हूँ सहजाद? क्यों आरोप लगा रहे हो इस गरीब पे?
2: आप हमजा मजारी हो, ये है। अब सुन लीजिए दूसरी बात, ऐसा है मैं अभय जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जो टीवी के और कांग्रेस मिलकर वहां पर एडीएमके के एमएलए तोड़ रहे हैं, जो बीजेपी के एमएलए से क्रॉस वोटिंग कराई एमएलसी के चुनाव में, अभय दुबे जी वो क्या है जरा उसका वर्णन कीजिए। आप करते हो और फिर कहते हो चमत्कार,
1: दुबे जी
2: आप दूसरे ना करे तो उसको गुनेगार।
1: आखिर में
2: यही हिपोक्रेसी यार,
1: जो ओरिजिनल मुद्दा है उस पर, ओरिजिनल मुद्दा है उस पर, एक मिनट क्लाइड कैस्ट्रो, आखिर में आपसे एक बार पूछना है, दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, पार्टी टूटेगी यहां वहां जाएंगी जिस तरीके से शिवसेना यूबीटी में देखा, दूसरा ऑप्शन कांग्रेस कह रही है कि अगर बचना है तो आइए हमारे साथ में, कौन सा ऑप्शन चुनेंगी आपकी पार्टी?
0: नहीं साहिल जी,
3: हम स्ट्रांग है,
0: टूटेगी नहीं, तोड़ी जा रही मोदी जी के द्वारा, तोड़ टूट नहीं रही है, गलत बात है ये, खरीदी जा रही है, तोड़ी जा रही है, अडानी का पैसा लेके और ये तोड़ रहे हैं लोग।
1: मैं ऑप्शन बता रहा हूँ भाई, दुबे जी ऑप्शन बता रहा हूँ,
0: गलत बात है ये,
1: क्लाइंट जी को जवाब तो देने दीजिए उसके बाद आप आइए ना,
0: साहस भी जुटाइए,
1: भाई दुबे जी एक सेकंड,
6: क्लाइंट
1: को बोलने तो दीजिए, क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट जल्दी, वरना आपका समय बाकी लोग खा जाएंगे, जल्दी से।
3: नहीं लेकिन ये बात करना बंद,
1: ठीक है एक मिनट
3: तो मैं बात करूंगा ना,
0: कांग्रेस के
3: आपने मुझे ऑप्शन दिया,
1: बाकी लोग को रोकिए जरा, क्लाइंट को जल्दी से जवाब देने दीजिए, दोनों को रोकिए, दोनों का क्लाइंट जल्दी।
3: साहिल हमें कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है, हम अपना काम कर रहे, लोगों की सेवा कर रहे, हम मजबूत है, हम आगे बढ़ते रहेंगे।
0: साहिल जी
1: देखिए अभय दुबे जी, आज बयान जो है ना महाराष्ट्र कांग्रेस से विजय वडेट्टीवार आपके विधायक है उनका आया था, इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अभय दुबे जी, महाराष्ट्र के आपके विधायक है विजय वडेट्टीवार, उनका ही बयान आया था, इसके लिए मैंने ये सवाल पूछा है।
0: तो आज इसलिए परिस्थितियां ऐसी है कि ये लूट रहे लोकतंत्र को, जब हमारी 415 लोकसभा की सीटें थी तब दल बदल विरोधी कानून लाए थे, हमने कई लूट नहीं की, हमने सांसद विधायक खरीद फरोख्त नहीं किए, आज जब मोदी जी को देश ने बैसाखियों पर ला दिया 240 सीट, तब ये षड्यंत्र कर रहे हैं अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, ये देश सच्चाई जान गया है।
1: 362,000
0: जैसे छात्रों का भविष्य
1: बचे आखिर में, जल्दी से
0: राम जी के चोरी की है,
1: 362 के लिए कितने बचे
2: हैं साहिल जी?
1: 20 सेकंड है मेरे पास, आखिरी बोलिए
2: प्लीज। साहिल जी मैं आपको, हाँ साहिल जी मैं आपको एक उदाहरण महाराष्ट्र से देता हूँ। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस उद्धव सेना मिलकर लड़ी थी ना, एक सीट थी मुझे लगता है सांगली की, कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया, यूबीटी सेना के सांसद को हराया और वहां पे जो इंडिपेंडेंट आया उसको विलय करवा के 99 से 100 पे गए, और ये कांग्रेस हमको बोल रही है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो पूछे अभय जी से, पूछे आनंद जी से,
1: कोई बात नहीं। चलिए इसका मतलब टारगेट लॉक है, लेकिन मिसाइल फायर होगा कि नहीं होगा मॉनसून सत्र के पहले, इस पर नजर बनाए रखेंगे। लेकिन इस बार का टारगेट घड़ी है, यानी एनसीपीएसपी तुतारी है एनसीपीएसपी, नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PPF samal lega. Aap apna dekh lo.
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: आपने कहा था ये सबसे तेज है।
4: हाँ, कहा था,
3: लेकिन ये तय कैसे होता है?
4: प्रेशर, जब पूरा देश जवाब ढूंढ रहा होता है तब ये सवालों के बीच खड़े हो जाते हैं।
5: पहला भारतीय चैनल,
3: ये हमेशा सबसे पहले पहुंचते हैं क्योंकि ये खबर का इंतजार नहीं करते, खबर तक पहुँचते हैं।
6: मणिपुर के उस ग्राउंड जीरो पर है,
7: जगह जगह लक्षागृह चल रहे हैं जिनसे आपको खबरदार करने के लिए आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है।
8: बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रपति पुतिन आज तक पर आने के लिए।
9: सिर्फ अनुभव, उससे ज्यादा भरोसा।
10: आज तक की खबर का असर हुआ है,
9: हर दिन कमाया जाता है।
3: क्या ये आपके ऑपरेटिव्स हैं?
9: नहीं, ये भारत के ऑपरेटिव्स हैं।
3: अल्फा, अल्फा को पहचानते हैं।
11: भारत के अल्फा जर्नलिस्ट, भारत के सबसे बड़े अल्फा न्यूज नेटवर्क पर।

0: ustedes.
1: सियासत में बहुमत का मिशन इम्पॉसिबल कुछ ऐसा चल रहा है कि पूरब में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक सब कुछ हिल चुका है। बंगाल की तृणमूल कांग्रेस में टूट के बाद महाराष्ट्र में दरकते दलों की हालत देख अब शरद पवार की पार्टी सहमी हुई। पहले बंगाल की बात करें तो बंगाल में रस्सा कशी चल रही है कि असली टीएमसी कौन। इसी का दावा करने के लिए टीएमसी बागी गुट के 10 नेता दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने पेश होते हैं। टीएमसी के नाम निशान पहचान पर दावा करते हैं।
2: तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस है, नाम और निशान तो हमारा ही है।
3: ग्रुप राय के सिलेक्ट करा हुए छे एस चेयरपर्सन, इलेक्ट करा हुए छे एस चेयरपर्सन थ्रू द मीटिंग इन विच द एनसीडब्ल्यू गॉट फॉर्म।
1: दरअसल 22 जून को टीएमसी के बागी गुट ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली, अरूप राय को पार्टी का अध्यक्ष बना लिया, ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहब, विप्लव मित्रा को महासचिव, फिरहाद हाकिम, अरूप विश्वास, रतिन घोष, सबीना याकमीन उपाध्यक्ष बन गए। कुल 30 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन गई। इसी की जानकारी चुनाव आयोग को देकर दल पर अपना दावा करने ये गुट आया। उधर पुरानी वाली टीएमसी के नेता कहते हैं कि ये गुट फर्जी और मुलाकात ही गैर कानूनी।
4: तो ये खुद को मजाक के पत्र बना रहे हैं, हास्यास्पद कर रहे हैं। और देखिए दूसरी चीज, चूहे को अगर हम चाहे शेर बनाए और जितने भी हवा डाले शेर तो कभी नहीं बनते।
1: कांग्रेस भले टीएमसी के बागी गुट को चूहा बताए लेकिन बंगाल में इन दिनों ममता समर्थक नेताओं का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है और इसकी तस्वीर तब दिखती है जब दफ्तर में बंद टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई थी।
5: पुलिस देखून देखें आवाज शुरू करे पता चल बे।
1: नीचे दर्जनों की भीड़ अंडे और सड़ी सब्जियां फेंक रही थी, पुलिस चुपचाप खड़ी थी। महुआ लगातार हमले के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही थी। बंगाल में जो कुछ हो रहा उसे देखकर महाराष्ट्र की सियासत में शक सुबह बढ़ता जा रहा है क्योंकि जब से उद्धव की पार्टी के सांसद थोक भाव में शिंदे की पार्टी से जा मिले तब से शरद पवार की पार्टी को लेकर अफवाहें उड़ाई जाने लगी। कभी संजय राउत कांग्रेस में महाविलय का आइडिया दे देते हैं तो वेदंतीवार कह देते हैं कि हां दिल्ली में बात चल रही है, तो कभी ऑपरेशन तुतरी का दावा करते हुए एनसीपी के धर्मराव अतराम पवार के 8 में से 5 सांसदों को अपनी एनसीपी में विलय की प्लानिंग वाली बात कह देते हैं और कभी दोनों एनसीपी के ही संपूर्ण विलय का शगुफा सामने आ जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि ना तो पार्टी कांग्रेस में मिलेगी ना ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने में लगी एनडीए का ध्यान एनसीपी शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है और ये संभावना जताई जाने लगी क्योंकि कांग्रेस एनसीपी विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी के सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते न ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है क्योंकि टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं गठबंधन को भी है। ऊपर से पवार उद्धव कांग्रेस वाली अघाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों की गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वेदेट्टीवार जैसे बड़े नेता नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जता दी थी, लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो यह है कि एक दिन पहले ही सचिन अहीर ने उद्धव का साथ छोड़कर डिप्टी चेयरमैन का पद चुन लिया। वैसे फिलहाल शरद पवार की पार्टी में 8 सांसद और 10 विधायक हैं। 2/3 टूट के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की जरूरत होगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: सीआरपीएफ डल लेक की भी सुरक्षा यहां पर करती है क्योंकि अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो यात्रा करने के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में घूमने के लिए निकल जाते हैं, खासतौर पर डल लेक में। इसलिए जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं ये पूरी तरीके से आप चारों तरफ देख रहे हैं कि डल लेक की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर यहां पर व्यवस्था की गई है। यहां सीआरपीएफ के कमांडो 2400 घंटे निगरानी करते हैं क्योंकि यहां खतरा काफी रहता है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, साथ ही अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री भी इस पूरे इलाके में पहुंचते हैं। इस वजह से यहां पर जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं वो ऐसे ही डल लेक में गश्त मारते हैं और गश्त के दौरान किसी भी संदिग्ध स्थिति को नजर उनके द्वारा रखा जाता है जिससे कि किसी भी तरीके के जो यहाँ पर अगर कोई आतंकी घटना करने की कोशिश करता है या फिर किसी और तरीके की यहाँ पर स्थिति पैदा होती है उससे बचाने के लिए तमाम सीआरपीएफ के कमांडो यहाँ पर मौजूद रहते हैं।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी, एआई रक्षा क्षेत्र में करार। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया विकास यात्रा का अहम भागीदार, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य।

हत्याकांड में कत्ल की साजिश के लिए रिहर्सल करने वाली जगह पर पहुंची पुलिस, आरोपी सिया भी साथ। पुलिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मांगी मंजूरी। मुंबई के साकिनाका में सिस्टम की लापरवाही, खुले मैनहोल में गिरकर असलम शेख नाम के शख्स की मौत, 10 लाख मुआवजे का ऐलान। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई पूरी, राउज एवेन्यू कोर्ट 3 अगस्त को सुनाएगा फैसला, दोनों पक्षों को लिखित दलील जमा करने का आदेश।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले की परतें धीरे धीरे अब खुल रही हैं और आरोपियों पर शिकंजा कस चुका है। अयोध्या की कोर्ट ने आरोपी अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर दी है। अविनाश के पास से ही सबसे ज्यादा कैश बरामद हुआ था, लेकिन सवाल यह है कि सवालों के घेरे में आए ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट एक अहम बैठक करने वाला है और इस बैठक में ट्रस्ट चंपत राय और अनिल मिश्रा के फैसले पर विचार कर सकता है। दोनों ने अपना इस्तीफा सौंपा है और माना यही जा रहा है कि दोनों का इस्तीफा मान लिया जाएगा। इस बीच विपक्ष मंदिर ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाकर आक्रामक हो रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है, जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब हर कोई चढ़ावा चोरी का कच्चा चिट्ठा जान

0: चुका है। इसीलिए बीजेपी को ना तो चंदा मिलेगा ना वोट। जबकि योगी आदित्यनाथ विपक्ष की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन घर पर बुलडोजर चलने की संभावनाएं बन गई हैं। अगर बुलडोजर चला तो क्या राम भक्तों का आक्रोश कम होगा? इसीलिए आज सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 के यूपी चुनाव में सब राम के सहारे हैं? हल्ला बोल में आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी कांड का आक्रोश अब देश भर में गूंज रहा है। मंदिर आंदोलन से बीजेपी की राजनीतिक जमीन मजबूत हुई थी। ऐसे में जब मौका भी है और दस्तूर भी, विपक्ष हर बीतते दिन के साथ राजनीतिक दबाव बढ़ाता जा रहा है। अब कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि यूपी सरकार की एसआईटी जांच सिर्फ दिखावा है, जिसने छोटी मछलियों को पकड़ा है जबकि लूट को मिले संस्थागत समर्थन पर हाथ नहीं डाला गया है। इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि चढ़ावा चोरी का मामला गांव-गांव तक पहुंच गया है और इस बार बीजेपी को न चंदा मिलेगा, न चढ़ावा और न ही वोट। उन्होंने बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया।
1: यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है।
0: चढ़ावा चोरी मामले पर अयोध्या बार एसोसिएशन ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस को दी गई इस शिकायत में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के अलावा ट्रस्ट सदस्यों अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर चोरी की साजिश में शामिल होने का आरोप है।
2: पुलिस वालों ने एप्लीकेशन को रिसीव किया है। एप्लीकेशन में जीडी दर्ज हो गई है। दो दिनों में कल परसों तक उसकी कॉपी आ जाएगी। विवेचना जारी करेंगे। लगभग सारे ट्रस्टी हैं वहाँ। सारे का मतलब 5-6-7 तो है ये हैं मुख्य रूप से जो भी। चंपत राय जी हैं, राव क्या नाम है, गोपाल राव जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, कृष्ण मोहन जी हैं।
0: चारों ओर से ट्रस्ट पर उठ रही उंगलियों के बीच असल मुद्दा कार्रवाई का है। 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने की संभावना है। ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों को स्वीकार करने पर फैसला 2/3 बहुमत से ही संभव है। इस बीच इस बात की संभावना भी बन रही है कि आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन घर पर बुलडोजर चले। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या के सादतगंज में बन रहे मकान को लेकर लवकुश की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने को लेकर नोटिस दिया है। फरवरी 2026 से बन रहे इस मकान को लेकर सुप्रिया को 15 दिन में जवाब देना है।
3: अयोध्या विकास प्राधिकरण के लोग आए थे यहाँ पर?
4: जी आए थे।
3: कब आए थे, क्या?
4: हम कल आए थे, पूछताछ कर रहे थे।
3: अच्छा।
4: जी
3: क्या करके गए?
4: कुछ नहीं पूछा था, ऐसा मकान नंबर ये वो कौन सी हम क्या कैसे लगता है, किसका मकान है इतना।
0: चढ़ावा चोरी कांड में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के जुर्म कबूलने के बाद नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित के हाथ में करेंसी नोटों के बंडल का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो जांच के दायरे में आ चुका है। वैसे जब ट्रस्ट सवालों के घेरे में है तब ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने सारा ठीकरा SBI पर फोड़ा है।
5: गिनती को लोगों ने जो गिनती में लोग लाते बैंक द्वारा लाए गए उन लोगों ने कुछ गड़बड़ी जरूर की, जो कि बाद में पकड़े गए। उनके घर पर भी छापे पड़े और वहां भी कुछ पैसा बरामद हुआ। नियमित कर्मचारी नहीं थे उन्हीं लोगों ने, कोई उनकी परमानेंट नौकरी थी नहीं, उन्हें कोई डर तो था नहीं, अपना हेरा फेरी कर लिया।
0: जबकि चढ़ावा चोरी के दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दे रहे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किसी को विपक्ष के बहकावे में नहीं आना चाहिए।
6: जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये मामला बीजेपी की राजनीतिक परीक्षा का मसला बन चुका है। ऐसे में SIT को 15 दिन जांच का मौका और मिला है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि याद रखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और माना जा रहा है कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के पीछे एक वजह यह भी है। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉली शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, सुनील सिंह साजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता वीएचपी के और कालिका प्रसाद मिश्रा अध्यक्ष बार एसोसिएशन के अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, देखिए राम मंदिर का निर्माण जिसके लिए बीजेपी ये कहती रही कि भाई इससे पहले जब सरकारें यूपीए की थी, कांग्रेस की थी, तो हमेशा वकील ही कोर्ट में जाकर केस को अच्छे से नहीं रखते थे और आखिरकार कोर्ट के आदेश से ये मंदिर बना। लेकिन अब तो इस मुद्दे के साथ, चढ़ावा चोरी के मुद्दे के साथ, ये सारी पार्टियां अब भगवान राम के ही मुद्दे पर आपको घेर रही हैं। आपके लिए चुनौती है या नहीं?
7: अंजना जी, सबसे पहले तो देखिए 100 गीदड़ भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो एक शेर को घेर नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पवित्र पार्टी है जिसने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। और ये बात सही है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, लेकिन अंजना जी 4 प्रदेशों की सरकार न्यौछावर करी है वो भारतीय जनता पार्टी है। 40,000 पेजों का ट्रांसलेशन होना था सुनवाई रोकने के लिए। कपिल सिब्बल कांग्रेस के और सपा के भी प्रत्याशी रहे, राज्यसभा के खड़े होते थे, लेकिन सुनवाई हुई। किसने रथ यात्रा निकाली? भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे ना। और वो दिन आया, वो सुनहरा अवसर आया जब भव्य राम मंदिर बना। इसलिए मैं इतना ही कहता हूं कि ये तो एक राजनीतिक पहलू है। ये लोग हमें क्या घेरेंगे जो खुद रेंग रहे हैं कीड़ों की तरह, जो कहते हैं भगवान राम काल्पनिक है कांग्रेस पार्टी, जो अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताते हैं राहुल गांधी, जो समाजवादी पार्टी कार सेवकों पे गोली चलाती है, जो अखिलेश यादव कहते हैं कि राम मंदिर का नक्शा खराब है। अब दूसरा पक्ष जो आपने कहा, जब चंदा चोरी की बात सामने आई है और जिस पे बहुत मजबूती से त्वरित कार्रवाई हुई है, योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट किया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि हर हिंदू की भावना आहत हुई है और हमें इसका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इंसाफ हो। जो चंदा देता है वो बहुत देता है, और अगर कोई चंदा चुराता है तो वो व्यक्ति अपराधी है, उसकी सजा जेल है, और उसको जेल हो और वो कारागार में रहे ये सुनिश्चित करने का बीड़ा अगर उठाया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने उठाया है। लेकिन आज सवाल यह भी पूछा जाएगा अंजना जी, जो मैं पहले भी कह चुका हूं आज फिर कहूंगा। आप देखिए, सबसे पहले अखिलेश यादव का ही बयान था, उन्होंने कहा SIT इज अ टूथलेस बॉडी, इसके दांत नहीं है, FIR नहीं होगी। क्या FIR हुई? हाँ, FIR हुई। उसके बाद कहा गया किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। 8 लोग नामजद थे FIR में, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? 8 की गिरफ्तारी हुई, और अज्ञात में भी पूछताछ अभी अब लोगों से चल रही है। तीसरी बात, अब आपके, मैं शो की रिपोर्ट को देख रहा था, उसमें एक बात आई, बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई कब होगी? तो मैं ये कहूंगा, देखिए अपराधी अपराधी होता है, बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। जिसको आज आप बड़ी मछली बुला रही हैं, जब उन पे कार्रवाई होगी तो दिखेगा कि वो कितने साधारण हैं, दिखेगा कि वो अपराधी हैं, दिखेगा वो जेल में सड़ रहे हैं, दिखेगा उन्हें पापों की सजा मिल रही है। और एक बात बताइए, चंपत राय जी जिनका नाम लिया जा रहा था, क्या उनसे पूछताछ नहीं हुई? उत्तर है हाँ हुई, कई घंटों हुई। दूसरी बात, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? हाँ बिल्कुल दिया। ये क्या दिखाता है? कानून से ऊपर हमारी नजरों में कोई नहीं है, कानून के द्वारा ही दंड भी मिलेगा। और दूसरी बात, आपके ही शो में दिखाई दे रही थी कि बुलडोजर चलने जा रहा है। अगर मैं आपकी रिपोर्ट को मानूं अंजना जी, कल तक यही लोग कह रहे थे हिंदू मुस्लिम करते हुए, अगर ये कोई खान होता तो बुलडोजर चल जाता। अब मैं कहूंगा बुलडोजर तब चलता है जो कानूनी प्रक्रिया होती है और किसी ने अवैध कब्जा किया होता है। और मुझे यकीन है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो वहां बुलडोजर जरूर चलेगा। ये बुलडोजर धर्म नहीं देखता है, ये बुलडोजर कानून से चलता है।
0: चलिए ठीक है, अभी इंतजार है क्योंकि अभी सिर्फ नोटिस दिया गया है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यही है, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ।
7: मैं आपकी रिपोर्ट पे कह रहा हूँ,
0: ठीक है। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित के हाथ में देखिए करेंसी नोटों के बंडल है और ये वीडियो सामने आया है। अभी जांच के दायरे में ये वीडियो है कि इसकी क्या सच्चाई है नहीं है, लेकिन अविनाश शुक्ला का ये भाई है और इसकी गरिमा को समझना पड़ेगा। क्योंकि गौरव भाटिया जी देखिए ये मामला बहुत गंभीर है, ये मंदिर के चढ़ावे का मुद्दा है और इसीलिए लोगों में बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर। अयोध्या में भी लोगों से बात कीजिए तो गुस्सा है, लेकिन इसका अर्थ सुनील साजन जी ये तो नहीं है ना कि इस मुद्दे को जानबूझकर, अब इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अखिलेश जी कह रहे थे कि एसआईटी वाले अधिकारी अब साधु संतों से पूछताछ करेंगे। अरे जांच की एक प्रक्रिया होती है ना सुनील जी, वही प्रक्रिया तो चल रही है।
8: देखिए अंजना जी, क्योंकि भगवान राम के दानपात्र की चोरी का मामला है, ये मामला

0: मानने वाले लोग, सनातनी लोग भगवान राम के भक्त हैं, वो अलग की बात है, भक्त होना अलग है, और बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या दूसरे दलों का सदस्य होना अलग की बात है। मैं भी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा बीजेपी बहुत पवित्र पार्टी है। अब इनकी पवित्रता देखिए, ये वो पार्टी है जिसने किसानों को आतंकवादी कहा, नक्सली कहा, माओवादी कहा, उन पर गोली चलाई, उन पर गाड़ी भी चढ़ा दी इनके नेता के पुत्र ने। किसान की बात अलग हो गई, महिलाओं को लेकर के लोग क्या सम्मान रखते हैं, क्या कहते हैं, पूरे मतलब जो बड़े मुद्दे आए हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा, तो जो घटनाएं बहन बेटियों के साथ हुई उनमें पूरी ताकत लगाई कि बलात्कारियों को बचाया जाए। बेरोजगारों के साथ क्या व्यवहार किया, आपने पिछड़ों का आरक्षण खा लिया, दलितों का आरक्षण खा लिया, हम कह रहे चलिए छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश के हर विभाग लूट रहे हैं, अगर हम आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो ठीक, आप कहते हैं कि हम विपक्ष हैं, हम विपक्ष में हैं तो हमारा नैतिक धर्म भी है कि आपके भ्रष्टाचार या गलत नीतियों के खिलाफ हम आवाज उठाएं। लेकिन जब बात आस्था की आती है, भगवान राम की आती है, मंदिर की आती है, आप उसको अगर लूट लेंगे तो आप बीजेपी की परंपरा देखिए ना भाई, आप पर आपने कहा कि हम जांच करा रहे हैं निष्पक्ष, अंजना जी इन्हीं लोगों पर, इन्हीं के जो संगठन के लोग हैं, जो ट्रस्ट में बैठे लोग हैं, इन्हीं लोगों पर तो आरोप लगा था कि 1400 करोड़ रुपए खा गए, फिर इन्हीं पे आरोप लगा चंदा चोरी का, कोई जांच नहीं हुई, फिर 21 में 20 में जमीन घोटाले का आरोप लगा, SIT बनी, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, फिर आपने दानपात्र लूट लिया। तो अगर समाजवादी पार्टी या विपक्ष या कोई आम आदमी जो भगवान राम पर आस्था रखता है, हाँ। वो अगर प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध कर रहा है,
1: मैं उत्तर दे सकता हूँ,
0: सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में CBI से जांच हो जाए, तो इसे बीजेपी को क्यों लग रहा है कि हम फंस जाएंगे?
2: ठीक है, एक बार डॉली जी भी इस पे बोल ले उसके बाद, क्योंकि डॉली जी आप ही की पार्टी की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच हो, SIT की जांच पर आपको क्यों शक हो रहा है, इतने लोगों को हिरासत में लिया गया है? डॉली जी
3: देखिए, अंजना जी मैं सीधी और साफ बात कहना चाहती हूँ कि जो लगातार पूरा देश देख रहा है, भाई चंपत राय जी का इस्तीफा हो गया, ओके, उसके बाद जो अगले हैं उनका भी इस्तीफा हो गया, लेकिन आज भी बैठकर कुर्सियों पर फैसले तो वही ले रहे हैं, हम लोग तो इन्हीं चैनलों पर दिखाई हुई बातें कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात, यहां मैं अभी योगी जी का भी बयान सुन रही थी, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे निपेंद्र मिश्रा के लिए, मतलब अगर निपेंद्र मिश्रा ने कार सेवकों पे गोली चलाई तो जिम्मेदार कौन हुआ? मुलायम सिंह यादव, ओके, लेकिन आज जब चोरी हो रही है उन्हीं निपेंद्र मिश्रा की निगरानी में, वही देख रहे हैं ना सब कुछ, तो आज योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार क्यों नहीं है? मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, जिम्मेदारी कब लेंगे आप और क्यों नहीं लेंगे आप? आप बच नहीं सकते बुलडोजर के नाम पर, किसी चीज के नाम पर, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है भाई, अकाउंटेबिलिटी के नाम पर इस सरकार में कुछ नहीं। 18 बच्चे मर जाएं, लगातार पेपर लीक होते रहे, शिक्षा मंत्री का कोई लेना देना नहीं, बैठे रहेंगे अपनी कुर्सी पर, उल्टी सीधी चीजें होती रहेंगी। राम मंदिर देख लीजिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन चंदा चोरी नहीं बचा पाएंगे। ये बनाई किसने थी कमेटी? ये बनाई PMO से बनी थी। अब जब ये PMO से बनी तो अब जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? सब जिम्मेदारी से क्यों बच रहे हैं? छुटमुट दो चार को पकड़ के आप चंपत राय को, उनने जो चंपत किया उसे तो नहीं बचा सकते, आप अनिल मिश्रा को तो नहीं बचा सकते, आप बैठे
1: रहे बड़े
3: बड़े लोग फंसाए जाएंगे और फंस जाएंगे। बात है अंजना जी, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा।
2: ठीक है गौरव जी, उनका सीधा सवाल है कि जब अच्छे के लिए श्रेय लिया तो आज इसके लिए जिम्मेदारी क्यों नहीं?
1: नहीं अंजना जी, देखिए जनता हमसे सवाल पूछे, मीडिया पूछे, मैं समझ सकता हूं, लेकिन वो बहरूपीय कालनेमी पूछे हैं जो आज तक वहां दर्शन करने नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा में न्योता आया नहीं गए, चाहे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तो मैं बिल्कुल उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कितना चंदा दिया है सोनिया गांधी ने।
2: अरे
1: हम सब जानते हैं हजारों करोड़ रुपया लूटा है इस नकली गांधी परिवार ने, बेल पे बाहर है, चंदा कितना दिया है आपको मालूम अंजना जी? 1 रुपया नहीं दिया इस परिवार ने। अखिलेश यादव दिखा दें 1 रुपया चंदा दिया हो, नहीं दिया है। आज सवाल ये आता है, देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, ये तस्वीर है राहुल गांधी की।

0: जब इनको मुस्लिम वोट चाहिए होता है, जालीदार टोपी लगाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले इनके ही जो पार्टी के लोग हैं, इनको परशुराम जी से तुलना कर दी, परशुराम जी दिखा दिया। परशुराम जी के भक्त अगर आ गए ना, तो जो मुस्लिम पार्टी बताते हैं अपने आप को, क्या हश्र होगा ये जान लो। और क्या ये नहीं पूछा जाएगा कपिल सिब्बल को किसने खड़ा करवाया था? कांग्रेस पार्टी में ही थे। नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि हम तो मस्जिद पुनः बनाएंगे वहां पे। क्या ये सत्य नहीं है कि अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताते हैं? तो ये तो इनका चरित्र है। अब समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। मथुरा का हम सब मुद्दा जानते हैं, हम चाहते हैं वहां भव्य कृष्ण मंदिर बने। अभी कुछ दिन पहले, कल की बात है, ये अखिलेश यादव को देखिए, भगवान कृष्ण दिखा दिया इनके जो सारे पार्टी के लोग हैं। अंजना जी, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है अखिलेश यादव के, तो मुंह में दही जम जाएगी। इनसे ही कहलवा दीजिए मथुरा में ये स्वागत करेंगे, समर्थन देंगे कि वहां भव्य कृष्ण मंदिर बने। इतना तो जानने का हक है। दूसरा, आज का जो विषय है, आज का विषय है चंदा चोरी। लेकिन ये बात कर रहे थे किसान और महिला की, इसका मतलब पढ़ लिख के नहीं आए। तो किसानों पे आजम खान ने किसानों की जमीन हड़पी थी, मुकदमे लगे थे। ये भी बात सत्य है कि महिलाओं के लिए मुलायम सिंह जी ने कहा था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, गैंग रेप नहीं होता। तो कम से कम किसानों और महिलाओं की बात ना करो। आज तो ये सवाल पूछ रही है जनता कि तुम लोग तो हिंदुओं से नफरत करते थे, आज पुलिस अगर अपना काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी जितने गलत अपराधी हैं उनको जेल डालें, तो आप मुझे ये बताइए आपको दर्द क्यों हो रहा है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। आप जांच होने दीजिए, कानून के हिसाब से ही जांच होगी।
1: अंजना जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से कहा है कि हम सभी धर्म और सभी जातियों का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम देश के संविधान को मानते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो इन्होंने बात कर, अरे आप उल्टी सीधी बातें करके आप चोरों को, आप अंजना जी इनको बोलिए, बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रही थी, आप ये उल्टी सीधी बातें कर गलत बोलकर ये बच नहीं सकते। आज जिम्मेदारी लेने की बारी है, लीजिए जिम्मेदारी। अरे जब कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले निपेंद्र मिश्रा की जगह आप मुलायम सिंह यादव को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो आज निपेंद्र मिश्रा जिम्मेदार क्यों नहीं है? आज योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार क्यों नहीं है? भाई क्यों नहीं है? उनकी नाक के नीचे हुआ ना, इस प्रदेश के मुखिया है ना योगी आदित्यनाथ, वो कैसे बच सकते हैं? कैसे बच गए? आज भी कही है ना चोरी योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे हुई है। अजय सिंह,
0: मैं उत्तर दे देता
1: हूं, नाक के नीचे चोरी हुई है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
0: उत्तर ले लीजिए,
1: ऐसा तो नहीं हो सकता। अंजना जी, इनके टाइम में मैं
0: देखिए सुनिए,
1: चलती रहती है झूठ बोलने की।
2: ठीक है,
0: मैं उत्तर दे दूंगा,
2: पूरा कर लीजिए। डॉली जी, एक सेकंड रुक जाइए, डॉली जी दो लाइन में पूरी कीजिए बात, फिर जवाब लेंगे ना जो आपने पूछा है।
1: अगर एक रुपया भी राम मंदिर के नाम पर चोरी होता है ना, तो इस देश का हर व्यक्ति पूछेगा। और लोकतंत्र में विपक्ष का काम है सवाल पूछना जनता के, और हम भी वही कर रहे हैं, हम जनता के सवालों को पूछ रहे हैं। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी 1-1 करोड़ की जमीन बेचकर राम मंदिर को चंदा दिया है, जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं दिया, जन्मों अपनी पूरे जन्म की कमाई राम मंदिर के लिए दे दी, लेकिन आज ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये जो अपने घर के मंदिर में दिया नहीं जलाते, वो यहाँ बात कर रहे
2: हैं
1: ना जाने असंख्य।
2: ठीक है, गौरव जी से जवाब सुनिए, फिर विजय शंकर तिवारी और उनके पास चलेंगे।
0: दिया जलाने की बात वो कर रहे हैं जो नमाज पढ़ते हैं और अपने आप को हिंदू बताते हैं। हमने तो अयोध्या में भी 21 लाख दिए जलवा दिए, सबने जश्न मनाया, लेकिन थोड़ी इनको जानकारी कम है संविधान की। मैं इनको बता दूं, निपेंद्र मिश्रा जी का नाम ले रही हैं। निपेंद्र मिश्रा जी अधिकारी थे, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। अंजना जी, सारे करोड़ों दर्शक जानते हैं, यही बचकानी बातें कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं तो पार्टी हारती है। क्या मुख्यमंत्री ऊपर होता है या उसका अधिकारी ऊपर होता है? अगर मुख्यमंत्री आदेश देगा गोली चलाओ, क्या अधिकारी कहेगा कि नहीं चला? बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। अब बताइए,
2: देखिए
0: अब दर्द हो रहा है इनको,
2: बोलिए बोलिए।
0: तो देखिए, पहला जो असूल है, संविधान को पढ़ें। राहुल गांधी की तरह ये भी संविधान पढ़ती नहीं है, नफरत है इन्हें, कुरान पढ़ती होंगी। मुख्यमंत्री का आदेश हो या प्रधानमंत्री का आदेश हो, जो अधिकारी होगा उसका कर्तव्य है, उसका पालन करेगा। इसलिए जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव जी की है, और मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलाने के 27 साल बाद ये बयान दिया था। सपा के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने कहा था देश की एकता के लिए अयोध्या में और भी कारसेवक मारने पड़ते तो मार देता। अब बताइए जो कारसेवकों पे गोली चला रहा है और कह रहा है कि देश की एकता की बात है, वो किस तरह का मुख्यमंत्री था? तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने कभी नहीं चाहा कि भव्य राम मंदिर वहां बने, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। आज इनसे पूछिए, जब सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स बुलाया तो किसने, राहुल गांधी ने कोई वक्तव्य दिया? नहीं दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते कि सनातन मजबूत हो। और अंत करूंगा, राहुल गांधी तो वो व्यक्ति है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई जनेऊ, ये तस्वीर आपको मिलेगी नहीं, इंटरनेट से हटा दी गई है, मैं लेके आया हूं, बंद गले के कोट के ऊपर जनेऊ पहन के कौन आता है मुझे नहीं पता, केवल चुनावी हिंदू ढोंगी हिंदू आते हैं। और ये राहुल गांधी कहते हैं लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, इनकी हिम्मत हो, औकात हो, हैसियत हो तो एक बार बोल के दिखाएं, मस्जिद में लड़के जाते हैं और बाहर निकल के लड़कियां छेड़ते हैं, क्योंकि मस्जिद में तो लड़कियां आएंगी नहीं, ये कह सकते नहीं, ये केवल हिंदू धर्म का अपमान करते हैं।
2: और ठीक है, छोटा छोटा रिबटल आप दोनों से, छोटा रिबटल, क्योंकि विजय शंकर तिवारी जी और हमारे साथ कालिका प्रसाद जी इंतजार कर रहे हैं, आपके नेता पर हमला किया, डॉली जी छोटा सा जवाब।
1: देखिए अंजना जी, मैं तो सीधी और साफ बात कहना चाहती हूँ, राम के नाम पर वोट मांगा, राम के नाम पर चंदा मांगा, लेकिन आज जवाबदेही इनसे बन नहीं रही है तो ऊट पटांग और झूठ फैला रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। अरे कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभा रहे हैं, अपनी बहन की शादी की फोटो है वो राजनीतिक फोटो नहीं है, नंबर एक। और गौरव भाटिया को थोड़ी बात करने की तहजीब सिखा दीजिए, ये होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लेकिन तमीज नाम की चीज नहीं है इन्हें। अगर ये मेरे नेता के बारे में बकवास करेंगे तो मैं भी प्रधानमंत्री
0: सीधी और बस कीजिए।
2: अब लेवल नीचे गिर रहा है, गिरना शुरू हो गया, थामिए इसको, जल्दी से सुनील जी छोटा सा रिबटल।
3: देखिए अंजना जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा हूं, वैसे तो बड़े वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ी लिखी बात नहीं करते। कह रहे हैं कि हमसे सवाल हिंदू पूछ सकता है, क्यों? लोकतंत्र पे भरोसा नहीं? विपक्ष नहीं पूछ सकता है? चलिए हमको विपक्ष न मानिए, हिंदू मान लीजिए। और आपके सहयोगी किस किस तरीके का वीडियो जारी कर रहे हैं कि भाई हिंदू का पैसा था, हिंदू चुरा ले गया तो दूसरे की तकलीफ क्यों? कल आपके घर अगर चोरी हो गई और कोई हिंदू चोरी कर ले गया, सब साफ कर गया, FIR नहीं कराएंगे? कोई आपको कल मार के जाएगा तो आप FIR नहीं कराएंगे?
2: विजय शंकर तिवारी
3: जी तरीके की तर्क दे रहे हैं।
2: विजय शंकर तिवारी जी, एक सेकंड मैं रुक जाए, गौरव जी थोड़ा सा रुक जाए। विजय शंकर तिवारी जी, अब सवाल ये है कि चाहे चंपत राय हो या अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, इन लोगों को लेकर बहुत सारे गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। रिजाइन कर दिया और माना जा रहा है कि 6 जुलाई की मीटिंग में उसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा, लेकिन अगर चोरी हुई, चोरी की जानकारी थी, तो इतना काफी है क्या?
4: नहीं, देखो अंजना जी, अब तो आगे बढ़ गई बात, अब बहुत आगे बढ़ गई है, मुझे लगता है कि बहुत पीछे की बात है। बात SIT जांच शुरू हो गई, 8 लोग गिरफ्तार हो गए, आगे और चर्चाएं हो रही हैं, चंपत जी ने इस्तीफा दे दिया, आगे 6 तारीख को बैठक है, उसमें निर्णय होने वाला है, ये सारी चीजें होंगी। इसके आगे की बातें ये है कि हमें जांच पर पूरा भरोसा है और मुझे लगता है जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसको ये SIT छोड़ेगी नहीं। और हम इस पक्ष में तो ये आप बहुत सारी चर्चा सुन चुकी हैं, ये हमारे सुनील जी हैं, हमारी गौरी बहन हैं, तो इन्होंने कोई राम मंदिर के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, उसके लिए कोई सहभाग नहीं है, उसके लिए कोई संघर्ष नहीं किया है। हम 35 साल तक इसके लिए संघर्ष में लगे रहे हैं, हमने अपने परिवार वाले खोए हैं, हमने कई पीढ़ियां बिताई हैं, तब श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, गलती हुई और गलती जिससे हुई उसको सजा मिलेगी और वो कानून तो सबके लिए एक है, हमारे लिए भी, इनके लिए भी एक है। लेकिन जो हिंदुओं को आतंकी बताने का काम कर रहे थे, जो भगवान श्री राम की पहचान वो है कि नहीं, एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आज राम भक्त हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारी तो अभिलाषा यही थी कि सारा देश राम भक्त हो जाए, लेकिन आज वो भी राम भक्त हो गए जो हिंदुओं को आतंकी बता रहे थे, जो भगवान राम की पहचान पूछ रहे थे। और सुनील साजन जी बैठे हुए हैं, इनको पता है कि अंतिम समय तक, बहुत समय से हमारे साथ डिबेट में आ रहे हैं, अंतिम समय तक ये श्री राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद ही कहते रहे। डोली जी की पार्टी भी बाबरी मस्जिद ही कह रही थी, आज इनकी इनके ऊपर भगवान राम की कृपा है कि भगवान की जय जय कर रहे हैं। वेणुगोपाल जी अभी बात कर रहे थे, उन्हीं के केरल में ये पद्मनाभन मंदिर है, उन्हीं के शबरीमाला है, शबरीमाला में कितना समय हो गया एसआईटी को बिछाए हुए, कौन सा परिणाम आया वहां पर? यहाँ पर 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और उनसे पूछताछ हो गई है, पर शबरीमाला में किससे पूछताछ हो रही है, कौन लोग वहां? तो सारे नेता ही है, सारे बड़े बड़े लोग।
2: डॉली जी, डॉली जी, चूंकि शबरीमाला मंदिर का मुद्दा उन्होंने उठाया तो उस पर एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तभी ये मुद्दा उठेगा। शबरीमाला मंदिर में भी कई किलो सोना चुराने का आरोप है, अब जाकर हाईकोर्ट ने दो लोगों को। हाँ
1: अंजना जी, कितने दिन हुए कांग्रेस की सरकार बने हुए केरल में?
4: 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने।
1: आप खुद जानती हैं, और ये चोरी, और ये चोरी सकती है, ये भी आप जानती हैं, इसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये, राम मंदिर का ताला खुलवाने वाले राजीव गांधी थे, स्वर्गीय प्रधानमंत्री, अगर इन्हें ना पता हो। दूसरी बात, हम तो यहाँ चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जिसने भी चोरी किया है उसको आप पकड़िए, तो हम क्या गलत कर रहे हैं बताइए अंजना जी, क्या हम ये नहीं कहेंगे?
2: नहीं नहीं डॉली जी, यहाँ पर 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, हर दिन का क्या काम है वो सामने आ रहा है, 15 दिन जांच पूरी हुई है, आगे के दिन की बात है, और आपकी सरकार भी वहां पर बनी हुई है, तो गंभीरता से हर मंदिर में जहां भी चढ़ावा, वहां भी चढ़ावा ही था, कई किलो सोना जो चोरी हुआ है वो भी चढ़ावा ही था, वो मुद्दा भी उतना ही जोर शोर से सबको उठाना चाहिए। मैं लौट रही हूं आपके पास कालिका प्रसाद जी, जल्दी से आपके पास आ रहे हैं। मिश्रा जी, ऐसी खबर आई है कि आप लोग चाहते हैं कि केस FIR को आपने पुलिस को सौंपी है कि भाई FIR दर्ज हो, किस किस के खिलाफ और क्यों चाहते हैं आप लोग ऐसा?
5: उसमें देखा गया है, इसके पहले का एक सेक्शन 1992 का एक केस चल रहा है, वर्तमान में भी ADJ 8 के यहाँ चल रहा है, जिसमें पूरे ट्रस्ट के लोग इन्वॉल्व हैं, और एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं जिनके प्रमाण भी दाखिल किए गए हैं, वो पत्रावली चल रही, उसको भी जांच कराने के बाद ये देखा गया है। और जहां तक जनता की आवाजें हैं, इसमें भी पाया गया है, देखिए यहाँ पर पैसे की बरामदगी भी कृष्णमोहन साहब के रैक से ही पाई गई है, और इन सब चीजों को देखने के बाद में ये आया है मामला, क्योंकि हम लोग लोकल होने के नाते यहाँ मैंने भी देखा है कई जगह पर गलतियां की गई हैं, जमीनों में भी खरीद फरोख्त में भी तमाम धांधलेबाजी की गई है, उसमें ये पाया गया। अयोध्या के वकीलों ने विशेष तौर पर अनिल मिश्रा जी के बात को उठाया गया है, जिसमें उन लोगों ने ये बताया कि 2-3-4 वर्षों के अंदर में साइकिल से गाड़ी पर, गाड़ी से फिर उस पर, और फिर इतने मकान, इतने बिजनेस, सारे पॉइंट सब इनके आज तक प्रोग्रेस में आए हैं। तो उन लोगों ने, सारे लोगों ने मिला करके एक सूक्ष्म अवलोकन के बाद ये पाया गया कि इसमें इन लोगों की भी कहीं न कहीं जो है कदाचयता मान लीजिए, या ये मान लीजिए कि इन्वॉल्वमेंट पाया गया, जिसमें एप्लीकेशन दी गई कि जांच इनकी भी होनी चाहिए आरोपी के रूप में।
2: ठीक है, और कालिका जी ऐसी भी खबर आई थी कि आप लोगों ने कहा है कि आप इन लोगों की तरफ से वकालत के लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा।
5: नहीं, उसमें यह कहा गया है कि सारे लोगों में बहुत भीड़ थी उस दिन, सभी लोगों ने लगभग वकीलों ने यह कहा कि भाई हम लोग नैतिकता के आधार पर इनकी वकालत नहीं करें, और जो लोग करना ही चाहते हैं, संघ के लोग हों, वो परमिशन ले लें, और जब इतने बड़े बड़े इसमें चोर लोग हैं, इनके पास बहुत बड़े बड़े पैसे हैं, तो पैसे लेकर के संघ को भी आमद कराएं, क्योंकि संघ ने भी मंदिर के प्रति बहुत डोनेशन अच्छा कई बार दिया है, और उस पे कार सेवा भी की है, और मुद्दे पर लड़ने के लिए बहुत दिनों तक आंदोलन भी छेड़ा है।
2: गौरव भाटिया जी, जो लोगों का ही गुस्सा है वही कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित हो रहा है जब आप लॉयर्स की ये बात सुनते हैं, वो भी तो ये सब अयोध्या के ही रहने वाले हैं। गौरव जी,
0: अंजना जी, कालिका जी मेरे साथी हैं, और मैं स्वयं अयोध्या बार का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत ही सजग और मजबूत बार है, और अगर वो सामने आए हैं और उन्होंने एक कंप्लेंट दी है तो ये स्वागत योग्य है। मैं वजह बताता हूं आपको क्यों। कोई ओछी घटिया राजनीति नहीं कर रहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरह। एक अधिवक्ता का काम है कि संविधान का पालन करे, आरोपियों को जेल पहुंचाए और न्याय प्रणाली को मजबूत करे। मैं कालिका जी के साथ हूं, उन्होंने अगर कंप्लेंट दी है, मैं तो एक बात उनसे और कहूंगा, मेरे साथी हैं और मैं वहां व्यक्तिगत तौर पे सभी लोगों को जानता हूं अयोध्या बार में, कि SIT ने स्वयं मांग करी थी कि कोई साक्ष्य प्रमाण आपके पास कुछ भी हो।
2: एक खबर इस वक्त आ रही है, गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद हैं और गृहमंत्री इस वक्त एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, संगठन महासचिव बैठक में शामिल हो रहे हैं और संगठन को ही लेकर इस पर चर्चा हो रही है। संगठन के पदाधिकारियों की लिस्ट पर चर्चा की जा रही है। कई लोग इसको जो मंत्रियों के फेरबदल होने हैं और जो रीशफल होना है, कैबिनेट रीशफल, उससे भी जोड़कर देख रहे हैं कि हो सकता है उसमें से कई लोगों को यहां पर अब जगह देनी हो और यहां से वहां के लिए जगह बननी हो। खैर, जो भी हो, इसमें गृहमंत्री के अध्यक्षता में इस वक्त ये बैठक चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस बैठक में मौजूद है और गृहमंत्री अमित शाह ये बैठक कर रहे हैं। बीजेपी के संगठन महासचिव इस बैठक में शामिल है। खैर, संगठन के पदाधिकारियों पर भी चर्चा चल रही है, इससे क्या निकलता है इस बैठक से, और जैसे ही और जानकारी आती है हम आप तक पहुंचाएंगे। गौरव जी, आपकी बात बीच में टोकी थी, जल्दी से आइए। देखिए, कुल मिलाकर इसको सियासी लड़ाई जितनी भी बना लीजिए गौरव जी, लेकिन अब ये मामला ऐसा हो गया है ना कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी मौका मिला है।
0: अंजना जी, देखिए, जो बात मैं कहूंगा, करोड़ों दर्शक, आप और कालिका जी सब सहमत होंगे, क्योंकि वो बात न्याय संगत भी है और सही भी है। कानून का पालन करते हुए ही पुलिस काम करती है और जो आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अगर विपक्ष ओछी घटिया राजनीति करे, हिंदू मुस्लिम राजनीति करे, बांटने का प्रयास करे और इसे वोट की राजनीति से जोड़े तो ये गलत है। और कोई भी जांच वोट को ध्यान में रखते हुए या इस तरह की राजनीति को ध्यान में रखते हुए नहीं हो सकती है। अखिलेश यादव आज कह रहे थे, भगवान राम की बात कर रहे थे और संविधान की। मैं कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव तो वो है जिन्होंने कहा था ये जो भव्य राम मंदिर बना है इसका नक्शा खराब है, कार सेवकों पे गोली चलवाई तो उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष ने, और संविधान की बात करते हैं तो मुझे ये बताइए, मुस्लिम इलाका, हिंदू इलाका किसने कहा? समाजवादी पार्टी ने। अनुच्छेद 370 का विरोध किसने किया? संविधान में लिखा है, समाजवादी पार्टी ने। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कौन करता है? अखिलेश यादव करते हैं। हलाला और आरक्षण धर्म के आधार पे हो गए, ये कौन कहती है? टूटी साइकिल, समाजवादी पार्टी। तो ना संविधान की बात करें ना राम की बात करें, ये पापी हैं, जनता ने इन्हें नकार दिया है।
2: चलिए, अब सुनील जी, इसका जवाब आप दीजिए, और वो अखिलेश यादव पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और आपकी पार्टी की पूरी एक जो विचारधारा रही है, ऐसा तो है नहीं सर कि आपकी पार्टी ये आंदोलन पर निकली थी कि ये राम जन्मभूमि है, यहां पर मंदिर बनना चाहिए, इस पर वो आपको घेर रहे हैं, तो क्या गलत घेर रहे हैं? राम जन्मभूमि तो आप लोग कई दिनों तक उसको मान भी नहीं रहे थे, सच है या गलत है?
3: देखिए अंजना जी,
2: जी
3: अंजना जी, हमारा आंदोलन अलग है। समाजवादी पार्टी का जो आंदोलन रहा है वो सामाजिक न्याय का आंदोलन है, आज भी वही आंदोलन है। हम तो बराबरी चाहते हैं, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। लेकिन अगर आप ये सोचें भारतीय जनता पार्टी या उनके जो सहयोगी लोग हैं कि आप चोरी कर लोगे, भगवान राम के मंदिर में डांका डाल लोगे, करोड़ों सनातनियों के आस्था को आप लूट लोगे, तो ये तो नहीं होने देंगे। और बिल्कुल हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, मर्यादा जैसे ही आती है भगवान राम सामने आ जाते हैं, उनका नाम याद आ जाता है, उनका चेहरा आ जाता है। और अगर दूसरी कोई मर्यादा है इस देश में तो हमारा संविधान है। तो बीजेपी कब से संविधान मानने लगी है? तो संविधान बदलने वाले लोग थे ये। अगर संविधान मानते तो उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनते योगी आदित्यनाथ जी, उस पर तो आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और हम फिर कह रहे हैं कि भाई SIT की आप बार बार बात कर रहे हैं, SIT अंजना जी बनी थी जमीन घोटाले पर, कोई आई रिपोर्ट? और अगर बीजेपी को हम चुनौती देते हैं और सारे लोगों को जो लूट में शामिल हैं कि भाई आपकी बड़ी आस्था है अगर भगवान पर, हल आप केवल वोट चोरी के लिए, नोट चोरी के लिए भगवान राम का नाम लेते हैं, भक्त नहीं है आप, आस्था नहीं आपकी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं अगर आपकी आस्था है तो फिर क्यों कांप रहे हैं हाथ पैर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में अगर CBI हो जाए? SIT चिल्ला रहे,
2: सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? डायरेक्ट सवाल है जो दोनों कांग्रेस पार्टी समाजवादी दोनों उठा रहे हैं। गौरव जी,
0: देखिए, फिर से विधिक बात करी तो जरूर उत्तर देना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही नहीं होती अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय जब आदेश पारित करता है उसके बाद ही होती है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भी लगी है, पता नहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को पता है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी उसमें सुनवाई करने के लिए कोई तिथि नहीं दी। हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय को लगा हो कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, हो सकता है उन्हें लगा हो जो जांच हो रही है, विवेचना हो रही है, वो ठीक है, कम से कम तथ्यों पे बात होनी चाहिए। दूसरा, अगर घोटाले की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए 2016 तक सफाई महोत्सव हुआ जब तक समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, करोड़ों रुपया जनता का सरकारी रुपया खर्च किया जाता था, 2016 के बाद सफाई महोत्सव क्यों नहीं हुआ, जरा इसका उत्तर दे दे। दूसरी बात ये बताइए, मदरसों में सरकार का रुपया जाता था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, टीचर वहां आते नहीं थे, तनख्वाह जाती थी, क्या ये चंदा चोरी नहीं है, क्या ये घोटाला नहीं है? कभी आवाज उठाई? योगी आदित्यनाथ जी ने पंजीकरण शुरू कराया, सुनिश्चित किया कि हर मदरसे को अगर सरकारी धन जाएगा तो वो पंजीकृत हो। ये फर्क है सोच का अंजना जी। ये वो लोग हैं जो बहरूपीय बाहर आते हैं, एक प्रश्न का उत्तर नहीं देते। पूछिए 2016 के बाद सफाई महोत्सव क्यों नहीं हुआ, और मदरसे का रजिस्ट्रेशन जब नहीं होता तो अखिलेश यादव ने क्या किया?
3: अंजना जी, देखिए ये आज तक पर बैठ करके आपके सारे दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी चाहें तो सीबीआई हो जाएगी, उसमें क्यों न्यायालय की बात कर रहे हैं? और आप मदरसे की बात कर रहे हैं जिन्होंने 90,000 स्कूल बंद कर दिए, आपकी सरकार ने बंद किए। अरे भाई, अच्छा चलिए, अच्छा सुन लीजिए, आप सीबीआई कराइए,
0: सरकार नहीं कर सकती,
3: आप सीबीआई कराइए। आपको
0: एक बात
3: सुनिए, आप सीबीआई
0: सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करा सकती है, बताइए मुझे।
3: गौरव भाई
0: पूछ रहा हूँ,
3: मैं आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा और आपसे ज्यादा समझदार हूँ, ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं थी।
0: आप मुझसे ज्यादा समझदार
3: भाषा और आप जिस तरीके से एक घंटे से मुद्दे से भागे ना,
0: उत्तर दे दीजिए।
3: आप मुद्दे से मत भागिए, आप आपके नेतृत्व में लूट हुई है भगवान राम के मंदिर में, आप आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बच नहीं सकता है।
0: उत्तर नहीं है,
3: गांव गांव में इस बात की चर्चा है कि जो लोग कह रहे थे कि राम को लाए और राम को नहीं लाए थे,
0: सवाल का
3: वो अपना लूट का अड्डा बना रहे थे। आप लूट नहीं सकते
0: तो बताइए,
3: आप आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते।
0: क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच करवा सकती है? सिटिंग जज की जो आप
3: ये कह रहे हैं कि सरकार सीबीआई जांच करा सकती है, अच्छा हम कह रहे हैं सीबीआई करा सकती है, आप आज कह के जाइए।
0: अच्छा दूसरे ये बताइए, 2016 के बाद सफाई महोत्सव क्यों नहीं हुआ? मैं पूछ रहा हूँ, मैं भी एक नागरिक हूँ, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ,
3: ठीक है।
0: 2016 के बाद सफाई महोत्सव क्यों नहीं हुआ? सरकारी धन नहीं था?
3: एक बार आज एक बार आज तक पर बैठ
0: सवाल का उत्तर
3: अंजना जी के शो में,
0: नर्सरी वाला
3: सुन लो,
0: केजी वाला नहीं, नर्सरी वाला
3: कहो कि ये जो
0: सुन लो क्या है भाई, एक सवाल का उत्तर होता है, सुन लो थोड़ी ना होता है।
3: एफआईआर होकर के
0: अच्छा ये बताओ, मदरसों पे
3: बच नहीं सकते, लूट किया होता
0: था
3: और मंदिर लूटने में बीजेपी।
2: एक बार डॉली जी को दिखा दीजिए, डॉली जी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था कि अर्जेंट हियरिंग हो, एक पिटिशन दाखिल की गई थी जिसमें सीबीआई लेड इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन जो कि इसी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर, जिसको डिक्लाइन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी एक सच्चाई है
1: जी। देखिए अंजना जी, मैं तो सीधा और साफ एक बात बार बार कह रही हूँ और अभी फिर ये बात कहूंगी कि भाई राम के नाम पे राजनीति करने वाले, वोट मांगने वाले, चंदा इकट्ठा करने वाले आज जवाबदेही से क्यों बच रहे, आज क्यों डर रहे, क्यों गौरव भाटिया यहाँ ऊट पटांग भाषा में बोल रहे हैं और हमारे साथ सुर में सुर मिलाकर ये नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ प्रभु राम के नाम पर करोड़ों रुपए छोड़ो, अगर एक रुपया भी किसी ने लूटा है, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं अंजना जी कि जहां इन्हें अच्छा अच्छा दिख रहा है सब कुछ ले लिया और हर चीज का कोविड में मौत के सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री की फोटो लगा डाली, वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर भी लगा डाली, टॉयलेट के बाहर आप देखो प्रधानमंत्री की फोटो, तो आज राम मंदिर की जो चोरी हो रही है ना, जो लूट हो रही है, वहां भी एक बड़ा पोस्टर भगवान प्रभु राम के, जो आप देखा था आपने अयोध्या के, वहां पर कितने प्रधानमंत्री आज लगा दीजिए एक बड़ा पोस्टर कि प्रधानमंत्री जी की फोटो के साथ कि ये लोग राम मंदिर में, इनकी नाक के नीचे कमेटी बनी, इनकी इन्होंने जो कमेटी बनाई और लगातार सालों साल चंदा चोरी होता रहा, प्रभु राम के नाम पर लोगों की आस्था लूटती रही और ये लोग आज जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। ये लोग राहुल गांधी को गली आएंगे, अरे रोज गाली देते हैं आप राहुल गांधी,
0: देखिए
1: जवाब
0: मैंने राहुल गांधी को गाली दी जी, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने कितना चंदा दिया है तो कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं बता पाई। मेरी छोटी बहन है, मुझे लगता है एक रुपया भी नहीं दिया, क्योंकि क्राइम मास्टर गोगो है। दूसरी बात चंदे की बात है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो चंदा दिया था वो नेशनल हेराल्ड घोटाले में गांधी परिवार ने अपने नाम कर लिया। तो सबसे बड़ा चंदा चोर अगर कोई है तो वो तो नकली गांधी परिवार है। तीसरा ये देखिए खड़गे जी का बयान है, अगर मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने तो सनातन का राज हो जाएगा। अब सनातन से अब बीच में ना बोलिए, अंजना जी चुप कराइए। देखिए इसीलिए इन लोगों से चर्चा करने का कोई फायदा नहीं होता। अब ये अब बोल रही है, अब इनका समय नहीं है। अब देखिए खड़गे जी कितने बड़े सनातन विरोधी है, नफरत है इन्हें हिंदुओं से, और हिंदू ये जानते हैं, तभी हिंदुओं ने इनको सबक सिखाया। उत्तर प्रदेश में इनकी दो सीटें हैं, बताइए दो सीटों की हैसियत है इनकी, यहाँ पे आके चिल्ला रही हैं। मैं इनको केवल इतना कहूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणियां करने की बजाय कानून पढ़िए।
2: बारी बारी से, ठीक है गौरव जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से,
0: और किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
2: हाँ
0: धन्यवाद। बस अंजना जी मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ना बड़ी मछली ना छोटी मछली, ये सब अपराधी हैं। अपराधी कोई भी हो, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और इनके मुंह पे टमाटर पड़ेगा जब इनको पता चलेगा। हर बार बयान देते हैं और कार्रवाई हो जाती है, ये कहते वो नहीं होगी कार्रवाई और कार्रवाई होती है। यही योगी आदित्यनाथ जी,
2: ठीक है, जो आप एक लॉयर भी हैं, एक सवाल है मेरा गौरव जी आपसे, आप एक लॉयर भी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता, इसीलिए एक सवाल भी है, क्या अगर ये, क्योंकि ऐसा खबर आई है कि एसआईटी के सामने चंपत राय ने खुद कबूला है कि उनको इस चोरी के बारे में पहले ही पता चली थी, उन्होंने पैसा को इकट्ठा करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये सही पाया जाता है, अगर इतनी बड़ी चोरी के बारे में उनको पहले से जानकारी थी, तो क्या सिर्फ पद से इस्तीफा काफी होगा या उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए?
0: अंजना जी देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि अगर ऐसा हुआ था तो क्या ये ठीक होगा, ऐसे प्रश्नों का मैं उत्तर देना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये उचित नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो जनता सुनना चाहती है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, अभी पूछताछ चल रही है, हमने देखा बयान दर्ज हो रहे हैं, अगर किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो इन्वेस्टिगेशन की किसी भी स्टेज पे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिसमें अरेस्ट होना भी शामिल है। इसलिए मुझे यकीन है कि हर व्यक्ति जो कि संलिप्त था उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो अरेस्ट हो।
2: ठीक है, और 6 तारीख को पहले ट्रस्ट की बैठक है जिसमें माना जा रहा है कि दोनों के इस्तीफे को मंजूरी मिल सकती है, लेकिन आखिर कैसे ये जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और किस किस को दोषी पाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको बताएंगे कि जिस रशिया से भारत तेल खरीदता है, उस रशिया को भारत से पेट्रोल क्यों खरीदना पड़ रहा है, और क्या मुश्तबा खमनई अपने पिता अली खमनई के जनाजे में नजर आएंगे, और इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के सहारे क्रिप्टो से ट्रंप की लॉटरी लग गई, और आखिर में आपको बताएंगे कि क्या पुलिस की वजह से पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी बच जाएगी। देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
6: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
5: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
6: अर्ज किया है
5: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं। सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
7: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
10: वी आर ओवर जिमी।
11: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
15: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
16: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
17: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
18: कुछ तो बात है इस दिल में।
19: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
20: हमने तब भी सवाल किया था,
21: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
20: हम आज भी सवाल करते हैं,
21: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
20: ऑपरेशन अग्नि,
21: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
20: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।
22: In association with
23: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
24: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
25: Tuck, digital first channels, 11 billion views, 85 million unique viewers, one stop solution for your brand, regional or hyper local reach. Har shahar, har kasbe tak advertise karne ke liye email karein.
20: हमने तब भी सवाल किया था,
21: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
20: हम आज भी सवाल करते हैं,
21: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
20: ऑपरेशन अग्नि,
21: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
20: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1999।

0: मंदिर के चढ़ावा चोरी कांड का आक्रोश अब देश भर में गूंज रहा है। मंदिर आंदोलन से बीजेपी की राजनीतिक जमीन मजबूत हुई थी, ऐसे में जब मौका भी है और दस्तूर भी, विपक्ष हर बीतते दिन के साथ राजनीतिक दबाव बढ़ाता जा रहा है। अब कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि यूपी सरकार की एसआईटी जांच सिर्फ दिखावा है, जिसने छोटी मछलियों को पकड़ा है जबकि लूट को मिले संस्थागत समर्थन पर हाथ नहीं डाला गया है। इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि चढ़ावा चोरी का मामला गांव-गांव तक पहुंच गया है और इस बार बीजेपी को न चंदा मिलेगा, न चढ़ावा और न ही वोट। उन्होंने बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया।
1: यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है।
0: चढ़ावा चोरी मामले पर अयोध्या बार एसोसिएशन ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस को दी गई इस शिकायत में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के अलावा ट्रस्ट सदस्यों अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर चोरी की साजिश में शामिल होने का आरोप है। चारों ओर से ट्रस्ट पर उठ रही उंगलियों के बीच असल मुद्दा कार्रवाई का है। 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने की संभावना है। ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों को स्वीकार करने पर फैसला 2/3 बहुमत से ही संभव है। इस बीच इस बात की संभावना भी बन रही है कि आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन घर पर बुलडोजर चले। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या के सादतगंज में बन रहे मकान को लेकर लवकुश की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने को लेकर नोटिस दिया है। फरवरी 2026 से बन रहे इस मकान को लेकर सुप्रिया को 15 दिन में जवाब देना है। चढ़ावा चोरी कांड में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के जुर्म कबूलने के बाद नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित के हाथ में करेंसी नोटों के बंडल का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो जांच के दायरे में आ चुका है। वैसे जब ट्रस्ट सवालों के घेरे में है तब ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने सारा ठीकरा SBI पर फोड़ा है।
2: गिनती को लोगों ने जो गिनती में लोग लाते बैंक द्वारा लाए गए उन लोगों ने कुछ गड़बड़ी जरूर की, क्योंकि बाद में पकड़े गए उनके घर पर भी छापे पड़े और वहां भी कुछ पैसा बरामद हुआ। नियमित कर्मचारी नहीं थे उन्हीं लोगों ने, कोई उनकी परमानेंट नौकरी थी नहीं, उन्हें कोई डर तो था नहीं, अपना हेरा फेरी कर लिया।
0: जबकि चढ़ावा चोरी के दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दे रहे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किसी को विपक्ष के बहकावे में नहीं आना चाहिए।
3: जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये मामला बीजेपी की राजनीतिक परीक्षा का मसला बन चुका है। ऐसे में SIT को 15 दिन जांच का मौका और मिला है। आज तक ब्यूरो।

0: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब देखिए 7 तक मारिया के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: आलिया शकील शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमित शाह के घर बीजेपी की बड़ी बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन समेत संगठन महासचिव भी मौजूद, संगठन स्तर पर पदाधिकारियों और बदलाव पर चर्चा की संभावना। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव ने फिर से की चढ़ाई, कहा बीजेपी को ना मिलेगा चंदा ना वोट, जांच के लिए एसआईटी टीम फिर पहुंची अयोध्या। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव की रेस में असादुद्दीन ओवैसी भी कूदे, कहा उत्तर प्रदेश में बदल देंगे पूरा गेम, फिलहाल उम्मीदवार उतारने का ऐलान नहीं। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी, पीएम मोदी ने बताया विकास यात्रा का अहम भागीदार, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। केतन हत्याकांड में कत्ल की साजिश के लिए रिहर्सल करने वाली जगह पर पहुंची पुलिस, आरोपी सिया भी थी साथ, पुलिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मांगी मंजूरी। शो की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बहुत ही अहम बैठक चल रही है, बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और जनरल सेक्रेटरी जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो भी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल अपॉइंटमेंट्स होने वाले हैं, पदाधिकारियों की जो सूची तैयार होने वाली है उस पर चर्चा हो रही है। ये एक अहम बैठक है, आपको याद दिला दें कि बहुत चर्चा चल रही है कि क्या कैबिनेट रीशफल भी जल्दी होगा, लेकिन ये भी बात है कि उससे पहले नितिन नवीन जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनकी टीम का ऐलान होगा। तो कौन कौन होगा नितिन नवीन की नई टीम में उस पर भी चर्चा हो रही है। ये एक अहम बैठक है जो गृह मंत्री के घर पर हो रही है। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, कौन कौन है इस मीटिंग में मौजूद?
1: देखिए बारे में पहले तो आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि जो हमें नजर आ रहा है पिछले कई दिनों से कई सारी बैठकें चल रही हैं और दो अहम मुद्दे जिनके ऊपर बातचीत इस समय चल रही है, एक तो बड़ा कैबिनेट रीशफल, कौन लोग होंगे, कौन से ऐसे नए चेहरे होंगे जिनको इंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि एक चीज बारिया जो सूत्रों से साफ हो रही है वो ये है कि जो एवरेज एज है उस एज को भारतीय जनता पार्टी अब करेगी कम, यानी कि आप बहुत से नए चेहरे, युवा चेहरे अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखेंगे। और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, उनके ऊपर भी पिछले बीते समय के अंदर हम देख रहे हैं कि काफी समय से बातचीत चल रही है, मीटिंग्स पर मीटिंग चल रही है, ये भी एक बहुत अहम बैठक है। हम देख रहे हैं कि बैठक के अंदर जो हमें समझ आता है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से बदलाव होंगे, इन सब के ऊपर एक बहुत भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी वो भी मौजूद हैं, आगे किस तरीके से चढ़ना है। और देखिए एक बहुत अहम बात जो हमें अभी भी समझ आती है, जो मॉनसून जो हम देखेंगे आगे, जब ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो भी कई बार कई मुद्दों के ऊपर उंगली उठा चुकी है, तो उन सबको किस तरीके से टैकल करना है और कौन कौन से वो अहम बिल हैं जिन सबको लेके आएंगे, तो इन सब के ऊपर विस्तार के अंदर बातचीत इस समय चल रही है।
0: जी, संसद का मॉनसून सत्र 21 तारीख से शुरू होने वाला है, उससे पहले ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कैबिनेट रीशफल और ऑर्गेनाइजेशन रीशफल दोनों होगा। अब रुक करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी की जांच में, जो हर दिन एक नए खुलासा आ रहा है। इस बीच अब अयोध्या में बार एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया है, जो चंपत राय की भूमिका को लेकर बड़े सवाल उठा रहा है।
2: राम मंदिर की जांच पर सवाल खड़े करते हुए अयोध्या बार एसोसिएशन के वकील आज सड़कों पर उतरे। वकील ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, इस्तीफा दे चुके ट्रस्टी अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंचे, जहां तीनों पर संगीन आरोप सबूतों के साथ पेश करने का दावा बार एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है।
3: एरियर जो है चंपत राव, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कई कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ हम लोगों ने दिया है और यहाँ पे गए कापी उन्होंने रिसीव करके हमको जीडी कापी और पीली पर्ची जो जन्म सुनवाई वाली उन्होंने दे दिया है और उन्हें बताया कि भाई उच्चाधिकारियों से बात करके आगे की कार्रवाई करके आप लोगों को सूचित करेंगे, हम लोग इनके विश्वास पे जा रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करेंगे।
2: सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के सभी सदस्यों से पुलिस पूछताछ कर सकती है। वहीं मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव के बयान भी जल्द दर्ज किए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो पूछताछ में पूर्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपनी भूमिका से इनकार करते हुए जिम्मेदारी टिन्नू यादव पर डाली है। हालांकि निगरानी में चूक की बात स्वीकार की है। इस बीच ट्रस्ट के लोग अब गड़बड़ी के लिए बैंक कर्मियों को जिम्मेदार बता रहे हैं।
4: चूंकि गड़बड़ी जो हुई वो दान पेटियों के खुलने पर उसकी गिनती को लोगों ने जो गिनती में लोग लाते बैंक द्वारा लाए गए उन लोगों ने कुछ गड़बड़ी जरूर की।
2: इसके अलावा सभी आरोपियों की संपत्तियों को खंगाला जा रहा है। जांच में कई बेनामी संपत्तियों के भी सबूत मिले हैं। अयोध्या ही नहीं लखनऊ नोएडा और बाकी और राज्यों में भी इनकी संपत्तियां होने का शक है। पुलिस ये पता कर रही है कि आखिर किसकी कितनी संपत्ति है। पुलिस संपत्तियों की रजिस्ट्री की कॉपियां भी निकाल रही है। इसके बाद अगर कहीं बड़ी संपत्ति पाई जाती है तो केवल चंपत राय और अनिल मिश्रा ही नहीं बल्कि ट्रस्ट के और भी बड़े नामों से पूछताछ होगी। इस बीच आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है।
5: मुख्य आरोपियों में शामिल लवकुश मिश्रा के इस मकान जो उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर मौजूद है इसको भी अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस दिया जा चुका है।
2: एक और एसआईटी की जांच तेज है तो वहीं बड़े चेहरों को बचाने के आरोप जांच टीम पर लग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: सवाल भक्तों की आस्था का है जिसे राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के चश्मे से देखती हैं। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर छोड़ता नहीं दिख रही। वहीं चढ़ावा चोरी को लेकर शुरू हुई जांच अब भर्ती घोटाले तक पहुंच गई है।
2: जिस राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी हमेशा फ्रंट फुट पर खेलती थी आज उन्हीं मुद्दों का बाउंसर विपक्ष की ओर से फेंका जा रहा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि यूपी सरकार की एसआईटी जांच सिर्फ दिखावा है जिसने छोटी मछलियों को पकड़ा है जबकि लूट को मिले संस्थागत समर्थन पर हाथ नहीं रखा गया है। उधर अखिलेश यादव ने इसे अब सीधे वोटों से जोड़ दिया है।
6: यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है।
2: पूरा खेल अब चंपत राय के चारों ओर घूम रहा है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हो गई है और वो चंदे में हेरा फेरी के विवाद के बाद लगे दाग के साथ काम जारी नहीं रखेंगे। एकांत में रह रहे चंपत राय ने कहा है कि उनके ट्रस्ट के साथ धोखा हुआ है। चंपत राय के भविष्य का फैसला 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी अब ट्रस्ट के पिछले 5 सालों के ऑडिट का दोबारा ऑडिट करेगी। सूत्रों के मुताबिक दान में मिले जेवरात का ऑडिट नहीं हुआ जिससे ट्रस्ट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जांच में अनिल मिश्रा गोपाल राव और चंपत राय की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई जा रही है। इस बीच राम मंदिर में भर्ती को लेकर भी अब घूसखोरी के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि 125 कर्मचारियों की नियुक्तियों में रिश्वत ली गई। संगठित भर्ती रैकेट चल रहा था जिसमें बड़े चेहरे शामिल थे। अविनाश शुक्ला से पूछताछ के बाद रिश्वतखोरी की ये कहानी सामने आई। अविनाश शुक्ला ही वो शख्स है जिसका इस पूरे प्रकरण में अहम किरदार रहा। इस वीडियो को देखिए, ये अमित शुक्ला है, अविनाश शुक्ला का भाई। इसके हाथ में नोटों की गड्डियां दिख रही हैं। ये एक साल पहले का वीडियो है जो अब वायरल हो रहा है।
7: जांच एजेंसियों की कोशिश ये पता लगाने की भी है कि ट्रस्ट में भर्तियों से पहले पैसों का आदान प्रदान हुआ या नहीं, खासकर हायरिंग से पहले और हायरिंग के बाद। इसको लेकर वित्तीय विभाग और बैंक डिटेल्स को इस वक्त जांच एजेंसियां खंगालने में जुटी हुई हैं। बड़े पदाधिकारियों के बैंक अकाउंट्स भी खंगाले जा रहे हैं जिससे ये मालूम पड़ पाए क्या किसी जगह पर किसी डेट पर किसी तारीख पर उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें पैसों की बढ़ोतरी एकदम से हुई और अगर हुई तो कैसे हुई, कहां से हुई।
2: चढ़ावा चोरी का मामला अब भर्ती घोटाले तक पहुंच गया है, जिसने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात बंगाल की सियासत की, जहां सत्ता के चेहरे बदले तो सियासी बदले का प्रतीक अंडा बन गया। टीएमसी नेताओं पर जनता का गुस्सा अंडों के रूप में बरस रहा है, लेकिन टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। वहीं सवाल अब नेताओं की सुरक्षा का भी है।
2: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडों से हो रहे हमलों की नई शिकार सांसद महुआ मोइत्रा हुई हैं।
8: बताए पुलिस देखून देख पाचेन आवाज शुरू करे छे एई पताका चलबे।
2: नादिया में पार्टी कार्यालय के बाहर से अंडे और सब्जियां फेंके गए। महुआ ने खुद वीडियो शेयर किया।
9: खास करके अगर वो सांसद हो, उसको इस प्रकार से मारा जा रहा है, डीम फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है, नारियल फेंका जा रहा है, और नीचे लोग दिख रहे हैं जो बीजेपी का झंडा लेकर के हिला रहे हैं। साफ है, डीजीपी को फोन करके बताया गया, जगह बताया गया, सब कुछ महुआ मोइत्रा ने बताया, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ।
2: उधर अब टीएमसी के बागी और बीजेपी के सुर पूरे मामले में एक जैसे हैं।
10: जो लोग चोर है, डकैत है, माफिया है, लोगों का गुस्सा है उन लोगों के ऊपर। हमारा ये 65 एमएलएस में ऐसा एमएलए है, ट्रेन में आते जाते हैं, किधर भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, और चार्टर्ड माफिया का दिक्कत हो रहा है।
11: तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है, तो तृणमूल को इसको सलटाना चाहिए।
2: हाईकोर्ट की आपत्ति के बावजूद टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात जमीन को लेकर जारी सियासत की, जिसमें अब बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को घेरने की कोशिश की है। बीजेपी का आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा की भाभी सायरा वाड्रा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 4 एकड़ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है।
12: तो हर जमीन में भले वो प्रियंका वाड्रा हो या रॉबर्ट वाड्रा हो, उनके किसी न किसी परिवार के व्यक्ति के जरिए वो उस लैंड पे कब्जा करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो ओरिजिनल लैंड डीड किच्चा उधम सिंह नगर के अंदर 4 एकड़ का लैंड है, वो कुलसुम खान के नाम पे है, जहां 90 वर्षीय नसरीन खान रहती है। उस पर सायरा वाड्रा, जो प्रियंका वाड्रा की सिस्टर इन लॉ है, मतलब प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के परिवार से आती है, ये सायरा वाड्रा इस भूमि के ऊपर कब्जा करने का प्रयास कर रही है।
0: जापान के प्रधानमंत्री सनए टाकाइची इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: बेरहमी की तस्वीरें आ रही हैं।
1: मासूमों की चीखों में छिपा ये दर्द उन पर की जा रही बेरहमी की कहानी बयां कर रहा है। जून का ये वायरल वीडियो बेंगलुरु में आईटी कंपनी कैपजेमिनी के एचएल कैंपस में चल रहे डे केयर सेंटर का है, जहां 2-3 साल के बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है। वीडियो में बच्चा टॉयलेट में बंद है, फर्श पर लेटा हुआ है और जोरों से रो रहा है। एक महिला बच्चे के बिलखने का वीडियो बना रही है। एक और वीडियो में महिला बच्चे को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उसके मुंह पर जेट स्प्रे से पानी डाल रही है। इसके अलावा बच्चे को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम में बिठाकर रखा गया है, उसे डराया जा रहा है। बच्चा रो रहा है। एचएल पुलिस स्टेशन में 5 महिला केयर गिवर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। CCTV फुटेज और सभी दूसरे तकनीकी सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है।
2: They are verifying the facts, but whatever has happened is really very serious issue, and we will take stated action.
1: पुलिस में शिकायत के अलावा कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी केयर गिवर्स को नोटिस जारी किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। इन डे केयर में ज्यादातर आईटी कंपनी में काम करने वाले माँ बाप अपने महज 2-3 साल के बच्चों को छोड़कर जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जिन बच्चों के लिए वो कमा रहे हैं उन पर ऐसे अत्याचार किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात पुणे मर्डर केस की, जहां जांच में रोज नए खुलासे आ रहे हैं। पुणे पुलिस सिया और चेतन का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है, ताकि केतन मर्डर केस में कुछ और सच वो उगलवा सके।

0: सिया को लेकर उसके घर पहुंची पुणे पुलिस उसके बयानों को क्रॉस चेक करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने घर से 18 तारीख को घटना के दिन पहने गए सिया के कपड़े जब्त किए। वहीं करीब 1.5 घंटे तक घर की पड़ताल की। जांच में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सिया और चेतन ने लोहगढ़ किले से धक्का देने की रिहर्सल की थी। ये रिहर्सल सिया के घर के पास एक जगह की गई थी। पुलिस सिया गोयल को उस जगह पर लेकर भी पहुंची, जिससे साफ है कि केतन के कत्ल की योजना पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। इस बीच पुलिस ने आरोपी सिया गोयल का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की इजाजत के लिए वडगांव मावल कोर्ट में अर्जी दी है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन आगे की जांच के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के बयान के अलावा ऐसा कोई सीधा चश्मदीद गवाह या पक्का सबूत नहीं है, जिससे ये साबित हो सके कि केतन अग्रवाल को खाई में किसने ढकेला था। ऐसे में पुलिस को उम्मीद है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से जांच में नई कड़ियां मिल सकती है।
1: ऍडमिसिबिलिटी बद्दल अजून तो ग्रे एरिया आहे, त्याच्यामुळे आता त्याचा वापर त्यांच्या मनात म्हणजे पोलिसांच्या डोक्यात तर ते आहे करायचं, आता ते कसं होतंय ते बघूयात।
0: वहीं सिया का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक क्लब में बियर की बोतल के साथ जश्न करते नजर आ रही है, जबकि परिवार का दावा था कि उनकी बेटी शराब का सेवन नहीं करती। इस बीच केतन की सगाई का भी एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें केतन बहुत खुश नजर आ रहा है। वहीं परिवार भी अपनी इकलौती बेटी की शादी के जश्न में कोई कसर रखना नहीं चाहता था, लेकिन परिवार को क्या पता था कि जिन खुशियों को घर में लाने की वो तैयारी कर रहा है वही मातम की वजह बन जाएंगी। ओंकार वाबले, पुणे, आज तक।
2: अब बात बाजार की, कैसा है शेयर मार्केट का हाल और कहां तक पहुंचा है सोने चांदी का भाव, आइए देखते हैं।
3: कारोबार के दौरान खरीदारी के पॉजिटिव माहौल के बीच घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 579 अंक मजबूत होकर 77,502 और निफ्टी 170 अंक चढ़कर 24,176 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में तेजी आईटी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते देखने को मिली। शेयर बाजार की मजबूती के बीच रुपए पर दबाव बना रहा और डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे कमजोर होकर 95.40 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। रुपए में गिरावट मुख्य रूप से डॉलर की मजबूती और विदेशी

0: पूंजी निकासी के चलते हुई। वहीं सराफा बाजार में आज तेजी का रुख रहा और सोना 1,708 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 1,43,340 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी 3,863 रुपए बढ़कर 2,29,293 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। सोने चांदी में तेजी वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते आई है।
1: अब बात अमरनाथ यात्रा की, जिसका पहला जत्था आज जम्मू से रवाना हुआ, जहां भक्तों का काफिला कल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच जाएगा। देखिए अलग अलग कैंप से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
0: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का पहला जत्था निकल चुका है, बस थोड़ा इंतजार फिर साक्षात बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से पहले जत्थे की रवानगी हुई। उपराज्यपाल ने सुबह पहले पूजा अर्चना की, फिर श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को झंडी दिखाई और तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया।
2: इनका नंबर जो है पहले जत्थे में ही आ गया। देखिए बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और चेहरे पर इनके मुस्कान देखे, प्रसन्नता की अनुभूति देखे कि खासा उत्साहित है इस यात्रा को लेकर। जी आप बताइए आपका नाम?
3: दीपिका खंडेलवाल।
2: कहाँ के रहने वाले?
3: अलवर राजस्थान।
2: राजस्थान से। मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है इस यात्रा को लेकर?
3: मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ जाने के लिए, और सभी को यहाँ पे आना चाहिए और बाबा बर्फानी के दर्शन करने चाहिए।
2: तो आप पहली बार इस यात्रा के लिए?
3: मैं पहली बार आ रही हूँ।
0: शिव के धाम की तरफ श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं, डमरू बज रहे हैं, भक्तों का जोश हाई है।

0: अलग अलग कैंप में जत्थे तैयार हैं, जहां हर तरह के इंतजाम किए गए हैं।
1: बालटाल बेस कैंप पर मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं और यहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भोले बाबा के जो भक्त हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। लगातार ये लोग जम्मू से चल करके यहां पर पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग बाबा बर्फानी के दर्शन बालटाल बेस कैंप से सीधे यहां पर डोमेल होते हुए पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे।
0: शुक्रवार से यात्रा की विधिवत शुरुआत होगी और इसका समापन श्रावण पूर्णिमा को होगा। तीर्थ यात्री 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन तक भोले के दरबार में हाजिरी दे सकेंगे।
2: बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले।
0: जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, बेस कैंप बालटाल आज तक।
3: ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन।
6: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: You hear it once and remember everything.
8: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
7: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
9: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
10: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
11: Korean skincare brand, now in India.
12: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
13: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
12: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: देख, इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
2: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
1: अर्ज किया है, दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
3: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
4: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग रहे। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: वी आर ओवर जिमी।
12: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
13: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
14: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
15: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
16: कुछ तो बात है इस दिल में।
17: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
16: कुछ तो बात है इस दिल में।
18: पीमार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
8: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
9: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
10: कुछ तो बात है इस दिल में।
11: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
10: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
13: सरसों।
14: शेयर बाजार, जहाँ कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिजटेक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से, जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तर पर।
15: अल्फा,
16: आपने कहा था ये सबसे तेज है।
17: हाँ, कहा था, लेकिन ये तय कैसे होता है?
16: प्रेशर, जब पूरा देश जवाब ढूंढ रहा होता है तब ये सवालों के बीच खड़े हो जाते हैं।
18: पहला भारतीय चैनल,
16: ये हमेशा सबसे पहले पहुंचते हैं क्योंकि ये खबर का इंतजार नहीं करते, खबर तक पहुंचते हैं।
19: मणिपुर के उस ग्राउंड जीरो पर है।
20: जगह जगह लाक्षागृह चल रहे हैं जिनसे आपको खबरदार करने के लिए आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है।
21: बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रपति पुतिन आज तक पर आने के लिए।
16: सिर्फ अनुभव, उससे ज्यादा भरोसा।
21: आज तक की खबर का असर हुआ है,
16: हर दिन कमाया जाता है।
17: क्या ये आपके ऑपरेटिव्स हैं?
16: नहीं, ये भारत के ऑपरेटिव्स हैं।
17: अल्फा, अल्फा को पहचानते हैं।
22: भारत के अल्फा जर्नलिस्ट, भारत के सबसे बड़े अल्फा न्यूज़ नेटवर्क पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार ने एक नई ईवी पॉलिसी जारी की है, जिसमें बहुत से नए प्रावधान किए गए हैं। मेरी सहयोगी सोनल मेहरोत्रा कपूर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इस पॉलिसी के रिगार्डिंग बातचीत की, सुनिए।
4: दिल्ली के पास एक नई अब ईवी पॉलिसी है। ये पॉलिसी पहले भी थी, लेकिन इस बार जो उसके चेंजेस आए हैं वो अलग क्यों हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये सिर्फ इंसेंटिव्स नहीं देती, ये एक हार्ड डेडलाइन लगाती है कि कब आईस व्हीकल्स जो है, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स हैं, फेज आउट हो जाएंगे दिल्ली से। है और वो लेकर आई हैं रेखा गुप्ता, जो हमारे साथ आज बैठी हुई हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम मैम।
5: थैंक यू सो मच।
4: चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या आपके एग्जीक्यूशन प्लान्स हैं?
5: ये बात बहुत सही है सोनल कि इस ईवी पॉलिसी की सक्सेस बहुत बड़ी मात्रा में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है और वी आर रेडी फॉर दैट। हमने पूरी तरीके से उसको प्लान किया, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर है उसको पार्टी बनाया। वैसे तो जनरली लोग अपने प्राइवेट व्हीकल के लिए घरों से ही चार्जिंग करते हैं मैक्सिमम, पर फिर भी पब्लिक प्लेसेस पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसमें हमने ओईएम्स को इन्वॉल्व किया है, उसमें हमने सोसाइटीज के लिए, उसमें सरकार के द्वारा डीटीएल, हर एक एजेंसी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में मदद करे। और उसके लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंटली हमने सिंगल विंडो सिस्टम, ताकि लोग इसमें जो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें ईवी के लिए, उसमें उनको कहीं पे भी हर्डल फेस ना करनी पड़े। सरकार उनको पूरी तरीके से फैसिलिटी देगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस देगी, मोटिवेट करेगी, सपोर्ट देगी।
4: ये बात आप और हम दोनों जानते हैं कि जितनी हमारी दिल्ली में गार्बेज कलेक्शन ट्रक्स हैं, जो पुरानी ड्रग्स हैं, जो चाहे दिल्ली पुलिस यूज कर रही हो, जो पुरानी एमसीडी की ट्रक्स हैं, जो बाकी वाटर स्प्रेइंग एक्सेट्रा के लिए भी जो यूज होती है, असली पोल्यूशन तो इतनी पुरानी है, वो उन्हीं से निकलता है। उस पर आपको नहीं लगता है कुछ और देना चाहिए था?
5: आपको ये जानकर के खुशी होगी और दिल्ली की जनता को भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये पॉलिसी केवल पब्लिक के लिए नहीं है, ये केवल प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए नहीं है। सरकार ने भी पूरी तरीके से इसको फॉलो करने के लिए हर चीज को अडॉप्ट किया है। हमने दिल्ली में जो मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए एमआरएस मशीनें खरीदने के लिए जो टेंडर लगाए, वो भी दैट इज ओनली फॉर ईवी व्हीकल। हम ईवी ही ले रहे हैं। हमने अपने मैंडेट में ये भी रखा है, दिल्ली सरकार भी जो भी नए व्हीकल जो है परचेज करेगी या लीज करेगी, वो सब ईवी होने चाहिए।
4: ग्रिड इतना पावरफुल है कि इतना चार्जिंग प्रोवाइड कर पाएगा हमारा?
5: ये भी एक और डायमेंशन है जिसमें कि पूरी तरीके से हमारे ग्रिड्स, हमारे सब स्टेशंस को मजबूत किया जा रहा है। उसका भी लॉन्ग टर्म प्लान हमने बनाया है कि पीरियोडिकली हम उस पर कितना खर्च करने वाले हैं, अपने सब स्टेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, नो डाउट। आज यदि हम 9000 मेगावाट पे खड़े हैं तो हमें ये डिमांड लगातार बढ़ेगी, तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है उसको हम कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता को कहीं पे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ये सारे डिपार्टमेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं और उसको काम करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है।
4: पर असल कोऑर्डिनेशन जो आपको चाहिए ईवी के लिए और ईवी पॉलिसी लाने के लिए या प्रदूषण कम करने के लिए, वो सिर्फ दिल्ली का नहीं है, वो आपकी नेबरिंग स्टेट्स का भी है। वो कोऑर्डिनेशन आप कैसे लाएंगे?
5: ऑफकोर्स दिल्ली एनसीआर पूरा इसमें इन्वॉल्व है। दिल्ली के पॉल्यूशन केवल दिल्ली की समस्या नहीं है। आज हमें हमारे बॉर्डर एरिया, हमारा एनसीआर एरिया, हर जगह से इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत थी, जिसको केवल दिल्ली नहीं, मुझे इस बात की खुशी है ये बताते हुए कि चाहे वो हमारी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है, उसने हमारी पूरी मदद करी इसमें, हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी मदद करी, सीएक्यूएम ने, और
1: करिए थोड़े बताइए।
5: हर राज्य जो एनसीआर में हमारे ये जुड़े हैं इनको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आने के लिए इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपनी योजना हमको दी जिसमें कि ओल्ड बसेस को ट्रक्स को ईवी पे लेके जाने के लिए उन्होंने एनसीआर के हर जिले को मदद करने की बात कही और उसमें जो 8% सब्सिडी की मैंने बात कही या उसमें लोन के ऊपर जो रिबेट है 5% का वो दिल्ली एनसीआर के हर जिले को केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है और दिल्ली की जब ये ईवी पॉलिसी लागू होने के बाद हमारी यही ईवी पॉलिसी को बाकी राज्य भी फॉलो करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और केंद्र इसमें इनिशिएटिव ले रहा है, सीएक्यूएम इसमें इनिशिएटिव ले रही है, हर व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पे आकर किसकी चिंता कर रहा है। मुझे लगता है कि ये विषय सिर्फ दिल्ली का नहीं है, ये देश की राजधानी का विषय है और इसलिए हर सरकार विशेष रूप से केंद्र सरकार इसमें जुड़ी है और उनका पूरा बैकअप हमें मिल रहा है, पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है।
6: लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपके हिसाब से आफ्टर ईवी पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड, हम 27 का नंबर लेकर चलते हैं जनवरी, हाउ मच ऑफ पोल्यूशन विल कम डाउन?
5: आप ये देखिए परसेंटेज में या टाइम में अगर हम पोल्यूशन को बांधेंगे तो मैं यही कहूंगी कि पोल्यूशन तो भाई बांधने वाली चीजों में तो नहीं है। इस ईवी पॉलिसी के साथ और ईवी पॉलिसी के अलावा भी जो मेजर्स हम लोग कर रहे हैं, हम 70 लाख पेड़ पौधे इस एक साल में लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ईवी पे लेकर के जा रहे हैं, हमने डस्ट मिटिगेशन पे बड़ा काम किया है और इस सब चीजों को जोड़ते हुए जब सारी चीजें अलग अलग डायमेंशन में काम करते हुए भी हम जब एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी तादाद में जनता ईवी को अडॉप्ट करना शुरू करेगी उतना ही धीरे धीरे करके बाकी सारे एफर्ट्स करते हुए हम पॉल्यूशन को कम करते हुए जाएंगे। आज जितना हम कर रहे हैं क्या पिछली किसी सरकार ने इतना किया? ऑड इवन, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, इंजन ऑफ, इसके अलावा क्या किया पिछली सरकारों ने? ईवी पॉलिसी लेकर के आए पर उसकी सब्सिडी नहीं दी, उस सब्सिडी को भी हमारी सरकार ने आने के बाद पे किया है। अगर हम चाहते तो वो पेमेंट ना करते पिछली सरकार के टाइम की, पर जनहित में 45 करोड़ रुपए वर्तमान की सरकार ने पिछली सरकार की लायबिलिटी को पे किया। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इस शहर को बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि दिल्ली की जनता जो चाहती है हम वो काम कर रहे हैं।
6: थैंक यू सो मच, दिस इज अ गुड चैट,
5: थैंक यू सो मच।
7: अब बात झमाझम होती बरसात की, मॉनसून अब पूरे देश में आ चुका है और जमकर बरस रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मॉनसून जून में कम हुई बारिश की भरपाई कर पाएगा, क्योंकि जून के हालात तो ये बता रहे हैं कि सामान्य से करीब 40% बारिश कम हुई है, लेकिन अब तो जमकर हो रही है। अगले 3 महीने अगर यही जमकर बारिश होती रही तो क्या ये डेफिसिट की स्थिति संभल सकती है? इसे आंकड़ों से समझिए। मौसम विभाग ने 1951 से 2025 तक का रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि इन सालों में 26 बार जून की बारिश नॉर्मल से कम रही। इनमें से सिर्फ 8 साल यानी 31% मामलों में पूरा मॉनसून सीजन भी कमजोर रहा। 15 साल यानी 58% बार जुलाई से सितंबर की बारिश ने कमी पूरी कर दी और सीजन सामान्य रहा। 3 साल यानी 12% में तो पूरा सीजन सामान्य से भी ज्यादा बरसा, यानी 70% बार कमजोर जून के बाद भी मॉनसून संभल गया।

0: पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। भगवान बद्रीनाथ और बाबा केदारनाथ की यात्रा में रुकावटें शुरू हो गई। आस्था ने इस बार बद्रीनाथ और केदारनाथ में रिकॉर्ड तोड़े हैं। मई और जून में लोगों ने जमकर दर्शन किए। उत्तराखंड में मॉनसून लेट भी था, लेकिन अब आया है तो जमकर बारिश हो रही है। और इसके साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ों की हर साल की बरसात वाली समस्याएं भी शुरू हो गई हैं। यानी पहाड़ों से सड़कों पर मलबा आना, पत्थर आना, भूस्खलन होना, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर यात्रा रोकनी भी पड़ी है। ये केदारनाथ जाने वाला रास्ता है जहां भारी बारिश के बाद भूस्खलन हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऊपर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं और यात्रा मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं। पत्थर हटाए भी जा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से यात्रा को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा है। सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग पर मुनकटिया में पहाड़ी से भूस्खलन हो गया। भारी बारिश के कारण पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर गए, जिसकी वजह से सुरक्षा के चलते केदारनाथ आने जाने वाले यात्रियों को रोका गया। ये मोटर मार्ग है, लेकिन खतरे की वजह से यहाँ से यात्रियों को रास्ता पैदल ही पार करवाया गया। बहुत देर तक मोटर मार्ग को बंद भी करना पड़ा, लेकिन बाद में इसे खोल दिया गया। लेकिन मौसम भले ही खराब हो, बरसात जारी हो, भूस्खलन हो रहा हो, यात्रा रोकनी पड़ रही हो, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है। केदारधाम में भक्तों का उत्साह बना हुआ है। बीते 3 दिनों से केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या कुछ कम जरूर हुई है। वैसे अब तक 13,80,000 से ज्यादा यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। भारी बारिश के अलर्ट पर प्रशासन की तरफ से यात्रियों को रोका जा रहा है। बारिश की वजह से यात्रा पर ब्रेक लग रहा है, लेकिन कुछ देर बाद यात्रा फिर से शुरू हो जाती है। मंदिर परिसर भक्तों से भरा नजर आ रहा है।
1: रेड अलर्ट या येलो अलर्ट आता है, उसके आधार पर यात्रियों को रोका जा रहा है, और ये उनकी सुविधा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए है। क्योंकि यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट है, ऐसी परिस्थिति में लोग जगह जगह खुद भी रुक जाते हैं बारिश को देख करके, और प्रशासन भी उनके रुकने की व्यवस्था करता है। तो ये कहीं ना कहीं यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत किया जाता है।
0: केदारनाथ ही नहीं, भगवान बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता भी जगह जगह बंद हो रहा है। चमोली में देर रात से भारी बारिश जारी है, जिसकी वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आवाजाही रोकी गई है। जोशीमठ और पीपलकोटी के बीच गुलाबकोटी के पास नेशनल हाईवे पर मलबा आ गया, और साथ ही सड़क भी कई जगह धंस गई है। इसकी वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई घंटे तक पूरी तरह से बंद रहा और शाम को 4:30 बजे खुला। बद्रीनाथ और हेमकुट साहिब जाने और आने वाले यात्री बहुत देर तक फंसे रहे। सुबह से जो यात्रा रुकी थी वो शाम को जाकर फिर से शुरू हो पाई। ऐसा नहीं है कि भारी बारिश ऊपर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में हो रही है, बल्कि निचले इलाकों में भी यात्रा मार्ग पर भारी बरसात है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर धारी देवी के पास सिरोबगड़ डेंजर जोन से बोल्डर गिर रहे हैं, जिस कारण घंटों तक यातायात बाधित हो रहा है। तीर्थ यात्रियों को खासी दिक्कतें हुई, यहां भी घंटों तक जाम लगा रहा। उधर अलकनंदा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी से 30 मीटर दूर स्थित भगवान शिव की विशाल मूर्ति भी कमर तक पानी में डूब चुकी है। यात्रा मार्ग में आ रही इन दिक्कतों की वजह से चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी कमी भी नजर आ रही है। भगवान बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा नदी भी जबरदस्त उफान पर है। बुधवार से ही लगातार भारी बारिश हो रही है। और इस
2: बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां मुमरा इलाके में बारिश के पानी में करंट आने की वजह से 17 साल की एक बच्ची की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बच्ची का नाम आलिया है, जो अपने घर से जैसे ही बाहर निकली वहां जमे बारिश के पानी में उसे करंट का झटका लगा। हादसे के बाद तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। हादसे को लेकर पुलिस और संबंधित विभाग जांच में जुटे हैं। विशेष में वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
1: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
2: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
3: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है
4: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें
3: जिंदल स्टेनलेस इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट वो भी हर महीने
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ
7: सोच बदलो और बैंक भी
8: वी आर ओवर जिमी
9: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा आप अपना देख लो
10: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है
11: कुछ तो बात है इस दिल में
12: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी ये आपके लिए
11: कुछ तो बात है इस दिल में
13: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933
14: सरसों से सरसों
15: सोशल मीडिया ऐप सरकार के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं व्हाट्सएप ने भी एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है इस फीचर का नाम है यूजर नेम इस फीचर की खासियत है कि जो लोग अपना फोन नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो यूजर नेम शेयर करके कनेक्ट हो सकते हैं यानी बिना फोन नंबर दिखाए व्हाट्सएप पर चैटिंग हो सकेगी व्हाट्सएप का गोपनीय पहचान वाला ये फीचर भारत सरकार की कड़ी निगरानी में है सरकार ने कंपनी से 3 दिन के अंदर इस फीचर की पूरी जानकारी भी मांगी है नोटिस में कहा गया है कि केंद्र को आशंका है कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी फिशिंग हमले डिजिटल गिरफ्तारी और घोटालों में वृद्धि हो सकती है सरकारी विभागों बैंकों और अन्य संस्थानों से मिलते जुलते नकली यूजर नेम का दुरुपयोग लोगों को धोखा देने के लिए किया जा सकता है सूत्रों के मुताबिक सरकार ने मेटा से पूछा है कि ऐसे मामलों में फर्जी अकाउंट कैसे रोके जाएंगे अपराधियों की पहचान कैसे होगी और कानून लागू करने वाली एजेंसियां जरूरत पड़ने पर जांच कैसे करेंगी सरकार की सबसे बड़ी चिंता साइबर फ्रॉड और फर्जी पहचान को लेकर है सरकार का मानना है कि ऐसे फीचर को बिना पूरी जांच के लॉन्च करना सही नहीं होगा ब्यूरो रिपोर्ट आज तक
16: क्या था आयुष का मिशन अली चाकू रखने के पीछे आयुष का मकसद क्या था आयुष के पासवर्ड 2047 को डिकोड करने में जुटी पुलिस शामली पुलिस को आयुष मलिक के मोहम्मद अली बन जाने की जानकारी लगी तो उसने आयुष के घर की तलाशी दी और सर्च के दौरान घर से एक बड़ा चाकू बरामद हुआ और इस चाकू के साथ साथ आयुष की एक डायरी भी मिली जिस पर लिखा था आई एम ऑन अ मिशन ये शब्द शामली पुलिस को खटक गए अब सवाल ये है कि क्या आयुष किसी ऐसे मिशन पर था क्या आयुष को अली बनाकर किसी मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था आखिर क्या है आयुष का मिशन अली शामली धर्मांतरण केस में पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि जब आयुष मलिक को मोहम्मद अली बनाया गया तो उसने एक ईमेल आईडी बनाई थी और इसका पासवर्ड रखा था 2047 सूत्रों की माने तो 2047 पीएफआई का कोड वर्ड है जब NIA समेत देश के तमाम राज्यों की पुलिस ने PFI के बरामद किए दस्तावेज में 2047 का जिक्र पाया। PFI ने 2047 नाम से एक किताब तक छपाई थी। दावा है कि PFI ने साल 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश बनाने का लक्ष्य रखा है। आयुष खुद ये बता चुका है कि वो पाकिस्तान के मौलाना इसरार अहमद के वीडियो बहुत देखता था, तो क्या ईमेल आईडी का पासवर्ड 2047 रखने के पीछे आयुष के मोहम्मद अली बनने का कनेक्शन जुड़ा है? अब शामली पुलिस हर सवाल का जवाब तलाश रही है। अरविंद ओझा, शामली, आज तक।

पुलिस और एसआईटी के रडार पर हैं ये तीन चेहरे। इन तीन चेहरों को अब तक आपने बखूबी जान और पहचान लिया होगा। ये तीन चेहरे हैं चंपत राय, ट्रस्ट के महासचिव, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, ट्रस्टी गोपाल राव। इन तीनों पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने ट्रस्ट को कठपुतली की तरह चलाया। इन पर आरोप लग रहे हैं नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाने का, ट्रस्ट में चल रही अनियमितताओं की अनदेखी करने का। लेकिन अब तीनों से पूछताछ हो रही है। पहले चंपत राय से पूछताछ हुई और अब खबर आ रही है कि अनिल मिश्रा को भी अयोध्या पुलिस के सवालों का सामना करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अनिल मिश्रा ने सारा ठीकरा टिन्नू यादव पर फोड़ा। अनिल मिश्रा ने कहा कि नोटों की गिनती करने वाले टिन्नू के इशारे पर काम करते थे, मेरी इसमें कोई भूमिका ही नहीं थी। यानी अनिल मिश्रा ने अपनी भूमिका पूरी तरह से नकार दी। अनिल मिश्रा से जब ये पूछा गया कि मंदिर प्रबंधन में आपका दखल था तो कैसे करोड़ों रुपए पार हो गए और भनक नहीं लगी, इस पर अनिल मिश्रा ने कहा कि ट्रस्ट ने ही चोरी पकड़ी, जैसे ही पता चला फौरन जांच शुरू हुई, ट्रस्ट ने ही एसआईटी की मांग की। हाँ, अनिल मिश्रा ने इतना जरूर माना कि निगरानी में उनसे चूक हुई। आपको बता दें कि अनिल मिश्रा से पहले चंपत राय से भी पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों की माने तो पुलिस से चंपत राय ने कहा, चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं, चढ़ावा चोरी की इसकी जानकारी मिलते ही मैं सक्रिय हो गया, संदिग्धों को पकड़ा, एफआईआर भी कराई। हाँ, मैं मानता हूँ कि कोई हेरफेर ना हो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेरी थी। दरअसल चंपत राय के लिए बड़ी मुसीबत की वजह टिन्नू यादव है। टिन्नू से नजदीकी उनके गले की ऐसी हड्डी बन गई है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते। पूछताछ में पुलिस ने टिन्नू से उनके रिश्ते को लेकर सवालों की बौछार कर दी। इस पर चंपत राय बस इतना कह पाए, टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने पूछा रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया। इस पर चंपत राय का जवाब था, जरूरतमंदों को काम दिया। इसमें केवल मैं ही नहीं ट्रस्ट के दूसरे सदस्य की भी भूमिका रही। चंपत राय ही वो कड़ी है जिनसे पुलिस को अब दूसरे आरोपियों से पूछताछ में सामने खुलासों का मिलान करना है। चंपत ने क्या बताया और क्या छिपाया, इसी पर जांच एजेंसी चंदा चोरी के तमाम सिरे जोड़ पाएगी। लेकिन अभी जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो वाकई खलबली मचाने वाले हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: विशेष में आज मेरे साथ इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
3: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: अमित शाह के घर बीजेपी की बड़ी बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन समेत संगठन महासचिव भी मौजूद। कैबिनेट में फेरबदल और संगठन स्तर पर बदलाव को लेकर चर्चा की संभावना। चढ़ावा मामले पर अखिलेश यादव ने फिर की चढ़ाई, कहा बीजेपी को न चंदा मिलेगा न वोट। जांच के लिए एसआईटी टीम फिर पहुंची अयोध्या, आरोपी अविनाश शुक्ला से पुलिस की भी पूछताछ। २०२७ में यूपी विधानसभा चुनाव की रेस में असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे, कहा उत्तर प्रदेश में बदल देंगे पूरा गेम, फिलहाल उम्मीदवार उतारने का ऐलान नहीं। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी, पीएम मोदी ने बताया विकास यात्रा का अहम भागीदार, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा में करंट लगने से 17 साल की लड़की की मौत, बारिश के पानी में जाने से लगा जानलेवा झटका, कल डोंबिवली में भी खुले तार की चपेट में आने से महिला ने गंवाई जान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। जहाँ वो वक्त अब धीरे धीरे करीब आ रहा है जब या तो 5 जुलाई या 11 जुलाई के बाद किसी भी समय मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और हम लगातार इस खबर से आपको खबरदार कर रहे हैं। अब इस खबर के चौथे पार्ट की बारी है, जहां हम इस सवाल का जवाब तलाशेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार में चुनावी राज्यों यानी उत्तर प्रदेश के कितने मंत्रियों को जगह मिल सकती है, पंजाब के कितने मंत्रियों को जगह मिल सकती है।
1: चरैवेती चरैवेती के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था।
2: चरैवेती चरैवेती यानी चलते रहो आगे बढ़ते रहो, इस मंत्र पर चलकर देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर इतिहास रचने वाले नरेंद्र मोदी क्या इसी मंत्र के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार भी करेंगे? अगर हाँ तो सबकी नजर इस बात पर है कि किस राज्य से कितने मंत्री धीरे धीरे बढ़ेंगे या घटेंगे। क्या चुनावी राज्यों का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में ज्यादा बढ़ने वाला है? मोदी सरकार में इस समय देखें तो उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी को मिलाकर 11 लोग मंत्रिमंडल में हैं, बिहार से 8, गुजरात से 6, महाराष्ट्र से 6, मध्य प्रदेश से 7, कर्नाटक से 5, राजस्थान से 5, हरियाणा से 3, आंध्र प्रदेश से 3, ओडिशा से 3, असम से 2, झारखंड से 2, पश्चिम बंगाल से 2, तेलंगाना से 2, गोवा से 1, जम्मू कश्मीर से 1, केरल, उत्तराखंड, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 1-1 मंत्री हैं। अब सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर लगी है, जहां 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है, जहां से खुद सांसद प्रधानमंत्री हैं। क्या इस बार उत्तर प्रदेश का मोदी मंत्रिमंडल में दबदबा और बढ़ सकता है ताकि यूपी से मंत्री बनाकर विधानसभा चुनाव में पार्टी एक्शन मोड में दिखे? इस सवाल की वजह 2021 का मंत्रिमंडल विस्तार है, जब 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हुए मोदी मंत्रिमंडल के फेरबदल में अगर देश से कुल 36 नए मंत्री बने तो अकेले उत्तर प्रदेश से 7 नए मंत्री बने थे। तब 2021 के मंत्रिमंडल फेरबदल में उत्तर प्रदेश से मंत्री बनने वालों की संख्या 16 तक पहुंच गई थी। अभी यूपी से कुल 11 मंत्री हैं, जिसमें पीएम भी शामिल है, तो क्या ये संख्या अब की भी बढ़ सकती है?
3: 2014 और 2019 में मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से 9 मंत्री रहे हैं। 2024 में उत्तर प्रदेश के सांसदों की संख्या भले ही घट गई हो, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कम नहीं हुआ। 2021 के कैबिनेट विस्तार को देखें तो विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वहीं गुजरात, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर से भी नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।
2: उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी मंत्रियों को जाति वर्ग में देखें तो ओबीसी 4, ठाकुर 2, ब्राह्मण 1, जाट 1, दलित 2 और सिख 1। इनमें से पंकज चौधरी चूंकि यूपी बीजेपी अध्यक्ष बन चुके हैं तो एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले से हो सकता है इनकी जगह नया चेहरा शामिल हो। ब्राह्मण और पिछड़े दलित की संख्या भी यूपी से क्या बढ़ सकती है?
1: पिछड़ों को प्राथमिकता, जिनकी किसी ने सूद नहीं ली, हमने उनकी साधना की है, जिनको किसी ने पूछा नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है।
2: 2022 के चुनाव से पहले 2021 के मंत्रिमंडल विस्तार में गुजरात से आने वाले 2 मंत्री का प्रमोशन हुआ था, 2 नए मंत्री गुजरात से आने वाले नए चेहरे बने थे। इसी तरह 2022 के चुनाव से पहले 2021 के मंत्रिमंडल विस्तार में हिमाचल प्रदेश से आने वाले मंत्री अनुराग ठाकुर का प्रमोशन हुआ था, पंजाब से आने वाले हरदीप सिंह पुरी का प्रमोशन हुआ था, मणिपुर तक से एक नए चेहरे के तौर पर राज्य मंत्री का पद दिया गया था।
4: चुनावी राज्यों के अलावा चर्चा ये भी है कि रवनीश सिंह बिट्टू का कार्यकाल खत्म होने और हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाने के बाद अगर इन्हें कैबिनेट से हटाया जाता है तो पंजाब और दिल्ली से नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है।
2: पंजाब में चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है, यहाँ बीजेपी का अपना कोई लोकसभा सांसद नहीं। हालांकि पंजाब से आने वाले आम आदमी पार्टी के 6 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव को देखते हुए इनमें से किसी को मंत्री पद दिया जा सकता है?
5: हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे, या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें।
2: पश्चिम बंगाल से अभी दो मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में हैं, दोनों राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री एक भी नहीं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत और टीएमसी के बागी सांसदों के समर्थन के बाद बंगाल का वेटेज क्या मंत्रिमंडल में बढ़ सकता है? नीतीश कुमार की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी चाहती है कि उनको और जगह मंत्रिमंडल में मिले। अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार और आंध्र प्रदेश से भी नए चेहरे मंत्रिमंडल में दिख सकते हैं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: मॉनसून सत्र अब शुरू होने को है, 20 जुलाई के बाद इस सत्र की शुरुआत हो सकती है और उससे पहले 26 बागी सांसदों का समर्थन एनडीए को हासिल हो चुका है। ऐसे में एनसीपी शरद पवार गुट को लेकर भी कई बातें हो रही हैं कि क्या वहां से भी कुछ सांसद छिटक सकते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के विलय की बातें होने लगी हैं। इस सब के बीच तृणमूल कांग्रेस का जो बागी धड़ा है उसने खुद को असली टीएमसी कह दिया है।
2: सियासत में बहुमत का मिशन इम्पॉसिबल कुछ ऐसा चल रहा है कि पूरब में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक सब कुछ हिल चुका है। बंगाल की तृणमूल कांग्रेस में टूट के बाद महाराष्ट्र में दरकते दलों की हालत देख अब शरद पवार की पार्टी सहमी हुई। पहले बंगाल की बात करें तो बंगाल में रस्सा कशी चल रही है कि असली टीएमसी कौन। इसी का दावा करने के लिए टीएमसी बागी गुट के 10 नेता दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने पेश होते हैं, टीएमसी के नाम निशान पहचान पर दावा करते हैं।
6: तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस है, नाम और निशान तो हमारा ही है।
7: ग्रुप राय के सिलेक्ट करा हुए छे एस चेयरपर्सन, इलेक्ट करा हुए छे एस चेयरपर्सन थ्रू द मीटिंग इन विच द एनसीडब्ल्यू गॉट फॉर्म्ड।
2: दरअसल 22 जून को टीएमसी के बागी गुट ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली, अरूप राय को पार्टी का अध्यक्ष बना लिया, ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहब, विप्लव मित्रा को महासचिव, फिरहाद हाकिम, अरूप विश्वास, रथिन घोष, सबीना याकमीन उपाध्यक्ष बन गए। कुल 30 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन गई। बंगाल में जो कुछ हो रहा उसे देखकर महाराष्ट्र की सियासत में शक सुबह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब से उद्धव की पार्टी के सांसद थोक भाव में शिंदे की पार्टी से जा मिले तब से शरद पवार की पार्टी को लेकर अफवाहें उड़ाई जाने लगी। कभी संजय राउत कांग्रेस में महाविलय का आइडिया दे देते हैं तो वेरंटीवार कह देते हैं कि हाँ दिल्ली में बात चल रही है, तो कभी ऑपरेशन तुतरी का दावा करते हुए एनसीपी के धर्मराव अतराम पवार के 8 में से 5 सांसदों को अपनी एनसीपी में विलय की प्लानिंग वाली बात कह देते हैं, और कभी दोनों एनसीपी के ही संपूर्ण विलय का शगुफा सामने आ जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि ना तो पार्टी कांग्रेस में मिलेगी ना ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने में लगी एनडीए का ध्यान एनसीपी शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है, और ये संभावना जताई जाने लगी क्योंकि कांग्रेस एनसीपी विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी के सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते, न ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है, क्योंकि टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं गठबंधन को भी है। ऊपर से पवार उद्धव कांग्रेस वाली अघाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों की गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार जैसे बड़े नेता नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जता दी थी, लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो यह है कि एक दिन पहले ही सचिन अहीर ने उद्धव का साथ छोड़कर डिप्टी चेयरमैन का पद चुन लिया। वैसे फिलहाल शरद पवार की पार्टी में 8 सांसद और 10 विधायक हैं। 2/3 टूट के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की जरूरत होगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब कभी भी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के की नई टीम का ऐलान हो सकता है और उसके फौरन बाद मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा हो सकती है, तो उससे पहले दो और अहम तारीखों को समझ लीजिए, दो और अहम तारीखों को नोट कर लीजिए। ये तारीखें किस लिए महत्वपूर्ण हैं वो भी हम आपको समझाते हैं। 9 जुलाई को जनसंख्या असंतुलन को लेकर गृह मंत्रालय में अहम बैठक होगी। इस बैठक में सभी राज्यों के डीजीपी और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में उन चिन्हित किए गए इलाकों की पहचान होगी जहां जनसंख्या असंतुलन की जानकारी मिली है। वहीं दूसरी तरफ अगली तारीख नोट कर लीजिए, 17 जुलाई, जब 130वें

0: ये देखो भाई अलाइविल तिलक का टेढ़ा हो चुका है इसका।
1: 12,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे अगर पहली बारिश में यू सरेंडर कर देगा और अलाइविल टेढ़ा कर देगा तो जनता की कमर का हाल सोचिए।
2: भाजी कल बरसात हुई थी, बरसात में जो है इसमें 2-4 गड्ढे बन गए थे, ये सब जो है फिर इन्होंने बना दिए। अब कोई दिक्कत नहीं है, सही तरीके से हो रही है, वैसे कुछ भी नहीं है।
1: जनता खुद ही यहाँ अपने नुकसान के बाद लोगों को जागरूक करती दिखी, वो अलग बात है। NHAI वाले दावा करने लगे कि वो तो खुद ही पेट्रोलिंग करके इस गड्ढे को खोज लिए थे। जहाँ गड्ढा ढाक मूंद कर फिलहाल रफा दफा मामला किया गया है।
3: दिल्ली हाईवे की जो जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे थे उसमें, और आज हम उसी लोकेशन पर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो लोकेशन दिखाए, और कल NHAI के कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने मौके पर आके ये गड्ढे भर तो दिए हैं, लेकिन ये गड्ढे अभी क्षतिग्रस्त हैं। यहाँ पर जो गाड़ी आ रही है वो धड़ाम से बहुत आवाज़ कर रही है।
1: 2 महीने के भीतर शामली के पास एक्सप्रेसवे के गड्ढा होने के बाद NHAI का बयान आया है। NHAI कहता है कि सड़क की सतह धंसने की घटना बारिश के बाद पानी जमा होने और उस जगह पर परमानेंट क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम चालू करने में आ रही दिक्कतों के कारण हुई है। NHAI का दावा है कि इस जगह पर बारिश के पानी को सड़क के दूसरी तरफ सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए बनाए गए बैलेंसिंग कलवर्ट को चालू नहीं किया जा सका, क्योंकि स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। बैलेंसिंग कलवर्ट का मतलब होता है एक्सप्रेसवे के नीचे बनी एक विशेष प्रकार की पुलिया, जिसका मकसद सड़क के दोनों ओर जमा हुए बारिश के पानी के स्तर को संभालना होता है, ताकि पानी के दबाव से सड़क को नुकसान न पहुंचे। मतलब NHAI की माने तो लोगों से जमीन लेकर उन्होंने एक्सप्रेसवे तो बना लिया, लेकिन पानी निकालने के लिए जो पुलिया बनानी थी वो जनता ने बनाने नहीं। तो फिर क्या ऐसे ही गड्ढा करने के लिए, हादसों को न्योता देने के लिए एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जहां जनता पर ही दोष मढ़कर अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश की जा रही है।
4: मानसून के आते ही सबसे ज्यादा हादसों की खबरें महाराष्ट्र से आती हैं, और एक एक करके हम तस्वीरों के जरिए आपको ये दिखाते हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से मेयर के सामने ही एक कर्मचारी खुले गटर में गिर गया था। फिर चेंबूर इलाके में पेड़ स्कूल बस पर गिरा, 11 साल के बच्चे की जान चली गई। इसके बाद भी हादसे रुके नहीं। मुंबई में अब असलम शेख नाम के शख्स की खुले मैनहोल में गिरने से जान चली गई। नवी मुंबई में कल बारिश के पानी में खुले तार की वजह से 2 छात्राओं को करंट लग गया। लगातार ये हादसे बताते हैं कि जो दावे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले करते हैं कि वो जमीन पर फेल है, पानी भर रहा है, तार खुले पड़े हैं, जनता की जान लगातार खतरे में। अब गुजरात के सूरत का हाल आपको दिखाते हैं। सूरत स्मार्ट सिटी है, कई मामलों में एक मिसाल उसने कायम की, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो डिंडोली इलाके की हम आपको दिखाते हैं, जहां पर एक सड़क कुछ ही दिनों पहले बनी, लेकिन जब मॉनसून की बारिश हुई तो पोल खुल गई। बारिश के बाद ऐसा गड्ढा हुआ कि टैंकर फंस गया। सूरत का वीडियो बताता है कि कहीं ना कहीं जो सड़क निर्माण है उसमें लापरवाही भी है, भ्रष्टाचार भी है, और इसका घालमेल भी है। सड़क पहली बारिश तक नहीं झेल पाती। और एक और खबर सूरत की हम दिखाते हैं, जहां गड्ढे में फंसी कार को निकाले बिना नगर निगम ने उस गड्ढे को भर दिया। वीडियो चर्चा में आया तो नगर निगम ने कहा कि कार वाले ने इंश्योरेंस लेने के लिए कार गड्ढे से नहीं निकाली, लेकिन ताकि और कोई हादसा न हो इसीलिए उस गड्ढे को भर दिया गया।
5: सिटी तो आपने बहुत सी देखी होगी, लेकिन हम आज आपको सूरत स्मार्ट सिटी के बारे में बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं, जो लगातार स्मार्ट सिटी विवादों में आ गई है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये सूरत शहर की जो है स्मार्ट सिटी है, और स्मार्ट सिटी की सड़कें देखिए आप, जहां तहां कैसे धस जाती है। ये आप पूरा टैंकर देख सकते हैं, आगे के जो व्हील है पूरे इसमें धस चुके हैं। ये सड़क है, आवाजाही वाहनों की यहाँ से चल रही है, और आप देखेंगे तो आगे की जो पूरा व्हील है, जो पूरा हिस्सा है, किस तरह से जो सड़क धसी है उसमें बैठ गया है। अब आप देखेंगे ये पूरा ड्रेनेज लाइन है, और शायद हो सकता है थोड़ी दिन पहले यहाँ पे डाली गई हो। ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये पूरा जो लंबी सड़क है ये पूरा है धस चुकी है। यहाँ पे देखेंगे आप, सिर्फ एक जगह की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा जो सड़क है यहाँ पर धस चुका है। तो सूरत के डिंडोली इलाके में स्मार्ट सिटी की तस्वीरें हैं। स्मार्ट सिटी में सड़क कहीं भी धस जाती है। मानसून की सीजन में लोगों के लिए सड़कों पर वाहन चलाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है।
4: मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अयोध्या जो चढ़ावा मामला है उसको लेकर भी खूब चर्चा है पूरे देश में। SIT की जो जांच चल रही है उसमें

0: रोजाना नई चीजें सामने आ रही हैं। इस सबके बीच अभी तक विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहे थे, लेकिन अब अयोध्या बार एसोसिएशन भी चंपत राय की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगा रहा है और 8 में से 1 आरोपी को लेकर योगी सरकार की तरफ से बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो चुकी है।
1: माफिया राज पर योगी सरकार का बुलडोजर चलते तो सबने देखा, धर्मांतरण करने वालों के साम्राज्य को भी योगी ने बुलडोजर से मिटाया। अवैध मस्जिद मजारों पर योगी का बुलडोजर चला है। अब प्रभु राम का चढ़ावा चुराने वाले आरोपियों का घर भी मिट्टी में मिलाया जाएगा। चढ़ावा चोरी में पकड़े गए 8 आरोपियों में से 1 लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। 2 मंजिला ये इमारत योगी सरकार के बुलडोजर की नई मंजिल होगी।
2: हमारे यहाँ जय प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं, भी होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लोकेश मिश्रा का। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें।
1: लवकुश की पत्नी के नाम पर बन रही एक इमारत को लेकर अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने 1 हफ्ते के भीतर लवकुश के परिजनों से जवाब मांगा है। साथ ही प्रशासन ने कहा है कि अगर जवाब नहीं मिला तो निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है।
3: आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर यानी कि सुप्रिया के नाम पर एक नोटिस थमा दिया है जिसमें निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है वो सही स्थान पर बनी है कि नहीं बनी है उसको लेकर ये नोटिस है। 1 हफ्ते के भीतर लवकुश मिश्रा के परिवार को जवाब देना है। अब इस मामले में बड़ी बात निकल कर सामने ये भी आ रही है कि अगर 1 हफ्ते में प्राधिकरण को परिवार के द्वारा सही जवाब नहीं मिलता है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी प्राधिकरण कर सकता है।
1: अयोध्या के सादतगंज का ये वही घर है जो लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा बनवा रही है। ये 2 मंजिला घर बिना नक्शा पास करवाए बनवाया जा रहा है।
4: मुख्य आरोपियों में शामिल लवकुश मिश्रा के इस मकान जो उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर मौजूद है इसको भी अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस दिया जा चुका है। ये अयोध्या की सुहावल तहसील का ये मकान है जो करीब 1000 स्क्वायर फीट का मकान है। वैसे तो लवकुश मिश्रा ने ये अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदा था। अयोध्या विकास प्राधिकरण के लोग आए थे यहाँ पर?
5: जी आए थे।
4: कब आए थे, क्या?
5: हम कल आए थे, पूछताछ कर रहे थे।
4: अच्छा
5: जी जी।
4: क्या करके गए?
5: कुछ नहीं, पूछा था सा मकान नंबर ये वो कौन सी हम क्या कैसे लगता है किसका मकान है इतना ही जानकारी है।
1: लवकुश मिश्रा की तरह उसकी पत्नी के बैंक खातों की जांच होने लगी है जिसमें बड़ी रकम होने का दावा किया जाता है। इस तरह चढ़ावा चोरी के इस आरोपी की ही नहीं बल्कि इसके पूरे परिवार की जांच हो रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
6: SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूँ जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रखेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्त भोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती।
1: इससे पहले लवकुश मिश्रा के पास से 500 के 2850 नोट यानी कुल 14,25,000 रुपए चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया था। चढ़ावा चोरी कांड में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के जुर्म कबूलने के बाद नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित के हाथ में करेंसी नोटों के बंडल का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो जांच के दायरे में आ चुका है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई जिसने विपक्षी दलों को योगी सरकार पर हमले का मौका दे दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी को भी बख्शने से इनकार कर इन सियासी हमलों की धार कुंद करने में जुटे जिसमें अल्पसंख्यकों और विरोधियों के घरों पर बुलडोजर की जानबूझकर कार्रवाई का इल्जाम भी शामिल है। लेकिन योगी सरकार चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई करके ये बताना चाहती है कि जो भी अपराधी है सबका हश्र एक होगा, लेकिन विपक्ष मानता नहीं। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है।
0: सोनम रघुवंशी याद है आपको, वो नई नवेली दुल्हन जिसने अपने पति की हत्या कर दी थी, हाईकोर्ट ने उसकी जमानत को बहाल रखा है। हालांकि इसके विरुद्ध मेघालय पुलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गई है, लेकिन इस मामले की चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सिया गोयल का मामला चल रहा है। सिया गोयल का मामला जहां पर इसी तरीके से उसने भी अपने होने वाले पति की, अपने मंगेतर की हत्या कर दी थी। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या उसे भी आसानी से जमानत मिलेगी। जानकार कहते हैं कि पुणे पुलिस के पास अभी तक इस मामले में कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं है, इसीलिए मुमकिन है कि उसके केस में भी ऐसा ही हो।

0: कि सिया की चाल ढाल पूरी सोनम से मिल रही है। सिया जब जेल से निकल वो पुलिस पकड़ के ले जा रही है सिया को, तो सिया है ना सोनम जैसी चल रही है। और छोटी सिया इसलिए किया जा रहा है कि सोनम जैसे ही कांड करा उसने, क्योंकि जैसे सोनम ने राजा को प्लानिंग बनाई थी ऐसी इसने भी 3-4 बार प्लानिंग बनाई उसको मानने के लिए। और इतनी मीठी मतलब बोल रही है, जैसे सोनम मीठी बोलती थी इसी तरह की ये सिया ने भी मीठी बोल बोल के वो लड़के को फंसाया। जैसे
1: सिया गोयल को छोटी सोनम बताने वाली राजा रघुवंशी की मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहू सोनम को जमानत मिलने के बाद इनकी हालत जल बिन मछली जैसी हो गई
0: है ना। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप तो बिल्कुल भी कि मतलब सोनम को मतलब जमानत की जगह मतलब जेल में डालना था तो उसको जेल में तो नहीं डाला और उसको जमानत दी गई।
2: तो के पति मरेंगे, के पति मरेंगे।
1: सोनम रघुवंशी पर अपने पति राजा को हनीमून पर मारने का आरोप, बावजूद इसके सोनम रघुवंशी को जमानत मिल जाती है। मेघालय पुलिस ने सोनम की जमानत बरकरार रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस खबर ने किसी तीर की तरह राजा रघुवंशी के माता पिता के दिल को छलनी कर दिया। छटपटाते हुए वो खबरदार करते थे, बस एक ही बात कहते हैं, अब छोटी सोनम भी छूट जाएगी।
0: मतलब हम यही चाहते हैं कि वो लड़के को न्याय मिले। तो मतलब यानी जब इस पर से हमारा भरोसा हट गया है कि हमारे राजा को न्याय नहीं मिला, तो आगे हमको मतलब सिया वाले केस में भी ऐसा लग रहा है कि वो भी 10-11 महीना में छूट के बाहर आ सकती है।
1: छोटी सोनम यानी सिया गोयल 20 साल की वो लड़की जिस पर 18 जून को अपने मंगेतर केतन को मारने का आरोप, जिस पर इल्जाम कि उसने पुणे के हंसते खेलते अग्रवाल परिवार की खुशियां इसलिए छीन ली क्योंकि उसे शादी की खुशी में नाच रहा केतन पसंद नहीं था।

0: केतन की मौत के बाद सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पुलिस के शिकंजे में है। सवाल है कि 20 साल की सिया कैसे सोनम की तरह छूट सकती है, जबकि उसके माता पिता ही अपनी बेटी का अपराध साबित होने पर बेटी को फांसी की सजा देने की मांग करते हैं।
1: अगर वो उसने ये
2: तो बोलता
1: गलत काम किया है तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे?
2: कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए।
3: मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए,
4: कम से कम सजा सिया को, सिया की फैमिली को दी जाए।
0: सिया भी सोनम की तरह बाहर ना आए, इसके लिए महाराष्ट्र पुलिस हर सबूत जुटाने में जी जान से जुटी। उसकी मुसीबत ये कि 18 जून को केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले से किसने धक्का दिया इसका कोई पक्का सबूत नहीं, इसीलिए पुणे पुलिस सिया गोयल का अब लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाने जा रही।
5: खबरें थी कि वो अपने बयान बदल रहे हैं और क्या पॉलीग्राफिक टेस्ट करने की जरूरत है हमें?
6: देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम अक्यूज के पास हमारा जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उस हिसाब से हम जो इनके पास इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
7: त्यांचा प्रयत्न आहेच ना तो लाय डिटेक्टरसाठी, काल त्यांची मागणी होतीच कोर्टामध्ये लाय डिटेक्टर टेस्ट त्यांना करण्याचा प्रयत्न आहेच त्यांचा। आता त्याची ॲडमिसिबिलिटी किती आहे काय आहे ते सगळं आता पुढचा मुद्दा आहे, कारण अशी लाय डिटेक्टर टेस्ट आजपर्यंत अनेक वेळा।
0: तो केतन अग्रवाल की हत्या कैसे हुई, किसने की, इस सवाल का जवाब पुलिस के पास तो है लेकिन कोई सबूत नहीं। हत्या का आरोप सिया गोयल और चेतन चौधरी पर है। अब पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए सिया गोयल का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की इजाजत अदालत से मांग रही है, ताकि केतन अग्रवाल के परिवार को इंसाफ दिलाया जा सके।
8: सर इसलिए कि आज मेरे बच्चे के लिए इतने लोग आए तो उन्होंने उसको भी अपना बच्चा समझा और यहाँ पहुँचे, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोगों ने इतना टाइम निकाल के आए मेरे लिए।
0: तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो हुआ वो केतन अग्रवाल हत्याकांड में भी दोहराया जा सकता है, क्योंकि पुणे पुलिस के पास सिया और चेतन के बयानों के अलावा ऐसा कोई सीधा चश्मदीद गवाह या पक्का सबूत नहीं जिससे ये साबित हो सके कि केतन को खाई में किसने धक्का दिया। एक्सपर्ट कहते हैं कि मेघालय पुलिस की तरह अगर पुणे पुलिस ने भी काम किया तो फिर सिया भी सोनम की तरह छूट सकती है, भले ही उस पर कुछ भी इल्जाम हो, क्योंकि अदालत सबूत देखकर फैसला सुनाती है और सिया और चेतन को दोषी ठहराने वाला सीधा ठोस सबूत अब तक पुणे पुलिस के पास दिख नहीं रहा है।
9: पॉलीग्राफ टेस्ट अक्सर ऐसे मामलों में कराए जाते हैं जहां पर सबूत पर्याप्त नहीं होते हैं या फिर कुछ कड़ियों को जोड़ने की जरूरत होती है, लेकिन बड़ी बात यह होती है कि ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं वो जांच में मदद जरूर करते हैं, एक तरीके से कड़ियों को जोड़ने में मदद करते हैं, दिशा देते हैं, लेकिन कोर्ट में एक सबूत के तौर पर ये नहीं इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इसीलिए पुणे पुलिस के लिए ये मामला बहुत टेढ़ी खीर साबित हो सकती है।
0: केतन के जाने के बाद उसके परिवार की खुशियां छिन गई, वहीं सिया का परिवार सामान्य जिंदगी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या सिया भी कुछ दिनों में सोनम की तरह बाहर आजाद जिंदगी जीती मिलेगी? इस सवाल की वजह सिया को केतन अग्रवाल की हत्या के लिए दोषी ठहराने का सीधा सबूत ना होना है, इसीलिए पुणे पुलिस परिस्थिति जन्य सबूत जुटाने में लगी, जो किसी घटना या अपराध को सीधे तौर पर नहीं दिखाता बल्कि कई अलग अलग कड़ियों को जोड़कर आरोपी के अपराध की तरफ इशारा करता है। इसलिए पुणे पुलिस कभी लोहगढ़ किले में मौका वारदात पर, कभी सिया और चेतन चौधरी को लेकर गई, वहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, साथ ही घटना को दोहराने के लिए एक डमी का इस्तेमाल किया गया जिसे वहीं से फेंका गया जहां से केतन को धक्का दिया गया था। इसके अलावा पुलिस ने चेतन चौधरी की चाल का भी विश्लेषण किया। इसकी नौबत इसलिए आई क्योंकि केतन की हत्या वाले दिन हुडी पहनने वाला शख्स चेतन चौधरी ही था, ये सीसीटीवी वीडियो को देखकर पता नहीं चलता, लेकिन पुलिस की कोशिश चाल का विश्लेषण करके ये साबित करना है कि हुडी पहने तेजी से सीढ़ियां चढ़कर केतन और सिया का पीछा करने वाला शख्स कोई और नहीं चेतन ही था। गेट एनालिसिस किसी भी व्यक्ति के चलने के तरीके का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। इसमें कदम रखने के ढंग, कदमों की लंबाई, शरीर का झुकाव, बॉडी मूवमेंट, चलने की रफ्तार, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। जिस तरह हर किसी के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, उसी तरह चलने का अंदाज भी सबका अलग होता है। इस तरह पुणे पुलिस केतन अग्रवाल हत्याकांड की एक एक कड़ी जोड़ रही है, ताकि अदालत के सामने जब ये मामला जाए तो खारिज ना हो, सिया को भी सोनम की तरह जमानत नहीं मिल जाए। पुलिस भी कहीं ना कहीं ये बात जानती है, इसलिए इस वारदात की हर एक कड़ी को बारीक से जोड़कर सबूत की तस्वीर बनाने में जुटी। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर चेतन की चाल का हुडी वाले शख्स से मिलान हो गया तो फिर ये फॉरेंसिक सबूत माना जाएगा। पुलिस पहले ही चेतन की हुडी और हेडफोन जब्त कर चुकी है। इसके अलावा जिस स्कूटी से चेतन लोहगढ़ किला पहुंचा, वो भी पुलिस के कब्जे में है। लोहगढ़ के रास्ते में पड़ने वाले टोल नाके के सीसीटीवी में अगर चेतन दिख गया तो ये भी काफी अहम होगा। इसके अलावा पुणे पुलिस की कोशिश उस कर्मचारी को भी सबूत की तरह पेश करने की है, जिसे चेतन ने लोहगढ़ जाने से पहले अपना फोन दिया। अगर उसने ये बात अदालत के सामने बता दी तो इससे पुलिस को इस मामले में मजबूती मिलेगी। सिया और चेतन के बीच 2000 से ज्यादा बातचीत की बात सामने आ चुकी है। अगर पुलिस ने दोनों के फोन कॉल्स, चैट्स भी जुटाकर पेश कर ये साबित कर दिया कि दोनों के बीच प्रेम का रिश्ता था, तो इससे पुलिस को ये बात साबित करने में आसानी होगी कि केतन को रास्ते से हटाने के लिए दोनों 18 जून को लोहगढ़ के किले गए। सिया की पुरानी तस्वीरें भी उसके खिलाफ जा सकती है, जिसमें वो अपना आपा खोते हुए दिखती है। ऐसी एक तस्वीर देखिए जिसमें सिया बियर की बोतल हाथ में लेकर फोन पर किसी को अपशब्द कहती दिखती है। बड़ी बात ये कि सिया के गुस्सैल स्वभाव को लेकर कैब ड्राइवर भी अपनी गवाही दे चुका है।
10: जो पिकअप किया इसमें दूसरा पिकअप लोकेशन पे जाते हैं।
11: अच्छा, मतलब सिया, चेतन, केतन और एक दूसरी लड़की, ये सब गाड़ी में थे।
10: हाँ, गाड़ी में थे सब।
11: अच्छा।
0: इन सब बातों को मिलाकर अगर पुणे पुलिस अदालत में ये बात साबित कर देती है कि सिया गुस्से में बेकाबू हो जाती है, तो उसे ये कहने में आसानी होगी कि केतन को नापसंद करने वाली सिया ने उससे छुटकारा पाने के लिए लोहगढ़ के किले से खाई में फेंक दिया, और इस वारदात में उसकी मदद उसकी बॉयफ्रेंड ने की, जो उसके साथ हत्या वाले दिन से एक दिन पहले पुणे के कैफे में हाथों में हाथ डाले दिखा। लेकिन सवाल है कि क्या पुणे पुलिस इन कड़ियों को इसी तरह जोड़ पाएगी, जिससे अदालत को उसकी बात पर यकीन हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर छोटी सोनम भी छूट जाएगी।
9: सोनम रघुवंशी वाले मामले में इन्वेस्टिगेशंस में जो त्रुटियां रही या जो छेद रह गए, वो किस तरीके से सिया गोयल मामले में भी खतरे की घंटी है, इससे जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेटर्स को सतर्क होने की आवश्यकता है।
12: पुलिस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पर एक अपनी पूरी कड़ी तैयार करती है, जैसे एक चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस होती है। चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस में हर कड़ी होती है, वो कड़ियों को जोड़ के पुलिस अपना पूरा रिपोर्ट तैयार करती है। हर एक कड़ी अगले कड़ी को लीड करती है, एंड इफ ऑल द सर्कमस्टेंसेस लीड टू वन पर्टिकुलर कंक्लूजन, देन उसके बिना पर दोषी साबित किया जा सकता है। सर्कमस्टेंसेस की सारी कड़ी पूरी होने पर ही पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगी, और रिपोर्ट फाइल करने के बाद सरकारी पक्ष अपनी पूरी केस कोर्ट में रखेगा, और उस बिना पर दलीलें रखी जाएंगी, जिससे इनका गुनाह साबित करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, और उसके बाद ही न्यायालय पूरी चीजें देख के अगर सारी सर्कमस्टेंसेस जुड़ रही है तो उन्हें दोषी करार करके सजा दे सकती है, या फिर कोई भी अगर चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस लूज होगी और इनको कनेक्ट नहीं कर रही होगी तो उन्हें निर्दोष मुक्त कर सकती है।
9: एक आरोपी को जमानत मिलना एक पीड़ित परिवार के लिए कितना दर्दनाक होता है, ये दिल्ली के सार्थक मट्टू केस से भी समझिए। 25 जून को एक तेज रफ्तार थार सवार उन्हें कुचलकर सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर भाग जाता है। अभी वो जमानत पर बाहर है, और जो बूढ़े माता पिता हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं।
13: पुलिस इज assuring us, reassuring us, but I don't know. There's nothing much. All, if we have any hope left, it's you media. So thank you very much. Really, our last hope is the media, so that our voices can be heard, so that it reaches to the proper forum, to the proper high ranking officials, you know, it reaches to them. Otherwise, we have no, there's no other way we can reach out to them.
14: PM sir ko kya karna hai? Ek sign karne hai na to change the law.
13: It's not like
14: ki, that. Nahin, haan, ek sign hi to karna ki, at least, you know, I received call from other mothers with whom the same accident has happened. And they are still grieving. And they say, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, nobody is listening. कुछ कोई कुछ नहीं कर रहा. जब आप देख रहे हो कि रोज इतने हिट एंड रन करके मार के जा रहे हैं, चेंज करो ना लॉ को, पकड़ो उनको, बेल नहीं होने दो उनकी. क्या है कि वो तो भाग जाएंगे कहीं पे भी. That's what I was telling ACP also, कि वो तो वीजा होंगे, पासपोर्ट होंगे, निकल जाएंगे कंट्री से बाहर.
9: और अब आपके हक के रोजगार की खबर, जहां आज तक करता है खबरदार तो जागती है सरकार. राजस्थान के मामले में हमने लटकी हुई भर्तियों का मुद्दा उठाया था 28 जून को, और अब राजस्थान सरकार ने दो लटकी हुई भर्तियों के रिजल्ट जारी कर दिए.
0: माला और मिठाई लेकर आए ये वो बेरोजगार युवा हैं जिनके हक की खबर आज तक ने दिखाई. तो राजस्थान की सबसे बड़ी फोर्थ ग्रेड की 2024 वाली भर्ती का लटका हुआ रिजल्ट आ गया. अब ये आज तक का जनता के हक में खबरदार करने को लेकर शुक्रिया अदा करते हैं.
15: आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम जो 50,000 युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, इसके लिए सर बहुत बहुत आभार आप.
0: 28 मई को आज तक ने बताया किस तरह फोर्थ ग्रेड भर्ती के 53,000 से ज्यादा और ग्राम विकास अधिकारी पद के चयनित लोग फाइनल रिजल्ट के इंतजार में परेशान हैं, जिसके बाद सरकार ने इनका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है.
9: राजस्थान में नौकरियों की घोषणा बहुत हो रही है, लेकिन बेरोजगारों का दर्द कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है. परीक्षा देकर भी कहीं रिजल्ट के लिए भटक रहे हैं, कहीं ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं.
16: ये सरकार पहले साल से नौकरियां तो निकाल रही है, मगर लग रहा है कि आखिरी साल में ज्वाइनिंग मिलेगी.
15: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि हमारे मतलब नियुक्ति तक ऐसे ही साथ देते रहे.
9: लेकिन सभी पीड़ित बेरोजगारों की किस्मत एक जैसी नहीं है, इसीलिए हम समझते हैं कि एक बार खबरदार करके हम भूल नहीं जाते, बल्कि जो राजस्थान के बाकी पीड़ित बेरोजगार हैं जिनकी भर्तियां अभी भी लटकी हुई हैं, हम उनके हक में खबरदार कर रहे हैं.
0: हाथ में कटोरा लेकर नौकरी की भीख मांगते बेरोजगारों पर अब कब जागेगी सरकार. जहां जयपुर की सड़क पर किसी अधिकारी की गाड़ी आती है तो सड़क पर दंडवत करने लगते हैं, ये सोचकर किसी का तो दिल पसीजेगा. लाइब्रेरियन भर्ती 2024 की परीक्षा जुलाई 2025 में हुई, नवंबर 2025 में रिजल्ट भी आ गया, पर 181 सफल छात्रों ने मेरठ की शिकोहाबाद यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लगाया, जिसकी जांच चल रही है. इसी वजह से दूसरे 650 सफल छात्र 12 दिन से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर भीषण गर्मी में धरना देते हैं.
16: भीषण गर्मी में लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा के सफल परीक्षार्थी यहां पर बैठे हुए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर के बाहर. जुलाई 2025 में परीक्षा हुई, दिसंबर में रिजल्ट निकला, लेकिन उसके बावजूद अभी तक नौकरी नहीं पाए हैं.
17: हमें सर बार बार आश्वासन दिया था अगली रोजगार मेले में, अगली बार सर हमारे 3 रोजगार मेले निकल गए, दिसंबर वाला, फरवरी वाला और ये.
18: उस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है और इसमें शिक्षा विभाग भी काफी जल्दी ट्राई कर रहा है कि जल्दी जल्दी हो जाए, इसका रिजल्ट निकाला जाए और हम भी इसमें प्रयास करें कि कैसे इसका कोई समाधान निकालकर इसका रिजल्ट निकाला जाए.
0: इसी तरह कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 के 1300 सफल उम्मीदवार नौकरी के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आगे जूते घिस रहे हैं. अधिकारी से लेकर सरकार तक 10-10 दिन का समय देती है, जो खत्म ही नहीं होता.
15: हमको सर 6 महीने हो गए, हमारे लिए बधाई पत्र भी मिल चुका है, लेकिन अभी तक जॉइनिंग वगैरह नहीं मिली, रिजल्ट ही नहीं आया सर हमारा.
19: कभी तो सर यहाँ से डिपार्टमेंट भेज देते हैं, डिपार्टमेंट से इधर भेज देते हैं, इसी चक्कर में पिस रहे हैं सर, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ.
20: 10 दिन दे देंगे, 15 दिन में आ जाएगा, हर 10-15 दिन का हर बार आते हैं तो वही मिलता जवाब इनका.
0: यहीं पर राजस्थान ग्रामीण विकास के 2,500 कर्मचारी मंत्री के आवास के बाहर धरना देते हैं. 20 साल से कई लोग अस्थायी नौकरी कर रहे हैं. 2006 से अब तक सरकारों ने पक्की नौकरी की घोषणा की, लेकिन ऐलान अधूरा रहा. गहलोत राज में 20,000 पक्की नौकरी हुई, 2,500 तब भी रह गए. 2018 में आचार संहिता की वजह से नौकरी लटकी. अब मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने विधानसभा में ऐलान किया, लेकिन पक्की नौकरी होना बाकी है.
16: इस सरकार ने मार्च में एक घोषणा की थी कि इनकी नियमितीकरण हो जाएगी विधानसभा में, मगर अभी तक ये नियमित नहीं हो पाए हैं, इसलिए ग्रामीण विकास मंत्री के यहाँ आए हैं अपनी गुहार लेकर।
1: को नियमित करने के लिए हमने फाइल चलाई थी जिसको फाइनेंस ने क्लियर कर दिया है, मात्र लॉ डिपार्टमेंट का वेट होना बाकी है। पूरी संभावना है जब हमारे यहाँ से निकल गया और फाइनेंस ने भी इसको स्वीकार कर लिया प्रपोजल को, तो वहां से भी कानूनी राय में भी इनका मामला बन जाए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को राजस्थान पहुंच रहे हैं, जहां पर फोर्थ ग्रेड के 48,000 समेत करीब 50,000 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। लेकिन अब भी करीब 30,000 से ज्यादा पदों पर बेरोजगार नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। जरूरी है कि सरकार इन खाली पदों को तुरंत भरे। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
9: और अब उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा की बात आपको बता दें, ये परीक्षा शुरू हो चुकी है और पहले ही दिन दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले जो मामले सामने आए हैं उनके बारे में हम आपको बड़ी खबर इस समय की बता देते हैं। पहले ही दिन दूसरे की जगह पर एग्जाम देते हुए 15 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें पहली पाली में 7 और दूसरी पाली में 8 लोग फर्जी तरीके से बैठकर परीक्षा देते हुए पकड़े गए। फिलहाल इन सभी 15 फर्जी अभ्यर्थियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सरकार ही नहीं, हम आपको भी खबरदार कर दें, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और हाल ही में आपकी सरकारी नौकरी लगी है तो जरा एक बार अपना ज्वाइनिंग लेटर फिर से खोलकर देख लीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक ठगी का गैंग भी चल रहा है।
0: राज्य प्रशासन द्वारा श्री नवीन सौंधिया भोपाल को प्रशासकीय आधार पर चयनित करते हुए मुख्य वन संरक्षक भोपाल के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है। देश के हर बेरोजगार के सपने में हर रोज ऐसे ही ज्वाइनिंग लेटर आते हैं जिसे हथियार बनाकर मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के सपनों से खिलवाड़ किया गया, जिन्हें इन सरकारी विभागों की इमारतों में बैठकर नौकरी करने के सपनों ने ठग लिया। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भेजकर मध्य प्रदेश में किसी को आईएफएस अधिकारी बनाया गया तो किसी को मंत्रालय में क्लर्क फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी भी इसी तरह दे दी गई। सरकारी नौकरी की चाह लिए नवीन ने सरकारी लेटर हेड पर सील और ठप्पे को देख यकीन कर लिया, लेकिन जब ज्वाइनिंग की तारीख नहीं आई तब जाकर इस ठगी से खबरदार हुए।
21: उनका नाम प्रमिला तिवारी है, उन्हें भरोसा दिला के बोला था कि आपकी नौकरी लगवा देंगे, तो जब देखा लेटर देखा तो लेटर में सर फर्जी लेटर बनाया था उन्होंने।
22: कैसे शक हुआ आपको?
21: सर वो लेटर है, लेटर में ही उन्होंने मतलब आईएफ अधिकारी की लेवल की हमने पोस्टिंग दी है हमें। सर इतना तो पेपर देने के बाद नहीं हो पाता, हमें तो डायरेक्ट दे रही है वो।
0: नवीन सोंधिया को भोपाल स्मार्ट सिटी में काम करने वाली एक महिला प्रमिला तिवारी ने नगर निगम, वन विभाग और मंत्रालय यानी वल्लभ भवन में चपरासी की नौकरी का वायदा किया। बदले में 2,50,000 रुपए मांगी। सरकारी नौकरी का सपना ऐसा नवीन ने बिना कुछ सोचे 55,000 रुपए दे भी दिए, लेकिन कई महीने बीतने के बाद जब नौकरी नहीं लगी तो गैंग की सदस्य प्रमिला से बात की। महिला ने नवीन को मंत्रालय में चपरासी की नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर भेजा, लेकिन उसमें कहीं भी ज्वाइनिंग डेट का जिक्र नहीं था। जब नवीन ने और जानकारी मांगी तो कहा कि उसकी नौकरी अब वन विभाग में लगेगी, और कुछ ही दिनों में नवीन को एक नया ज्वाइनिंग लेटर मिला जिसमें उससे भोपाल वन विभाग में नौकरी और 17,000 रुपए सैलरी की बात लिखी थी।
21: सर मेरे से 2,20,000 रुपए बोले थे।
22: और आप कितने दे चुके?
21: मैं 55 दे चुका था, 1.5 लाख रुपए मैं अभी देने वाला था पर मैंने नहीं दिया। मेरे दोस्त जो साथ में हैं, जो यही काम के लिए मिला था, जो नौकरी के नाम से बिचारा वो भी ठगी बैठा है, उसने 2,40,000 रुपए दे चुके हैं। उसने मुझे मना किया था कि मत देना पैसे, बिल्कुल ये लोग स्कैम कर रहे हैं।
0: इस धोखाधड़ी का खुलासा फर्जी ज्वाइनिंग लेटर से ही हुआ, जिसमें मुख्य वन संरक्षक पद की सैलरी 18,000 से 25,000 रुपए बताई गई, जबकि मुख्य वन संरक्षक का पद आईएफएस स्तर के अधिकारी के लिए होता है जिसकी शुरुआती इनहैंड सैलरी हर महीने 2 से 2.5 लाख के बीच होती। नवीन तो समय रहते इस धोखाधड़ी को समझ गए, लेकिन भोपाल के ही रहने वाले राहुल विश्वकर्मा शिकार बन गए, जिन्हें इसी वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर देकर 2.5 लाख रुपए ठग लिए। इस गिरोह का तरीका बहुत शातिर, फर्जी नियुक्ति पत्र, नकली सरकारी दस्तावेज और अफसरों के नाम पर भरोसा दिलाकर लाखों रुपए लूटे जाते थे।
23: हाँ, लगभग 4-5 आवेदन टीटी नगर में इस घटनाक्रम के बाद और प्राप्त हुए, जिसमें एक आवेदन मकान का है, एक आवेदन नौकरी का है और ट्रांसफर को लेके भी कुछ आवेदन थाने में प्राप्त हुए हैं। तो उन आवेदनों की तस्दीक की जा रही है कि उनका घटनास्थल कहाँ बन रहा है। अगर टीटी नगर है तो निश्चित रूप से उसमें आगे अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा, विवेचना की जाएगी, और दीगर थाने का बनता है तो संबंधित थाने से संपर्क कर पत्राचार कर वैधानिक कार्रवाई उसमें की जाएगी।
0: करीब
9: खबरदार में अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
3: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
4: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
5: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
6: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
5: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
11: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
12: ये देखो, एक investment guru के tip से पैसे double होंगे। बस offer claim करना है।
13: पैसे double? ऐसे कोई भी group से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
14: वाह वाह वाह वाह।
13: सेबी और एनएससी का कहना है, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
15: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
16: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
17: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
18: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
19: गहरी सफाई।
18: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
19: गहरी खुशबू
18: और प्यार भरी भी।
19: कैसे?
18: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
20: इसीलिए
21: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
22: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
23: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
24: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
25: कुछ तो बात है इस दिल में।
26: पीमार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
27: सरसों से सरसों।
28: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
2: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
1: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया के लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
3: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: Fina Power Wash. Ab hai aur shaktishali.
5: Gehri safai.
4: Haan, Power Wash ka kamaal.
5: Gehri khushbu.
4: Aur pyar bhari bhi.
5: Kaise?
4: ये है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
6: इसीलिए फेना ही लेना।
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
10: कुछ तो बात है इस दिल में।
11: पीमार्क, the mustard specialist since 1933।
12: हमने तब भी सवाल किया था,
13: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
12: हम आज भी सवाल करते हैं,
13: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
12: ऑपरेशन अग्नि,
13: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
12: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।
14: In association with
15: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ईरान से बड़ी खबर दिखाएंगे, जहां पूर्व सुप्रीम लीडर आयतल्ला अली खामनाई के अंतिम विदाई कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। 4 जुलाई से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस जनाजे में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई नजर आएंगे। मार्च के महीने में सुप्रीम लीडर बनने के बाद से मुश्तबा खामनाई कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। शिया परंपराओं के मुताबिक पिता के जनाजे में बेटे की मौजूदगी अहम मानी जाती है, इसीलिए उनके आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन क्या वो सुरक्षा कारणों से इस बार भी कैमरे के सामने नहीं आएंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि जिस रशिया से भारत अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है, उस रशिया को भारत से पेट्रोल क्यों खरीदना पड़ रहा है। नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत से हजारों मीट्रिक टन पेट्रोल की खेप रशिया भेजी गई है। सवाल यह है कि जिस देश के पास कच्चे तेल का इतना बड़ा भंडार है, वो भारत से पेट्रोल खरीदने को क्यों मजबूर है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के सहारे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की क्रिप्टो करेंसी से लॉटरी कैसे लग गई है। और आपको बताएंगे कि जो ये मुनीर के साथ मोहब्बत है, इसके पीछे क्रिप्टो है। इसके बाद आपको बताएंगे कि पति की हत्या जैसे गंभीर मामले की आरोपी सोनम रघुवंशी को आखिर जमानत कैसे मिल गई, और हाईकोर्ट ने भी पुलिस की अपील क्यों खारिज कर दी। आज आपको ये भी बताएंगे कि क्या पुलिस के लचर रवैये की वजह से सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल को भी जमानत मिल जाएगी। वही मामला जिसमें लोगढ़ के किले से आरोप है कि इस लड़की ने अपने मंगेतर को धकेल दिया। और आखिर में माता पिता को सावधान करने वाली खबर दिखाएंगे, जो नौकरी की वजह से अपने बच्चे को डे केयर सेंटर के भरोसे छोड़ते हैं। बेंगलुरु के एक नामी आईटी कंपनी कैंपस के डे केयर से डराने वाली तस्वीरें आई हैं। यहां 2 से 3 साल के मासूम बच्चों को बाथरूम में कैद कर दिया जाता था, फ्रंट लोडिंग वाली वॉशिंग मशीन में डाला जाता था, उनको पैन पर बिठाकर जेट से बार बार टारगेट किया जाता था, कई तरह से टॉर्चर किया जाता था। ये झकझोरने वाली खबर है। लेकिन शुरुआत करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट की उस खबर से करना चाहते हैं जो आपसे जुड़ी हुई है। भारत में एनर्जी ड्रिंक्स का मार्केट $1.5 बिलियन, जानते हैं कितना हुआ, 14,304 करोड़ रुपए का है, जो साल 2034 तक $2.9 बिलियन का हो जाएगा। ट्रेड एक्सपर्ट्स, और खास तौर पर अगर आप देखें तो ट्रेड एक्सपोर्ट्स, नेशनल मास्टर और गिटनेस की यह रिपोर्ट है, जो ये कहती है कि भारत में हर व्यक्ति पर 4.2 लीटर एनर्जी ड्रिंक्स की खपत होती है, और जो युवा हैं उनमें इसकी खपत और भी ज्यादा है। ये आंकड़े हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने एनर्जी ड्रिंक्स बनाने वाली 6 बड़ी कंपनियों को नोटिस भेजा है। यह खबर आपको सावधान करेगी। इनमें मशहूर ब्रांड रेडबुल है, पेप्सिको का एड्रेनालिन रश है, रिलायंस का कैंपा गोल्ड बूस्ट है, स्टिंग है, हेल एनर्जी है, इसमें मॉन्स्टर एनर्जी भी शामिल है। ये सारे वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जिनके बारे में आप सब जानते होंगे, और संभव है कि आपने इन्हें कभी ना कभी टेस्ट भी किया हो या पीते हो। लेकिन अब FSSAI ने इन एनर्जी ड्रिंक्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं, और ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने का कहना है कि इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को एनर्जी ड्रिंक्स बताकर बेचा जा रहा है, जबकि भारत में अभी तक एनर्जी ड्रिंक्स नाम की कोई अलग श्रेणी या मानक तय ही नहीं हुआ है। यानी कानूनी रूप से हमारे देश में एनर्जी ड्रिंक्स जैसा कोई प्रोडक्ट है हो ही नहीं सकता, लेकिन आरोप है कि ये कंपनियां फिर भी लोगों को भ्रमित करके ये ड्रिंक्स एनर्जी ड्रिंक्स बताकर बेच रही हैं। ये FSSAI ने खुद लिखा है। और यही नहीं, FSSAI का आरोप है कि इन सभी ड्रिंक्स की पैकेजिंग पर यह दावा किया जाता है कि इनसे फोकस बढ़ता है, ये शरीर और दिमाग को तरोताजा रखती हैं, एनर्जी बढ़ाती हैं, थकान कमजोरी दूर करने में मदद करती हैं, जबकि ये दावे भी FSSAI के मुताबिक सही नहीं है। आइए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि आखिर हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। FSSAI ने सबसे पहले क्या कहा है, उनका यह कहना है कि एनर्जी ड्रिंक या इस तरह के उत्पादों के लिए कोई मानक हमने बनाया ही नहीं है, ये वर्ड है, कोई स्टैंडर्ड हमने बनाया ही नहीं है, एनर्जी ड्रिंक्स का कोई स्टैंडर्ड है नहीं, तो आप एनर्जी ड्रिंक के नाम से इसको क्यों बेच रहे हैं।
वहीं फूड कैटेगरी सिस्टम का मकसद उत्पादों का नाम रखना या लेबलिंग करना नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप देखेंगे इन तमाम कंपनीज का, तो FSSAI has not notified any standard for energy drink। ये हमने सीधा FSSAI की तस्वीर निकाली है आपके लिए, तो इसको आप ध्यान से देखें, क्योंकि एक सेकेंड, ये आप देखेंगे FSSAI की तरफ से ये डाला गया है, उन्होंने हर ड्रिंक का इस तरह से तस्वीर डाली है। द क्लेम मार्केटेड एंड लेबल्ड यूजिंग डिस्क्रिप्टर्स लाइक एनर्जी ड्रिंक, आप इसको एनर्जी ड्रिंक बताते हैं, लेकिन फैक्ट क्या है, FSSAI ने लिखा है कि एनर्जी ड्रिंक टाइप का कोई मानक नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, और आप जो ये बार बार क्लेम करते हैं ना कि ये वाइटलाइजेस बॉडी यानी शरीर को तेज करता है, दिमाग को तेज करता है, फोकस बढ़ाता है, जी हाँ, ये थोड़ा जूम इन करके दिखाइए, एनहांसिंग फोकस, ये जब आप अंडरलाइन करके ये वाला पार्ट मैं आपको दिखा रही हूं, एनहांसिंग फोकस मतलब ये कह रहे हैं कि ये दिमाग का फोकस भी बढ़ाता है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, जब आप ये वाला हिस्सा यहां पर देखेंगे, ये देखिए, अब यहां पर जूम इन कीजिए, ये एनहांसिंग फोकस, बूस्ट एनर्जी लेवल, एनर्जी बढ़ाता है, कमजोरी दूर करता है, तो इसको सीधे सीधे नॉट परमिसिबल कह दिया है, नॉट परमिसिबल, इसकी इजाजत नहीं होगी। रेड बुल के बाद ये दूसरा जो ड्रिंक डाला है FSSAI ने, वो है एड्रेनालिन रश एनर्जी ड्रिंक, ये भी एनर्जी ड्रिंक, इसमें भी सिमिलर बातें कही गई हैं। फिर अगला है ये स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, जिसके बारे में FSSAI ने सही वही सेम बातें कही है। फिर मॉन्स्टर एनर्जी, ये जो एनर्जी ड्रिंक है इसके बारे में कहा है, पूरा डिस्क्रिप्शन FSSAI ने कहा है। फिर अगला है कैंपा एनर्जी ड्रिंक, जिसके बारे में सेम बात कही गई है, और ये है हेल एनर्जी ड्रिंक, जिसके बारे में सेम बात कही गई है। खाद्य उत्पादों के लिए एनर्जी बढ़ाना, कमजोरी दूर करना जैसे दावे करने की अनुमति नहीं है, ये सीधे सीधे बताया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, बड़ी बात क्या है कि ऐसे ड्रिंक्स जिसकी जो FSSAI फ्लैग कर रही है, वो इतनी तादाद में भारत में लोग पी रहे हैं, और खास तौर पर हमारी युवा पीढ़ी, और ऐसे तमाम दावे जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि उनको अचानक से इससे ऊर्जा आ रही है या उनका फोकस बढ़ रहा है, उन सबको FSSAI ने गलत माना है। अब FSSAI के इस नोटिस के बाद इन कंपनियों को ये बताना होगा कि उन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए इन ड्रिंक्स को एनर्जी ड्रिंक्स बताने का झूठ क्यों बोला, और आगे से इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारा सिर्फ ये मकसद है कि इसके जरिए हम आपको बता सकें कि जो हमारी युवा पीढ़ी बहुत बड़े तादाद में इन ड्रिंक्स को पी रही है, खपत हमने आपको बता ही दी है, वो जरा सा सतर्क हो जाएं। FSSAI ने पिछले कुछ महीनों में ऐसे भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सख्ती दिखाई है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे देश में इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को एनर्जी ड्रिंक समझकर बहुत सारे लोग पीते हैं। उदाहरण के लिए भारत में हर दिन, जानते हैं, रेड बुल की हर दिन 40,000 से 50,000 कैंस की बिक्री होती है, स्टिंग की 35 से 40 लाख बोतल की बिक्री होती है, और यह अनुमान है, असली खपत इससे ज्यादा भी हो सकती है। और ऐसे में सवाल यही है कि अब तक इन कंपनीज को ऐसा करने से रोका क्यों नहीं गया, तो आइए आपको बताते हैं। भारत में रेडबुल की बिक्री कब शुरू हुई, साल 2009 से हो रही है, मॉन्स्टर की 2012 से, स्टिंग की 2017 से, हेल एनर्जी की 2018-19 से, रिलायंस की कैंपा गोल्ड बूस्ट की 2026 से शुरुआत है, पेप्सिको की एड्रेनालिन रश ड्रिंक की बिक्री जून 2026 से शुरू हुई। उस वक्त किसी ने देखा, यह सवाल पैदा होता है कि जब ये ड्रिंक्स इतने सालों से एनर्जी ड्रिंक्स के नाम से बिक रही थी, या जब उनको एंट्री मिली, तब क्या FSSAI ने इन पर कार्रवाई करने में इतने साल क्यों लिए, और क्या इससे ये पता नहीं चलता है कि हमारे देश में खाने पीने के सामानों का जो निगरानी तंत्र है वो तंत्र कमजोर है, तभी आज ये बाजार इस तरह से फैल चुका है और बहुत सारे लोगों को इस तरह से इसकी लत लग चुकी है। किस स्थिति गंभीर है। खैर, ये खबर सबसे पहले हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि आज ये ड्रिंक्स हर घर का हिस्सा है, इन्हें पीने वाले बच्चे या उनके माता पिता भी नहीं जानते कि एनर्जी ड्रिंक्स है ही नहीं, और एनर्जी ड्रिंक्स भारत में किसी भी ड्रिंक्स को माना ही नहीं गया है, और फोकस बढ़ाता है, इस तरह के दावे को FSSAI ने गलत माना है।
खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्या आयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई भी नजर आ सकते हैं। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इसराइल के हवाई हमलों में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हुई, तब इन हमलों में मुश्तबा खामेनेई भी घायल हो गए थे। उस वक्त मार्च महीने में उन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया, लेकिन वो कभी सार्वजनिक रूप से ईरान के लोगों के सामने नहीं आए हैं। लेकिन अब द वीक की रिपोर्ट में ऐसी उम्मीद जताई गई है कि मुश्तबा खामेनेई अपने पिता के जनाजे और दफन करने की रस्मों में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मुश्तबा खामेनेई को पूरा ईरान लंबे वक्त के बाद देखेगा। अब तक किसी भी रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि मुश्तबा खामेनेई आखिरी बार सार्वजनिक रूप से कैमरे पर कब दिखाई दिए थे। कुछ रिपोर्ट्स दावा जरूर करती हैं कि उन्हें पिछले साल जून में हुए युद्ध के बाद कैमरे पर आखिरी बार देखा गया था, लेकिन ईरान का मीडिया इन रिपोर्ट्स को खारिज करता है। बड़ी बात यह है कि अब भी जब पश्चिमी मीडिया ये उम्मीद जता रहा है कि मुश्तबा खामेनेई आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में शामिल हो सकते हैं, तब ईरान का मीडिया ऐसे किसी भी दावों की पुष्टि नहीं कर रहा और इस सवाल को लेकर अब भी रहस्य बना हुआ है कि मुश्तबा खामेनेई अपने पिता के जनाजे में जो नमाज जनाजा है उसमें हिस्सा लेंगे या वो सुरक्षा कारणों से इस बार भी लोगों के सामने नहीं आएंगे। अगर वो सबके सामने आते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो ईरान के नेतृत्व में सक्रिय है, उनकी स्थिति मजबूत है, और अगर वो सामने नहीं आते हैं तो अटकलें बढ़ेंगी और खास तौर पर उनके स्वास्थ्य को लेकर। अब तक मुश्तबा खामेनेई की ओर से जो बयान जारी हुए हैं वो टेलीविजन या सरकारी मीडिया पर पढ़कर सुनाए जाते हैं, और अब तक मुश्तबा खामेनेई की आवाज, कितने लोग उनसे मिले हैं, इस बारे में जानकारी नहीं आई है। यहां एक सवाल परंपरा का भी है। शिया परंपरा में परिवार को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और जब पिता की मृत्यु के बाद उनका नमाज जनाजा निकलता है तो उसमें बेटे की भूमिका सबसे अहम होती है। इसीलिए अहम होती है क्योंकि जनाजे में बेटे की मौजूदगी से यह माना जाता है कि परिवार की निरंतरता बनी हुई है, नेतृत्व और जिम्मेदारी अगली पीढ़ी में जा रही है। यानी शिया परंपरा के हिसाब से ऐसा लगता है कि मुश्तबा खामेनेई शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्या कैमरे पर उन्हें दिखाया जाएगा, इन सब पर बातचीत हो रही है और फिलहाल इसके बारे में पुष्ट रूप से कोई भी जानकारी नहीं दे सकता। खैर आगे बढ़ते हैं। यहां भी देखिए कि आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम जनाजे के ईरान की इस्लामिक सरकार के लिए ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है। यह अंतिम विदाई कार्यक्रम 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच चलेगा, जिसमें पहले दिन 4 जुलाई को आयतुल्लाह खामेनेई का पार्थिव शरीर तेहरान के ग्रैंड मसल्ला मस्जिद में आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा, और इसी दिन सरकारी कार्यालयों और कई संस्थाओं में शोक का कार्यक्रम रखा गया है। 5 से 6 जुलाई के बीच तेहरान की प्रमुख सड़कों पर विशाल जुलूस निकलेगा। 10 किलोमीटर लंबा हो सकता है यह जुलूस। इस जुलूस में जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी और अनुमान है कि इस कार्यक्रम में 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि पूरे तेहरान में 1 करोड़ लोग रहते हैं। आसपास के शहरों से भी लोग पहुंचने वाले हैं। ईरान के प्रेस टीवी का कहना है कि 6 जुलाई को ही मुख्य कार्यक्रम हो सकता है, जिसमें दूसरे देशों से आए राष्ट्राध्यक्ष, प्रतिनिधि, धर्मगुरु शामिल हो सकते हैं, और इसके बाद 7 जुलाई को आयतुल्लाह खामेनेई का जनाजा ईरान के कोम शहर ले जाया जाएगा, जो कि धार्मिक शहर है, जहां शिया धर्मगुरु और मदरसों के छात्र उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोम शहर ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र माना जाता है। इसके अगले दिन 8 जुलाई को इराक के नजफ और करबला जैसे पवित्र शहरों में विशेष कार्यक्रम होंगे। इनमें विशेष शिया संगठनों और धर्मगुरुओं की बड़ी भागीदारी दिखाई देगी। 9 जुलाई को आखिरी दिन आयतुल्लाह खामेनेई को मशहद शहर में दफनाया जाएगा, जो उनका गृह नगर है। यह भी कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामेनेई को इमाम रेजा श्राइन के परिसर या उसके पास दफनाया जा सकता है, और ये इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ शिया इस्लाम के 8वें इमाम अली अल रजा का दरगाह भी है।

बताना चाहते हैं जिस पर आज ज्यादा बहस हुई है। बहस इस बात पर है कि प्रधानमंत्री मोदी ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के नमाज़े जनाजे में शामिल होने क्यों नहीं जा रहे। ये निमंत्रण नोट वबाले यानी राजनयिक पत्र के जरिए भारत के विदेश मंत्रालय को सौंपा गया और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने भी खुद प्रधानमंत्री मोदी को इसका औपचारिक निमंत्रण भेजा है और इसे भारत ने भी पूरे आदर भाव के साथ स्वीकार किया। भारत सरकार ने तय किया है कि वो अपने दो सदस्य प्रतिनिधि मंडल को इस अंतिम विदाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भेजेगी। इनमें पहले हैं सैयद अता हसनैन जो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हो चुके हैं और मौजूदा वक्त में बिहार के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के शिया परिवार से ये ताल्लुक रखते हैं और ईरान भी एक शिया बहुल देश है। और दूसरे हैं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा और उन्हें इस प्रतिनिधि मंडल के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि कूटनीतिक रूप से ये दिखाता है कि भारत ने ईरान के निमंत्रण का पूरा सम्मान किया है और प्रोटोकॉल के तहत विदेश मंत्रालय की भागीदारी को इसमें सुनिश्चित किया गया है, ये भी स्थापित होगा। यहां जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद क्यों नहीं जा रहे, क्या उन पर इसराइल का दबाव है, तो ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी 6 जुलाई से 11 जुलाई के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र के 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जा रहे हैं और ऐसे में संभव नहीं था कि वो ईरान जाए और उनका ये कार्यक्रम पहले से तय था। और दूसरा, ये विश्लेषण भी किसी रूप में सही नहीं होगा कि भारत इसराइल को नाराज नहीं करना चाहता इसलिए प्रधानमंत्री नहीं जा रहे। ऐसे फैसले राष्ट्रहित और कूटनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। जब राष्ट्रीय हितों की बात आती है तो भारत के लिए ईरान के साथ रिश्ते भी जरूरी हैं और भारत के लिए इसराइल या खाड़ी देशों के साथ रिश्ते भी जरूरी हैं। उदाहरण के लिए खाड़ी देशों में भारत के 90 लाख लोग रहते हैं और ये देश ईरान के हमलों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, लेकिन भारत अपने कूटनीतिक संबंधों में संतुलन बनाता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रतिनिधिमंडल को ईरान नहीं भेज रहे या भारत अकेला ऐसा देश है जिसके प्रधानमंत्री निमंत्रण के बाद भी ईरान नहीं जा रहे। हम सभी देशों से रिश्ते रखते हैं। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक, ईरान का ही प्रेस टीवी जिसके मुताबिक आयतुल्लाह खामनेई के अंतिम विदाई कार्यक्रम में 30 से ज्यादा देशों के नेता, 90 से ज्यादा देशों के धर्मगुरु शामिल हो रहे हैं। इनमें अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ईरान ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी निमंत्रण भेजा था, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन इस राष्ट्रीय शोक में अभी यानी आज के 9:15 बजे तक की मिली जानकारी के मुताबिक नहीं जा रहे हैं। उनकी जगह रशिया के पूर्व राष्ट्रपति और रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति पुतिन के विशेष दूत बनकर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ईरान जा रहे हैं, जबकि रशिया ईरान का सबसे करीबी सहयोगी है। रशिया और चाइना ईरान के क्लोजेस्ट एलाइज यानी करीबी हैं। इसी तरह चाइना भी ईरान का समर्थन करता है और ईरान ने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अंतिम विदाई कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आज के 9:15 बजे तक की मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। आगे अगर बदलाव होता है इन दोनों के कार्यक्रम में, पुतिन या फिर शी जिनपिंग के कार्यक्रम में, तो हम आपको सूचित करेंगे। वहीं उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल चाइना से ईरान जाएगा और बड़ी बात यह है कि चाइना के लिए भी कोई ये नहीं कह रहा है कि उसके राष्ट्रपति किसी दबाव में ईरान नहीं जा रहे। चाइना भी नहीं बल्कि क्यूबा के राष्ट्रपति भी खुद ईरान ना जाकर अपने प्रतिनिधिमंडल को तेहरान भेज रहे हैं, जिनमें क्यूबा के उच्च शिक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। जिन देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ईरान जाने वाले हैं उनमें पाकिस्तान, जॉर्जिया, तजाकिस्तान का नाम प्रमुख है और इनमें भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तेहरान जा सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो जा रहे हैं तो हमारे पीएम क्यों नहीं, लेकिन आज उनको जरा बताते हैं आगे बढ़ते हुए। इस सवाल को पूछने वाले लोगों को याद रखना चाहिए कि भारत अपने कूटनीतिक फैसले पाकिस्तान को देखकर नहीं लेता। अगर ऐसा होता तो साल 1989 में जब ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रुहैला खमेनेई का नमाज जनाजा निकाला गया तब उसमें भी पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति गुलाम इसहाक खान शामिल हुए थे, लेकिन भारत की तरफ से तब भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति शामिल नहीं हुए थे, जबकि उस वक्त देश में राजीव गांधी की सरकार थी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भारत ने अपने कूटनीतिक फैसले कभी भी पाकिस्तान को

0: देखकर नहीं लिए, और जो लोग ऐसा चाहते हैं उनकी मंशा को आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ ये भी तो देखिए कि ईरान की सरकार ने भारत के और भी नेताओं को इस अंतिम विदाई कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया है। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, कांग्रेस की मीडिया और पब्लिसिटी विंग के प्रमुख पवन खेड़ा, इन सबको आमंत्रित किया है। इनमें भी सलमान खुर्शीद ने कहा है कि वो इस कार्यक्रम के लिए तेहरान जा रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को भी ईरानी दूतावास से निमंत्रण मिला है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी बताया कि वो ईरान का निमंत्रण मिलने से खुश हैं, तेहरान में होने वाले इस कार्यक्रम में वो जरूर शामिल होंगी। देखिए,
1: ईरान जा रहे हैं, क्या संदेश आपका है? बस संदेश
2: अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करना है, मैं जा रहा हूँ, जब आऊंगा तब बताऊंगा।
1: सर, ये एक खास जर्नी होगी आपकी जो आप जा रहे हैं?
2: जो पार्टी का जो भी आदेश है, उस पार्टी के आदेश के अनुसार मैं जा रहा हूँ। वहाँ जो भी हो सकेगा, जो कहेंगे करेंगे, वो आपको आके बताऊंगा।
1: सरकार की तरफ से कोई सुझाव? सर
2: जी नहीं, सरकार को कोई सुझाव नहीं।
0: भारत में शिया मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी जम्मू कश्मीर में रहती है, और इस नाते से जम्मू कश्मीर अंजुमने शरी शियान के अध्यक्ष आगा सैयद हसन मुसावी अल सवाफी को भी व्हाट्सएप के जरिए निमंत्रण भेजा गया है, और वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताते हैं जिस पर शायद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि अब भारत रशिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है, और हमारे तेल आयात में रशिया की हिस्सेदारी बढ़ गई है और हो गई है 53%। लेकिन आज का नया अपडेट यह है कि जिस रशिया से हम कच्चा तेल खरीदते हैं, उसी रशिया को अब भारत से पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, रॉयटर्स ने आज ही एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें यह बताया गया है कि रशिया में पेट्रोल का संकट इतना गहरा हो गया है कि उसे भारत से मदद मांगनी पड़ी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कम से कम 60,000 मीट्रिक टन पेट्रोल रशिया को भेजा है। हमारी खबर का सोर्स आप देख रहे हैं, रॉयटर्स है। इनमें भी पेट्रोल की एक खेप दो टैंकर से रशिया रवाना की गई है, सोचिए। और ऐसा नहीं है कि आपूर्ति सिर्फ एक बार के लिए थी। रशिया में जिस तरह पेट्रोल का संकट बढ़ रहा है, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में वो भारत से और पेट्रोल खरीद सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रशिया में हर दिन लगभग 1,10,000 मीट्रिक टन पेट्रोल की खपत है। ये खपत गर्मियों के मौसम में बढ़ जाती है, यानी जो पेट्रोल अभी भारत से गया वो सिर्फ शुरुआत है। रशिया अभी इतने बड़े संकट में है कि वो बेलारूस से भी पेट्रोल खरीद रहा है, और रॉयटर्स के मुताबिक रशिया ने अब हर महीने 4,00,000 मीट्रिक टन पेट्रोल आयात करने की योजना बनाई है। यहां आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि जिस रशिया से कच्चा तेल हमारे यहां आता है, उसे हमारे पेट्रोल की जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि यूक्रेन लगातार रशिया की तेल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है। अब तक रशिया की 33 में से 24 तेल रिफाइनरीज में हमला हो चुका है, जिसके कारण कच्चे तेल को रिफाइन करके उससे पेट्रोल और डीजल बनाना रशिया के लिए मुश्किल हो गया है। यानी रशिया के पास कितना कच्चा तेल है अभी ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या वो इस कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल बना सकता है। और अभी मौजूदा स्थिति ये है कि यूक्रेन के हमलों के कारण रशिया की पेट्रोल बनाने की क्षमता काफी गिर गई है। यहां आप ये भी देखिए कि प्रतिबंध हटने के बाद ईरान ने भी हमारी तेल रिफाइनरी से संपर्क किया था, और इसका कारण यह है कि कच्चे तेल को रिफाइन करने के मामले में हम सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरीज गुजरात के जामनगर में है, जहां हर दिन 12,00,000 बैरल कच्चा तेल रिफाइन हो सकता है। इसके अलावा कच्चे तेल को रिफाइन करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर है। ये देखिए, चाइना पहले स्थान पर है, सबसे ज्यादा चाइना में। उसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका है, रशिया तीसरे स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर, जबकि हम अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करते हैं। और आज आप सोचिए कि हमारी इसी ताकत के कारण रशिया हमसे पेट्रोल खरीद रहा है। और यहां आप ये भी देखिए कि जिस रशिया के पास पूरी दुनिया में कच्चे तेल का 9वां सबसे बड़ा भंडार है, उसी रशिया में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोगों को यूक्रेन के हमलों के कारण पेट्रोल नहीं मिल पा रहा। देखिए,

0: दी ओच।
1: हालात अच्छे नहीं हैं, हर जगह लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कुछ पेट्रोल पंपों पर तो पेट्रोल बिल्कुल नहीं है, कई बार तीन तीन पेट्रोल पंप जाकर भी पेट्रोल नहीं मिलता। फिर जहां मिलता है वहां लाइन में लगना पड़ता है और इंतजार कभी 30 मिनट, कभी एक घंटा और कभी दो घंटे का भी हो सकता है। ये तो आपकी किस्मत पर निर्भर करता है।
2: आज मैं पेट्रोल भरवाने अलग अलग पंपों पर भटक रहा हूं। जहां मैं रहता हूं वहां आधे पेट्रोल पंप बंद हैं, बाकी पंपों पर लंबी लाइनें हैं और एक
3: तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी माना है कि यूक्रेन के हमलों के कारण उनके देश में पेट्रोल खत्म होने लगा है। सुनिए।
2: आप अच्छी तरह जानते हैं कि ड्राइवरों और कारोबारियों को अभी भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें अब भी लगी हुई हैं। कई जगह लोगों को अपनी जरूरत के अनुसार सही तरह का ईंधन भी नहीं मिल रहा है। इस समय किसानों और खेती से जुड़े व्यवसायों को भी कठिनाइयां हो रही हैं। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि कृषि क्षेत्र को मौसम के अनुसार समय पर ईंधन मिलता रहे, क्योंकि फसल की कटाई इसी पर निर्भर करती है।
3: तो सुना आपने व्लादिमीर पुतिन क्या कह रहे हैं। खैर, ये वो खबर थी जिस पर आपके लिए विश्वास करना मुश्किल हुआ होगा, लेकिन अगली खबर आपको वो दिखाएंगे जिसमें कुछ भी नया नहीं है और अब तो शायद दुनिया की ऐसी खबरें सुनने की आदत सी हो गई है। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के एक साल में कम से कम $2 बिलियन यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। और राष्ट्रपति ट्रंप इतने मालामाल हो रहे हैं कि अमेरिका का मीडिया भी आज ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप किसे महान बनाना चाहते हैं। वो अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं या अपने बेटों के बिजनेस को ग्रेट बना रहे हैं, और ये बात क्यों कही जा रही है उसके लिए आपको ये आंकड़े देखने होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी संपत्ति और आय को लेकर नई घोषणा की है जिसे अमेरिका में फाइनेंशियल डिस्क्लोजर कहा जाता है। उन्होंने इसमें बताया है कि पिछले एक साल में उन्होंने या उनके फैमिली बिजनेस से जुड़ी कंपनीज ने $2 बिलियन की कमाई की है। सबसे ज्यादा $1.4 बिलियन की आमदनी क्रिप्टो करेंसी से हुई है जो एक डिजिटल करेंसी होती है। साल 2021 में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी एक स्कैम है और तब तो वो इसे भविष्य की एक बड़ी आपदा भी बता रहे थे। लेकिन आज इसी क्रिप्टो करेंसी से राष्ट्रपति ट्रंप खूब डॉलर छाप रहे हैं और इनमें भी $520 मिलियन तो क्रिप्टो टोकन बेचकर उन्होंने कमाए, जबकि $635 मिलियन उन्होंने एक मीम कॉइन बेचकर कमाए जिसे डॉलर ट्रंप मीम कॉइन कहा जाता है। मीम कॉइन का मतलब यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले इसे एक मीम के रूप में अपने नाम पर जारी किया था, लेकिन बाद में इस डिजिटल करेंसी में लेन देन होने लगा और इसी लेन देन से राष्ट्रपति ट्रंप ने $635 मिलियन कमा लिए। हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप का असली बिजनेस रियल एस्टेट का है, लेकिन पिछले एक साल में रियल एस्टेट से कहीं ज्यादा कमाई क्रिप्टो करेंसी से की है। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से उन्हें $800 मिलियन मिले हैं। और कारण यह है कि इसमें यूएई से जुड़ी एक निवेश कंपनी ने आधी हिस्सेदारी खरीद ली। ये वही कंपनी है जिसने पाकिस्तान के साथ समझौता किया और पाकिस्तान ने यह कहा कि वो इस कंपनी की USD1 नाम की क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करे। और यहां ये लिस्ट खत्म नहीं होती। राष्ट्रपति ट्रंप ने गोल्फ और रिजॉर्ट से $500 मिलियन से ज्यादा कमाए, फ्लोरिडा के मारा लागो रिजॉर्ट से $77 मिलियन कमाए, विदेशी लाइसेंसिंग डील से $52 मिलियन कमाए। और ये सारी कमाई तो छोड़िए, मीडिया सेटलमेंट से जहां जहां पर उन्होंने मीडिया को स्यू किया और फिर सेटलमेंट हुआ, मीडिया सेटलमेंट से एक साल में राष्ट्रपति ट्रंप ने $80 मिलियन कमाए हैं। यानी जिन मीडिया संस्थानों ने राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर खबरें चलाई थी उन पर मुकदमे करके उन्होंने $80 मिलियन कमा लिए। और जब इस कमाई पर सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो जानते हैं राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके राज में अब हर कोई कमा रहा है, यानी कमाल ही हो गया। सुनिए।
4: I don't get involved in my personal. We have funds that run my money. And I purposely, I never speak to any of the people that run the money. But they're at big institutions, and they invest in whatever they invest. Well, you know why I'm profiting? Because the stock market's going up. Everybody's profiting.
3: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि भारत और जापान की दोस्ती से चाइना क्यों परेशान होने वाला है और ये दोस्ती आपके लिए भी क्यों बड़ी है, महत्वपूर्ण है। आज भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम में 129 MOUs यानी आपसी समझौतों का ऐलान किया गया। इन समझौतों का मकसद है दोनों देशों के बीच निवेश, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, तकनीक, कौशल विकास, सप्लाई चेन, सहयोग सबको मजबूत करना। अब ये तो थोड़ी व्यापारिक रिश्तों वाली बात हो गई, लेकिन अंदर की बात यह है कि जापान अब भारत को चाइना के विकल्प के रूप में देख रहा है। ऐसा इसलिए ऐसे समझिए कि जापान चाइना पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है और अपनी कंपनियों को चाइना से जापान लाना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ अभी सोचा जा रहा है, ये काम शुरू भी हो गया। जापान की कंपनियों ने पिछले एक साल में अपने निवेश को तेजी से बढ़ाया और अब जापान भारत में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कर रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि चाइना से कई कंपनीज को अब जापान भारत में ला सकता है और इसके तहत दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स, हथियार, बायोगैस, क्रिटिकल मिनरल्स, मजबूत सप्लाई चेन, स्टार्टअप्स और न्यू टेक्नोलॉजी यानी नई तकनीक में साथ मिलकर काम करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के चौथे बड़े प्लांट का उद्घाटन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ने जापान की प्रधानमंत्री को छोटी बहन कहा। सुनिए।
0: योर एक्सलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, कोनिचिवा। इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
3: जापान के साथ भारत का एक और खास रिश्ता है और वो है स्वदेशी आंदोलन का। आजादी के 8 साल बाद साल 1955 में जब राज कपूर की फिल्म श्री 420 आई, तब इसका एक गाना बहुत हिट हुआ था जिसके बोल आज भी लोग गाते हैं। इस गाने के बोलते मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस गाने को मशहूर गीतकार शैलेंद्र जी ने लिखा था और उन्होंने बताया था कि इस गाने से वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे तन पर जूते, कपड़े, टोपी किसी भी देश के हो, लेकिन दिल हिंदुस्तानी है। लेकिन वक्त के साथ इस गाने को लेकर ये चर्चा शुरू हुई कि जूता जापान की जगह भारत का ही क्यों नहीं हो, ये पतलून भारत की क्यों नहीं और ये टोपी भी भारत में ही क्यों ना बने, और हम स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करते हुए ये क्यों नहीं कह सकते कि दिल है हिंदुस्तानी। स्वदेशी सामान भी और दिल भी हिंदुस्तान का। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस जमाने में फटे जूतों के लिए जापानी जूतों का मुहावरा बोला जाता था, जिसकी वजह से इस गाने में जापान का नाम डाला गया था। लेकिन जापान के साथ हमारा एक ऐतिहासिक रिश्ता है। आजादी के आंदोलन में जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी और आज भी जापान भारत की आर्थिक तरक्की में साझेदार बन रहा है। जैसे जापान की सुजुकी कंपनी दुनिया में हर साल करीब 30 लाख कारें बनाती है, जिनमें लगभग 20 लाख कारें अकेले भारत में बनती है, यानी कंपनी की हर 3 में से 2 कारें भारत में तैयार होती है। और यहां बात सिर्फ सुजुकी कंपनी की नहीं है, टोयोटा, होंडा, हिटाची, सोनी जैसी कंपनियां भी जापान की ही हैं। भारत ने जापान के साथ साल 2024-25 में 2,13,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया और आज भी भारत में जापान की 1,434 कंपनियां रजिस्टर्ड है, 5,205 बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स भी भारत में जापान के ही हैं। इसके अलावा जापान भारत में विदेशी निवेश करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश है, जिसने अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच 3,71,000 करोड़ रुपए भारत में निवेश किए। हमारे देश में मुंबई से अहमदाबाद के बीच जिस बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, उसमें भी जापान की भूमिका अहम है, इसमें जापान का सबसे बड़ा निवेश है।

0: और आज आपको हम जापान के बारे में इतना ही बता रहे हैं, लेकिन कल हम आपको ये बताएंगे कि जापान से भारत क्या सीख सकता है और जापान की तरक्की का वो सीक्रेट सॉस या सीक्रेट इंग्रेडिएंट, छुपी हुई बात क्या है जिसके बारे में हमारी नई युवा पीढ़ी को जरूर पता होना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। जब पुलिस अपनी वर्दी का रौब दिखाने पर आती है तो बड़े बड़े पानी मांगने लगते हैं, लेकिन जब बात कानून की बारीकियों और कागजी कार्रवाई की आती है तो हमारी हाईटेक पुलिस का दिमाग किस तरह कई बार शटडाउन हो जाता है, इसकी वानगी हम आपको दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसा हर मामले में होता है, लेकिन इस मामले में चर्चा बहुत तेज हो गई है। हनीमून पर गए पति की हत्या का एक संगीन मामला और एक हाई प्रोफाइल आरोपी पत्नी। हम राजा रघुवंशी मर्डर केस की बात कर रहे हैं जिसमें आरोपी हैं सोनम रघुवंशी। इस मामले में काफी कुछ खुली आंखों से नजर आ रहा है, लेकिन कानूनी कार्रवाई के लिए सबूत, गवाह, सही कानूनी धारा, दलीलों की जरूरत है। और बस यही पुलिस ने ऐसी करामात दिखाई कि अदालत भी दंग रह गई। पुलिस ने ऐसी अद्भुत लापरवाही दिखाई कि हत्या के आरोपी को भी जमानत मिल गई। ये पूरा मामला मेघालय हाईकोर्ट के उस फैसले से गरमाया है जिसमें राज्य सरकार की अपील को खरी खरी सुनाते हुए खारिज कर दिया गया। मेघालय हाईकोर्ट के जस्टिस W. डेंगडो ने जब पुलिस के कागजात देखे तो हैरान रह गए। पुलिस ने हत्या के आरोपी सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के जो कारण लिखे थे वो किसी मजेदार चुटकुले से कम नहीं थे। पुलिस ने अपने सरकारी दस्तावेज में लिख दिया कि सोनम रघुवंशी पर देश की सेना से भगोड़ा यानी आर्मी डेजर्टर होने का शक है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आगे क्या लिखा, सोनम एक रिहा हो चुकी कैदी है जो जेल से छूटने के बाद अपना नया पता पुलिस को बताना भूल गई है। और तो और, पुलिस को सोनम पर भारत के बाहर कोई अपराध करने का भी शक था। इसे पढ़कर साफ समझ आता है कि मेघालय पुलिस ने इस मामले में किसी पुराने केस का फॉर्म उठाया, दिमाग को आराम दिया, कॉपी पेस्ट किया और नया वारंट थमा दिया। हद तो तब हो गई जब हत्या की सही धारा लगाने के बजाय पुलिस ने पूरे कागजात में बार बार धारा 403(1) लगा दिया, लिख दिया, जिसका कानून की किताब में वजूद ही नहीं है, 403(1). जबकि सोनम रघुवंशी का अपराध इतना संगीन था कि उसे सालों जेल में रहना पड़ सकता था, लेकिन पुलिस के चलताऊ लचर रवैये की हालत देखिए जिसकी वजह से सोनम को 10 महीने बाद ही जमानत मिल गई। निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक ने साफ कह दिया कि देश का संविधान हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि उस गिरफ्तारी के समय उसे सही पुख्ता कारण बताए जाएं। लेकिन जब पुलिस ने केस की बुनियाद ही इतनी हास्यास्पद कर दी, इतनी खोखली बनाई, तो पूरी थ्योरी फेल होनी थी। हाईकोर्ट ने सरकार की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कोर्ट से दखल देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने साफ कह दिया कि वो मुख्य जांच या चार्जशीट को नहीं रोक रहे हैं, वो चलती रहेगी, लेकिन पुलिस की इस घोर लापरवाही की वजह से आरोपी सोनम रघुवंशी जमानत की हकदार बन गई। इसके बाद मेघालय सरकार और वहां की पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सरकार की ओर से देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की अपील की। राहत की बात सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का भरोसा दे दिया है। सोचिए, सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे हैं कि पुलिस ने कागजों में सिर्फ एक छोटी सी टाइपिंग की गलती हो गई थी, इतनी सी तकनीकी चूक के लिए इतनी बड़ी आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये छोटी गलती या बड़ी लापरवाही, ये तो कोर्ट को भी समझ आ रहा है, तभी सोनम रघुवंशी जमानत पर है, बाहर। जिस तरह पति की हत्या जैसे संगीन अपराध में आरोपी होने के बाद भी पुलिस की लापरवाही की वजह से सोनम रघुवंशी जमानत पर बाहर है, उसी तरह आशंका है कि सिया गोयल भी क्या बच जाएगी। दरअसल किसी भी अपराध की सजा लोगों की राय या चर्चाओं के आधार पर नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए पुख्ता सबूत और गवाहों की जरूरत होती है। लेकिन सोनम रघुवंशी केस के बाद जिस तरह सिया गोयल का केस आगे बढ़ रहा है, कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई पुलिस सिया गोयल का जुर्म साबित कर पाएगी। यहां भी पुलिस की करामात का एक नमूना आप देख ही लीजिए। 28 जून को पुणे पुलिस पूरे धामझाम के साथ सिया को अपने साथ लोहगढ़ किले पर ले गई। साथ ही फोरेंसिक टीम ने केतन के कद, काठी, वजन की एक डमी तैयार की थी जिसे सिया के हाथों ठीक उसी जगह से नीचे फेंकवाया गया जहां से 18 जून को केतन को धक्का दिया गया था। जब पुणे पुलिस का रिक्रिएशन खत्म हो गया तो पुलिस वहीं से वापस लौट आई। लोगों को लगा कि पुलिस बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वो डमी खाई में लावारिस पड़ी रही। पुणे पुलिस या फोरेंसिक टीम का एक भी मेंबर यहां ये देखने नहीं आया कि डमी ट्रायल के दौरान ये डमी ऊंचाई से नीचे कहां गिरी, कितनी दूरी पर गिरी, क्या केतन की जहां से लाश बरामद हुई थी उसी जगह पर मिली, मतलब जांच आगे बढ़ाई ही नहीं गई। अब हमारी अगली खबर उन मां बाप के लिए है जिनके बच्चे किसी ना किसी डे केयर सेंटर में जाते हैं। आगे हम जो कुछ आपको दिखाने और बताने वाले हैं वो आपको अंदर से झकझोर देगा। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं, मतलब छोटा परिवार। अब जब इस न्यूक्लियर फैमिली में माँ और बाप दोनों ही नौकरी पेशा हो तो बच्चों की देखरेख के लिए कौन है? कहीं ना कहीं उन्हें मजबूरी में किसी डे केयर सेंटर के भरोसे रहना पड़ता है। बच्चा छोटा हो तो उसे 8-10 घंटे ऐसे लोगों के बीच रहना होता है जो उसके और उसके माँ बाप दोनों के लिए अनजान है। माँ बाप अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में काम करने वालों के भरोसे छोड़कर चले जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे ख्याल वैसे ही उनके बच्चों का रखा जाता होगा जैसा वो अपने घर पर रखते हैं, लेकिन कई बार इस भरोसे का कत्ल हो जाता है। बेंगलुरु के एक डे केयर सेंटर की भयानक तस्वीरें आई हैं। छोटे छोटे 2-2 साल 3-3 साल के बच्चों को यहां टॉर्चर किया जा रहा था। इन मासूमों की चीखें सुनकर आपका भी दिल बैठ जाएगा।
1: Oh, my God.

एक छोटी सी बच्ची बाथरूम में कैद करके रखा गया था। अकेलेपन की दहशत केवल वही महसूस कर सकती थी, लेकिन आप उन तथाकथित केयर गिवर्स के बारे में सोचिए जिन्होंने इस मासूम की चीखों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आरोप है ये बच्चों के साथ वहां पर रोज होता था। बेंगलुरु में आईटी कंपनी कैप जेमिनी कैंपस के डे केयर सेंटर में छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। बच्चों को अंधेरे कमरे बाथरूम में बंद कर दिया जाता था, उन्हें फ्रंट लोडिंग वाली वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता था, बच्चों को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उनके मुंह पर जेट स्प्रे से पानी मारा जाता था। कल्पना के परे है, आप सोचिए दो दो साल तीन तीन साल के मासूमों के दिल में डर बैठाने के लिए उनके साथ किस तरह की बर्बरता हो रही थी। जिन मासूम बच्चों के साथ ये सब हो रहा था ये उस कंपनी में काम करते थे जिसके परिसर में ये डे केयर सेंटर था। ये कितनी डरावनी बात है कि माँ बाप जिस वक्त निश्चिंत होकर काम में बिजी थे कि भाई बच्चों को हमने अपने डे केयर सेंटर में ही डाला हुआ है, उस वक्त उनको टॉर्चर किया जा रहा था। पुलिस ने इस केस में 5 महिला केयर गिवर्स को आरोपी बनाया है। आरोप है कि उन्होंने मासूमों को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक आघात दिए। बेंगलुरु पुलिस ने अब पूरे शहर के डे केयर सेंटर्स के कामकाज की जांच करने की बात कही है। कैप जेमिनी का बयान भी सामने आया है। उनके मुताबिक कंपनी अपने कर्मचारियों और उनके परिवार की सेहत सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और इस घटना की जांच में वो पुलिस की मदद कर रहे हैं। फिलहाल उनके परिसर के इस डे केयर सेंटर को बंद कर दिया गया है, लेकिन अगर आप भी किसी डे केयर सेंटर में अपने बच्चे को डालते हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आपके शहर में भी इस तरह के डे केयर सेंटर्स हैं तो हम यही गुजारिश करेंगे कि जो पुलिस है प्रशासन है वो सतर्क हो, जांच करे। बेंगलुरु डे केयर केस में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये धारा बच्चों की देखभाल करने वाले उन लोगों पर लगती है जो बच्चों से मारपीट करते हैं, मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, जानबूझकर उनकी अपेक्षा करते हैं। बच्चों को संभालने वाले डे केयर सेंटर्स के मामले में तो दोषी को 5 से 10 वर्षों तक की सजा, 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। यानी डे केयर सेंटर्स में अगर बच्चों के साथ मारपीट होती है या उनको प्रताड़ित किया जाता है तो उसके कर्मचारी और संस्था पर सख्त कार्रवाई होती है। और इसकी एक वजह यह है कि बच्चों का ख्याल रखने का दावा करने वाले ये डे केयर सेंटर्स वर्किंग कपल्स से मोटा पैसा लेते हैं, उन्हें भरोसा दिलाते हैं आपके बच्चे हमारे पास सेफ है, हमारे साथ प्रोफेशनल केयर गिवर्स है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आपका बच्चा सही डे केयर सेंटर में जा रहा है या नहीं इसकी निगरानी रखना आपकी जिम्मेदारी है। आखिर किसी भी बच्चे को यह सब कुछ झेलना पड़े ये हम लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं? केवल उसी डे केयर सेंटर में अपने बच्चों को रखें जिन्होंने स्थानीय प्रशासन की तरफ से लाइसेंस है, और स्थानीय प्रशासन में भी जाकर जानकारी दें। अगर पुलिस प्रशासन जरा भी शक हो फौरन कंप्लेन करें। आखिर इन बच्चों को कहीं चोट के निशान कुछ तो ऐसा दिखा होगा जो माँ बाप ने नजरअंदाज किया। डे केयर में आने वाले बच्चों और वहां के स्टाफ की संख्या का अनुपात भी ध्यान में रखें। ज्यादा बच्चे कम स्टाफ मतलब बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता, और जब ये स्टाफ पर ज्यादा बोझ होता है वो इस तरह से करने की संभावना बढ़ती है। ये सुनिश्चित करें कि डे केयर सेंटर्स के हर कमरे में सीसीटीवी हो, उनका एक्सेस आपके पास हो ताकि आप कभी भी अपने बच्चे की निगरानी कर सके। बच्चों के डे केयर में खाना किस तरह का दिया जा रहा है ये भी देखें। कभी कभी अचानक बच्चों से मिलने जाए अचानक। इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: मैं करता हूँ ना,
2: मैं करूँगा।
3: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
1: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
3: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
1: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
3: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
4: फेना पावर वॉश, अब है और शक्तिशाली।
5: गहरी सफाई,
4: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
5: गहरी खुशबू
4: और प्यार भरी भी।
5: कैसे?
4: ये है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
6: इसीलिए फेना ही लेना।
0: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
8: आगे आगे,
9: अरे उधर,
8: करेक्ट करेक्ट।
10: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
3: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
4: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: सियासत में बहुमत का मिशन इम्पॉसिबल कुछ ऐसा चल रहा है कि पूरब में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक सब कुछ हिल चुका है। बंगाल की तृणमूल कांग्रेस में टूट के बाद महाराष्ट्र में दरकते दलों की हालत देख अब शरद पवार की पार्टी सहमी हुई। पहले बंगाल की बात करें तो बंगाल में रस्सा कशी चल रही है कि असली टीएमसी कौन। इसी का दावा करने के लिए टीएमसी बागी गुट के 10 नेता दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने पेश होते हैं। टीएमसी के नाम निशान पहचान पर दावा करते हैं।
1: तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस में नाम और निशान तो हमारा ही है।
2: ग्रुप राय के सिलेक्ट करा हुए छे एस चेयरपर्सन, इलेक्ट करा हुए छे एस चेयरपर्सन थ्रू द मीटिंग इन विच द एनसीडब्ल्यू गॉट फॉर्म।
0: दरअसल 22 जून को टीएमसी के बागी गुट ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली। अरूप राय को पार्टी का अध्यक्ष बना लिया। ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहब, विप्लव मित्रा को महासचिव, फिरहाद हाकिम, अरूप विश्वास, रतिन घोष, सबीना याकमीन उपाध्यक्ष बन गए। कुल 30 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन गई। इसी की जानकारी चुनाव आयोग को देकर दल पर अपना दावा करने ये गुट आया। उधर पुरानी वाली टीएमसी के नेता कहते हैं कि ये गुट फर्जी और मुलाकात ही गैर कानूनी।
3: ये खुद को मजाक के पत्र बना रहे हैं, हास्यास्पद कर रहे हैं। और देखिए दूसरी चीज, चूहे को अगर हम चाहे शेर बनाएं और जितने भी हवा डाले, शेर तो कभी नहीं बनते।
0: कांग्रेस भले टीएमसी के बागी गुट को चूहा बताए, लेकिन बंगाल में इन दिनों ममता समर्थक नेताओं का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। और इसकी तस्वीर तब दिखती है जब दफ्तर में बंद टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई थी। नीचे दर्जनों की भीड़ अंडे और सड़ी सब्जियां फेंक रही थी। पुलिस चुपचाप खड़ी थी। महुआ लगातार हमले के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही थी। बंगाल में जो कुछ हो रहा उसे देखकर महाराष्ट्र की सियासत में शक सुबह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब से उद्धव की पार्टी के सांसद थोक भाव में शिंदे की पार्टी से जा मिले, तब से शरद पवार की पार्टी को लेकर अफवाहें उड़ाई जाने लगी। कभी संजय राउत कांग्रेस में महाविलय का आइडिया दे देते हैं तो वेरंटीवार कह देते हैं कि हाँ दिल्ली में बात चल रही है, तो कभी ऑपरेशन तुतरी का दावा करते हुए एनसीपी के धर्मराव अतराम पवार के 8 में से 5 सांसदों को अपनी एनसीपी में विलय की प्लानिंग वाली बात कह देते हैं, और कभी दोनों एनसीपी के ही संपूर्ण विलय का शगुफा सामने आ जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि ना तो पार्टी कांग्रेस में मिलेगी, ना ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने में लगी एनडीए का ध्यान एनसीपी शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है, और ये संभावना जताई जाने लगी क्योंकि कांग्रेस एनसीपी विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी के सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते, न ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है, क्योंकि टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं गठबंधन को भी है। ऊपर से पवार उद्धव कांग्रेस वाली अघाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों की गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार जैसे बड़े नेता नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जता दी थी, लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो यह है कि एक दिन पहले ही सचिन अहीर ने उद्धव का साथ छोड़कर डिप्टी चेयरमैन का पद चुन लिया। वैसे फिलहाल शरद पवार की पार्टी में 8 सांसद और 10 विधायक हैं। 2/3 टूट के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की जरूरत होगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आजकल अकेलापन दूर करने की जिद ऐसी है कि बंद कमरे में बैठे लोग भी हजारों फॉलोअर्स से घिरे हैं। नमस्कार।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: एकजे, द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: घर 3.5 घंटे तक बीजेपी की मैराथन बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद, कैबिनेट में फेरबदल, संगठन स्तर पर अधिकारियों को लेकर चर्चा की संभावना। जांच के लिए दोबारा अयोध्या पहुंची एसआईटी ने 8 घंटे तक ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की, सूत्रों के अनुसार चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी सवाल। टीएमसी में बगावत मामले पर अब चुनाव आयोग ने थामी कमान, ममता ऋतुव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश, दोनों गुट ने किया है पार्टी पर दावा। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी, एआई रक्षा क्षेत्र में करार, पीएम ने बताया विकास यात्रा का महत्वपूर्ण भागीदार, अगले 10 वर्ष में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। और ठाणे में सिस्टम की लापरवाही ने ली 2 जान, मुंब्रा में बारिश के पानी में करंट फैलने से 17 वर्ष की लड़की की मौत, डोंबिवली में खुले तार की चपेट में आने से महिला ने गंवाई जान।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
2: Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, और आज हम आपको दस्तक में दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अब ट्रस्टी चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा और गोपाल राव की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। अब एक तरफ जो चोर, चढ़ावा चोर पकड़े गए हैं उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी चल रही है, तो दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी में बड़ी मछलियों का नंबर भी लगने का टाइम आ गया है। जी हां, अब बड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए श्री राम जन्मभूमि थाने में तहरीर दे दी गई है। फैजाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से दी गई इस तहरीर में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव के नाम शामिल हैं। इन तीनों के खिलाफ FIR की जाए, ये बात कही गई है फैजाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ भी हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है, लेकिन इन पर FIR भी दर्ज हो ये कहा गया है। तो क्या अब चंपत राय और उनकी कोर टीम का नंबर लगने वाला है? और इस वक्त बड़ी खबर यही आ रही है कि चढ़ावे को लेकर SIT ने मंदिर परिसर में जांच की है, और खबर ये भी आ रही है कि 8 घंटे की इस पूछताछ में चंपत राय से भी पूछताछ हुई है और उनके साथी अनिल मिश्रा से भी पूछताछ हुई है, इसके अलावा गोपाल राव से भी पूछताछ हुई है। हम आपको सीधे इस समय हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव के पास लखनऊ लिए चलते हैं। समर्थ, क्या जानकारी है, बताइए।
3: सही, देखिए आज जो है SIT की टीम अयोध्या पहुंची और लगभग 8 घंटे की मैराथन जांच की है, जिसमें कि सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राय से पूछताछ की गई है। पूछताछ यही की गई है कि जिस तरीके से प्रकरण पूरा सामने आया है, क्या इनका इन्वॉल्वमेंट है या फिर इनकी नाक के नीचे सब हो रहा था, और अगर हो रहा था तो आखिर इन्हें खबर कैसे नहीं लगी। लगभग 1:30 बजे SIT की टीम 1:30 से 2 के बीच में अयोध्या पहुंचती है और फिर राम मंदिर परिसर में दाखिल होती है और लगातार पूछताछ करती है। कई अन्य लोगों की भी जो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं या जो कर्मचारी हैं जो वहां पर एम्प्लॉयड हैं, उनसे भी पूछताछ होती है और लगभग रात में 8:30 बजे तक, आप यकीन माने, ये पूछताछ चलती है। जी सही,
0: बहुत धन्यवाद समर्थ आपका, समय की थोड़ी सी कमी है। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता, और आगे बढ़ने से पहले आइए अब हम आपको श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की संभावना पर हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में असली एक्शन तो अब होगा। चढ़ावा चोरों पर बुलडोजर चलेगा, बड़े पदाधिकारियों का नंबर लगेगा। चढ़ावा चोरी की चंपत लीला, फैजाबाद बार एसोसिएशन ने मोर्चा खोला। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ दर्ज होगी FIR। चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या के वकीलों ने थाने में दी तहरीर। अभी तक राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हर रोज चढ़ावा चोरी मामले में कोई न कोई खुलासा हो रहा है, लेकिन आरोप यही है कि इस पूरे मामले में बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी बिना बड़े पदाधिकारियों के मिलीभगत के संभव ही नहीं है। लेकिन चढ़ावा चोरी मामले में फैजाबाद बार एसोसिएशन ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, अब राम जन्मभूमि थाने में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत कई बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी गई है, और इस शिकायत में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव के खिलाफ आरोप लगाया गया है। चढ़ावा चोरी में इनकी भी भूमिका है।
5: तहरीर जो है चंपत राव, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कई कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ हम लोगों ने दिया है, और यहाँ पे कापी उन्होंने रिसीव करके हमको GD कापी और पीली पर्ची जो जन्म सुनवाई वाली उन्होंने दे दिया है, और उन्हें बताया कि भाई उच्चाधिकारियों से बात करके आगे की कार्रवाई करके आप लोगों को सूचित करेंगे। हम लोग इनके विश्वास पे जा रहे हैं कि FIR दर्ज करेंगे।
6: अलग से FIR दर्ज करने की मांग है कि उसी FIR में नाम जो
5: ये अलग कंटेंट से अलग FIR है, अलग उसमें मामले हैं, अलग सबूत हम देंगे।
4: शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि 25 जून 2026 को दर्ज FIR संख्या 90/2026 में मुख्य आरोपियों के रूप में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय के नाम शामिल नहीं किए गए, जबकि शिकायत के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उन्हें भी आरोपी बनाया जाना चाहिए था। फैजाबाद बार एसोसिएशन की शिकायत में ये भी कहा गया है कि जांच के दौरान बरामद नकदी और जेवरात से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को FIR में शामिल नहीं किया गया, और मामले को भटकाने के लिए फर्जी कहानी गढ़ने के साथ सबूतों को कमजोर करने की कोशिश की गई।
7: पुलिस वालों ने एप्लीकेशन को रिसीव किया है, एप्लीकेशन में GD दर्ज हो गई है, चंपत राय जी हैं, राव क्या नाम है, गोपाल राव जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, कृष्ण मोहन जी हैं।
4: आपको बता दें कि अभी तक ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की बात की जाए तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक फैसला नहीं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। गोपाल राव राम मंदिर के प्रबंधन की अहम कड़ी, लेकिन राव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव, लेकिन अभी तक कोषाध्यक्ष तक जांच की आंच नहीं पहुंची। चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष चुप हैं, अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड हैं, चंपत राय ने मौन व्रत ले रखा है, गोपाल राव मीडिया के कैमरों से भाग रहे हैं, तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े ट्रस्टी महंत दीनेंद्र दास भी चढ़ावा चोरी के सवाल पर जुबान खोलने को तैयार नहीं।
8: बैंक जो है उसने कहा कि हमने तो 3 महीने पहले आगाह किया था, लेकिन ट्रस्ट के कुछ लोगों ने हमारी बात को जो है वो इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर।
4: जिम्मेदारों की चुप्पी चढ़ावा चोरी कांड पर राम भक्तों को चुभ रही है, क्योंकि राम मंदिर में राम का धन लूटा गया और राम धन की निगरानी का जिम्मा संभालने वाले मौन हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे की मांग है कि जब तक चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी, चढ़ावा चोरी का पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आएगा।
9: मैं राम के लिए लड़ा हूं, मुझे राम जी का धन वापस चाहिए, राम जी का आभूषण वापस चाहिए, राम जी की प्रतिष्ठा वापस चाहिए, अयोध्या का सम्मान वापस चाहिए। हमारी आस्था लूट ली गई, गजनी गोरी ने जो छोड़ा था उसको ये ये ये संघ परिवार के लुटेरे चंपत राय ने लूट लिया। बड़ा नुकसान होगा, इसलिए अभी समय है कि गिरफ्तार करके जेल में डालो इन चोरों को। अनिल मिश्रा से रिश्ता न निभाओ, गोपाल राव से रिश्ता न निभाओ, चंपत राय चोर से रिश्ता न निभाओ।
4: संतोष दुबे की तरह ही अयोध्या के साधु संतों का सीधा आरोप है कि चढ़ावे में चोरी हुई, राम के धन को लूटा गया, तो सीधे तौर पर दोषी चंपत राय हैं। मांग यही है कि चंपत राय पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए।
10: लुटेरा गैंग, देखिए जो बहुत मीठा होता है बाबा ऐसे ऐसे करता है, उसको का कर देगा कोई ठिकाना नहीं है। मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेकर के एसटीआई जांच बैठाए हैं, वो देखिए क्या करते हैं। 8 लोगों के तो भेजे और लोगों के सब जाने की तैयारी है, और नहीं होगा तो उन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगा।
4: दरअसल चंपत राय के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत 7 जून को दिया वो बयान है जिसमें चंपत राय चीख चीख कर दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर के बही खाते में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। यही बयान चंपत राय के गले की फांस है। 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर पुलिस चढ़ावा चोर और चढ़ावे में हुई चोरी की रकम बरामद करती है। मतलब चंपत राय को बखूबी पता था कि चढ़ावे की चोरी का खेल चल रहा है। 5 जून को पुलिस रेड डालती है लेकिन 7 जून को चंपत पूरे मामले को हजम कर जाते हैं, ये दावा करते हुए कि ऑडिट में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है।
11: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है, यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
4: 7 जून को राम मंदिर के बही खाते के ऑडिट में कुछ खामी नहीं थी तो 5 जून को चढ़ावे की गिनती में शामिल अविनाश शुक्ला के घर छापा क्यों पड़ा था? 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को एसआईटी क्यों बनानी पड़ी? और तो और 25 जून को चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर क्यों दर्ज हुई जिसके बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी तक हुई? साफ है दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अयोध्या से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और आइए अब हम आपको दिखाएं कि कैसे श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में धीरे धीरे सारी परतें खुल रही हैं। 8 आरोपियों पर शिकंजा कस चुका है। अयोध्या की कोर्ट ने आरोपी अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की पुलिस रिमांड को स्वीकार कर लिया है क्योंकि अविनाश के पास से ही सबसे अधिक कैश बरामद हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ट्रस्ट के बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? जुलाई में श्रीराम मंदिर ट्रस्ट एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाला है और इस बैठक में ट्रस्ट चंपत राय और अनिल मिश्रा के निर्णय पर विचार कर सकता है, जबकि पकड़े गए चढ़ावा चोरी के एक आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारियां भी शुरू हो चुकी। सवाल यही है कि अगर बुलडोजर चला तो क्या राम भक्तों का आक्रोश कम होगा?

0: चढ़ावा चोरों पर एक्शन भारी, बुलडोजर चलाने की तैयारी। जब योगी का बुलडोजर चलेगा तो राम भक्तों का आक्रोश कम होगा। अब राम के दान में लूट का पूरा हिसाब किताब होगा। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी कांड का आक्रोश अब देश भर में गूंज रहा है। चारों ओर से ट्रस्ट पर उठ रही उंगलियों के बीच असल मुद्दा कार्रवाई का है। 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने की संभावना है। ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों को स्वीकार करने पर फैसला 2/3 बहुमत से ही संभव है। इस बीच चढ़ावा चोरी में पकड़े गए 8 आरोपियों में से एक आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है।
1: नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लवकुश मिश्रा का। आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें।
0: लवकुश की पत्नी के नाम पर बन रही एक बिल्डिंग को लेकर अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने एक हफ्ते के भीतर लवकुश के परिजनों से जवाब मांगा है। साथ ही प्रशासन ने ये भी कहा है कि अगर जवाब नहीं मिला तो निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है।
2: अयोध्या चंदा चोरी मामले में पुलिस के बाद अब प्रशासन भी हरकत में आ गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर यानी कि सुप्रिया के नाम पर एक नोटिस थमा दिया है, जिसमें निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है वो सही स्थान पर बनी है कि नहीं बनी है उसको लेकर ये नोटिस है। एक हफ्ते के भीतर लवकुश मिश्रा के परिवार को जवाब देना है। अब इस मामले में बड़ी बात निकलकर सामने ये भी आ रही है कि अगर एक हफ्ते में प्राधिकरण को परिवार के द्वारा सही जवाब नहीं मिलता है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी प्राधिकरण कर सकता है, यानी कि आरोपी की जो प्रॉपर्टी है निर्माणाधीन उस पर बुलडोजर एक्शन

0: उन लोगों का कोई ना बैंक से लेना देना था, जिस दिन काम किया ते दिन का पैसा पाया, तो वो एक तरीके से दिहाड़ी वाले आदमी थे।
1: राम मंदिर चहावा चोरी का ये मामला बीजेपी की अब राजनीतिक परीक्षा का मसला बन चुका है। ऐसे में SIT को 15 दिन जांच का मौका और मिला है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार, अयोध्या आज तक।
2: आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो हर उन माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर यानी कि यहाँ जहाँ बच्चों की दिन भर की देखभाल होती है, सुरक्षा होती है, वहाँ छोड़ देते हैं ताकि वो अपने काम ठीक से निपटा सकें या फिर अपनी नौकरी कर सकें। लेकिन बेंगलुरु के एक डे केयर सेंटर से ऐसी हैरान करने वाली तस्वीरें आईं जिनको देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। आइए आपको दिखाएं डे केयर के शैतान।
1: बेंगलुरु में डे केयर के शैतानों पर बड़ा खुलासा। कैसे डे केयर सेंटर में बच्चे को वॉशिंग मशीन में डालकर डराया। बच्चे को बाथरूम में बंद किया, मुंह पर टॉयलेट जेट से पानी डाला। मासूम के साथ प्रताड़ना के वीडियो से कांप उठेगा कलेजा। बेंगलुरु में कैप जेमिनी कंपनी के डे केयर सेंटर ने हद पार कर दी। मासूम की चीखों में छिपा ये दर्द बेरहमी की पूरी कहानी बयान कर रहा है। 29 जून का ये वायरल वीडियो बेंगलुरु में IT कंपनी कैप जेमिनी के HEL कैंपस में चल रहे डे केयर सेंटर का है, जहां 2 से 3 साल के बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है। वीडियो में बच्चा टॉयलेट में बंद है, फर्श पर लेटा हुआ है और जोरों से रो रहा है। एक महिला बच्चे के बिलखने का वीडियो बना रही है। एक और वीडियो में महिला बच्चे को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उसके मुंह पर जेट स्प्रे से पानी डाल रही है। इसके अलावा बच्चे को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम में बैठाकर रखा गया है, उसे डराया जा रहा है, बच्चा रो रहा है। HEL पुलिस स्टेशन में अब 5 महिला केयर गिवर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। CCTV फुटेज और सभी दूसरे तकनीकी सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है।
3: In a daycare facility in an IT sector company. As per the complaint and the videos which have been given as part of the complaint, we are going through it. The Joint Commissioner East and the Deputy Commissioner of in charge of Whitefield, both are there at the place right now. They are verifying the facts. But whatever has happened is really very serious issue. And we will take stricter action. The videos are being verified. CCTVs, all other technical evidences are being looked at.
1: अब पुलिस ने 5 केयरगिवर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी केयरगिवर्स को नोटिस जारी किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। इन डे केयर सेंटर्स में ज्यादातर IT कंपनी में काम करने वाले माँ बाप अपने महज 2 से 3 साल के बच्चों को छोड़कर जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जिन बच्चों के लिए वो कमा रहे हैं उन पर ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं। कैप जेमिनी ने एक बयान में कहा है कि उसके कर्मचारियों और उनके परिवारों का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी ने कहा कि वो जांच में पूरी तरह सहयोग कर रही है और एहतियाती कदम के तौर पर डे केयर सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।
2: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे खामनेई के अंतिम संस्कार में क्यों है बारूदी खतरा। आप देखते रहिए दस्तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। एक्जे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड।
5: हाय एवरीवन, सुपर बोल चैंप वर्नन डेविस हियर फ्रॉम लीगल हेल्प सेंटर। इफ यू हैव बीन इंजर्ड

0: an accident and think you deserve compensation? Listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
1: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
3: Now in India.
4: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. AU
6: सोच बदलो और बैंक भी.
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
8: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
9: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना.
8: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
9: अर्ज किया है
8: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं.
10: वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ।
8: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें.
11: समझ कर, इन्वेस्ट कर.
12: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
7: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
11: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: हमने तब भी सवाल किया था।
15: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
14: हम आज भी सवाल करते हैं।
15: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
14: ऑपरेशन अग्नि।
15: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
14: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
16: In association with
17: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: हमने तब भी सवाल किया था।
15: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
14: हम आज भी सवाल करते हैं।
15: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
14: ऑपरेशन अग्नि।
15: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
14: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।

चढ़ावा चोरी केस में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। आरोपी लव मिश्रा के घर पर चल सकता है बुलडोजर। ये निर्माणाधीन घर है अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा का। ये घर लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम लिया था। चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद अब ये निर्माणाधीन मकान अयोध्या विकास प्राधिकरण के रडार पर है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लवकुश मिश्रा की पत्नी को नोटिस जारी किया है। एडीए ने पूछा है कि मकान के नक्शे की मंजूरी ली गई थी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक एडीए ने जांच में पाया था कि मकान के निर्माण में मानकों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। एडीए ने एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर मकान पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। सवाल ये भी है कि क्या ये जमीन और मकान चढ़ावा चोरी की रकम से बन रहा था। अब तक की जांच से पता चला है कि राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की खुल्लम खुल्ला लूट हुई, लेकिन अब पाई पाई की वसूली शुरू हो चुकी है। चढ़ावा चोरों से कुल 79,85,493 रुपए कैश बरामद हुए हैं। चढ़ावा चोरों से 1,121 अमेरिकी डॉलर भी बरामद हुए। निशानदेही पर कुल 21,548 नोटों की बरामदगी हुई, मतलब रामधन को चढ़ावा चोरों ने जमकर लूटा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला के निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई है। अविनाश शुक्ला के घर से 20,39,220 रुपए बरामद हुए। अविनाश शुक्ला ने राम मंदिर के चढ़ावे में चढ़े 1,121 अमेरिकी डॉलर पर भी हाथ साफ किया था, यानी करीब 1,00,000 रुपए। ठीक ऐसे ही अविनाश के ठिकाने से 159 ग्राम चांदी, 8 ग्राम सोने की चैन, 3 ग्राम सोने की अंगूठी भी मिली है। आरोपी लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव और रमाशंकर मिश्रा के ठिकाने से चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया है। लवकुश मिश्रा के ठिकाने से कुल 14,25,000 रुपए मिले। टिन्नू यादव के ठिकाने से 1,00,000 रुपए की बरामदगी हुई। रमाशंकर मिश्रा के निशानदेही पर 7,32,170 रुपए मिले। राम भक्तों ने अपनी आस्था नोट की शक्ल में दान पेटियों में डाली थी, लेकिन राम के दुश्मनों ने आस्था के साथ सीधा विश्वासघात किया, क्योंकि गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरों ने सिंडिकेट बनाकर चोरी को अंजाम दिया। आरोपी करुणेश पांडे के ठिकाने से 18,07,063 रुपए बरामद हुए। ठीक ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा के निशानदेही पर 16,82,040 रुपए मिले। आरोपी मनीष यादव ने भी दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की, उसके पास से 2,00,000 रुपए मिले। कैश की इस बरामदगी से साफ हो गया है कि चढ़ावे की लूट बड़े पैमाने पर हुई। समर श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। और अब खबर ईरान की। 4 जुलाई से ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार शुरू होने जा रहा है। यह कार्यक्रम 9 जुलाई तक चलेगा। ईरान में ऐतिहासिक अंतिम संस्कार की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। खामनेई के अंतिम संस्कार के आयोजन में शामिल होने के लिए भारत से भी प्रतिनिधिमंडल ईरान जा रहा है, लेकिन खामनेई के अंतिम संस्कार में खलल डालने के लिए अमेरिका और ईरान से साजिश की खबरें भी आ रही हैं। जहां ट्रंप के करीबी लॉरा लूमर ने आग उगल दी। लॉरा लूमर ने एक पोस्ट में कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पास इस समय सबसे मजेदार काम करने का अवसर है। आइए आपको दिखाएं आखिर क्या वाकई अमेरिका और इसराइल का कोई खतरनाक प्लान तैयार है।

0: खामेनेई की अंतिम विदाई में बारूदी खतरा। क्या खामेनेई के अंतिम संस्कार में खलल डालने का प्लान है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप की करीबी ने इसराइल को उकसाया? खामेनेई के अंतिम संस्कार को हमले का मौका क्यों बताया? ईरान में अंतिम संस्कार की तैयारी, इसराइल करेगा बमबारी। तेरह जून को अमेरिका और ईरान ने शांति समझौते के एमओयू पर दस्तखत किए, दावा किया कि अब शांति के वास्ते पूर्ण युद्ध विराम के रास्ते अगले 60 दिन की वार्ता में खोजे जाएंगे। इधर समझौता हुआ, उधर ईरान ने पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह का आधिकारिक ऐलान किया। युद्ध के चलते इससे पहले दो बार खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम पहले ही टल चुका था। जैसे ही खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई, अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला कर दिया। बहाना हुर्मुज बना। ट्रंप को पता था कि ईरान खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा है, लिहाजा मौजूदा वक्त में तनाव या टकराव नहीं चाहता। ऐसे में ईरान पर दबाव बढ़ाने का सही वक्त है। हुआ भी यही, वार पलटवार चंद घंटों के बाद रुक गया, क्योंकि ईरान ने खून का घूंट पीकर अमेरिका पर नए हमलों को रोक दिया, ताकि 4 जुलाई से शुरू हो रहे अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में कोई खलल ना पड़े, ताकि एक बार फिर जंग के चलते अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को टालना ना पड़े। क्योंकि खामेनेई की मृत्यु के 4 महीने से ज्यादा वक्त के बाद ईरान और इराक में 5 दिनों तक चलने वाले समारोहों के बाद उन्हें 9 जुलाई को दफनाया जाएगा। ऐसे में ईरान यही चाहता है कि अंतिम संस्कार पूरा होने तक शांति बनी रहे, युद्ध के मैदान में लौटने की नौबत ना आए। लेकिन अमेरिका और इसराइल के इरादे बिल्कुल भी नेक नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार के आयोजन में शामिल होने के लिए भारत के कई नेता और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं, जिनमें कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी शामिल हैं।
1: जो हालात हुए जंग के दौरान, उसमें बहुत सारे सवाल उठे कि कौन किसके साथ है और कितना साथ खड़ा है। बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ देना एक फ़र्ज है इंसान का, किसी भी मुल्क का एक फ़र्ज है। जब हमारे इतने गहरे और पुराने रिश्ते हैं और ईरान ने हर मौके पर हमारा साथ दिया है और हमारे साथ खड़ा रहा है, जब हमारा पाकिस्तान से मसला हुआ, मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ जनीवा गया था, तो उस वक्त ईरान ने बढ़ चढ़ कर और बड़े खुल कर हमारा साथ दिया था। और ईरान हमारे साथ बहुत रिश्ते हमेशा बनाना चाहता है और चाहता रहा है।
0: आज तक के रिपोर्टर खामेनेई के अंतिम संस्कार के समारोह को कवर करेंगे और एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आज तक की रिपोर्टर गीता मोहन और सुमित चौधरी ईरान से पूरी कवरेज करेंगे। इधर ईरान ने दुनिया से कई हस्तियों को खामेनेई के अंतिम संस्कार वाले आयोजन में आने का न्योता दिया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की बेहद करीबी लॉरा लूमर की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने दुनिया में हलचल मचा दी है। आखिर लूमर ने क्या लिखा है, उसके बारे में आपको बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि ईरान अपने पूर्व सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने की तैयारी में जुटा है। इस कार्यक्रम में करीब 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। दरअसल 4 जुलाई से शुरू होने वाला अंतिम संस्कार कार्यक्रम 6 दिनों तक चलेगा। ईरान ने 6 दिनों तक चलने वाले अंतिम संस्कार की घोषणा कर दी है, जो 4 जुलाई को तेहरान में 2 दिवसीय विदाई समारोह के साथ शुरू होगा और 9 जुलाई को मशहद में दफन के साथ खत्म होगा। 8 जुलाई को इराक में एक अंतिम संस्कार जुलूस निकाला जाएगा। अंतिम संस्कार में उनके बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के शामिल होने की खबरें हैं। दुनिया के सामने पहली बार पिता को आखिरी विदाई देने के लिए मुश्तबा नजर आ सकते हैं। मुश्तबा को 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से पब्लिक में नहीं देखा गया है। लेकिन ईरान से लेकर दुनिया में खलबली डोनाल्ड ट्रंप की बेहद करीबी लॉरा लूमर की सोशल मीडिया पोस्ट ने मचा दी है। लॉरा लूमर ने सोशल मीडिया पर लिखा, The IDF has the opportunity to do the funniest thing, yani Israeli Defense Forces ke paas is waqt sabse mazedar kaam karne ka mauka hai. और इसके ठीक बाद उन्होंने एक और पोस्ट में धमाका करते हुए लिखा, खामेनेई का अंतिम संस्कार, इसे ही हम टारगेट रिच एनवायरनमेंट कहते हैं। लेकिन ये जुबानी जंग अचानक शुरू नहीं हुई, इस बारूदी खेल की शुरुआत तब हुई जब इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स ने सीधे हुंकार भरी कि मुस्तफा खामेनेई अब इसराइल की हिट लिस्ट पर हैं और वो मार्क्ड फॉर डेथ हैं। इसराइल की इस खुली धमकी पर ईरान तड़प उठा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अराग्ची ने कहा कि अमेरिका तेल अवीव के अपने इस पालतू को काबू में रखे, वरना ईरान उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि वो भूल नहीं पाएगा। जब ईरान की तरफ से जुबान बेलगाम हुई तो ट्रंप की सबसे कट्टर सिपहसालार लॉरा लूमर ने वो बात खुलकर कह दी जो तमाम ईरान विरोधी और इजरायली समर्थकों के दिल में छिपी थी। जब लूमर से पूछा गया कि क्या आपको किसी के अंतिम संस्कार पर हमला करना अच्छा लगता है, तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, अगर अमेरिका या इजरायली सेना को जिहादियों के किसी बड़े समूह को एक साथ ढेर करने का मौका मिलता है तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो ये मौका गंवाएं। तनाव चरम पर है। ईरान ने युद्ध और इजरायली एयर स्ट्राइक के खौफ से जिस अंतिम संस्कार को 4 महीने तक रोक कर रखा, वो अब 4 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। तेहरान की सड़कों पर लाखों की भीड़ होगी। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के बड़े बड़े कमांडर वहां मौजूद होंगे। ऐसे में लॉरा लूमर का ये विस्फोटक सुझाव क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट है या फिर इसराइल के किसी इनर सर्कल के प्लान का लीक होना? नेतन्याहू कह चुके हैं ईरान के हाथों परमाणु तबाही से बचने के लिए इसराइल तीसरी बार भी ईरान पर हमला कर सकता है।
2: ईरान के दिल ओतानु ईरान लो ये
0: अगर वाकई खामेनेई के अंतिम संस्कार के आयोजन में अमेरिका और इसराइल की तरफ से कोई बारूदी साजिश रची गई, तो यकीनन फिर महायुद्ध को कोई नहीं रोक सकता है। आज तक ब्यूरो।
3: और आइए अब आपको दिखाते हैं भारत और जापान के रिश्तों की नई उड़ान। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तगाईची भारत आई हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी छोटी बहन बताया। इन्वेस्टमेंट ट्रेड पार्टनरशिप की खूब बातें हुई, कई डील हुई जो भारत और जापान के रिश्तों की बुनियाद को और मजबूत करेंगी। जी हां, भारत और जापान ने आर्थिक साझेदारी को नई रफ्तार देने का निर्णय किया। भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी कंपनियों की परेशानियों को दूर करने के लिए जापान बिजनेस वीक शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत पीएमओ के सीनियर अधिकारी सीधे जापानी निवेशकों से बातचीत करेंगे। दोनों देशों ने अगले 10 वर्ष में भारत में 10 ट्रिलियन येन के जापानी निवेश का लक्ष्य भी रखा है। भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम में 129 समझौते यानी कि एमओयूज का ऐलान किया गया। हम आपको यह भी बता दें कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में जापान 88,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की पहले अनुमानित लागत करीब 2,00,000 करोड़ रुपए थी।
4: योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाईची जी, वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी है। भारत और जापान की इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री है। सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच और अप्रोच भी समानता है और सबसे बढ़कर हमारे संबंधों की नींव अटूट आपसी विश्वास पर टिकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह विशेष साझेदारी सशक्त और समृद्ध जापान के आपके विजन, विकसित भारत के हमारे संकल्प और विश्व की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
3: और अब खबर पाकिस्तान की। जी हां, अब पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी के लिए तड़प रहा है, छटपटा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरह से सिंधु जल समझौते को स्थगित किया, अब पाकिस्तान में त्राही त्राही मच गई। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हाय तौबा मची है, क्योंकि प्यासे पाकिस्तान को समझ आ गया है कि भारत से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अभी तक पानी के लिए युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान को अब 5000 वर्ष पुरानी वो सिंधु सभ्यता याद आ रही है, जिसे उसने खुद अपने हाथों से इतिहास की किताबों से मिटा दिया था। अब पाकिस्तान कह रहा है कि सिंधु घाटी के हम तो लाल हैं।
5: That we are the people of the Indus Valley civilization.
0: पाकिस्तान का नया ड्रामा हम सिंधु घाटी के लाल। हम कौन हैं? हमारे पूर्वज कौन थे? हम आए कहां से हैं? ये वो सवाल हैं जो किसी भी आम पाकिस्तानी को डिप्रेशन में डाल सकते हैं, और इस डिप्रेशन को हवा दी है पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने, जिन्होंने अचानक दावा ठोक दिया कि पाकिस्तानी तो सिंधु घाटी सभ्यता की संतान है।
6: When we identify ourselves as Pakistanis, we ask a question as to who we are. And if you go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. Whenever I go abroad, I often tell my counterparts that we are the people of the Indus Valley civilization.
0: अब तरार साहब के इस ज्ञान पर खुद पाकिस्तान के लोग सिर पीट रहे हैं। मौलाना भाग गए हैं कि इस्लामी मुल्क में ये हिंदू बौद्ध इतिहास कहां से आ गया, और इतिहासकार हंस रहे हैं कि चलो देर से ही सही, अक्ल तो आई जब खुद को अरब का भाई बताते थे। दरअसल पाकिस्तान की बीमारी बहुत पुरानी है। साल 1947 में धर्म के नाम पर भारत से कटकर देश तो बना लिया, लेकिन इतिहास कहां से लाते। भारत से अपनी हर चीज अलग दिखाने की सनक में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी ही जड़ों को काट दिया। 1970 और 80 के दशक में जब सऊदी अरब से रियाल आने शुरू हुए, तो पाकिस्तानियों को लगा कि उनके पूर्वज तो अरब के रेगिस्तानों से आए थे। मोहम्मद बिन कासिम को पहला पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया। सालों तक पूरा मुल्क इसी मुगालते में जीता रहा कि वो तो अरबों के भाई हैं। तुर्कों को बनाया नया अब्बा। लेकिन अरबों ने जब भाव देना बंद किया, तो साल 2010 के बाद पाकिस्तानियों का अब्बा फिर बदल गया। इस बार एंट्री हुई तुर्कों की। तुर्की का एक नाटक एर्तुगरुल गाजी क्या हिट हुआ, पूरा पाकिस्तान खुद को ऑटोमन साम्राज्य का वारिस समझने लगा। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खुद को तुर्क लिखने लगे। तुर्की से ड्रोन क्या खरीदे, इन्हें लगा कि इनके खून में तो तुर्की सुल्तानों का अंश है। हालत ये हो गई कि खुद तुर्की के लोगों को कहना पड़ा कि भाई तुम लाहौर और कराची के हो, अंकारा के नहीं। अब भारत की सिंधु विरासत पर नजर। अब साल 2026 में पाकिस्तान का नया रूप देखिए, जब अरब और तुर्क दोनों ने लात मार दी और दुनिया भर में भारत की सिंधु घाटी विरासत का डंका बजने लगा, तो पाकिस्तान को अचानक 5000 साल पुराना इतिहास याद आ गया। अब वो कह रहे हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो तो हमारे यहाँ हैं, इसलिए असली वारिस हम हैं।
6: And as they say, water is life, and Indus has given life to Pakistan. So when we say that Indus is our lifeline and our people, the 240 million people of Pakistan have an inalienable right to the water of Indus, we mean it from the core of our heart.
0: लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व इस्लामी थी, बहुसांस्कृतिक थी, और उसकी जड़ें विशुद्ध रूप से भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी हैं। इसे स्वीकार करते ही पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी यानी दो राष्ट्र का सिद्धांत खुद ब खुद दम तोड़ देता है। पाकिस्तान पिछले कई दशकों से कभी अरब, कभी तुर्क, तो कभी मध्य एशिया के छोटे छोटे झूठे नैरेटिव गढ़कर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा। लेकिन भारत की सनातनी और ऐतिहासिक पहचान का एक ही प्रहार ऐसा था कि पाकिस्तान को वापस घुटनों पर आकर उसी इतिहास की भीख मांगनी पड़ रही है जिसे उसने नकार दिया था। ये किसी कॉमेडी शो से कम नहीं है जो मुल्क अपनी हस्ती को सिर्फ भारत विरोध पर टिकाए रखता हो। उसका ऐसा हाल होना तय था। धर्म के नाम पर देश तो बन गया, लेकिन संस्कृति, भाषा और इतिहास उधार का ही रहा। नतीजा आज आपके सामने है। पाकिस्तान में हम कौन हैं का कोई जवाब नहीं है। अरब से शुरू हुआ सफर तुर्क से होता हुआ अब सिंधु पर अटका है। लेकिन ये कंफ्यूजन कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सच को स्वीकार करने की हिम्मत कंगाल पाकिस्तान में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
3: दर्शक मैं आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शुभ रात्रि।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
9: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
10: Where the software engineer meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
11: AU current account के साथ मिलता है free UPI QR overdraft facility और एक ही app से bank के सारे काम। AU
12: सोच बदलो और bank भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
7: सरसों से सरसों।
8: पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
9: हर बारिश की यही कहानी, मुंबई पानी पानी। एक बार फिर मूसलाधार बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। भले ही मुंबई में मॉनसून करीब दो हफ्ते की देरी से आया हो, लेकिन बादल जिस तरह बरस रहे हैं उससे माया नगरी की सड़कें समंदर हो गई हैं। मुंबई के वसई के वाघराल पाड़ा इलाके में तो बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। बारिश के दौरान नाले में दो कारों के बहने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक कार ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से बाहर कूदकर जान बचाई। मुंबई अभी विहान श्रीवास्तव की मौत से उबरी भी नहीं थी कि नवी मुंबई के नेरुल में दो लड़कियों को करंट लग गया। दोनों युवतियां बाइक से अस्पताल जा रही थीं और बारिश के दौरान अचानक बिजली के तार उनसे जा टकराए। काफी मशक्कत के बाद लोग इन्हें बिजली के तारों से अलग करने में कामयाब रहे। नवी मुंबई में ही एक और हादसा हुआ। कामोठे सेक्टर 10 में साई सिद्धि सोसाइटी में छठी मंजिल पर एक फ्लैट की स्लैब गिरने से 39 साल के सुरेश लोखंडे की मौत हो गई, जबकि उनकी 12 साल की बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसा उस वक्त हुआ जब सुरेश लोखंडे और उनकी बेटी बेडरूम में सो रहे थे, तभी बेडरूम में स्लैब का एक हिस्सा अचानक उन पर गिर गया। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के लिए जिलेवार पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें कोंकण क्षेत्र के तटीय रत्नागिरी जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: To right field, and it will leave.
0: From the first pitch of the season to the stretch run,
1: and that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
3: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
6: राम मंदिर के चढ़ावा चोरी कांड का आक्रोश अब देश भर में गूंज रहा है. मंदिर आंदोलन से बीजेपी की राजनीतिक जमीन मजबूत हुई थी. ऐसे में जब मौका भी है और दस्तूर भी, विपक्ष हर बीतते दिन के साथ राजनीतिक दबाव बढ़ाता जा रहा है. अब कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है. चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि यूपी सरकार की एसआईटी जांच सिर्फ दिखावा है, जिसने छोटी मछलियों को पकड़ा है जबकि लूट को मिले संस्थागत समर्थन पर हाथ नहीं डाला गया है. इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि चढ़ावा चोरी का मामला गांव-गांव तक पहुंच गया है और इस बार बीजेपी को न चंदा मिलेगा, न चढ़ावा और न ही वोट. उन्होंने बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया.
7: यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है.
6: चढ़ावा चोरी मामले पर अयोध्या बार एसोसिएशन ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है. पुलिस को दी गई इस शिकायत में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के अलावा ट्रस्ट सदस्यों अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर चोरी की साजिश में शामिल होने का आरोप है. चारों ओर से ट्रस्ट पर उठ रही उंगलियों के बीच असल मुद्दा कार्रवाई का है. 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने की संभावना है. ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों को स्वीकार करने पर फैसला 2/3 बहुमत से ही संभव है. इस बीच इस बात की संभावना भी बन रही है कि आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन घर पर बुलडोजर चले. अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या के सादतगंज में बन रहे मकान को लेकर लवकुश की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने को लेकर नोटिस दिया है. फरवरी 2026 से बन रहे इस मकान को लेकर सुप्रिया को 15 दिन में जवाब देना है. चढ़ावा चोरी कांड में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के जुर्म कबूलने के बाद नए नए खुलासे भी हो रहे हैं. आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित के हाथ में करेंसी नोटों के बंडल का एक वीडियो सामने आया है. ये वीडियो जांच के दायरे में आ चुका है. वैसे जब ट्रस्ट सवालों के घेरे में है तब ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने सारा ठीकरा SBI पर फोड़ा है.
8: गिनती को लोगों ने जो गिनती में लोग लाते बैंक द्वारा लाए गए उन लोगों ने कुछ गड़बड़ी जरूर की, क्योंकि बाद में पकड़े गए उनके घर पर भी छापे पड़े और वहां भी कुछ पैसा बरामद हुआ. नियमित कर्मचारी नहीं थे उन्हीं लोगों ने, कोई उनकी परमानेंट नौकरी थी नहीं, उन्हें कोई डर तो था नहीं, अपना हेरा फेरी कर लिया.
6: जबकि चढ़ावा चोरी के दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दे रहे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किसी को विपक्ष के बहकावे में नहीं आना चाहिए.
9: जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे, और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
6: राम मंदिर चढ़ावा चोरी का यह मामला बीजेपी की राजनीतिक परीक्षा का मसला बन चुका है। ऐसे में एसआईटी को 15 दिन जांच का मौका और मिला है। आज तक ब्यूरो

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: आयसकबर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अमित शाह के घर 3.5 घंटे तक बीजेपी की मैराथन बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन रहे मौजूद। कैबिनेट में फेरबदल और संगठन स्तर पर अधिकारियों को लेकर चर्चा की संभावना। जांच के लिए दोबारा अयोध्या पहुंची एसआईटी ने 8 घंटे तक ट्रस्ट के अधिकारियों से की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी सवाल जवाब। टीएमसी में बगावत मामले पर अब चुनाव आयोग ने थामी कमान। ममता और ऋतव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दोनों गुट ने किया है पार्टी पर दावा। 12 जापान के बीच तकनीकी साझेदारी, एआई रक्षा क्षेत्र में करार। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया विकास यात्रा का अहम भागीदार। अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। ठाणे में सिस्टम की लापरवाही ने ली 2 जान। मुमरा में बारिश के पानी में करंट फैलने से 17 साल की लड़की की मौत। तो डोंबिवली में खुले तार की चपेट में आई महिला ने गवाई अपनी जान।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अगर किसी आम इंसान के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज हो तो पुलिस क्या करती है? जाहिर है, फौरन उसे गिरफ्तार कर लेती है। मगर भरत तिवारी मर्डर केस में 15 दिन बीत जाने के बाद भी बिहार पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकाउंटर के नाम पर जिन्होंने भरत तिवारी का मर्डर किया है वो सभी आरोपी कातिल पुलिस वाले हैं। कमाल ये कि पुलिस कत्ल की धाराओं में पुलिस वालों के खिलाफ FIR भी लिख चुकी है, मगर मजाल क्या जो अपने साथियों को पकड़ ले। यानी बिहार में आम लोगों के लिए अलग और पुलिस के लिए अलग कानून है। ये पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा है। तस्वीर एक हफ्ते पुरानी है, 25 जून की। उस दिन ये भोजपुर जिले के शाहपुर गांव पहुंचे थे एक इनकाउंटर की जांच करने। एक ऐसा इनकाउंटर जिसे मर्डर साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ कैमरे में कैद है। इनकाउंटर के नाम पर मर्डर करने वाले आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। धारा कत्ल का लगा है। लेकिन कमाल देखिए, एनकाउंटर के नाम पर कत्ल की जिस तस्वीर को पूरे देश ने देखा, उसे देखने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज साहब को बिहार सरकार ने 6 महीने का वक्त दिया है। जबकि 22 जून को मर्डर को लेकर जिन पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज हुई उनकी गिरफ्तारी तो छोड़िए, उनमें से एक को तो तबादले के नाम पर और भी अच्छी पोस्टिंग दे दी गई। जरा सोचिए, अगर किसी आम इंसान के खिलाफ कत्ल जैसे संगीन जुर्म में FIR दर्ज होती तो वो कब का अंदर होता। पर ये तो पुलिस वाले हैं, ये दूसरों को अंदर करते हैं, इन्हें कौन अंदर करेगा? बिहार पुलिस के हाथों भरत तिवारी के कत्ल को 15 दिन बीत चुके हैं, पर इस केस का आलम क्या है ये आपको इन दो पन्नों के जरिए पता चल जाएगा। ये भरत तिवारी की माँ आशा देवी के नाम पर आरा भोजपुर के SP को लिखी गई शिकायत की कॉपी है। यह शिकायत पत्र 18 जून को पुलिस ने रिसीव किया था। बाकायदा इस पर पुलिस की मुहर और तारीख भी है। आशा देवी ने इस शिकायत पत्र में जगदीशपुर के SDPO यानी सब डिविजनल पुलिस अफसर और उनके साथ एनकाउंटर में शामिल अन्य पुलिस वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार 22 जून को शाहपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। भरत तिवारी की मां आशा देवी की उसी शिकायत पत्र को FIR में तब्दील कर दिया गया। ये देखिए और ध्यान से पढ़िए, बाकायदा इसमें केस नंबर 178/26 और तारीख भी लिखी है 22 जून। साथ ही आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ जो 3 धाराएं दर्ज की गई है वो भी लिखी है। भारतीय न्यायिक संहिता यानी BNS के तहत आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ जो 3 धाराएं लगाई गई है उनमें पहला है 103(1) यानी मर्डर, धारा 3(5) यानी एक साथ कई लोगों के मिलकर कत्ल का इरादा, साथ ही BNS की धारा 27 यानी आर्म्स एक्ट। अब जाहिर है मर्डर के मामले में जिसकी सजा उम्र कैद से लेकर सजाए मौत तक है, आमतौर पर पुलिस FIR दर्ज करते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है, जांच बाद में शुरू होती है। लेकिन यहाँ चूंकि मामला घर का है तो पुलिस शायद भूल गई कि किसी को गिरफ्तार भी करना है। वैसे आशा देवी की शिकायत के बाद पुलिस ने कुल 5 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इनमें पहले हैं 17 जून के हुए एनकाउंटर के नाम पर भरत तिवारी का कत्ल करने वाली टीम की अगुवाई करने वाले SDPO यानी सब डिविजनल पुलिस अफसर राजेश कुमार शर्मा, और दूसरे हैं शाहपुर थाने के तत्कालीन SHO राजेश मालाकार। इन दोनों के अलावा FIR में 3 और पुलिस वालों के नाम है, लेकिन उनके नाम जाहिर नहीं हो पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि पुलिस ने न तो FIR की कॉपी आम की है, न ही उसे ऑनलाइन अपने पोर्टल पर अब तक अपलोड किया है। लेकिन माना जा रहा है कि एनकाउंटर के बाद SDPO और SHO के साथ जिन 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था उन्हीं तीनों के नाम FIR में शामिल है। एनकाउंटर के बाद SDPO और SHO के साथ सस्पेंड होने वाले जो बाकी 3 पुलिस अफसर हैं वो है सब इंस्पेक्टर हरीश चंद्र कुमार और अंकित आर्यन और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रमा शंकर यादव।
1: भोजपुर एनकाउंटर मामले में एफआईआर दर्ज हुए कई दिन बीत चुके हैं। 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं, लेकिन अब तक किसी एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर पुलिस को बचाने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर वर्दी के लिए नियम अलग है।
0: इनमें से सस्पेंडेड एसडीपीओ का तबादला कर उन्हें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। बाकी 4 पुलिस अफसर भी फिलहाल मजे में हैं।
1: भोजपुर एनकाउंटर मामले में जिस डीएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है उसका सरकार ने उत्पाद विभाग में ट्रांसफर कर दिया है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एफआईआर का जवाब तबादला है, और अगर किसी आम आदमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ होता तो क्या उसे भी केवल ट्रांसफर मिलता। कई दिन बीत चुके हैं लेकिन एक भी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है, और ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा।
0: ये भरत तिवारी के पिता हैं, बेबसी से पूछ रहे हैं कि जब सब कुछ सामने है, उनके बेटे को जब पुलिस वालों ने मारा, सारे देश ने देखा, तो फिर और किस सबूत का इंतजार किया जा रहा है।
2: प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई पड़ रहा है ना, सभी दुनिया भारत के लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, उसको इसी तरह ये भी देखिए जो हम बोल रहे हैं, उसको भी समझिए। कहे हम उनको क्यों विश्वास करेंगे, वो कप्तान में है एसपी साहब, क्या वही डील कर रहे थे तो वही ने, अब वही जांच के विषय में वही आ रहे हैं जा रहे हैं शुरू से लेकर आज तक ले, अब इनको क्या माने हम, इनको फेंका जाए यहाँ से उठा के कहीं, उसमें भलाई है, हो सकता है कि हमारे ये जांच में बाधा नहीं आ सके।
0: इनकी दलील में दम है कि जिस इलाके में उनके बेटे का पुलिस वालों के हाथों कत्ल हुआ उस इलाके के कप्तान यानी एसपी साहब अब भी अपनी कुर्सी पर जमे हुए हैं, तो फिर इंसाफ की उम्मीद क्या ही की जाए।
2: किसने गोली मारा, किसने आदेश दिया, वो क्या हुआ, वो तो वही नेतृत्व कर रहे थे। पहले इंक्वायरी नीति में उनको इसमें बाधा पड़ रहा है, हम लोग को उनको इस जोन से दूसरे जोन में उनको तबादला किया जाए, दूसरे अच्छे इंसान इसकी को यहाँ पर लाया जाए ताकि उनको हक मिले, इंसाफ हो, न्याय हो।
0: ये भरत तिवारी की वही माँ आशा देवी है जिनकी शिकायत पर 5 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। सिर्फ दर्ज हुआ है, एक्शन कुछ भी नहीं। पर इधर आशा देवी है कि कहते नहीं थकती कि सिर्फ समाज सेवा की वजह से पुलिस वालों ने उनके बेकसूर बेटे का मर्डर कर दिया।
3: एनकाउंटर ना मर्डर, मर्डर भइल बा, प्रशासन जान के मर्डर कइले बा, समाज सेवा के चलते, समाज सेवा कैला के चलते उनका मर्डर कइल बा।
0: भरत तिवारी के परिवार की लड़ाई सीधे बिहार पुलिस से है, और उन्हें भी पता है कि पुलिस की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। आशा देवी ने जिस दिन से पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है, धमकियों का सिलसिला शुरू हो चुका है।
3: धमकी आवत है मोबाइल पर हमनी के, भरत तिवारी के खानदान खत्म कर दीजिए, उनका मम्मी के मारिए, पापा के मारिए, भाई लोग के मार दीजिए, जे गुंडा बा उहे बोलत खुद, ओकरो मर्डर होके चाहिए, ओकर खानदान खत्म होके चाहिए, ओकर खानदान कहीं के मार प्रशासन।
0: भरत तिवारी की मां की शिकायत सीधे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से है। उनका कहना है कि हमेशा कमजोरों को ही निशाना बनाया जाता है, वहीं अपराधियों के खिलाफ पुलिस के बंदूक से गोली निकलती ही नहीं।
3: सम्राट चौधरी मारस मारे के चाहिए, और देश दे, देश मारे के खाली बैठा रही, बोली निखे निकलत, बोली बंद हो गई बा, खाली हमनी पर बोली निकलता, कमजोर आदमी पर अंदर डाले खाती गरीब के, चलो अंदर डाल दो, मार दो।
0: आशा देवी ने कहा है कि जिस तरह से उनके बेटे भरत तिवारी की पुलिस ने हत्या की है, उसकी वैसी ही सजा गुनहगार पुलिस वालों को मिलनी चाहिए। उनकी मांग है कि उन पुलिस वालों को फांसी से कम सजा न हो। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक उनकी ये मांग पूरी नहीं होगी वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
3: जे गोली चलौले बा ओकरा फांसी होके चाहिए आ जेकर एमे हाथ बा जेकर जेकर ओकरो फांसी होके चाहिए। हमारा ये मांग बा सरकार से कुछ मांगने के फांसी पलट के चाहिए बस केहू हो खोकर जेके जेकर हाथ होके सबके फांसी।
0: भरत तिवारी के भाई ने भी संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा है कि उनके भाई की हत्या के पीछे 1400 करोड़ रुपए का घोटाला छुपा है। बाढ़ पीड़ितों के नाम पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो पैसे दिए थे अफसरों ने उसकी बंदर बांट कर ली। उनका भाई भरत तिवारी इसी घोटाले को उजागर कर रहा था जिस वजह से उसे मार डाला गया।
4: हाथ जोड़ के पूरे देश के नेशनल चैनल से हम रिक्वेस्ट करते हैं सर, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग एक बार उस गांव में जाइए जहां बाढ़ आया था, वहां 400 घर जो है बाढ़ से दह गया, बर्बाद हो गया। सब लोग, कुछ लोग बाहर चले गए, पलायन कर लिए, कुछ लोगों को इधर उधर बसाया गया। जवानिया जिस गांव को बसाने में भरत तिवारी भाई का मतलब ये आंदोलन है, समझिएगा सर 1400 करोड़ रुपया नीतीश कुमार जी के समय में इस क्षेत्र के विकास के लिए और बाढ़ पीड़ितों के लिए आया था सर, और वो पैसा का इस्तेमाल कहाँ हुआ है एक बार आप लोग पड़ताल कीजिए, खोजिए सर। और वो भ्रष्टाचार अगर उजागर होता है तो यहाँ के माननीय सभी लोग फंसेंगे सर, जो इसमें ब्लॉक में अधिकारी होंगे, सीओ होंगे, वीडियो होंगे, जो इंजीनियर होंगे, एक्सक्यूटिव होंगे, या जो बिहार के पटना से जिनका लिंकअप होगा सर, ये सभी इसमें मिले हुए हैं। 1400 करोड़ का घोटाला कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है सर। सभी से रिक्वेस्ट करते हैं सर, इस मुद्दा के साथ उस मुद्दा का जांच कीजिए, तब पूरी सच्चाई और कहानी आपको सामने आ जाएगी।
0: भरत तिवारी के भाई ने बताया कि जब बाढ़ पीड़ितों को अस्थायी रूप से उनके गांव में लाकर बसाया गया तब उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी गई। बाढ़ पीड़ितों के लिए जो पैसे पटना से आए थे वो सब अफसर खा गए। भरत तिवारी ने उसी अस्थायी आशियाने का सच सोशल मीडिया पर उजागर करना शुरू कर दिया था।
4: भरत तिवारी लड़ाई क्यों लड़े, एक वीडियो है मेरे पास, दिखा दे अगर मत हो तो। भरत तिवारी की लड़ाई लड़ने का मुख्य वजह अभी तक कोई नहीं बताया किसी नेशनल चैनल में। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप युवा हैं, बड़े भाई हैं, और इस बात को समझिएगा, दिखा रहे हैं सर क्यों लड़ाई शुरू हुआ, ये थोड़ा आप ध्यान से सुन लीजिएगा सर।
5: लेकिन ये क्षेत्र अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ के सब दिन में अभी तुरंत बाढ़ बारिश का समय में ये बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ आ जाएगा तो इतना पानी यहाँ पे हो जाता
0: है। हालांकि जिन पुलिस वालों ने भरत तिवारी की हत्या की है, भरत के भाई उन पुलिस वालों को माफ करने को तैयार है, बस वो इतना चाहते हैं कि एनकाउंटर में शामिल पुलिस वाले उन लोगों का नाम बता दें जिनके इशारे पर उनके भाई भरत तिवारी को गोली मारी गई।
4: भैया सबसे बड़ा प्रॉब्लम था भरत तिवारी को मारने के पीछे का कि यह भ्रष्टाचार ना खुले कि 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किस किसने किया है। ये दो चार पुलिस दोषी नहीं है भैया, ये मारे हैं उनका दिल जानता होगा, वो अपने परिवार और माँ बच्चों के साथ बैठते होंगे ना तो अंदर से रोते होंगे कि हमसे कितना बड़ा पाप हो गया है। हम कहते हैं अपने देश के सामने, वो लोग आए माफी मांगे इस माँ से, अपनी गलती को माने, और किसके कहने पर मारा है लोग बस इतना बता दे, लोग पूरा देश उन लोगों को माफ कर देगा, पूरा देश उन लोगों को माफ कर देगा। बताए लोग किस सच्चाई से, मतलब जो मुख्य वजह है उनको कौन आदेश दिया, इसमें कौन कौन मिले हैं, इतना वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ये माँ माफ कर देगी, पूरा देश माफ कर देगा, हम लोग उनको बचाएंगे। सिर्फ सच्चाई खोल दे ना, इस माँ के साथ खड़ा हो जाए, अगर उनके घर में बेटी है, बेटा है, पत्नी है, माँ है, बच्चे है, तो अपने दिल पर हाथ रखे और भगवान से पूछे कि हमसे गलती हुआ है कि नहीं हुआ।
0: क्या भोजपुर के आला पुलिस अफसर या बिहार के डीजीपी और मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे? आरा से सोनू कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक। आइए अब आपको दिखाता हूँ कि दर्जनों चश्मदीदों के सामने 17 जून को भरत तिवारी को एनकाउंटर के नाम पर कैसे मारा गया था। बिहार पुलिस ने भरत तिवारी को उस वक्त गोली मारी थी जब वो अपनी पिस्टल पुलिस वालों के सामने फेंक चुका था। फिर उसी निहत्ते भरत तिवारी को पुलिस ने 5 गोली मारी। जब ये सब कुछ हो रहा था

0: तमंचा फेंकते ही अब पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं। पर इसके बाद क्या होता है वो जानने से पहले ये जान लीजिए कि इससे पहले क्या हुआ था। ये तस्वीर 16 जून की है। कुछ पुलिस वाले एक घर में पहुंचे हैं। ये घर उसी लड़के का है जिसे कुछ देर पहले आपने हाथों में तमंचा लहराते देखा था। असल में इसका नाम भरत भूषण तिवारी है। 16 जून मंगलवार को जब पुलिस भरत के घर पहुंची तब भी भरत के हाथ में वही तमंचा था। वो तमंचा पकड़े इसी तरह सामने खड़े और बैठे पुलिस वालों से बातें कर रहा है। करीब 4 घंटे तक भरत और पुलिस वालों के बीच ये बातचीत चली और फिर पुलिस लौट गई। भरत से बिना उसका तमंचा कब्जे में, ये सब कुछ भी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था क्योंकि तब भी भरत फेसबुक लाइव पर था। अब रात हो चुकी थी। खामोशी से पुलिस की टीम भरत के घर के चारों तरफ घेरा डाल देती है इस उम्मीद में कि भरत घर से बाहर निकले तो वो उसे पकड़ ले या मार दे। लेकिन भरत घर से बाहर निकलता ही नहीं। अब बुधवार की सुबह हो चुकी थी। भरत को पता चल जाता है कि पुलिस वाले उसके घर के इर्द गिर्द घेरा डाले हुए हैं। इसी के बाद वो अपने घर की छत पर जाता है। एक बार फिर से भरत पहले फेसबुक पर लाइव जाता है। तमंचा अब भी उसके हाथ में। तमंचा दिखाकर वो छत पर से ही पुलिस वालों को धमकाता है और फिर गोलियां चलाता है। भरत के गोली चलाते ही पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। पुलिस वालों के पीछे हटते ही अब भरत अपनी बाइक पर घर से निकलता है और लगभग 1.5 किलोमीटर दूर खेतों के बीच बने इस टेम्परेरी आशियाने के करीब पहुंचता है जहां कुछ बाढ़ पीड़ित परिवारों को लाकर रखा गया है। पुलिस पहले से ही भरत के ताक में थी। जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचता है पुलिस उसे सामने खड़ी मिलती है। इसके बाद फिर से भरत फेसबुक पर लाइव हो जाता है। लगभग 5 मिनट तक पुलिस और भरत के बीच बातचीत होती है। सब कुछ लाइव जा रहा था। 5 मिनट बाद आखिरकार भरत अपनी कुछ शर्तें मानने को पुलिस के आश्वासन देने के बाद तमंचा जमीन पर फेंक देता है और इसी के साथ भरत फेसबुक लाइव भी बंद कर देता है। यानी अब कैमरे पर कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। अब इसके आगे की कहानी। तमंचा फेंकने और फेसबुक लाइव बंद होते ही अचानक गोलियां चलने की आवाज आती है। शायद 3 या 4 गोली चली थी और ये सारी गोलियां भरत के पैरों पर और पेट के निचले हिस्से पर लगी थी। गोली उन पुलिस वालों ने तब चलाई जब भरत तमंचा फेंकने के बाद निहत्ता हो चुका था और शायद सरेंडर करने जा रहा था।
1: जिसको पैर में और एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में गोली लगा हुआ था। हम लोगों के पास जब आया तो उसका पल्स वगैरह बहुत ही नहीं, शॉक में था मरीज, बचने के हालत में नहीं था। बड़ी मुश्किल से हम लोग उसको जो है रिसाइसेट किए हैं। उसके बाद उसके कंडीशन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, ब्लड प्रेशर वगैरह मतलब मिलने लगा है। और ये एक्चुअली अंदर वास्कुलर इंजरी है, ब्लड मेजर ब्लड वेसल्स के इंजरी है अंदर में, जिसके वजह से मरीज जो है शॉक में चला गया। और इसको मतलब यहाँ हैंडल करना मुश्किल था, हायर सेंटर पर इसीलिए भेजा गया है।
0: ज्यादा खून बह जाने की वजह से भरत की हालत नाजुक थी, लिहाजा स्थानीय अस्पताल और डॉक्टरों उसे पटना ले जाने की सलाह दी। अब भरत को 90 किलोमीटर दूर पटना के एक अस्पताल में लाया जाता है, लेकिन भरत की मौत हो चुकी है ज्यादा खून बह जाने की वजह से।
2: इस वक्त हम मौजूद हैं आरा सदर अस्पताल में और जो मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक भरत तिवारी था उसको दो गोली लगी है, पैर में दोनों गोली लगी है और उसे अब इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी और उसी दौरान जो भरत तिवारी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भरत तिवारी को 2 गोली पैर में लगी है और उसे इलाज के लिए पटना रेफर किया जा रहा है। पुलिस अभिरक्षा में उसे पटना भेजा जा रहा है। कल से ही, मैंने अगर बात करें तो 48 घंटे से जो भरत तिवारी युवक जो अभी घायल है वो

0: सोशल मीडिया पर आकर लाइव आकर कई बातें बोल रहा था और वो हथियार के साथ जो है वो प्रदर्शन भी कर रहा था। कल भी पुलिस उसे पकड़ने गई थी लेकिन पुलिस को वो टारगेट करते हुए पिस्टल तान दिया था और वहाँ वो बार बार कई क्रांतिकारी बातें भी बोल रहा था। और हालांकि पुलिस जब उसके पास उसे पकड़ने के लिए गई तो उसके परिवार वालों द्वारा बताया गया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है।
1: पुलिस एनकाउंटर में भरत की मौत की खबर जैसे ही इलाके में फैली लोगों को गुस्सा आ गया। गुस्से की वजह ये थी कि भरत मानसिक रूप से एक बीमार नौजवान था और ये बात पूरा इलाका जानता था। ऊपर से सब कुछ फेसबुक पर लाइव चल रहा था, लोगों ने भरत को पिस्टल फेंकते हुए भी देखा था। फिर उनका सवाल था कि एक निहत्ते और मानसिक रूप से बीमार नौजवान को एनकाउंटर के नाम पर क्यों मारा गया। लिहाजा स्थानीय लोगों ने भरत की लाश नेशनल हाईवे पर रखकर एसडीएम और एसपी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए।
2: कहा कि हम मारने नहीं आए हैं, तुम हथियार जो लिया है तुम इसको बिक दो। 5 मिनट बात हुआ है उससे, 5 मिनट करीब बात हुआ है। ये लोग कहा कि नहीं हम लोग तुमको नहीं मारेंगे, अतः नहीं छल मत करिएगा हमारे साथ, कोनो हम उग्रवादी बदमाश नहीं है। तो इसके बाद में हथियार ये लोग बिगवा दिया है, हथियार बिगते हुए बैरल इसका किया है, अपने मोबाइल से किया है, सब दिखाई पड़ रहा है कि अपने हथियार अपने हाथ से बिगवाया है, वहां तक बैरल है। इसके बाद में वो लोग मार दिया है, 3-4 गोली मारा है लोग।
3: घोर अन्याय हुआ है। मान लीजिए कि एनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। और ये दूसरी बात कि हम लोग का मांग है कि यहाँ पे एसपी साहब भी आदेश दिए थे कि उनका मानसिक संतुलन, एसपी साहब यहाँ आवे और सबसे, इसके बावजूद जो यहाँ पर डीएसपी हैं और थाना प्रभारी, उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। वो मानसिक संतुलन किसी को खराब हो तो क्या प्रशासन गोली मार कर किसी का आत्महत्या कर देगी? उसको ले जाकर सुरक्षित जेल में बंद करना चाहिए, न्याय कोर्ट न्याय देगा।
1: आरा से सोनू कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर...
5: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
6: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox. For 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna. To George Michael, to Hall & Oates, and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
7: Alpha. आपने कहा था ये सबसे तेज है।
8: हाँ, कहा था,
7: लेकिन ये तय कैसे होता है?
8: प्रेशर, जब पूरा देश जवाब ढूंढ रहा होता है तब ये सवालों के बीच खड़े हो जाते हैं।
9: पहला भारतीय चैनल,
8: ये हमेशा सबसे पहले पहुंचते हैं क्योंकि ये खबर का इंतजार नहीं करते, खबर तक पहुंचते हैं।
10: मणिपुर के उस ग्राउंड जीरो पर है,
11: जगह जगह लाक्षागृह चल रहे हैं जिनसे आपको खबरदार करने के लिए आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है।
12: बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रपति पुतिन आज तक पर आने के लिए।
8: सिर्फ अनुभव, उससे ज्यादा भरोसा।
12: आज तक की खबर का असर हुआ है,
8: हर दिन कमाया जाता है। क्या ये आपके ऑपरेटिव्स हैं? नहीं, ये भारत के ऑपरेटिव्स हैं।
13: अल्फा, अल्फा को पहचानते हैं।
14: भारत के अल्फा जर्नलिस्ट, भारत के सबसे बड़े अल्फा न्यूज नेटवर्क पर।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: अमित शाह के घर 3.5 घंटे बीजेपी की मैराथन बैठक, अध्यक्ष नितिन अमीन मौजूद, कैबिनेट में फेरबदल और संगठन स्तर पर अधिकारियों को लेकर चर्चा की संभावना। जांच के लिए दोबारा अयोध्या पहुंची एसआईटी ने 8 घंटे तक ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी सवाल जवाब। टीएमसी में बगावत मामले पर अब चुनाव आयोग ने थामी कमान, ममता और ऋतुव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, दोनों गुटों ने किया है पार्टी पर दावा। भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी, एयर रक्षा क्षेत्र में करार, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया विकास यात्रा का अहम भागीदार, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में बिहार और पंजाब में 3 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता भी फरार, अब तक कुल 7 की गिरफ्तारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।
0: मुंबई के साकिनाका में सिस्टम की लापरवाही से खुले मैनहोल में गिरने की वजह से 7 साल के शख्स की मौत, मेयर ऋतु तावड़े ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। मेयर ऋतु तावड़े का मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान, मामले में बीएनसी के 4 अधिकारी सस्पेंड किए गए। महाराष्ट्र विधानसभा में मुंबई मेन हॉल हादसे पर स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मांगी है रिपोर्ट, लापरवाही पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। बीजेपी विधायक अमित साटम की ठेकेदार पर एफआईआर, जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर बोले सिर्फ निलंबन नहीं, दोषियों पर गैर इरादतन हत्या का भी मामला दर्ज हो। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद लबालब भरी पवई झील, झील के किनारे मछली पकड़ते हुए नजर आए लोग। नागपुर में मूसलाधार बारिश, गर्मी से लोगों को राहत मिली, इसीलिए सड़कों पर पानी भरने से परेशानी। गुजरात के बोटाद जिले में भी हुई जोरदार बारिश, मानसून के दस्तक के साथ गिरा तापमान। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढों में बाइक सवार समेत 5 लोग गिरे, सीसीटीवी फुटेज सामने आई, प्रशासन पर सवाल। गुजरात के गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश, रिहायशी इलाकों में कई घरों में घुस गया है पानी, जनजीवन प्रभावित। मुंबई से सटे ठाणे में मुमरा में करंट लगने से 17 साल की लड़की की मौत हुई, बारिश के पानी में जाने से लगा जानलेवा करंट। गुजरात के पाटन में हिट एंड रन मामले में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से रात की सैर पर निकले शख्स की मौत हुई, आरोपी फरार। गुजरात के भरूच में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 8 फीट का बड़ा गड्ढा बना, स्लैब टूटा, सूरत से बड़ोदरा की ओर जाने वाली लेन पर वाहनों की लंबी कतारें। गुजरात के अंबाजी में तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को टक्कर मारी, 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चोरी का मास्टरमाइंड निकला घर का बेटा, नाबालिग प्रेमिका की मदद से उड़ाए 9,70,000 रुपए, दोनों को गिरफ्तार किया गया। टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने वाले बैटर बने अभिषेक शर्मा, अभिषेक ने 785 गेंदों में पूरे किए 100 छक्के, तोड़ा वेस्टइंडीज के एवन लुइस के 789 गेंद का रिकॉर्ड। इंग्लैंड में जाकर टी20 में 50 लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने श्रेयस अय्यर, उन्होंने खेली 68 रनों की पारी, इंग्लैंड के मैदान में टी20 में किसी भी भारतीय कप्तान की सबसे बड़ी पारी। भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने करेगी श्रीलंका का दौरा, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। पहला टेस्ट गोल में 15 से 19 अगस्त तक खेला जाएगा, वहीं दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त को सेली स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से भारतीय टीम के लिए अहम है यह सीरीज, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में फिलहाल 5वें स्थान पर है भारत। कल बड़े पर्दे पर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा हो रही है रिलीज, आलिया भट्ट, शर्वरी बाग और बॉबी देओल जैसे दिग्गज कलाकार। हुमा कुरैशी की भी एक्शन थ्रिलर फिल्म बेबी डू डाई डू बॉक्स ऑफिस पर छाने को तैयार है, कल रिलीज होगी ये फिल्म। फिल्म नागबंधम भी पैन इंडिया रिलीज के लिए तैयार है, यह फिल्म तेलुगु, हिंदू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित 5 भाषाओं में रिलीज की जाएगी। सनी देओल की बहुत चर्चित पीरियड ड्रामा फिल्म बंटवारा 1947 पर बॉबी देओल का भावुक पोस्ट, लिखा आप सबसे बेहतरीन है भैया, फिल्म का बेसब्री से इंतजार। कपिल शर्मा, नीतू सिंह स्टारर दादी की शादी ओटीटी पर देगी दस्तक, कल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। बारिश के बाद मुंबई हादसों का शहर बन गया है, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ आम लोगों की जिंदगी बड़ी सस्ती है, इसलिए कोई खुले हुए मैनहोल में गिर जाता है और जान गंवा बैठता है, तो कोई करंट लगने से यहाँ अपनी जान गंवा रहा है, तो कोई बच्चा स्कूल बस पर पेड़ गिरने की वजह से मर रहा है। कुल मिलाकर 3 दिनों के भीतर 5 लोगों की जान चली गई है, और ऐसे में लापरवाह सिस्टम कब तक मुआवजे की आड़ में अपनी नाकामी छुपाता रहेगा? सवाल अब यह है कि यह सिस्टम कब तक मामूली सी बारिश में आम लोगों की जान लेता रहेगा।

0: वाकई जिस तरह से पिछले तीन दिन में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के दौरान हुए हादसों में 5 लोगों की जान चली गई, उससे यही लग रहा है कि मुंबई हादसों का शहर ही है। 30 जून मुंबई, पेड़ गिरने से विहान की मौत। 1 जुलाई नवी मुंबई, सुरेश लोखंडे की मौत। 1 जुलाई डोंबिवली, शशि चक्र की मौत। 2 जुलाई मुंब्रा, आलिया की मौत। 2 जुलाई मुंबई, असलम शेख की मौत। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई में खुले मेनहोल में गिरने से 55 साल के असलम शेख की मौत की हो रही है। आज सुबह करीब 10:30 बजे अंधेरी के साकेनाका इलाके में खैरानी रोड पर असलम शेख की खुले मेनहोल में गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आनंद फानंद में 15 फीट नीचे गटर में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन सारी जद्दोजहद भी असलम की जान नहीं बचा सकी।
1: कितना डीप डेप्थ था और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन?
2: 25 फीट का डेप्थ था। हमने अपने हरनेस की मदद से, जो हमारे पास स्पेशल अप्लायंसेस है, उसकी हेल्प से हम लोगों ने नीचे डाउन जाके हरनेस की मदद से उनको लिफ्ट किया।
1: एक नैरो एरिया रहता है, उसमें किसी शख्स को वो लिफ्ट करना, कितने लोग आप लोग थे, कैसे?
2: मेरा पूरा 15 लोगों का टीम था। हरनेस की हेल्प से हम लोग नीचे गए थे, क्योंकि ज्यादा लोग नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, अंदर गैसेस वगैरह होते हैं। तो सेफर साइड खाली एक बंदा ही नीचे गया था, उसने नीचे जाके, हाँ मैं गया था नीचे जाके, मैंने उनको हरनेस की मदद से बांध के ऊपर लिफ्ट किया।
1: वो दिखे आपको किस हालत में, मतलब लेटे हुए थे, कहीं फंसे हुए थे, कैसा पानी का बहाव ज्यादा था?
2: उनका आधा बॉडी ड्रेन लाइन में नीचे जो छोटा सा चेम्बर है उसके अंदर था और हाफ बॉडी बाहर था।
0: असलम शेख के परिवार में मातम पसरा है। परिवार पूछ रहा है कि आखिरकार सरकार और बीएमसी प्रशासन आम लोगों की जान की कीमत क्यों नहीं समझ रहा?
3: हमारी फैमिली की तरफ से एक मांग है कि आज हमारा गया ना, कल किसी और का नहीं जाए। किसी के भी जिंदगी का कोई नुकसान ना हो। जिसका जाता है वो उसको पता चलता है कि उसका क्या गया। उनका एक बेटा है, बेटी है, बीवी है, कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था। उसके लिए मुआवजा चाहिए, प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ। अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है, प्लीज। ये मुंबई में हमेशा होता है, बहुत जरूरी। सेफ्टी रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते? हर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा कमाना है, गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना है, हमसे टैक्स लेते, सब लेते, हमारी जान का क्या जाता है? हम लोग कहाँ जाए, ये बताओ।
0: हादसे की खबर सुनकर बीएमसी की मेयर रितु तावड़े भी मौके पर पहुंची। उन्होंने किंतु परंतु करने की जगह तुरंत बीएमसी प्रशासन की गलती और लापरवाही मानी। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। इतना ही नहीं, हादसे में लापरवाही बरतने को लेकर मेयर रितु तावड़े ने साकेनाका वार्ड अफसर समेत 4 बीएमसी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अधूरा काम छोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।
4: जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर तो हम लोग ने क्रिमिनल केस वहाँ पे सदृश मनुष्य बदल का गुना उसके ऊपर हमने दाखिल किया ही है। अभी इसके ऊपर जो एडिशनल कमिश्नर विपिन शर्मा जी, उसकी जो एडिशनल कमिटी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कमिटी यहाँ पे बैठी है। अभी ऑन द स्पॉट यहाँ पे जो 4 है वार्ड ऑफिसर से लेके उनको निलंबित किया है, लेकिन इसके ऊपर जो इंक्वायरी कमिटी बैठी है उसका अहवाल आने के बाद उसके ऊपर भी गुना दाखिल हुआ।
5: एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली नहीं ले रहा है मैडम, ऐसा लगता है। संजय घाड़ी जी ने भी अश्विनी भिड़े को रिस्पॉन्सिबल करा है जो मैनुअल है वो बंद नहीं करने के लिए।
4: देखो गलती तो हुई है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। प्रशासन को इतना बोलने के बावजूद ये जो 2-2 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट आप क्यों इतना लेट इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जबकि बारिश के पहले आपके, एक तो वैसे भी बारिश लेट आई, तो आपके पास कम से कम 2 महीना थे। जाली बिठाने का काम बारिश में नहीं होता है, जाली बिठाने का काम ये बारिश के पहले होता है। या अगर करते थे तो वो इंसान बच जाता था।
5: मुंबईकरों को क्या संदेश देना चाहिए मैडम, जिस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, तेज बारिश है, डर का?
4: तेज वैसे भी मैं ऑलवेज सबको कहती हूँ कि बारिश के वक्त सब जन संभाल के चले।
5: यहाँ पर 10 लाख रुपया कम्पेंसेशन जो है मृतक उसकी परिवार को देने की बात की गई है। वार्ड ऑफिसर सहित 3 बीएमसी ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है, रितु तावड़े ने खुद माना है कि बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से इतने सारे इंसिडेंट्स बारिश के मुंबई में हो रहे हैं।
0: 3 दिन में 5 लोगों की जान जाने से सरकार और बीएमसी विपक्ष के निशाने पर है।
6: कि जिस भाजपा के हाथ में आज बीएमसी है, उसे बरसात की जो पूरे तकलीफें है वो संभलने नहीं आती। पहले आपने देखा होगा कि महापौर साहिबा जब चल रही थी उनके सामने ही मुंबई महानगर पालिका के एक कर्मचारी मैनहोल में गिर गए। उन पे ही शक करके उनको ही अभी इन्वेस्टिगेशन में खींचा गया कि आपके विरोधी विपक्ष के हो। आज और एक घटना घटी है, कल कोई 2 व्यक्ति इलेक्ट्रिक्यूट हुए।
0: साकेनाका में मैनहोल में गिरने से हुए हादसे की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा में भी सुनी गई। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सरकार को सख्त निर्देश दिए कि सिर्फ अधिकारियों को सस्पेंड करना काफी नहीं होगा।
7: मुंबईत पाणी भरतं, पावसात वॉटर क्लॉगिंग होतं, ते होत असताना अनेक ठिकाणी कामं चालू असतात, तिकडे गटार उघडी ठेवली असतात. हे केवळ निलंबन करून चालणार नाही, मला वाटतं कल्पेबल होमिसाइडचा गुन्हा घ्यायला पाहिजे अशा अधिकाऱ्यांवर.
0: इसके बाद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी विधायक अमित साटम ने सदन में इस मुद्दे पर कहा कि लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
8: मुंबई में बारिश में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आज तीसरे दिन एक हादसा हुआ है जिसमें एक 60 साल के व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी. हमारे साथ बीजेपी के MLA और मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम है. उन्होंने इस मुद्दे को आज विधानसभा में उठाया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की है.
9: आज वहां पर साकीनाका में ISO डिपार्टमेंट का एक काम शुरू था और वो काम शुरू होने के समय पर उस मैनहोल को अनअटेंडेड छोड़ा गया था और एक व्यक्ति की उसमें गिरकर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी है. हमने ये मांग की है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर का वहां पर काम शुरू था उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सदोष मनुष्य वध का कल्पेबल होमिसाइड का ये गुना FIR रजिस्टर होना चाहिए. जो अधिकारी जिनके ऊपर ये काम की जिम्मेदारी थी उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और आने वाले समय में प्रशासन ने अधिक संवेदनशीलता से काम करने की आवश्यकता है और इस घटना के बैकग्राउंड पर हम प्रशासन को एक इशारा देना चाहते हैं.
0: स्पीकर राहुल नार्वेकर ने साकीनाका हादसे पर तुरंत विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने हादसे की पूरी जानकारी सदन के सामने रखी. लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी से BMC संभल नहीं गई.
10: अब मौत का कुआं देखना हो तो मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले मैन होल को देख लीजिए. जब आपको पता है कि मुंबई में बरसात होती है, कभी भी कितनी भी बरसात होती है, तो आपने पहले तैयारियां पूरी क्यों नहीं की? अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तब भी अगर आप सावधान नहीं है तो मुंबई करों के जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है.
0: वहीं ठाणे के मुंब्रा में बारिश के दौरान करंट लगने से 17 साल की आलिया की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मुंब्रा के यास्मीन पार्क की बी विंग में रहने वाली आलिया किसी काम से बिल्डिंग के बाहर निकली थी. इसी दौरान वो बारिश के पानी में उतरे करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई.
11: ये बोल के हम थक चुके हैं. आज भी कल भी आपने देखा, कल भी एक हादसा हुआ, उधर स्लैब गिर गया था. आज एक 17 साल की जवान बच्ची वो सिर्फ अपने बाप की दुकान में गई बाप को मिलने के लिए और आई उसको करंट लगे और जगह पे बची.
12: मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश अब लोगों की जान पर भारी पड़ रही है. नवी मुंबई में करंट की चपेट में आने की वजह से दो लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई थी. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सत्ता पक्ष पर संवेदनहीनता के आरोप लगाए हैं. उनका दावा यह है कि जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार का हाल तक नहीं पूछा. MNS नेताओं ने गांधीगिरी करते हुए कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया.
13: मुंबई और आसपास के इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश की वजह से कई जगह कई हादसे भी देखने को मिले. कल ऐसा ही एक हादसा नवी मुंबई के नेरुल में देखने को मिला, जहां दो लड़कियां जब स्कूटर से जा रही थी तब अचानक रास्ते पर पानी था, उसमें करंट आया और वो वहीं बेहोश हो गई. हमारे साथ हैं MNS नेता गजानन काले जी, जिनसे हम बात करेंगे, जो कल से उन लड़कियों की मदद कर रहे हैं और उनको जो भी मदद लग रही है वो पहुँचा रहे हैं. सर, कल दो लड़कियां जो हैं उनको शॉक लगा, अभी अस्पताल में एडमिट हैं, प्राइवेट अस्पताल में हैं. कल से आप इस घटना का फॉलोअप ले रहे हैं, इसका ये देख रेख कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर?
14: नहीं, बारिश के पहले कहा जाता है कि सभी काम जो भी नवी मुंबई कॉरपोरेशन के वो पूरे होने चाहिए. उसके बावजूद भी नवी मुंबई कॉरपोरेशन के कारण वो दो लड़कियों को शॉक लगता है. वो कॉलेज से आ रही थी, अपने घर जाने वाली थी, उसके बाद तुरंत उनको हॉस्पिटल में लेके आना पड़े. मुझे एखाद्या से जीव गेला तरी चले, लेकिन हम लोगों को नवी मुंबई कॉरपोरेशन को किसी की पड़ी नहीं है. नवी मुंबईकर अपने अपने जिंदगी खुद संभालो, नहीं तो सीधा हॉस्पिटल में आपको एडमिट कर देंगे. मेरे साथ उनके पेरेंट्स भी है साथ में. हम लोग कल से 8-10 घंटे से यहाँ पे, कोई भी कॉरपोरेशन का वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे नहीं आया था. जब मैंने बात की खुद कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब से तो कैलाश शिंदे साहब यहाँ पे, मतलब ये इस प्रकार से अगर बर्ताव नवी मुंबई कॉरपोरेशन करे तो नवी मुंबईकर किसके भरोसे रहे?
13: से जो सत्ता पक्ष है वो रास्ते पर से नदारद है, लेकिन विरोधी हैं वो सड़कों पर हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं. ऐसा ही माहौल और ऐसा ही चित्र यहाँ पर देखने को मिल रहा है. अब देखना होगा ये चित्र कब बदलेगा, या जो सत्ताधीश हैं वो कब सड़कों पर उतरेंगे और उन जरूरतमंदों की मदद करेंगे जिनसे 5 साल में एक बार वो वोट मांगने के लिए जाते थे. कैमरामैन आशीष धामापुरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, नवी मुंबई आज तक।
12: मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई पुलिस सैलानियों से अपील अब कर रही है कि वो समंदर के किनारे संभल कर जाएं, लेकिन बारिश के दौरान घूमने आए सैलानी हाई टाइड देखने में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
15: मुंबई के मरीन ड्राइव पर है हल्की हल्की बरसात भी हो रही है और मुंबई के मरीन ड्राइव पर आज हालांकि पिछले एक महीने में हमने देखा था बहुत ज्यादा गर्मी थी, लोग मरीन ड्राइव पर आते नहीं थे, लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए भीड़ है और हाई टाइड जो 4.53 मीटर्स की है उसको जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं उसको एंजॉय करने के लिए काफी सारे लोग हैं। इस वक्त आइए उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? आप
16: जलगांव से हो?
15: जलगांव यहाँ घूमने आए हैं?
16: हाँ, घूमने आई हूँ।
15: तो यहाँ वैसे मौसम विभाग ने कहा था हाँ। कि हाई टाइड भी आएगा, बीएमसी ने भी कहा था कि समुन्दर से थोड़ा दूर रहे हैं, फिर भी आप लोग आए?
16: नहीं, जब हम निकले जब इतना नहीं था तो 24 तास में इतना पानी स्टार्ट हो गया, तो इधर आके यही परिस्थिति देखी। जब उधर इतना नहीं बोला गया था कि ऐसे इतनी बारिश होने वाली है।
15: ये अभी देखे ऊंची लहरें आई तो पूरी गीली हो गई यहाँ पर। अभी गीले गीले रहोगे पूरे?
17: नहीं, कपड़े बदलाऊंगी ना घर के जा अच्छा। घर पे जाके
15: आप लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? मौसम अच्छा लग रहा है?
18: अच्छा है, बहुत अच्छा है।
15: जलगांव में से कंपैरिजन में बेटर है यहाँ पे?
18: हाँ, जलगांव में ऐसा नहीं है लेकिन मुंबई में अच्छा है। हाँ।
15: और आप लोग को कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है?
19: बढ़िया लग रहा है।
15: यहाँ पर मौसम विभाग ने दरअसल बारिश भी है और हाई टाइड भी है तो समुंदर से थोड़ी दूर रहने के लिए मौसम विभाग ने कहा था और बीएमसी ने भी कहा था कि थोड़ा दूर रहें क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, समुंदर में लोग चले जाते हैं। तो ऐसा डर नहीं लग रहा आपको?
16: नहीं, अभी तो नहीं, हम भी फर्स्ट टाइम आए तो हम एंजॉय कर रहे हैं अभी, लेकिन संभाल के करेंगे सब बात।
15: तो दरअसल यहाँ पर कई सारे पुलिस के लोग भी हैं, अभी फिलहाल तो दिख नहीं रहे हैं लेकिन अभी हमने आते समय भी देखा काफी सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं, लोगों को एहतियातन कह रहे हैं कि वो दूर रहें, लेकिन जाहिर सी बात है मौसम अच्छा है और जो लहरें हैं वो बीच बीच में उठ के आ रही हैं तो थोड़ा नमकीन पानी भी पड़ रहा है लोगों के ऊपर, तो वही एंजॉय भी कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं?
20: मुंबई चेंबूर।
15: अच्छा, यहीं से हैं। तो आप लोग यहाँ समुन्दर से दूर रहने के लिए बोला गया था फिर भी आप लोग यहीं पर हैं?
20: हाँ, अच्छा लगता है।
15: अच्छा लग रहा है इसलिए? आप लोग कहाँ से हैं?
20: हम लोग चेंबूर से।
15: अच्छा, आप लोग एक फैमिली के हैं। हाँ। तो आप लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं?
20: थोड़ा एंजॉय, कभी लड़के बच्चे लोग बाहर नहीं पढ़ते और उसको आज बर्थडे के निमित्त से बाहर आए।
12: क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए का दामन थामने वाले हैं? पहले ऐसी चर्चाएं थी कि वो अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने की सोच रहे हैं और उसके बाद दिल्ली से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी की नजर पवार के 8 सांसदों पर है। तो क्या पवार सियासी नफे नुकसान को तोल मोल कर ये कर रहे हैं? अभी तक शरद पवार की पार्टी के विलय की खबरों का खंडन करते आए हैं वो, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बदलने वाला है?
21: क्या शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा? क्या शरद पवार के 8 सांसदों पर बीजेपी की नजर है? क्या महाराष्ट्र का सियासी समीकरण फिर बदलने जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं। दरअसल सूत्रों से खबर है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी-एसपी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। हालांकि अभी यह बातचीत महाराष्ट्र की इकाई तक ही सीमित है। खबर है कि शरद पवार विलय को लेकर अपनी पार्टी के अंदर रायशुमारी कर रहे हैं और अगर महाराष्ट्र में डील हो गई तो उसके बाद दिल्ली में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व विलय पर अंतिम मोहर लगाएंगे।
22: शरद पवार की एनसीपी का विलय जल्द कांग्रेस में हो सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों की राज्य इकाइयों के बीच में महाराष्ट्र लेवल पर फिलहाल बातचीत चल रही है और जैसे ही चीजें तय होंगी उसके बाद दोनों पार्टी क्योंकि टॉप लीडरशिप यहां दिल्ली में बैठकर इस पर अंतिम मोहर लगाएगी। दरअसल कुछ रोज पहले अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर शरद पवार ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए बीजेपी की आलोचना की थी, जिसके बाद कई लोगों ने ये कहा कि ये दर्शाता है कि दोनों पार्टियों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। जानकारों के मुताबिक अगर एनसीपी का विलय कांग्रेस पार्टी में होता है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होगा।
21: जब से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे कैंप में शामिल हुए हैं तब से शरद पवार की पार्टी में भी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब विपक्ष बीजेपी की जोड़ तोड़ की राजनीति पर करारा प्रहार कर रहा है। कभी शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत कांग्रेस में महाविलय का आइडिया दे देते हैं तो कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार कह देते हैं कि हाँ दिल्ली में बात चल रही है। तो कभी ऑपरेशन तुतारी का दावा करते हुए एनसीपी के धर्मराव अतराम पवार के 8 में से 5 सांसदों को अपनी एनसीपी में विलय करने की प्लानिंग की बात कह देते हैं और कभी दोनों एनसीपी के ही संपूर्ण विलय का शिगुफा सामने आ जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि ना तो उनकी पार्टी कांग्रेस में मिलेगी और ना ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली से सूत्रों के हवाले खबर है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने में लगे एनडीए का ध्यान एनसीपी शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है। ये संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस एनसीपी विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते, ना ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं।
1: जिस तरीके से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सांसदों का सिलसिला बढ़ा है, उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है, के साथ साथ अब ये भी जोड़ देना चाहिए कि राजनीति में भी सब कुछ चलता है और सब कुछ जायज है।
21: एक चर्चा ये भी है कि भविष्य में शरद पवार गुट के 8 सांसद सुनित्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में जा सकते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है।
2: देखिए, महाराष्ट्र से जो शरद पवार साहब की पार्टी के विलय की खबरें हैं, हमें लगता अफवाह है, क्योंकि चाहे कितना भी आ जाए प्रलय, हम क्यों करेंगे किसी बड़े दल में विलय। हर पार्टी का अपने अस्तित्व होता है, हर पार्टी की अपनी मर्यादा होती है। शरद पवार साहब तो कांग्रेस से टूटकर ही अपना दल बनाए थे, तो कांग्रेस में रहना होता तो अपना दल क्यों बनाते। तो हमें लगता है कि सुप्रिया सुले जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो एक बात मुझे बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि शरद पवार साहब मेरे गुरु हैं, क्या कभी आपने सुना है कि गुरु की पार्टी कोई शिष्य तोड़ता है? ऐसा नहीं होता, गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ नहीं करेगी, जोड़फोड़ की राजनीति नहीं करेगी, तब तो शरद पवार जी की पार्टी के जो 8 सांसद हैं उनको कोई खतरा नहीं है।
21: क्योंकि महाराष्ट्र में टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं, गठबंधन को भी है। एनसीपी एसपी, शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों के गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार सहित प्रमुख नेता मौजूद नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं, तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो यह है कि एक दिन पहले ही आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी और शिवसेना यूबीटी एमएलसी सचिन अहिर भी उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे सेना के सारथी बन गए हैं। सचिन अहिर को महायुति ने विधान परिषद में डिप्टी चेयरमैन के पद का इनाम दिया है। उनके नामांकन में फडणवीस शिंदे और सुनित्रा पवार तीनों लोग मौजूद रहे। वैसे अभी एनसीपी शरद गुट में 8 सांसद और 10 विधायक हैं, और अगर विलय को लेकर शरद पवार की पार्टी में आम राय नहीं बनती तो 2/3 के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की दरकार होगी। सवाल है कि दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में रहे शरद पवार के मन में क्या चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पवार ही जानते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।
12: जोड़ तोड़ और दल बदल की सियासत पर आज तक से खास बातचीत में सीएम फडणवीस ने कहा है कि फिलहाल सभी बागियों के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव के कुछ सांसद बीजेपी में आना चाहते थे लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया।
19: आम्ही साधारणपणे आमचं दार बंद ठेवलं होतं, स्पष्ट सांगायचं झालं तर आमचं दार बंद होतं। आम्ही या कोणाही करता भाजपचं दार उघडलं नव्हतं, कारण आमचं असं मत होतं की त्यांना जर जायचं असेल तर त्यांनी शिवसेनेत जावं, शिवसेना हा त्यांचाच पक्ष आहे, ते शिवसेनेतनंच निवडून आलेले आहेत, त्यामुळे त्यांनी शिवसेनेतच जावं। त्यामुळे भारतीय जनता पक्षातनं आम्ही प्रयत्नही केला नाही। हे खरं आहे की त्यातल्या 1-2 लोकांनी इच्छा पण प्रदर्शित केली की आम्हाला भाजपमध्ये यायचंय, पण आम्ही त्यांना स्पष्ट सांगितलं की आमच्याकडे ही व्यवस्था सध्या नाही।
12: और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
1: फरवरी में केतन और सिया की सगाई हुई थी, ये उसी रस्म से जुड़ा वीडियो है। वीडियो में केतन और सिया का परिवार दिख रहा है। केतन के घर वाले इस मौके पर बेहद खुश थे, लेकिन अब हत्या के बाद सगाई से जुड़ा ये वीडियो सामने आया है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि 5 महीने पहले जो खुशी मिली थी वो एक झटके में छीन ली गई। 18 जून को केतन की हत्या कर दी गई। उस मामले में पुणे पुलिस ने एक दिन पहले ही लोहागढ़ किले में क्राइम सीन पर जाकर दूसरी बार रिक्रिएशन किया। आरोपी चेतन भी साथ था।
2: जैसे मैंने कहा, जहाँ जहाँ वो रुके थे, वो जहाँ पे उन्होंने स्पॉट दिखाए, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पर जहाँ रुके थे उन्होंने हमें बताया। हमने डमी का यूज किया था, केतन जो किए हुए है इसमें उनका जो वेट था उसके वजन का हमने डमी यूज किया था उसमें।
1: चेतन के साथ सिया भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार है। उसके परिवार वाले अब कह रहे हैं कि जांच में अगर सिया गुनहगार हुई तो उसे वही सजा दी जानी चाहिए जो चेतन के साथ हुआ।
3: जो केतन जी के साथ हुआ है, इमीडिएटली तहकीकात करके और इमीडिएटली जो केतन जी के साथ हुआ वही सजा सिया को मिलनी चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है बस।
1: इस मामले में सिया और चेतन 3 जुलाई तक पुलिस रिमांड में है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बाबले, पुणे आज तक।

अमित शाह के घर 3.5 घंटे तक बीजेपी की मैराथन बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन रहे मौजूद। कैबिनेट में फेरबदल और संगठन स्तर पर अधिकारियों को लेकर चर्चा की संभावना। चढ़ावा चोरी में जांच के लिए दोबारा अयोध्या पहुंची एसआईटी ने 8 घंटे तक ट्रस्ट के अधिकारियों से की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी सवाल जवाब। टीएमसी में बगावत मामले पर अब चुनाव आयोग ने थामी कमान। ममता और ऋतुव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दोनों ही गुटों ने किया है पार्टी पर दावा। और भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी है रक्षा क्षेत्र में करार। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया विकास यात्रा का अहम भागीदार, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। और महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में बिहार और पंजाब से 3 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता भी फरार। अब तक कुल 7 की गिरफ्तारी।

भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी पर हुए कई समझौते, एआई डिफेंस के क्षेत्र में होगा बड़ा निवेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जापान की मदद से देश में लगेंगे 1000 फर्टिलाइजर कारखाने। अगले 10 साल में भारत में 10 ट्रिलियन येन के जापानी निवेश का लक्ष्य। इंडिया जापान बिजनेस फोरम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, सुजुकी की दो तिहाई कारें भारत में बन रही हैं, 100 से ज्यादा देशों में किया जा रहा है निर्यात। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत जापान के बीच रिश्ते पहले से और ज्यादा मजबूत हुए हैं, भारत में विकास की यात्रा में जापान की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी 4 जुलाई को जोधपुर में यूडीएन स्कीम को 10 साल बढ़ाने का करेंगे ऐलान। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और हवाई यात्रा को सस्ता बनाना मकसद है। अमित शाह के घर बीजेपी की बड़ी बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन समेत संगठन महासचिव भी मौजूद थे। कैबिनेट में फेरबदल और संगठन स्तर पर बदलाव को लेकर चर्चाओं की संभावना। 4-5 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी दौरे पर, लखनऊ में बीजेपी सांसदों विधायकों संग विधानसभा चुनाव तैयारियों पर करेंगे अहम बैठक। देश का विदेशी कर्ज बढ़ने पर अमित मालवीय का कांग्रेस पर वार, बोले कांग्रेस को अर्थशास्त्र की समझ नहीं है। चढ़ावा चोरी मामले की जांच में एसआईटी टीम फिर से पहुंची अयोध्या, आरोपी अविनाश शुक्ला से पुलिस की पूछताछ। एसआईटी ने 8 घंटे तक ट्रस्ट के अधिकारियों से की है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी सवाल जवाब। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी को न चंदा मिलेगा, न चढ़ावा और न ही वोट। अखिलेश यादव बोले सरकार के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार वसूली का खेल लगातार जारी है। चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले उत्तर प्रदेश में बदल देंगे पूरा गेम, फिलहाल उम्मीदवार उतारने का ऐलान नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दिए बड़ी राहत, प्रदेश में लगातार 7 साल भी बिजली के दरों में नहीं की जाएगी कोई बढ़ोतरी। यूपी टेट परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश, पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने असली अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहे 15 लोगों को दबोचा। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय सरकार की सोनम को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, जमानत के रोक और आत्मसमर्पण की मांग, आज होगी सुनवाई। झारखंड कैबिनेट में रिम्स 2 को हेमंत सरकार ने दी मंजूरी, करोड़ों की लागत से बनेगा 2600 बेड वाला अस्पताल। चुनाव आयोग ने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को लेकर टीएमसी के दोनों ही गुटों ऋतुव्रत और ममता से मांगा है जवाब, 6 जुलाई तक समय दिया गया। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने बागी गुट ऋतुव्रत के प्रतिनिधिमंडल को ईसी संघ बैठक को बताया है गैरकानूनी, कहा यह कोई गुट नहीं बल्कि टुटफुटिया झुंड है जिसमें इधर उधर से लोग शामिल हुए हैं। पश्चिम बंगाल में साइबर अपराध पर शुभेंदु सरकार सख्त, 500 थानों में साइबर हेल्प डेस्क का उद्घाटन, नागरिकों को साइबर अपराध जागरूकता और सहायता प्रदान करेगी पुलिस। कोलकाता के कालीघाट आवास में ममता बनर्जी से मिली एसपी सांसद जया बच्चन, डेरिक अभिषेक भी मौजूद थे, मुलाकात में सियासी अटकलें तेज। कोलकाता के ताला गोदाम हादसे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया है स्वतः संज्ञान। आरजी का रेप मर्डर केस में पीड़िता के पिता का विस्तार सैंपल के साथ फॉरेंसिक जांच से छेड़छाड़ का दावा, सियालदा कोर्ट में पत्र देकर की सीबीआई जांच की मांग। मुंबई के साकीनाका में सिस्टम की लापरवाही से खुले मेनहॉल में गिरने से 60 साल के शख्स की मौत हुई, मेयर ऋतु तावड़े ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। मेयर ऋतु तावड़े का मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान, मामले में बीएमसी के 4 अधिकारी भी सस्पेंड किए गए। महाराष्ट्र विधानसभा में मुंबई मैनहोल हादसे पर स्पीकर राहुल नावेलकर ने मांगी रिपोर्ट, लापरवाही पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। बीजेपी विधायक अमित साटन की ठेकेदार पर एफआईआर, जिम्मेदार अधिकारी को तत्काल निलंबित करने की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर बोले सिर्फ निलंबन नहीं, दोषियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज हो। 20 जुलाई को आ सकता है नीट री एग्जाम का रिजल्ट, एनटीए सूत्रों के हवाले से खबर, एडमिशन प्रक्रिया में देरी न करने की कोशिश। भारतीय नौसेना का एक और उपलब्धि, युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद ने अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती की एक और कोशिश को नाकाम किया। बेंगलुरु में स्ट्रेट क्वार्टर में बम की धमकी का ईमेल मिला, लोगों को बाहर निकालकर गई सघन जांच की गई, अब तक नहीं मिला कोई भी संदिग्ध वस्तु। देहरादून में अंकिता मर्डर केस में एजेंसी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शनकारियों ने सीबीआई जांच की पर सवाल उठाए हैं। उधम सिंह नगर में मानसून आपदा से निपटने के लिए प्रशासन की मॉकड्रिल, बाढ़ बचाव की तैयारियों का अभ्यास किया गया। बाबा बर्फानी का पवित्र यात्रा को पैदल शुरू करने के लिए बालटाल पहुंचे उत्साही श्रद्धालु, आज से होगी यात्रा की औपचारिक शुरुआत। बालटाल बेस कैंप पहुंचने से पहले रामबन में अमरनाथ यात्रियों का भव्य स्वागत हुआ, भक्तों ने लगाए महादेव के जयकारे। शालीपुरा ट्रांजिट कैंप पर भक्तों की अगुवाई के लिए डेप्यूटी कमिश्नर रहे मौजूद, यात्रा मार्ग पर भारी सुरक्षा के इंतजाम। अमरनाथ यात्रा रूट पर मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से निपटने के सभी इंतजाम, पहाड़ी इलाकों में लगाई गई माउंटेन रेस्क्यू टीम।
चमोली में लगातार हो रही बारिश के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। सड़क मार्ग धंसने की वजह से प्रशासन ने फैसला लिया। केदारनाथ धाम में हो रही लगातार बारिश के बीच भक्तों का जोश हाई। अब तक 13,80,000 से ज्यादा यात्री कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। बागेश्वर में भी राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉनसून की आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखा गया। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर लगा विराम। हिमालयन रेंज में मॉनसून सक्रिय हो जाने के चलते प्रशासन का फैसला, तीर्थयात्रियों के सहयोग से रोकी गई है यात्रा। पहाड़ों पर मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बारिश के साथ ही बद्रीनाथ का पूरा माहौल हुआ ठंडा और सुहावना। बारिश के बाद प्रशासन के यात्रियों को सुरक्षित यात्रा की सलाह। मौसम विभाग ने भूस्खलन संभावित इलाकों के लिए जारी कर दिया है अलर्ट। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद लबालब भरी पवई झील। झील के किनारे मछली पकड़ते हुए नजर आए लोग। नागपुर में हुई मूसलाधार बारिश, गर्मी से लोगों को मिली है राहत। बीच सड़क पर भरे पानी से लोग परेशान। गुजरात के बोटाद जिले में हुई है जोरदार बारिश। मॉनसून की दस्तक के साथ तापमान में गिरावट। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढों में बाइक सवार समेत 5 लोग गिरे। सीसीटीवी कैमरे में हादसा कैद, प्रशासन पर उठे सवाल। गुजरात के गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश, रहायशी इलाकों में कई घरों में घुस गया था पानी, जनजीवन प्रभावित। गुजरात में अगले एक हफ्ते के लिए मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के शहर में अति भारी बारिश का पूर्वानुमान। पटना में भी हुई रिमझिम बारिश, गर्मी से लोगों को राहत मिली। भुवनेश्वर में हुई जोरदार बारिश, गर्मी से राहत के साथ मौसम भी सुहाना हुआ। हुबली में भी जमकर बरसे हैं बादल, जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों पर पानी। मध्य प्रदेश के खरगोन में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान। पुलिस की हिदायत के बाद भी बस चालक से सवारियों से भरी हुई बस को पानी में उतारा। गुजरात के वलसाड में शॉर्ट सर्किट से एक अपार्टमेंट के फ्लैट में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। जयपुर में 3 मंजिला इमारत में गद्दे की दुकान में लगी थी भयंकर आग। बेसमेंट में रह रहे परिवार को दमकल की टीम ने किसी तरह सुरक्षित रेस्क्यू किया। बागपत में खेत से मिट्टी उठाने पर दो पक्षों में विवाद हुआ। पहले डंपर से कार को रौंदा, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, युवक की हालत गंभीर। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, हादसे की भयावह तस्वीरें सामने आई। देवरिया में हाईवे पर सड़क पार कर रहे बच्चों को बुलेरो ने कुचल डाला। सड़क के दूसरी तरफ पिता की दुकान पर जा रहा था मासूम। फरीदाबाद में दो पक्षों में मामूली सी कहासुनी को लेकर झड़प हुई। दबंगों ने युवक पर चढ़ाई कार, कुचलने की कोशिश का वीडियो वायरल हुआ। श्रीगंगानगर में आवारा सांड का आतंक, ट्यूशन से लौट रही 5 साल की बच्ची समेत परिवार पर किया हमला, 3 घायल हुए। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 250 करोड़ से ज्यादा की ठगी में 119 साइबर अभियुक्त गिरफ्तार। वाराणसी में फर्जी दरोगा गिरफ्तार, 12वीं पास युवक। पुलिस नगर निगम कचहरी में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था लाखों की ठगी। बांका में मिनी ट्रैक्टर की चपेट में आए 10 साल के बच्चे की मौत हुई, घायल हुआ चालक फरार। अलीगढ़ में टोपी खींचने को लेकर मामूली से विवाद में दो गुट आपस में भिड़े, दोनों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला बोला। मथुरा में दूसरी मंजिल से गिरी थी बच्ची, मौत हुई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। यूपी के झांसी में मकान की खुदाई में मलबे में चांदी के पुराने सिक्के मिलने के बाद अफवाह, इलाके में मची भगदड़, पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया। केरल के कासरगोड में प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर ने युवक को बेरहमी से पीटा, एक स्कूल परिसर में पुलिस ने बर्बरता की, 3 गिरफ्तार। उज्जैन में महिला को दी गई तालिबानी सजा, बाल काटे, जूतों की माला पहनाकर गांव के बाहर जुलूस निकाला, 11 आरोपियों पर केस दर्ज। गुजरात के पाटन में हिट एंड रन हादसा, तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से रात की सैर पर निकले शख्स की मौत हुई, आरोपी फरार। गुजरात के भरूच में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 8 फीट का बड़ा गड्ढा और स्लैब टूटा। सूरत से वडोदरा की ओर आने वाले लेन पर वाहनों की लंबी कतारें। गुजरात में अंबाजी में तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को मारी थी जोरदार टक्कर, 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चोरी का मास्टरमाइंड निकला, घर का ही बेटा नाबालिग प्रेमिका की मदद से उड़ाए 9,70,000 रुपए, दोनों की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के सांगली में 19 साल के युवक के सुसाइड केस में नया खुलासा, धन परिवर्तन के दबाव के आरोप सामने आने पर जांच तेज। T20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने वाले बैटर बने अभिषेक शर्मा। अभिषेक ने 785 गेंदों में पूरे किए 100 छक्के। इंग्लैंड में जाकर T20 50 लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने श्रेयस अय्यर। उन्होंने खेली 68 रन की पारी। इंग्लैंड के मैदान पर T20 में किसी भारतीय कप्तान की यह सबसे बड़ी पारी। भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने करेगी श्रीलंका का दौरा, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। पहला टेस्ट गोल में 15 से 19 अगस्त के बीच खेला जाएगा, वहीं दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त को सिहली स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से भारतीय टीम के लिए अहम है ये सीरीज। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में फिलहाल पांचवें स्थान पर है भारत। आज बड़े पर्दे पर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा हो रही है रिलीज। आलिया भट्ट, शर्वरी बाघ और बॉबी देओल नजर आएंगे। हुमा कुरैशी की भी एक्शन थ्रिलर फिल्म बेबी डू डाई डू बॉक्स ऑफिस पर छाने को तैयार। आज रिलीज होगी फिल्म। फिल्म नागबंधमम भी पैन इंडिया रिलीज के लिए तैयार है। यह फिल्म तेलुगु, हिंदू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित पांच भाषाओं में रिलीज की जाएगी। सनी देओल की बहुत चर्चित पीरियड ड्रामा फिल्म बटवारा 1947 पर बॉलीवुड का भावुक पोस्ट, लिखा आप सबसे बेहतरीन है भैया, फिल्म का बेसब्री से इंतजार। कपिल शर्मा, नीतू सिंह स्टारर दादी की शादी ओटीटी पर देगी दस्तक, आज नेटफ्लिक्स पर की जाएगी स्ट्रीम। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खाम ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे, सुरक्षा कारणों के लिए लिया गया फैसला। 4 जुलाई से शुरू अंतिम संस्कार 9 जुलाई तक चलेगा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा हमला, 20 से ज्यादा लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। कीव का मशहूर प्रीमियर पैलेस होटल, कई रिहायशी इमारतों पर भी किया गया था हमला। सीरिया की राजधानी दमिश्क में कैफे में भीषण बम विस्फोट, 5 लोगों की मौत हुई, 16 घायल। ईरानी सेना ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को दिए चेतावनी का, हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी तेल टैंकर हुए हैं समुद्री रास्तों का नहीं करें इस्तेमाल, नहीं करने पर कड़ा जवाब मिलेगा। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स का बड़ा बयान, कहा लेबनान, गाजा पट्टी और सीरिया की सिक्योरिटी जोन में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगी इसराइली सेना। सीरिया के विदेश मंत्री ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और संसद अध्यक्ष नबीह बेरी से मुलाकात की। सीरिया विदेश मंत्री असद अल शिबानी बोले, जरूरत पड़ी तो हिजबुल्लाह से बातचीत तो मुलाकात के लिए तैयार। 3 दिनों के भारत के दौरे पर जापान के प्रधानमंत्री साने ताकायची, जापान के प्रधानमंत्री ताकायची ने कहा हम भारत के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने आर्मेनिया के लिए 1.8 करोड़ यूरो की अतिरिक्त आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया है। रूस के साथ रिश्तों में गड़बड़ाहट के बाद यूरोपीय यूनियन के करीब आया है आर्मेनिया। अमेरिका ने यूएसएमसीए के मौजूदा स्वरूप को बढ़ाने का से इनकार कर दिया। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की वर्चुअल बैठक में लिया गया फैसला। साल 2013 के बाद पहली बार इंडोनेशिया पहुंचे बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको। इंडोनेशिया राष्ट्रपति ने मुलाकात में दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ईरान से बड़ी खबर दिखाएंगे, जहां पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम विदाई कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। 4 जुलाई से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस जनाजे में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई नजर आएंगे। मार्च के महीने में सुप्रीम लीडर बनने के बाद से मुश्तबा खामनेई कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। शिया परंपराओं के मुताबिक पिता के जनाजे में बेटे की मौजूदगी अहम मानी जाती है, इसीलिए उनके आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन क्या वो सुरक्षा कारणों से इस बार भी कैमरे के सामने नहीं आएंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि जिस रशिया से भारत अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है, उस रशिया को भारत से पेट्रोल क्यों खरीदना पड़ रहा है। नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत से हजारों मीट्रिक टन पेट्रोल की खेप रशिया भेजी गई है। सवाल यह है कि जिस देश के पास कच्चे तेल का इतना बड़ा भंडार है, वो भारत से पेट्रोल खरीदने को क्यों मजबूर है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के सहारे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की क्रिप्टो करेंसी से लॉटरी कैसे लग गई है। और आपको बताएंगे कि जो ये मुनीर के साथ मोहब्बत है, इसके पीछे क्रिप्टो है। इसके बाद आपको बताएंगे कि पति की हत्या जैसे गंभीर मामले की आरोपी सोनम रघुवंशी को आखिर जमानत कैसे मिल गई, और हाईकोर्ट ने भी पुलिस की अपील क्यों खारिज

304 करोड़ रुपए का है, जो साल 2034 तक 2.9 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। ट्रेड एक्सपर्ट्स, और खास तौर पर अगर आप देखें तो ट्रेड एक्सपर्ट्स, नेशनल मास्टर और गिटनेस की यह रिपोर्ट है जो ये कहती है कि भारत में हर व्यक्ति पर 4.2 लीटर एनर्जी ड्रिंक्स की खपत होती है, और जो युवा हैं उनमें इसकी खपत और भी ज्यादा है। ये आंकड़े हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने एनर्जी ड्रिंक्स बनाने वाली 6 बड़ी कंपनियों को नोटिस भेजा है। यह खबर आपको सावधान करेगी। इनमें मशहूर ब्रांड रेडबुल है, पेप्सिको का एड्रेनालिन रश है, रिलायंस का कैंपा गोल्ड बूस्ट है, स्टिंग है, हेल एनर्जी है, इसमें मॉन्स्टर एनर्जी भी शामिल है। ये सारे वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जिनके बारे में आप सब जानते होंगे और संभव है कि आपने इन्हें कभी ना कभी टेस्ट भी किया हो या पीते हो। लेकिन अब FSSAI ने इन एनर्जी ड्रिंक्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने का कहना है कि इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को एनर्जी ड्रिंक्स बताकर बेचा जा रहा है, जबकि भारत में अभी तक एनर्जी ड्रिंक्स नाम की कोई अलग श्रेणी या मानक तय ही नहीं हुआ है। यानी कानूनी रूप से हमारे देश में एनर्जी ड्रिंक्स जैसा कोई प्रोडक्ट है हो ही नहीं सकता, लेकिन आरोप है कि ये कंपनियां फिर भी लोगों को भ्रमित करके ये ड्रिंक्स एनर्जी ड्रिंक्स बताकर बेच रही हैं। ये FSSAI ने खुद लिखा है। और यही नहीं, FSSAI का आरोप है कि इन सभी ड्रिंक्स की पैकेजिंग पर यह दावा किया जाता है कि इनसे फोकस बढ़ता है, ये शरीर और दिमाग को तरोताजा रखती हैं, एनर्जी बढ़ाती हैं, थकान कमजोरी दूर करने में मदद करती हैं, जबकि ये दावे भी FSSAI के मुताबिक सही नहीं है। आइए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि आखिर हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। FSSAI ने सबसे पहले क्या कहा है, उनका यह कहना है कि एनर्जी ड्रिंक या इस तरह के उत्पादों के लिए कोई मानक हमने बनाया ही नहीं है। ये वर्ड है, कोई स्टैंडर्ड हमने बनाया ही नहीं है। एनर्जी ड्रिंक्स का कोई स्टैंडर्ड है नहीं, तो आप एनर्जी ड्रिंक के नाम से इसको क्यों बेच रहे हैं। वहीं फूड कैटेगरी सिस्टम का मकसद उत्पादों का नाम रखना या लेबलिंग करना नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप देखेंगे इन तमाम कंपनीज का, तो FSSAI हैज नॉट नोटिफाइड एनी स्टैंडर्ड फॉर एनर्जी ड्रिंक। ये हमने सीधा FSSAI की तस्वीर निकाली है आपके लिए, तो इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि एक सेकेंड, ये आप देखेंगे FSSAI की तरफ से ये डाला गया है। उन्होंने हर ड्रिंक का इस तरह से तस्वीर डाली है। द क्लेम मार्केटेड एंड लेबल्ड यूजिंग डिस्क्रिप्टर्स लाइक एनर्जी ड्रिंक, आप इसको एनर्जी ड्रिंक बताते हैं, लेकिन फैक्ट क्या है, FSSAI ने लिखा है कि एनर्जी ड्रिंक टाइप का कोई मानक नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। और आप जो ये बार बार क्लेम करते हैं ना कि ये वाइटलाइजेस बॉडी यानी शरीर को तेज करता है, दिमाग को तेज करता है, फोकस बढ़ाता है, जी हाँ, ये थोड़ा जूम इन करके दिखाइए, एनहांसिंग फोकस, ये जब आप अंडरलाइन करके ये वाला पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, एनहांसिंग फोकस मतलब ये कह रहे हैं कि ये दिमाग का फोकस भी बढ़ाता है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, जब आप ये वाला हिस्सा यहां पर देखेंगे, ये देखिए, अब यहां पर जूम इन कीजिए, ये एनहांसिंग फोकस, बूस्ट एनर्जी लेवल, एनर्जी बढ़ाता है, कमजोरी दूर करता है, तो इसको सीधे सीधे नॉट परमिसिबल कह दिया है, नॉट परमिसिबल, इसकी इजाजत नहीं होगी। रेड बुल के बाद ये दूसरा जो ड्रिंक डाला है FSSAI ने, वो है एड्रेनालिन रश एनर्जी ड्रिंक, ये भी एनर्जी ड्रिंक, इसमें भी सिमिलर बातें कही गई हैं। फिर अगला है ये स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, जिसके बारे में FSSAI ने वही सेम बातें कही है। फिर मॉन्स्टर एनर्जी, ये जो एनर्जी ड्रिंक है इसके बारे में कहा है, पूरा डिस्क्रिप्शन FSSAI ने कहा है। फिर अगला है कैंपा एनर्जी ड्रिंक, जिसके बारे में सेम बात कही गई है, और ये है हेल एनर्जी ड्रिंक, जिसके बारे में सेम बात कही गई है। खाद्य उत्पादों के लिए एनर्जी बढ़ाना, कमजोरी दूर करना जैसे दावे करने की अनुमति नहीं है, ये सीधे सीधे बताया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, बड़ी बात क्या है कि ऐसे ड्रिंक्स जिसकी जो FSSAI फ्लैग कर रही है, वो इतनी तादाद में भारत में लोग पी रहे हैं, और खास तौर पर हमारी युवा पीढ़ी, और ऐसे तमाम दावे
जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि उनको अचानक से इससे ऊर्जा आ रही है या उनका फोकस बढ़ रहा है, उन सबको FSSAI ने गलत

मत माना है। अब FSCI के इस नोटिस के बाद इन कंपनियों को यह बताना होगा कि उन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए इन ड्रिंक्स को एनर्जी ड्रिंक्स बताने का झूठ क्यों बोला और आगे से इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारा सिर्फ ये मकसद है कि इसके जरिए हम आपको बता सकें कि जो हमारी युवा पीढ़ी बहुत बड़े तादाद में इन ड्रिंक्स को पी रही है, खपत हमने आपको बता ही दी है, वो जरा सा सतर्क हो जाए। FSCI ने पिछले कुछ महीनों में ऐसे भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सख्ती दिखाई है और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे देश में इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को एनर्जी ड्रिंक समझकर बहुत सारे लोग पीते हैं। उदाहरण के लिए भारत में हर दिन, जानते हैं, रेड बुल की हर दिन 40,000 से 50,000 कैंस की बिक्री होती है, स्टिंग की 35 से 40 लाख बोतल की बिक्री होती है और यह अनुमान है, असली खपत इससे ज्यादा भी हो सकती है। और ऐसे में सवाल यही है कि अब तक इन कंपनीज को ऐसा करने से रोका क्यों नहीं गया। तो आइए आपको बताते हैं, भारत में रेडबुल की बिक्री कब शुरू हुई? साल 2009 से हो रही है, मॉन्स्टर की 2012 से, स्टिंग की 2017 से, हेल एनर्जी की 2018-19 से, रिलायंस की कैंपा गोल्ड बूस्ट की 2026 से शुरुआत है, पेप्सिको की एड्रेनालिन रश ड्रिंक की बिक्री जून 2026 से शुरू हुई। उस वक्त किसी ने देखा? ये सवाल पैदा होता है कि जब ये ड्रिंक्स इतने सालों से एनर्जी ड्रिंक्स के नाम से बिक रही थी या जब उनको एंट्री मिली, तब क्या FSCI ने इन पर कार्रवाई करने में इतने साल क्यों लिए? और क्या इससे यह पता नहीं चलता है कि हमारे देश में खाने पीने के सामानों का जो निगरानी तंत्र है वो तंत्र कमजोर है, तभी आज ये बाजार इस तरह से फैल चुका है और बहुत सारे लोगों को इस तरह से इसकी लत लग चुकी है। किस स्थिति गंभीर है। खैर, ये खबर सबसे पहले हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि आज ये ड्रिंक्स हर घर का हिस्सा है, इन्हें पीने वाले बच्चे या उनके माता पिता भी नहीं जानते कि एनर्जी ड्रिंक्स है ही नहीं, और एनर्जी ड्रिंक्स भारत में किसी भी ड्रिंक्स को माना ही नहीं गया है और फोकस बढ़ाता है, इस तरह के दावे को FSCI ने गलत माना है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्या आयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई भी नजर आ सकते हैं। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इसराइल के हवाई हमलों में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हुई, तब इन हमलों में मुश्तबा खामेनेई भी घायल हो गए थे। उस वक्त मार्च महीने में उन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया, लेकिन वो कभी सार्वजनिक रूप से ईरान के लोगों के सामने नहीं आए हैं। लेकिन अब द वीक की रिपोर्ट में ऐसी उम्मीद जताई गई है कि मुश्तबा खामेनेई अपने पिता के जनाजे और दफन करने की रस्मों में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मुश्तबा खामेनेई को पूरा ईरान लंबे वक्त के बाद देखेगा। अब तक किसी भी रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि मुश्तबा खामेनेई आखिरी बार सार्वजनिक रूप से कैमरे पर कब दिखाई दिए थे। कुछ रिपोर्ट्स दावा जरूर करती हैं कि उन्हें पिछले साल जून में हुए युद्ध के बाद कैमरे पर आखिरी बार देखा गया था, लेकिन ईरान का मीडिया इन रिपोर्ट्स को खारिज करता है। बड़ी बात यह है कि अब भी जब पश्चिमी मीडिया ये उम्मीद जता रहा है कि मुश्तबा खामेनेई आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में शामिल हो सकते हैं, तब ईरान का मीडिया ऐसे किसी भी दावों की पुष्टि नहीं कर रहा और इस सवाल को लेकर अब भी रहस्य बना हुआ है कि मुश्तबा खामेनेई अपने पिता के जनाजे में जो नमाजे जनाजा है उसमें हिस्सा लेंगे या वो सुरक्षा कारणों से इस बार भी लोगों के सामने नहीं आएंगे। अगर वो सबके सामने आते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो ईरान के नेतृत्व में सक्रिय हैं, उनकी स्थिति मजबूत है, और अगर वो सामने नहीं आते हैं तो अटकलें बढ़ेंगी और खास तौर पर उनके स्वास्थ्य को लेकर। अब तक मुश्तबा खामेनेई की ओर से जो बयान जारी हुए हैं वो टेलीविजन या सरकारी मीडिया पर पढ़कर सुनाए जाते हैं और अब तक मुश्तबा खामेनेई की आवाज, कितने लोग उनसे मिले हैं, इस बारे में जानकारी नहीं आई है। यहां एक सवाल परंपरा का भी है। शिया परंपरा में परिवार को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है और जब पिता की मृत्यु के बाद उनका नमाज जनाजा निकलता है तो उसमें बेटे की भूमिका सबसे अहम होती है। इसीलिए अहम होती है क्योंकि जनाजे में बेटे की मौजूदगी से यह माना जाता है कि परिवार की निरंतरता बनी हुई है, नेतृत्व और जिम्मेदारी अगली पीढ़ी में जा रही है। यानी शिया परंपरा के हिसाब से ऐसा लगता है कि मुश्तबा खामेनेई शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्या कैमरे पर उन्हें दिखाया जाएगा, इन सब पर बातचीत हो रही है और फिलहाल इसके बारे में पुष्ट रूप से कोई भी जानकारी नहीं दे सकता। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहां भी देखिए कि आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम जनाजे के ईरान की इस्लामिक सरकार के लिए ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है। यह अंतिम विदाई कार्यक्रम 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच चलेगा, जिसमें पहले दिन 4 जुलाई को आयतुल्लाह खामेनेई का पार्थिव शरीर तेहरान के ग्रैंड मसल्ला
मस्जिद में आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा और इसी दिन सरकारी कार्यालयों और कई संस्थाओं में शोक का कार्यक्रम रखा गया है। 5 से 6 जुलाई के बीच तेहरान की प्रमुख सड़कों पर विशाल जुलूस निकलेगा। 10 किलोमीटर लंबा हो सकता है ये जुलूस। इस जुलूस में जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी और अनुमान है कि इस कार्यक्रम में 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि पूरे तेहरान में 1 करोड़ लोग रहते हैं। आसपास के शहरों से भी लोग पहुंचने वाले हैं। ईरान के प्रेस टीवी का कहना है कि 6 जुलाई को ही मुख्य कार्यक्रम हो सकता है, जिसमें दूसरे देशों से आए राष्ट्राध्यक्ष, प्रतिनिधि, धर्मगुरु शामिल हो सकते हैं और इसके बाद 7 जुलाई को आयतुल्लाह खामेनेई का जनाजा ईरान के कोम शहर ले जाया जाएगा, जो कि धार्मिक शहर है, जहां शिया धर्मगुरु और मदरसों के छात्र उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोम शहर ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र माना जाता है। इसके अगले दिन 8 जुलाई को इराक के नजफ और करबला जैसे पवित्र शहरों में विशेष कार्यक्रम होंगे। इनमें विशेष शिया संगठनों और धर्मगुरुओं की बड़ी भागीदारी दिखाई देगी। 9 जुलाई को आखिरी दिन आयतुल्लाह खामेनेई को मशहद शहर में दफनाया जाएगा, जो उनका गृह नगर है। यह भी कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामेनेई को इमाम रेजा श्राइन के परिसर या उसके पास दफनाया जा सकता है और ये इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ शिया इस्लाम के 8वें इमाम इमाम अली अल रजा का दरगाह भी है। यहाँ ये भी देखिए कि साल 1989 में जब ईरान की इस्लामिक सरकार के संस्थापक और पहले सुप्रीम लीडर रूहल्लाह खामेनेई की मृत्यु हुई थी, तब उनके जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे, जबकि पूरे ईरान की आबादी उस वक्त 6 करोड़ थी, यानी 1/6 पहुंच गया था। उस वक्त इस रूहल्लाह खामेनेई के जनाजे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था और कारण यह था कि इस जनाजे में भीड़ इतनी थी कि तब भगदड़ में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई थी, हजारों लोग घायल भी हुए थे। 33 डिग्री की कड़ी धूप में कई लोग बेहोश हुए और ऐसा लग रहा था कि पूरा ईरान रूहल्लाह खामेनेई की मौत पर रो रहा है। एसोसिएटेड प्रेस अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि उस वक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए IRGC के जवान ने हवा में गोलियां चलाई थी ताकि भीड़ हटे, फिर भी कोई नहीं रुका, भावुक होकर लोग डटे रहे। कहा जाता है कि धक्का मुक्की के कारण तब रूहल्लाह खामेनेई के बेटे अहमद खामेनेई भी भीड़ में चोटिल हुए थे। बाद में दफन के कार्यक्रम को रात के वक्त रोक दिया गया था, उन्हें अगले दिन दफनाया गया था और इस बार भी आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में माना जा रहा है कि 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए प्रेस टीवी के मुताबिक IRGC की तरफ से कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और इस अंतिम विदाई कार्यक्रम में विदेशों के कुल 600 पत्रकार भी शामिल हो सकते हैं।

0: यहाँ हम आपको भारत के उस कूटनीतिक फैसले के बारे में भी बताना चाहते हैं जिस पर आज ज्यादा बहस हुई है। बहस इस बात पर है कि प्रधानमंत्री मोदी ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के नमाज़े जनाजे में शामिल होने क्यों नहीं जा रहे। ये निमंत्रण नोट वबाले यानी राजनयिक पत्र के जरिए भारत के विदेश मंत्रालय को सौंपा गया और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने भी खुद प्रधानमंत्री मोदी को इसका औपचारिक निमंत्रण भेजा है और इसे भारत ने भी पूरे आदर भाव के साथ स्वीकार किया। भारत सरकार ने तय किया है कि वो अपने दो सदस्य प्रतिनिधिमंडल को इस अंतिम विदाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भेजेगी। इनमें पहले हैं सैयद अता हसनैन जो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हो चुके हैं और मौजूदा वक्त में बिहार के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के शिया परिवार से ये ताल्लुक रखते हैं और ईरान भी एक शिया बहुल देश है। और दूसरे हैं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा और उन्हें इस प्रतिनिधिमंडल के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि कूटनीतिक रूप से ये दिखाता है कि भारत ने ईरान के निमंत्रण का पूरा सम्मान किया है और प्रोटोकॉल के तहत विदेश मंत्रालय की भागीदारी को इसमें सुनिश्चित किया गया है, ये भी स्थापित होगा। यहां जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद क्यों नहीं जा रहे, क्या उन पर इसराइल का दबाव है, तो ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी 6 जुलाई से 11 जुलाई के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र के 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जा रहे हैं और ऐसे में संभव नहीं था कि वो ईरान जाए और उनका ये कार्यक्रम पहले से तय था। और दूसरा, ये विश्लेषण भी किसी रूप में सही नहीं होगा कि भारत इसराइल को नाराज नहीं करना चाहता इसलिए प्रधानमंत्री नहीं जा रहे। ऐसे फैसले राष्ट्रहित और कूटनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। जब राष्ट्रीय हितों की बात आती है तो भारत के लिए ईरान के साथ रिश्ते भी जरूरी हैं और भारत के लिए इसराइल या खाड़ी देशों के साथ रिश्ते भी जरूरी हैं। उदाहरण के लिए खाड़ी देशों में भारत के 90 लाख लोग रहते हैं और ये देश ईरान के हमलों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, लेकिन भारत अपने कूटनीतिक संबंधों में संतुलन बनाता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रतिनिधिमंडल को ईरान नहीं भेज रहे या भारत अकेला ऐसा देश है जिसके प्रधानमंत्री निमंत्रण के बाद भी ईरान नहीं जा रहे। हम सभी देशों से रिश्ते रखते हैं। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक, ईरान का ही प्रेस टीवी जिसके मुताबिक आयतुल्लाह खामनेई के अंतिम विदाई कार्यक्रम में 30 से ज्यादा देशों के नेता, 90 से ज्यादा देशों के धर्मगुरु शामिल हो रहे हैं। इनमें अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ईरान ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी निमंत्रण भेजा था, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन इस राष्ट्रीय शोक में अभी यानी आज के 9:15 बजे तक की मिली जानकारी के मुताबिक नहीं जा रहे हैं। उनकी जगह रशिया के पूर्व राष्ट्रपति और रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति पुतिन के विशेष दूत बनकर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ईरान जा रहे हैं, जबकि रशिया ईरान का सबसे करीबी सहयोगी है। रशिया और चाइना ईरान के क्लोजेस्ट एलाइज यानी करीबी है। इसी तरह चाइना भी ईरान का समर्थन करता है और ईरान ने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अंतिम विदाई कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आज के 9:15 बजे तक की मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। आगे अगर बदलाव होता है इन दोनों के कार्यक्रम में, पुतिन या फिर शी जिनपिंग के कार्यक्रम में, तो हम आपको सूचित करेंगे। वहीं उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल चाइना से ईरान जाएगा और बड़ी बात यह है कि चाइना के लिए भी कोई ये नहीं कह रहा है कि उसके राष्ट्रपति किसी दबाव में ईरान नहीं जा रहे। चाइना भी नहीं बल्कि क्यूबा के राष्ट्रपति भी खुद ईरान ना जाकर अपने प्रतिनिधिमंडल को तेहरान भेज रहे हैं, जिनमें क्यूबा के उच्च शिक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। जिन देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ईरान जाने वाले हैं उनमें पाकिस्तान, जॉर्जिया, तजाकिस्तान का नाम प्रमुख है और इनमें भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तेहरान जा सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो जा रहे हैं तो हमारे पीएम क्यों नहीं, लेकिन आज उनको जरा बताते हैं आगे बढ़ते हुए। इस सवाल को पूछने वाले लोगों को याद रखना चाहिए कि भारत अपने कूटनीतिक फैसले पाकिस्तान को देखकर नहीं लेता। अगर ऐसा होता तो साल 1989 में जब ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रुहैला खामनेई का नमाज़े जनाजा निकाला गया तब उसमें भी पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति गुलाम इसहाक खान शामिल हुए थे, लेकिन भारत की तरफ से तब भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति शामिल नहीं हुए थे, जबकि उस वक्त देश में राजीव गांधी की सरकार थी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भारत ने अपने कूटनीतिक फैसले कभी भी पाकिस्तान को देखकर नहीं लिए, और जो लोग ऐसा चाहते हैं उनकी मंशा को आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ ये भी तो देखिए कि ईरान की सरकार ने भारत के और भी नेताओं को इस अंतिम विदाई कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया है। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, कांग्रेस की मीडिया और पब्लिसिटी विंग के प्रमुख पवन खेड़ा, इन सबको आमंत्रित किया है। इनमें भी सलमान खुर्शीद ने कहा है कि वो इस कार्यक्रम के लिए तेहरान जा रहे हैं, और उनका यह भी कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी ईरानी दूतावास से निमंत्रण मिला है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी बताया कि वो ईरान का निमंत्रण मिलने से खुश हैं, तेहरान में होने वाले इस कार्यक्रम में वो जरूर शामिल होंगी। देखिए,
1: ईरान जा रहे हैं, क्या संदेश आपका है?
2: बस संदेश सर, पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करना है, मैं जा रहा हूँ, जब आऊंगा तब बताऊंगा।
1: सर, ये एक खास जर्नी होगी आपकी जो आप जा रहे हैं?
2: जो पार्टी का जो भी आदेश है, उस पार्टी के आदेश के अनुसार मैं जा रहा हूँ। वहाँ जो भी हो सकेगा, जो कहेंगे करेंगे, वो आपको आके बताऊंगा।
1: सरकार की तरफ से कोई सुझाव? सर
2: जी नहीं, सरकार को कोई सुझाव नहीं।
0: भारत में शिया मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी जम्मू कश्मीर में रहती है, और इस नाते से जम्मू कश्मीर अंजुमने शरी शियान के अध्यक्ष आगा सैयद हसन मुसावी अल सवाफी को भी व्हाट्सएप के जरिए निमंत्रण भेजा गया है, और वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताते हैं जिस पर शायद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि अब भारत रशिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है, और हमारे तेल आयात में रशिया की हिस्सेदारी बढ़ गई है और हो गई है 53%। लेकिन आज का नया अपडेट यह है कि जिस रशिया से हम कच्चा तेल खरीदते हैं, उसी रशिया को अब भारत से पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, रॉयटर्स ने आज ही एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें यह बताया गया है कि रशिया में पेट्रोल का संकट इतना गहरा हो गया है कि उसे भारत से मदद मांगनी पड़ी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कम से कम 60,000 मीट्रिक टन पेट्रोल रशिया को भेजा है। हमारी खबर का सोर्स आप देख रहे हैं, रॉयटर्स है। इनमें भी पेट्रोल की एक खेप दो टैंकर से रशिया रवाना की गई है, सोचिए। और ऐसा नहीं है कि आपूर्ति सिर्फ एक बार के लिए थी। रशिया में जिस तरह पेट्रोल का संकट बढ़ रहा है, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में वो भारत से और पेट्रोल खरीद सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रशिया में हर दिन लगभग 1,10,000 मीट्रिक टन पेट्रोल की खपत है। ये खपत गर्मियों के मौसम में बढ़ जाती है, यानी जो पेट्रोल अभी भारत से गया वो सिर्फ शुरुआत है। रशिया अभी इतने बड़े संकट में है कि वो बेलारूस से भी पेट्रोल खरीद रहा है, और रॉयटर्स के मुताबिक रशिया ने अब हर महीने 4,00,000 मीट्रिक टन पेट्रोल आयात करने की योजना बनाई है। यहां आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि जिस रशिया से कच्चा तेल हमारे यहां आता है, उसे हमारे पेट्रोल की जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि यूक्रेन लगातार रशिया की तेल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है। अब तक रशिया की 33 में से 24 तेल रिफाइनरीज में हमला हो चुका है, जिसके कारण कच्चे तेल को रिफाइन करके उससे पेट्रोल और डीजल बनाना रशिया के लिए मुश्किल हो गया है। यानी रशिया के पास कितना कच्चा तेल है अभी ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या वो इस कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल बना सकता है। और अभी मौजूदा स्थिति ये है कि यूक्रेन के हमलों के कारण रशिया की पेट्रोल बनाने की क्षमता काफी गिर गई है। यहां आप ये भी देखिए कि प्रतिबंध हटने के बाद ईरान ने भी हमारी तेल रिफाइनरी से संपर्क किया था, और इसका कारण यह है कि कच्चे तेल को रिफाइन करने के मामले में हम सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरीज गुजरात के जामनगर में है, जहां हर दिन 12,00,000 बैरल कच्चा तेल रिफाइन हो सकता है। इसके अलावा कच्चे तेल को रिफाइन करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर है। ये देखिए, चाइना पहले स्थान पर है, सबसे ज्यादा चाइना में। उसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका है, रशिया तीसरे स्थान पर, और भारत चौथे स्थान पर। जबकि हम अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करते हैं, और आज आप सोचिए कि हमारी इसी ताकत के कारण रशिया हमसे पेट्रोल खरीद रहा है। और यहां आप ये भी देखिए कि जिस रशिया के पास पूरी दुनिया में कच्चे तेल का 9वां सबसे बड़ा भंडार है, उसी रशिया में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोगों को यूक्रेन के हमलों के कारण पेट्रोल नहीं मिल पा रहा। देखिए,

0: हालात अच्छे नहीं हैं, हर जगह लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कुछ पेट्रोल पंपों पर तो पेट्रोल बिल्कुल नहीं है, कई बार तीन तीन पेट्रोल पंप जाकर भी पेट्रोल नहीं मिलता। फिर जहां मिलता है वहां लाइन में लगना पड़ता है और इंतजार कभी 30 मिनट, कभी एक घंटा और कभी दो घंटे का भी हो सकता है। ये तो आपकी किस्मत पर निर्भर करता है।
1: आज मैं पेट्रोल भरवाने अलग अलग पंपों पर भटक रहा हूं। जहां मैं रहता हूं वहां आधे पेट्रोल पंप बंद हैं, बाकी पंपों पर लंबी लाइनें हैं और एक
2: तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी माना है कि यूक्रेन के हमलों के कारण उनके देश में पेट्रोल खत्म होने लगा है। सुनिए।
1: आप अच्छी तरह जानते हैं कि ड्राइवरों और कारोबारियों को अभी भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें अब भी लगी हुई हैं। कई जगह लोगों को अपनी जरूरत के अनुसार सही तरह का ईंधन भी नहीं मिल रहा है। इस समय किसानों और खेती से जुड़े व्यवसायों को भी कठिनाइयां हो रही हैं। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि कृषि क्षेत्र को मौसम के अनुसार समय पर ईंधन मिलता रहे, क्योंकि फसल की कटाई इसी पर निर्भर करती है।
2: तो सुना आपने व्लादिमीर पुतिन क्या कह रहे हैं। खैर, ये वो खबर थी जिस पर आपके लिए विश्वास करना मुश्किल हुआ होगा, लेकिन अगली खबर आपको वो दिखाएंगे जिसमें कुछ भी नया नहीं है। और अब तो शायद दुनिया की ऐसी खबरें सुनने की आदत सी हो गई है। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के एक साल में कम से कम $2 बिलियन यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। और राष्ट्रपति ट्रंप इतने मालामाल हो रहे हैं कि अमेरिका का मीडिया भी आज ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप किसे महान बनाना चाहते हैं। वो अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं या अपने बेटों के बिजनेस को ग्रेट बना रहे हैं, और ये बात क्यों कही जा रही है उसके लिए आपको ये आंकड़े देखने होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी संपत्ति और आय को लेकर नई घोषणा की है जिसे अमेरिका में फाइनेंशियल डिस्क्लोजर कहा जाता है। उन्होंने इसमें बताया है कि पिछले एक साल में उन्होंने या उनके फैमिली बिजनेस से जुड़ी कंपनीज ने $2 बिलियन की कमाई की है। सबसे ज्यादा $1.4 बिलियन की आमदनी क्रिप्टो करेंसी से हुई है जो एक डिजिटल करेंसी होती है। साल 2021 में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी एक स्कैम है और तब तो वो इसे भविष्य की एक बड़ी आपदा भी बता रहे थे। लेकिन आज इसी क्रिप्टो करेंसी से राष्ट्रपति ट्रंप खूब डॉलर छाप रहे हैं और इनमें भी $520 मिलियन तो क्रिप्टो टोकन बेचकर उन्होंने कमाए, जबकि $635 मिलियन उन्होंने एक मीम कॉइन बेचकर कमाए जिसे डॉलर ट्रंप मीम कॉइन कहा जाता है। मीम कॉइन का मतलब यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले इसे एक मीम के रूप में अपने नाम पर जारी किया था, लेकिन बाद में इस डिजिटल करेंसी में लेन देन होने लगा और इसी लेन देन से राष्ट्रपति ट्रंप ने $635 मिलियन कमा लिए। हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप का असली बिजनेस रियल एस्टेट का है, लेकिन पिछले एक साल में रियल एस्टेट से कहीं ज्यादा कमाई क्रिप्टो करेंसी से की है। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से उन्हें $800 मिलियन मिले हैं। और कारण यह है कि इसमें यूएई से जुड़ी एक निवेश कंपनी ने आधी हिस्सेदारी खरीद ली। ये वही कंपनी है जिसने पाकिस्तान के साथ समझौता किया और पाकिस्तान ने यह कहा कि वो इस कंपनी की USD1 नाम की क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करे। और यहां ये लिस्ट खत्म नहीं होती। राष्ट्रपति ट्रंप ने गोल्फ और रिजॉर्ट से $500 मिलियन से ज्यादा कमाए, फ्लोरिडा के मारा लागो रिजॉर्ट से $77 मिलियन कमाए, विदेशी लाइसेंसिंग डील से $52 मिलियन कमाए। और ये सारी कमाई तो छोड़िए, मीडिया सेटलमेंट से, जहां जहां पर उन्होंने मीडिया को स्यू किया और फिर सेटलमेंट हुआ, मीडिया सेटलमेंट से एक साल में राष्ट्रपति ट्रंप ने $80 मिलियन कमाए हैं। यानी जिन मीडिया संस्थानों ने राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर खबरें चलाई थी उन पर मुकदमे करके उन्होंने $80 मिलियन कमा लिए। और जब इस कमाई पर सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो जानते हैं राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके राज में अब हर कोई कमा रहा है, यानी कमाल ही हो गया। सुनिए।
3: I don't get involved in my personal. We have funds that run my money. And I purposely, I never speak to any of the people that run the money. But they're at big institutions, and they invest in whatever they invest in. Well, you know why I'm profiting? Because the stock market's going up. Everybody's profiting.
2: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि भारत और जापान की दोस्ती से चाइना क्यों परेशान होने वाला है और ये दोस्ती आपके लिए भी क्यों बड़ी है, महत्वपूर्ण है। आज भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम में 129 MOUs यानी आपसी समझौतों का ऐलान किया गया। इन समझौतों का मकसद है दोनों देशों के बीच निवेश, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, तकनीक, कौशल विकास, सप्लाई चेन, सहयोग सबको मजबूत करना। अब ये तो थोड़ी व्यापारिक रिश्तों वाली बात हो गई, लेकिन अंदर की बात यह है कि जापान अब भारत को चाइना के विकल्प के रूप में देख रहा है। ऐसा इसलिए ऐसे समझिए कि जापान चाइना पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है और अपनी कंपनियों को चाइना से जापान लाना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ अभी सोचा जा रहा है, ये काम शुरू भी हो गया। जापान की कंपनियों ने पिछले एक साल में अपने निवेश को तेजी से बढ़ाया और अब जापान भारत में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कर रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि चाइना से कई कंपनीज को अब जापान भारत में ला सकता है और इसके तहत दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स, हथियार, बायोगैस, क्रिटिकल मिनरल्स, मजबूत सप्लाई चेन, स्टार्टअप्स और न्यू टेक्नोलॉजी यानी नई तकनीक में साथ मिलकर काम करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के चौथे बड़े प्लांट का उद्घाटन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ने जापान की प्रधानमंत्री को छोटी बहन कहा। सुनिए।
4: योर एक्सलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, कोनिचिवा। इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
2: जापान के साथ भारत का एक और खास रिश्ता है और वो है स्वदेशी आंदोलन का। आजादी के 8 साल बाद साल 1955 में जब राज कपूर की फिल्म श्री 420 आई, तब इसका एक गाना बहुत हिट हुआ था जिसके बोल आज भी लोग गाते हैं। इस गाने के बोलते मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस गाने को मशहूर गीतकार शैलेंद्र जी ने लिखा था और उन्होंने बताया था कि इस गाने से वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे तन पर जूते, कपड़े, टोपी किसी भी देश के हो, लेकिन दिल हिंदुस्तानी है। लेकिन वक्त के साथ इस गाने को लेकर ये चर्चा शुरू हुई कि जूता जापान की जगह भारत का ही क्यों नहीं हो, ये पतलून भारत की क्यों नहीं और ये टोपी भी भारत में ही क्यों ना बने, और हम स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करते हुए ये क्यों नहीं कह सकते कि दिल है हिंदुस्तानी। स्वदेशी सामान भी और दिल भी हिंदुस्तान का। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस जमाने में फटे जूतों के लिए जापानी जूतों का मुहावरा बोला जाता था, जिसकी वजह से इस गाने में जापान का नाम डाला गया था। लेकिन जापान के साथ हमारा एक ऐतिहासिक रिश्ता है। आजादी के आंदोलन में जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी और आज भी जापान भारत की आर्थिक तरक्की में साझेदार बन रहा है। जैसे जापान की सुजुकी कंपनी दुनिया में हर साल करीब 30 लाख कारें बनाती है, जिनमें लगभग 20 लाख कारें अकेले भारत में बनती है, यानी कंपनी की हर 3 में से 2 कारें भारत में तैयार होती है। और यहां बात सिर्फ सुजुकी कंपनी की नहीं है, टोयोटा, होंडा, हिटाची, सोनी जैसी कंपनियां भी जापान की ही हैं। भारत ने जापान के साथ साल 2024-25 में 2,13,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया और आज भी भारत में जापान की 1,434 कंपनियां रजिस्टर्ड है, 5,205 बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स भी भारत में जापान के ही हैं। इसके अलावा जापान भारत में विदेशी निवेश करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश है, जिसने अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच 3,71,000 करोड़ रुपए भारत में निवेश किए। हमारे देश में मुंबई से अहमदाबाद के बीच जिस बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, उसमें भी जापान की भूमिका अहम है, इसमें जापान का सबसे बड़ा निवेश है।

0: और आज आपको हम जापान के बारे में इतना ही बता रहे हैं, लेकिन कल हम आपको ये बताएंगे कि जापान से भारत क्या सीख सकता है और जापान की तरक्की का वो सीक्रेट सॉस या सीक्रेट इंग्रेडिएंट, छुपी हुई बात क्या है जिसके बारे में हमारी नई युवा पीढ़ी को जरूर पता होना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। जब पुलिस अपनी वर्दी का रौब दिखाने पर आती है तो बड़े बड़े पानी मांगने लगते हैं, लेकिन जब बात कानून की बारीकियों और कागजी कार्रवाई की आती है तो हमारी हाईटेक पुलिस का दिमाग किस तरह कई बार शटडाउन हो जाता है, इसकी वानगी हम आपको दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसा हर मामले में होता है, लेकिन इस मामले में चर्चा बहुत तेज हो गई है। हनीमून पर गए पति की हत्या का एक संगीन मामला और एक हाई प्रोफाइल आरोपी पत्नी। हम राजा रघुवंशी मर्डर केस की बात कर रहे हैं जिसमें आरोपी है सोनम रघुवंशी। इस मामले में काफी कुछ खुली आंखों से नजर आ रहा है, लेकिन कानूनी कार्रवाई के लिए सबूत, गवाह, सही कानूनी धारा, दलीलों की जरूरत है। और बस यही पुलिस ने ऐसी करामात दिखाई कि अदालत भी दंग रह गई। पुलिस ने ऐसी अद्भुत लापरवाही दिखाई कि हत्या के आरोपी को भी जमानत मिल गई। ये पूरा मामला मेघालय हाईकोर्ट के उस फैसले से गरमाया है जिसमें राज्य सरकार की अपील को खरी खरी सुनाते हुए खारिज कर दिया गया। मेघालय हाईकोर्ट के जस्टिस W. डेंगडो ने जब पुलिस के कागजात देखे तो हैरान रह गए। पुलिस ने हत्या के आरोपी सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के जो कारण लिखे थे वो किसी मजेदार चुटकुले से कम नहीं थे। पुलिस ने अपने सरकारी दस्तावेज में लिख दिया कि सोनम रघुवंशी पर देश की सेना से भगोड़ा यानी आर्मी डेजर्टर होने का शक है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आगे क्या लिखा, सोनम एक रिहा हो चुकी कैदी है जो जेल से छूटने के बाद अपना नया पता पुलिस को बताना भूल गई है। और तो और, पुलिस को सोनम पर भारत के बाहर कोई अपराध करने का भी शक था। इसे पढ़कर साफ समझ आता है कि मेघालय पुलिस ने इस मामले में किसी पुराने केस का फॉर्म उठाया, दिमाग को आराम दिया, कॉपी पेस्ट किया और नया वारंट थमा दिया। हद तो तब हो गई जब हत्या की सही धारा लगाने के बजाय पुलिस ने पूरे कागजात में बार बार धारा 403(1) लिख दिया जिसका कानून की किताब में वजूद ही नहीं है, 403(1). जबकि सोनम रघुवंशी का अपराध इतना संगीन था कि उसे सालों जेल में रहना पड़ सकता था, लेकिन पुलिस के चलताऊ लचर रवैये की हालत देखिए जिसकी वजह से सोनम को 10 महीने बाद ही जमानत मिल गई। निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक ने साफ कह दिया कि देश का संविधान हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि उस गिरफ्तारी के समय उसे सही पुख्ता कारण बताए जाएं। लेकिन जब पुलिस ने केस की बुनियाद ही इतनी हास्यास्पद कर दी, इतनी खोखली बनाई, तो पूरी थ्योरी फेल होनी थी। हाईकोर्ट ने सरकार की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें CRPC की धारा 482 के तहत कोर्ट से दखल देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने साफ कह दिया कि वो मुख्य जांच या चार्जशीट को नहीं रोक रहे हैं, वो चलती रहेगी, लेकिन पुलिस की इस घोर लापरवाही की वजह से आरोपी सोनम रघुवंशी जमानत की हकदार बन गई। इसके बाद मेघालय सरकार और वहां की पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सरकार की ओर से देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की अपील की। राहत की बात सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का भरोसा दे दिया है। सोचिए, सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे हैं कि पुलिस ने कागजों में सिर्फ एक छोटी सी टाइपिंग की गलती हो गई थी, इतनी सी तकनीकी चूक के लिए इतनी बड़ी आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये छोटी गलती या बड़ी लापरवाही, ये तो कोर्ट को भी समझ आ रहा है, तभी सोनम रघुवंशी जमानत पर है, बाहर। जिस तरह पति की हत्या जैसे संगीन अपराध में आरोपी होने के बाद भी पुलिस की लापरवाही की वजह से सोनम रघुवंशी जमानत पर बाहर है, उसी तरह आशंका है कि सिया गोयल भी क्या बच जाएगी। दरअसल किसी भी अपराध की सजा लोगों की राय या चर्चाओं के आधार पर नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए पुख्ता सबूत और गवाहों की जरूरत होती है। लेकिन सोनम रघुवंशी केस के बाद जिस तरह सिया गोयल का केस आगे बढ़ रहा है, कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई पुलिस सिया गोयल का जुर्म साबित कर पाएगी। यहां भी पुलिस की करामात का एक नमूना आप देख ही लीजिए। 28 जून को पुणे पुलिस पूरे धामझाम के साथ सिया को अपने साथ लोहगढ़ किले पर ले गई। साथ ही फोरेंसिक टीम ने केतन के कद, काठी, वजन की एक डमी तैयार की थी जिसे सिया के हाथों ठीक उसी जगह से नीचे फेंकवाया गया जहां से 18 जून को केतन को धक्का दिया गया था। जब पुणे पुलिस का रिक्रिएशन खत्म हो गया तो पुलिस वहीं से वापस लौट आई। लोगों को लगा कि पुलिस बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वो डमी खाई में लावारिस पड़ी रही। पुणे पुलिस या फोरेंसिक टीम का एक भी मेंबर यहां ये देखने नहीं आया कि डमी ट्रायल के दौरान ये डमी ऊंचाई से नीचे कहां गिरी, कितनी दूरी पर गिरी, क्या केतन की जहां से लाश बरामद हुई थी उसी जगह पर मिली, मतलब जांच आगे बढ़ाई ही नहीं गई। अब हमारी अगली खबर उन मां बाप के लिए है जिनके बच्चे किसी ना किसी डे केयर सेंटर में जाते हैं। आगे हम जो कुछ आपको दिखाने और बताने वाले हैं वो आपको अंदर से झकझोर देगा। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं, मतलब छोटा परिवार। अब जब इस न्यूक्लियर फैमिली में माँ और बाप दोनों ही नौकरी पेशा हो तो बच्चों की देखरेख के लिए कौन है? कहीं ना कहीं उन्हें मजबूरी में किसी डे केयर सेंटर के भरोसे रहना पड़ता है। बच्चा छोटा हो तो उसे 8-10 घंटे ऐसे लोगों के बीच रहना होता है जो उसके और उसके माँ बाप दोनों के लिए अनजान है। माँ बाप अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में काम करने वालों के भरोसे छोड़कर चले जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे ख्याल वैसे ही उनके बच्चों का रखा जाता होगा जैसा वो अपने घर पर रखते हैं, लेकिन कई बार इस भरोसे का कत्ल हो जाता है। बेंगलुरु के एक डे केयर सेंटर की भयानक तस्वीरें आई हैं। छोटे छोटे 2-2 साल 3-3 साल के बच्चों को यहां टॉर्चर किया जा रहा था। इन मासूमों की चीखें सुनकर आपका भी दिल बैठ जाएगा।
1: Yeah.

0: एक छोटी सी बच्ची बाथरूम में कैद करके रखा गया था। अकेलेपन की दहशत केवल वही महसूस कर सकती थी, लेकिन आप उन तथाकथित केयर गिवर्स के बारे में सोचिए जिन्होंने इस मासूम की चीखों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आरोप है ये बच्चों के साथ वहां पर रोज होता था। बेंगलुरु में आईटी कंपनी कैप जेमिनी कैंपस के डे केयर सेंटर में छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। बच्चों को अंधेरे कमरे बाथरूम में बंद कर दिया जाता था, उन्हें फ्रंट लोडिंग वाली वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता था, बच्चों को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उनके मुंह पर जेट स्प्रे से पानी मारा जाता था। कल्पना के परे है, आप सोचिए दो दो साल तीन तीन साल के मासूमों के दिल में डर बैठाने के लिए उनके साथ किस तरह की बर्बरता हो रही थी। जिन मासूम बच्चों के साथ ये सब हो रहा था ये उस कंपनी में काम करते थे जिसके परिसर में ये डे केयर सेंटर था। ये कितनी डरावनी बात है कि माँ बाप जिस वक्त निश्चिंत होकर काम में बिजी थे कि भाई बच्चों को हमने अपने डे केयर सेंटर में ही डाला हुआ है, उस वक्त उनको टॉर्चर किया जा रहा था। पुलिस ने इस केस में 5 महिला केयर गिवर्स को आरोपी बनाया है। आरोप है कि उन्होंने मासूमों को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक आघात दिए। बेंगलुरु पुलिस ने अब पूरे शहर के डे केयर सेंटर्स के कामकाज की जांच करने की बात कही है। कैप जेमिनी का बयान भी सामने आया है। उनके मुताबिक कंपनी अपने कर्मचारियों और उनके परिवार की सेहत सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और इस घटना की जांच में वो पुलिस की मदद कर रहे हैं। फिलहाल उनके परिसर के इस डे केयर सेंटर को बंद कर दिया गया है, लेकिन अगर आप भी किसी डे केयर सेंटर में अपने बच्चे को डालते हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आपके शहर में भी इस तरह के डे केयर सेंटर्स हैं तो हम यही गुजारिश करेंगे कि जो पुलिस है प्रशासन है वो सतर्क हो, जांच करे। बेंगलुरु डे केयर केस में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये धारा बच्चों की देखभाल करने वाले उन लोगों पर लगती है जो बच्चों से मारपीट करते हैं, मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, जानबूझकर उनकी अपेक्षा करते हैं। बच्चों को संभालने वाले डे केयर सेंटर्स के मामले में तो दोषी को 5 से 10 वर्षों तक की सजा, 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। यानी डे केयर सेंटर्स में अगर बच्चों के साथ मारपीट होती है या उनको प्रताड़ित किया जाता है तो उसके कर्मचारी और संस्था पर सख्त कार्रवाई होती है। और इसकी एक वजह यह है कि बच्चों का ख्याल रखने का दावा करने वाले ये डे केयर सेंटर्स वर्किंग कपल्स से मोटा पैसा लेते हैं, उन्हें भरोसा दिलाते हैं आपके बच्चे हमारे पास सेफ है, हमारे साथ प्रोफेशनल केयर गिवर्स है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आपका बच्चा सही डे केयर सेंटर में जा रहा है या नहीं इसकी निगरानी रखना आपकी जिम्मेदारी है। आखिर किसी भी बच्चे को यह सब कुछ झेलना पड़े ये हम लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं? केवल उसी डे केयर सेंटर में अपने बच्चों को रखें जिन्होंने स्थानीय प्रशासन की तरफ से लाइसेंस है, और स्थानीय प्रशासन में भी जाकर जानकारी दें। अगर पुलिस प्रशासन जरा भी शक हो फौरन कंप्लेन करें। आखिर इन बच्चों को कहीं चोट के निशान कुछ तो ऐसा दिखा होगा जो माँ बाप ने नजरअंदाज किया। डे केयर में आने वाले बच्चों और वहां के स्टाफ की संख्या का अनुपात भी ध्यान में रखें। ज्यादा बच्चे कम स्टाफ मतलब बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता, और जब ये स्टाफ पर ज्यादा बोझ होता है वो इस तरह से करने की संभावना बढ़ती है। ये सुनिश्चित करें कि डे केयर सेंटर्स के हर कमरे में CCTV हो, उनका एक्सेस आपके पास हो ताकि आप कभी भी अपने बच्चे की निगरानी कर सके। बच्चों के डे केयर में खाना किस तरह का दिया जा रहा है ये भी देखें। कभी कभी अचानक बच्चों से मिलने जाए। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आजकल अकेलापन दूर करने की जिद ऐसी है कि बंद कमरे में बैठे लोग भी हजारों फॉलोअर्स से घिरे हैं। नमस्कार।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर देश की नजर है। SIT जांच में लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों के बाद अयोध्या बार एसोसिएशन भी चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वहीं आरोपों की इस आंधी में 8 में से 1 आरोपी के घर पर योगी सरकार बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुकी है।
2: माफिया राज पर योगी सरकार का बुलडोजर चलते तो सबने देखा, धर्मांतरण करने वालों के साम्राज्य को भी योगी ने बुलडोजर से मिटाया। अवैध मस्जिद मजारों पर योगी का बुलडोजर चला है। अब प्रभु राम का चढ़ावा चुराने वाले आरोपियों का घर भी मिट्टी में मिलाया जाएगा। चढ़ावा चोरी में पकड़े गए 8 आरोपियों में से 1 लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। 2 मंजिला ये इमारत योगी सरकार के बुलडोजर की नई मंजिल होगी।
3: हमारे यहाँ जेई प्रवर्तन होते हैं वो सब देखते रहते हैं, भी होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा, वाइफ ऑफ लोकेश मिश्रा का नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें।
2: लवकुश की पत्नी के नाम पर बन रही एक इमारत को लेकर अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने एक हफ्ते के भीतर लवकुश के परिजनों से जवाब मांगा, साथ ही प्रशासन ने कहा है कि अगर जवाब नहीं मिला तो निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है।
4: आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर यानी कि सुप्रिया के नाम पर एक नोटिस थमा दिया है जिसमें निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है वो सही स्थान पर बनी है कि नहीं बनी है उसको लेकर ये नोटिस है। एक हफ्ते के भीतर लवकुश मिश्रा के परिवार को जवाब देना है। अब इस मामले में बड़ी बात निकलकर सामने ये भी आ रही है कि अगर एक हफ्ते में प्राधिकरण को परिवार के द्वारा सही जवाब नहीं मिलता है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी प्राधिकरण कर सकता है।
2: अयोध्या के सादतगंज का ये वही घर है जो लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा बनवा रही। ये दो मंजिला घर बिना नक्शा पास करवाए बनवाया जा रहा है।
5: मुख्य आरोपियों में शामिल लवकुश मिश्रा के इस मकान जो उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर मौजूद है, इसको भी अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस दिया जा चुका है। ये अयोध्या की सुहावल तहसील का ये मकान है जो करीब 1000 स्क्वायर फीट का मकान है। वैसे तो लवकुश मिश्रा ने ये अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदा था। अयोध्या विकास प्राधिकरण के लोग आए थे यहाँ पर?
6: जी आए थे।
5: कब आए थे?
6: कल आए थे, आप पूछताछ कर रहे थे।
5: अच्छा
6: जी जी।
5: क्या करके गए?
6: कुछ नहीं, पूछा था मकान नंबर ये वो कौन सी क्या कैसे लगता है किसका मकान है इतना इस जानकारी।
2: लवकुश मिश्रा की तथा उसकी पत्नी के बैंक खातों की जांच होने लगी है जिसमें बड़ी रकम होने का दावा किया जाता है। इस तरह चढ़ावा चोरी के इस आरोपी की ही नहीं बल्कि इसके पूरे परिवार की जांच हो रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
7: SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूँ जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रखेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्त भोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती।
2: इससे पहले लवकुश मिश्रा के पास से 500 के 2850 नोट यानी कुल 14,25,000 रुपए चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया था। चढ़ावा चोरी कांड में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के जुर्म कबूलने के बाद नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित के हाथ में करेंसी नोटों के बंडल का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो जांच के दायरे में आ चुका है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई जिसने विपक्षी दलों को योगी सरकार पर हमले का मौका दे दिया।
8: भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ की है और जहां तक चढ़ावा और चंदे का सवाल है, हमारे देश की जनता इतनी दयालु और भोली वाली है जिससे मैं उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये रामधन के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच रहा है, उनके रामधन की चोरी नहीं होगी, उसी दिन आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा।
2: लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी को भी बख्शने से इनकार कर इन सियासी हमलों की धार कुंद करने में जुटे जिसमें अल्पसंख्यकों और विरोधियों के घरों पर बुलडोजर की जानबूझकर कार्रवाई का इल्जाम भी शामिल है।
9: हमारा तो मानना है कि उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला खत्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको मामला खत्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे? अब चंपक हो रहा है, क्या बोलेंगे बताइए आप। अब कुछ बोले ऐसी बात ही नहीं है उसमें, कितना ये सब तमाशे हो रहे हैं।
2: लेकिन योगी सरकार चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई करके ये बताना चाहती है कि जो भी अपराधी है सबका हश्र एक होगा, लेकिन विपक्ष मानता नहीं। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की।
1: और अब बात करेंगे बंगाल की सियासत के बारे में, जहां सत्ता के चेहरे बदले तो सियासी बदले का प्रतीक अंडा बन गया। टीएमसी नेताओं पर जनता का गुस्सा अंडों के रूप में बरस रहा है, लेकिन टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। वहीं सवाल अब नेताओं की सुरक्षा का भी है।
10: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडों से हो रहे हमलों की नई शिकार सांसद महुआ मोइत्रा हुई हैं।
11: है पुलिस देखो आवाज शुरू पता चल बे।
10: नारिया में पार्टी कार्यालय के बाहर से अंडे और सब्जियां फेंके गए, महुआ ने खुद वीडियो शेयर किया।
12: खास करके अगर वो सांसद हो, उसको इस प्रकार से मारा जा रहा है, डीम फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है, नारियल फेंका जा रहा है, और नीचे लोग दिख रहे हैं जो बीजेपी का झंडा लेकर के हिला रहे हैं। साफ है, डीजीपी को फोन करके बताया गया, जगह बताया गया, सब कुछ महुआ मोइत्रा ने बताया, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ।
10: उधर अब टीएमसी के बागी और बीजेपी के सुर पूरे मामले में एक जैसे हैं।
13: जो लोग चोर है, डकैत है, माफिया है, लोगों का गुस्सा है उन लोगों के ऊपर। हमारा ये 65 एमएलएस में ऐसा एमएलए है, ट्रेन में आते जाते हैं, किधर भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, और चार्टर्ड माफिया का दिक्कत हो रहा है।
14: तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है, तो तृणमूल को इसको सलटाना चाहिए।
10: हाईकोर्ट की आपत्ति के बावजूद टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज तक ब्यूरो।
1: टीएमसी एक ओर जहां हमलों का शिकार हो रही है, तो वहीं पार्टी की टूट ने ममता की ताकत को कमजोर कर दिया है। इसी बीच अब शरद पवार गुट ने भी सांसदों की टूट की अटकलें हैं, जिसने महाराष्ट्र की सियासत को गर्म कर दिया है।

0: क्या शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा? क्या शरद पवार के 8 सांसदों पर बीजेपी की नजर है? क्या महाराष्ट्र का सियासी समीकरण फिर बदलने जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं। दरअसल सूत्रों से खबर है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP-SP का कांग्रेस में विलय हो सकता है। हालांकि अभी यह बातचीत महाराष्ट्र की इकाई तक ही सीमित है। खबर है कि शरद पवार विलय को लेकर अपनी पार्टी के अंदर रायशुमारी कर रहे हैं और अगर महाराष्ट्र में डील हो गई तो उसके बाद दिल्ली में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व विलय पर अंतिम मुहर लगाएंगे।
1: शरद पवार की एनसीपी का विलय जल्द कांग्रेस में हो सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों की राज्य इकाइयों के बीच में महाराष्ट्र लेवल पर फिलहाल बातचीत चल रही है और जैसे ही चीजें तय होंगी उसके बाद दोनों पार्टी क्योंकि टॉप लीडरशिप यहां दिल्ली में बैठकर इस पर अंतिम मोहर लगाएगी। दरअसल कुछ रोज पहले अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर शरद पवार ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए बीजेपी की आलोचना की थी, जिसके बाद कई लोगों ने ये कहा कि ये दर्शाता है कि दोनों पार्टियों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। जानकारों के मुताबिक अगर एनसीपी का विलय कांग्रेस पार्टी में होता है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होगा।
0: जब से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT के 6 सांसद शिंदे कैंप में शामिल हुए हैं तब से शरद पवार की पार्टी में भी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब विपक्ष बीजेपी की जोड़ तोड़ की राजनीति पर करारा प्रहार कर रहा है। कभी शिवसेना UBT सांसद संजय राउत कांग्रेस में महाविलय का आइडिया दे देते हैं तो कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार कह देते हैं कि हाँ दिल्ली में बात चल रही है, तो कभी ऑपरेशन तुतारी का दावा करते हुए एनसीपी के धर्मराव अतराम पवार के 8 में से 5 सांसदों को अपनी एनसीपी में विलय करने की प्लानिंग की बात कह देते हैं और कभी दोनों एनसीपी के ही संपूर्ण विलय का शिगुफा सामने आ जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि ना तो उनकी पार्टी कांग्रेस में मिलेगी और ना ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली से सूत्रों के हवाले खबर है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने में लगे NDA का ध्यान NCP शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है। ये संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस NCP विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते, ना ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं।
2: जिस तरीके से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सांसदों का सिलसिला बढ़ा है उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है, के साथ साथ अब ये भी जोड़ देना चाहिए कि राजनीति में भी सब कुछ चलता है और सब कुछ जायज है।
0: एक चर्चा ये भी है कि भविष्य में शरद पवार गुट के 8 सांसद सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली NCP में जा सकते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है।
3: देखिए, महाराष्ट्र से जो शरद पवार साहब की पार्टी के विलय की खबरें हैं हमें लगता अफवाह है, क्योंकि चाहे कितना भी आ जाए प्रलय, हम क्यों करेंगे किसी बड़े दल में विलय। हर पार्टी का अपने अस्तित्व होता है, हर पार्टी की अपनी मर्यादा होती है। शरद पवार साहब तो कांग्रेस से टूटकर ही अपना दल बनाए थे, तो कांग्रेस में रहना होता तो अपना दल क्यों बनाते। तो हमें लगता है कि सुप्रिया सुले जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो एक बात मुझे बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि शरद पवार साहब मेरे गुरु हैं, क्या कभी आपने सुना है कि गुरु की पार्टी कोई शिष्य तोड़ता है? ऐसा नहीं होता, गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ नहीं करेगी, जोड़फोड़ की राजनीति नहीं करेगी, तब तो शरद पवार जी की पार्टी के जो 8 सांसद हैं उनको कोई खतरा नहीं है।
0: क्योंकि महाराष्ट्र में टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं गठबंधन को भी है। NCP-SP, शिवसेना UBT और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों की गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार सहित प्रमुख नेता मौजूद नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो यह है कि एक दिन पहले ही आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी और शिवसेना UBT MLC सचिन अहिर भी उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे सेना के सारथी बन गए हैं। सचिन अहिर को महायुति ने विधान परिषद में डिप्टी चेयरमैन के पद का इनाम दिया है। उनके नामांकन में फडणवीस शिंदे और सुनेत्रा पवार तीनों लोग मौजूद रहे। वैसे अभी NCP शरद गुट में 8 सांसद और 10 विधायक हैं और अगर विलय को लेकर शरद पवार की पार्टी में आम राय नहीं बनती तो 2/3 के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की दरकार होगी। सवाल है कि दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में रहे शरद पवार के मन में क्या चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पवार ही जानते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।
4: मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है। पिछले 3 दिनों में खुले मैनहोल, करंट और पेड़ गिरने जैसे हादसों में 5 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बारिश का कहर है या सिस्टम की घोर लापरवाही। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।

वाकई जिस तरह से पिछले तीन दिन में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के दौरान हुए हादसों में 5 लोगों की जान चली गई, उससे यही लग रहा है कि मुंबई हादसों का शहर ही है। 30 जून मुंबई, पेड़ गिरने से विहान की मौत। 1 जुलाई नवी मुंबई, सुरेश लोखंडे की मौत। 1 जुलाई डोंबिवली, शशि चक्र की मौत। 2 जुलाई मुंब्रा, आलिया की मौत। 2 जुलाई मुंबई, असलम शेख की मौत।

0: इलाके में खैरानी रोड पर असलम शेख की खुले मैनहोल में गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आनन फानन में 15 फीट नीचे गटर में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन सारी जद्दोजहद भी असलम की जान नहीं बचा सकी।
1: कितना डीप डेप्थ था और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन?
2: 25 फीट का डेप्थ था। हमने अपनी हरनेस की मदद से, जो हमारे पास स्पेशल अप्लायंसेस है उसकी हेल्प से, हम लोगों ने नीचे डाउन जाके हरनेस की मदद से उनको लिफ्ट किया।
1: एक नैरो एरिया रहता है, उसमें किसी शख्स को वो लिफ्ट करना, कितने लोग आप लोग थे, कैसे?
2: मेरा पूरा दो, मतलब एक 15 लोगों का टीम था। हरनेस की हेल्प से हम लोग नीचे गए थे, क्योंकि ज्यादा लोग नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, अंदर गैसेस वगैरह होते हैं। तो सेफर साइड खाली एक बंदा ही नीचे गया था, उसने नीचे जाके, हाँ मैं गया था नीचे जाके, मैंने उनको हरनेस की मदद से बांध के ऊपर लिफ्ट किया।
1: वो दिखे आपको किस हालत में, मतलब लेटे हुए थे, कहीं फंसे हुए थे, कैसा पानी का बहाव ज्यादा था?
2: उनका आधा बॉडी ड्रेन लाइन में, नीचे जो छोटा सा चेम्बर है उसके अंदर था और हाफ बॉडी बाहर था।
0: असलम शेख के परिवार में मातम पसरा है। परिवार पूछ रहा है कि आखिरकार सरकार और बीएमसी प्रशासन आम लोगों की जान की कीमत क्यों नहीं समझ रहा।
3: हमारी फैमिली की तरफ से एक मांग है कि आज हमारा गया ना, कल किसी और का नहीं जाए। किसी के भी जिंदगी का कोई नुकसान ना हो। जिसका जाता है वो उसको पता चलता है कि उसका क्या गया। उनका एक बेटा है, बेटी है, बीवी है, कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था। उसके लिए मुआवजा चाहिए, प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ, अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है। प्लीज, ये मुंबई में हमेशा होता है, बहुत जरूरी। सेफ्टी रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते? हर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा कमाना है, गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना है, हमसे टैक्स लेते, सब लेते, हमारी जान का क्या जाता है? हम लोग कहाँ जाए, ये बताओ।
0: हादसे की खबर सुनकर बीएमसी की मेयर रितु तावड़े भी मौके पर पहुंची। उन्होंने किंतु परंतु करने की जगह तुरंत बीएमसी प्रशासन की गलती और लापरवाही मानी। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। इतना ही नहीं, हादसे में लापरवाही बरतने को लेकर मेयर रितु तावड़े ने साकिनाका वार्ड अफसर समेत 4 बीएमसी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अधूरा काम छोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।
4: जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर तो हम लोग ने क्रिमिनल केस वहाँ पे सदृश मनुष्य बदल का गुना उसके ऊपर हमने दाखिल किया ही है। अभी इसके ऊपर जो एडिशनल कमिश्नर विपिन शर्मा जी, उसकी जो एडिशनल कमिटी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कमिटी यहाँ पे बैठी है। अभी ऑन द स्पॉट यहाँ पे जो 4 है वार्ड ऑफिसर से लेके उनको निलंबित किया है, लेकिन इसके ऊपर जो इंक्वायरी कमिटी बैठी है उसका अहवाल आने के बाद उसके ऊपर भी गुना दाखिल होगा।
5: एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली नहीं ले रहा है मैडम, ऐसा लगता है। संजय घाड़ी जी ने भी अश्विनी भिड़े को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है जो मैनुअल है वो बंद नहीं करने के लिए।
4: देखो, गलती तो हुई है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। प्रशासन को इतना बोलने के बावजूद ये जो 2-2 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट आप क्यों इतना लेट इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जबकि बारिश के पहले आपके, एक तो वैसे भी बारिश लेट आई, तो आपके पास कम से कम 2 महीना थे। जाली बिठाने का काम बारिश में नहीं होता है, जाली बिठाने का काम ये बारिश के पहले होता है। या अगर करते थे तो वो इंसान बच जाता था।
5: मुंबई को क्या संदेश देना चाहिए मैडम, जिस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, तेज बारिश है, डर का?
4: तेज वैसे भी मैं ऑलवेज सबको कहती हूँ कि बारिश के वक्त सब जन संभाल के चले।
5: यहाँ पर 10 लाख रुपया कम्पेंसेशन जो है मृतक उसकी परिवार को देने की बात की गई है। वार्ड ऑफिसर सहित 3 बीएमसी ऑफिसरों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है, रितु तावड़े ने खुद माना है कि बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से इतने सारे इंसिडेंट्स बारिश के मुंबई में हो रहे हैं।
0: 3 दिन में 5 लोगों की जान जाने से सरकार और बीएमसी विपक्ष के निशाने पर है।
6: कि जिस भाजपा के हाथ में आज बीएमसी है, उसे बरसात की जो पूरे तकलीफें हैं वो संभलने नहीं आती। पहले आपने देखा होगा कि महापौर साहिबा जब चल रही थी, उनके सामने ही मुंबई महानगरपालिका के एक कर्मचारी मैनहोल में गिर गए। उन पे ही शक करके उनको ही अभी इन्वेस्टिगेशन में खींचा गया कि आपके विरोधी विपक्ष के हो। आज और एक घटना घटी है, कल कोई 2 व्यक्ति इलेक्ट्रिक्यूट हुए।
0: साकिनाका में मैनहोल में गिरने से हुए हादसे की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा में भी सुनी गई। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सरकार को सख्त निर्देश दिए कि सिर्फ अधिकारियों को सस्पेंड करना काफी नहीं होगा।
7: मुंबईत पाणी भरतं, पावसात वॉटर क्लॉगिंग होतं, ते होत असताना अनेक ठिकाणी कामं चालू असतात, तिकडे गटारं उघडी ठेवली असतात। हे केवळ निलंबन करून चालणार नाही, मला वाटतं कल्पेबल होमिसाइडचा गुन्हा घ्यायला पाहिजे अशा अधिकाऱ्यांवर।
0: इसके बाद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी विधायक अमित साटम ने सदन में इस मुद्दे पर कहा कि लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
8: मुंबई में बारिश में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज तीसरे दिन एक हादसा हुआ है जिसमें एक 60 साल के व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारे साथ बीजेपी

0: के एमएलए और मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम है। उन्होंने इस मुद्दे को आज विधानसभा में उठाया है और सख्त सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।
1: आज वहां पर साकीनाका में एसओ डिपार्टमेंट का एक काम शुरू था और वो काम शुरू होने के समय पर उस मैनहोल को अनअटेंडेड छोड़ा गया था और एक व्यक्ति की उसमें गिरकर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी है। हमने ये मांग की है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर का वहां पर काम शुरू था उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सदोष मनुष्यवध का कल्पेबल होमिसाइड का ये गुना एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। जो अधिकारी जिनके ऊपर ये काम की जिम्मेदारी थी उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और आने वाले समय में प्रशासन ने अधिक संवेदनशीलता से काम करने की आवश्यकता है और इस घटना के बैकग्राउंड पर हम प्रशासन को एक इशारा देना चाहते हैं।
2: स्पीकर राहुल नार्वेकर ने साकीनाका हादसे पर तुरंत विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने हादसे की पूरी जानकारी सदन के सामने रखी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी से बीएमसी संभल नहीं गई।
3: अब मौत का कुआं देखना हो तो मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले मैन होल को देख लीजिए। जब आपको पता है कि मुंबई में बरसात होती है, कभी भी कितनी भी बरसात होती है, तो आपने पहले तैयारियां पूरी क्यों नहीं की? अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तब भी अगर आप सावधान नहीं है तो मुंबई करोड़ के जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है।
2: वहीं ठाणे के मुंब्रा में बारिश के दौरान करंट लगने से 17 साल की आलिया की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुंब्रा के यास्मीन पार्क की बी विंग में रहने वाली आलिया किसी काम से बिल्डिंग के बाहर निकली थी, इसी दौरान वो बारिश के पानी में उतरे करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई।
4: ये बोल के हम थक चुके हैं। आज भी कल भी आपने देखा, कल भी एक हादसा हो गया, उधर स्लैब गिर गया था। आज एक 17 साल की जवान बच्ची वो सिर्फ अपने बाप की दुकान में गई बाप को मिलने के लिए और आई और उसको करंट लगे और जगह पे बच्ची खत्म हो गई।
2: वहीं डोंबिवली में बच्चों के लिए नाश्ता लेने निकली माँ की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। डोंबिवली के हनुमान नगर में खुले बिजली के तार ने 42 साल की महिला शशि चक्र की जान ले ली। मुंबई में 30 जून को चेंबूर इलाके में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत हो गई। अब ठाणे के मीरा भाईंदर इलाके में भी एक ऐसी ही घटना हुई है। यहाँ मूसलाधार बारिश के दौरान एक चलती स्कूटी पर अचानक नारियल का पेड़ गिर गया, जिससे स्कूटी सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये नारियल का पेड़ खोखला हो गया था। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा दिख रहा है, खासकर निचले इलाकों जैसे दादर, प्रभादेवी, माटुंगा, सायन, अंधेरी, मुंब्रा, नाला सोपारा और कलम्बोली में जल भराव से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन बारिश के बाद हो रहे हादसों से मुंबई वाले भी खौफ में है। मुंबई से मुस्तफा शेख, ऋत्विक भालेकर और ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ मिथिलेश गुप्ता, डोंबिवली आज तक।
5: और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो हर उस माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर यानी कि बच्चों को दिन भर की देखभाल के लिए और सुरक्षा के लिए छोड़ देते हैं, ताकि वो अपने काम में ठीक से मन लगा सके, काम ठीक से कर पाएं या फिर अपनी नौकरी कर पाएं। लेकिन बेंगलुरु के एक डे केयर सेंटर से एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर किसी भी माँ बाप का कलेजा कांप जाए। देखते हैं डे केयर के शैतान को।
6: बेंगलुरु में डे केयर के शैतानों पर बड़ा खुलासा। कैसे डे केयर सेंटर में बच्चे को वॉशिंग मशीन में डालकर डराया। बच्चे को बाथरूम में बंद किया, मुंह पर टॉयलेट जेट से पानी डाला। मासूम के साथ प्रताड़ना के वीडियो से कांप उठेगा कलेजा। बेंगलुरु में कैप जेमिनी कंपनी के डे केयर सेंटर ने हद पार कर दी। मासूम की चीखों में छिपा ये दर्द बेरहमी की पूरी कहानी बयान कर रहा है। 29 जून का ये वायरल वीडियो बेंगलुरु में आईटी कंपनी कैप जेमिनी के एचईएल कैंपस में चल रहे डे केयर सेंटर का है, जहां 2 से 3 साल के बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है। वीडियो में बच्चा टॉयलेट में बंद है, फर्श पर लेटा हुआ है और जोरों से रो रहा है। एक महिला बच्चे के बिलखने का वीडियो बना रही है। एक और वीडियो में महिला बच्चे को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उसके मुंह पर जेट स्प्रे से पानी डाल रही है। इसके अलावा बच्चे को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम में बैठा कर रखा गया है, उसे डराया जा रहा है, बच्चा रो रहा है। HAL पुलिस स्टेशन में अब 5 महिला केयर गिवर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। CCTV फुटेज और सभी दूसरे तकनीकी सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है।
7: As per the complaint, which is against mentioned, 5 names have been mentioned of women staff who are working in a daycare facility in an IT sector company. As per the complaint and the videos which have been given as part of the complaint, we are going through it. The Joint Commissioner East and the Deputy Commissioner of in charge of Whitefield, both are there at the place right now. They are verifying the facts. But whatever has happened is really very serious issue, and we will take stricter action. The videos are being verified. CCTVs, all other technical evidences are being looked at.
6: अब पुलिस ने 5 केयरगिवर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी केयरगिवर्स को नोटिस जारी किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। इन डे केयर सेंटर्स में ज्यादातर IT कंपनी में काम करने वाले माँ बाप अपने महज 2 से 3 साल के बच्चों को छोड़कर जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जिन बच्चों के लिए वो कमा रहे हैं उन पर ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं। कैप जेमिनी ने एक बयान में कहा है कि उसके कर्मचारियों और उनके परिवारों का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी ने कहा कि वो जांच में पूरी तरह सहयोग कर रही है और एहतियाती कदम के तौर पर डे केयर सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।
5: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अमित शाह के घर 3.5 घंटे तक बीजेपी की मैराथन बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन रहे मौजूद। कैबिनेट में फेरबदल और संगठन स्तर पर अधिकारियों को लेकर चर्चा की संभावना। चढ़ावा चोरी में जांच के लिए दोबारा अयोध्या पहुंची एसआईटी ने 8 घंटे तक ट्रस्ट के अधिकारियों से की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी सवाल जवाब। टीएमसी में बगावत मामले पर अब चुनाव आयोग ने थामी कमान। ममता और ऋतुव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दोनों ही गुटों ने किया है पार्टी पर दावा। और भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी है रक्षा क्षेत्र में करार। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया विकास यात्रा का अहम भागीदार, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। और महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में बिहार और पंजाब से 3 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता अभी भी फरार। अब तक कुल 7 की गिरफ्तारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर देश की नजर है। एसआईटी जांच में लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों के बाद अयोध्या बार एसोसिएशन भी चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वहीं आरोपों की इस आंधी में 8 में से 1 आरोपी के घर पर योगी सरकार बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुकी है।
1: माफिया राज पर योगी सरकार का बुलडोजर चलते तो सबने देखा, धर्मांतरण करने वालों के साम्राज्य को भी योगी ने बुलडोजर से मिटाया। अवैध मस्जिद मजारों पर योगी का बुलडोजर चला है। अब प्रभु राम का चढ़ावा चुराने वाले आरोपियों का घर भी मिट्टी में मिलाया जाएगा। चढ़ावा चोरी में पकड़े गए 8 आरोपियों में से 1 लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। 2 मंजिला ये इमारत योगी सरकार के बुलडोजर की नई मंजिल होगी।
2: हमारे अब जेई प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं, भी होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लोकुस मिश्रा का। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें।
1: लवकुश की पत्नी के नाम पर बन रही एक इमारत को लेकर अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने 1 हफ्ते के भीतर लवकुश के परिजनों से जवाब मांगा। साथ ही प्रशासन ने कहा है कि अगर जवाब नहीं मिला तो निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है।
3: आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर यानी कि सुप्रिया के नाम पर एक नोटिस थमा दिया है, जिसमें निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है वो सही स्थान पर बनी है कि नहीं बनी है उसको लेकर ये नोटिस है। 1 हफ्ते के भीतर लवकुश मिश्रा के परिवार को जवाब देना है। अब इस मामले में बड़ी बात निकलकर सामने ये भी आ रही है कि अगर 1 हफ्ते में प्राधिकरण को परिवार के द्वारा सही जवाब नहीं मिलता है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी प्राधिकरण कर सकता है।
1: अयोध्या के सादतगंज का ये वही घर है जो लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा बनवा रही। ये 2 मंजिला घर बिना नक्शा पास करवाए बनवाया जा रहा है।
4: मुख्य आरोपियों में शामिल लवकुश मिश्रा के इस मकान जो उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर मौजूद है, इसको भी अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस दिया जा चुका है। ये अयोध्या की सुहावल तहसील का ये मकान है जो करीब 1,000 स्क्वायर फीट का मकान है। वैसे तो लवकुश मिश्रा ने ये अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदा था। अयोध्या विकास प्राधिकरण के लोग आए थे यहाँ पर?
5: जी आए थे।
4: कब आए थे, क्या?
5: हम कल आए थे, पूछताछ कर रहे थे।
4: अच्छा
5: जी जी।
4: क्या करके गए?
5: कुछ नहीं, पूछा था सा मकान नंबर ये वो कौन सी हम क्या कैसे लगता है किसका मकान है, इतना ही जानकारी है।
1: लवकुश मिश्रा की तथा उसकी पत्नी के बैंक खातों की जांच होने लगी है, जिसमें बड़ी रकम होने का दावा किया जाता है। इस तरह चढ़ावा चोरी के इस आरोपी की ही नहीं बल्कि इसके पूरे परिवार की जांच हो रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
6: SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूँ जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रखेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती।
1: इससे पहले लवकुश मिश्रा के पास से 500 के 2,850 नोट यानी कुल 14,25,000 रुपए चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया। चढ़ावा चोरी कांड में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के जुर्म कबूलने के बाद नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित के हाथ में करेंसी नोटों के बंडल का एक वीडियो सामने आया, ये वीडियो जांच के दायरे में आ चुका है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई, जिसने विपक्षी दलों को योगी सरकार पर हमले का मौका दे दिया।
7: भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ की है, और जहां तक चढ़ावा और चंदे का सवाल है, हमारे देश की जनता इतनी दयालु और भोली वाली है, जिस समय उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये रामधन के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच रहा है, उनके रामधन की चोरी नहीं होगी, उसी दिन आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा।
1: लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी को भी बख्शने से इनकार कर इन सियासी हमलों की धार कुंद करने में जुटे, जिसमें अल्पसंख्यकों और विरोधियों के घरों पर बुलडोजर की जानबूझकर कार्रवाई का इल्जाम भी शामिल है।
8: हमारा तो मानना है कि उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला खत्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको मामला खत्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे, अब चंपक हो रहा है, क्या बोलेंगे बताइए आप। अब कुछ बोले ऐसी बात ही नहीं है उसमें, कितना ये सब तमाशे हो रहे हैं।
1: लेकिन योगी सरकार चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई करके ये बताना चाहती है कि जो भी अपराधी है सबका हश्र एक होगा, लेकिन विपक्ष मानता नहीं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की।
0: और अब आपको दिखाते हैं भारत और जापान के रिश्तों में नई उड़ान। जापान के पीएम सनाए तकाइची भारत आई हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी छोटी बहन बताया। इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स पार्टनरशिप की खूब बातें हुई हैं, कई डील्स भी हुई जो भारत जापान के रिश्तों की बुनियाद को और ज्यादा मजबूत करेंगी। जी हां, भारत और जापान ने आर्थिक साझेदारी को नई रफ्तार देने का फैसला किया है। भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने जापानीज कंपनियों की दिक्कतों को दूर करने के लिए जापान बिजनेस वीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है।
9: योर एक्सलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी है। भारत और जापान की इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री है, सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच और अप्रोच भी समानता है, और सबसे बढ़कर हमारे संबंधों की नींव अटूट आपसी विश्वास पर टिकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह विशेष साझेदारी सशक्त और समृद्ध जापान के आपके विजन, विकसित भारत के हमारे संकल्प और विश्व की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
0: और अब बात करेंगे बंगाल की सियासत के बारे में, जहां सत्ता के चेहरे बदले तो सियासी बदले का प्रतीक अंडा बन गया। टीएमसी नेताओं पर जनता का गुस्सा अंडों के रूप में बरस रहा है, लेकिन टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। वहीं सवाल अब नेताओं की सुरक्षा का भी है।
10: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडों से हो रहे हमलों की नई शिकार सांसद महुआ मोइत्रा हुई हैं।
11: बताए पुलिस, देखून देखताचेन आवाज शुरू करे छे, एई पताका चलबे।
10: नादिया में पार्टी कार्यालय के बाहर से अंडे और सब्जियां फेंके गए, महुआ ने खुद वीडियो शेयर किया।
12: खास करके अगर वो सांसद हो, उसको इस प्रकार से मारा जा रहा है, डीम फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है, नारियल फेंका जा रहा है, और नीचे लोग दिख रहे हैं जो बीजेपी का झंडा लेकर के हिला रहे हैं। साफ है, डीजीपी को फोन करके बताया गया, जगह बताया गया, सब कुछ महुआ मोइत्रा ने बताया, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ।
10: उधर अब टीएमसी के बागी और बीजेपी के सुर पूरे मामले में एक जैसे हैं।
13: जो लोग चोर है, डकैत है, माफिया है, लोगों का गुस्सा है उन लोगों के ऊपर। हमारा ये 65 एमएलएज में ऐसा एमएलए है, ट्रेन में आते जाते हैं, किधर भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, और चार्टर्ड माफिया का दिक्कत हो रहा है।
14: तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है, तो तृणमूल को इसको सलटाना चाहिए।
10: हाईकोर्ट की आपत्ति के बावजूद टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं दे रहा। आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी एक ओर जहां हमलों का शिकार हो रही है, तो वहीं पार्टी की टूट ने ममता की ताकत को कमजोर कर दिया है। इसी बीच अब शरद पवार गुट ने भी सांसदों की टूट की अटकलें हैं, जिसने महाराष्ट्र की सियासत को गर्म कर दिया है।

0: क्या शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा? क्या शरद पवार के 8 सांसदों पर बीजेपी की नजर है? क्या महाराष्ट्र का सियासी समीकरण फिर बदलने जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं। दरअसल सूत्रों से खबर है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP-SP का कांग्रेस में विलय हो सकता है। हालांकि अभी यह बातचीत महाराष्ट्र की इकाई तक ही सीमित है। खबर है कि शरद पवार विलय को लेकर अपनी पार्टी के अंदर रायशुमारी कर रहे हैं और अगर महाराष्ट्र में डील हो गई तो उसके बाद दिल्ली में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व विलय पर अंतिम मुहर लगाएंगे।
1: शरद पवार की एनसीपी का विलय जल्द कांग्रेस में हो सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों की राज्य इकाइयों के बीच में महाराष्ट्र लेवल पर फिलहाल बातचीत चल रही है और जैसे ही चीजें तय होंगी उसके बाद दोनों पार्टी क्योंकि टॉप लीडरशिप यहां दिल्ली में बैठकर इस पर अंतिम मोहर लगाएगी। दरअसल कुछ रोज पहले अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर शरद पवार ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए बीजेपी की आलोचना की थी, जिसके बाद कई लोगों ने ये कहा कि ये दर्शाता है कि दोनों पार्टियों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। जानकारों के मुताबिक अगर NCP का विलय कांग्रेस पार्टी में होता है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होगा।
0: जब से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT के 6 सांसद शिंदे कैंप में शामिल हुए हैं तब से शरद पवार की पार्टी में भी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब विपक्ष बीजेपी की जोड़ तोड़ की राजनीति पर करारा प्रहार कर रहा है। कभी शिवसेना UBT सांसद संजय राउत कांग्रेस में महाविलय का आइडिया दे देते हैं तो कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार कह देते हैं कि हाँ दिल्ली में बात चल रही है, तो कभी ऑपरेशन तुतारी का दावा करते हुए NCP के धर्मराव अतराम पवार के 8 में से 5 सांसदों को अपनी NCP में विलय करने की प्लानिंग की बात कह देते हैं और कभी दोनों NCP के ही संपूर्ण विलय का शिगुफा सामने आ जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि ना तो उनकी पार्टी कांग्रेस में मिलेगी और ना ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली से सूत्रों के हवाले खबर है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने में लगे NDA का ध्यान NCP शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है। ये संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस NCP विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते, ना ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं।
2: जिस तरीके से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सांसदों का सिलसिला बढ़ा है उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है, के साथ साथ अब ये भी जोड़ देना चाहिए कि राजनीति में भी सब कुछ चलता है और सब कुछ जायज है।
0: एक चर्चा ये भी है कि भविष्य में शरद पवार गुट के 8 सांसद सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली NCP में जा सकते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है।
3: देखिए, महाराष्ट्र से जो शरद पवार साहब की पार्टी के विलय की खबरें हैं हमें लगता अफवाह है, क्योंकि चाहे कितना भी आ जाए प्रलय, हम क्यों करेंगे किसी बड़े दल में विलय। हर पार्टी का अपने अस्तित्व होता है, हर पार्टी की अपनी मर्यादा होती है। शरद पवार साहब तो कांग्रेस से टूटकर ही अपना दल बनाए थे, तो कांग्रेस में रहना होता तो अपना दल क्यों बनाते। तो हमें लगता है कि सुप्रिया सुले जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो एक बात मुझे बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि शरद पवार साहब मेरे गुरु हैं, क्या कभी आपने सुना है कि गुरु की पार्टी कोई शिष्य तोड़ता है? ऐसा नहीं होता, गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ नहीं करेगी, जोड़फोड़ की राजनीति नहीं करेगी, तब तो शरद पवार जी की पार्टी के जो 8 सांसद हैं उनको कोई खतरा नहीं है।
0: क्योंकि महाराष्ट्र में टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं गठबंधन को भी है। NCP-SP, शिवसेना UBT और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों की गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार सहित प्रमुख नेता मौजूद नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो यह है कि एक दिन पहले ही आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी और शिवसेना UBT MLC सचिन अहिर भी उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे सेना के सारथी बन गए हैं। सचिन अहिर को महायुति ने विधान परिषद में डिप्टी चेयरमैन के पद का इनाम दिया है। उनके नामांकन में फडणवीस, शिंदे और सुनेत्रा पवार तीनों लोग मौजूद रहे। वैसे अभी NCP शरद गुट में 8 सांसद और 10 विधायक हैं और अगर विलय को लेकर शरद पवार की पार्टी में आम राय नहीं बनती तो 2/3 के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की दरकार होगी। सवाल है कि दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में रहे शरद पवार के मन में क्या चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पवार ही जानते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।
4: मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है। पिछले 3 दिनों में खुले मैनहोल, करंट और पेड़ गिरने जैसे हादसों में 5 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बारिश का कहर है या सिस्टम की घोर लापरवाही। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।

0: वाकई जिस तरह से पिछले तीन दिन में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के दौरान हुए हादसों में 5 लोगों की जान चली गई, उससे यही लग रहा है कि मुंबई हादसों का शहर ही है। 30 जून मुंबई, पेड़ गिरने से विहान की मौत। 1 जुलाई नवी मुंबई, सुरेश लोखंडे की मौत। 1 जुलाई डोंबिवली, शशि चक्र की मौत। 2 जुलाई मुंब्रा, आलिया की मौत। 2 जुलाई मुंबई, असलम शेख की मौत। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई में खुले मेनहोल में गिरने से 55 साल के असलम शेख की मौत की हो रही है। आज सुबह करीब 10:30 बजे अंधेरी के साकेनाका इलाके में खैरानी रोड पर असलम शेख की खुले मेनहोल में गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आनन फानन में 15 फीट नीचे गटर में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन सारी जद्दोजहद भी असलम की जान नहीं बचा सकी।
1: कितना डीप डेप्थ था और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन?
2: 25 फीट का डेप्थ था। हमने अपने हरनेस की मदद से, जो हमारे पास स्पेशल अप्लायंसेस है, उसकी हेल्प से हम लोगों ने नीचे डाउन जाके हरनेस की मदद से उनको लिफ्ट किया।
1: एक नैरो एरिया रहता है, उसमें किसी शख्स को वो लिफ्ट करना, कितने लोग आप लोग थे, कैसे?
2: मेरा पूरा 15 लोगों का टीम था। हरनेस की हेल्प से हम लोग नीचे गए थे, क्योंकि ज्यादा लोग नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, अंदर गैसेस वगैरह होते हैं। तो सेपर साइड खाली एक बंदा ही नीचे गया था, उसने नीचे जाके मैं गया था नीचे जाके मैंने उनको हरनेस की मदद से बांध के ऊपर लिफ्ट किया।
1: वो दिखे आपको किस हालत में, मतलब लेटे हुए थे, कहीं फंसे हुए थे, कैसा पानी का बहाव ज्यादा था?
2: उनका आधा बॉडी ड्रेन लाइन में, नीचे जो छोटा सा चेम्बर है उसके अंदर था, और हाफ बॉडी बाहर था।
0: असलम शेख के परिवार में मातम पसरा है। परिवार पूछ रहा है कि आखिरकार सरकार और बीएमसी प्रशासन आम लोगों की जान की कीमत क्यों नहीं समझ रहा।
3: हमारी फैमिली की तरफ से एक मांग है कि आज हमारा गया ना, कल किसी और का नहीं जाए। किसी के भी जिंदगी का कोई नुकसान ना हो। जिसका जाता है वो उसको पता चलता है कि उसका क्या गया। उनका एक बेटा है, बेटी है, बीवी है, कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था। उसके लिए मुआवजा चाहिए, प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ, अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है। प्लीज, ये मुंबई में हमेशा होता है, बहुत जरूर। सेफ्टी रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते? हर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा कमाना है, गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना है। हमसे टैक्स लेते, सब लेते, हमारी जान का क्या जाता है? हम लोग कहाँ जाए, ये बताओ।
0: हादसे की खबर सुनकर बीएमसी की मेयर रितु तावड़े भी मौके पर पहुंची। उन्होंने किंतु परंतु करने की जगह तुरंत बीएमसी प्रशासन की गलती और लापरवाही मानी। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। इतना ही नहीं, हादसे में लापरवाही बरतने को लेकर मेयर रितु तावड़े ने साकेनाका वार्ड अफसर समेत 4 बीएमसी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अधूरा काम छोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।
4: जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर तो हम लोग ने क्रिमिनल केस, वहाँ पे सदृश मनुष्य बदल का गुना उसके ऊपर हमने दाखिल किया ही है। अभी इसके ऊपर जो एडिशनल कमिश्नर विपिन शर्मा जी, उसकी जो एडिशनल कमिटी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कमिटी यहाँ पे बैठी है। अभी ऑन द स्पॉट यहाँ पे जो 4 है वार्ड ऑफिसर से लेके, उनको निलंबित किया है। लेकिन इसके ऊपर जो इंक्वायरी कमिटी बैठी है उसका अहवाल आने के बाद उसके ऊपर भी गुना दाखिल हुआ।
5: एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली नहीं ले रहा है मैडम, ऐसा लगता है। संजय घाड़ी जी ने भी अश्विनी भिड़े को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है जो मैनुअल है वो बंद नहीं करने के लिए।
4: देखो, गलती तो हुई है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। प्रशासन को इतना बोलने के बावजूद ये जो 2-2 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट आप क्यों इतना लेट इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जबकि बारिश के पहले आपके, एक तो वैसे भी बारिश लेट आई, तो आपके पास कम से कम 2 महीना थे। जाली बिठाने का काम बारिश में नहीं होता है, जाली बिठाने का काम ये बारिश के पहले होता है। या अगर करते थे तो वो इंसान बच जाता था।
5: मुंबई वालों को क्या संदेश देना चाहिए मैडम, जिस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, तेज बारिश है, डर का?
4: तेज वैसे भी मैं ऑलवेज सबको कहती हूँ कि बारिश के वक्त सब जन संभाल के चले।
5: यहाँ पर 10 लाख रुपया कम्पेंसेशन जो है मृतक उसकी परिवार को देने की बात की गई है। वार्ड ऑफिसर सहित 3 बीएमसी ऑफिसरों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है, रितु तावड़े ने खुद माना है कि बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से इतने सारे इंसिडेंट्स बारिश के मुंबई में हो रहे हैं।
0: 3 दिन में 5 लोगों की जान जाने से सरकार और बीएमसी विपक्ष के निशाने पर है।
6: कि जिस भाजपा के हाथ में आज बीएमसी है, उसे बरसात की जो पूरे तकलीफें हैं वो संभलने नहीं आती। पहले आपने देखा होगा कि महापौर साहिबा जब चल रही थी, उनके सामने ही मुंबई महानगरपालिका के एक कर्मचारी मैनहोल में गिर गए। उन पे ही शक करके उनको ही अभी इन्वेस्टिगेशन में खींचा गया है कि आपके विरोधी विपक्ष के हो। आज और एक घटना घटी है, कल कोई 2 व्यक्ति इलेक्ट्रिक्यूट हुए।
0: साकीनाका में मैनहोल में गिरने से हुए हादसे की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा में भी सुनी गई। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सरकार को सख्त निर्देश दिए कि सिर्फ अधिकारियों को सस्पेंड करना काफी नहीं होगा।
7: मुंबईत पाणी भरतं, पावसात वॉटर क्लॉगिंग होतं, ते होत असताना अनेक ठिकाणी कामं चालू असतात, तिकडे गटार उघडी ठेवली असतात. हे केवळ निलंबन करून चालणार नाही, मला वाटतं कल्पेबल होमिसाइडचा गुन्हा घ्यायला पाहिजे अशा अधिकाऱ्यांवर.
0: इसके बाद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी विधायक अमित साटम ने सदन में इस मुद्दे पर कहा कि लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
8: मुंबई में बारिश में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आज तीसरे दिन एक हादसा हुआ है जिसमें एक 60 साल के व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी. हमारे साथ बीजेपी के MLA और मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम है. उन्होंने इस मुद्दे को आज विधानसभा में उठाया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की है.
9: आज वहां पर साकीनाका में SO डिपार्टमेंट का एक काम शुरू था और वो काम शुरू होने के समय पर उस मैनहोल को अनअटेंडेड छोड़ा गया था और एक व्यक्ति की उसमें गिरकर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी है. हमने ये मांग की है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर का वहां पर काम शुरू था उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सदोष मनुष्य वध का कल्पेबल होमिसाइड का ये गुना FIR रजिस्टर होना चाहिए. जो अधिकारी जिनके ऊपर ये काम की जिम्मेदारी थी उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और आने वाले समय में प्रशासन ने अधिक संवेदनशीलता से काम करने की आवश्यकता है और इस घटना के बैकग्राउंड पर हम प्रशासन को एक इशारा देना चाहते हैं.
0: स्पीकर राहुल नार्वेकर ने साकीनाका हादसे पर तुरंत विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने हादसे की पूरी जानकारी सदन के सामने रखी. लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी से BMC संभल नहीं गई.
10: अब मौत का कुआं देखना हो तो मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले मैन होल को देख लीजिए. जब आपको पता है कि मुंबई में बरसात होती है, कभी भी कितनी भी बरसात होती है, तो आपने पहले तैयारियां पूरी क्यों नहीं की? अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तब भी अगर आप सावधान नहीं है तो मुंबई करोड़ के जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है?
0: वहीं ठाणे के मुंब्रा में बारिश के दौरान करंट लगने से 17 साल की आलिया की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मुंब्रा के यास्मीन पार्क की बी विंग में रहने वाली आलिया किसी काम से बिल्डिंग के बाहर निकली थी. इसी दौरान वो बारिश के पानी में उतरे करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई.
11: ये बोल के हम थक चुके हैं. आज भी कल भी आपने देखा, कल भी एक हादसा हो गया, स्लैब गिर गया था. आज एक 17 साल की जवान बच्ची वो सिर्फ अपने बाप की दुकान पे गई बाप को मिलने के लिए और आई और उसको करंट लगे और जगह पे बच्ची खत्म हो गई.
0: वहीं डोंबिवली में बच्चों के लिए नाश्ता लेने निकली माँ की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई. डोंबिवली के हनुमान नगर में खुले बिजली के तार ने 42 साल की महिला शशि चक्र की जान ले ली. मुंबई में 30 जून को चेंबूर इलाके में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के बिहान की मौत हो गई. अब ठाणे के मीरा भाईंदर इलाके में भी एक ऐसी ही घटना हुई है. यहाँ मूसलाधार बारिश के दौरान एक चलती स्कूटी पर अचानक नारियल का पेड़ गिर गया, जिससे स्कूटी सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया. हादसे का वीडियो भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि ये नारियल का पेड़ खोखला हो गया था. मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा दिख रहा है, खासकर निचले इलाकों जैसे दादर, प्रभा देवी, माटुंगा, सायन, अंधेरी, मुंब्रा, नाला सोपारा और कलम्बोली में जल भराव से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है. लेकिन बारिश के बाद हो रहे हादसों से मुंबई वाले भी खौफ में है. मुंबई से मुस्तफा शेख, ऋत्विक भालेकर और ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ मिथिलेश गुप्ता, डोंबिवली आज तक.
12: और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो हर उस माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर यानी कि बच्चों को दिन भर की देखभाल के लिए और सुरक्षा के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो अपने काम में ठीक से मन लगा सके, काम ठीक से कर पाएं या फिर अपनी नौकरी कर पाएं. लेकिन बेंगलुरु के एक डे केयर सेंटर से एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर किसी भी माँ बाप का कलेजा कांप जाए. देखते हैं डे केयर के शैतान को.
13: बेंगलुरु में डे केयर के शैतानों पर बड़ा खुलासा. कैसे डे केयर सेंटर में बच्चे को वॉशिंग मशीन में डालकर डराया. बच्चे को बाथरूम में बंद किया, मुंह पर टॉयलेट जेट से पानी डाला. मासूम के साथ प्रताड़ना के वीडियो से कांप उठेगा कलेजा. बेंगलुरु में कैप जेमिनी कंपनी के डे केयर सेंटर ने हद पार कर दी. मासूम की चीखों में छिपा ये दर्द बेरहमी की पूरी कहानी बयान कर रहा है. 29 जून का ये वायरल वीडियो बेंगलुरु में आईटी कंपनी कैप जेमिनी के एचईएल कैंपस में चल रहे डे केयर सेंटर का है, जहां 2 से 3 साल के बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है। वीडियो में बच्चा टॉयलेट में बंद है, फर्श पर लेटा हुआ है और जोरों से रो रहा है। एक महिला बच्चे के बिलखने का वीडियो बना रही है। एक और वीडियो में महिला बच्चे को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उसके मुंह पर जेट स्प्रे से पानी डाल रही है। इसके अलावा बच्चे को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम में बैठाकर रखा गया है, उसे डराया जा रहा है, बच्चा रो रहा है। एचएल पुलिस स्टेशन में अब 5 महिला केयर गिवर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज और सभी दूसरे तकनीकी सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है।
14: Women staff who are working in a daycare facility in an IT sector company. As per the complaint and the videos which have been given as part of the complaint, we are going through it. The Joint Commissioner East and the Deputy Commissioner of in charge of Whitefield, both are there at the place right now. They are verifying the facts. But whatever has happened is really very serious issue. And we will take stricter action. The videos are being verified. CCTVs, all other technical evidences are being looked at.
13: अब पुलिस ने 5 केयरगिवर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी केयरगिवर्स को नोटिस जारी किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। इन डे केयर सेंटर्स में ज्यादातर आईटी कंपनी में काम करने वाले माँ बाप अपने महज 2 से 3 साल के बच्चों को छोड़कर जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जिन बच्चों के लिए वो कमा रहे हैं उन पर ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं। कैप जेमिनी ने एक बयान में कहा है कि उसके कर्मचारियों और उनके परिवारों का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी ने कहा कि वो जांच में पूरी तरह सहयोग कर रही है और एहतियाती कदम के तौर पर डे केयर सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।
12: इसी के साथ ही मैं रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अमित शाह के घर 3.5 घंटे तक बीजेपी की मैराथन बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन रहे मौजूद। कैबिनेट में फेरबदल और संगठन स्तर पर अधिकारियों को लेकर चर्चा की संभावना। चढ़ावा चोरी में जांच के लिए दोबारा अयोध्या पहुंची एसआईटी ने 8 घंटे तक ट्रस्ट के अधिकारियों से की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी सवाल जवाब। टीएमसी में बगावत मामले पर अब चुनाव आयोग ने थामी कमान। ममता और ऋतुव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दोनों ही गुटों ने किया है पार्टी पर दावा। और भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी है रक्षा क्षेत्र में करार। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया विकास यात्रा का अहम भागीदार, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। और महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में बिहार और पंजाब से 3 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता अभी भी फरार। अब तक कुल 7 की गिरफ्तारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर देश की नजर है। एसआईटी जांच में लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों के बाद अयोध्या बार एसोसिएशन भी चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वहीं आरोपों की इस आंधी में 8 में से 1 आरोपी के घर पर योगी सरकार बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुकी है।
1: माफिया राज पर योगी सरकार का बुलडोजर चलते तो सबने देखा, धर्मांतरण करने वालों के साम्राज्य को भी योगी ने बुलडोजर से मिटाया। अवैध मस्जिद मजारों पर योगी का बुलडोजर चला है। अब प्रभु राम का चढ़ावा चुराने वाले आरोपियों का घर भी मिट्टी में मिलाया जाएगा। चढ़ावा चोरी में पकड़े गए 8 आरोपियों में से 1 लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। 2 मंजिला ये इमारत योगी सरकार के बुलडोजर की नई मंजिल होगी।
2: हमारे यहाँ जेई प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं। भी होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा, वाइफ ऑफ लोकेश मिश्रा का। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें।
1: लवकुश की पत्नी के नाम पर बन रही एक इमारत को लेकर अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने 1 हफ्ते के भीतर लवकुश के परिजनों से जवाब मांगा। साथ ही प्रशासन ने कहा है कि अगर जवाब नहीं मिला तो निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है।
3: आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर यानी कि सुप्रिया के नाम पर एक नोटिस थमा दिया है, जिसमें निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है वो सही स्थान पर बनी है कि नहीं बनी है उसको लेकर ये नोटिस है। 1 हफ्ते के भीतर लवकुश मिश्रा के परिवार को जवाब देना है। अब इस मामले में बड़ी बात निकलकर सामने ये भी आ रही है कि अगर 1 हफ्ते में प्राधिकरण को परिवार के द्वारा सही जवाब नहीं मिलता है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी प्राधिकरण कर सकता है।
1: अयोध्या के सादतगंज का ये वही घर है जो लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा बनवा रही। ये 2 मंजिला घर बिना नक्शा पास करवाए बनवाया जा रहा है।
4: मुख्य आरोपियों में शामिल लवकुश मिश्रा के इस मकान जो उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर मौजूद है, इसको भी अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस दिया जा चुका है। ये अयोध्या की सुहावल तहसील का ये मकान है जो करीब 1,000 स्क्वायर फीट का मकान है। वैसे तो लवकुश मिश्रा ने ये अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदा था। अयोध्या विकास प्राधिकरण के लोग आए थे यहाँ पर?
5: जी आए थे।
4: कब आए थे, क्या?
5: हम कल आए थे, पूछताछ कर रहे थे।
4: अच्छा
5: जी जी।
4: क्या करके गए?
5: कुछ नहीं, पूछा था ऐसा मकान नंबर ये वो कौन सी हम क्या कैसे लगता है किसका मकान है, इतना ही जानकारी है।
1: लवकुश मिश्रा की तथा उसकी पत्नी के बैंक खातों की जांच होने लगी है, जिसमें बड़ी रकम होने का दावा किया जाता है। इस तरह चढ़ावा चोरी के इस आरोपी की ही नहीं बल्कि इसके पूरे परिवार की जांच हो रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
6: SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूँ, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रखेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकारे नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती।
1: इससे पहले लवकुश मिश्रा के पास से 500 के 2,850 नोट यानी कुल 14,25,000 रुपए चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया। चढ़ावा चोरी कांड में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के जुर्म कबूलने के बाद नए खुलासे भी हो रहे हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित के हाथ में करेंसी नोटों के बंडल का एक वीडियो सामने आया, ये वीडियो जांच के दायरे में आ चुका है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई, जिसने विपक्षी दलों को योगी सरकार पर हमले का मौका दे दिया।
7: भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ किया, और जहां तक चढ़ावा और चंदे का सवाल है, हमारे देश की जनता इतनी दयालु है, भोली वाली है, जिस समय उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये रामधन के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच रहा है, उनके रामधन की चोरी नहीं होगी, उसी दिन आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा।
1: लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी को भी बख्शने से इनकार कर इन सियासी हमलों की धार कुंद करने में जुटे, जिसमें अल्पसंख्यकों और विरोधियों के घरों पर बुलडोजर की जानबूझकर कार्रवाई का इल्जाम भी शामिल है।
8: हमारा तो मानना है कि उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला खत्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको मामला खत्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे, अब चंपक हो रहा है, क्या बोलेंगे बताइए आप। अब कुछ बोले ऐसी बात ही नहीं है उसमें, कितना ये सब तमाशे हो रहे हैं।
1: लेकिन योगी सरकार चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई करके ये बताना चाहती है कि जो भी अपराधी है सबका हश्र एक होगा, लेकिन विपक्ष मानता नहीं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है।
0: और अब आपको दिखाते हैं भारत और जापान के रिश्तों में नई उड़ान। जापान के पीएम सनाई तकाईची भारत आई हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी छोटी बहन बताया। इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स पार्टनरशिप की खूब बातें हुई हैं, कई डील्स भी हुई जो भारत जापान के रिश्तों की बुनियाद को और ज्यादा मजबूत करेंगी। जी हां, भारत और जापान ने आर्थिक साझेदारी को नई रफ्तार देने का फैसला किया है। भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने जापानीज कंपनियों की दिक्कतों को दूर करने के लिए जापान बिजनेस वीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है।
9: योर एक्सलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी है। भारत और जापान की इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री है। सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच और अप्रोच भी समानता है, और सबसे बढ़कर हमारे संबंधों की नींव अटूट आपसी विश्वास पर टिकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह विशेष साझेदारी सशक्त और समृद्ध जापान के आपके विजन, विकसित भारत के हमारे संकल्प और विश्व की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
0: और अब बात करेंगे बंगाल की सियासत के बारे में, जहां सत्ता के चेहरे बदले तो सियासी बदले का प्रतीक अंडा बन गया। टीएमसी नेताओं पर जनता का गुस्सा अंडों के रूप में बरस रहा है, लेकिन टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। वहीं सवाल अब नेताओं की सुरक्षा का भी है।
10: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडों से हो रहे हमलों की नई शिकार सांसद महुआ मोइत्रा हुई हैं।
11: बताए पुलिस, देखो आवाज शुरू करे छे, एही पताका चलबे।
10: नादिया में पार्टी कार्यालय के बाहर से अंडे और सब्जियां फेंके गए, महुआ ने खुद वीडियो शेयर किया।
12: खास करके अगर वो सांसद हो, उसको इस प्रकार से मारा जा रहा है, डीम फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है, नारियल फेंका जा रहा है, और नीचे लोग दिख रहे हैं जो बीजेपी का झंडा लेकर के हिला रहे हैं। साफ है, डीजीपी को फोन करके बताया गया, जगह बताया गया, सब कुछ महुआ मोइत्रा ने बताया, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ।
10: उधर अब टीएमसी के बागी और बीजेपी के सुर पूरे मामले में एक जैसे हैं।
13: जो लोग चोर है, डकैत है, माफिया है, लोगों का गुस्सा है उन लोगों के ऊपर। हमारा ये 65 एमएलएज में ऐसा एमएलए है, ट्रेन में आते जाते हैं, किधर भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, और चार्टर्ड माफिया का दिक्कत हो रहा है।
14: तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है, तो तृणमूल को इसको सलटाना चाहिए।
10: हाईकोर्ट की आपत्ति के बावजूद टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी एक ओर जहां हमलों का शिकार हो रही है, तो वहीं पार्टी की टूट ने ममता की ताकत को कमजोर कर दिया है। इसी बीच अब शरद पवार गुट ने भी सांसदों की टूट की अटकलें हैं, जिसने महाराष्ट्र की सियासत को गर्म कर दिया है।
15: क्या शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा? क्या शरद पवार के 8 सांसदों पर बीजेपी की नजर है? क्या महाराष्ट्र का सियासी समीकरण फिर बदलने जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं। दरअसल सूत्रों से खबर है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP-SP का कांग्रेस में विलय हो सकता है। हालांकि अभी यह बातचीत महाराष्ट्र की इकाई तक ही सीमित है। खबर है कि शरद पवार विलय को लेकर अपनी पार्टी के अंदर रायशुमारी कर रहे हैं, और अगर महाराष्ट्र में डील हो गई तो उसके बाद दिल्ली में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व विलय पर अंतिम मुहर लगाएंगे।
16: शरद पवार की एनसीपी का विलय जल्द कांग्रेस में हो सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों की राज्य इकाइयों के बीच में महाराष्ट्र लेवल पर फिलहाल बातचीत चल रही है, और जैसे ही चीजें तय होंगी उसके बाद दोनों पार्टी क्योंकि टॉप लीडरशिप यहां दिल्ली में बैठकर इस पर अंतिम मोहर लगाएगी। दरअसल कुछ रोज पहले अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर शरद पवार ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए बीजेपी की आलोचना की थी, जिसके बाद कई लोगों ने ये कहा कि ये दर्शाता है कि दोनों पार्टियों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। जानकारों के मुताबिक अगर NCP का विलय कांग्रेस पार्टी में होता है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होगा।
15: जब से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT के 6 सांसद शिंदे कैंप में शामिल हुए हैं, तब से शरद पवार की पार्टी में भी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब विपक्ष बीजेपी की जोड़-तोड़ की राजनीति पर करारा प्रहार कर रहा है। कभी शिवसेना UBT सांसद संजय राउत कांग्रेस में महाविलय का आइडिया दे देते हैं, तो कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार कह देते हैं कि हाँ, दिल्ली में बात चल रही है। तो कभी ऑपरेशन तुतारी का दावा करते हुए NCP के धर्मराव अतराम पवार के 8 में से 5 सांसदों को अपनी NCP में विलय करने की प्लानिंग की बात कह देते हैं, और कभी दोनों NCP के ही संपूर्ण विलय का शिगुफा सामने आ जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि ना तो उनकी पार्टी कांग्रेस में मिलेगी और ना ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली से सूत्रों के हवाले खबर है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने में लगे NDA का ध्यान NCP शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है। ये संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस NCP विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते, ना ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं।
17: जिस तरीके से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सांसदों का सिलसिला बढ़ा है, उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है, के साथ साथ अब ये भी जोड़ देना चाहिए कि राजनीति में भी सब कुछ चलता है और सब कुछ जायज है।
15: एक चर्चा ये भी है कि भविष्य में शरद पवार गुट के 8 सांसद सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली NCP में जा सकते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है।
18: देखिए, महाराष्ट्र से जो शरद पवार साहब की पार्टी के विलय की खबरें हैं, हमें लगता अफवाह है, क्योंकि चाहे कितना भी आ जाए प्रलय, हम क्यों करेंगे किसी बड़े दल में विलय। हर पार्टी का अपने अस्तित्व होता है, हर पार्टी की अपनी मर्यादा होती है। शरद पवार साहब तो कांग्रेस से टूटकर ही अपना दल बनाए थे, तो कांग्रेस में रहना होता तो अपना दल क्यों बनाते। तो हमें लगता है कि सुप्रिया सुले जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो एक बात मुझे बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि शरद पवार साहब मेरे गुरु हैं। क्या कभी आपने सुना है कि गुरु की पार्टी कोई शिष्य तोड़ता है? ऐसा नहीं होता, गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ नहीं करेगी, जोड़फोड़ की राजनीति नहीं करेगी, तब तो शरद पवार जी की पार्टी के जो 8 सांसद हैं उनको कोई खतरा नहीं है।
15: क्योंकि महाराष्ट्र में टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं, गठबंधन को भी है। NCP-SP, शिवसेना UBT और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों की गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार सहित प्रमुख नेता मौजूद नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं, तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो यह है कि एक दिन पहले ही आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी और शिवसेना यूबीटी एमएलसी सचिन अहिर भी उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे सेना के सारथी बन गए हैं। सचिन अहिर को महायुति ने विधान परिषद में डिप्टी चेयरमैन के पद का इनाम दिया है। उनके नामांकन में फडणवीस शिंदे और सुनेत्रा पवार तीनों लोग मौजूद रहे। वैसे अभी एनसीपी शरद गुट में 8 सांसद और 10 विधायक हैं। और अगर विलय को लेकर शरद पवार की पार्टी में आम राय नहीं बनती तो 2/3 के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की दरकार होगी। सवाल है कि दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में रहे शरद पवार के मन में क्या चल रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ पवार ही जानते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।
0: मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है। पिछले 3 दिनों में खुले मैनहोल, करंट और पेड़ गिरने जैसे हादसों में 5 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बारिश का कहर है या सिस्टम की घोर लापरवाही। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।

वाकई जिस तरह से पिछले तीन दिन में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के दौरान हुए हादसों में 5 लोगों की जान चली गई, उससे यही लग रहा है कि मुंबई हादसों का शहर ही है। 30 जून मुंबई, पेड़ गिरने से विहान की मौत। 1 जुलाई नवी मुंबई, सुरेश लोखंडे की मौत। 1 जुलाई डोंबिवली, शशि चक्र की मौत। 2 जुलाई मुंब्रा, आलिया की मौत। 2 जुलाई मुंबई, असलम शेख की मौत। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई में खुले मेनहोल में गिरने से 55 साल के असलम शेख की मौत की हो रही है। आज सुबह करीब 10:30 बजे अंधेरी के साकेनाका इलाके में खैरानी रोड पर असलम शेख की खुले मेनहोल में गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आनन फानन में 15 फीट नीचे गटर में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन सारी जद्दोजहद भी असलम की जान नहीं।

0: उसकी हेल्प से हम लोगों ने नीचे डाउन जाके हार्नेस की मदद से उनको लिफ्ट किया।
1: एक नैरो एरिया रहता है, उसमें किसी शख्स को वो लिफ्ट करना, कितने लोग आप लोग थे, कैसे?
0: मेरा पूरा दो मतलब एक 15 लोगों का टीम था। हार्नेस की हेल्प से हम लोग नीचे गए थे क्योंकि ज्यादा लोग नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, अंदर गैसेस वगैरह होते हैं। तो सेफर साइड खाली एक बंदा ही नीचे गया था, उसने नीचे जाके नीचे जाके मैंने उनको हार्नेस की मदद से बांध के ऊपर लिफ्ट किया।
1: वो दिखे आपको किस हालत में, मतलब लेटे हुए थे, कहीं फंसे हुए थे, कैसा, पानी का बहाव ज्यादा था?
0: उनका आधा बॉडी ड्रेन लाइन में नीचे जो छोटा सा चेम्बर है उसके अंदर था और हाफ बॉडी बाहर था।
2: असलम शेख के परिवार में मातम पस रहा है। परिवार पूछ रहा है कि आखिरकार सरकार और बीएमसी प्रशासन आम लोगों की जान की कीमत क्यों नहीं समझ रहा।
3: हमारी फैमिली की तरफ से एक मांग है कि आज हमारा गया ना, कल किसी और का नहीं जाए। किसी के भी जिंदगी का कोई नुकसान ना हो। जिसका जाता है वो उसको पता चलता है कि उसका क्या गया। उनका एक बेटा है, बेटी है, बीवी है, कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था। उसके लिए मुआवजा चाहिए, प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ। अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है, प्लीज। ये मुंबई में हमेशा होता है, बहुत जरूरी। सेफ्टी रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते? हर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा कमाना है, गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना है। हमसे टैक्स लेते, सब लेते, हमारी जान का क्या जाता है? हम लोग कहाँ जाए, ये बताओ।
2: हादसे की खबर सुनकर बीएमसी की मेयर रितु तावड़े भी मौके पर पहुंची। उन्होंने किंतु परंतु करने की जगह तुरंत बीएमसी प्रशासन की गलती और लापरवाही मानी। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। इतना ही नहीं, हादसे में लापरवाही बरतने को लेकर मेयर रितु तावड़े ने साकिनाका वार्ड अफसर समेत 4 बीएमसी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अधूरा काम छोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।
4: जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर तो हम लोग ने क्रिमिनल केस वहाँ पे सदृश मनुष्य बदल का गुना उसके ऊपर हमने दाखिल किया ही है। अभी इसके ऊपर जो एडिशनल कमिश्नर विपिन शर्मा जी, उसकी जो एडिशनल कमिटी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कमिटी यहाँ पे बैठी है। अभी ऑन द स्पॉट यहाँ पे जो 4 है वार्ड ऑफिसर से लेके उनको निलंबित किया है, लेकिन इसके ऊपर जो इंक्वायरी कमिटी बैठी है उसका अहवाल आने के बाद उसके ऊपर भी गुना दाखिल होगा।
5: एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली नहीं ले रहा है मैडम, ऐसा लगता है। संजय घाड़ी जी ने भी अश्विनी भिड़े को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है जो मैनुअल है वो बंद नहीं करने के लिए।
4: देखो, गलती तो हुई है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। प्रशासन को इतना बोलने के बावजूद ये जो 2-2 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट आप क्यों इतना लेट इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जबकि बारिश के पहले आपके एक तो वैसे भी बारिश लेट आई, तो आपके पास कम से कम 2 महीना थे। जाली बिठाने का काम बारिश में नहीं होता है, जाली बिठाने का काम ये बारिश के पहले होता है। या अगर करते थे तो वो इंसान बच जाता था।
5: मुंबई को तो क्या संदेश देना चाहिए मैडम, जिस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, तेज बारिश है, डर का
4: तेज। वैसे भी मैं ऑलवेज सबको कहती हूँ कि बारिश के वक्त सब जन संभाल के चले।
5: यहाँ पर 10 लाख रुपया कम्पेंसेशन जो है मृतक उसकी परिवार को देने की बात की गई है। वार्ड ऑफिसर सहित 3 बीएमसी ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है, रितु तावड़े ने खुद माना है कि बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से इतने सारे इंसिडेंट्स बारिश के मुंबई में हो रहे हैं।
2: 3 दिन में 5 लोगों की जान जाने से सरकार और बीएमसी विपक्ष के निशाने पर है।
6: कि जिस भाजपा के हाथ में आज बीएमसी है, उसे बरसात की जो पूरे तकलीफें हैं वो संभलने नहीं आती। पहले आपने देखा होगा कि महापौर साहिबा जब चल रही थी, उनके सामने ही मुंबई महानगर पालिका के एक कर्मचारी मैनुअल में गिर गए। उन पे ही शक करके उनको ही अभी इन्वेस्टिगेशन में खींचा गया कि आपके विरोधी विपक्ष के हो। आज और एक घटना घटी है, कल कोई 2 व्यक्ति इलेक्ट्रिक्यूट हुए।
2: साकिनाका में मैनहोल में गिरने से हुए हादसे की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा में भी सुनी गई। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सरकार को सख्त निर्देश दिए कि सिर्फ अधिकारियों को सस्पेंड करना काफी नहीं होगा।
7: मुंबईत पाणी भरतं, पावसात वॉटर क्लॉगिंग होतं, ते होत असताना अनेक ठिकाणी कामं चालू असतात, तिकडे गटारं उघडी ठेवली असतात। हे केवळ निलंबन करून चालणार नाही, मला वाटतं कल्पेबल होमिसाइडचा गुन्हा घ्यायला पाहिजे अशा अधिकाऱ्यांवर।
2: इसके बाद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी विधायक अमित साटम ने सदन में इस मुद्दे पर कहा कि लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
8: मुंबई में बारिश में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज 3rd दिन एक हादसा हुआ है जिसमें एक 60 साल के व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारे साथ बीजेपी के MLA और मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम है। उन्होंने इस मुद्दे को आज विधानसभा में उठाया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।
9: आज वहां पर साकिनाका में ISO डिपार्टमेंट का एक काम शुरू था और वो काम शुरू होने के समय पर उस मैनहोल को अनअटेंडेड छोड़ा गया था और एक व्यक्ति की

0: उसमें गिरकर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी है। हमने ये मांग की है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर का वहां पर काम शुरू था उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सदोष मनुष्यवध का कल्पेबल होमिसाइड का यह गुना एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। जो अधिकारी जिनके ऊपर ये काम की जिम्मेदारी थी उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और आने वाले समय में प्रशासन ने अधिक संवेदनशीलता से काम करने की आवश्यकता है और इस घटना के बैकग्राउंड पर हम प्रशासन को एक इशारा देना चाहते हैं।
1: स्पीकर राहुल नार्वेकर ने साकिना का हादसे पर तुरंत विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने हादसे की पूरी जानकारी सदन के सामने रखी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी से बीएमसी संभल नहीं गई।
2: अब मौत का कुआं देखना हो तो मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले मैन होल को देख लीजिए। जब आपको पता है कि मुंबई में बरसात होती है, कभी भी कितनी भी बरसात होती है, तो आपने पहले तैयारियां पूरी क्यों नहीं की? अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तब भी अगर आप सावधान नहीं है तो मुंबई करोड़ के जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है।
1: वहीं ठाणे के मुंब्रा में बारिश के दौरान करंट लगने से 17 साल की आलिया की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुंब्रा के यास्मीन पार्क की बी विंग में रहने वाली आलिया किसी काम से बिल्डिंग के बाहर निकली थी, इसी दौरान वो बारिश के पानी में उतरे करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई।
3: ये बोल के हम थक चुके हैं। आज भी कल भी आपने देखा, कल भी एक हादसा हो गया, इधर स्लैब गिर गया था। आज एक 17 साल की जवान बच्ची वो सिर्फ अपने बाप की दुकान में गई बाप को मिलने के लिए और आई और उसको करंट लगे और जगह पे बच्ची खत्म हो गई।
1: वहीं डोंबिवली में बच्चों के लिए नाश्ता लेने निकली मां की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। डोंबिवली के हनुमान नगर में खुले बिजली के तार ने 42 साल की महिला शशि चक्र की जान ले ली। मुंबई में 30 जून को चेंबूर इलाके में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत हो गई थी। अब ठाणे के मीरा भाईंदर इलाके में भी एक ऐसी ही घटना हुई है। यहाँ मूसलाधार बारिश के दौरान एक चलती स्कूटी पर अचानक नारियल का पेड़ गिर गया, जिससे स्कूटी सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये नारियल का पेड़ खोखला हो गया था। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा दिख रहा है, खासकर निचले इलाकों जैसे दादर, प्रभादेवी, माटुंगा, सायन, अंधेरी, मुंब्रा, नाला सोपारा और कलम्बोली में जल भराव से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन बारिश के बाद हो रहे हादसों से मुंबई वाले भी खौफ में हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख, ऋत्विक भालेकर और ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ मिथिलेश गुप्ता, डोंबिवली आज तक।
4: और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो हर उस माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर यानी कि बच्चों को दिन भर की देखभाल के लिए और सुरक्षा के लिए छोड़ देते हैं, ताकि वो अपने काम में ठीक से मन लगा सके, काम ठीक से कर पाएं या फिर अपनी नौकरी कर पाएं। लेकिन बेंगलुरु के एक डे केयर सेंटर से एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर किसी भी माँ बाप का कलेजा कांप जाए। देखते हैं डे केयर के शैतान को।
5: बेंगलुरु में डे केयर के शैतानों पर बड़ा खुलासा। कैसे डे केयर सेंटर में बच्चे को वॉशिंग मशीन में डालकर डराया। बच्चे को बाथरूम में बंद किया, मुंह पर टॉयलेट जेट से पानी डाला। मासूम के साथ प्रताड़ना के वीडियो से कांप उठेगा कलेजा। बेंगलुरु में कैप जेमिनी कंपनी के डे केयर सेंटर ने हद पार कर दी। मासूम की चीखों में छिपा ये दर्द बेरहमी की पूरी कहानी बयान कर रहा है। 29 जून का ये वायरल वीडियो बेंगलुरु में आईटी कंपनी कैप जेमिनी के एचएल कैंपस में चल रहे डे केयर सेंटर का है, जहां 2 से 3 साल के बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है। वीडियो में बच्चा टॉयलेट में बंद है, फर्श पर लेटा हुआ है और जोरों से रो रहा है। एक महिला बच्चे के बिलखने का वीडियो बना रही है। एक और वीडियो में महिला बच्चे को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उसके मुंह पर जेट स्प्रे से पानी डाल रही है। इसके अलावा बच्चे को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम में बैठाकर रखा गया है, उसे डराया जा रहा है, बच्चा रो रहा है। एचएल पुलिस स्टेशन में अब 5 महिला केयर गिवर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज और सभी दूसरे तकनीकी सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है।
6: As per the complaint, which is against, mentioned five names have been mentioned of women staff who are working in a daycare facility in an IT sector company. As per the complaint and the videos which have been given as part of the complaint, we are going through it. The Joint Commissioner East and the Deputy Commissioner of in charge of Whitefield, both are there at the place right now. They are verifying the facts. But whatever has happened is really very serious issue. And we will take stricter action. The videos are being verified. CCTVs, all other technical evidences are being looked at.
5: अब पुलिस ने पांच केयर गिवर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी केयर गिवर्स को नोटिस जारी किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। इन डे केयर सेंटर्स में ज्यादातर आईटी कंपनी में काम करने वाले माँ बाप अपने महज 2 से 3 साल के बच्चों को छोड़कर जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जिन बच्चों के लिए वो कमा रहे हैं उन पर ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं। कैप जेमिनी ने एक बयान में कहा है कि उसके कर्मचारियों और उनके परिवारों का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी ने कहा कि वो जांच में पूरी तरह सहयोग कर रही है और एहतियाती कदम के तौर पर डे केयर सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।
4: इसी के साथ ही मैं रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अमित शाह के घर 3.5 घंटे तक बीजेपी की मैराथन बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन रहे मौजूद। कैबिनेट में फेरबदल और संगठन स्तर पर अधिकारियों को लेकर चर्चा की संभावना। चढ़ावा चोरी में जांच के लिए दोबारा अयोध्या पहुंची एसआईटी ने 8 घंटे तक ट्रस्ट के अधिकारियों से की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी सवाल जवाब। टीएमसी में बगावत मामले पर अब चुनाव आयोग ने थामी कमान। ममता और ऋतुव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दोनों ही गुटों ने किया है पार्टी पर दावा। और भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी है रक्षा क्षेत्र में करार। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया विकास यात्रा का अहम भागीदार, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। और महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में बिहार और पंजाब से 3 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता अभी भी फरार। अब तक कुल 7 की गिरफ्तारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर देश की नजर है। एसआईटी जांच में लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों के बाद अयोध्या बार एसोसिएशन भी चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वहीं आरोपों की इस आंधी में 8 में से 1 आरोपी के घर पर योगी सरकार बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुकी है।
1: माफिया राज पर योगी सरकार का बुलडोजर चलते तो सबने देखा, धर्मांतरण करने वालों के साम्राज्य को भी योगी ने बुलडोजर से मिटाया। अवैध मस्जिद मजारों पर योगी का बुलडोजर चला है। अब प्रभु राम का चढ़ावा चुराने वाले आरोपियों का घर भी मिट्टी में मिलाया जाएगा। चढ़ावा चोरी में पकड़े गए 8 आरोपियों में से 1 लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। 2 मंजिला ये इमारत योगी सरकार के बुलडोजर की नई मंजिल होगी।
2: हमारे अब जेई प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं। भी होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है, तो उसी संदर्भ में एक नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लोकुश मिश्रा का। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें।
1: लवकुश की पत्नी के नाम पर बन रही एक इमारत को लेकर अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने 1 हफ्ते के भीतर लवकुश के परिजनों से जवाब मांगा। साथ ही प्रशासन ने कहा है कि अगर जवाब नहीं मिला तो निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है।
3: आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर यानी कि सुप्रिया के नाम पर एक नोटिस थमा दिया है, जिसमें निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है वो सही स्थान पर बनी है कि नहीं बनी है उसको लेकर ये नोटिस है। 1 हफ्ते के भीतर लवकुश मिश्रा के परिवार को जवाब देना है। अब इस मामले में बड़ी बात निकलकर सामने ये भी आ रही है कि अगर 1 हफ्ते में प्राधिकरण को परिवार के द्वारा सही जवाब नहीं मिलता है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी प्राधिकरण कर सकता है।
1: अयोध्या के सादतगंज का ये वही घर है जो लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा बनवा रही। ये 2 मंजिला घर बिना नक्शा पास करवाए बनवाया जा रहा है।
4: मुख्य आरोपियों में शामिल लवकुश मिश्रा के इस मकान जो उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर मौजूद है, इसको भी अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस दिया जा चुका है। ये अयोध्या की सुहावल तहसील का ये मकान है जो करीब 1000 स्क्वायर फीट का मकान है। वैसे तो लवकुश मिश्रा ने ये अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदा था। अयोध्या विकास प्राधिकरण के लोग आए थे यहाँ पर?
5: जी आए थे।
4: कब आए थे?
5: कल आए थे, आप पूछताछ कर रहे थे।
4: अच्छा
5: जी जी।
4: क्या करके गए?
5: कुछ नहीं, पूछा था मकान नंबर ये वो कौन सी क्या कैसे लगता है किसका मकान है, इतना ही जानकारी।
1: लवकुश मिश्रा की तथा उसकी पत्नी के बैंक खातों की जांच होने लगी है, जिसमें बड़ी रकम होने का दावा किया जाता है। इस तरह चढ़ावा चोरी के इस आरोपी की ही नहीं बल्कि इसके पूरे परिवार की जांच हो रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
6: SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूँ जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रखेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकारे नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्त भोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती।
1: इससे पहले लवकुश मिश्रा के पास से 500 के 2,850 नोट यानी कुल 14,25,000 रुपए चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया था। चढ़ावा चोरी कांड में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के जुर्म कबूलने के बाद नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित के हाथ में करेंसी नोटों के बंडल का एक वीडियो सामने आया, ये वीडियो जांच के दायरे में आ चुका है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई, जिसने विपक्षी दलों को योगी सरकार पर हमले का मौका दे दिया।
7: भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ की है, और जहां तक चढ़ावा और चंदे का सवाल है, हमारे देश की जनता इतनी दयालु और भोली वाली है, जिससे मैं उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये रामधन रामधन के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच रहा है, उनके रामधन की चोरी नहीं होगी, उसी दिन आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा।
1: लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी को भी बख्शने से इनकार कर इन सियासी हमलों की धार कुंद करने में जुटे, जिसमें अल्पसंख्यकों और विरोधियों के घरों पर बुलडोजर की जानबूझकर कार्रवाई का इल्जाम भी शामिल है।
8: हमारा तो मानना है कि उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला खत्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको मामला खत्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे, अब चंपक हो रहा है, क्या बोलेंगे बताइए आप। अब कुछ बोले ऐसी बात ही नहीं है उसमें, कितना ये सब तमाशे हो रहे हैं।
1: लेकिन योगी सरकार चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई करके ये बताना चाहती है कि जो भी अपराधी है सबका हश्र एक होगा, लेकिन विपक्ष मानता नहीं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है।
0: और अब आपको दिखाते हैं भारत और जापान के रिश्तों में नई उड़ान। जापान के पीएम सनाई तकाईची भारत आई हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी छोटी बहन बताया। इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स पार्टनरशिप की खूब बातें हुई हैं, कई डील्स भी हुई जो भारत जापान के रिश्तों की बुनियाद को और ज्यादा मजबूत करेंगी। जी हां, भारत और जापान ने आर्थिक साझेदारी को नई रफ्तार देने का फैसला किया है। भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने जापानीज कंपनियों की दिक्कतों को दूर करने के लिए जापान बिजनेस वीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है।
9: योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी है। भारत और जापान की इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री है, सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच और अप्रोच भी समानता है, और सबसे बढ़कर हमारे संबंधों की नींव अटूट आपसी विश्वास पर टिकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह विशेष साझेदारी सशक्त और समृद्ध जापान के आपके विजन, विकसित भारत के हमारे संकल्प और विश्व की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
0: और अब बात करेंगे बंगाल की सियासत के बारे में, जहां सत्ता के चेहरे बदले तो सियासी बदले का प्रतीक अंडा बन गया। टीएमसी नेताओं पर जनता का गुस्सा अंडों के रूप में बरस रहा है, लेकिन टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। वहीं सवाल अब नेताओं की सुरक्षा का भी है।
10: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडों से हो रहे हमलों की नई शिकार सांसद महुआ मोइत्रा हुई हैं।
11: बताए पुलिस, देखो हवा शुरू करे छे, एही पताका चलबे।
10: नादिया में पार्टी कार्यालय के बाहर से अंडे और सब्जियां फेंके गए, महुआ ने खुद वीडियो शेयर किया।
12: खास करके अगर वो सांसद हो, उसको इस प्रकार से मारा जा रहा है, डीम फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है, नारियल फेंका जा रहा है, और नीचे लोग दिख रहे हैं जो बीजेपी का झंडा लेकर के हिला रहे हैं। साफ है, डीजीपी को फोन करके बताया गया, जगह बताया गया, सब कुछ महुआ मोइत्रा ने बताया, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ।
10: उधर अब टीएमसी के बागी और बीजेपी के सुर पूरे मामले में एक जैसे हैं।
13: जो लोग चोर है, डकैत है, माफिया है, लोगों का गुस्सा है उन लोगों के ऊपर। हमारा ये 65 एमएलएस में ऐसा एमएलए है, ट्रेन में आते जाते हैं, किधर भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, और चार्टर्ड माफिया का दिक्कत हो रहा है।
14: तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है, तो तृणमूल को इसको सलटाना चाहिए।
10: हाईकोर्ट की आपत्ति के बावजूद टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं दे रहा। आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी एक ओर जहां हमलों का शिकार हो रही है, तो वहीं पार्टी की टूट ने ममता की ताकत को कमजोर कर दिया है। इसी बीच अब शरद पवार गुट ने भी सांसदों की टूट की अटकलें हैं, जिसने महाराष्ट्र की सियासत को गर्म कर दिया है।
15: क्या शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा? क्या शरद पवार के 8 सांसदों पर बीजेपी की नजर है? क्या महाराष्ट्र का सियासी समीकरण फिर बदलने जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं। दरअसल सूत्रों से खबर है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP-SP का कांग्रेस में विलय हो सकता है। हालांकि अभी यह बातचीत महाराष्ट्र की इकाई तक ही सीमित है। खबर है कि शरद पवार विलय को लेकर अपनी पार्टी के अंदर रायशुमारी कर रहे हैं, और अगर महाराष्ट्र में डील हो गई तो उसके बाद दिल्ली में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व विलय पर अंतिम मुहर लगाएंगे।
16: शरद पवार की एनसीपी का विलय जल्द कांग्रेस में हो सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों की राज्य इकाइयों के बीच में महाराष्ट्र लेवल पर फिलहाल बातचीत चल रही है, और जैसे ही चीजें तय होंगी उसके बाद दोनों पार्टी क्योंकि टॉप लीडरशिप यहां दिल्ली में बैठकर इस पर अंतिम मोहर लगाएगी। दरअसल कुछ रोज पहले अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर शरद पवार ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए बीजेपी की आलोचना की थी, जिसके बाद कई लोगों ने ये कहा कि ये दर्शाता है कि दोनों पार्टियों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। जानकारों के मुताबिक अगर एनसीपी का विलय कांग्रेस पार्टी में होता है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होगा।
15: जब से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT के 6 सांसद शिंदे कैंप में शामिल हुए हैं, तब से शरद पवार की पार्टी में भी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब विपक्ष बीजेपी की जोड़तोड़ की राजनीति पर करारा प्रहार कर रहा है। कभी शिवसेना UBT सांसद संजय राउत कांग्रेस में महाविलय का आइडिया दे देते हैं, तो कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार कह देते हैं कि हाँ, दिल्ली में बात चल रही है। तो कभी ऑपरेशन तुतारी का दावा करते हुए एनसीपी के धर्मराव अतराम पवार के 8 में से 5 सांसदों को अपनी एनसीपी में विलय करने की प्लानिंग की बात कह देते हैं, और कभी दोनों एनसीपी के ही संपूर्ण विलय का शिगुफा सामने आ जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि ना तो उनकी पार्टी कांग्रेस में मिलेगी और ना ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली से सूत्रों के हवाले खबर है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने में लगे एनडीए का ध्यान एनसीपी शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है। ये संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस एनसीपी विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते, ना ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं।
17: जिस तरीके से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सांसदों का सिलसिला बढ़ा है, उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है, के साथ साथ अब ये भी जोड़ देना चाहिए कि राजनीति में भी सब कुछ चलता है और सब कुछ जायज है।
15: एक चर्चा ये भी है कि भविष्य में शरद पवार गुट के 8 सांसद सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में जा सकते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है।
18: देखिए, महाराष्ट्र से जो शरद पवार साहब की पार्टी के विलय की खबरें हैं, हमें लगता अफवाह है, क्योंकि चाहे कितना भी आ जाए प्रलय, हम क्यों करेंगे किसी बड़े दल में विलय। हर पार्टी का अपने अस्तित्व होता है, हर पार्टी की अपनी मर्यादा होती है। शरद पवार साहब तो कांग्रेस से टूटकर ही अपना दल बनाए थे, तो कांग्रेस में रहना होता तो अपना दल क्यों बनाते। तो हमें लगता है कि सुप्रिया सुले जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो एक बात मुझे बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि शरद पवार साहब मेरे गुरु हैं, क्या कभी आपने सुना है कि गुरु की पार्टी कोई शिष्य तोड़ता है? ऐसा नहीं होता, गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ नहीं करेगी, जोड़फोड़ की राजनीति नहीं करेगी, तब तो शरद पवार जी की पार्टी के जो 8 सांसद हैं उनको कोई खतरा नहीं है।
15: क्योंकि महाराष्ट्र में टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं, गठबंधन को भी है। NCP-SP, शिवसेना UBT और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों के गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार सहित प्रमुख नेता मौजूद नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं, तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो यह है कि एक दिन पहले ही आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी और शिवसेना यूबीटी एमएलसी सचिन अहिर भी उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे सेना के सारथी बन गए हैं। सचिन अहिर को महायुति ने विधान परिषद में डिप्टी चेयरमैन के पद का इनाम दिया है। उनके नामांकन में फडणवीस शिंदे और सुनेत्रा पवार तीनों लोग मौजूद रहे। वैसे अभी एनसीपी शरद गुट में 8 सांसद और 10 विधायक हैं, और अगर विलय को लेकर शरद पवार की पार्टी में आम राय नहीं बनती तो 2/3 के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की दरकार होगी। सवाल है कि दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में रहे शरद पवार के मन में क्या चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पवार ही जानते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।
0: मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है। पिछले 3 दिनों में खुले मैनहोल, करंट और पेड़ गिरने जैसे हादसों में 5 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बारिश का कहर है या सिस्टम की घोर लापरवाही। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।

0: वाकई जिस तरह से पिछले तीन दिन में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के दौरान हुए हादसों में 5 लोगों की जान चली गई, उससे यही लग रहा है कि मुंबई हादसों का शहर ही है। 30 जून मुंबई, पेड़ गिरने से विहान की मौत। 1 जुलाई नवी मुंबई, सुरेश लोखंडे की मौत। 1 जुलाई डोंबिवली, शशि चक्र की मौत। 2 जुलाई मुंब्रा, आलिया की मौत। 2 जुलाई मुंबई, असलम शेख की मौत। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई में खुले मेनहोल में गिरने से 55 साल के असलम शेख की मौत की हो रही है। आज सुबह करीब 10:30 बजे अंधेरी के साकेनाका इलाके में खैरानी रोड पर असलम शेख की खुले मेनहोल में गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आनंद फानंद में 15 फीट नीचे गटर में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन सारी जद्दोजहद भी असलम की जान नहीं बचा सकी।
1: कितना डीप डेप्थ था और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया?
2: 25 फीट का डेप्थ था। हमने अपने हरनेस की मदद से, जो हमारे पास स्पेशल अप्लायंसेस है, उसकी हेल्प से हम लोगों ने नीचे डाउन जाके हरनेस की मदद से उनको लिफ्ट किया।
1: एक नैरो एरिया रहता है, उसमें किसी शख्स को वो लिफ्ट करना, कितने लोग आप लोग थे, कैसे?
2: मेरा पूरा 15 लोगों का टीम था। हरनेस की हेल्प से हम लोग नीचे गए थे, क्योंकि ज्यादा लोग नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, अंदर गैसेस वगैरह होते हैं, तो सेफर साइड खाली एक बंदा ही नीचे गया था। उसने नीचे जाके, हाँ मैं गया था नीचे जाके, मैंने उनको हरनेस की मदद से बांध के ऊपर लिफ्ट किया।
1: वो दिखे आपको किस हालत में, मतलब लेटे हुए थे, कहीं फंसे हुए थे, कैसा पानी का बहाव ज्यादा था?
2: उनका आधा बॉडी ड्रेन लाइन में नीचे जो छोटा सा चेम्बर है उसके अंदर था और हाफ बॉडी बाहर था।
0: असलम शेख के परिवार में मातम पसरा है। परिवार पूछ रहा है कि आखिरकार सरकार और बीएमसी प्रशासन आम लोगों की जान की कीमत क्यों नहीं समझ रहा।
3: हमारी फैमिली की तरफ से एक मांग है कि आज हमारा गया ना, कल किसी और का नहीं जाए। किसी के भी जिंदगी का कोई नुकसान ना हो। जिसका जाता है वो उसको पता चलता है कि उसका क्या गया। उनका एक बेटा है, बेटी है, बीवी है, कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था। उसके लिए मुआवजा चाहिए, प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ। अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है, प्लीज। ये मुंबई में हमेशा होता है, बहुत जरूरी। सेफ्टी रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते? हर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा कमाना है, गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना है, हमसे टैक्स लेते, सब लेते, हमारी जान का क्या जाता है? हम लोग कहाँ जाए, ये बताओ।
0: हादसे की खबर सुनकर बीएमसी की मेयर रितु तावड़े भी मौके पर पहुंची। उन्होंने किंतु परंतु करने की जगह तुरंत बीएमसी प्रशासन की गलती और लापरवाही मानी। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। इतना ही नहीं, हादसे में लापरवाही बरतने को लेकर मेयर रितु तावड़े ने साकेनाका वार्ड अफसर समेत 4 बीएमसी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अधूरा काम छोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।
4: जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर तो हम लोग ने क्रिमिनल केस वहाँ पे सदृश मनुष्य बदल का गुना उसके ऊपर हमने दाखिल किया ही है। अभी इसके ऊपर जो एडिशनल कमिश्नर विपिन शर्मा जी, उसकी जो एडिशनल कमिटी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कमिटी यहाँ पे बैठी है। अभी ऑन द स्पॉट यहाँ पे जो 4 है वार्ड ऑफिसर से लेके उनको निलंबित किया है, लेकिन इसके ऊपर जो इंक्वायरी कमिटी बैठी है उसका अहवाल आने के बाद उसके ऊपर भी गुना दाखिल हुआ।
5: एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली नहीं ले रहा है मैडम, ऐसा लगता है। संजय घाड़ी जी ने भी अश्विनी भिड़े को रिस्पॉन्सिबल करा है जो मैनुअल है वो बंद नहीं करने के लिए।
4: देखो गलती तो हुई है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। प्रशासन को इतना बोलने के बावजूद ये जो 2-2 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट आप क्यों इतना लेट इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जबकि बारिश के पहले आपके एक तो वैसे भी बारिश लेट आई, तो आपके पास कम से कम 2 महीना थे। जाली बिठाने का काम बारिश में नहीं होता है, जाली बिठाने का काम ये बारिश के पहले होता है। या अगर करते थे तो वो इंसान बच जाता था।
5: मुंबई को क्या संदेश देना चाहिए मैडम, जिस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, तेज बारिश है, डर कम?
4: तेज वैसे भी मैं ऑलवेज सबको कहती हूँ कि बारिश के वक्त सब जन संभाल के चले।
5: यहाँ पर 10 लाख रुपया कम्पेंसेशन जो है मृतक उसकी परिवार को देने की बात की गई है। वार्ड ऑफिसर सहित 3 बीएमसी ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है, रितु तावड़े ने खुद माना है कि बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से इतने सारे इंसिडेंट्स बारिश के मुंबई में हो रहे हैं।
0: 3 दिन में 5 लोगों की जान जाने से सरकार और बीएमसी विपक्ष के निशाने पर है।
6: कि जिस भाजपा के हाथ में आज बीएमसी है उसे बरसात की जो पूरे तकलीफें है वो संभलने नहीं आती। पहले आपने देखा होगा कि महापौर साहिबा जब चल रही थी उनके सामने ही मुंबई महानगर पालिका के एक कर्मचारी मैनहोल में गिर गए। उन पे ही शक करके उनको ही अभी इन्वेस्टिगेशन में खींचा गया कि आपके विरोधी विपक्ष के हो। आज और एक घटना घटी है, कल कोई 2 व्यक्ति इलेक्ट्रिक्यूट हुए।
0: साकेनाका में मैनहोल में गिरने से हुए हादसे की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा में भी सुनी गई। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सरकार को सख्त निर्देश दिए कि सिर्फ अधिकारियों को सस्पेंड करना काफी नहीं होगा।
7: मुंबईत पाणी भरतं, पावसात वॉटर क्लॉगिंग होतं, ते होत असताना अनेक ठिकाणी कामं चालू असतात, तिकडे गटार उघडी ठेवली असतात. हे केवळ निलंबन करून चालणार नाही, मला वाटतं कल्पेबल होमिसाइडचा गुन्हा घ्यायला पाहिजे अशा अधिकाऱ्यांवर.
0: इसके बाद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी विधायक अमित साटम ने सदन में इस मुद्दे पर कहा कि लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
8: मुंबई में बारिश में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आज तीसरे दिन एक हादसा हुआ है जिसमें एक 60 साल के व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी. हमारे साथ बीजेपी के MLA और मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम है. उन्होंने इस मुद्दे को आज विधानसभा में उठाया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की है.
9: आज वहां पर साकीनाका में ISO डिपार्टमेंट का एक काम शुरू था और वो काम शुरू होने के समय पर उस मैनहोल को अनअटेंडेड छोड़ा गया था और एक व्यक्ति की उसमें गिरकर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी है. हमने ये मांग की है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर का वहां पर काम शुरू था उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सदोष मनुष्य वध का कल्पेबल होमिसाइड का ये गुना FIR रजिस्टर होना चाहिए. जो अधिकारी जिनके ऊपर ये काम की जिम्मेदारी थी उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और आने वाले समय में प्रशासन ने अधिक संवेदनशीलता से काम करने की आवश्यकता है और इस घटना के बैकग्राउंड पर हम प्रशासन को एक इशारा देना चाहते हैं.
0: स्पीकर राहुल नार्वेकर ने साकीनाका हादसे पर तुरंत विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने हादसे की पूरी जानकारी सदन के सामने रखी. लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी से BMC संभल नहीं गई.
10: अब मौत का कुआं देखना हो तो मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले मैन होल को देख लीजिए. जब आपको पता है कि मुंबई में बरसात होती है, कभी भी कितनी भी बरसात होती है, तो आपने पहले तैयारियां पूरी क्यों नहीं की? अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तब भी अगर आप सावधान नहीं है तो मुंबई करों के जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है?
0: वहीं ठाणे के मुंब्रा में बारिश के दौरान करंट लगने से 17 साल की आलिया की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मुंब्रा के यास्मीन पार्क की बी विंग में रहने वाली आलिया किसी काम से बिल्डिंग के बाहर निकली थी. इसी दौरान वो बारिश के पानी में उतरे करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई.
11: ये बोल के हम थक चुके हैं. आज भी कल भी आपने देखा, कल भी एक हादसा हो गया, इधर स्लैब गिर गया था. आज एक 17 साल की जवान बच्ची वो सिर्फ अपने बाप की दुकान में गई बाप को मिलने के लिए और आई और उसको करंट लगे और जगह पे बच्ची खत्म हो गई.
0: वहीं डोंबिवली में बच्चों के लिए नाश्ता लेने निकली मां की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई. डोंबिवली के हनुमान नगर में खुले बिजली के तार ने 42 साल की महिला शशि चक्र की जान ले ली. मुंबई में 30 जून को चेंबूर इलाके में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के बिहान की मौत हो गई. अब ठाणे के मीरा भाईंदर इलाके में भी एक ऐसी ही घटना हुई है. यहाँ मूसलाधार बारिश के दौरान एक चलती स्कूटी पर अचानक नारियल का पेड़ गिर गया, जिससे स्कूटी सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया. हादसे का वीडियो भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि ये नारियल का पेड़ खोखला हो गया था. मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा दिख रहा है, खासकर निचले इलाकों जैसे दादर, प्रभा देवी, माटुंगा, सायन, अंधेरी, मुंब्रा, नाला सोपारा और कलम्बोली में जल भराव से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है. लेकिन बारिश के बाद हो रहे हादसों से मुंबई वाले भी खौफ में हैं. मुंबई से मुस्तफा शेख, ऋत्विक भालेकर और ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ मिथिलेश गुप्ता, डोंबिवली आज तक.
12: और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो हर उस माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर यानी कि बच्चों को दिन भर की देखभाल के लिए और सुरक्षा के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो अपने काम में ठीक से मन लगा सकें, काम ठीक से कर पाएं या फिर अपनी नौकरी कर पाएं. लेकिन बेंगलुरु के एक डे केयर सेंटर से एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर किसी भी माँ बाप का कलेजा कांप जाए. देखते हैं डे केयर के शैतान को.
13: बेंगलुरु में डे केयर के शैतानों पर बड़ा खुलासा. कैसे डे केयर सेंटर में बच्चे को वॉशिंग मशीन में डालकर डराया. बच्चे को बाथरूम में बंद किया, मुंह पर टॉयलेट जेट से पानी डाला. मासूम के साथ प्रताड़ना के वीडियो से कांप उठेगा कलेजा. बेंगलुरु में कैप जेमिनी कंपनी के डे केयर सेंटर ने हद पार कर दी. मासूम की चीखों में छिपा ये दर्द बेरहमी की पूरी कहानी बयान कर रहा है. 29 जून का ये वायरल वीडियो बेंगलुरु में आईटी कंपनी कैप जेमिनी के एचएल कैंपस में चल रहे डे केयर सेंटर का है, जहां 2 से 3 साल के बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है। वीडियो में बच्चा टॉयलेट में बंद है, फर्श पर लेटा हुआ है और जोरों से रो रहा है। एक महिला बच्चे के बिलखने का वीडियो बना रही है। एक और वीडियो में महिला बच्चे को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उसके मुंह पर जेट स्प्रे से पानी डाल रही है। इसके अलावा बच्चे को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम में बैठाकर रखा गया है, उसे डराया जा रहा है, बच्चा रो रहा है। एचएल पुलिस स्टेशन में अब 5 महिला केयर गिवर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज और सभी दूसरे तकनीकी सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है।
14: In a daycare facility in an IT sector company. As per the complaint and the videos which have been given as part of the complaint, we are going through it. The Joint Commissioner East and the Deputy Commissioner in charge of Whitefield, both are there at the place right now. They are verifying the facts. But whatever has happened is really very serious issue. And we will take stricter action. The videos are being verified. CCTVs, all other technical evidences are being looked at.
13: अब पुलिस ने 5 केयर गिवर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी केयर गिवर्स को नोटिस जारी किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। इन डे केयर सेंटर्स में ज्यादातर आईटी कंपनी में काम करने वाले माँ बाप अपने महज 2 से 3 साल के बच्चों को छोड़कर जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जिन बच्चों के लिए वो कमा रहे हैं उन पर ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं। कैप जेमिनी ने एक बयान में कहा है कि उसके कर्मचारियों और उनके परिवारों का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी ने कहा कि वो जांच में पूरी तरह सहयोग कर रही है और एहतियाती कदम के तौर पर डे केयर सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।
12: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।

0: अमित शाह के घर 3.5 घंटे तक बीजेपी की मैराथन बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन रहे मौजूद। कैबिनेट में फेरबदल और संगठन स्तर पर अधिकारियों को लेकर चर्चा की संभावना। चढ़ावा चोरी में जांच के लिए दोबारा अयोध्या पहुंची एसआईटी ने 8 घंटे तक ट्रस्ट के अधिकारियों से की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी सवाल जवाब। टीएमसी में बगावत मामले पर अब चुनाव आयोग ने थामी कमान। ममता और ऋतुव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दोनों ही गुटों ने किया है पार्टी पर दावा। और भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी है रक्षा क्षेत्र में करार। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया विकास यात्रा का अहम भागीदार, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। और महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में बिहार और पंजाब से 3 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता अभी भी फरार। अब तक कुल 7 की गिरफ्तारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर देश की नजर है। एसआईटी जांच में लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों के बाद अयोध्या बार एसोसिएशन भी चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वहीं आरोपों की इस आंधी में 8 में से 1 आरोपी के घर पर योगी सरकार बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुकी है।
1: माफिया राज पर योगी सरकार का बुलडोजर चलते तो सबने देखा, धर्मांतरण करने वालों के साम्राज्य को भी योगी ने बुलडोजर से मिटाया। अवैध मस्जिद मजारों पर योगी का बुलडोजर चला है। अब प्रभु राम का चढ़ावा चुराने वाले आरोपियों का घर भी मिट्टी में मिलाया जाएगा। चढ़ावा चोरी में पकड़े गए 8 आरोपियों में से 1 लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। 2 मंजिला ये इमारत योगी सरकार के बुलडोजर की नई मंजिल होगी।
2: हमारे यहाँ जय प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं। भी होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लोकेश मिश्रा का। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें।
1: लवकुश की पत्नी के नाम पर बन रही एक इमारत को लेकर अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने 1 हफ्ते के भीतर लवकुश के परिजनों से जवाब मांगा। साथ ही प्रशासन ने कहा है कि अगर जवाब नहीं मिला तो निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है।
3: आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर यानी कि सुप्रिया के नाम पर एक नोटिस थमा दिया है, जिसमें निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है वो सही स्थान पर बनी है कि नहीं बनी है उसको लेकर ये नोटिस है। 1 हफ्ते के भीतर लवकुश मिश्रा के परिवार को जवाब देना है। अब इस मामले में बड़ी बात निकलकर सामने ये भी आ रही है कि अगर 1 हफ्ते में प्राधिकरण को परिवार के द्वारा सही जवाब नहीं मिलता है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी प्राधिकरण कर सकता है।
1: अयोध्या के सादतगंज का ये वही घर है जो लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा बनवा रही है। ये 2 मंजिला घर बिना नक्शा पास करवाए बनवाया जा रहा है।
4: मुख्य आरोपियों में शामिल लवकुश मिश्रा के इस मकान जो उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर मौजूद है, इसको भी अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस दिया जा चुका है। ये अयोध्या की सुहावल तहसील का ये मकान है जो करीब 1000 स्क्वायर फीट का मकान है। वैसे तो लवकुश मिश्रा ने ये अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदा था। अयोध्या विकास प्राधिकरण के लोग आए थे यहाँ पर?
5: जी आए थे।
1: कब आए थे, क्या?
5: हम कल आए थे, पूछताछ कर रहे थे।
1: अच्छा
5: जी।
4: क्या करके गए?
5: कुछ नहीं, पूछा था ऐसा मकान नंबर ये वो कौन सी हम क्या कैसे लगता है किसका मकान है इतना ही जानकारी।
1: लवकुश मिश्रा की तरह उसकी पत्नी के बैंक खातों की जांच होने लगी है जिसमें बड़ी रकम होने का दावा किया जाता है। इस तरह चढ़ावा चोरी के इस आरोपी की ही नहीं बल्कि इसके पूरे परिवार की जांच हो रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
6: SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूँ जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रखेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती।
1: इससे पहले लवकुश मिश्रा के पास से 500 के 2,850 नोट यानी कुल 14,25,000 रुपए चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया। चढ़ावा चोरी कांड में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के जुर्म कबूलने के बाद नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित के हाथ में करेंसी नोटों के बंडल का एक वीडियो सामने आया ये वीडियो जांच के दायरे में आ चुका है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई, जिसने विपक्षी दलों को योगी सरकार पर हमले का मौका दे दिया।
7: भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ की है, और जहां तक चढ़ावा और चंदे का सवाल है, हमारे देश की जनता इतनी दयालु और भोली वाली है, जिस समय उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये रामधन के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच रहा है, उनके रामधन की चोरी नहीं होगी, उसी दिन आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा।
1: लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी को भी बख्शने से इनकार कर इन सियासी हमलों की धार कुंद करने में जुटे, जिसमें अल्पसंख्यकों और विरोधियों के घरों पर बुलडोजर की जानबूझकर कार्रवाई का इल्जाम भी शामिल है।
8: हमारा तो मानना है कि उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला खत्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको मामला खत्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे, अब चंपक हो रहा है, क्या बोलेंगे बताइए आप। अब कुछ बोले ऐसी बात ही नहीं है उसमें, कितना ये सब तमाशे हो रहे हैं।
1: लेकिन योगी सरकार चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई करके ये बताना चाहती है कि जो भी अपराधी है सबका हश्र एक होगा, लेकिन विपक्ष मानता नहीं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की।
0: और अब आपको दिखाते हैं भारत और जापान के रिश्तों में नई उड़ान। जापान के पीएम सनाए तकाइची भारत आई हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी छोटी बहन बताया। इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स पार्टनरशिप की खूब बातें हुई हैं, कई डील्स भी हुई जो भारत जापान के रिश्तों की बुनियाद को और ज्यादा मजबूत करेंगी। जी हां, भारत और जापान ने आर्थिक साझेदारी को नई रफ्तार देने का फैसला किया है। भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने जापानीज कंपनियों की दिक्कतों को दूर करने के लिए जापान बिजनेस वीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है।
9: योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी है। भारत और जापान की इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री है, सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच और अप्रोच भी समानता है, और सबसे बढ़कर हमारे संबंधों की नींव अटूट आपसी विश्वास पर टिकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह विशेष साझेदारी सशक्त और समृद्ध जापान के आपके विजन, विकसित भारत के हमारे संकल्प और विश्व की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
0: और अब बात करेंगे बंगाल की सियासत के बारे में, जहां सत्ता के चेहरे बदले तो सियासी बदले का प्रतीक अंडा बन गया। टीएमसी नेताओं पर जनता का गुस्सा अंडों के रूप में बरस रहा है, लेकिन टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। वहीं सवाल अब नेताओं की सुरक्षा का भी है।
10: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडों से हो रहे हमलों की नई शिकार सांसद महुआ मोइत्रा हुई हैं।
11: बताए पुलिस, देखून देख पाचें आवाज शुरू करे छे, एई पताका चलबे।
10: नादिया में पार्टी कार्यालय के बाहर से अंडे और सब्जियां फेंके गए, महुआ ने खुद वीडियो शेयर किया।
12: खास करके अगर वो सांसद हो, उसको इस प्रकार से मारा जा रहा है, डीम फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है, नारियल फेंका जा रहा है, और नीचे लोग दिख रहे हैं जो बीजेपी का झंडा लेकर के हिला रहे हैं। साफ है, डीजीपी को फोन करके बताया गया, जगह बताया गया, सब कुछ महुआ मोइत्रा ने बताया, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ।
10: उधर अब टीएमसी के बागी और बीजेपी के सुर पूरे मामले में एक जैसे हैं।
13: जो लोग चोर है, डकैत है, माफिया है, लोगों का गुस्सा है उन लोगों के ऊपर। हमारा ये 65 एमएलएस में ऐसा एमएलए है, ट्रेन में आते जाते हैं, किधर भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, और चार्टर्ड माफिया का दिक्कत हो रहा है।
14: तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है, तो तृणमूल को इसको सलटाना चाहिए।
10: हाईकोर्ट की आपत्ति के बावजूद टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं दे रहा। आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी एक ओर जहां हमलों का शिकार हो रही है, तो वहीं पार्टी की टूट ने ममता की ताकत को कमजोर कर दिया है। इसी बीच अब शरद पवार गुट ने भी सांसदों की टूट की अटकलें हैं, जिसने महाराष्ट्र की सियासत को गर्म कर दिया है।

0: क्या शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा? क्या शरद पवार के 8 सांसदों पर बीजेपी की नजर है? क्या महाराष्ट्र का सियासी समीकरण फिर बदलने जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं। दरअसल सूत्रों से खबर है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। हालांकि अभी यह बातचीत महाराष्ट्र की इकाई तक ही सीमित है। खबर है कि शरद पवार विलय को लेकर अपनी पार्टी के अंदर रायशुमारी कर रहे हैं और अगर महाराष्ट्र में डील हो गई तो उसके बाद दिल्ली में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व विलय पर अंतिम मुहर लगाएंगे।
1: शरद पवार की एनसीपी का विलय जल्द कांग्रेस में हो सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों की राज्य इकाइयों के बीच में महाराष्ट्र लेवल पर फिलहाल बातचीत चल रही है और जैसे ही चीजें तय होंगी उसके बाद दोनों पार्टियों की टॉप लीडरशिप यहां दिल्ली में बैठकर इस पर अंतिम मोहर लगाएगी। दरअसल कुछ रोज पहले अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर शरद पवार ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए बीजेपी की आलोचना की थी, जिसके बाद कई लोगों ने ये कहा कि ये दर्शाता है कि दोनों पार्टियों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। जानकारों के मुताबिक अगर एनसीपी का विलय कांग्रेस पार्टी में होता है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होगा।
0: जब से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे कैंप में शामिल हुए हैं तब से शरद पवार की पार्टी में भी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब विपक्ष बीजेपी की जोड़तोड़ की राजनीति पर करारा प्रहार कर रहा है। कभी शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत कांग्रेस में महाविलय का आइडिया दे देते हैं तो कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार कह देते हैं कि हाँ दिल्ली में बात चल रही है, तो कभी ऑपरेशन तुतारी का दावा करते हुए एनसीपी के धर्मराव अतराम पवार के 8 में से 5 सांसदों को अपनी एनसीपी में विलय करने की प्लानिंग की बात कह देते हैं और कभी दोनों एनसीपी के ही संपूर्ण विलय का शिगुफा सामने आ जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि ना तो उनकी पार्टी कांग्रेस में मिलेगी और ना ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली से सूत्रों के हवाले खबर है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने में लगे एनडीए का ध्यान एनसीपी शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है। ये संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस एनसीपी विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते, ना ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं।
2: जिस तरीके से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सांसदों का सिलसिला बढ़ा है उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है, के साथ साथ अब ये भी जोड़ देना चाहिए कि राजनीति में भी सब कुछ चलता है और सब कुछ जायज है।
0: एक चर्चा ये भी है कि भविष्य में शरद पवार गुट के 8 सांसद सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में जा सकते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है।
3: देखिए, महाराष्ट्र से जो शरद पवार साहब की पार्टी के विलय की खबरें हैं हमें लगता अफवाह है, क्योंकि चाहे कितना भी आ जाए प्रलय, हम क्यों करेंगे किसी बड़े दल में विलय। हर पार्टी का अपने अस्तित्व होता है, हर पार्टी की अपनी मर्यादा होती है। शरद पवार साहब तो कांग्रेस से टूटकर ही अपना दल बनाए थे, तो कांग्रेस में रहना होता तो अपना दल क्यों बनाते। हमें लगता है कि सुप्रिया सुले जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो एक बात मुझे बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि शरद पवार साहब मेरे गुरु हैं। क्या कभी आपने सुना है कि गुरु की पार्टी कोई शिष्य तोड़ता है? ऐसा नहीं होता, गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ नहीं करेगी, जोड़फोड़ की राजनीति नहीं करेगी, तब तो शरद पवार जी की पार्टी के जो 8 सांसद हैं उनको कोई खतरा नहीं है।
0: क्योंकि महाराष्ट्र में टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं गठबंधन को भी है। एनसीपी एसपी शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों की गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार सहित प्रमुख नेता मौजूद नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं, तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो यह है कि एक दिन पहले ही आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी और शिवसेना यूबीटी एमएलसी सचिन अहिर भी उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे सेना के सारथी बन गए हैं। सचिन अहिर को महायुति ने विधान परिषद में डिप्टी चेयरमैन के पद का इनाम दिया है। उनके नामांकन में फडणवीस, शिंदे और सुनेत्रा पवार तीनों लोग मौजूद रहे। वैसे अभी एनसीपी शरद गुट में 8 सांसद और 10 विधायक हैं, और अगर विलय को लेकर शरद पवार की पार्टी में आम राय नहीं बनती तो दो तिहाई के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की दरकार होगी। सवाल है कि दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में रहे शरद पवार के मन में क्या चल रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ पवार ही जानते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।
4: मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है। पिछले 3 दिनों में खुले मैनहोल, करंट और पेड़ गिरने जैसे हादसों में 5 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बारिश का कहर है या सिस्टम की घोर लापरवाही। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।

0: वाकई जिस तरह से पिछले तीन दिन में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के दौरान हुए हादसों में 5 लोगों की जान चली गई, उससे यही लग रहा है कि मुंबई हादसों का शहर ही है। 30 जून मुंबई, पेड़ गिरने से विहान की मौत। 1 जुलाई नवी मुंबई, सुरेश लोखंडे की मौत। 1 जुलाई डोंबिवली, शशि चक्र की मौत। 2 जुलाई मुंब्रा, आलिया की मौत। 2 जुलाई मुंबई, असलम शेख की मौत। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई में खुले मेनहोल में गिरने से 55 साल के असलम शेख की मौत की हो रही है। आज सुबह करीब 10:30 बजे अंधेरी के साकेनाका इलाके में खैरानी रोड पर असलम शेख की खुले मेनहोल में गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आनन फानन में 15 फीट नीचे गटर में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन सारी जद्दोजहद भी असलम की जान नहीं बचा सकी।
1: कितना डीप डेप्थ था और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन?
2: 25 फीट का डेप्थ था। हमने अपने हरनेस की मदद से, जो हमारे पास स्पेशल अप्लायंसेस है उसकी हेल्प से, हम लोगों ने नीचे डाउन जाके हरनेस की मदद से उनको लिफ्ट किया।
1: एक नैरो एरिया रहता है, उसमें किसी शख्स को वो लिफ्ट करना, कितने लोग आप लोग थे, कैसे?
2: मेरा पूरा दो, मतलब एक 15 लोग

0: नीचे जाके, हाँ मैं गया था नीचे जाके, मैंने उनको हार्नेस की मदद से बांध के ऊपर लिफ्ट किया।
1: वो दिखे आपको किस हालत में, मतलब लेटे हुए थे, कहीं फंसे हुए थे, कैसा पानी का बहाव ज्यादा था?
0: उनका आधा बॉडी ड्रेन लाइन में, नीचे जो छोटा सा चेम्बर है उसके अंदर था और हाफ बॉडी बाहर था।
2: असलम शेख के परिवार में मातम पसरा है। परिवार पूछ रहा है कि आखिरकार सरकार और बीएमसी प्रशासन आम लोगों की जान की कीमत क्यों नहीं समझ रहा।
3: हमारी फैमिली की तरफ से एक मांग है कि आज हमारा गया ना, कल किसी और का नहीं जाए। किसी के भी जिंदगी का कोई नुकसान ना हो। जिसका जाता है वो उसको पता चलता है कि उसका क्या गया। उनका एक बेटा है, बेटी है, बीवी है, कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था। उसके लिए मुआवजा चाहिए, प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ। जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ, अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है। प्लीज, ये मुंबई में हमेशा होता है, बहुत जरूरी। सेफ्टी रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते? हर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा कमाना है, गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना है। हमसे टैक्स लेते, सब लेते, हमारी जान का क्या जाता है? हम लोग कहाँ जाए ये बताओ।
2: हादसे की खबर सुनकर बीएमसी की मेयर रितु तावड़े भी मौके पर पहुंची। उन्होंने किंतु परंतु करने की जगह तुरंत बीएमसी प्रशासन की गलती और लापरवाही मानी। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। इतना ही नहीं, हादसे में लापरवाही बरतने को लेकर मेयर रितु तावड़े ने साकिनाका वार्ड अफसर समेत 4 बीएमसी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अधूरा काम छोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।
4: जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर तो हम लोग ने क्रिमिनल केस वहाँ पे सदृश मनुष्य बदल का गुना उसके ऊपर हमने दाखिल किया ही है। अभी इसके ऊपर जो एडिशनल कमिश्नर विपिन शर्मा जी, उसकी जो एडिशनल कमिटी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कमिटी यहाँ पे बैठी है, अभी ऑन द स्पॉट यहाँ पे जो 4 है वार्ड ऑफिसर से लेके उनको निलंबित किया है। लेकिन इसके ऊपर जो इंक्वायरी कमिटी बैठी है उसका अहवाल आने के बाद उसके ऊपर भी गुना दाखिल होगा।
5: एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली नहीं ले रहा है मैडम, ऐसा लगता है संजय घाड़ी जी ने भी अश्विनी भिड़े को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है जो मैनुअल है वो बंद नहीं करने के लिए।
4: देखो, गलती तो हुई है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। प्रशासन को इतना बोलने के बावजूद ये जो 2-2 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट आप क्यों इतना लेट इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जबकि बारिश के पहले आपके, एक तो वैसे भी बारिश लेट आई तो आपके पास कम से कम 2 महीना थे। जाली बिठाने का काम बारिश में नहीं होता है, जाली बिठाने का काम ये बारिश के पहले होता है। या अगर करते थे तो वो इंसान बच जाता था।
5: मुंबईकरों को क्या संदेश देना चाहिए मैडम, जिस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, तेज बारिश है, डर कम?
4: तेज वैसे भी मैं ऑलवेज सबको कहती हूँ कि बारिश के वक्त सब जन संभाल के चले।
5: यहाँ पर 10 लाख रुपया कम्पेंसेशन जो है मृतक उसकी परिवार को देने की बात की गई है। वार्ड ऑफिसर सहित 3 बीएमसी ऑफिसरों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है, रितु तावड़े ने खुद माना है कि बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से इतने सारे इंसिडेंट्स बारिश के मुंबई में हो रहे हैं।
2: 3 दिन में 5 लोगों की जान जाने से सरकार और बीएमसी विपक्ष के निशाने पर है।
6: कि जिस भाजपा के हाथ में आज बीएमसी है, उसे बरसात की जो पूरे तकलीफें हैं वो संभलने नहीं आती। पहले आपने देखा होगा कि महापौर साहिबा जब चल रही थी, उनके सामने ही मुंबई महानगर पालिका के एक कर्मचारी मैनुअल में गिर गए। उन पे ही शक करके उनको ही अभी इन्वेस्टिगेशन में खींचा गया कि आपके विरोधी विपक्ष के हो। आज और एक घटना घटी है, कल कोई 2 व्यक्ति इलेक्ट्रिक्यूट हुए।
2: साकिनाका में मैनहोल में गिरने से हुए हादसे की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा में भी सुनी गई। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सरकार को सख्त निर्देश दिए कि सिर्फ अधिकारियों को सस्पेंड करना काफी नहीं होगा।
7: मुंबईत पाणी भरतं, पावसात वॉटर क्लॉगिंग होतं, ते होत असताना अनेक ठिकाणी कामं चालू असतात, तिकडे गटारं उघडी ठेवली असतात। हे केवळ निलंबन करून चालणार नाही, मला वाटतं कल्पेबल होमिसाइडचा गुन्हा घ्यायला पाहिजे अशा अधिकाऱ्यांवर।
2: इसके बाद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी विधायक अमित साटम ने सदन में इस मुद्दे पर कहा कि लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
8: मुंबई में बारिश में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज तीसरे दिन एक हादसा हुआ है जिसमें एक 60 साल के व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारे साथ बीजेपी के MLA और मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम है। उन्होंने इस मुद्दे को आज विधानसभा में उठाया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।
9: आज वहां पर साकिनाका में ISO डिपार्टमेंट का एक काम शुरू था और वो काम शुरू होने के समय पर उस मैनहोल को अनअटेंडेड छोड़ा गया था और एक व्यक्ति की उसमें गिरकर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी है। हमने ये मांग की है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर का वहां पर काम शुरू था उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सदोष मनुष्य वध का, कल्पेबल होमिसाइड का ये गुना FIR रजिस्टर होना चाहिए। जो अधिकारी जिनके ऊपर ये काम की जिम्मेदारी थी उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और आने वाले

0: समय में प्रशासन ने अधिक संवेदनशीलता से काम करने की आवश्यकता है और इस घटना के बैकग्राउंड पर हम प्रशासन को एक इशारा देना चाहते हैं।
1: स्पीकर राहुल नार्वेकर ने साकिनाका हादसे पर तुरंत विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने हादसे की पूरी जानकारी सदन के सामने रखी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी से बीएमसी संभल नहीं गई।
2: अब मौत का कुआं देखना हो तो मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले मैन होल को देख लीजिए। जब आपको पता है कि मुंबई में बरसात होती है, कभी भी कितनी भी बरसात होती है, तो आपने पहले तैयारियां पूरी क्यों नहीं की? अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तब भी अगर आप सावधान नहीं है तो मुंबई करों के जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है।
1: वहीं ठाणे के मुंब्रा में बारिश के दौरान करंट लगने से 17 साल की आलिया की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुंब्रा के यास्मीन पार्क की बी विंग में रहने वाली आलिया किसी काम से बिल्डिंग के बाहर निकली थी, इसी दौरान वो बारिश के पानी में उतरे करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई।
3: ये बोल के हम थक चुके हैं। आज भी कल भी आपने देखा, कल भी एक हादसा हो गया, स्लैब गिर गया था। आज एक 17 साल की जवान बच्ची वो सिर्फ अपने बाप की दुकान में गई बाप को मिलने के लिए और आई और उसको करंट लगे और जगह पे बच्ची खत्म हो गई।
1: वहीं डोंबिवली में बच्चों के लिए नाश्ता लेने निकली मां की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। डोंबिवली के हनुमान नगर में खुले बिजली के तार ने 42 साल की महिला शशि चक्र की जान ले ली। मुंबई में 30 जून को चेंबूर इलाके में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के बिहान की मौत हो गई थी। अब ठाणे के मीरा भाईंदर इलाके में भी एक ऐसी ही घटना हुई है। यहाँ मूसलाधार बारिश के दौरान एक चलती स्कूटी पर अचानक नारियल का पेड़ गिर गया, जिससे स्कूटी सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये नारियल का पेड़ खोखला हो गया था। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा दिख रहा है, खासकर निचले इलाकों जैसे दादर, प्रभा देवी, माटुंगा, सायन, अंधेरी, मुंब्रा, नाला सोपारा और कलम्बोली में जल भराव से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन बारिश के बाद हो रहे हादसों से मुंबई वाले भी खौफ में हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख, ऋत्विक भालेकर और ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ मिथिलेश गुप्ता, डोंबिवली आज तक।
4: और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो हर उस माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर यानी कि बच्चों को दिन भर की देखभाल के लिए और सुरक्षा के लिए छोड़ देते हैं, ताकि वो अपने काम में ठीक से मन लगा सके, काम ठीक से कर पाएं या फिर अपनी नौकरी कर पाएं। लेकिन बेंगलुरु के एक डे केयर सेंटर से एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर किसी भी माँ बाप का कलेजा कांप जाए। देखते हैं डे केयर के शैतान को।
5: बेंगलुरु में डे केयर के शैतानों पर बड़ा खुलासा। कैसे डे केयर सेंटर में बच्चे को वॉशिंग मशीन में डालकर डराया। बच्चे को बाथरूम में बंद किया। बच्चे को बाथरूम में बंद किया, मुंह पर टॉयलेट जेट से पानी डाला। मासूम के साथ प्रताड़ना के वीडियो से कांप उठेगा कलेजा। ने हद पार कर दी। मासूम की चीखों में छिपा ये दर्द बेरहमी की पूरी कहानी बयान कर रहा है। 29 जून का ये वायरल वीडियो बेंगलुरु में आईटी कंपनी कैप जेमिनी के एचएल कैंपस में चल रहे डे केयर सेंटर का है, जहां 2 से 3 साल के बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है। वीडियो में बच्चा टॉयलेट में बंद है, फर्श पर लेटा हुआ है और जोरों से रो रहा है। एक महिला बच्चे के बिलखने का वीडियो बना रही है। एक और वीडियो में महिला बच्चे को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उसके मुंह पर जेट स्प्रे से पानी डाल रही है। इसके अलावा बच्चे को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम में बैठाकर रखा गया है, उसे डराया जा रहा है, बच्चा रो रहा है। एचएल पुलिस स्टेशन में अब 5 महिला केयर गिवर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। CCTV फुटेज और सभी दूसरे तकनीकी सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है।
6: As per the complaint, which is against mentioned, 5 names have been mentioned of women staff who are working in a daycare facility in an IT sector company. as per the complaint and the videos which have been given as part of the complaint, we are going through it. The Joint Commissioner East and the Deputy Commissioner of in charge of Whitefield, both are there at the place right now. They are verifying the facts. But whatever has happened is really very serious issue. And we will take stricter action. The videos are being verified. CCTVs, all other technical evidences are being looked at.
5: अब पुलिस ने 5 केयरगिवर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी केयरगिवर्स को नोटिस जारी किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। इन डे केयर सेंटर्स में ज्यादातर आईटी कंपनी में काम करने वाले माँ बाप अपने महज 2 से 3 साल के बच्चों को छोड़कर जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जिन बच्चों के लिए वो कमा रहे हैं उन पर ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं। कैप जेमिनी ने एक बयान में कहा है कि उसके कर्मचारियों और उनके परिवारों का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी ने कहा कि वो जांच में पूरी तरह सहयोग कर रही है और एहतियाती कदम के तौर पर डे केयर सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।
4: इसी के साथ ही मैं रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अमित शाह के घर 3.5 घंटे तक बीजेपी की मैराथन बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन रहे मौजूद। कैबिनेट में फेरबदल और संगठन स्तर पर अधिकारियों को लेकर चर्चा की संभावना। चढ़ावा चोरी में जांच के लिए दोबारा अयोध्या पहुंची एसआईटी ने 8 घंटे तक ट्रस्ट के अधिकारियों से की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी सवाल जवाब। टीएमसी में बगावत मामले पर अब चुनाव आयोग ने थामी कमान। ममता और ऋतुव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दोनों ही गुटों ने किया है पार्टी पर दावा। और भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी है रक्षा क्षेत्र में करार। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया विकास यात्रा का अहम भागीदार, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। और महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में बिहार और पंजाब से 3 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता अभी भी फरार। अब तक कुल 7 की गिरफ्तारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर देश की नजर है। एसआईटी जांच में लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों के बाद अयोध्या बार एसोसिएशन भी चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वहीं आरोपों की इस आंधी में 8 में से 1 आरोपी के घर पर योगी सरकार बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुकी है।
1: माफिया राज पर योगी सरकार का बुलडोजर चलते तो सबने देखा, धर्मांतरण करने वालों के साम्राज्य को भी योगी ने बुलडोजर से मिटाया। अवैध मस्जिद मजारों पर योगी का बुलडोजर चला है। अब प्रभु राम का चढ़ावा चुराने वाले आरोपियों का घर भी मिट्टी में मिलाया जाएगा। चढ़ावा चोरी में पकड़े गए 8 आरोपियों में से 1 लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। 2 मंजिला ये इमारत योगी सरकार के बुलडोजर की नई मंजिल होगी।
2: हमारे अब जय प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं। भी होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लोकेश मिश्रा का। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें।
1: लवकुश की पत्नी के नाम पर बन रही एक इमारत को लेकर अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने 1 हफ्ते के भीतर लवकुश के परिजनों से जवाब मांगा है। साथ ही प्रशासन ने कहा है कि अगर जवाब नहीं मिला तो निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है।
3: आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर यानी कि सुप्रिया के नाम पर एक नोटिस थमा दिया है, जिसमें निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है वो सही स्थान पर बनी है कि नहीं बनी है उसको लेकर ये नोटिस है। 1 हफ्ते के भीतर लवकुश मिश्रा के परिवार को जवाब देना है। अब इस मामले में बड़ी बात निकलकर सामने ये भी आ रही है कि अगर 1 हफ्ते में प्राधिकरण को परिवार के द्वारा सही जवाब नहीं मिलता है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी प्राधिकरण कर सकता है।
1: अयोध्या के सादतगंज का ये वही घर है जो लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा बनवा रही। ये 2 मंजिला घर बिना नक्शा पास करवाए बनवाया जा रहा है।
4: मुख्य आरोपियों में शामिल लवकुश मिश्रा के इस मकान जो उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर मौजूद है, इसको भी अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस दिया जा चुका है। ये अयोध्या की सुहावल तहसील का ये मकान है जो करीब 1000 स्क्वायर फीट का मकान है। वैसे तो लवकुश मिश्रा ने ये अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदा था। अयोध्या विकास प्राधिकरण के लोग आए थे यहाँ पर?
5: जी आए थे।
4: कब आए थे, क्या
5: किया? हम कल आए थे, पूछताछ कर रहे थे।
4: अच्छा
5: जी जी।
4: क्या करके गए?
5: कुछ नहीं, पूछा था मकान नंबर ये वो कौन सी हम क्या कैसे लगता है किसका मकान है, इतना ही जानकारी है।
1: लवकुश मिश्रा की तथा उसकी पत्नी के बैंक खातों की जांच होने लगी है, जिसमें बड़ी रकम होने का दावा किया जाता है। इस तरह चढ़ावा चोरी के इस आरोपी की ही नहीं बल्कि इसके पूरे परिवार की जांच हो रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
6: SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूँ जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रखेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकारे नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्त भोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती।
1: इससे पहले लवकुश मिश्रा के पास से 500 के 2850 नोट यानी कुल 14,25,000 रुपए चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया था। चढ़ावा चोरी कांड में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के जुर्म कबूलने के बाद नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित के हाथ में करेंसी नोटों के बंडल का एक वीडियो सामने आया, ये वीडियो जांच के दायरे में आ चुका है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई, जिसने विपक्षी दलों को योगी सरकार पर हमले का मौका दे दिया।
7: भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ की है, और जहां तक चढ़ावा और चंदे का सवाल है, हमारे देश की जनता इतनी दयालु और भोली वाली है, जिस समय उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये रामधन के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच रहा है, उनके रामधन की चोरी नहीं होगी, उसी दिन आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा।
1: लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी को भी बख्शने से इनकार कर इन सियासी हमलों की धार कुंद करने में जुटे, जिसमें अल्पसंख्यकों और विरोधियों के घरों पर बुलडोजर की जानबूझकर कार्रवाई का इल्जाम भी शामिल है।
8: हमारा तो मानना है कि उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला खत्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको मामला खत्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे, अब चंपक हो रहा है, क्या बोलेंगे बताइए आप। अब कुछ बोले ऐसी बात ही नहीं है उसमें, कितना ये सब तमाशे हो रहे हैं।
1: लेकिन योगी सरकार चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई करके ये बताना चाहती है कि जो भी अपराधी है सबका हश्र एक होगा, लेकिन विपक्ष मानता नहीं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है।
0: और अब आपको दिखाते हैं भारत और जापान के रिश्तों में नई उड़ान। जापान के पीएम सनाए तकाइची भारत आई हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी छोटी बहन बताया। इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स पार्टनरशिप की खूब बातें हुई हैं, कई डील्स भी हुई जो भारत जापान के रिश्तों की बुनियाद को और ज्यादा मजबूत करेंगी। जी हां, भारत और जापान ने आर्थिक साझेदारी को नई रफ्तार देने का फैसला किया है। भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने जापानीज कंपनियों की दिक्कतों को दूर करने के लिए जापान बिजनेस वीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है।
9: योर एक्सलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी है। भारत और जापान की इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री है। सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच और अप्रोच भी समानता है, और सबसे बढ़कर हमारे संबंधों की नींव अटूट आपसी विश्वास पर टिकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह विशेष साझेदारी सशक्त और समृद्ध जापान के आपके विजन, विकसित भारत के हमारे संकल्प और विश्व की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
0: और अब बात करेंगे बंगाल की सियासत के बारे में, जहां सत्ता के चेहरे बदले तो सियासी बदले का प्रतीक अंडा बन गया। टीएमसी नेताओं पर जनता का गुस्सा अंडों के रूप में बरस रहा है, लेकिन टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। वहीं सवाल अब नेताओं की सुरक्षा का भी है।
10: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडों से हो रहे हमलों की नई शिकार सांसद महुआ मोइत्रा हुई हैं।
11: है पुलिस देखो हवा शुरू पता चोल बे।
10: नारिया में पार्टी कार्यालय के बाहर से अंडे और सब्जियां फेंके गए, महुआ ने खुद वीडियो शेयर किया।
12: खास करके अगर वो सांसद हो, उसको इस प्रकार से मारा जा रहा है, डीम फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है, नारियल फेंका जा रहा है, और नीचे लोग दिख रहे हैं जो बीजेपी का झंडा लेकर के हिला रहे हैं। साफ है, डीजीपी को फोन करके बताया गया, जगह बताया गया, सब कुछ महुआ मोइत्रा ने बताया, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ।
10: उधर अब टीएमसी के बागी और बीजेपी के सुर पूरे मामले में एक जैसे हैं।
13: जो लोग चोर है, डकैत है, माफिया है, लोगों का गुस्सा है उन लोगों के ऊपर। हमारा ये 65 एमएलएज में ऐसा एमएलए है, ट्रेन में आते जाते हैं, किधर भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, और चार्टर्ड माफिया का दिक्कत हो रहा है।
14: तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है, तो तृणमूल को इसको सलटाना चाहिए।
10: हाईकोर्ट की आपत्ति के बावजूद टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी एक ओर जहां हमलों का शिकार हो रही है, तो वहीं पार्टी की टूट ने ममता की ताकत को कमजोर कर दिया है। इसी बीच अब शरद पवार गुट ने भी सांसदों की टूट की अटकलें हैं, जिसने महाराष्ट्र की सियासत को गर्म कर दिया है।
15: क्या शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा? क्या शरद पवार के 8 सांसदों पर बीजेपी की नजर है? क्या महाराष्ट्र का सियासी समीकरण फिर बदलने जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं। दरअसल सूत्रों से खबर है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP-SP का कांग्रेस में विलय हो सकता है। हालांकि अभी यह बातचीत महाराष्ट्र की इकाई तक ही सीमित है। खबर है कि शरद पवार विलय को लेकर अपनी पार्टी के अंदर रायशुमारी कर रहे हैं, और अगर महाराष्ट्र में डील हो गई तो उसके बाद दिल्ली में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व विलय पर अंतिम मोहर लगाएंगे।
16: शरद पवार की एनसीपी का विलय जल्द कांग्रेस में हो सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों की राज्य इकाइयों के बीच में महाराष्ट्र लेवल पर फिलहाल बातचीत चल रही है, और जैसे ही चीजें तय होंगी उसके बाद दोनों पार्टी क्योंकि टॉप लीडरशिप यहां दिल्ली में बैठकर इस पर अंतिम मोहर लगाएगी। दरअसल कुछ रोज पहले अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर शरद पवार ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए बीजेपी की आलोचना की थी, जिसके बाद कई लोगों ने ये कहा कि ये दर्शाता है कि दोनों पार्टियों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। जानकारों के मुताबिक अगर NCP का विलय कांग्रेस पार्टी में होता है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होगा।
15: जब से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT के 6 सांसद शिंदे कैंप में शामिल हुए हैं, तब से शरद पवार की पार्टी में भी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब विपक्ष बीजेपी की जोड़तोड़ की राजनीति पर करारा प्रहार कर रहा है। कभी शिवसेना UBT सांसद संजय राउत कांग्रेस में महाविलय का आइडिया दे देते हैं, तो कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार कह देते हैं कि हाँ, दिल्ली में बात चल रही है। तो कभी ऑपरेशन तुतारी का दावा करते हुए NCP के धर्मराव अतराम पवार के 8 में से 5 सांसदों को अपनी NCP में विलय करने की प्लानिंग की बात कह देते हैं, और कभी दोनों NCP के ही संपूर्ण विलय का शिगुफा सामने आ जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि ना तो उनकी पार्टी कांग्रेस में मिलेगी और ना ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली से सूत्रों के हवाले खबर है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने में लगे NDA का ध्यान NCP शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है। ये संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस NCP विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते, ना ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं।
17: जिस तरीके से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सांसदों का सिलसिला बढ़ा है, उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है, के साथ साथ अब ये भी जोड़ देना चाहिए कि राजनीति में भी सब कुछ चलता है और सब कुछ जायज है।
15: एक चर्चा ये भी है कि भविष्य में शरद पवार गुट के 8 सांसद सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली NCP में जा सकते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है।
18: देखिए, महाराष्ट्र से जो शरद पवार साहब की पार्टी के विलय की खबरें हैं, हमें लगता अफवाह है, क्योंकि चाहे कितना भी आ जाए प्रलय, हम क्यों करेंगे किसी बड़े दल में विलय। हर पार्टी का अपने अस्तित्व होता है, हर पार्टी की अपनी मर्यादा होती है। शरद पवार साहब तो कांग्रेस से टूटकर ही अपना दल बनाए थे, तो कांग्रेस में रहना होता तो अपना दल क्यों बनाते। तो हमें लगता है कि सुप्रिया सुले जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो एक बात मुझे बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि शरद पवार साहब मेरे गुरु हैं, क्या कभी आपने सुना है कि गुरु की पार्टी कोई शिष्य तोड़ता है? ऐसा नहीं होता, गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ नहीं करेगी, जोड़फोड़ की राजनीति नहीं करेगी, तब तो शरद पवार जी की पार्टी के जो 8 सांसद हैं उनको कोई खतरा नहीं है।
15: क्योंकि महाराष्ट्र में टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं, गठबंधन को भी है। NCP-SP, शिवसेना UBT और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों की गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार सहित प्रमुख नेता मौजूद नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं, तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो यह है कि एक दिन पहले ही आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी और शिवसेना यूबीटी एमएलसी सचिन अहिर भी उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे सेना के सारथी बन गए हैं। सचिन अहिर को महायुति ने विधान परिषद में डिप्टी चेयरमैन के पद का इनाम दिया है। उनके नामांकन में फडणवीस शिंदे और सुनेत्रा पवार तीनों लोग मौजूद रहे। वैसे अभी एनसीपी शरद गुट में 8 सांसद और 10 विधायक हैं। और अगर विलय को लेकर शरद पवार की पार्टी में आम राय नहीं बनती तो 2/3 के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की दरकार होगी। सवाल है कि दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में रहे शरद पवार के मन में क्या चल रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ पवार ही जानते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।
0: मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है। पिछले 3 दिनों में खुले मैनहोल, करंट और पेड़ गिरने जैसे हादसों में 5 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बारिश का कहर है या सिस्टम की घोर लापरवाही। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।

0: वाकई जिस तरह से पिछले तीन दिन में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के दौरान हुए हादसों में 5 लोगों की जान चली गई, उससे यही लग रहा है कि मुंबई हादसों का शहर ही है। 30 जून मुंबई, पेड़ गिरने से विहान की मौत। 1 जुलाई नवी मुंबई, सुरेश लोखंडे की मौत। 1 जुलाई डोंबिवली, शशि चक्र की मौत। 2 जुलाई मुंब्रा, आलिया की मौत। 2 जुलाई मुंबई, असलम शेख की मौत। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई में खुले मेनहोल में गिरने से 55 साल के असलम शेख की मौत की हो रही है। आज सुबह करीब 10:30 बजे अंधेरी के साकेनाका इलाके में खैरानी रोड पर असलम शेख की खुले मेनहोल में गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आनंद फानंद में 15 फीट नीचे गटर में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन सारी जद्दोजहद भी असलम की जान नहीं बचा सकी।
1: कितना डीप डेप्थ था और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन?
2: 25 फीट का डेप्थ था। हमने अपनी हरनेस की मदद से, जो हमारे पास स्पेशल अप्लायंसेस है उसकी हेल्प से, हम लोगों ने नीचे डाउन जाके हरनेस की मदद से उनको लिफ्ट किया।
1: एक नैरो एरिया रहता है, उसमें किसी शख्स को वो लिफ्ट करना, कितने लोग आप लोग थे, कैसे?
2: मेरा पूरा 15 लोगों का टीम था। हरनेस की हेल्प से हम लोग नीचे गए थे, क्योंकि ज्यादा लोग नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, अंदर गैसेस वगैरह होते हैं। तो सेपर साइड खाली एक बंदा ही नीचे गया था, उसने नीचे जाके, हाँ मैं गया था नीचे जाके, मैंने उनको हार्नेस की मदद से बांध के ऊपर लिफ्ट किया।
1: वो दिखे आपको किस हालत में, मतलब लेटे हुए थे, कहीं फंसे हुए थे, कैसा पानी का बहाव ज्यादा था?
2: उनका आधा बॉडी ड्रेन लाइन में नीचे जो छोटा सा चेम्बर है उसके अंदर था और हाफ बॉडी बाहर था।
0: असलम शेख के परिवार में मातम पसरा है। परिवार पूछ रहा है कि आखिरकार सरकार और बीएमसी प्रशासन आम लोगों की जान की कीमत क्यों नहीं समझ रहा।
3: हमारी फैमिली की तरफ से एक मांग है कि आज हमारा गया ना, कल किसी और का नहीं जाए। किसी के भी जिंदगी का कोई नुकसान ना हो। जिसका जाता है वो उसको पता चलता है कि उसका क्या गया। उनका एक बेटा है, बेटी है, बीवी है, कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था। उसके लिए मुआवजा चाहिए, प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ, अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है। प्लीज, ये मुंबई में हमेशा होता है, बहुत जरूरी। सेफ्टी रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते? हर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा कमाना है, गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना है, हमसे टैक्स लेते, सब लेते, हमारी जान का क्या जाता है? हम लोग कहाँ जाए, ये बताओ।
0: हादसे की खबर सुनकर बीएमसी की मेयर रितु तावड़े भी मौके पर पहुंची। उन्होंने किंतु परंतु करने की जगह तुरंत बीएमसी प्रशासन की गलती और लापरवाही मानी। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। इतना ही नहीं, हादसे में लापरवाही बरतने को लेकर मेयर रितु तावड़े ने साकेनाका वार्ड अफसर समेत 4 बीएमसी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अधूरा काम छोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।
4: जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर तो हम लोग ने क्रिमिनल केस वहाँ पे सदृश मनुष्य बदल का गुना उसके ऊपर हमने दाखिल किया ही है। अभी इसके ऊपर जो एडिशनल कमिश्नर विपिन शर्मा जी, उसकी जो एडिशनल कमिटी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कमिटी यहाँ पे बैठी है। अभी ऑन द स्पॉट यहाँ पे जो 4 है वार्ड ऑफिसर से लेके उनको निलंबित किया है, लेकिन इसके ऊपर जो इंक्वायरी कमिटी बैठी है उसका अहवाल आने के बाद उसके ऊपर भी गुना दाखिल हुआ।
5: एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली नहीं ले रहा है मैडम, ऐसा लगता है। संजय घाड़ी जी ने भी अश्विनी भिड़े को रिस्पॉन्सिबल कराया है जो मैनुअल है वो बंद नहीं करने के लिए।
4: देखो, गलती तो हुई है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। प्रशासन को इतना बोलने के बावजूद ये जो 2-2 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट आप क्यों इतना लेट इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जबकि बारिश के पहले आपके एक तो वैसे भी बारिश लेट आई, तो आपके पास कम से कम 2 महीना थे। जाली बिठाने का काम बारिश में नहीं होता है, जाली बिठाने का काम ये बारिश के पहले होता है। या अगर करते थे तो वो इंसान बच जाता था।
5: मुंबई को क्या संदेश देना चाहिए मैडम, जिस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, तेज बारिश है, डर
4: तेज कम। वैसे भी मैं ऑलवेज सबको कहती हूँ कि बारिश के वक्त सब जन संभाल के चले।
5: यहाँ पर 10 लाख रुपया कम्पेंसेशन जो है मृतक उसकी परिवार को देने की बात की गई है। वार्ड ऑफिसर सहित 3 बीएमसी ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है, रितु तावड़े ने खुद माना है कि बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से इतने सारे इंसिडेंट्स बारिश के मुंबई में हो रहे हैं।
0: 3 दिन में 5 लोगों की जान जाने से सरकार और बीएमसी विपक्ष के निशाने पर है।
6: कि जिस भाजपा के हाथ में आज बीएमसी है, उसे बरसात की जो पूरे तकलीफें हैं वो संभलने नहीं आती। पहले आपने देखा होगा कि महापौर साहिबा जब चल रही थी, उनके सामने ही मुंबई महानगर पालिका के एक कर्मचारी मैनहोल में गिर गए। उन पे ही शक करके उनको ही अभी इन्वेस्टिगेशन में खींचा गया है कि आपके विरोधी विपक्ष के हो। आज और एक घटना घटी है, कल कोई 2 व्यक्ति इलेक्ट्रिक्यूट हुए।
0: साकीनाका में मैनहोल में गिरने से हुए हादसे की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा में भी सुनी गई। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सरकार को सख्त निर्देश दिए कि सिर्फ अधिकारियों को सस्पेंड करना काफी नहीं होगा।
7: मुंबईत पाणी भरतं, पावसात वॉटर क्लॉगिंग होतं, ते होत असताना अनेक ठिकाणी कामं चालू असतात, तिकडे गटार उघडी ठेवली असतात. हे केवळ निलंबन करून चालणार नाही, मला वाटतं कल्पेबल होमिसाइडचा गुन्हा घ्यायला पाहिजे अशा अधिकाऱ्यांवर.
0: इसके बाद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी विधायक अमित साटम ने सदन में इस मुद्दे पर कहा कि लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
8: मुंबई में बारिश में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आज तीसरे दिन एक हादसा हुआ है जिसमें एक 60 साल के व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी. हमारे साथ बीजेपी के MLA और मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम है. उन्होंने इस मुद्दे को आज विधानसभा में उठाया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की है.
9: आज वहां पर साकीनाका में SO डिपार्टमेंट का एक काम शुरू था और वो काम शुरू होने के समय पर उस मैनहोल को अनअटेंडेड छोड़ा गया था और एक व्यक्ति की उसमें गिरकर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी है. हमने ये मांग की है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर का वहां पर काम शुरू था उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सदोष मनुष्य वध का कल्पेबल होमिसाइड का ये गुना FIR रजिस्टर होना चाहिए. जो अधिकारी जिनके ऊपर ये काम की जिम्मेदारी थी उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और आने वाले समय में प्रशासन ने अधिक संवेदनशीलता से काम करने की आवश्यकता है और इस घटना के बैकग्राउंड पर हम प्रशासन को एक इशारा देना चाहते हैं.
0: स्पीकर राहुल नार्वेकर ने साकीनाका हादसे पर तुरंत विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने हादसे की पूरी जानकारी सदन के सामने रखी. लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी से BMC संभल नहीं गई.
10: अब मौत का कुआं देखना हो तो मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले मैन होल को देख लीजिए. जब आपको पता है कि मुंबई में बरसात होती है, कभी भी कितनी भी बरसात होती है, तो आपने पहले तैयारियां पूरी क्यों नहीं की? अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तब भी अगर आप सावधान नहीं है तो मुंबई करों के जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है?
0: वही ठाणे के मुंब्रा में बारिश के दौरान करंट लगने से 17 साल की आलिया की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मुंब्रा के यास्मीन पार्क की बी विंग में रहने वाली आलिया किसी काम से बिल्डिंग के बाहर निकली थी. इसी दौरान वो बारिश के पानी में उतरे करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई.
11: ये बोल के हम थक चुके हैं. आज भी कल भी आपने देखा, कल भी एक हादसा हुआ, स्लैब गिर गया था. आज एक 17 साल की जवान बच्ची वो सिर्फ अपने बाप की दुकान पे गई बाप को मिलने के लिए और आई उसको करंट लगे और जगह पे बच्ची खत्म हो गई.
0: वहीं डोंबिवली में बच्चों के लिए नाश्ता लेने निकली मां की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई. डोंबिवली के हनुमान नगर में खुले बिजली के तार ने 42 साल की महिला शशि चक्र की जान ले ली. मुंबई में 30 जून को चेंबूर इलाके में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत हो गई. अब ठाणे के मीरा भाईंदर इलाके में भी एक ऐसी ही घटना हुई है. यहाँ मूसलाधार बारिश के दौरान एक चलती स्कूटी पर अचानक नारियल का पेड़ गिर गया, जिससे स्कूटी सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया. हादसे का वीडियो भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि ये नारियल का पेड़ खोखला हो गया था. मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा दिख रहा है, खासकर निचले इलाकों जैसे दादर, प्रभा देवी, माटुंगा, सायन, अंधेरी, मुंब्रा, नाला सोपारा और कलम्बोली में जल भराव से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है. लेकिन बारिश के बाद हो रहे हादसों से मुंबई वाले भी खौफ में है. मुंबई से मुस्तफा शेख, ऋत्विक भालेकर और ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ मिथिलेश गुप्ता, डोंबिवली आज तक.
12: और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो हर उस माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर यानी कि बच्चों को दिन भर की देखभाल के लिए और सुरक्षा के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो अपने काम में ठीक से मन लगा सके, काम ठीक से कर पाएं या फिर अपनी नौकरी कर पाएं. लेकिन बेंगलुरु के एक डे केयर सेंटर से एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर किसी भी माँ बाप का कलेजा कांप जाए. देखते हैं डे केयर के शैतान को.
13: बेंगलुरु में डे केयर के शैतानों पर बड़ा खुलासा. कैसे डे केयर सेंटर में बच्चे को वॉशिंग मशीन में डालकर डराया. बच्चे को बाथरूम में बंद किया, मुंह पर टॉयलेट जेट से पानी डाला. मासूम के साथ प्रताड़ना के वीडियो से कांप उठेगा कलेजा. बेंगलुरु में कैप जेमिनी कंपनी के डे केयर सेंटर ने हद पार कर दी. मासूम की चीखों में छिपा ये दर्द बेरहमी की पूरी कहानी बयान कर रहा है. 29 जून का ये वायरल वीडियो बेंगलुरु में आईटी कंपनी कैप जेमिनी के एचईएल कैंपस में चल रहे डे केयर सेंटर का है, जहां 2 से 3 साल के बच्चों के साथ बदसुलूकी की जा रही है। वीडियो में बच्चा टॉयलेट में बंद है, फर्श पर लेटा हुआ है और जोरों से रो रहा है। एक महिला बच्चे के बिलखने का वीडियो बना रही है। एक और वीडियो में महिला बच्चे को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उसके मुंह पर जेट स्प्रे से पानी डाल रही है। इसके अलावा बच्चे को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम में बैठाकर रखा गया है, उसे डराया जा रहा है, बच्चा रो रहा है। एचएल पुलिस स्टेशन में अब 5 महिला केयर गिवर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज और सभी दूसरे तकनीकी सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है।
14: In a daycare facility in an IT sector company. As per the complaint and the videos which have been given as part of the complaint, we are going through it. The Joint Commissioner East and the Deputy Commissioner of in charge of Whitefield, both are there at the place right now. They are verifying the facts. But whatever has happened is really very serious issue. And we will take stricter action. The videos are being verified. CCTVs, all other technical evidences are being looked at.
13: अब पुलिस ने 5 केयरगिवर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी केयरगिवर्स को नोटिस जारी किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। इन डे केयर सेंटर्स में ज्यादातर आईटी कंपनी में काम करने वाले माँ बाप अपने महज 2 से 3 साल के बच्चों को छोड़कर जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जिन बच्चों के लिए वो कमा रहे हैं उन पर ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं। कैप जेमिनी ने एक बयान में कहा है कि उसके कर्मचारियों और उनके परिवारों का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी ने कहा कि वो जांच में पूरी तरह सहयोग कर रही है और एहतियाती कदम के तौर पर डे केयर सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।
12: इसी के साथ ही मैं रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अमित शाह के घर 3.5 घंटे तक बीजेपी की मैराथन बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन रहे मौजूद। कैबिनेट में फेरबदल और संगठन स्तर पर अधिकारियों को लेकर चर्चा की संभावना। चढ़ावा चोरी में जांच के लिए दोबारा अयोध्या पहुंची एसआईटी ने 8 घंटे तक ट्रस्ट के अधिकारियों से की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी सवाल जवाब। टीएमसी में बगावत मामले पर अब चुनाव आयोग ने थामी कमान। ममता और ऋतुव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दोनों ही गुटों ने किया है पार्टी पर दावा। और भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी है रक्षा क्षेत्र में करार। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया विकास यात्रा का अहम भागीदार, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। और महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में बिहार और पंजाब से 3 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता भी फरार। अब तक कुल 7 की गिरफ्तारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर देश की नजर है। एसआईटी जांच में लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों के बाद अयोध्या बार एसोसिएशन भी चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वहीं आरोपों की इस आंधी में 8 में से 1 आरोपी के घर पर योगी सरकार बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुकी है।
1: माफिया राज पर योगी सरकार का बुलडोजर चलते तो सबने देखा, धर्मांतरण करने वालों के साम्राज्य को भी योगी ने बुलडोजर से मिटाया। अवैध मस्जिद मजारों पर योगी का बुलडोजर चला है। अब प्रभु राम का चढ़ावा चुराने वाले आरोपियों का घर भी मिट्टी में मिलाया जाएगा। चढ़ावा चोरी में पकड़े गए 8 आरोपियों में से 1 लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। 2 मंजिला ये इमारत योगी सरकार के बुलडोजर की नई मंजिल होगी।
2: हमारे अब जेई प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं। भी होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा, वाइफ ऑफ लोकेश मिश्रा का। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें।
1: लवकुश की पत्नी के नाम पर बन रही एक इमारत को लेकर अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने 1 हफ्ते के भीतर लवकुश के परिजनों से जवाब मांगा। साथ ही प्रशासन ने कहा है कि अगर जवाब नहीं मिला तो निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है।
3: आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर यानी कि सुप्रिया के नाम पर एक नोटिस थमा दिया है, जिसमें निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है वो सही स्थान पर बनी है कि नहीं बनी है उसको लेकर ये नोटिस है। 1 हफ्ते के भीतर लवकुश मिश्रा के परिवार को जवाब देना है। अब इस मामले में बड़ी बात निकलकर सामने ये भी आ रही है कि अगर 1 हफ्ते में प्राधिकरण को परिवार के द्वारा सही जवाब नहीं मिलता है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी प्राधिकरण कर सकता है।
1: अयोध्या के सादतगंज का ये वही घर है जो लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा बनवा रही। ये 2 मंजिला घर बिना नक्शा पास करवाए बनवाया जा रहा है।
4: मुख्य आरोपियों में शामिल लवकुश मिश्रा के इस मकान जो उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर मौजूद है, इसको भी अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस दिया जा चुका है। ये अयोध्या की सुहावल तहसील का ये मकान है जो करीब 1000 स्क्वायर फीट का मकान है। वैसे तो लवकुश मिश्रा ने ये अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदा था। अयोध्या विकास प्राधिकरण के लोग आए थे यहाँ पर?
5: जी आए थे।
4: कब आए थे,
5: क्या किया? हम कल आए थे, आप पूछताछ कर रहे थे।
4: अच्छा
5: जी जी।
4: क्या करके गए?
5: कुछ नहीं, पूछा था मकान नंबर ये वो कौन सी हम क्या कैसे लगता है किसका मकान है इतना ही। अच्छा। जानकारी।
1: लवकुश मिश्रा की तरह उसकी पत्नी के बैंक खातों की जांच होने लगी है जिसमें बड़ी रकम होने का दावा किया जाता है। इस तरह चढ़ावा चोरी के इस आरोपी की ही नहीं बल्कि इसके पूरे परिवार की जांच हो रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
6: SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूँ जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रखेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकारे नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्त भोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती।
1: इससे पहले लवकुश मिश्रा के पास से 500 के 2850 नोट यानी कुल 14,25,000 रुपए चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया था। चढ़ावा चोरी कांड में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के जुर्म कबूलने के बाद नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित के हाथ में करेंसी नोटों के बंडल का एक वीडियो सामने आया ये वीडियो जांच के दायरे में आ चुका है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई, जिसने विपक्षी दलों को योगी सरकार पर हमले का मौका दे दिया।
7: भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ किया, और जहां तक चढ़ावा और चंदे का सवाल है, हमारे देश की जनता इतनी दयालु और भोली वाली है, जिससे मैं उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये रामधन रामधन के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच रहा है, उनके रामधन की चोरी नहीं होगी, उसी दिन आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा।
1: लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी को भी बख्शने से इनकार कर इन सियासी हमलों की धार कुंद करने में जुटे, जिसमें अल्पसंख्यकों और विरोधियों के घरों पर बुलडोजर की जानबूझकर कार्रवाई का इल्जाम भी शामिल है।
8: हमारा तो मानना है कि उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला खत्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको मामला खत्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे, अब चंपक हो रहा है, क्या बोलेंगे बताइए आप। अब कुछ बोले ऐसी बात ही नहीं है उसमें, कितना ये सब तमाशे हो रहे हैं।
1: लेकिन योगी सरकार चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई करके ये बताना चाहती है कि जो भी अपराधी है सबका हश्र एक होगा, लेकिन विपक्ष मानता नहीं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है।
0: और अब बात करेंगे बंगाल की सियासत के बारे में, जहां सत्ता के चेहरे बदले तो सियासी बदले का प्रतीक अंडा बन गया। टीएमसी नेताओं पर जनता का गुस्सा अंडों के रूप में बरस रहा है, लेकिन टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। वहीं सवाल अब नेताओं की सुरक्षा का भी है।
9: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडों से हो रहे हमलों की नई शिकार सांसद महुआ मोइत्रा हुई हैं।
10: है पुलिस देखो देख आवाज शुरू पता चोल बे।
9: नादिया में पार्टी कार्यालय के बाहर से अंडे और सब्जियां फेंके गए, महुआ ने खुद वीडियो शेयर किया।
11: खास करके अगर वो सांसद हो, उसको इस प्रकार से मारा जा रहा है, डीम फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है, नारियल फेंका जा रहा है, और नीचे लोग दिख रहे हैं जो बीजेपी का झंडा लेकर के हिला रहे हैं। साफ है, डीजीपी को फोन करके बताया गया, जगह बताया गया, सब कुछ महुआ मोइत्रा ने बताया, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ।
9: उधर अब टीएमसी के बागी और बीजेपी के सुर पूरे मामले में एक जैसे हैं।
12: जो लोग चोर है, डकैत है, माफिया है, लोगों का गुस्सा है उन लोगों के ऊपर। हमारा ये 65 एमएलएस में ऐसा एमएलए है, ट्रेन में आते जाते हैं, किधर भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, और चार्टर्ड माफिया का दिक्कत हो रहा है।
13: तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है, तो तृणमूल को इसको सलटाना चाहिए।
9: हाईकोर्ट की आपत्ति के बावजूद टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज तक ब्यूरो
0: टीएमसी एक ओर जहां हमलों का शिकार हो रही है, तो वहीं पार्टी की टूट ने ममता की ताकत को कमजोर कर दिया है। इसी बीच अब शरद पवार गुट ने भी सांसदों की टूट की अटकलें हैं, जिसने महाराष्ट्र की सियासत को गर्म कर दिया है।
14: क्या शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा? क्या शरद पवार के 8 सांसदों पर बीजेपी की नजर है? क्या महाराष्ट्र का सियासी समीकरण फिर बदलने जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं। दरअसल सूत्रों से खबर है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी-एसपी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। हालांकि अभी यह बातचीत महाराष्ट्र की इकाई तक ही सीमित है। खबर है कि शरद पवार विलय को लेकर अपनी पार्टी के अंदर रायशुमारी कर रहे हैं, और अगर महाराष्ट्र में डील हो गई तो उसके बाद दिल्ली में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व विलय पर अंतिम मोहर लगाएंगे।
15: शरद पवार की एनसीपी का विलय जल्द कांग्रेस में हो सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों की राज्य इकाइयों के बीच में महाराष्ट्र लेवल पर फिलहाल बातचीत चल रही है, और जैसे ही चीजें तय होंगी उसके बाद दोनों पार्टियों की टॉप लीडरशिप यहां दिल्ली में बैठकर इस पर अंतिम मोहर लगाएगी। दरअसल कुछ रोज पहले अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर शरद पवार ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए बीजेपी की आलोचना की थी, जिसके बाद कई लोगों ने ये कहा कि ये दर्शाता है कि दोनों पार्टियों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। जानकारों के मुताबिक अगर एनसीपी का विलय कांग्रेस पार्टी में होता है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होगा।
14: जब से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे कैंप में शामिल हुए हैं, तब से शरद पवार की पार्टी में भी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब विपक्ष बीजेपी की जोड़तोड़ की राजनीति पर करारा प्रहार कर रहा है। कभी शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत कांग्रेस में महाविलय का आइडिया दे देते हैं तो कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार कह देते हैं कि हाँ, दिल्ली में बात चल रही है। तो कभी ऑपरेशन तुतारी का दावा करते हुए एनसीपी के धर्मराव अतराम पवार के 8 में से 5 सांसदों को अपनी एनसीपी में विलय करने की प्लानिंग की बात कह देते हैं, और कभी दोनों एनसीपी के ही संपूर्ण विलय का शिगुफा सामने आ जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि ना तो उनकी पार्टी कांग्रेस में मिलेगी और ना ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली से सूत्रों के हवाले खबर है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने में लगे एनडीए का ध्यान एनसीपी शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है। ये संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस एनसीपी विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते, ना ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं।
1: जिस तरीके से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सांसदों का सिलसिला बढ़ा है, उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है, के साथ साथ अब ये भी जोड़ देना चाहिए कि राजनीति में भी सब कुछ चलता है और सब कुछ जायज है।
14: एक चर्चा ये भी है कि भविष्य में शरद पवार गुट के 8 सांसद सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में जा सकते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है।
16: देखिए, महाराष्ट्र से जो शरद पवार साहब की पार्टी के विलय की खबरें हैं, हमें लगता अफवाह है, क्योंकि चाहे कितना भी आ जाए प्रलय, हम क्यों करेंगे किसी बड़े दल में विलय। हर पार्टी का अपने अस्तित्व होता है, हर पार्टी की अपनी मर्यादा होती है। शरद पवार साहब तो कांग्रेस से टूटकर ही अपना दल बनाए थे, तो कांग्रेस में रहना होता तो अपना दल क्यों बनाते। तो हमें लगता है कि सुप्रिया सुले जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो एक बात मुझे बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि शरद पवार साहब मेरे गुरु हैं, क्या कभी आपने सुना है कि गुरु की पार्टी कोई शिष्य तोड़ता है? ऐसा नहीं होता, गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ नहीं करेगी, जोड़फोड़ की राजनीति नहीं करेगी, तब तो शरद पवार जी की पार्टी के जो 8 सांसद हैं उनको कोई खतरा नहीं है।
14: क्योंकि महाराष्ट्र में टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं, गठबंधन को भी है। एनसीपी एसपी, शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों की गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार सहित प्रमुख नेता मौजूद नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो यह है कि एक दिन पहले ही आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी और शिवसेना यूबीटी एमएलसी सचिन अहिर भी उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे सेना के सारथी बन गए हैं। सचिन अहिर को महायुति ने विधान परिषद में डिप्टी चेयरमैन के पद का इनाम दिया है। उनके नामांकन में फडणवीस शिंदे और सुनेत्रा पवार तीनों लोग मौजूद रहे। वैसे अभी एनसीपी शरद गुट में 8 सांसद और 10 विधायक हैं, और अगर विलय को लेकर शरद पवार की पार्टी में आम राय नहीं बनती तो 2/3 के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की दरकार होगी। सवाल है कि दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में रहे शरद पवार के मन में क्या चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पवार ही जानते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।
0: मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है। पिछले 3 दिनों में खुले मैनहोल, करंट और पेड़ गिरने जैसे हादसों में 5 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बारिश का कहर है या सिस्टम की घोर लापरवाही। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।

0: वाकई जिस तरह से पिछले तीन दिन में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के दौरान हुए हादसों में 5 लोगों की जान चली गई, उससे यही लग रहा है कि मुंबई हादसों का शहर ही है। 30 जून मुंबई, पेड़ गिरने से विहान की मौत। 1 जुलाई नवी मुंबई, सुरेश लोखंडे की मौत। 1 जुलाई डोंबिवली, शशि चक्र की मौत। 2 जुलाई मुंब्रा, आलिया की मौत। 2 जुलाई मुंबई, असलम शेख की मौत। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई में खुले मेनहोल में गिरने से 55 साल के असलम शेख की मौत की हो रही है। आज सुबह करीब 10:30 बजे अंधेरी के साकेनाका इलाके में खैरानी रोड पर असलम शेख की खुले मेनहोल में गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आनन फानन में 15 फीट नीचे गटर में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन सारी जद्दोजहद भी असलम की जान नहीं बचा सकी।
1: कितना डीप डेप्थ था और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन?
2: 25 फीट का डेप्थ था। हमने अपनी हरनेस की मदद से, जो हमारे पास स्पेशल अप्लायंसेस है उसकी हेल्प से, हम लोगों ने नीचे डाउन जाके हरनेस की मदद से उनको लिफ्ट किया।
1: एक नैरो एरिया रहता है, उसमें किसी शख्स को वो लिफ्ट करना, कितने लोग आप लोग थे, कैसे?
2: मेरा पूरा 15 लोगों का टीम था। हरनेस की हेल्प से हम लोग नीचे गए थे, क्योंकि ज्यादा लोग नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, अंदर गैसेस वगैरह होते हैं। तो सेपर साइड खाली एक बंदा ही नीचे गया था, उसने नीचे जाके, हाँ मैं गया था नीचे जाके, मैंने उनको हार्नेस की मदद से बांध के ऊपर लिफ्ट किया।
1: वो दिखे आपको किस हालत में, मतलब लेटे हुए थे, कहीं फंसे हुए थे, कैसा पानी का बहाव ज्यादा था?
2: उनका आधा बॉडी ड्रेन लाइन में नीचे जो छोटा सा चेम्बर है उसके अंदर था और हाफ बॉडी बाहर था।
0: असलम शेख के परिवार में मातम पसरा है। परिवार पूछ रहा है कि आखिरकार सरकार और बीएमसी प्रशासन आम लोगों की जान की कीमत क्यों नहीं समझ रहा।
3: हमारी फैमिली की तरफ से एक मांग है कि आज हमारा गया ना, कल किसी और का नहीं जाए। किसी के भी जिंदगी का कोई नुकसान ना हो। जिसका जाता है वो उसको पता चलता है कि उसका क्या गया। उनका एक बेटा है, बेटी है, बीवी है, कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था। उसके लिए मुआवजा चाहिए, प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ, अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है। प्लीज, ये मुंबई में हमेशा होता है, बहुत जरूरी। सेफ्टी रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते? हर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा कमाना है, गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना है, हमसे टैक्स लेते, सब लेते, हमारी जान का क्या जाता है? हम लोग कहाँ जाए, ये बताओ।
0: हादसे की खबर सुनकर बीएमसी की मेयर रितु तावड़े भी मौके पर पहुंची। उन्होंने किंतु परंतु करने की जगह तुरंत बीएमसी प्रशासन की गलती और लापरवाही मानी। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। इतना ही नहीं, हादसे में लापरवाही बरतने को लेकर मेयर रितु तावड़े ने साकेनाका वार्ड अफसर समेत 4 बीएमसी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अधूरा काम छोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।
4: जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर तो हम लोग ने क्रिमिनल केस वहाँ पे सदृश मनुष्य वधन का गुना उसके ऊपर हमने दाखिल किया ही है। अभी इसके ऊपर जो एडिशनल कमिश्नर विपिन शर्मा जी, उसकी जो

0: पर जो इंक्वायरी कमेटी बैठी है उसका अहवाल आने के बाद उसके ऊपर भी गुना दाखिल होगा।
1: एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली नहीं ले रहा है मैडम, ऐसा लगता है संजय घाड़ी जी ने भी अश्विनी भिड़े को रिस्पॉन्सिबल कराया है जो मैनुअल है वो बंद नहीं करने के लिए।
0: देखो गलती तो हुई है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। प्रशासन को इतना बोलने के बावजूद ये जो दो दो साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट आप क्यों इतना लेट इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जबकि बारिश के पहले आपके एक तो वैसे भी बारिश लेट आई तो आपके पास कम से कम 2 महीना थे। जाली बिठाने का काम बारिश में नहीं होता है, जाली बिठाने का काम ये बारिश के पहले होता है, या अगर करते थे तो वो इंसान बच जाता था।
1: मुंबईकरों को क्या संदेश देना चाहिए मैडम, जिस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, तेज बारिश है, डर
0: तेज वैसे भी मैं ऑलवेज सबको कहती हूँ कि बारिश के वक्त सब जन संभाल के चले।
1: यहाँ पर 10 लाख रुपया कम्पेंसेशन जो है मृतक उसकी परिवार को देने की बात की गई है। वार्ड ऑफिसर सहित 3 BMC ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है, रितु तावड़े ने खुद माना है कि BMC एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से इतने सारे इंसिडेंट्स बारिश के मुंबई में हो रहे हैं।
2: 3 दिन में 5 लोगों की जान जाने से सरकार और BMC विपक्ष के निशाने पर है
3: कि जिस भाजपा के हाथ में आज BMC है उसे बरसात की जो पूरे तकलीफें है वो संभलने नहीं आती। पहले आपने देखा होगा कि महापौर साहिबा जब चल रही थी उनके सामने ही मुंबई महानगर पालिका के एक कर्मचारी मैनहोल में गिर गए, उन पे ही शक करके उनको ही अभी इन्वेस्टिगेशन में खींचा गया कि आपके विरोधी विपक्ष के हो। आज और एक घटना घटी है, कल कोई 2 व्यक्ति इलेक्ट्रिक्यूट हुए।
2: साकिनाका में मैनहोल में गिरने से हुए हादसे की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा में भी सुनी गई। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सरकार को सख्त निर्देश दिए कि सिर्फ अधिकारियों को सस्पेंड करना काफी नहीं होगा।
4: मुंबईत पाणी भरतं, पावसात वॉटर क्लॉगिंग होतं, ते होत असताना अनेक ठिकाणी कामं चालू असतात, तिकडे गटार उघडी ठेवली असतात, हे केवळ निलंबन करून चालणार नाही, मला वाटतं कल्पेबल होमिसाइडचा गुन्हा घ्यायला पाहिजे अशा अधिकाऱ्यांवर।
2: इसके बाद मुंबई BJP अध्यक्ष और BJP विधायक अमित साटम ने सदन में इस मुद्दे पर कहा कि लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
5: मुंबई में बारिश में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज तीसरे दिन एक हादसा हुआ है जिसमें एक 60 साल के व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारे साथ BJP के MLA और मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम है, उन्होंने इस मुद्दे को आज विधानसभा में उठाया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।
6: आज वहां पर साकिनाका में ISO डिपार्टमेंट का एक काम शुरू था और वो काम शुरू होने के समय पर उस मैनहोल को अनअटेंडेड छोड़ा गया था और एक व्यक्ति की उसमें गिरकर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी है। हमने ये मांग की है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर का वहां पर काम शुरू था उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सदोष मनुष्य वध का कल्पेबल होमिसाइड का ये गुना FIR रजिस्टर होना चाहिए। जो अधिकारी जिनके ऊपर ये काम की जिम्मेदारी थी उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और आने वाले समय में प्रशासन ने अधिक संवेदनशीलता से काम करने की आवश्यकता है और इस घटना के बैकग्राउंड पर हम प्रशासन को एक इशारा देना चाहते हैं।
2: स्पीकर राहुल नार्वेकर ने साकिनाका हादसे पर तुरंत विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने हादसे की पूरी जानकारी सदन के सामने रखी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि BJP से BMC संभल नहीं गई।
7: अब मौत का कुआं देखना हो तो मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले मैन होल को देख लीजिए। जब आपको पता है कि मुंबई में बरसात होती है, कभी भी कितनी भी बरसात होती है, तो आपने पहले तैयारियां पूरी क्यों नहीं की? अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तब भी अगर आप सावधान नहीं है तो मुंबई करों के जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है।
2: वही ठाणे के मुंब्रा में बारिश के दौरान करंट लगने से 17 साल की आलिया की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुंब्रा के यास्मीन पार्क की बी विंग में रहने वाली आलिया किसी काम से बिल्डिंग के बाहर निकली थी, इसी दौरान वो बारिश के पानी में उतरे करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई।
8: ये बोल के हम थक चुके हैं। आज भी कल भी आपने देखा, कल भी एक हादसा हो गया था, स्लैब गिर गया था। आज एक 17 साल की जवान बच्ची वो सिर्फ अपने बाप की दुकान पे गई बाप को मिलने के लिए और आई उसको करंट लगा और जगह पे बच्ची खत्म हो गई।
2: वहीं डोंबिवली में बच्चों के लिए नाश्ता लेने निकली मां की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। डोंबिवली के हनुमान नगर में खुले बिजली के तार ने 42 साल की महिला शशि चक्र की जान ले ली। मुंबई में 30 जून को चेंबूर इलाके में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत हो गई। अब ठाणे के मीरा भाईंदर इलाके में भी एक ऐसी ही घटना हुई है। यहाँ मूसलाधार बारिश के दौरान एक चलती स्कूटी पर अचानक नारियल का पेड़ गिर गया, जिससे स्कूटी सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये नारियल का पेड़ खोखला हो गया था। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा दिख रहा है, खासकर निचले इलाकों जैसे दादर, प्रभादेवी।

0: माटुंगा, सायन, अंधेरी, मुम्ब्रा, नाला सोपारा और कलम्बोली में जल भराव से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन बारिश के बाद हो रहे हादसों से मुंबई वाले भी खौफ में हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख, ऋत्विक भालेकर और ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ मिथिलेश गुप्ता, डोंबिवली आज तक।
1: और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो हर उस माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर यानी कि बच्चों को दिन भर की देखभाल के लिए और सुरक्षा के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो अपने काम में ठीक से मन लगा सके, काम ठीक से कर पाएं या फिर अपनी नौकरी कर पाएं। लेकिन बेंगलुरु के एक डे केयर सेंटर से एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर किसी भी माँ बाप का कलेजा कांप जाए। देखते हैं डे केयर के शैतान को।
2: बेंगलुरु में डे केयर के शैतानों पर बड़ा खुलासा। कैसे डे केयर सेंटर में बच्चे को वॉशिंग मशीन में डालकर डराया। बच्चे को बाथरूम में बंद किया, मुंह पर टॉयलेट जेट से पानी डाला। मासूम के साथ प्रताड़ना के वीडियो से कांप उठेगा कलेजा। बेंगलुरु में कैप जेमिनी कंपनी के डे केयर सेंटर ने हद पार कर दी। मासूम की चीखों में छिपा ये दर्द बेरहमी की पूरी कहानी बयान कर रहा है। 29 जून का ये वायरल वीडियो बेंगलुरु में आईटी कंपनी कैप जेमिनी के एचईएल कैंपस में चल रहे डे केयर सेंटर का है जहां 2 से 3 साल के बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है। वीडियो में बच्चा टॉयलेट में बंद है, फर्श पर लेटा हुआ है और जोरों से रो रहा है। एक महिला बच्चे के बिलखने का वीडियो बना रही है। एक और वीडियो में महिला बच्चे को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उसके मुंह पर जेट स्प्रे से पानी डाल रही है। इसके अलावा बच्चे को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम में बैठाकर रखा गया है, उसे डराया जा रहा है, बच्चा रो रहा है। एचएल पुलिस स्टेशन में अब 5 महिला केयर गिवर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज और सभी दूसरे तकनीकी सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है।
3: In a day care facility in an IT sector company. As per the complaint and the videos which have been given as part of the complaint, we are going through it. The Joint Commissioner East and the Deputy Commissioner of in charge of Whitefield, both are there at the place right now. They are verifying the facts. But whatever has happened is really very serious issue. And we will take stricter action. The videos are being verified. CCTVs, all other technical evidences are being looked at.
2: अब पुलिस ने 5 केयरगिवर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी केयरगिवर्स को नोटिस जारी किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। इन डे केयर सेंटर्स में ज्यादातर आईटी कंपनी में काम करने वाले माँ बाप अपने महज 2 से 3 साल के बच्चों को छोड़कर जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जिन बच्चों के लिए वो कमा रहे हैं उन पर ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं। कैप जेमिनी ने एक बयान में कहा है कि उसके कर्मचारियों और उनके परिवारों का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी ने कहा कि वो जांच में पूरी तरह सहयोग कर रही है और एहतियाती कदम के तौर पर डे केयर सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।
1: इसी के साथ ही मैं रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अमित शाह के घर 3.5 घंटे तक बीजेपी की मैराथन बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन रहे मौजूद। कैबिनेट में फेरबदल और संगठन स्तर पर अधिकारियों को लेकर चर्चा की संभावना। चढ़ावा चोरी में जांच के लिए दोबारा अयोध्या पहुंची एसआईटी ने 8 घंटे तक ट्रस्ट के अधिकारियों से की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी सवाल जवाब। टीएमसी में बगावत मामले पर अब चुनाव आयोग ने थामी कमान। ममता और ऋतुव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दोनों ही गुटों ने किया है पार्टी पर दावा। और भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी है रक्षा क्षेत्र में करार। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया विकास यात्रा का अहम भागीदार। अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। और महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में बिहार और पंजाब से 3 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता अभी भी फरार। अब तक कुल 7 की गिरफ्तारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर देश की नजर है एसआईटी जांच में। लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों के बाद अयोध्या बार एसोसिएशन भी चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वहीं आरोपों की इस आंधी में 8 में से 1 आरोपी के घर पर योगी सरकार बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुकी है।
1: माफिया राज पर योगी सरकार का बुलडोजर चलते तो सबने देखा। धर्मांतरण करने वालों के साम्राज्य को भी योगी ने बुलडोजर से मिटाया। अवैध मस्जिद मजारों पर योगी का बुलडोजर चला है। अब प्रभु राम का चढ़ावा चुराने वाले आरोपियों का घर भी मिट्टी में मिलाया जाएगा। चढ़ावा चोरी में पकड़े गए 8 आरोपियों में से 1 लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। 2 मंजिला ये इमारत योगी सरकार के बुलडोजर की नई मंजिल होगी।
2: हमारे अब जेई प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं। भी होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लोकुश मिश्रा का। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें।
1: लवकुश की पत्नी के नाम पर बन रही एक इमारत को लेकर अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने 1 हफ्ते के भीतर लवकुश के परिजनों से जवाब मांगा। साथ ही प्रशासन ने कहा है कि अगर जवाब नहीं मिला तो निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है।
3: आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर यानी कि सुप्रिया के नाम पर एक नोटिस थमा दिया है, जिसमें निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है वो सही स्थान पर बनी है कि नहीं बनी है उसको लेकर ये नोटिस है। 1 हफ्ते के भीतर लवकुश मिश्रा के परिवार को जवाब देना है। अब इस मामले में बड़ी बात निकलकर सामने ये भी आ रही है कि अगर 1 हफ्ते में प्राधिकरण को परिवार के द्वारा सही जवाब नहीं मिलता है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी प्राधिकरण कर सकता है।
1: अयोध्या के सादतगंज का ये वही घर है जो लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा बनवा रही। ये 2 मंजिला घर बिना नक्शा पास करवाए बनवाया जा रहा है।
4: मुख्य आरोपियों में शामिल लवकुश मिश्रा के इस मकान जो उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर मौजूद है, इसको भी अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस दिया जा चुका है। ये अयोध्या की सुहावल तहसील का ये मकान है जो करीब 1000 स्क्वायर फीट का मकान है। वैसे तो लवकुश मिश्रा ने ये अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदा था। अयोध्या विकास प्राधिकरण के लोग आए थे यहाँ पर?
5: जी आए थे।
4: कब आए थे,
5: क्या किया? हम कल आए थे, आप पूछताछ कर रहे थे।
4: अच्छा
5: जी जी।
4: क्या करके गए?
5: कुछ नहीं, पूछा था मकान नंबर ये वो कौन सी हम क्या कैसे लगता है किसका मकान है इतना ही। अच्छा। जानकारी।
1: लवकुश मिश्रा की तरह उसकी पत्नी के बैंक खातों की जांच होने लगी है जिसमें बड़ी रकम होने का दावा किया जाता है। इस तरह चढ़ावा चोरी के इस आरोपी की ही नहीं बल्कि इसके पूरे परिवार की जांच हो रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
6: SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूँ जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रखेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्त भोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती।
1: इससे पहले लवकुश मिश्रा के पास से 500 के 2850 नोट यानी कुल 14,25,000 रुपए चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया था। चढ़ावा चोरी कांड में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के जुर्म कबूलने के बाद नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित के हाथ में करेंसी नोटों के बंडल का एक वीडियो सामने आया ये वीडियो जांच के दायरे में आ चुका है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई, जिसने विपक्षी दलों को योगी सरकार पर हमले का मौका दे दिया।
7: भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ की है, और जहां तक चढ़ावा और चंदे का सवाल है, हमारे देश की जनता इतनी दयालु और भोली वाली है, जिससे मैं उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये रामधन रामधन के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच रहा है, उनके रामधन की चोरी नहीं होगी, उसी दिन आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा।
1: लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी को भी बख्शने से इनकार कर इन सियासी हमलों की धार कुंद करने में जुटे, जिसमें अल्पसंख्यकों और विरोधियों के घरों पर बुलडोजर की जानबूझकर कार्रवाई का इल्जाम भी शामिल है।
8: हमारा तो मानना है कि उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला खत्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको मामला खत्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे, अब चंपक हो रहा है, क्या बोलेंगे बताइए आप। अब कुछ बोले ऐसी बात ही नहीं है उसमें, कितना ये सब तमाशे हो रहे हैं।
1: लेकिन योगी सरकार चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई करके ये बताना चाहती है कि जो भी अपराधी है सबका हश्र एक होगा, लेकिन विपक्ष मानता नहीं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है।
0: और अब आपको दिखाते हैं भारत और जापान के रिश्तों में नई उड़ान। जापान के पीएम सनाई तकाईची भारत आई हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी छोटी बहन बताया। इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स पार्टनरशिप की खूब बातें हुई हैं, कई डील्स भी हुई जो भारत जापान के रिश्तों की बुनियाद को और ज्यादा मजबूत करेंगी। जी हां, भारत और जापान ने आर्थिक साझेदारी को नई रफ्तार देने का फैसला किया है। भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने जापानीज कंपनियों की दिक्कतों को दूर करने के लिए जापान बिजनेस वीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है।
9: योर एक्सलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी है। भारत और जापान की इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री है, सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच और अप्रोच भी समानता है, और सबसे बढ़कर हमारे संबंधों की नींव अटूट आपसी विश्वास पर टिकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह विशेष साझेदारी सशक्त और समृद्ध जापान के आपके विजन, विकसित भारत के हमारे संकल्प और विश्व की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
0: और अब बात करेंगे बंगाल की सियासत के बारे में, जहां सत्ता के चेहरे बदले तो सियासी बदले का प्रतीक अंडा बन गया। टीएमसी नेताओं पर जनता का गुस्सा अंडों के रूप में बरस रहा है, लेकिन टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। वहीं सवाल अब नेताओं की सुरक्षा का भी है।
10: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडों से हो रहे हमलों की नई शिकार सांसद महुआ मोइत्रा हुई हैं।
11: है पुलिस देखो हवा शुरू पताका चल बे।
10: नादिया में पार्टी कार्यालय के बाहर से अंडे और सब्जियां फेंके गए। महुआ ने खुद वीडियो शेयर किया।
12: खास करके अगर वो सांसद हो, उसको इस प्रकार से मारा जा रहा है, डीम फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है, नारियल फेंका जा रहा है, और नीचे लोग दिख रहे हैं जो बीजेपी का झंडा लेकर के हिला रहे हैं। साफ है, डीजीपी को फोन करके बताया गया, जगह बताया गया, सब कुछ महुआ मोइत्रा ने बताया, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ।
10: उधर अब टीएमसी के बागी और बीजेपी के सुर पूरे मामले में एक जैसे हैं।
13: जो लोग चोर है, डकैत है, माफिया है, लोगों का गुस्सा है उन लोगों के ऊपर। हमारा ये 65 एमएलएस में ऐसा एमएलए है, ट्रेन में आते जाते हैं, किधर भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, और चार्टर्ड माफिया का दिक्कत हो रहा है।
14: तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है, तो तृणमूल को इसको सलटाना चाहिए।
10: हाईकोर्ट की आपत्ति के बावजूद टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं दे रहा। आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी एक ओर जहां हमलों का शिकार हो रही है, तो वहीं पार्टी की टूट ने ममता की ताकत को कमजोर कर दिया है। इसी बीच अब शरद पवार गुट ने भी सांसदों की टूट की अटकलें हैं, जिसने महाराष्ट्र की सियासत को गर्म कर दिया है।
15: क्या शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा? क्या शरद पवार के 8 सांसदों पर बीजेपी की नजर है? क्या महाराष्ट्र का सियासी समीकरण फिर बदलने जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं। दरअसल सूत्रों से खबर है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP-SP का कांग्रेस में विलय हो सकता है। हालांकि अभी यह बातचीत महाराष्ट्र की इकाई तक ही सीमित है। खबर है कि शरद पवार विलय को लेकर अपनी पार्टी के अंदर रायशुमारी कर रहे हैं, और अगर महाराष्ट्र में डील हो गई तो उसके बाद दिल्ली में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व विलय पर अंतिम मुहर लगाएंगे।
16: शरद पवार की एनसीपी का विलय जल्द कांग्रेस में हो सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों की राज्य इकाइयों के बीच में महाराष्ट्र लेवल पर फिलहाल बातचीत चल रही है, और जैसे ही चीजें तय होंगी उसके बाद दोनों पार्टी क्योंकि टॉप लीडरशिप यहां दिल्ली में बैठकर इस पर अंतिम मोहर लगाएगी। दरअसल कुछ रोज पहले अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर शरद पवार ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए बीजेपी की आलोचना की थी, जिसके बाद कई लोगों ने ये कहा कि ये दर्शाता है कि दोनों पार्टियों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। जानकारों के मुताबिक अगर एनसीपी का विलय कांग्रेस पार्टी में होता है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होगा।
15: जब से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT के 6 सांसद शिंदे कैंप में शामिल हुए हैं, तब से शरद पवार की पार्टी में भी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब विपक्ष बीजेपी की जोड़तोड़ की राजनीति पर करारा प्रहार कर रहा है। कभी शिवसेना UBT सांसद संजय राउत कांग्रेस में महाविलय का आइडिया दे देते हैं, तो कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार कह देते हैं कि हाँ, दिल्ली में बात चल रही है। तो कभी ऑपरेशन तुतारी का दावा करते हुए एनसीपी के धर्मराव अतराम पवार के 8 में से 5 सांसदों को अपनी एनसीपी में विलय करने की प्लानिंग की बात कह देते हैं, और कभी दोनों एनसीपी के ही संपूर्ण विलय का शिगुफा सामने आ जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि ना तो उनकी पार्टी कांग्रेस में मिलेगी और ना ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली से सूत्रों के हवाले खबर है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने में लगे एनडीए का ध्यान एनसीपी शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है। ये संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस एनसीपी विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते, ना ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं।
17: जिस तरीके से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सांसदों का सिलसिला बढ़ा है, उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है, के साथ साथ अब ये भी जोड़ देना चाहिए कि राजनीति में भी सब कुछ चलता है और सब कुछ जायज है।
15: एक चर्चा ये भी है कि भविष्य में शरद पवार गुट के 8 सांसद सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में जा सकते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है।
18: देखिए, महाराष्ट्र से जो शरद पवार साहब की पार्टी के विलय की खबरें हैं, हमें लगता अफवाह है, क्योंकि चाहे कितना भी आ जाए प्रलय, हम क्यों करेंगे किसी बड़े दल में विलय। हर पार्टी का अपने अस्तित्व होता है, हर पार्टी की अपनी मर्यादा होती है। शरद पवार साहब तो कांग्रेस से टूटकर ही अपना दल बनाए थे, तो कांग्रेस में रहना होता तो अपना दल क्यों बनाते। तो हमें लगता है कि सुप्रिया सुले जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो एक बात मुझे बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि शरद पवार साहब मेरे गुरु हैं, क्या कभी आपने सुना है कि गुरु की पार्टी कोई शिष्य तोड़ता है? ऐसा नहीं होता, गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ नहीं करेगी, जोड़फोड़ की राजनीति नहीं करेगी, तब तो शरद पवार जी की पार्टी के जो 8 सांसद हैं उनको कोई खतरा नहीं है।
15: क्योंकि महाराष्ट्र में टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं, गठबंधन को भी है। NCP-SP, शिवसेना UBT और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों के गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार सहित प्रमुख नेता मौजूद नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं, तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो यह है कि एक दिन पहले ही आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी और शिवसेना यूबीटी एमएलसी सचिन अहिर भी उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे सेना के सारथी बन गए हैं। सचिन अहिर को महायुति ने विधान परिषद में डिप्टी चेयरमैन के पद का इनाम दिया है। उनके नामांकन में फडणवीस शिंदे और सुनेत्रा पवार तीनों लोग मौजूद रहे। वैसे अभी एनसीपी शरद गुट में 8 सांसद और 10 विधायक हैं, और अगर विलय को लेकर शरद पवार की पार्टी में आम राय नहीं बनती तो 2/3 के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की दरकार होगी। सवाल है कि दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में रहे शरद पवार के मन में क्या चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पवार ही जानते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।
0: मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है। पिछले 3 दिनों में खुले मैनहोल, करंट और पेड़ गिरने जैसे हादसों में 5 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बारिश का कहर है या सिस्टम की घोर लापरवाही। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।

0: वाकई जिस तरह से पिछले तीन दिन में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के दौरान हुए हादसों में 5 लोगों की जान चली गई, उससे यही लग रहा है कि मुंबई हादसों का शहर ही है। 30 जून मुंबई, पेड़ गिरने से विहान की मौत। 1 जुलाई नवी मुंबई, सुरेश लोखंडे की मौत। 1 जुलाई डोंबिवली, शशि चक्र की मौत। 2 जुलाई मुंब्रा, आलिया की मौत। 2 जुलाई मुंबई, असलम शेख की मौत। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई में खुले मैनहोल में गिरने से 55 साल के असलम शेख की मौत की हो रही है। आज सुबह करीब 10:30 बजे अंधेरी के साकेनाका इलाके में खैरानी रोड पर असलम शेख की खुले मैनहोल में गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आनंद फानंद में 15 फीट नीचे गटर में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन सारी जद्दोजहद भी असलम की जान नहीं बचा सकी।
1: कितना डीप डेप्थ था और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन?
2: 25 फीट का डेप्थ था। हमने अपने हरनेस की मदद से, जो हमारे पास स्पेशल अप्लायंसेस है, उसकी हेल्प से हम लोगों ने नीचे डाउन जाके हरनेस की मदद से उनको लिफ्ट किया।
1: एक नैरो एरिया रहता है, उसमें किसी शख्स को वो लिफ्ट करना, कितने लोग आप लोग थे, कैसे?
2: मेरा पूरा 15 लोगों का टीम था। हरनेस की हेल्प से हम लोग नीचे गए थे, क्योंकि ज्यादा लोग नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, अंदर गैसेस वगैरह होते हैं, तो सेफर साइड खाली एक बंदा ही नीचे गया था। उसने नीचे जाके, हाँ मैं गया था नीचे जाके, मैंने उनको हरनेस की मदद से बांध के ऊपर लिफ्ट किया।
1: वो दिखे आपको किस हालत में, मतलब लेटे हुए थे, कहीं फंसे हुए थे, कैसा पानी का बहाव ज्यादा था?
2: उनका आधा बॉडी ड्रेन लाइन में नीचे जो छोटा सा चेम्बर है उसके अंदर था और हाफ बॉडी बाहर था।
0: असलम शेख के परिवार में मातम पसरा है। परिवार पूछ रहा है कि आखिरकार सरकार और बीएमसी प्रशासन आम लोगों की जान की कीमत क्यों नहीं समझ रहा।
3: हमारी फैमिली की तरफ से एक मांग है कि आज हमारा गया ना, कल किसी और का नहीं जाए। किसी के भी जिंदगी का कोई नुकसान ना हो। जिसका जाता है वो उसको पता चलता है कि उसका क्या गया। उनका एक बेटा है, बेटी है, बीवी है, कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था। उसके लिए मुआवजा चाहिए, प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ। अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है, प्लीज। ये मुंबई में हमेशा होता है, बहुत जरूरी। सेफ्टी रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते? हर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा कमाना है, गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना है, हमसे टैक्स लेते, सब लेते, हमारी जान का क्या जाता है? हम लोग कहाँ जाए, ये बताओ।
0: हादसे की खबर सुनकर बीएमसी की मेयर रितु तावड़े भी मौके पर पहुंची। उन्होंने किंतु परंतु करने की जगह तुरंत बीएमसी प्रशासन की गलती और लापरवाही मानी। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। इतना ही नहीं, हादसे में लापरवाही बरतने को लेकर मेयर रितु तावड़े ने साकेनाका वार्ड अफसर समेत 4 बीएमसी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अधूरा काम छोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।
4: जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर तो हम लोग ने क्रिमिनल केस वहाँ पे सदृश मनुष्य बदल का गुना उसके ऊपर हमने दाखिल किया ही है। अभी इसके ऊपर जो एडिशनल कमिश्नर विपिन शर्मा जी, उसकी जो एडिशनल कमिटी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कमिटी यहाँ पे बैठी है। अभी ऑन द स्पॉट यहाँ पे जो 4 है वार्ड ऑफिसर से लेके उनको निलंबित किया है, लेकिन इसके ऊपर जो इंक्वायरी कमिटी बैठी है उसका अहवाल आने के बाद उसके ऊपर भी गुना दाखिल हुआ।
5: एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली नहीं ले रहा है मैडम, ऐसा लगता है। संजय घाड़ी जी ने भी अश्विनी भिड़े को रिस्पॉन्सिबल करा है जो मैनुअल है वो बंद नहीं करने के लिए।
4: देखो गलती तो हुई है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। प्रशासन को इतना बोलने के बावजूद ये जो 2-2 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट आप क्यों इतना लेट इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जबकि बारिश के पहले आपके एक तो वैसे भी बारिश लेट आई, तो आपके पास कम से कम 2 महीना थे। जाली बिठाने का काम बारिश में नहीं होता है, जाली बिठाने का काम ये बारिश के पहले होता है। या अगर करते थे तो वो इंसान बच जाता था।
5: मुंबई को क्या संदेश देना चाहिए मैडम, जिस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, तेज बारिश है, डर कम?
4: तेज वैसे भी मैं ऑलवेज सबको कहती हूँ कि बारिश के वक्त सब जन संभाल के चले।
5: यहाँ पर 10 लाख रुपया कम्पेंसेशन जो है मृतक उसकी परिवार को देने की बात की गई है। वार्ड ऑफिसर सहित 3 बीएमसी ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है, रितु तावड़े ने खुद माना है कि बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से इतने सारे इंसिडेंट्स बारिश के मुंबई में हो रहे हैं।
0: 3 दिन में 5 लोगों की जान जाने से सरकार और बीएमसी विपक्ष के निशाने पर है।
6: कि जिस भाजपा के हाथ में आज बीएमसी है, उसे बरसात की जो पूरे तकलीफें है वो संभलने नहीं आती। पहले आपने देखा होगा कि महापौर साहिबा जब चल रही थी उनके सामने ही मुंबई महानगर पालिका के एक कर्मचारी मैनहोल में गिर गए। उन पे ही शक करके उनको ही अभी इन्वेस्टिगेशन में खींचा गया कि आपके विरोधी विपक्ष के हो। आज और एक घटना घटी है, कल कोई 2 व्यक्ति इलेक्ट्रिक्यूट हुए।
0: साकेनाका में मैनहोल में गिरने से हुए हादसे की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा में भी सुनी गई। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सरकार को सख्त निर्देश दिए कि सिर्फ अधिकारियों को सस्पेंड करना काफी नहीं होगा।
7: मुंबईत पाणी भरतं, पावसात वॉटर क्लॉगिंग होतं, ते होत असताना अनेक ठिकाणी कामं चालू असतात, तिकडे गटार उघडी ठेवली असतात. हे केवळ निलंबन करून चालणार नाही, मला वाटतं कल्पेबल होमिसाइडचा गुन्हा घ्यायला पाहिजे अशा अधिकाऱ्यांवर.
0: इसके बाद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी विधायक अमित साटम ने सदन में इस मुद्दे पर कहा कि लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
8: मुंबई में बारिश में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आज तीसरे दिन एक हादसा हुआ है जिसमें एक 60 साल के व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी. हमारे साथ बीजेपी के MLA और मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम है. उन्होंने इस मुद्दे को आज विधानसभा में उठाया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की है.
9: आज वहां पर साकीनाका में SO डिपार्टमेंट का एक काम शुरू था और वो काम शुरू होने के समय पर उस मैनहोल को अनअटेंडेड छोड़ा गया था और एक व्यक्ति की उसमें गिरकर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी है. हमने ये मांग की है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर का वहां पर काम शुरू था उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सदोष मनुष्य वध का कल्पेबल होमिसाइड का ये गुना FIR रजिस्टर होना चाहिए. जो अधिकारी जिनके ऊपर ये काम की जिम्मेदारी थी उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और आने वाले समय में प्रशासन ने अधिक संवेदनशीलता से काम करने की आवश्यकता है और इस घटना के बैकग्राउंड पर हम प्रशासन को एक इशारा देना चाहते हैं.
0: स्पीकर राहुल नार्वेकर ने साकीनाका हादसे पर तुरंत विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने हादसे की पूरी जानकारी सदन के सामने रखी. लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी से BMC संभल नहीं गई.
10: अब मौत का कुआं देखना हो तो मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले मैन होल को देख लीजिए. जब आपको पता है कि मुंबई में बरसात होती है, कभी भी कितनी भी बरसात होती है, तो आपने पहले तैयारियां पूरी क्यों नहीं की? अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तब भी अगर आप सावधान नहीं है तो मुंबई करों के जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है?
0: वहीं ठाणे के मुंब्रा में बारिश के दौरान करंट लगने से 17 साल की आलिया की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मुंब्रा के यास्मीन पार्क की बी विंग में रहने वाली आलिया किसी काम से बिल्डिंग के बाहर निकली थी. इसी दौरान वो बारिश के पानी में उतरे करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई.
11: ये बोल के हम थक चुके हैं. आज भी कल भी आपने देखा, कल भी एक हादसा हुआ, उधर स्लैब गिर गया था. आज एक 17 साल की जवान बच्ची वो सिर्फ अपने बाप की दुकान में गई बाप को मिलने के लिए और आई और उसको करंट लगे और जगह पे बच्ची खत्म हो गई.
0: वहीं डोंबिवली में बच्चों के लिए नाश्ता लेने निकली मां की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई. डोंबिवली के हनुमान नगर में खुले बिजली के तार ने 42 साल की महिला शशि चक्र की जान ले ली. मुंबई में 30 जून को चेंबूर इलाके में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के बिहान की मौत हो गई. अब ठाणे के मीरा भाईंदर इलाके में भी एक ऐसी ही घटना हुई है. यहाँ मूसलाधार बारिश के दौरान एक चलती स्कूटी पर अचानक नारियल का पेड़ गिर गया, जिससे स्कूटी सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया. हादसे का वीडियो भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि ये नारियल का पेड़ खोखला हो गया था. मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा दिख रहा है, खासकर निचले इलाकों जैसे दादर, प्रभा देवी, माटुंगा, सायन, अंधेरी, मुंब्रा, नाला सोपारा और कलम्बोली में जल भराव से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है. लेकिन बारिश के बाद हो रहे हादसों से मुंबई वाले भी खौफ में हैं. मुंबई से मुस्तफा शेख, ऋत्विक भालेकर और ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ मिथिलेश गुप्ता, डोंबिवली आज तक.
12: और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो हर उस माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर यानी कि बच्चों को दिन भर की देखभाल के लिए और सुरक्षा के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो अपने काम में ठीक से मन लगा सके, काम ठीक से कर पाएं या फिर अपनी नौकरी कर पाएं. लेकिन बेंगलुरु के एक डे केयर सेंटर से एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर किसी भी माँ बाप का कलेजा कांप जाए. देखते हैं डे केयर के शैतान को.
13: बेंगलुरु में डे केयर के शैतानों पर बड़ा खुलासा. कैसे डे केयर सेंटर में बच्चे को वॉशिंग मशीन में डालकर डराया. बच्चे को बाथरूम में बंद किया, मुंह पर टॉयलेट जेट से पानी डाला. मासूम के साथ प्रताड़ना के वीडियो से कांप उठेगा कलेजा. बेंगलुरु में कैप जेमिनी कंपनी के डे केयर सेंटर ने हद पार कर दी. मासूम की चीखों में छिपा ये दर्द बेरहमी की पूरी कहानी बयान कर रहा है. 29 जून का ये वायरल वीडियो बेंगलुरु में आईटी कंपनी कैप जेमिनी के एचएल कैंपस में चल रहे डे केयर सेंटर का है, जहां 2 से 3 साल के बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है। वीडियो में बच्चा टॉयलेट में बंद है, फर्श पर लेटा हुआ है और जोरों से रो रहा है। एक महिला बच्चे के बिलखने का वीडियो बना रही है। एक और वीडियो में महिला बच्चे को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उसके मुंह पर जेट स्प्रे से पानी डाल रही है। इसके अलावा बच्चे को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम में बैठाकर रखा गया है, उसे डराया जा रहा है, बच्चा रो रहा है। एचएल पुलिस स्टेशन में अब 5 महिला केयर गिवर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज और सभी दूसरे तकनीकी सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है।
14: In a daycare facility in an IT sector company. As per the complaint and the videos which have been given as part of the complaint, we are going through it. The Joint Commissioner East and the Deputy Commissioner of in charge of Whitefield, both are there at the place right now. They are verifying the facts. But whatever has happened is really very serious issue. And we will take stricter action. The videos are being verified. CCTVs, all other technical evidences are being looked at.
13: अब पुलिस ने 5 केयर गिवर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी केयर गिवर्स को नोटिस जारी किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। इन डे केयर सेंटर्स में ज्यादातर आईटी कंपनी में काम करने वाले माँ बाप अपने महज 2 से 3 साल के बच्चों को छोड़कर जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जिन बच्चों के लिए वो कमा रहे हैं उन पर ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं। कैप जेमिनी ने एक बयान में कहा है कि उसके कर्मचारियों और उनके परिवारों का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी ने कहा कि वो जांच में पूरी तरह सहयोग कर रही है और एहतियाती कदम के तौर पर डे केयर सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।
12: इसी के साथ ही मैं रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अमित शाह के घर 3.5 घंटे तक बीजेपी की मैराथन बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन रहे मौजूद। कैबिनेट में फेरबदल और संगठन स्तर पर अधिकारियों को लेकर चर्चा की संभावना। चढ़ावा चोरी में जांच के लिए दोबारा अयोध्या पहुंची एसआईटी ने 8 घंटे तक ट्रस्ट के अधिकारियों से की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से भी सवाल जवाब। टीएमसी में बगावत मामले पर अब चुनाव आयोग ने थामी कमान। ममता और ऋतुव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दोनों ही गुटों ने किया है पार्टी पर दावा। और भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी है रक्षा क्षेत्र में करार। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया विकास यात्रा का अहम भागीदार, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। और महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में बिहार और पंजाब से 3 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता भी फरार। अब तक कुल 7 की गिरफ्तारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर देश की नजर है। एसआईटी जांच में लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों के बाद अयोध्या बार एसोसिएशन भी चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वहीं आरोपों की इस आंधी में 8 में से 1 आरोपी के घर पर योगी सरकार बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुकी है।
1: माफिया राज पर योगी सरकार का बुलडोजर चलते तो सबने देखा, धर्मांतरण करने वालों के साम्राज्य को भी योगी ने बुलडोजर से मिटाया। अवैध मस्जिद मजारों पर योगी का बुलडोजर चला है। अब प्रभु राम का चढ़ावा चुराने वाले आरोपियों का घर भी मिट्टी में मिलाया जाएगा। चढ़ावा चोरी में पकड़े गए 8 आरोपियों में से 1 लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। 2 मंजिला ये इमारत योगी सरकार के बुलडोजर की नई मंजिल होगी।
2: हमारे अब जेई प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं। भी होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ अब लोकुश मिश्रा का। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें।
1: लवकुश की पत्नी के नाम पर बन रही एक इमारत को लेकर अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने 1 हफ्ते के भीतर लवकुश के परिजनों से जवाब मांगा। साथ ही प्रशासन ने कहा है कि अगर जवाब नहीं मिला तो निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है।
3: आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर यानी कि सुप्रिया के नाम पर एक नोटिस थमा दिया है, जिसमें निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है वो सही स्थान पर बनी है कि नहीं बनी है उसको लेकर ये नोटिस है। 1 हफ्ते के भीतर लवकुश मिश्रा के परिवार को जवाब देना है। अब इस मामले में बड़ी बात निकलकर सामने ये भी आ रही है कि अगर 1 हफ्ते में प्राधिकरण को परिवार के द्वारा सही जवाब नहीं मिलता है तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी प्राधिकरण कर सकता है।
1: अयोध्या के सादतगंज का ये वही घर है जो लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा बनवा रही है। ये 2 मंजिला घर बिना नक्शा पास करवाए बनवाया जा रहा है।
4: मुख्य आरोपियों में शामिल लवकुश मिश्रा के इस मकान जो उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर मौजूद है, इसको भी अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस दिया जा चुका है। ये अयोध्या की सुहावल तहसील का ये मकान है जो करीब 1,000 स्क्वायर फीट का मकान है। वैसे तो लवकुश मिश्रा ने ये अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदा था। अयोध्या विकास प्राधिकरण के लोग आए थे यहाँ पर?
5: जी आए थे।
4: कब आए थे?
5: कल आए थे, आप पूछताछ कर रहे थे।
4: अच्छा
5: जी।
4: क्या करके गए?
5: कुछ नहीं, पूछा था ऐसा मकान नंबर ये वो कौन सी क्या कैसे लगता है किसका मकान है, इतना ही जानकारी है।
1: लवकुश मिश्रा की तथा उसकी पत्नी के बैंक खातों की जांच होने लगी है, जिसमें बड़ी रकम होने का दावा किया जाता है। इस तरह चढ़ावा चोरी के इस आरोपी की ही नहीं बल्कि इसके पूरे परिवार की जांच हो रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
6: SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूँ, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रखेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती।
1: इससे पहले लवकुश मिश्रा के पास से 500 के 2,850 नोट यानी कुल 14,25,000 रुपए चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया था। चढ़ावा चोरी कांड में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के जुर्म कबूलने के बाद नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित के हाथ में करेंसी नोटों के बंडल का एक वीडियो सामने आया, ये वीडियो जांच के दायरे में आ चुका है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई, जिसने विपक्षी दलों को योगी सरकार पर हमले का मौका दे दिया।
7: भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ की है, और जहां तक चढ़ावा और चंदे का सवाल है, हमारे देश की जनता इतनी दयालु और भोली वाली है, जिस समय उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये रामधन रामधन के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच रहा है, उनके रामधन की चोरी नहीं होगी, उसी दिन आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा।
1: लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी को भी बख्शने से इनकार कर इन सियासी हमलों की धार कुंद करने में जुटे, जिसमें अल्पसंख्यकों और विरोधियों के घरों पर बुलडोजर की जानबूझकर कार्रवाई का इल्जाम भी शामिल है।
8: हमारा तो मानना है कि उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला खत्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको मामला खत्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे, अब चंपक हो रहा है, क्या बोलेंगे बताइए आप। अब कुछ बोले ऐसी बात ही नहीं है उसमें, कितना ये सब तमाशे हो रहे हैं।
1: लेकिन योगी सरकार चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई करके ये बताना चाहती है कि जो भी अपराधी है सबका हश्र एक होगा, लेकिन विपक्ष मानता नहीं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है।
0: और अब बात करेंगे बंगाल की सियासत के बारे में, जहां सत्ता के चेहरे बदले तो सियासी बदले का प्रतीक अंडा बन गया। टीएमसी नेताओं पर जनता का गुस्सा अंडों के रूप में बरस रहा है, लेकिन टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। वहीं सवाल अब नेताओं की सुरक्षा का भी है।
9: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडों से हो रहे हमलों की नई शिकार सांसद महुआ मोइत्रा हुई हैं।
10: बताई पुलिस, देखों देख पाचें आवाज शुरू करे चे, यही पताका चोल बे।
9: नादिया में पार्टी कार्यालय के बाहर से अंडे और सब्जियां फेंके गए, महुआ ने खुद वीडियो शेयर किया।
11: खास करके अगर वो सांसद हो, उसको इस प्रकार से मारा जा रहा है, डीम फेंका जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है, नारियल फेंका जा रहा है, और नीचे लोग दिख रहे हैं जो बीजेपी का झंडा लेकर के हिला रहे हैं। साफ है, डीजीपी को फोन करके बताया गया, जगह बताया गया, सब कुछ महुआ मोइत्रा ने बताया, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ।
9: उधर अब टीएमसी के बागी और बीजेपी के सुर पूरे मामले में एक जैसे हैं।
12: जो लोग चोर है, डकैत है, माफिया है, लोगों का गुस्सा है उन लोगों के ऊपर। हमारा ये 65 MLA में ऐसा MLA है, ट्रेन में आते जाते हैं, किधर भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, और चार्टर्ड माफिया का दिक्कत हो रहा है।
13: तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है, तो तृणमूल को इसको सलटाना चाहिए।
9: हाईकोर्ट की आपत्ति के बावजूद टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं दे रहा। आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी एक ओर जहां हमलों का शिकार हो रही है, तो वहीं पार्टी की टूट ने ममता की ताकत को कमजोर कर दिया है। इसी बीच अब शरद पवार गुट ने भी सांसदों की टूट की अटकलें हैं, जिसने महाराष्ट्र की सियासत को गर्म कर दिया है।
14: क्या शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा? क्या शरद पवार के 8 सांसदों पर बीजेपी की नजर है? क्या महाराष्ट्र का सियासी समीकरण फिर बदलने जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं। दरअसल सूत्रों से खबर है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP-SP का कांग्रेस में विलय हो सकता है। हालांकि अभी यह बातचीत महाराष्ट्र की इकाई तक ही सीमित है। खबर है कि शरद पवार विलय को लेकर अपनी पार्टी के अंदर रायशुमारी कर रहे हैं, और अगर महाराष्ट्र में डील हो गई तो उसके बाद दिल्ली में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व विलय पर अंतिम मुहर लगाएंगे।
15: शरद पवार की एनसीपी का विलय जल्द कांग्रेस में हो सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों की राज्य इकाइयों के बीच में महाराष्ट्र लेवल पर फिलहाल बातचीत चल रही है, और जैसे ही चीजें तय होंगी उसके बाद दोनों पार्टी क्योंकि टॉप लीडरशिप यहां दिल्ली में बैठकर इस पर अंतिम मोहर लगाएगी। दरअसल कुछ रोज पहले अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर शरद पवार ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए बीजेपी की आलोचना की थी, जिसके बाद कई लोगों ने ये कहा कि ये दर्शाता है कि दोनों पार्टियों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। जानकारों के मुताबिक अगर एनसीपी का विलय कांग्रेस पार्टी में होता है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होगा।
14: जब से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे कैंप में शामिल हुए हैं, तब से शरद पवार की पार्टी में भी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब विपक्ष बीजेपी की जोड़ तोड़ की राजनीति पर करारा प्रहार कर रहा है। कभी शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत कांग्रेस में महाविलय का आइडिया दे देते हैं तो कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार कह देते हैं कि हाँ दिल्ली में बात चल रही है, तो कभी ऑपरेशन तुतारी का दावा करते हुए एनसीपी के धर्मराव अतराम पवार के 8 में से 5 सांसदों को अपनी एनसीपी में विलय करने की प्लानिंग की बात कह देते हैं, और कभी दोनों एनसीपी के ही संपूर्ण विलय का शिगुफा सामने आ जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना किया है कि ना तो उनकी पार्टी कांग्रेस में मिलेगी और ना ही उनके सांसद कहीं जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली से सूत्रों के हवाले खबर है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने में लगे एनडीए का ध्यान एनसीपी शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों पर है। ये संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस एनसीपी विलय की अटकलों से सांसदों में 2029 को लेकर बेचैनी है। हालांकि बीजेपी सूत्र अपने दल में इनका विलय नहीं चाहते, ना ही मंत्री पद का भरोसा देना चाहते हैं।
16: जिस तरीके से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सांसदों का सिलसिला बढ़ा है, उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है, के साथ साथ अब ये भी जोड़ देना चाहिए कि राजनीति में भी सब कुछ चलता है और सब कुछ जायज है।
14: एक चर्चा ये भी है कि भविष्य में शरद पवार गुट के 8 सांसद सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में जा सकते हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हर दल सहमा हुआ है।
17: देखिए, महाराष्ट्र से जो शरद पवार साहब की पार्टी के विलय की खबरें हैं, हमें लगता अफवाह है, क्योंकि चाहे कितना भी आ जाए प्रलय, हम क्यों करेंगे किसी बड़े दल में विलय। हर पार्टी का अपने अस्तित्व होता है, हर पार्टी की अपनी मर्यादा होती है। शरद पवार साहब तो कांग्रेस से टूटकर ही अपना दल बनाए थे, तो कांग्रेस में रहना होता तो अपना दल क्यों बनाते। तो हमें लगता है कि सुप्रिया सुले जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी के नेतृत्व में, शरद पवार जी की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो एक बात मुझे बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि शरद पवार साहब मेरे गुरु हैं, क्या कभी आपने सुना है कि गुरु की पार्टी कोई शिष्य तोड़ता है? ऐसा नहीं होता, गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ नहीं करेगी, जोड़फोड़ की राजनीति नहीं करेगी, तब तो शरद पवार जी की पार्टी के जो 8 सांसद हैं उनको कोई खतरा नहीं है।
14: क्योंकि महाराष्ट्र में टूट का डर सिर्फ दलों को ही नहीं, गठबंधन को भी है। एनसीपी एसपी, शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी की 24 जून वाली बैठक में 23 विधायकों की गैर मौजूदगी ने अफवाहें और बढ़ा दी। इस बैठक में खुद शरद पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार सहित प्रमुख नेता मौजूद नहीं थे। इस बैठक के बाद उद्धव ने एकजुटता को लेकर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन जब दल के अंदर दरारें पड़ रही हैं तो गठबंधन की फिक्र तो दूर की बात है। हाल तो यह है कि एक दिन पहले ही आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी और शिवसेना यूबीटी एमएलसी सचिन अहिर भी उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे सेना के सारथी बन गए हैं। सचिन अहिर को महायुति ने विधान परिषद में डिप्टी चेयरमैन के पद का इनाम दिया है। उनके नामांकन में फडणवीस, शिंदे और सुनेत्रा पवार तीनों लोग मौजूद रहे। वैसे अभी एनसीपी शरद गुट में 8 सांसद और 10 विधायक हैं, और अगर विलय को लेकर शरद पवार की पार्टी में आम राय नहीं बनती तो 2/3 के लिए 5 सांसद और 7 विधायकों की दरकार हो। सवाल है कि दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में रहे शरद पवार के मन में क्या चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पवार ही जानते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।
0: मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है। पिछले 3 दिनों में खुले मैनहोल, करंट और पेड़ गिरने जैसे हादसों में 5 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बारिश का कहर है या सिस्टम की घोर लापरवाही। देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: वाकई जिस तरह से पिछले तीन दिन में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश के दौरान हुए हादसों में 5 लोगों की जान चली गई, उससे यही लग रहा है कि मुंबई हादसों का शहर ही है। 30 जून मुंबई, पेड़ गिरने से विहान की मौत। 1 जुलाई नवी मुंबई, सुरेश लोखंडे की मौत। 1 जुलाई डोंबिवली, शशि चक्र की मौत। 2 जुलाई मुंब्रा, आलिया की मौत। 2 जुलाई मुंबई, असलम शेख की मौत। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई में खुले मेनहोल में गिरने से 55 साल के असलम शेख की मौत की हो रही है। आज सुबह करीब 10:30 बजे अंधेरी के साकेनाका इलाके में खैरानी रोड पर असलम शेख की खुले मेनहोल में गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आनन फानन में 15 फीट नीचे गटर में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन सारी जद्दोजहद भी असलम की जान नहीं बचा सकी।
1: कितना डीप डेप्थ था और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन?
2: 25 फीट का डेप्थ था। हमने अपनी हरनेस की मदद से, जो हमारे पास स्पेशल अप्लायंसेस है उसकी हेल्प से, हम लोगों ने नीचे डाउन जाके हरनेस की मदद से उनको लिफ्ट किया।
1: एक नैरो एरिया रहता है, उसमें किसी शख्स को वो लिफ्ट करना, कितने लोग आप लोग थे, कैसे?
2: मेरा पूरा 15 लोगों का टीम था। हरनेस की हेल्प से हम लोग नीचे गए थे, क्योंकि ज्यादा लोग नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, अंदर गैसेस वगैरह होते हैं। तो सेपर साइड खाली एक बंदा ही नीचे गया था, उसने नीचे जाके, हाँ मैं गया था नीचे जाके, मैंने उनको हार्नेस की मदद से बांध के ऊपर लिफ्ट किया।
1: वो दिखे आपको किस हालत में, मतलब लेटे हुए थे, कहीं फंसे हुए थे, कैसा पानी का बहाव ज्यादा था?
2: उनका आधा बॉडी ड्रेन लाइन में नीचे जो छोटा सा चेम्बर है उसके अंदर था और हाफ बॉडी बाहर था।
0: असलम शेख के परिवार में मातम पसरा है। परिवार पूछ रहा है कि आखिरकार सरकार और बीएमसी प्रशासन आम लोगों की जान की कीमत क्यों नहीं समझ रहा।
3: हमारी फैमिली की तरफ से एक मांग है कि आज हमारा गया ना, कल किसी और का नहीं जाए। किसी के भी जिंदगी का कोई नुकसान ना हो। जिसका जाता है वो उसको पता चलता है कि उसका क्या गया। उनका एक बेटा है, बेटी है, बीवी है, कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था। उसके लिए मुआवजा चाहिए, प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ये कॉन्ट्रैक्टर को सिखाओ, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को भी सिखाओ, अगर तुमको काम करना है तो किस तरीके से काम करना है। प्लीज, ये मुंबई में हमेशा होता है, बहुत जरूरी। सेफ्टी रूल्स क्यों नहीं फॉलो करते? हर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा कमाना है, गवर्नमेंट को भी पैसा कमाना है, हमसे टैक्स लेते, सब लेते, हमारी जान का क्या जाता है? हम लोग कहाँ जाए, ये बताओ।
0: हादसे की खबर सुनकर बीएमसी की मेयर रितु तावड़े भी मौके पर पहुंची। उन्होंने किंतु परंतु करने की जगह तुरंत बीएमसी प्रशासन की गलती और लापरवाही मानी। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। इतना ही नहीं, हादसे में लापरवाही बरतने को लेकर मेयर रितु तावड़े ने साकेनाका वार्ड अफसर समेत 4 बीएमसी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अधूरा काम छोड़ने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।
4: जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर तो हम लोग ने क्रिमिनल केस वहाँ पे सदृश मनुष्य वध का गुना उसके ऊपर हमने दाखिल किया ही है। अभी इसके ऊपर जो एडिशनल कमिश्नर विपिन शर्मा जी, उसकी जो एडिशनल कमिटी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कमिटी यहाँ पे बैठी है। अभी ऑन द स्पॉट यहाँ पे जो 4 है वार्ड ऑफिसर से लेके उनको निलंबित किया है, लेकिन इसके ऊपर जो इंक्वायरी कमिटी बैठी है उसका अहवाल आने के बाद उसके ऊपर भी गुना दाखिल हुआ।
5: एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली नहीं ले रहा है मैडम, ऐसा लगता है। संजय घाड़ी जी ने भी अश्विनी भिड़े को रिस्पॉन्सिबल ठहरा है जो मैनुअल है वो बंद नहीं करने के लिए।
4: देखो, गलती तो हुई है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। प्रशासन को इतना बोलने के बावजूद ये जो 2-2 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट आप क्यों इतना लेट इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जबकि बारिश के पहले आपके, एक तो वैसे भी बारिश लेट आई, तो आपके पास कम से कम 2 महीना थे। जाली बिठाने का काम बारिश में नहीं होता है, जाली बिठाने का काम ये बारिश के पहले होता है। या अगर करते थे तो वो इंसान बच जाता था।
5: मुंबई को क्या संदेश देना चाहिए मैडम, जिस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, तेज बारिश है, डर कम?
4: तेज वैसे भी मैं ऑलवेज सबको कहती हूँ कि बारिश के वक्त सब जन संभाल के चले।
5: यहाँ पर 10 लाख रुपया कम्पेंसेशन जो है मृतक उसकी परिवार को देने की बात की गई है। वार्ड ऑफिसर सहित 3 बीएमसी ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है, रितु तावड़े ने खुद माना है कि बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से इतने सारे इंसिडेंट्स बारिश के मुंबई में हो रहे हैं।
0: 3 दिन में 5 लोगों की जान जाने से सरकार और बीएमसी विपक्ष के निशाने पर है।
6: कि जिस भाजपा के हाथ में आज बीएमसी है, उसे बरसात की जो पूरे तकलीफें हैं वो संभलने नहीं आती। पहले आपने देखा होगा कि महापौर साहिबा जब चल रही थी, उनके सामने ही मुंबई महानगर पालिका के एक कर्मचारी मैनहोल में गिर गए। उन पे ही शक करके उनको ही अभी इन्वेस्टिगेशन में खींचा गया कि आपके विरोधी विपक्ष के हो। आज और एक घटना घटी है, कल कोई 2 व्यक्ति इलेक्ट्रिक्यूट हुए।
0: साकीनाका में मैनहोल में गिरने से हुए हादसे की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा में भी सुनी गई। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सरकार को सख्त निर्देश दिए कि सिर्फ अधिकारियों को सस्पेंड करना काफी नहीं होगा।
7: मुंबई पानी भरता

0: चालणार नाही. मला वाटतं कल्पेबल होमिसाईडचा गुन्हा घ्यायला पाहिजे अशा अधिकाऱ्यांवर.
1: इसके बाद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी विधायक अमित साटम ने सदन में इस मुद्दे पर कहा कि लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
2: मुंबई में बारिश में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आज तीसरे दिन एक हादसा हुआ है जिसमें एक 60 साल के व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी. हमारे साथ बीजेपी के एमएलए और मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम है. उन्होंने इस मुद्दे को आज विधानसभा में उठाया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की है.
3: आज वहां पर साकीनाका में एसओ डिपार्टमेंट का एक काम शुरू था और वो काम शुरू होने के समय पर उस मैनहोल को अनअटेंडेड छोड़ा गया था और एक व्यक्ति की उसमें गिरकर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी है. हमने ये मांग की है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर का वहां पर काम शुरू था उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सदोष मनुष्य वध का कल्पेबल होमिसाइड का ये गुना एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए. जो अधिकारी जिनके ऊपर ये काम की जिम्मेदारी थी उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और आने वाले समय में प्रशासन ने अधिक संवेदनशीलता से काम करने की आवश्यकता है और इस घटना के बैकग्राउंड पर हम प्रशासन को एक इशारा देना चाहते हैं.
1: स्पीकर राहुल नार्वेकर ने साकीनाका हादसे पर तुरंत विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने हादसे की पूरी जानकारी सदन के सामने रखी. लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी से बीएमसी संभल नहीं गई.
4: अब मौत का कुआं देखना हो तो मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले मैन होल को देख लीजिए. जब आपको पता है कि मुंबई में बरसात होती है, कभी भी कितनी भी बरसात होती है, तो आपने पहले तैयारियां पूरी क्यों नहीं की? अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तब भी अगर आप सावधान नहीं है तो मुंबई करोड़ के जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है.
1: वहीं ठाणे के मुंब्रा में बारिश के दौरान करंट लगने से 17 साल की आलिया की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मुंब्रा के यास्मीन पार्क की बी विंग में रहने वाली आलिया किसी काम से बिल्डिंग के बाहर निकली थी. इसी दौरान वो बारिश के पानी में उतरे करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई.
5: ये बोल के हम थक चुके हैं. आज भी कल भी आपने देखा, कल भी एक हादसा होकर स्लैब गिर गया था. आज एक 17 साल की जवान बच्ची वो सिर्फ अपने बाप की दुकान पे गई बाप को मिलने के लिए और आई उसको करंट लगे और जगह पे बच्ची खत्म हो गई.
1: वहीं डोंबिवली में बच्चों के लिए नाश्ता लेने निकली माँ की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई. डोंबिवली के हनुमान नगर में खुले बिजली के तार ने 42 साल की महिला शशि चक्र की जान ले ली. मुंबई में 30 जून को चेंबूर इलाके में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के बिहान की मौत हो गई. अब ठाणे के मीरा भाईंदर इलाके में भी एक ऐसी ही घटना हुई है. यहाँ मूसलाधार बारिश के दौरान एक चलती स्कूटी पर अचानक नारियल का पेड़ गिर गया, जिससे स्कूटी सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया. हादसे का वीडियो भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि ये नारियल का पेड़ खोखला हो गया था. मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा दिख रहा है, खासकर निचले इलाकों जैसे दादर, प्रभा देवी, माटुंगा, सायन, अंधेरी, मुंब्रा, नाला सोपारा और कलम्बोली में जल भराव से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है. लेकिन बारिश के बाद हो रहे हादसों से मुंबई वाले भी खौफ में हैं. मुंबई से मुस्तफा शेख, ऋत्विक भालेकर और ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ मिथिलेश गुप्ता, डोंबिवली आज तक.
6: और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो हर उस माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर यानी कि बच्चों को दिन भर की देखभाल के लिए और सुरक्षा के लिए छोड़ देते हैं, ताकि वो अपने काम में ठीक से मन लगा सके, काम ठीक से कर पाएं या फिर अपनी नौकरी कर पाएं. लेकिन बेंगलुरु के एक डे केयर सेंटर से एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर किसी भी माँ बाप का कलेजा कांप जाए. देखते हैं डे केयर के शैतान को.
7: बेंगलुरु में डे केयर के शैतानों पर बड़ा खुलासा. कैसे डे केयर सेंटर में बच्चे को वॉशिंग मशीन में डालकर डराया. बच्चे को बाथरूम में बंद किया, मुंह पर टॉयलेट जेट से पानी डाला. मासूम के साथ प्रताड़ना के वीडियो से कांप उठेगा कलेजा. बेंगलुरु में कैप जेमिनी कंपनी के डे केयर सेंटर ने हद पार कर दी. मासूम की चीखों में छिपा ये दर्द बेरहमी की पूरी कहानी बयान कर रहा है. 29 जून का ये वायरल वीडियो बेंगलुरु में आईटी कंपनी कैप जेमिनी के एचएल कैंपस में चल रहे डे केयर सेंटर का है, जहां 2 से 3 साल के बच्चों के साथ बदसलूकी की

0: जा रही है। वीडियो में बच्चा टॉयलेट में बंद है, फर्श पर लेटा हुआ है और जोरों से रो रहा है। एक महिला बच्चे के बिलखने का वीडियो बना रही है। एक और वीडियो में महिला बच्चे को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उसके मुंह पर जेट स्प्रे से पानी डाल रही है। इसके अलावा बच्चे को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम में बैठाकर रखा गया है, उसे डराया जा रहा है, बच्चा रो रहा है। एचएल पुलिस स्टेशन में अब 5 महिला केयर गिवर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज और सभी दूसरे तकनीकी सबूतों की बारीकी से जांच की जा रही है।
1: Women staff who are working in a daycare facility in an IT sector company. As per the complaint and the videos which have been given as part of the complaint, we are going through it. The Joint Commissioner East and the Deputy Commissioner of in charge of Whitefield, both are there at the place right now. They are verifying the facts. But whatever has happened is really very serious issue. And we will take stricter action. The videos are being verified. CCTVs, all other technical evidences are being looked at.
0: अब पुलिस ने 5 केयरगिवर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी केयरगिवर्स को नोटिस जारी किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। इन डे केयर सेंटर्स में ज्यादातर आईटी कंपनी में काम करने वाले माँ बाप अपने महज 2 से 3 साल के बच्चों को छोड़कर जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जिन बच्चों के लिए वो कमा रहे हैं उन पर ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं। कैप जेमिनी ने एक बयान में कहा है कि उसके कर्मचारियों और उनके परिवारों का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी ने कहा कि वो जांच में पूरी तरह सहयोग कर रही है और एहतियाती कदम के तौर पर डे केयर सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।
2: इसी के साथ ही मैं रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अमित शाह के घर 3.5 घंटे तक बीजेपी की मैराथन बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन रहे मौजूद। कैबिनेट में फेरबदल और संगठन स्तर पर अधिकारियों को लेकर चर्चा की संभावना। चढ़ावा चोरी में जांच के लिए दोबारा अयोध्या पहुंची एसआईटी ने 8 घंटे तक ट्रस्ट के अधिकारियों से की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से भी सवाल जवाब। टीएमसी में बगावत मामले पर अब चुनाव आयोग ने थामी कमान। ममता और ऋतुव्रत को 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दोनों ही गुटों ने किया है पार्टी पर दावा। और भारत जापान के बीच तकनीकी साझेदारी है रक्षा क्षेत्र में करार। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया विकास यात्रा का अहम भागीदार, अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। और महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में बिहार और पंजाब से 3 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता भी फरार। अब तक कुल 7 की गिरफ्तारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर देश की नजर है। एसआईटी जांच में लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों के बाद अयोध्या बार एसोसिएशन भी चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वहीं आरोपों की इस आंधी में 8 में से 1 आरोपी के घर पर योगी सरकार बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुकी है।
1: माफिया राज पर योगी सरकार का बुलडोजर चलते तो सबने देखा, धर्मांतरण करने वालों के साम्राज्य को भी योगी ने बुलडोजर से मिटाया। अवैध मस्जिद मजारों पर